0: से अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
2: शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज मां चंद्रघंटा की आराधना, शेर पर सवार माता के मस्तक पर अर्ध चंद्र विराजमान, भक्त विधि विधान से करते हैं मां की पूजा अर्चना। नवरात्र के मौके पर इंदौर के बिजासन माता मंदिर में बड़े भक्त, मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा अर्चना, मंदिर में माता के सभी 9 स्वरूपों के होते हैं दर्शन। भारत पर भी विधिवत हो रही है शक्ति साधना। जैसलमेर में भारत पाक सीमा से सटे तनोट माता मंदिर में मेले का शुभारंभ। बीएसएफ जवानों ने गाए माता के भजन। शारदीय नवरात्र पर गुजरात में गरबा की धूम। जामनगर में पारंपरिक गरबा बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। तलवारों के साथ बेटियों ने दी शानदार प्रस्तुति। इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार 2026 का ऐलान। अमेरिका के दो अर्थशास्त्री रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड को सम्मान। अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने वाली पॉलिसी को समझने में दिया अहम योगदान।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। शक्ति स्वरूपा जगत जननी जगदम्बा की भक्ति करने का महापर्व है नवरात्रा, जहां हर दिन मां के अलग अलग स्वरूप की उपासना का विधान है। सुबह से शाम तक मंदिरों में माता रानी के जयकारे लग रहे हैं। आज बात करेंगे देवी के स्वरूप की, जिसे नवरात्र में देवी का तीसरा स्वरूप माना जाता है, जो भय से मुक्ति का वरदान देती है और जो बढ़ाती है आपका आत्मविश्वास। मान्यता है कि मां की पूजा उपासना से दूर होती है मंगल से जुड़ी बाधाएं। हम आपको देवी के तीसरे स्वरूप की महिमा के बारे में बताएंगे, साथ ही आपको बताएंगे मां चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के सबसे सरल और सटीक ज्योतिषीय महाप्रयोग आखिर क्या हैं।

0: साहस, शक्ति और वीरता का भाव देने वाली देवी हैं माँ चंद्रघंटा। भय का नाश करने वाली और सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहने वाली देवी हैं माँ चंद्रघंटा। माना जाता है कि असुरों का संहार करने और धर्म की स्थापना के लिए माता ने चंद्रघंटा का स्वरूप धरा था। माँ चंद्रघंटा, जिन्हें माथे पर घंटीनुमा आकार के चंद्रमा धारण करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है, देवी कवचम में माँ चंद्रघंटा को साहस और वीरता का प्रतीक माना गया है।
1: यह नवरात्र के तीसरे दिन तृतीयम चंद्रघंटेति दुर्गा कवच में ऐसा कहा गया है, तीसरे दिन की आराधना की जाती है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा सुशोभित है, जिसके कारण भगवती को चंद्रघंटा कहा जाता है। उनका स्वरूप जो है चंद्रघंटा का, दुष्ट शक्तियों के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए तत्पर शक्ति के रूप के प्रतीक के रूप में माना जाता है।
0: उग्र और तेजस्वी देवी के रूप में चंद्रघंटा भय और बाधाओं को दूर करने की अपार शक्ति रखती हैं और अपने भक्तों पर शक्ति के आवरण की इच्छाएं रखती हैं। नवरात्र में शक्ति की उपासना का हर दिन विशेष है। माँ के नौ रूप नौ वरदान की तरह हैं। आपके जीवन में चाहे ग्रहों का संकट हो या फिर जीवन की बाधाओं ने आपको परेशान कर रखा हो, ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि माँ चंद्रघंटा की उपासना में छिपा है आपकी हर समस्या का समाधान। नव दुर्गा का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा को समर्पित है, जो आपको साहस और आत्मविश्वास देने वाली देवी हैं। देवी शक्ति के साथ सौभाग्य, शांति और वैभव का भी वरदान देती हैं। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा की उपासना से नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और आप निर्भय और अभय हो जाते हैं।
1: जो भगवती का स्वरूप है भिन्न भिन्न स्वरूप है। यह भिन्न स्वरूप है, हमारे यहाँ कहा गया कि जहाँ से घंटा नाद किया जाता है वहाँ से आसुरी शक्तियाँ भाग जाती हैं, और चंद्रमा जहाँ पर है तो मन का कारक है। तो जब घंटा, इनके नाम में चंद्रमा के और घंटा दोनों का नाम दिया गया है, तो ऐसी देवी का आराधना करने से मनुष्य के मन से, मनुष्य के परिवार से भय डर दूर चला जाता है।
0: नवरात्रि का तीसरा दिन साहस और आत्मविश्वास पाने का है। इस दिन हर तरह के भय से मुक्ति भी मिल सकती है। इस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर है उनके लिए माता चंद्रघंटा की पूजा विशेष होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन विशेष साधना से व्यक्ति निर्भय हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा से न सिर्फ भय से मुक्ति मिल जाती है बल्कि साहस और शक्ति में भी अपार वृद्धि होती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि माँ चंद्रघंटा की उपासना से मंगल की समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। और से देखिए ये ज्योतिषीय उपाय। माँ चंद्रघंटा के माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके दसों हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। इनकी पूजा करने वाला व्यक्ति पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं माँ चंद्रघंटा। ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से होता है। इनकी आराधना से स्वभाव में विनम्रता आती है। मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में अद्भुत तेज आता है। माना जाता है कि माता अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करती हैं, इसलिए उनके हाथों में तलवार, त्रिशूल, गदा और धनुष होता है। इनकी उत्पत्ति ही धर्म की रक्षा और संसार से अंधकार मिटाने के लिए हुई है।
1: तीसरा दिन है, हमारे यहाँ तीन प्रकार के ताप बताए गए हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो चंद्रघंटा का जो स्वरूप है, इनकी आराधना करने से जो तीनों प्रकार के ताप हैं, जिनको कहा गया है दैहिक, दैविक, भौतिक, या तीन प्रकार के जो ताप होते हैं, इन तापों का समन होता है। क्योंकि भगवती के साथ घंटा भी जुड़ा है, भय का नाश करेगा, और मस्तक पर चंद्रमा है तो मन को निर्मल करेगा। इनकी आराधना इस तरह से अगर कोई नवरात्रि में करता है तो विशेष लाभ की प्राप्ति अवश्य होती है।
0: मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की उपासना साधक को आध्यात्मिक और आत्मिक शक्ति प्रदान करती है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि देवी का यह स्वरूप परम कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा की आराधना से साहस की प्राप्ति होती है। ऐसे में जिन लोगों को भय की समस्या है और अकारण ही शत्रुओं से परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए माँ चंद्रघंटा की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ है।
1: चंडी जो रूप है, नौ रूप भगवती का ही है, तो कलयुग में इनकी साधना जो होती है बहुत फलदायी होती है। साध धन ना, जो साधने में कठिन हो उसी का नाम साधना होता है। तो इन निरंतरता आवश्यक होती है। यह देवी शौर्य की प्रतीक हैं, जीवन में बल देती हैं, आत्मविश्वास देती हैं। तो इनकी आराधना करने से जीवन से भय की निवृत्ति अवश्य हो जाती है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर निरंतर साधना करनी चाहिए। साहस और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी आप कर सकते हैं विशेष प्रयोग। गौर से देखिए। नवरात्रि के तीसरे दिन रात्रि में माता चंद्रघंटा के सामने बैठें, लाल वस्त्र धारण करें तो अति उत्तम होगा। माता को लाल फूल और लाल वस्त्र अर्पित करें। नवारण मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। जब के बाद लाल वस्त्र को अपने पास सुरक्षित रख लें। देवी उपासना में कई चीजें खास होती हैं, जैसे उनके मंत्रों का जाप, शुद्धि, सात्विकता, पर हर देवी के हर स्वरूप की पूजा में एक अलग प्रकार का भोग चढ़ाया जाता है। और कहते हैं कि भोग आपका देवी माँ के प्रति समर्पण का भाव दर्शाता है। तो किस चीज का लगाएं भोग, कौन सा भोग है माँ चंद्रघंटा को अति प्रिय है?
1: सफेद पदार्थ में आप कोई भी वस्तु ले लें, आपका जैसा व्रत है, जैसा अनुष्ठान, उस प्रकार का आप नैवेद्य ग्रहण कर लें, और दूध और खीर और जो सात्विक भाव से प्रसाद बने, और उसी सात्विक भाव से हम भगवती को अर्पण करें, तब यह जो उनका नैवेद्य होगा, जो प्रसाद रूप में हम ग्रहण करेंगे, वो हमें बल प्रदान करेगा, हमारे शरीर की कांति, हमारे चेहरे के ओज को, कांति को बढ़ाएगा।
0: माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद चढ़ाने के बाद इसे स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों में बांटें। माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। तो आप भी माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी आराधना करें। आगे हम आपको बताएंगे माँ चंद्रघंटा की उपासना विधि, साथ ही जानेंगे माता के उद्भव की वो पौराणिक कथा जिसमें समाहित है त्रिदेव की शक्ति। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: आस्था कहती है कि साहस और आत्मविश्वास का वरदान देने वाली भगवती चंद्रघंटा की उपासना से हर तरह की भय बाधा दूर हो जाती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है या फिर मंगल दोष है, तब नवरात्र में मां चंद्रघंटा का पूजन एक वरदान की तरह साबित होता है।

0: माँ चंद्र घंटा की उपासना है परम फलकारी। जीवन से टल जाएगा संकट भारी से भारी। शक्ति की साधना से खुलेगा मुक्ति का द्वार। देवगण मानते हैं माँ चंद्र घंटा की महिमा है अपरंपार। माना जाता है कि माँ चंद्र घंटा की उपासना करने वालों की शक्ति तो बढ़ती है, साथ ही अहंकार का नाश हो जाता है। ऐसे में जिन लोगों को भय की समस्या है और अकारण ही शत्रुओं से परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए माँ चंद्र घंटा की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। चलिए हम आपको वो पौराणिक कथा भी सुनाते हैं जब मातेश्वरी ने लिया था विश्व के कल्याण के लिए अवतार। देवी पुराण में वर्णित है कि एक बार देवताओं और दैत्य राजा महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवगण पराजित हो गए और महिषासुर ने इंद्र का सिंहासन छीनकर ब्रह्मांड पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। कथा कहती है कि तब इंद्र और देवताओं ने संकट की घड़ी में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण ली। कहते हैं कि उनके दुर्दशा से द्रवित होकर त्रिमूर्ति ने एक शक्तिशाली ऊर्जा का संचार किया जो एक भव्य देवी के रूप में प्रकट हुई। उनके 10 हाथ थे जो बाद में विभिन्न देवी देवताओं के दिव्य शस्त्रों से सुशोभित हुए, जिनमें भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का चक्र और अन्य देवताओं के शस्त्र शामिल थे। स्वयं इंद्र ने अपना वज्र और घंटा भेंट किया। सूर्यदेव ने उन्हें अपनी तेजस्वी किरणें, एक चमकीली तलवार और एक भयंकर शेर भेंट किया। इन दिव्य वरदानों से परिपूर्ण होकर देवी ने महिषासुर और उसकी सेना का संहार किया। कथा है कि दैत्य राजा और उसके कुल का अंत हो गया और देवी चंद्रघंटा ने अपनी अदम्य शक्ति से देवताओं को उनके भय से मुक्त किया।
1: माँ चंद्रघंटा सामान्यतः सिंह पर सवार हैं और अनेक प्रकार के आयुध अपने हाथों में धारण की हुई हैं और एक हाथ इनका अभय मुद्रा में है। उनका स्वरूप जहाँ एक ओर उग्र शक्ति का स्वरूप है, उसी ओर उनके मुखमंडल पर जो शांति है वह करुणा रूप में दिखाई देती है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटे ते विश्रुता, यह इनके बारे में शास्त्र में प्रमाण बताया गया है।
0: कथा कहती है कि तब से ही देवी को भय से मुक्ति दिलाने वाली देवी के स्वरूप में पूजा जाने लगा। चलिए आपको बताते हैं कि नवरात्र की तीसरी तिथि पर आपको कैसे करनी है देवी की उपासना। पर ध्यान रखिए कि देवी की उपासना में मन, वचन और कर्म की शुद्धि जरूरी है।
1: माँ चंद्र घंटा को रक्त पुष्प, लाल रंग का अक्षत, धूप दीप और नैवेद्य अर्पण करें। गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, यह पंचोपचार जो पूजन है, यह पूजन हर देवी का करना चाहिए और सायंकाल के समय भी दीपक जलाना चाहिए, उससे लाभ होता है।
0: लाल वस्त्र धारण करके माँ चंद्र घंटा की उपासना करना उत्तम होता है। माँ को लाल फूल, रक्त चंदन और लाल चुनरी समर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन मणिपुर चक्र पर रंग अक्षर का जाप करने से मणिपुर चक्र मजबूत होता है। अगर इस दिन पूजा से कुछ अद्भुत सिद्धियों जैसी अनुभूति होती है तो उस पर ध्यान न देकर आगे साधना करते रहना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में कुंडली के 9 ग्रहों की शांति भी हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल की कोई समस्या है तो माँ चंद्र घंटा की उपासना के लिए बेहद कल्याणकारी साबित हो सकती है। माँ चंद्र घंटा की पूजा से कुंडली का खराब मंगल भी सकारात्मक परिणाम देने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मंगल की समस्याओं के निवारण के लिए क्या करना होगा। कुंडली में मंगल कमजोर है या मंगल दोष है तो देवी की उपासना बेहद कारगर है। लाल रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करें। माँ को लाल फूल, तांबे का सिक्का या तांबे की कोई वस्तु चढ़ाएं। माँ को हलवा या मेवे का भोग भी लगाएं। माँ के किसी भी मंत्र का जाप करें, फिर मंगल के मूल मंत्र का जाप करें। मंगल का मंत्र होगा ओम अंग अंगकाराय नमः। माँ को अर्पित किए गए तांबे के सिक्के को अपने पास रख लें। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि इन उपायों से आपको देवी की विशेष कृपा मिलेगी और मंगल से आने वाली समस्याओं का निवारण भी हो जाएगा। आदि शक्ति माँ भवानी की कृपा पाने के लिए यूं तो भक्त तरह तरह के जतन करते हैं, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिनके प्रयोग से आपको शीघ्र मिलेगी देवी की कृपा। नवरात्रि में नियमित रूप से अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करें, जीवन की दरिद्रता दूर होगी। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि देवी चंद्रघंटा की पंचोपचार पूजा करने के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। माना जाता है कि पापों और बाधाओं का नाश करने वाली और साहस आत्मविश्वास का वरदान देने वाली है माँ चंद्रघंटा। तो आप भी करें नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का ध्यान, माँ की कृपा से संवर जाएगा आपका भाग्य। आगे हम आपको बताएंगे माँ की उपासना के अमोघ मंत्र जिनके जाप से होगा आपकी सभी बाधाओं का निदान। बने रहिए हमारे साथ।
2: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि देवी के हर स्वरूप के आह्वान का और उन्हें प्रसन्न करने का एक सिद्ध मंत्र होता है, जिनके उच्चारण मात्र से माँ आपके द्वार चली आती हैं और भर देती हैं आपकी खाली झोली। तो चलिए अब आपको एक ऐसा महामंत्र बताते हैं जिसके जाप से आपके दुखों का हो जाएगा अंत।

0: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि देवी के मस्तक पर लगे घंटे की भयानक ध्वनि से नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं, साथ ही मंत्रों के उच्चारण से वरदान देती हैं माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा के मंत्रों में है अद्भुत शक्ति। विधि विधान से करें आदि शक्ति की भक्ति। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि माँ चंद्रघंटा के मंत्रों के जाप से जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। भगवती का ये स्वरूप अद्भुत है, जिनके आराधना से भय से मुक्ति और संकट में साहस का वरदान मिलता है। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा का मंत्र जाप करने से मन का डर, अज्ञात भय और घबराहट दूर होती है। माँ के विशेष मंत्र का जाप आपके सभी दुखों को दूर करने का सबसे कारगर मंत्र है।
1: देवी का कोई भी रूप हो, हम माँ के रूप में मानते हैं और माँ हमेशा अपने संतान को सुखी देखना चाहती है। हमारे यहाँ दुर्गा अर्गला में कहा गया, अर्गला स्तोत्र में, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपन देहि जयन, देहि यशो, देहि दिशो जहि। यह सब जो मंत्र भगवती के हैं, यह लोक और परलोक दोनों बनाने वाले हैं। तो इन सब मंत्रों का जप करने से रोग नाश होता है, शत्रु दूर होते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
0: या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। पिंडज प्रवरा रूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता, प्रसादम तनुते महयम चंद्रघंटेति विश्रुता।
1: भगवती मंत्र वही रहे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं मूल मंत्र है, उसके जगह चंद्रघंटायै नमः, चंद्रघंटा लगा करके, और चंद्रमा का भी एक मंत्र, जो कि चंद्रमा इनके साथ जुड़ा है, तो चंद्रमा के लिए सोम सोमाय नमः, सायंकाल के समय घी का दीपक जला करके सोम सोमाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटायै नमः, इन मंत्रों का जप करने से जीवन से भय का नाश होता है और सुखों की प्राप्ति होती है।
0: तो आप जब भी माँ चंद्रघंटा की उपासना करें तो देवी के मंत्रों का जाप भी करें। माना जाता है कि देवी के पूजन में मंत्रों के जाप से माँ चंद्रघंटा प्रसन्न होती हैं और साधक की सभी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो आप भी नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को मनाएं, विधि विधान से माँ की आराधना करें, फिर देखिए कैसे आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आपके सारे संकटों का नाश भी आदि शक्ति भवानी की कृपा से हो जाएगा।
2: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहे गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनी।

0: पान के पत्ते से कैसे मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान, पान के पत्ते से कैसे होगा रोजगार की समस्याओं का समाधान, और पान के पत्ते के प्रयोग से कैसे होगा धन का काम आसान, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: शारदीय नवरात्र का पर्व शुरू हुआ तो शहर शहर गरबा और डांडिया नाइट से जुड़े आयोजन भी शुरू हो चुके हैं। हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में लोग इन आयोजनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और ये तमाम लोग देवी के भजनों पर एक साथ झूमते हैं और माँ की उपासना करते हैं।

0: नवरात्रि के शुभ दिन शुरू हुए तो देवी माँ की उपासना में भक्तों ने अपना पूरा जोश और उत्साह झोंक दिया है। चाहे माँ के मंदिर हो या जागरण, गरबा हो या तलवार रास, लोगों की एनर्जी देखते बन रही है। गुजरात के जामनगर से आई इस तस्वीर में भी ऐसा ही उत्साह और जोश देखने को मिला। यहाँ नवरात्रि के खास मौके पर पारंपरिक तलवार रास किया गया, जिसमें इन लड़कियों ने हाथों में तलवार लेकर महाकाली तांडव समेत विभिन्न पारंपरिक रास की शानदार प्रस्तुतियां दी, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। आशापुरा गरबी मंडल में पिछले 45 सालों से नवरात्रि महोत्सव की परंपरा उत्साह और श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है। ये तलवार रास इस गरबी मंडल की खास पहचान है। आशापुरा गरबी मंडल का तलवार रास पूरे इलाके में खासा मशहूर है। इस मंडली से जुड़े लोगों का कहना है कि ये परंपरा आज भी नई पीढ़ी को संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का काम कर रही है। इनकी ये कला न केवल गुजरात की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत करती है, बल्कि नारी शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का संदेश भी देती है।
1: आ गरबी छेला 45 वर्ष थी थाई छे अने आ गरबी बधी बधी छोकरियो एटली खुशी थी रमे छे अने एटली उत्साह थी रमे छे अने आ गरबी मां बहु आ गरबी मां तलवार रास महाकाली तांडव जेवा अनेको रासो थाय छे। तलवार रास मां अत्यारे अमे लोको दांडियाना बदले तलवार वापरी छे, जेनाथी अमे लोको नारी शक्ति आगळ वधारी छे अने लोको आ तलवार रास ने दूर दूर थी जोवा आवे छे अने आ अमारो रास बहु फेमस छे।
0: नवरात्रि के दौरान गुजरात में गरबा, डांडिया, नाइट्स और रास का आयोजन बड़े पैमाने पर होता है, जिनमें बड़ी संख्या में हर उम्र के लोग पहुंचते हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने भी खास तैयारी की है। खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस ज्यादा सतर्क है। राजकोट के पंडालों में सुरक्षा का संदेश देने के लिए पुलिस ने महिला पुलिस कर्मियों की एक खास टीम बनाई है। इस शी टीम में महिलाएं पुलिस की वर्दी में नहीं बल्कि गरबा कलाकारों की शक्ल में ही रहेंगी, जो अलग अलग आयोजनों में पेट्रोलिंग करेंगी और ऐसे आयोजनों में पहुंचने वाले असामाजिक तत्वों पर नजर रखेंगी।
2: हमारी शी टीम जो है महिला पुलिस स्टेशन में तैनात है और बाकी हर एक पुलिस स्टेशन में शी टीम के महिलाएं आइडेंटिफाइड है, तो वो महिलाएं पारंपरिक गरबा की गणवेश पहन के अलग अलग गरबाओं में जाएंगी और वहां पे नजर रखेंगे कि कोई रोमियो या फिर आवारा तत्व जो है छेड़खानी का प्रयास कर रहा हो या फिर कोई भी बहन बेटी को परेशान कर रहा हो तो तुरंत उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगी। और इसके अलावा हमारी जो लोकल पुलिस स्टेशन की जो टीमें हैं वो गरबा के संपूर्ण आयोजन के दौरान जो है आयोजन स्थल पर हाजिर रहेंगी।
0: गुजरात के इस लोक नृत्य को लोग खासा पसंद भी करते हैं, इसलिए रात रात भर चलने वाले इन आयोजनों में सुरक्षा एक अहम पहलू रहा है। ऐसे में प्रशासन की भी कोशिश यही है कि गरबा में आने वाले सभी लोग बिना किसी परेशानी के गरबा खेल सकें। जामनगर से दर्शन ठक्कर और राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।

0: न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
8: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
9: शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज माँ चंद्रघंटा की पूजा, माँ शक्ति स्वरूपा की आराधना के लिए देश भर के मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार। गुजरात में गरबा के रंग, वडोदरा के ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस में भव्य हेरिटेज गरबा आयोजित, दिखा संस्कृति और परंपरा का अनोखा संगम। शक्ति की आराधना के लिए सजे दुर्गा पूजा पंडाल, अलग अलग थीम पर आधारित पंडालों में मां का भव्य दरबार, आस्था में लीन श्रद्धालु। समुद्र पार दिखी नवरात्र की रौनक, न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर बंगाली समुदाय ने जमाया मां दुर्गा की भक्ति का रंग। पहाड़ों पर बर्फबारी से प्रकृति का सफेद श्रृंगार, बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी। वहीं मैदानों में भी बदला मौसम का मिजाज, कई जगहों पर बारिश।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना।
9: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में और मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत। और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।
10: तारू पल्लव महू रहा लुकाई, हनुमान जी पत्तों में छिपे, क्यों छिपे? भक्त को छिपना चाहिए, भगवान को छपना चाहिए। पहले के भगवान, पहले के भगत छिपे रहते थे, बताते नहीं थे। तुमने देखा नहीं, सूरदास जी ने थोड़ी कहा कि हम संत हैं। सूरदास जी को पढ़ोगे तो उन्होंने क्या कहा, मौसम कौन कुटिले खल कामी। बताओ कोई संत अपने लिए ऐसा कह सकता? संत छिपाता है, और संत भी वही है जो अपने आप को छिपाए, जो पहले ही कहे कि आई एम शांत। तो समझ जाइए, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप समझ जाइए। या तो इन्हें घमंड ज्यादा है या संत नहीं हो, घमंड तो संत कैसा, हम तो संत कैसा। तो हनुमान जी महाराज छिपे, किसी ने कहा छुपे क्यों हो? हनुमान जी बोले, भैया छुपने में फायदा है, भगवान को छपना चाहिए, भक्त को छिपना चाहिए। हनुमान जी ऊपर बैठे हुए, रावण आता है, डराता है। उसके बाद में त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, सबनो बोले सुनाए सपना, सीता से करो हे तपना। त्रिजटा नाम की राक्षसी भी समझाती है, सब राक्षसनियों को वापस करती है। यहां हम कथा सुना चुके, इसके आगे की बात हम सुना रहे। माता जानकी जी के लिए हनुमान जी एक उपाय करते हैं। बात कहां से शुरू होती है, सुंदरकांड पढ़िए। हनुमान जी ने सोचा डायरेक्ट जाना उचित नहीं है, तो जो मुद्रिका लाए थे वो गिरा दी, और जैसे ही मुद्रिका

लेकिन हनुमान जी महाराज मधुर वचन में सोचने लगे कि हम बोले क्या, तो सीता जी की तरफ देखा, मां की तरफ। मां है व्यथा में, विरह व्यथा, विरह में व्यथा में, और व्यथा को कथा ही मिटा सकती, उन्हें व्यथा है, और व्यथा कैसे मिटेगी, बोले कथा से। भाई किसी को व्यथा हो, जैसे तुम लोग दो घंटा हमारी कथा सुनते, कल भी सुनी आज भी सुन रहे, क्या तुम्हें पड़ोसी की टेंशन हो रही है अभी वर्तमान में, हो रही पड़ोसन की? नहीं नहीं हो रही, बोलो। नहीं उसमें डरना क्या है, हम कौन सा तुम्हारी फोटो छपवा देते हैं। वो कोई टेंशन हो रही, जब तक कथा में ध्यान ही नहीं, बस यही लग रहा अच्छा अब आगे क्या, अब आगे क्या, यही मन में आ रहा। तो व्यथा में होंगे पर कथा व्यथा मिटाती है, तो हनुमान जी ने यही विचार किया और करने क्या लगे, ए हा

हनुमान जी महाराज कथा सुनाने लगे। हनुमान जी कथा सुनाने लगे तो माता जानकी जी सुनने लगी, लागी सुने श्रवण मन लाई। अच्छा, कथा का ये नियम है, कथा माता जानकी जी ने भी सुनी तो कैसे, मन लाई, मन लगाकर सुनी। और कथा सुननी ऐसी चाहिए। कुछ लोग कहते गुरु जी हमारा तो मन ही नहीं लगता, तो मन लग कहां रहा, कथा में नहीं लग रहा तो कहां रहा। पर कोई बात नहीं, मन नहीं लगता तब भी कथा में बैठो, पूछो क्यों, पूछो अभी आप लोग हवाई जहाज पे बैठे कभी, मतलब बैठे होंगे, हम तो जैसे पूछने का तरीका है हमारा, हमें भरोसा है बैठे होंगे, पूछने का तरीका उल्टा है। अच्छा, हवाई जहाज में कौन कौन बैठा, ऐसे हाथ उठाओ लगभग लगभग सब। अच्छा, हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे, कोई बात नहीं सुनो, कभी पायलट आया आपके पास कि भाई साहब आपका मन लग रहा तो हम उड़े, आया आया, बोलो बोलो बोलो, मन लगे या ना लगे वो तो उड़ता है, हाँ जी या ना जी। वैसे ही तुम्हारा मन कथा में लगे या ना लगे बैठ जाना, जैसे हवाई जहाज उड़ती है तो गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है, वैसे ही कथा में मन लगे या ना लगे बैठ जाना, ये भी राम जी की भक्ति के स्थान तक पहुंचाएगी। लेकिन माता जानकी जी ने सूत्र दिया सुनने का, क्या

अरे वाह, कथा इतनी सुंदर। कथा तो सुंदर है पर कथा वक्ता नहीं दिख रहा। हनुमान जी ऊपर से ही बोले, माता केवल कथा ही सुंदर है, कहने वाला तो बंदर। तो कथा वक्ता मत देखो, कथा ही देखो। कथा सुंदर है, कथावर सुंदर है, वक्ता तो बंदर है। अच्छा, कितना गजब का सूत्र है, कथा कहने वाला बंदर है। लेकिन एक बात बोले हम, कह दो बोलो, बंदर भी सुंदर हो सकता बस राम का। बंदर भी सुंदर हो सकता बस राम का हो, लेकिन सुंदर भी बंदर हो सकता काम का। सुंदर भी, हम लोग कहते ना अपनी आम भाषा में, जब कोई थोड़ा ऐसे ऐसे बाल करे में, कहां बंदर बने घूमे, कहते ना। तो बंदर भी सुंदर हो सकता राम काज करता हो, पर बंदर भी सुंदर हो सकता रावण का काम करता। हाँ, आ धन्य। हनुमान जी बोले, हम तो बंदर हैं। माता ने कहा, कोई बात नहीं, सामने आओ। हनुमान जी सामने आए, कौन हो? तब हनुमंत निकट चली गय, फिर बैठी मन विस्मय भय। माता जानकी जी ने हनुमान जी को देखा, छोटे से हनुमान जी, इतने से नीचे देख रहे, लेकिन मन में विस्मय, क्या कहीं ऐसा तो नहीं रावण ही रूप बना के आ गया। तब हनुमान जी ने अपने अपना जो बात कही वो बड़ी गजब की। कहां से माता जानकी जी को भरोसा उठा, ये सुनना।

0: दया निधान, करुणा निधान, वही कोड बोल दिया। हमने सुना है, हमें इस बारे में पता नहीं, सुना है हमने, जो किसी को रुपया भेजते हैं उसको क्या कहते हैं, मनी ट्रांसफर। तो मनी ट्रांसफर जब करते हैं तो उनको नंबर बताना पड़ता है, नंबर बताओ तो पता लग जाता है, यही है पासवर्ड। ऐसे ही आर्मी में हमने सुना, आर्मी में हर डे का अलग अलग, भारत की आर्मी में हर दिन का अलग अलग कोड होता है, है? हाँ हाँ वही हाँ। और यदि वो ना बोलो तो सीधी बंदूक मार दी जाती, तीन बार पूछते हैं आर्मी वाले, रोज का कोड होता है, और वो यदि ना बोला तो खेल खत्म, नहीं तो पता लगे आर्मी की ड्रेस पहन के कोई और आ गए, कोई और भी तो आ सकता है, इतनी आर्मी इतनी भीड़ कैसे पता लगे कि अपने ही टीम का है। तो कोड वर्ड, माता जानकी जी और राम जी का भी एक कोड वर्ड था। जानकी माता राम जी को करुणा निधान दया निधान कहती थी। हनुमान जी ने वही कहा, सत्य शपथ करुणा निधान की। अरे ये तो हमारे शब्द बोल रहे हैं। अच्छा फिर टेंशन, माता जी अब क्या टेंशन, हनुमान जी छोटे से, माता जानकी जी ऐसे देखे, एक और चिंता है क्या, नर बानर हूं संग कहूं कैसे, तुम बानर हमारे प्रभु नर, दोस्ती कैसे। हमें लगता दो कारण से दोस्ती हुई बानरों से। हम सोच रहे थे कि यदि लंका सोने की है और मनुष्यों को ले जाते राम जी, और रावण यदि ऑफर देता कि एक एक गोल्डन हाउस, और थोड़ा कोई ज्यादा बड़ा होता तो उसको कहते थे तुम भाई बंगलो ले लो, 3 BHK ना लो बंगलो ले लो, और कौन गोल्डन हाउस छोड़े। तो राम जी रघुनाथ जी तो चतर ही है इसलिए बानर। तो माता जानकी ने कहा कि नर बानर हूं संग कहूं कैसे। हनुमान जी ने तुरंत कही कथा भाई संगत जैसे, जैसे संगति हुई कथा बता दी। माता जानकी जी को अभी भी भरोसा नहीं, तब हनुमान जी ने जो कहा भरोसा कैसे हुआ वो सुनना। सुंदरकांड का 13वां नंबर का दोहा ये बात का प्रमाण करता कि हनुमान जी ने कहा कि कपि के वचन सप्रेम सुन उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन ये है कृपा सिंधु कर दो। कपि के वचन सप्रेम यही छुपा है, हनुमान जी ने जो वचन कहे वो सप्रेम कहे। और प्रेम कैसे, आंखों से आंसू बहने लगे, नेत्र सजल हो। अच्छा हंसा तो किसी भी बात पे जा सकता, रोया ना बड़ा कठिन। अच्छा थोड़ी देर तो कोई भी रोक सकता, रो सकता, पर लगातार रोना बड़ा कठिन। कई लोग हमने ऐसे देखे जो नाटक नौटंकी वाले होते हैं, वो कई लोग ऐसे होते हैं जो आंखों में प्याज लगा लेंगे। हाओ हाओ, एक हमने एक बहुत सज्जन ऐसे देखे कि उन्हें रुलाने के लिए, वो जनता को रुलाना चाहते थे, मंच पे बैठते थे तो वो क्या करते थे कि अपने रूमाल में विक्स लगा लेते थे, और जब रोने का नाटक आता था तो वो ऐसे करके हाँ हाँ, ताकि लोग उनको बहुत भावुक भगत समझें। एक दिन वो हमें को फंस गए, बोले महाराज महाराज महाराज, हमने कहा और सुना विक्स कब से नहीं लगाए। सो हमारे पांव दबा कर, अरे हमने कहा ठठरी के भरे न कटा मूसर चंदा, काहे को नाटक करते हो बे फिजूली में, ऐसे भाव ले आओ कि रोना के लिए कोई उपाय ना करना पड़े, भाव से आंसू बहे, विक्स के प्रभाव से आंसू ना, भाव भाव से आंसू। तो अच्छा माता जानकी जी को जब राम जी की कथा सुनाए तो कपि के वचन सब प्रेम सुन, प्रेम उमड़ा, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। माता जानकी जी ने देखा रो रहे हैं, आहा समझ गई इतना प्रेम तो किसी राम जी के प्रिय के अंदर हो सकता। लेकिन एक बात और थी, कहे हनुमान जी रहते पर शब्द राम जी के थे, ऐसा लग रहा था मानो राम जी ही हनुमान जी के अंदर बैठकर बोल रहे हो। माता जानकी जी को भरोसा हो गया, भरोसा हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बात हुई राम जी के, हमें याद करते, बिल्कुल याद करते, इस पर चर्चा हुई। अंत में हनुमान जी ने देखो दूत का लक्षण यही होता है, हनुमान जी ने कहा कि आप तो कम याद करती, राम जी ज्यादा याद करते। अच्छा कोई और होता तो ये कह देता, करते तो हैं इतना नहीं जितना आप, आप तो रोती ही रहती मामू, ठीक है तो इतने में ही लड़ाई धरी हाँ। और फिर माता की तो ठीक ही है, उनकी तो बात ही अलग है। तो हनुमान जी लेकिन क्या गजब के दूत हैं, हनुमान जी बोले आपसे ज्यादा याद करते। तो माता जानकी जी ने फिर संदेह किया, एक बात बताओ हनुमान। बोले हाँ, यदि वो हमें याद करते तो इंद्रपुत्र जयंत, जयंत हमारे पास आया, कौवा बन के चौंच मार दी, तो पीछे तिनका लगा दिया, तिनका को बाण बना दिया, पीछे लगा दिया। हनुमान जी बोले माँ, उनके पीछे तो तिनका लगाया था, रावण के पीछे तो हमको ही लगा दिया। आओ, क्योंकि जयंत ने तो चौंच मारी थी, तो पूरा ही उठा लाया, तो आप समझ नहीं पा रही हैं, उसके पीछे भी बाण चलाया, तो रावण के पीछे भी बाण लगा दिया। तो माता जानकी जी बोली कि वो बाण है कहाँ? हनुमान जी बोले हम ही तो है। और ये तो और गजब का बाण है, खाता पीता भी है, बोलता भी है, तुम टेंशन ना लो माता, वो तो प्रभु की आज्ञा नहीं है, नहीं तो हम अभी उठा के ले जाएं रावण को मारकर, पर प्रभु की आज्ञा नहीं है, यदि हम ऐसा कर देंगे राम कथा यहीं पूरी हो जाएगी, इसलिए चिंता ना करो। बहुत ही जल्दी भगवान प्रभु श्री राम आएंगे, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। माता कपिन सहित आई हैं रघुवीरा, कपियों के साथ बानर आएंगे। तो माता जानकी जी बोली किसके साथ? बोले बंदरों के साथ। तो माता जानकी जी बोली कितने बंदर हैं? हनुमान जी बोले अनगिनत। तो नीचे छोटे से हनुमान जी, तो माता जानकी ऐसे देख के बात कर रहे हैं, अच्छा बेटा तुम उन बंदरों में जूनियर हो के सीनियर? तो हनुमान जी बोले माँ हम सबसे ज्यादा सीनियर हैं, सीनियर सीनियर सीनियर। तो माता जानकी जी भी बोली फिर तो हो गया कल्याण। हनुमान जी बोले क्यों? बोले जब सीनियर इतना सा है तो जूनियर तो बिल्कुल बिंदी होगी। अब वो क्या हमको ले जाएंगे वापस, वो क्या रावण से जूझ पाएंगे रावण की सेना से? तो हनुमान जी बोले अच्छा माता ऐसी बात है, तुरंत चिंता मत करो। तुरंत माता जानकी जी की बात सुनकर के कनक भूद्राकार शरीर हनुमान जी भारी बन गए, पेड़ के ऊपर हो गए, तो जो माता जी नीचे देख रही थी वो ऊपर देखने लगी। हनुमान हाँ माँ इतने बड़े हो? हनुमान जी बोले माँ थे तो हम छोटे ही, पर आपकी दृष्टि पड़ी तो अब हम बड़े हो गए। ये भक्त का नजर है। तो धन्य वीर बजरंग बली श्री अंजनानंदन हनुमान जी महाराज ऊपर खड़े हैं, इतने विराट देख करके माता जानकी जी प्रसन्न हो गई। बहुत कनक भूद्राकार शरीरा समर भयंकर अतिबल वीरा, वाह वाह सीता मन भरोस तब भय। हनुमान जी का इतना रूप देख के भरोसा हो गया, अब ठीक है, अब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हनुमान जी जैसी बेटा ऊपर ना हो, गर्दन दर्द हो गई, हनुमान जी पर नीचे हुए। हनुमान जी जैसे ही छोटे हुए, मन संतोष सुनत कपिबानी भगत प्रताप तेज बलसानी, माता जानकी जी ने पांच वरदान दिए, अजर अमर गुण निधि सुत हो हूं। बेटा जाओ हो तात बल सील निधाना, बलवान हो और सीलवान हो। अच्छा बहुत बढ़िया, बल भी मिले पर सीलता भी मिले। भाई कई लोगों के पास बल तो होता है पर धैर्य नहीं होता है, जो मुक्का मसक देते सेंट्रल जेल चले जाते। तो हनुमान जी को वरदान दिया हो तात बल, बलवान तो पर सीलवान भी हो, ठंडक भी रहे, जब प्रयोग करना हो तब ही करो चाहे जब ना करो। कुछ लोग होते हैं जिन्हें नई नई गाड़ी मिले वो दिखाते ही रहते हर हर हर, भले ही वहां पर एक्सीलेटर ना लेना हो पर वो जिनका वो साइलेंसर फटा रहता वो दबाते ही रहते हर। लाल बत्ती पे खड़े हो तो दूसरे के कान फाड़ते ही रहे हर, और विदेशों में तो ये ज्यादा है। आओ आओ, तो कई बार बड़ा दिमाग खराब होता कि भाई बताओ भाई अब खड़ी हुई है शांत खड़ी रहने दो, लाल बत्ती आ जाए चला लेना, लेकिन उनसे उनको ये लगता कि लोग देखें, देखो हमारे पास ये वाली गाड़ी है, तो कई लोगों को दिखाने का बड़ा शौक होता है। तो हो भी क्यों ना, जैसे कुछ लोग जो नई नई सोने की अंगूठी खरीदते और बता गर्मी बहुत है, बल्कि इस उंगली का कोई काम नहीं दिखाने का, लेकिन वो कोई देखे कैसे। कुछ नए लोग और होते हैं वो भी बड़े गजब के होते हैं, सोने की चेन पहनेंगे तो आगे का बटन है कर लेंगे, तो दिखाने का बड़ा शौक होता है ज्यादातर लोगों का, तो ये लोग बड़ा ठहराव बहुत।
1: पान के पत्ते से कैसे मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान, पान के पत्ते से कैसे होगा रोजगार की समस्याओं का समाधान, और पान के पत्ते के प्रयोग से कैसे होगा धन का काम आसान, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज माँ चंद्रघंटा की पूजा, माँ शक्ति स्वरूपा की आराधना के लिए देश भर के मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार। गुजरात में गरबा के रंग, वडोदरा के ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस में भव्य हेरिटेज गरबा आयोजित, दिखा संस्कृति और परंपरा का अनोखा संगम। शक्ति की आराधना के लिए सजे दुर्गा पूजा पंडाल, अलग अलग थीम पर आधारित पंडालों में मां का भव्य दरबार, आस्था में लीन श्रद्धालु। सात समंदर पार देखी नवरात्र की रौनक, न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर बंगाली समुदाय ने जमाया मां दुर्गा का भक्ति का रंग। पहाड़ों पर बर्फबारी से प्रकृति का सफेद श्रृंगार, बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी। वहीं मैदानों में भी बदला मौसम का मिजाज, कई जगहों पर बारिश।

0: गुड न्यूज टुडे पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शारदीय नवरात्र के महापर्व का आज तीसरा दिन है। आज मां के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा हो रही है। दिल्ली के झंडे वाला मंदिर सहित तमाम मंदिरों में आधी रात से ही लोग माता के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। आज तड़के मां की मंगला आरती भी हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। नव दुर्गा का तीसरा स्वरूप मां चंद्र घंटा को समर्पित है, जो साहस और आत्मविश्वास देने वाली देवी मां है। देवी शक्ति के साथ सौभाग्य, शांति और वैभव का भी वरदान देती है। मान्यता है कि मां चंद्र घंटा की उपासना से नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और भक्त निर्भय और अभय हो जाते हैं। मां चंद्र घंटा के माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसके लिए इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। इनके दसों हाथों में अस्त्र शस्त्र है और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। इनकी पूजा करने वाला व्यक्ति पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है मां चंद्र घंटा। इनकी आराधना से स्वभाव में विनम्रता आती है। मान्यता है कि माता अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करती हैं, इसलिए उनके हाथों में तलवार, त्रिशूल, गदा और धनुष होता है। उनकी उत्पत्ति ही धर्म की रक्षा और संसार से अंधकार मिटाने के लिए हुई है। मान्यता है कि अगर किसी की कुंडली में मंगल की कोई समस्या है तो माँ चंद्र घंटा की उपासना के लिए बेहद कल्याणकारी साबित हो सकती है। माँ चंद्र घंटा की पूजा से कुंडली का खराब मंगल भी सकारात्मक परिणाम देने लगता है। तो देखिए किस तरह से आज का तीसरा दिन, नवरात्र का तीसरा दिन मां चंद्र घंटा की उपासना के रूप में मनाया जा रहा है। मां का तीसरा स्वरूप है चंद्र घंटा। मां के सर पर चंद्र, आधा चंद्र जो है वो सुशोभित है, इसलिए मां को चंद्र घंटा कहा जाता है। मां के इस रूप में पूजा की जाती है। इनके दसों हाथों में अस्त्र शस्त्र है और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। इनकी पूजा करने वाले व्यक्ति जो है वो पराक्रमी और निर्भय हो जाते हैं। तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है मां चंद्र घंटा। इनकी आराधना से स्वभाव में आपके विनम्रता भी आती है।
1: जय माता की, जय मां झंडे वाले की। बद्री भगत झंडे वाला मंदिर सोसाइटी की ओर से आप सभी भक्तों को, सभी देशवासियों को तृतीय नवरात्र मां चंद्र घंटा के स्वरूप का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज के दिन माता का तृतीय स्वरूप का यहां पर पूजन अर्चन एवं श्रृंगार किया गया है। आज के दिन मां भगवती का चंद्र घंटा के रूप में, अर्थात चंद्र के समान जो है, माता के मस्तक पर घंटे के समान आकार बना, इसलिए इनको चंद्र घंटा के नाम से आवाहित किया गया है। आज के दिन भक्तजन अपने मन को मणिपुर चक्र में स्थित कर भगवती की उपासना करते हैं। निश्चित रूप से भगवती उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तृतीय नवरात्र में भी भक्तजन माँ के इस तृतीय स्वरूप का दर्शन करने के लिए सुबह से यहाँ पर लाइनों में हैं और निश्चित रूप से वे सभी जो है माँ के इस तृतीय स्वरूप का दर्शन करके बड़े प्रसन्न हैं।
2: नवरात्रों में हम यहाँ भगवती का आशीर्वाद लेने आए हैं सब परिवार। ये मेरे पति हैं और बहुत अच्छा लगा। और नवरात्रों में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने आराम से दर्शन हो जाएंगे। बहुत इजी वे चलता रहा और ट्रॉली की व्यवस्था की वजह से जल्दी दर्शन का बन गया है प्रावधान, नहीं तो पहले काफी समय लगता था।
3: बहुत अच्छा माता का मंदिर सजा हुआ है, बहुत बढ़िया दर्शन हो गए जी। नवरात्रों में माता रानी अपने आपको सौभाग्यशाली समझते हैं। हरियाणा से हम यहाँ आए हैं, पहली बार आए हैं, माता रानी के दर्शन करने के लिए बहुत अच्छा लगे।
4: जब भी आते हैं तो एक अलग सी शक्ति का महसूस होता है यहाँ पर, और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर। और अपनी वाइफ के साथ में आया हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। माता का आशीर्वाद बना रहे हम सब पर, आप पर।
0: नवरात्र का पर्व गरबा, आराधना और उत्साह का प्रतीक है, लेकिन गुजरात के सूरत में मां दुर्गा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक ऐसा अनोखा तरीका सामने आया है जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। सूरत के बाइकिंग कम्युनिटी के सदस्यों ने 75 प्रीमियम मोटरसाइकिल्स की मदद से मां दुर्गा की विशाल आकृति तैयार की है। इस अनूठी प्रस्तुति के जरिए बाइकर्स ने अपनी धार्मिक आस्था और क्रिएटिविटी का प्रदर्शन दिया है। ये दृश्य न केवल सूरत और गुजरात बल्कि विश्व स्तर पर भी अपनी तरह का अनूठा प्रयास है। आसमान से ड्रोन कैमरे में कैद ये नजारा बेहद भव्य और भक्तिमय दिखाई दिया। इस अनूठे आयोजन को साकार करने के लिए ये टीम पिछले 10 दिनों से दिन रात रोजाना ये योजना बनाने और तैयारियों में जुटी हुई है। शुरुआत में करीब 100 मोटरसाइकिल्स को शामिल करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अंतिम रूप से 75 बाइक्स को तरीके से खड़ा करके माँ दुर्गा की भव्य आकृति तैयार की गई। और अब आपको सात समंदर पार से आए शक्ति उत्सव के तमाम रंग दिखाते हैं। दुनिया के सबसे चर्चित स्थानों में से एक न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर माँ दुर्गा के जयकारों से गूंज उठा। यहाँ कहीं पूजा अर्चना में जुटे श्रद्धालु दिखे तो कहीं भक्ति गीतों पर थिरकते कलाकार नजर आए। आमतौर पर यहाँ चमचमाती स्क्रीन और लोगों की भीड़ नजर आती है, लेकिन इस बार नवरात्रि के मौके पर माहौल कुछ ऐसा बदला कि हर तरफ माँ की भक्ति के रंग नजर आने लगे। बच्चों और युवाओं की प्रस्तुतियों ने उत्सव में चार चांद लगा दिए। हर प्रस्तुति में अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और परंपराओं को सहेजने की झलक दिखाई दी। वहीं कलाकारों की संगीत में प्रस्तुतियों से हर कोई उत्सव के रंग में रंगा नजर आया। खास बात ये रही कि माँ दुर्गा की भक्ति में सिर्फ भारतीय समुदाय ही नहीं, विदेशी पर्यटक भी शामिल हुए और टाइम्स स्क्वायर में माँ दुर्गा की आराधना का ये उत्सव आस्था के साथ भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को भी बयां कर गया। शारदीय नवरात्र के तमाम रंग दिन भर हम आपको गुड न्यूज टुडे पर दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है जीएनटी एक्सप्रेस का।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: अमरावती के अंबा माता और एकवीरा माता मंदिर में नवरात्र के दौरान गोंधल की धूम। गोंधल यानी जागर के जरिए माँ जगदम्बे की होती है आराधना। गोंधल को करपल्लवी और नेत्र पल्लवी के नाम से भी जाना जाता है। युवा पीढ़ी को भी इस कला से जोड़ने का हो रहा है प्रयास। महाराष्ट्र की लोक संस्कृति में गोंधल का है विशेष स्थान। कलाकार कला के माध्यम से देवी की महिमा का करते हैं गुणगान। दुर्गा पूजा पर माँ उग्रतारा धाम में लगा भक्तों का तांता। यहाँ माँ की अष्टधातु से बनी प्रतिमा की होती है उपासना। मंदिर परिसर में साधना कक्ष में बच्चे, जवान और बुजुर्ग सभी साधना और दुर्गा पाठ करने में है लीन। ये बच्चे 24 घंटे करते हैं दुर्गा पाठ। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में वंदे भारत ट्रेन की थीम पर सजाया जा रहा है मां दुर्गा का पंडाल। पक्की सड़क पर बनाया जा रहा लगभग 250 मीटर लंबा रेलवे ट्रैक। पंडाल में जाने के लिए दो प्लेटफॉर्म भी बनाए जा रहे हैं। पंडाल में कश्मीर की सुंदरता को भी दिखाया जा रहा है, जीवंत किया जा रहा है। बनाई जा रही है बर्फ से ढकी गुफा। दिल्ली के चितरंजन पार्क में नवरात्र की भव्य तैयारियां। बी ब्लॉक पूजा पंडाल में रविंद्रनाथ टैगोर की थीम पर बनाया जा रहा है पूजा पंडाल। पंडाल को अंतिम रूप देने में जुटे हैं कारीगर। यहां 15 अक्टूबर को पंचमी के दिन से शुरू होगा कार्यक्रम, जो कि 20 अक्टूबर तक चलेगा। भोपाल के पुराने शहर में स्थित कर्फ्यू वाली माता मंदिर में दिख रहा है इतिहास और परंपरा का अनूठा संगम। बड़ी संख्या में दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालु। इस मंदिर में प्रज्वलित होते हैं घी और तेल के अखंड दीपक। लोग इसे मन्नतों का मंदिर भी कहते हैं। श्रद्धालु अपनी मन्नतों के साथ यहां आते हैं और नारियल में अर्जी लगाकर मन्नत मांगते हैं। मन्नत पूरी होने पर भी यहां चढ़ावा चढ़ाते हैं। इंदौर के बीजासन माता मंदिर में आस्था का महासंगम। नवरात्र में उमड़ रहा है भक्तों का सैलाब। नवरात्र के 9 दिन तक यहां माता के अलग अलग स्वरूप की होती है उपासना। बड़ी संख्या में दूर दूर से दर्शन को आते हैं मां के भक्त। नवरात्र के मौके पर बिहार के सासाराम में ताराचंडी देवी स्थान में जलाए जा रहे हैं अखंड दीपक। यहां हजारों की संख्या में रोशन होते हैं अखंड दीप। नवरात्र में पूरे 9 दिन तक यहां अखंड दीप जलाने की यह परंपरा। शुद्ध देसी घी से प्रज्वलित किए जाते हैं दीप। वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भरना है मकसद। नवरात्र के मौके पर मिशन शक्ति अभियान के तहत यूपी पुलिस ने चंदौली में निकाली जागरूकता रैली। महिला सशक्तिकरण का दिया संदेश। रैली में महिला पुलिसकर्मियों के साथ छात्राएं और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी महिलाएं और स्थानीय महिलाएं भी हुई शामिल। अरावली की पहाड़ियों में शुरू हुआ करनी माता का मेला। प्रदेश सरकार के वन मंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना कर मेले का किया उद्घाटन। नवरात्र और दुर्गा पूजा को लेकर लखनऊ पुलिस अलर्ट। भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिला पुलिस, मोबाइल पुलिस और अतिरिक्त बल की तैनाती। मुंगेर के कलाकार की अनूठी भक्ति। 3 सेंटीमीटर के पीपल के पत्ते पर उकेरा नारी शक्ति का स्वरूप। आधुनिक गरबा के दौर में जामनगर में अंगारों पर नंगे पैर रास और मशाल रास का बना आकर्षण का केंद्र। काठियावाड़ी पारंपरिक वेशभूषा में युवक अलग अलग प्रकार के रास करते हैं प्रस्तुत। हैरान कर देता है अंगारा रास, जलते अंगारों पर जलते हैं युवक। इन रोमांचक प्रस्तुतियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ते हैं लोग। 80 वर्ष पुरानी है ये परंपरा।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: पान के पत्ते से कैसे मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान, पान के पत्ते से कैसे होगा रोजगार की समस्याओं का समाधान, और पान के पत्ते के प्रयोग से कैसे होगा धन का काम आसान, जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

आपका आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि का पावन समय चल रहा है और हम लोग देवी की अलग अलग स्तुतियां कर रहे हैं। आज हम आपको देवी की एक चमत्कारी स्तुति के बारे में बताएंगे जिसका नाम है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र क्या है, इसकी महिमा क्या है, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 13 अक्टूबर 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है कन्या राशि में, चंद्रमा बुध और शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल और बृहस्पति कर्क राशि में और केतु फिलहाल विद्यमान है सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे।

स्तोत्र क्या है? देखिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र श्री रुद्र यामल के गौरी तंत्र में लिखा हुआ है, शिव पार्वती संवाद के नाम से। दुर्गा सप्तशती का पाठ थोड़ा कठिन है और चूक हो जाने पर लाभ नहीं होता। ऐसे में कुंजिका स्तोत्र का पाठ ज्यादा सरल भी है और ज्यादा प्रभावशाली भी है। केवल कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल आपको मिल जाता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के मंत्र अपने आप स्वतः ही सिद्ध किए हुए हैं, इसलिए इनको अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र बहुत अद्भुत स्तोत्र है जिसका प्रभाव बहुत चमत्कारी है। इसके नियमित रूप से पाठ करने पर समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है और नवरात्रि में या वैसे भी अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो आपकी कठिन से कठिन समस्याएं दूर हो जाएंगी। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जानते हैं कि जब आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इसके पाठ से आपको जीवन में क्या फल मिलते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को वाणी की और मन की शक्ति मिलती है, उसकी वाणी प्रभावशाली होती है और मन मजबूत होता है। व्यक्ति का आलस्य दूर होता है, व्यक्ति के अंदर असीम ऊर्जा का संचार होता है, उसकी शक्ति, उसकी ताकत, उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ से व्यक्ति को खराब ग्रहों के प्रभाव से छुटकारा मिलता है। और अगर आप रोज शाम को सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो जीवन में धन और समृद्धि मिलती है। और जो कोई भक्त, जो कोई साधक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है उसके ऊपर तंत्र मंत्र की नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता है। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ का तरीका और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जानते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कैसे करेंगे। शाम के समय में गोधूलि वेला में या मध्य रात्रि के समय में अगर आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो उत्तम होगा। देवी

के सामने एक घी का दीपक जलाएं, इसके बाद लाल आसन पर बैठिएगा। अगर आप लाल वस्त्र धारण कर सकें तो और भी ज्यादा उत्तम होगा। इसके बाद देवी को प्रणाम करके संकल्प लें कि मैं किस कामना के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर रहा हूं। इसके बाद कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिएगा। कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने वाले साधक को पवित्रता का पालन करना चाहिए, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपने आहार अपने व्यवहार को संतुलित रखना चाहिए। देखिए सामान्य जीवन में भी आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, खास तौर से अगर पाप ग्रहों की समस्या हो, शनि की दिक्कत हो, राहु या केतु की दिक्कत हो और विशेषतः राहु की समस्या अगर ज्यादा परेशान करे तो आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ सुबह शाम करना चाहिए। पाप ग्रहों की बाधा से, पाप ग्रहों की समस्या से आपको आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। नवरात्रि में देवी को पान के पत्ते पर रख कर गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करिएगा लगातार 3 दिनों तक। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 13 अक्टूबर 2026 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल देवी को लाल फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज माँ चंद्रघंटा की पूजा, माँ शक्ति स्वरूपा की आराधना के लिए देश भर के मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार। गुजरात में गरबा के रंग, वडोदरा के ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस में भव्य हेरिटेज गरबा आयोजित, दिखा संस्कृति और परंपरा का अनोखा संगम। शक्ति की आराधना के लिए सजे दुर्गा पूजा पंडाल, अलग अलग थीम पर आधारित पंडालों में मां का भव्य दरबार, आस्था में लीन श्रद्धालु। सात समंदर पार दिखी नवरात्र की रौनक, न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पर बंगाली समुदाय ने जमाया मां दुर्गा की भक्ति का रंग। बारिश से प्रकृति का सफेद श्रृंगार, बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी, वहीं मैदानों में भी बदला मौसम का मिजाज, कई जगहों पर बारिश।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबर।
4: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका।
5: नमस्कार।
4: तो आज के शो में हम बात करने वाले हैं नवरात्रि में पान के पत्ते के खास प्रयोग की। अक्सर पूजा पाठ में हम पान के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं, नवरात्रि में हम इसका प्रयोग किस प्रकार करें जिससे हमारे जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों, इस बारे में पंडित जी से आज के शो में हम जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का गुडलक मंत्र क्या है।
5: देखिए, पूजा जब भी आप कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तो सामान्यतः काले या नीले रंग के वस्त्र पूजा उपासना में धारण ना करें। पीला, लाल या सफेद वस्त्र अगर आप पूजा में पहने तो वो आपके लिए सर्वोत्तम होगा।
4: और चलिए अब सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं 13 अक्टूबर 2026 यानी कि मंगलवार का पंचांग क्या है।
5: दिनांक 13 अक्टूबर 2026 दिन मंगलवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, रात के 11:27 तक, नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7:12 तक, राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
4: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत अपने विषय के साथ करें और सबसे पहले पंडित जी से ये जान लेते हैं कि पान के पत्ते का वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व क्या होता है।
5: जी देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि नवरात्रि के पावन अवसर पर आप पान के पत्ते का कैसे प्रयोग करें जिससे आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। सबसे पहले जानते हैं कि पान के पत्ते का वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, पान का पत्ता एक विशेष लता का पत्ता है। ये शौक के लिए और औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। पान का पत्ता पाचन तंत्र को अच्छा बना देता है और शरीर को विषमुक्त कर देता है। शरीर में जमी हुई गंदगी को बाहर निकाल देता है। भारतवर्ष में पान के पत्ते को प्राचीन काल से काफी पवित्र माना जाता है और पान के पत्ते की पवित्रता को देखते हुए इसका उल्लेख वेदों में भी किया गया है। लगभग हर तरीके के पूजा अनुष्ठान में पान के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। इसको शुभ कार्य की शुरुआत के लिए, यात्रा के आरंभ के लिए, शुभता लाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। देवी की उपासना में, मां दुर्गा की उपासना में पान के पत्ते से विशेष मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। यानी पान के पत्ते का प्रयोग करके अगर आप देवी की उपासना करें तो अपनी तमाम मनोकामनाएं आप बहुत आसानी से पूरी कर पाएंगे।
4: और इसी के साथ आप पंडित जी से जान लेते हैं कि पान के खास इस्तेमाल के लिए किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए।
5: अब अगर आप पान के पत्ते का विशेष प्रयोग करना चाहते हैं या पान के पत्ते का विशेष प्रयोग करने जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। जो पान का पत्ता आप प्रयोग में लाएंगे वो पान का पत्ता पूरा होना चाहिए, कटा हुआ या टूटा हुआ ना हो। इसमें इसकी डंडी यानी इसकी डंठल लगी होनी चाहिए। और पान का जो पत्ता आप प्रयोग में लाएंगे वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। पूजा और विशेष प्रयोग के लिए हरे पान का पत्ता प्रयोग करना चाहिए। हरे पान के पत्ते का प्रयोग करना लाभकारी होगा।
4: और आगे बढ़ने से पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेते हैं।
5: मेष राशि, सेहत और मन की समस्या दूर होगी, परिवार के रिश्तों में सुधार होगा, यात्रा में सावधानी रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार की समस्या हल होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, करियर में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। देवी को लाल फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: और चलिए आगे बढ़ते हैं अपने विषय के साथ। पंडित जी से ये जान लेते हैं कि शीघ्र विवाह के लिए पान के पत्ते का किस तरह से प्रयोग करना चाहिए।
5: अगर आपके विवाह होने में विलंब हो रहा हो, आपकी शादी जल्दी नहीं हो पा रही हो, तो नवरात्रि में पान के पत्ते का प्रयोग कैसे करेंगे? एक पान का पत्ता ले लीजिए, हरा पान का पत्ता जिसमें डंठल लगी हुई हो। सिंदूर को घी में जरा सा मिलाकर पेस्ट बना लें और पान के पत्ते पर चिकनी तरफ इस पेस्ट से अपना नाम लिखें और इसको चिकनी तरफ से ही मां दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। ये प्रयोग नवरात्रि में लगातार 3 दिन तक करें और देवी से प्रार्थना करें कि आपका विवाह शीघ्र हो जाए। अगर ये उपाय आप नवरात्रि में लगातार 3 दिन करें, पवित्र रहें, सात्विक रहें, तो आपका विवाह शीघ्र होगा।
4: और आगे बढ़ते हुए कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेने का वक्त है।
5: कर्क राशि, परिवार में बेवजह के विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।

0: उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, देवी को लाल फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका सबसे पहला सवाल ले लेने का। पंडित जी से जान लेते हैं आज का पहला सवाल किसका रहेगा।
0: जी, आज का पहला प्रश्न मोमिता जी ने हमें लिखा है, और मोमिता जी हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं, अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी बेटी की जन्म तारीख है 9 मार्च 2002, जन्म का समय दोपहर में 1:25, जन्म स्थान है कोलकाता। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी ने ग्रेजुएशन कर लिया है और अब आगे उसे किस तरह के करियर में जाना चाहिए। मोमिता जी, आपकी बेटी की कुंडली के हिसाब से अगर आपकी बेटी एजुकेशन सेक्टर में अपना करियर बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उनको पोस्ट ग्रेजुएशन करा करके उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ले जाना चाहिए, जहां पर उनको सफलता ज्यादा मिलेगी। आपकी बेटी की कुंडली के हिसाब से इनके करियर में ज्यादा कोई मुश्किलें या ज्यादा कोई संघर्ष दिखाई नहीं दे रहा है। आप ऐसा करिए, अपनी बेटी को एक पन्ना बनवा करके पहनाइए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना पहनाएं, और इनसे कहिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के आपके दूसरे सवाल की ओर। पंडित जी, आज दूसरा सवाल आप किसका लेंगे?
0: जी, अगला प्रश्न अवधेश जी ने हमें लिखा है, और अवधेश जी हमें बरेली से मेल लिख रहे हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 दिसंबर 1961, जन्म का समय सुबह के 7 बजे, और जन्म का स्थान है बरेली। अवधेश जी कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, तो मेरा स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अवधेश जी, ज्यादातर आपको आने वाले समय में अपने यूरिन का, किडनी का, प्रोस्टेट आदि का ध्यान देना होगा, क्योंकि यहां पर आपके लिए दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। बाकी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन तनाव भी आपका ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें और रोज सुबह राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से कि रोजगार की व्यवस्था के लिए पान के पत्ते का किस तरह से इस्तेमाल करना फलदायी होता है।
0: अगर आपके रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, आप रोजगार के लिए प्रयास कर रहे हैं कि आपका करियर बन जाए या शुरू हो जाए, तो पान के पत्ते का प्रयोग कैसे करेंगे? 27 पान के पत्ते ले लीजिएगा, टूटे हुए ना हो, हर पत्ते में डंठल होनी चाहिए और डंठल को लाल धागे में बांधकर पान के पत्तों की एक माला बना लीजिएगा। इसको नवरात्रि में किसी भी रात को देवी को अर्पित कर दीजिएगा, देवी को चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद शीघ्र रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करिएगा। अगले 1-3 महीने में आपके रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी और जब आपके रोजगार की व्यवस्था हो जाए तब इस माला को जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। ये उपाय नवरात्रि में किसी भी रात को अगर आप एक बार कर देते हैं और हृदय से प्रार्थना करते हैं तो आपके रोजगार की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी।
1: और आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेने का वक्त है।
0: तुला राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, धन प्राप्त होगा, करियर में सफलता मिलेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, चोट चपेट से बचाव करें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा, गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ होगा। धनु राशि, करियर में सफलता के अवसर मिलेंगे, संतान की खूब उन्नति होगी, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से कि धन लाभ के लिए पान के पत्ते का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए।
0: अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, आपको धन का लाभ हो, तो पान के पत्ते का प्रयोग कैसे करेंगे? नवरात्रि में जितने दिन भी संभव हो या रोज शाम को माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा और इसके बाद पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रख करके उनको अर्पित करिएगा। ऐसा पूरी नवरात्रि में करिए और नवरात्रि के बाद महीने में एक पूर्णिमा आती है, हर पूर्णिमा की रात को पान के पत्ते में गुलाब की पंखुड़ी रख करके देवी को अर्पित करिएगा, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
1: और इसी के साथ पंडित जी से ये जानेंगे कि अगर विजय प्राप्ति करनी है तो इसके लिए पान के पत्ते का किस तरह से प्रयोग करें जो फलदायी हो।
0: देखिए, आप प्रतियोगिता में, परीक्षा में, शिक्षा में, मुकदमे में विजय पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? शुद्ध घी का एक मुखी दीपक जलाएंगे, इसके बाद एक पान के पत्ते को दीपक से थोड़ा सा दूर दीपक के सामने रखेंगे। आप देखेंगे कि पत्ते पर थोड़ी कालिमा आ जाएगी, हल्की सी कालिख आ जाएगी। इस कालिमा को अपने कंठ पर लगा लें। आप जिस भी मुकदमे, प्रतियोगिता या परीक्षा के लिए जाएंगे, इसको लगा करके उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
1: और अब वक्त हो चला है मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेने का।
0: मकर राशि, मन आपका इस समय प्रसन्न रहेगा, धन की समस्या दूर होगी, पारिवारिक समस्या दूर होगी। देवी को लाल फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, तनाव कम होता जाएगा, धन लाभ की स्थिति बनेगी, करियर का दबाव कम होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत जितनी करेंगे लाभ उतना ही होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज के आपके तीसरे सवाल का, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं आपकी टीवी स्क्रीन पर एक मेल आईडी दी गई है जिस पे आप मेल कर सकते हैं और पंडित जी तक अपना प्रश्न पहुंचा सकते हैं। अब जान लेते हैं पंडित जी से कि आज पंडित जी तीसरा सवाल किसका लेंगे।
0: जी अगला प्रश्न ख्याति ने हमें लिखा है और ख्याति हमें जबलपुर मध्य प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 अप्रैल 2004, जन्म का समय सुबह के 9:05, जन्म स्थान है जबलपुर। ख्याति कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहती हूं, किस क्षेत्र में मुझे करियर के लिए कोशिश करनी चाहिए। ख्याति आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें, एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र की तैयारी करें, तो उसमें सफलता की संभावनाएं ज्यादा हैं। आप प्रशासनिक क्षेत्र में जा सकती हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, खान पान और डाइजेशन के मामले में लापरवाही मत करिएगा। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें और रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगला प्रश्न शैलजा जी ने हमें लिखा है और शैलजा जी की जन्म की तारीख है 9 अक्टूबर 1989, जन्म का समय शाम के 7:35, जन्म स्थान है बुलंदशहर। शैलजा कह रही हैं कि मेरा विवाह काफी विलंब से हुआ है और अब संतान होने में दिक्कतें आ रही हैं, तो संतान मुझे हो सकेगी या नहीं हो पाएगी। शैलजा जी आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से नेचुरली संतान होना कठिन है। अगर आप IVF के थ्रू जाएं या किसी टेक्नोलॉजी का सहारा लें तो बिल्कुल आपको संतान हो सकती है। और नवंबर दिसंबर जनवरी के महीने में अभी आपको IVF के लिए कोशिश करनी चाहिए। आपका IVF सक्सेसफुल होगा और अगले साल आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। रोज प्रातः एक बार गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुनें और हर शनिवार को शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपको लाभ होगा।
1: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम सवाल की ओर। पंडित जी चौथा सवाल किसका लेने वाले हैं?
0: जी आज का अंतिम प्रश्न विक्रम जी ने हमें लिखा है, बेंगलोर से मेल लिखते हैं। विक्रम जी की जन्म की तारीख है 17 फरवरी 1981, जन्म का समय दोपहर में 2:50, जन्म स्थान है जौनपुर उत्तर प्रदेश। विक्रम जी कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके अपना व्यवसाय करना चाहता हूं, क्या मेरे लिए नौकरी छोड़ना बेहतर रहेगा। विक्रम जी अभी आपकी कुंडली में नौकरी छोड़ना बहुत सूटेबल नहीं है, अभी आप व्यवसाय पर फोकस मत करिए, अभी आप नौकरी में ही बने रहिए। 2029 के बाद व्यापार के बारे में विचार किया जा सकता है, लेकिन तब तक आप नौकरी करें और अभी कोई नौकरी में रिस्क ना लें। सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक ओपल लगभग 10-12 रत्ती का चांदी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन 13 अक्टूबर को है। आप सभी को हैप्पी बर्थडे, बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जान लेंगे पंडित जी से कि आपका आने वाला साल कैसा रहेगा।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 13 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर की स्थिति मध्यम रहेगी, आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अगर अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है इस बारे में जान लेने का वक्त हो चला है।
0: आज की जिज्ञासा है कि भैरवी चक्र क्या होता है। देखिए, एक दूसरे में ऊपर और नीचे की तरफ त्रिभुज फंसा होता है, तारे की तरह दिखाई देता है। ये दो त्रिभुज होते हैं, इसको भैरवी चक्र कहते हैं। शाक्त तंत्र में देवी की पूजा में भैरवी चक्र का विशेष प्रयोग किया जाता है। इस पर बैठ करके विशेष तरीके से साधना की जाती है, लेकिन अगर आपको तरीका पता नहीं है और बिना सोचे समझे आप इसका गलत प्रयोग करें तो आपका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है।
1: और चलिए अब आपको बता देते हैं 13 अक्टूबर 2026 यानी कि मंगलवार का शुभ पहर क्या है।
0: दिनांक 13 अक्टूबर 2026 दिन मंगलवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में मां दुर्गा की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके काम में जो बाधाएं चली आ रही हैं वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 13 अक्टूबर मंगलवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है जान लेने का कि आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की शिक्षा की स्थिति कैसी रहती है। आज की गुडलक राशि है धनु। इनका दिमाग तेज होता है लेकिन पढ़ाई एवरेज यानी मध्यम रहती है। अच्छी शिक्षा के लिए इनको सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए।
1: और चलिए अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में आगे बढ़ते हुए अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो जो ले लेते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या रहेगा।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपके पिता के स्वास्थ्य में समस्या रहती हो तो क्या करेंगे। रोज सवेरे जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, इसके बाद 108 बार ओम हिरण्य गर्भाय नमः इस मंत्र का जप करिए और अपने पिता के नाम से हर रविवार को गाय को गुड़ खिलाइए। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके पिता का जीवन और उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।
1: तो पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और चलिए अब आपको वो वीडियोस दिखाते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
2: एक पिता के लिए उसकी बेटी किसी राजकुमारी से कम नहीं होती। हालात चाहे जैसे भी हों, अपनी लाड़ली की खुशी का ख्याल वो हर पल रखता है। इस वीडियो में भी पिता और बेटी के बीच ऐसा ही प्यारा रिश्ता दिखाई दे रहा है। पिता साइकिल पर बेटी को आगे बैठाए हुए हैं और बड़े प्यार से उसके बाल संवार रहे हैं। बेटी भी आराम से बैठकर इस पल का आनंद ले रही है। आसपास मौजूद लोग भी इस खूबसूरत नजारे को देखकर मुस्कुरा उठते हैं। पिता का ये छोटा सा प्रयास दिखाता है कि बच्चों के लिए उनका प्यार ही सबसे बड़ी दौलत है।

0: छोटी छोटी बच्चियां, रंग बिरंगे परिधान और मिथिला संस्कृति की खूबसूरत झलक। इस प्रस्तुति ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सजी धजी बच्चियां मंच पर पूरे उत्साह के साथ ताल से ताल मिलाती नजर आ रही हैं। उनके डांस के हर स्टेप में अभ्यास और आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। पारंपरिक संस्कृति को इतनी कम उम्र में इस खूबसूरती से पेश करना वाकई खास है। बच्चियों की शानदार प्रस्तुति दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। ऐसे कार्यक्रम बच्चों को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के साथ ही उनकी प्रतिभा को निखारने का भी बेहतरीन मौका देते हैं। नाना और नाती का रिश्ता भी बेहद खास होता है, जहां प्यार के साथ खूब लाड़ दुलार भी मिलता है। इस वीडियो में नाना और नाती के बीच ऐसा ही प्यारा पल देखने को मिल रहा है। नाती आराम से बिस्तर पर लेटा है और नाना बड़े प्यार से उसके हाथ पैर और पूरे शरीर को दबाते हुए उसकी सेवा कर रहे हैं। बच्चे की हर छोटी जरूरत का ध्यान रखते नाना का अंदाज दिल जीत लेता है। परिवार में बुजुर्गों और बच्चों के बीच ऐसा अपनापन रिश्तों की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। नाना का ये दुलार देखकर चेहरे पर मुस्कान आना लाजिमी है। बच्चों की शरारतें कभी कभी मम्मी की मुश्किलें बढ़ा देती हैं और इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही मजेदार नजारा देखने को मिल रहा है। दरअसल बच्चों ने अलमारी खोलकर उसमें रखे बर्तनों को ही अपना खिलौना समझ लिया। फिर क्या था, खेलने के लिए सारे बर्तन बाहर निकालने लगे। बच्चों के लिए ये खेल मजेदार था, लेकिन मम्मी के लिए काम बढ़ाने वाला। अब घर समेटने और बर्तन वापस जमाने की जिम्मेदारी भी तो उन्हीं की है। बच्चों की मासूम समझ और उनकी इस हरकत को देख कर हंसी आना तय है। आखिर बचपन की शरारतें भी तो घर की रौनक होती है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों

0: समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है।
6: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
7: 44 सीजन में सेहत से जुड़ा यूपी सरकार का फैसला, मिठाइयों पर यूज बाय डेट लिखना अनिवार्य, पैक के साथ खुली मिठाइयों पर भी 15 अक्टूबर से लागू होगा फैसला। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर आईएमएफ का बड़ा अनुमान, 2026 और 2027 में 7% की रफ्तार से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था। शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन, माता रानी के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की हो रही आराधना, देशभर के मंदिरों में भक्तों की कतार। शक्ति उत्सव पर गुजरात में बिखरे गरबा के रंग, वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में भव्य हेरिटेज गरबा, सांस्कृतिक विरासत की दिखी झलक। गुजरात के सूरत में दिखी अनोखी भक्ति, बाइकर्स ने 75 मोटरसाइकिल से बनाई मां दुर्गा की विशाल आकृति, समंदर किनारे दिखा भव्य नजारा। सात समंदर पार दिखी नवरात्र की रौनक, न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर शक्ति आराधना, बंगाली समुदाय ने जमाया भक्ति का रंग।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।
7: उम्मीदों भरे पहर की खुशभरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा, गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
8: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा। बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की इन 5 खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: शुभ समाचार की शुरुआत करेंगे शारदीय नवरात्र के साथ। शक्ति उपासना के महापर्व का आज तीसरा दिन है, आज मां के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा हो रही है। देश के तमाम मंदिरों में लोग माता के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। आज तड़के मां की मंगला आरती भी हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। आपको सभी तस्वीरें आगे दिखाएंगे।
8: तो वही नवरात्र में गरबा की धूम है। गरबा देवी दुर्गा की आराधना के साथ साथ भारतीय संस्कृति को सजाने का उत्सव है। आपको वडोदरा के ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस में आयोजित भव्य हेरिटेज गरबा उत्सव की झलक दिखाएंगे, जहां पर भारतीय और वैश्विक संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिलेगा।
7: तो आपको पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा पंडाल में भी लिए चलेंगे, जहां मां के पंडाल अपनी अलग अलग थीम से लोगों का मन मोह रहे हैं। यहां टेक्निक के अनोखे इस्तेमाल के साथ आस्था का अद्भुत संगम भी देखने को मिल रहा है। पूर्व बर्धवान में पंडाल को रेलवे स्टेशन और वंदे भारत एक्सप्रेसवे की थीम पर सजाया गया है। यहाँ श्रद्धालुओं को कश्मीर की बर्फ से ढके हुए खूबसूरत नजारे भी देखने को मिल रहे हैं।
8: तो वहीं आपको महाराष्ट्र के अमरावती भी लिए चलेंगे, और अंबा माता और एकवीरा माता के दरबार में गोंधली समाज के गोंधल की परंपरा को दिखाएंगे। गोंधल यानी कि देवी की महिमा का गुणगान, पारंपरिक गीत और संगीत के जरिए मां की आराधना। इस जागरण में सिर्फ भक्ति और संगीत ही नहीं है, यहां एक ऐसी कला भी है जिसमें कलाकार हाथों और आंखों के इशारों से एक दूसरे तक संदेश पहुंचाते हैं।
7: तो देश में ही नहीं विदेशों में भी नवरात्र की धूम है। आपको दिखाएंगे अमेरिका में मां दुर्गा की भक्ति के रंग। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मां दुर्गा की आराधना की गई। बंगाली समुदाय के लोगों ने यहां दुर्गा पूजा के जरिए अपनी संस्कृति और परंपराओं का जश्न मनाया। इस उत्सव में पूजा पाठ के साथ संगीत, नृत्य और सम्मान समारोह भी हुआ। ये सब कुछ आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की नौ गुड न्यूज का।
8: आज नवरात्र का तीसरा दिन है। आज पूरे देश में मां चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। चंद्रघंटा देवी साधकों को धैर्य, ताकत और मन की शांति देती है। मां के माथे पर घंटी के जैसे आधा चांद होता है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनका रूप बहुत ही तेजस्वी और शक्तिशाली होता है, युद्ध की मुद्रा में होती है।
7: दिल्ली के झंडे वाला मंदिर में नवरात्र के तीसरे दिन सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई हैं। तमाम लोग माता के दर्शन पूजन के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। वहीं झंडे वाला मंदिर में मां दुर्गा की आरती उतारी गई।
8: दिल्ली के छतरपुर स्थित आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ में नवरात्र के तीसरे दिन सुबह से ही श्रद्धालुओं और भक्तों की कतारें लगी हैं। तमाम लोग माता के दर्शन पूजन के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। छतरपुर स्थित आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ में मां दुर्गा की आरती उतारी गई, साथ ही श्रद्धालुओं ने जय माता दी के जयकारे लगाए।
7: न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम स्क्वायर में दुर्गा उत्सव की धूम। दूसरे टाइम स्क्वायर दुर्गा उत्सव में उमड़े प्रवासी बंगाली। दो दिन तक चले आयोजन में पूजा पाठ, महाले की रस्में, संगीत और नृत्य ने बांधा समा। खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं और दर्शकों का दिखा जबरदस्त उत्साह। अमेरिका के अलग अलग राज्यों से पहुंचे बंगालियों ने अपनी संस्कृति और परंपराओं का मनाया जश्न। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों और दूसरे समुदाय के लोगों ने भी उत्सव में हिस्सा लिया।
8: ये तस्वीरें गुजरात के जामनगर की आप देख रहे हैं, जहां पर नवरात्र पर आयोजित पारंपरिक गरबा और तलवार रास लोगों का ध्यान खींच रहा है। आशापुरा गरबी मंडल की ओर से आयोजित इस गरबा उत्सव में युवतियों से लेकर छोटी बच्चियों तक ने अपनी गरबा कला के जरिए मां अम्बे की आराधना की और तलवार रास के जरिए नारी शक्ति का संदेश दिया।
7: चारधाम यात्रा अब अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। इस बीच बद्रीनाथ धाम में यात्रा का रोज नया रिकॉर्ड बन रहा है। यात्रा शुरू होने से लेकर अब तक बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 20 लाख के पार पहुंच गई है। बारिश और अक्टूबर में बढ़ती ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई।
8: स्वदेशी रक्षा निर्माण की दिशा में भारतीय नौसेना को मिली नई ताकत। माही श्रेणी का तीसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटरक्राफ्ट INS मंगरोल नौसेना में शामिल हुआ। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने मेक इन इंडिया के तहत युद्धपोत का निर्माण किया और 80% से ज्यादा स्वदेशी उपकरणों और तकनीक का इस्तेमाल किया है। गुजरात के तटीय शहर मंगरोल के नाम पर रखा गया।
7: राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय ने अपनी बल्लेबाजी से एक बार फिर क्रिकेट दिग्गजों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आज विशाखापट्टनम में अंडर 19 के घरेलू मुकाबले में 17 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज अन्वय ने आतिशी पारी खेली। उन्होंने महज 41 गेंदों पर 85 रन बनाए। वीनू मांकन ट्रॉफी के तहत विशाखापट्टनम में अंडर 19 मुकाबला खेला जा रहा है, उसमें अन्वय अपनी कर्नाटक की टीम के कैप्टन है।
8: नेशनल अवार्ड विजेता फिल्म मेकर विनोद कापड़ी की अगली फिल्म पायर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। हिमालय की खूबसूरत वादियों की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म प्यार, साथी और अकेलेपन की कहानी को दिखाती है। 18 इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुकी ये फिल्म 30 अक्टूबर को हिंदी और मलयालम में सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।

शुभ समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्र की आप सभी को गुड न्यूज टुडे की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हम नवरात्र के तमाम रंग आपको दिखाएंगे, दिव्य धामों से मां के दर्शन भी आपको करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। त्योहारों के मौसम में मिठाई खरीदने वालों के लिए यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। खाने पीने की चीजों में मिलावट रोकने और लोगों की सेहत का ध्यान रखने के लिए 15 अक्टूबर से नए नियम लागू हो रहे हैं। दुकानों पर बिकने वाली मिठाइयों पर यूज बाय डेट यानी उपयोग की अंतिम तारीख बताना अनिवार्य होगा। ये नियम सिर्फ पैक्ड मिठाइयों पर ही नहीं बल्कि दुकानों में बिक्री के लिए रखी हुई खुली मिठाइयों पर भी लागू होगा। इससे ग्राहक मिठाई खरीदते समय जान सकेंगे कि उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाना चाहिए और कितना करना उचित है। अलग अलग मिठाइयों की उपयोग अवधि 1 दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है, इसलिए हर मिठाई के लिए एक जैसी समय सीमा लागू नहीं होगी। नई व्यवस्था के तहत दुकानों पर प्रदर्शित मिठाइयों की उपयोग अवधि स्पष्ट रूप से बतानी होगी। यूज बाय डेट से लोग मिठाई खरीदने से पहले उसकी उपयोग अवधि की जानकारी ले सकेंगे। इससे उन्हें उत्पाद की ताजगी और गुणवत्ता को लेकर फैसला करने में आसानी होगी। त्योहारों के दौरान मिठाई खरीदते समय ग्राहक अब उपयोग की अंतिम तारीख देखकर अधिक जागरूकता के साथ खरीदारी कर सकेंगे। तो देखिए किस तरह से यूपी में मिठाइयों पर यूज बाय डेट लिखना अनिवार्य हो गया है, और ये सिर्फ पैक्ड मिठाइयों के लिए नहीं बल्कि खुली रखी हुई मिठाइयों के लिए भी ये नियम लागू होता है। तो मिठाइयों की उपयोग अवधि 1 दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है, इसलिए हर मिठाई के लिए एक जैसी समय सीमा लागू नहीं होगी। तो नई व्यवस्था के तहत दुकानों पर प्रदर्शित मिठाइयों की उपयोग अवधि स्पष्ट रूप से अब दुकानदारों को बतानी होगी। यूज बाय डेट से लोग मिठाई खरीदने से पहले उसकी उपयोग अवधि की जानकारी से ले सकेंगे, तो इससे उन्हें उत्पाद की ताजगी और गुणवत्ता को लेकर फैसला करने में आसानी होगी। तो त्योहारों के दौरान मिठाई खरीदते समय ग्राहक अब उपयोग की अंतिम तारीख देखकर अधिक जागरूकता के साथ मिठाई खरीदारी कर सकेंगे।

देखिए, देश भर में नवरात्र महोत्सव पूरे उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर शहर आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने के लिए मिल रहा है। सुबह सवेरे भक्त मां का आशीर्वाद लेने के लिए मां के दरबार में पहुंच रहे हैं। मंदिरों में लंबी लंबी कतार, इसके बावजूद भक्तों के चेहरे पर खुशी और मां के दर्शन का उत्साह है, जो इस शक्ति उत्सव को खास बनाता है। नवरात्र के शुभ दिनों में हम आपको देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों में लेकर चलते हैं, आपको मां के दर्शन करवाते हैं। आपको देवी मां के मंदिरों में तस्वीरें ये अलग अलग देख रहे हैं, आप मां के दर्शन कीजिए। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आज नवरात्र का तीसरा दिन है। आज के दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मां चंद्रघंटा को राक्षसों का वध करने वाला कहा जाता है। चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है और उनके कारण मां को चंद्रघंटा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा से न सिर्फ भय से मुक्ति मिल जाती है, बल्कि साहस और शक्ति में भी अपार वृद्धि होती है।

देखिए, आज शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन देश भर में मां चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की सच्चे मन से पूजा करने से मां आशीर्वाद देती है और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। पूरे विधि विधान से अगर माता चंद्रघंटा की उपासना की जाए तो मंगल और अहंकार निवारण का वरदान मिलता है।

0: शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज सुबह से ही देश भर के मंदिरों में भक्तों की कतार लगी है। माता के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हर तरफ माता की जय जयकार हो रही है। नवरात्र के नौ दिन देवी के अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। इस कड़ी में तीसरा दिन माता चंद्र घंटा को समर्पित है। आज हर मंदिर में देवी के तीसरे स्वरूप माँ चंद्र घंटा की उपासना की जा रही है। नव दुर्गा के स्वरूपों में माता का चंद्र घंटा स्वरूप सबसे अलग और अलौकिक है। माँ चंद्र घंटा के माथे पर अर्ध चंद्र सुशोभित है, इसीलिए इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। इनके दोनों हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। इनकी पूजा करने वाला व्यक्ति पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनकी आराधना से स्वभाव में विनम्रता आती है। मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में अद्भुत तेज आता है। माँ चंद्र घंटा सिंह की सवारी करती है। माना जाता है कि आस्था और भक्ति के साथ विधि विधान से माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से व्यक्ति को संसार में यश, कीर्ति और सम्मान प्राप्त होता है। माँ की कृपा बरसती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की उपासना करें, लाल वस्त्र धारण करें तो अति उत्तम होगा। माता को लाल फूल और लाल वस्त्र अर्पित करें। नवान मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। जप के बाद लाल वस्त्र को अपने पास सुरक्षित रख लें। माँ चंद्र घंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद चढ़ाने के बाद इसे स्वयं ही ग्रहण करें और दूसरों में बांटें। माँ के आशीर्वाद से भक्तों को जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती और उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो आज नवरात्र का तीसरा दिन और माँ के तीसरे स्वरूप यानी कि चंद्र घंटा के स्वरूप की पूजा अर्चना पूरा देश कर रहा है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अकोला से धनंजय जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जयपुर से रिदम जैन जुड़ रही हैं। तो सबसे पहले धनंजय आपका रुख करना चाहूंगी। और धनंजय जी, हमें ये बताइए कि आज माँ के तीसरे स्वरूप चंद्र घंटा की पूजा आराधना की जा रही है, आपकी मौजूदगी इस वक्त कहाँ पर है?
2: जी बिल्कुल गीतिका जी, आज हमारी मौजूदगी अकोला के सबसे पुराने मानो 450 साल से भी अधिक पुराने मंदिर में है, जहां शिव और शक्ति का मिलन यहां पर होता है। और शिव जी की ये शिवलिंग है और माता अंबिका की ये सुंदर स्वरूप मूर्ति जो है ये इतनी, क्योंकि हम जहां पर है ना वहां पर हम बैठे हुए कि यहाँ पर जो है जिस तरीके से पुरातन काल में बैठकर ही पूजा की जाती है और झुककर ही मंदिर में आती है, तो देखिए इस ओर देखिए इसका जो आने वाला जो दरवाजा है पंडाल का ये इतना छोटा है, यहाँ पर झुककर ही आना पड़ता है। मानो माता के दरबार में सभी भक्त जो है समान है, सभी को झुककर ही आना पड़ता है। माता की सुंदर स्वरूप की मूर्ति जो है वो यहाँ पर देखिए आप कितनी सुंदर यहाँ पर अंबिका माता की ये मूर्ति है और यहाँ पर पूजने के लिए माता रानी को दर्शन करने के लिए यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे अच्छा मिलन है शिव और शक्ति का। मानो ये कहीं भी मिलन यहाँ नहीं दिखा जाएगा कि यहाँ पर भोलेनाथ की भी पूजा की जाती है और यहाँ पर माता रानी की भी पूजा की जाती है। हमारे साथ है यहाँ के ट्रस्टी कुलकर्णी जी, ये मंदिर कितना पुराना है और क्या मान्यता है इसकी, जरा बोलिए।
3: ये मंदिर 450-450 साल पुराना है। 1619 में इसकी स्थापना हुई है, सब सुनने में आया है कि उससे भी पुराना ज्यादा है। और ये मंदिर है, यहाँ पर हर किसी की कामना पूरी होती है। जो भी भाविक दर्शन को आता है, जो भी मन्नत मांगता है, उसकी मन्नत पूरी होती है।
2: देखिए यहाँ की मान्यता यही है कि हर किसी की मन्नत पूरी होती है। और जिस तरीके से आप, मैं मंदिर बताऊं, एक घूमट में पूरी तरीके से ये मंदिर जो है पूरी तरीके से घूमट में है। और
1: चलिए ठीक है धनंजय, आपके पास लौटेंगे और भी तस्वीरें जानकारी हमें दीजिएगा। रिदम के पास लिए चलते हैं अपने दर्शकों को जयपुर। रिदम, अभी आप जयपुर के किस मंदिर में मौजूद है? आज नवरात्रि का तीसरा दिन, श्रद्धालु की भीड़ कितनी देख पा रही हैं आप?
4: जी बिल्कुल, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, यानी कि माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्र घंटा का आज दिन है और जयपुर के माँ वैष्णो देवी मंदिर में मौजूद हूँ, जहाँ पर सुबह से ही भक्त लगातार आ रहे हैं, माँ के दर्शन कर रहे हैं। माँ का स्वरूप भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से माँ आज लाल साड़ी में भक्तों को अपना स्वरूप दिखा रही है, आशीर्वाद दे रही है। सुबह से ही लगातार भक्त आ रहे हैं और माँ चंद्र घंटा के लिए कहा जाता है कि उनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना होता है, तो यही स्वरूप जो है वो आज यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है। पूरे फूलों से मंदिर का जो श्रृंगार है वो किया गया है और भोग की मैं बात करूँ तो दूसरी ओर यहाँ पे भोग की तैयारियां भी की गई है। यहाँ पूरी टेबल जो है वो भोग से सजी गई है, जिसमें आज खास हलवा और पूरी का भोग जो है वो सभी भक्तों के लिए रखा गया है। लगातार भक्त यहाँ आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भोग ले रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और पूजा अर्चना की मैं बात करूं तो जो भी यहां आ रहा है पीले फूल उन सभी को मिल रहे हैं और साथ ही साथ में फूल, चंदन और धूप, ये तीन चीजें जो हैं वो भक्त लेके आ रहे हैं और माँ को अर्पित कर रहे हैं, माँ को चढ़ा रहे हैं। भक्ति भाव जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ इस बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि सिर्फ माँ के ही नहीं भगवान श्री हनुमान के भी दर्शन सभी भक्त इस समय पे यहाँ पे कर रहे हैं और मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से लगातार यहाँ पे माँ की पूजा अर्चना की जा रही है।
5: देख सकते हैं किस तरह से भक्त जो है वो आ रहे हैं और तमाम भक्त यहाँ इस वक्त मौजूद है। किसी भक्त से बात करने की कोशिश कीजिए कि किस तरह की प्रार्थना, किस तरह की मन्नत लेकर वो पहुंचे।
4: बिल्कुल, मैं पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। यहाँ पे कुछ भक्त जो है वो माँ के दर्शन कर रहे हैं। मैम, क्या भक्ति भाव आप लेके आई हैं?
6: बस यहाँ पे रोज ही दर्शन करने, मैं तो डेली आती हूँ लेकिन नवरात्रों में तो अलग ही रौनक रहती है यहाँ की। बहुत ही बढ़िया दर्शन होते हैं, माता रानी से जो मांगो वो पूरा होता है।
4: अच्छा, आप जो रोज माता से मांगती हैं, दर्शन करती हैं और आज आपने जो नवरात्रि में दर्शन किए, दोनों दर्शन में क्या फर्क है, दोनों की मान्यता या फिर दोनों की आपकी मन्नतों में क्या फर्क है?
6: माता रानी का स्वरूप तो बहुत ही डिफरेंट ही होता है हर रोज ही, लेकिन नवरात्रों में एक अलग ही स्वरूप होता है। श्रृंगार और वो दर्शन बहुत ही अच्छे होते हैं और मान्यता ही है कि नवरात्रों में आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा।
4: आप क्या कहेंगे सर, क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर की और दूसरी चीज आप किस भक्ति भाव से माँ के दर्शन करते हैं?
7: जय माता दी। मैं योगेश खुराना, उप सचिव वैष्णो देवी सेवा समिति से हूँ। मंदिर में इसकी यहाँ की जो खासियत है, सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये माता जो विराजमान है ये दक्षिणमुखी है। दक्षिणमुखी माता जी आपने मंदिर बहुत कम देखे होंगे, जयपुर नहीं पूरे इंडिया में आपने कम देखे होंगे। ये बहुत मुश्किल से विराजती है दक्षिणमुखी जो भी है, और जब विराज जाती है तो
5: वहां पर बात कीजिएगा, आपके पास लौटेंगे हम थोड़ी देर बाद। देखिए, राजधानी दिल्ली के झंडे वाला मंदिर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं यहाँ। नवरात्र के दिनों में मंदिर की भव्यता निराली होती है। नवरात्र के मौके पर हर दिन माँ का भव्य दिव्य श्रृंगार किया जाता है। आज सुबह का भव्य श्रृंगार हुआ और फिर माँ की श्रृंगार आरती हुई, जिसमें कि शामिल होने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।

0: झंडे वाला मंदिर की आप देख रहे हैं। नवरात्र का आज तीसरा दिन और सुबह सवेरे आरती यहां पर की गई है। झंडे वाला मंदिर में भक्तों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु लंबी लंबी कतार में पहुंच रहे हैं। मां की आरती में शामिल हुए, सुबह सवेरे ये आरती की गई। झंडे वाला मंदिर की नवरात्र की रौनक आप देखिए और काफ़ी ज़्यादा मान्यता इस मंदिर की है, जिसमें दिव्य दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुँचे।
1: हाँ, मैं मंदिर में दर्शन करने आई हूँ माता रानी के झंडे वाले, और आज सुबह सुबह आई हूँ। आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब नारा तो मैं आज पहला मौका मिला है आज के, जल्दी जल्दी आकर दर्शन हो गए मेरे को। जय माता रानी।
2: माता रानी के दरबार में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। माता रानी की बहुत कृपा है मेरे पे। ऐसा लग रहा है मुझे मैं जैसे स्वर्ग में आ गई। जय माता दी। माता रानी ऐसे ही सब पे कृपा बनाए रखना अपनी। जय माता दी।
3: मंदिर में आके तो देखो बहुत सुकून मिलता है। यहाँ पे आके हम सारे अपने गम भूल जाते हैं। और मंदिर सबसे पहले तो अपने जितने भी मेरे यहाँ पर भक्त जन हैं सबको मैं नवरात्रों की हार्दिक शुभकामना देना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो पर्व है हम इसका इंतज़ार करते हैं। हर 6 महीने के लिए शारदीय नवरात्रे आते हैं, उसमें जो सुकून मिलता है मंदिर में आके वो कहीं नहीं मिलता।
4: मेरे को मंदिर में आके बहुत अच्छा लग रहा है, मन की शांति मिल रही है। मंदिर में बहुत अच्छा सब कुछ है। जय माता दी।
1: बीत गए कई साल ओ मैया, बातों बातों में कर दे बेड़ा पार मेरा इस बार नरातों में। बोलना तो बहुत कुछ है लेकिन आके सब भूल गई मैं। बाकी माँ को सब पता होगा, मैं तो सब कुछ भूल गई। जय माता दी।
0: जय माता दी। जय माता दी। हर किसी की जबान पर बस एक ही जय घोष है, वो है माता रानी का। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं जयपुर का, जहां हमारी संवाददाता रिदम हमसे जुड़ी हुई हैं। रिदम, आपसे जानना चाहेंगे, भक्त जो होते हैं मन में मन्नत लेकर तो आते ही हैं, और जैसा कि आप अभी पहले भी उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी, तो जरा भक्तों से बात कीजिए, जरा उन्हें बोलिए। माँ को मनाने के हजार तरीके हैं, लोग भजन कीर्तन भी करते हैं, तो जरा जो बहनें और माताएं वहां आई हैं उनसे जरा एक दो भजन सुनने की कोशिश कीजिए।
5: बिल्कुल, मैं पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। यहाँ पे अभी सब बहुत ज़्यादा भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। मैम, आप बताइए क्या भक्ति भाव लेके आई हैं, और अगर आप माँ का कोई भजन अगर हमें सुना पाए।
6: नहीं,
5: हमें
6: भजन तो नहीं आता।
5: क्या भक्ति भाव है, क्या मान्यता है, मन्नत है?
6: मन्नत तो नहीं आता, लेकिन हाँ मन में बहुत शक्ति है कि माता रानी हमारी सुने।
5: तो आज नवरात्र में तीसरा दिन है, किस तरीके से माँ चंद्रघंटा को आप पूछती हैं?
6: क्या बताऊं ये तो,
5: ये मुझे लगता है कि मन में श्रद्धा होनी चाहिए। किस तरीके से आप पूज रही हैं, या फिर क्या आप भगवान से मान?
0: ठीक है मैडम, आपके पास लौटेंगे। एक बार अकोला लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। अकोला में धनंजय, अभी इस वक्त वहां पर आप कितनी संख्या में श्रद्धालु को देख पा रहे हैं? आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ श्रद्धालु खड़े, उनसे बात कीजिएगा कैसा लग रहा है आज माँ का तीसरा दिन।
7: बिल्कुल, मैं बता दूं, आज माँ के दर्शन के लिए सुबह सुबह से ही लोग बहुत दूर से आते हैं, और माँ को खुश करने के लिए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जो है वो आरती बहुत ही अच्छी तरीके से गाते हैं। कौन सी आरती गाएंगे इस वक्त, मुझे बोलिए क्या आरती है?
8: जय जय जगदम्बे, बोलो। जय जय जगदम्बे श्री अम्बे रेणुकल्प कदम्बे, जय जय जगदम्बे अनुपम स्वरूपाची, सृष्टि तुझ समे परमेश्वरी दिव्य सुनो सुवर्ण
0: जी। बेहद सुंदर भजन इन्होंने गाया, और तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। तस्वीरें थी अकोला से और जयपुर से। फिलहाल वक्त हो गया बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए गरबा संस्कृति के रंग।
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: त्योहारी सीजन में सेहत से जुड़ा यूपी सरकार का फैसला, मिठाइयों पर यूज बाय डेट लिखना अनिवार्य, पैक के साथ खुली मिठाइयों पर भी 15 अक्टूबर से लागू होगा फैसला। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर आईएमएफ का बड़ा अनुमान, 2026 और 2027 में 7% की रफ्तार से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन, माता रानी के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की हो रही आराधना, देशभर के मंदिरों में भक्तों की कतार। शक्ति उत्सव पर गुजरात में बिखरे गरबा के रंग, वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में भव्य हेरिटेज गरबा, सांस्कृतिक विरासत की दिखी झलक। गुजरात के सूरत में दिखी अनोखी भक्ति, बाइकर्स ने 75 मोटरसाइकिल से बनाई मां दुर्गा की विशाल आकृति, समंदर किनारे दिखा भव्य नजारा। सात समंदर पार दिखी नवरात्र की रौनक, न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पर शक्ति आराधना, बंगाली समुदाय ने जमाया भक्ति का रंग।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।

एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शुभ समाचार में। अब आपको देश के अलग अलग हिस्सों में गरबा के रंग दिखा रहे हैं। वडोदरा के ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस में हेरिटेज गरबा का आयोजन किया गया, जहां पर भारतीय और वैश्विक संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। राजकोट में तलवार रास सबका दिल जीत रहा है। राजवी पैलेस के इस गरबा रास में सजी दजी महिलाएं और लड़कियां माँ दुर्गा की स्तुति करती हैं और हाथों में चमचमाती तलवारें लेकर गरबा की थाप पर थिरकती हैं। जामनगर में अंगारा रास की धूम है। गरबा की धरती पर मणिपुरी संस्कृति की झलक भी दिख रही है। नडियाद के सलून में भी मां अंबा की अनूठी मणिपुरी आरती की गई।

गुजरात के लोगों के लिए नवरात्र का त्योहार महापर्व है जिसे हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर पूरे गुजरात में गरबा की धूम रहती है, लेकिन इससे भी ज्यादा इसमें वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस के हेरिटेज गरबा की रौनक देखने लायक होती है। आइए आपको दिखाते हैं लक्ष्मी विलास पैलेस में गरबा का भव्य आयोजन, जहां देशी विदेशी मेहमानों के साथ 40,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ गरबा किया। देखिए वडोदरा से हमारी संवाददाता नवजोत रंधावा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।

0: ये रौनक, ये सजावट, ये चमक दमक दुर्गा उत्सव की है। यहाँ हर कदम माँ की आराधना के लिए थिरक रहा है। क्योंकि यहाँ गरबा सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। ये शानदार तस्वीरें वडोदरा के ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस में आयोजित भव्य हेरिटेज गरबा उत्सव की, जहाँ भारतीय और वैश्विक संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिला। देशों के विदेशी मेहमान लक्ष्मी विलास पैलेस में हेरिटेज गरबा के साक्षी बने।
1: So if you can speak Hindi, just tell me, कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पर?
2: बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, best.
1: What do you want to say about this garba?
3: It's incredible. Just look at the scale. We're at Lakshmi Villas Palace in Vadodara. We have tens of thousands of people dancing together as one, and then over behind us.
1: Are you enjoying the?
2: I love it. It's incredible.
1: So have you ever been to this place?
2: No, never. And it is beyond words that we're experiencing. It's complete.

इस उत्सव में जितनी अहमियत भक्ति और संगीत की है उतना ही खास है पारंपरिक पहनावा जिसकी झलक इस गरबा महोत्सव में बखूबी देखने को मिली। रंग बिरंगे लहंगे चमचमाती चनिए चोली और गरबा की फिरकर ये सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि माँ के शक्ति के प्रति भक्ति का ऐसा रंग है जो हर किसी को हर्ष से सराबोर कर देता है।

0: ढोल की थाप और रोशनी से जगमगाते पैलेस का प्रांगण पूरी रात भक्ति और उत्साह के रंग में रंगा रहा। पारंपरिक लोक गीतों पर लोग थिरकते रहे।
1: ये लाइव सिंगिंग म्यूजिक के साथ ही यहाँ पर गरबा होता है। यहाँ का प्रोटोकॉल है कि आप कोई भी कैसेट नहीं चला सकते हैं, कोई भी वीडियो नहीं दिखा सकते, आपको लाइव में ही यहाँ पर सिंगिंग करनी होती है। ये पूरा प्रोटोकॉल है ताकि हमारी कल्चर संस्कृति को भी सहेजा जाए। और यहाँ तमाम जितने विदेशी डेलीगेट्स हैं उन लोग को यहाँ लाने का मकसद भी यही है कि वो हमारी संस्कृति से रूबरू हो सकें। बिना देर गवाए एक राउंड गरबा का हो जाए।

0: पारंपरिक गरबा नृत्य ने ऐसा अद्भुत नजारा पेश किया जिसने हर किसी को मुग्ध कर दिया। गायक गायिकाओं और वाद्य यंत्रों से निकलते सुर गरबा में शामिल लोगों को जोश से भर रहे थे। गरबा का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था।
1: ऐसा खूबसूरत नजारा आप केवल वडोदरा में देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 40,000 लोग हैं जो यहाँ पर गरबा परफॉर्म कर रहे हैं। लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं। ये भी इसी का एक थीम रहता है जिसमें सबको बोला जाता है कि आप टॉर्च ऑन कीजिए, टॉर्च ऑन के साथ रिदम के साथ अपने ताल से ताल मिलाते हुए लोग यहाँ पर गरबा खेलते हैं। और अभी अगले 5 से 10 मिनट तक आपको बिल्कुल इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा जहाँ हर कोई अपनी धुन में मगन है, केवल उनको सुनाई दे रहा है तो म्यूजिक, और म्यूजिक के साथ अपना मोबाइल ऑन और उसके साथ लोग लगातार थिरकते जा रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस से देखिए।
0: इस इवेंट में 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने एक साथ पारंपरिक गरबा किया और मां के चरणों में आस्था की जोत जलाई।
1: लक्ष्मी विलास पैलेस का ये हेरिटेज गरबा जो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, और इस गरबे की खास बात देखिए, अभी अभी आरती संपन्न हुई है यहाँ पर। आरती के बाद वैसे तो गरबा पहले से शुरू हो चुका था लेकिन बीच में आरती का जो समय रहता है बिल्कुल उसी समय पर आरती होती है। और यहाँ पर इस आरती की भी खास बात है, जो पूरा माँ का दरबार सजाया जाता है, आप देखिए कितनी खूबसूरती के साथ इस पूरे माँ के दरबार को सजाया गया है जिसमें वटवृक्ष है और उसके साथ साथ माँ की चूड़ियों के साथ श्रृंगार पूरे इस पंडाल का किया गया है। हल्दी रखी गई है, रोली रखी गई है यहाँ पर। माँ का ये पूरा दरबार 9 दिन तक यूं ही सजा रहेगा और हर दिन शाम की आरती और उसके साथ ही साथ गरबा यहाँ पर खेला जाता है।
0: वडोदरा गायकवाड़ परिवार ने विदेशी अतिथियों का स्वागत किया और देश की संस्कृति से रूबरू कराया।
1: आज यहाँ पे बहुत सारे विदेशी डेलीगेट्स भी हैं जो यहाँ पर इसका हिस्सा बन रहे हैं। कितने गर्व की बात है वडोदरा के लिए, आपके लिए, राजघराने के लिए।
2: बहुत ही गर्व की बात है कि विश्व भर से लोग इतने इम्पोर्टेंट डेलीगेट्स बड़ोदा आए हैं। एज अ बड़ोदियन आई फील वेरी प्राउड एंड कि कल वो उन्होंने पैलेस देखा और आज वो हमारे गरबा में आए, तो आई एम वेरी हैप्पी।
1: मेहमान नवाजी करके अच्छा लग रहा
2: है। सॉरी आई कांट हियर यू।
1: मेहमान नवाजी करके अच्छा लग रहा है।
2: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा।
1: एक संदेश जो यहाँ से रानी साहिबा पूरे देश को देंगी नवरात्र का।
2: मैं नवरात्रि के पर्व अवसर पे सबको खूब खूब बधाई देती हूँ एंड यही आशा करती हूँ, माँ से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा देश जुड़ा रहे और वी गेट स्ट्रॉन्गर।
0: गरबा देवी दुर्गा की आराधना के साथ साथ भारतीय संस्कृति को सजोने का एक उत्सव भी है जो लंबे समय से भारतीय परंपरा का हिस्सा रही है। और संस्कृति की यही भव्यता लक्ष्मी विलास पैलेस की समृद्ध विरासत के साथ भारतीय को एक अलग पहचान दिलाती है। वडोदरा से नवजोत रंधावा, गुड न्यूज शुरू।
3: देखिए शहर दर शहर गरबा पंडाल की रौनक देखने लायक है। हर पंडाल में महाशक्ति के महाउत्सव का जय घोष है। गुजरात के राजकोट के राजवी पैलेस में भी गरबा के अद्भुत रंग देखने के लिए मिल रहे हैं। राजघराने के सांगन में पिछले कई साल से तलवार रास गरबा का आयोजन होता है और हर साल बड़ी संख्या में क्षत्रिय युवतियों यहाँ पर हिस्सा लेती दिखती है। राजवी पैलेस के इस गरबा रास में रंग बिरंगी चोली चनिया पहनकर सजी धजी महिलाएं और लड़कियां माँ दुर्गे की स्तुति करती हैं और इस बीच हाथों में चमचमाती तलवारें लेकर गरबा की थाप ऐसे थिरकती हैं जैसे आसमान से चमकती हुई बिजली हो।
4: राजकोट के राजवी पैलेस में पारंपरिक गरबा का रंग हर साल कुछ अलग ही नजर आता है। यहाँ गरबा केवल नृत्य नहीं बल्कि संस्कृति, परंपरा और सामूहिक उत्साह की अभिव्यक्ति बन जाता है। पारंपरिक परिधानों में सजी क्षत्रियाणियां जब गरबा की ताल पर कदम मिलाती हैं तो पूरा माहौल उत्सवमय हो जाता है। इस आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है क्षत्रियाणियों का पारंपरिक तलवार रास, हाथों में तलवार लेकर लयबद्ध तरीके से रास प्रस्तुत करती हैं युवतियां, अपने कौशल, एकाग्रता और आपसी तालमेल का प्रदर्शन करती हैं।

सलवार रात का सबसे रोमांचक पहलू तब देखने को मिलता है जब युवतियां टू व्हीलर और जीप पर सवार होकर स्टंट करते हुए तलवार राज प्रस्तुत करती हैं। उनके हैरतअंगेज करतब देखकर दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

राजीव पैलेस में गरबा रास के जरिए महिलाएं सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक कलाओं से जुड़ी रहती हैं और युवतियों के साहस और कौशल की झलक आयोजन को यादगार बना देती है।

वहीं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में बाबा बागेश्वर की रथ यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सनातन हिंदू एकता का संदेश लेकर निकली पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की रथ यात्रा तीसरे दिन भी जारी है। 5 दिनों में 5 जिलों से होते हुए करीब 500 किलोमीटर का सफर तय करने वाली इस यात्रा में बाबा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। रास्ते में जगह जगह रथ यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। कहीं पर फूलों की बारिश हो रही है तो कहीं बाबा के स्वागत के लिए बुलडोजर से फूल बरसाए जा रहे हैं। सड़कों के किनारे खड़े श्रद्धालु जयकारे लगाकर यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर की एक झलक पाने के लिए लोगों में खास उत्साह दिखाई दे रहा है। यात्रा के दौरान हनुमान

0: देंगे।
1: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: क्या है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की महिमा? सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ का क्या है विधान? और सिद्ध कुंजिका के पाठ से कैसे मिलेगा वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे
0: गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
6: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
7: त्योहारी सीजन में सेहत से जुड़ा यूपी सरकार का फैसला, मिठाइयों पर यूज बाय डेट लिखना अनिवार्य, पैक के साथ खुली मिठाइयों पर भी 15 अक्टूबर से लागू होगा फैसला। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर आईएमएफ का बड़ा अनुमान, 2026 और 2027 में 7% की रफ्तार से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन, माता रानी के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की हो रही आराधना, देशभर के मंदिरों में भक्तों की कतार।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि का पावन समय चल रहा है और हम लोग देवी की अलग अलग स्तुतियां कर रहे हैं। आज हम आपको देवी की एक चमत्कारी स्तुति के बारे में बताएंगे जिसका नाम है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र क्या है, इसकी महिमा क्या है, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि क्या है आज का लकी टिप और सक्सेस मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 13 अक्टूबर 2026 दिन मंगलवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रात के 11:27 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7:12 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 13 अक्टूबर 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है कन्या राशि में, चंद्रमा बुध और शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल और बृहस्पति कर्क राशि में और केतु फिलहाल विद्यमान है सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र क्या है? देखिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र श्री रुद्र यामल के गौरी तंत्र में लिखा हुआ है शिव पार्वती संवाद के नाम से। दुर्गा सप्तशती का पाठ थोड़ा कठिन है और चूक हो जाने पर लाभ नहीं होता। ऐसे में कुंजिका स्तोत्र का पाठ ज्यादा सरल भी है और ज्यादा प्रभावशाली भी है। केवल कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल आपको मिल जाता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के मंत्र अपने आप स्वतः ही सिद्ध किए हुए हैं, इसलिए इनको अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र बहुत अद्भुत स्तोत्र है
जिसका प्रभाव बहुत चमत्कारी है। इसके नियमित रूप से पाठ करने पर समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है और नवरात्रि में या वैसे भी अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो आपकी कठिन से कठिन समस्याएं दूर हो जाएंगी। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, सेहत और मन की समस्या दूर होगी, परिवार के रिश्तों में सुधार होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार की समस्या हल होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, करियर में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, देवी को लाल फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब जानते हैं कि जब आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इसके पाठ से आपको जीवन में क्या फल मिलते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को वाणी की और मन की शक्ति मिलती है, उसकी वाणी प्रभावशाली होती है और मन मजबूत होता है, व्यक्ति का आलस्य दूर होता है, व्यक्ति के अंदर असीम ऊर्जा का संचार होता है, उसकी शक्ति, उसकी ताकत, उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ से व्यक्ति को खराब ग्रहों के प्रभाव से छुटकारा मिलता है। और अगर आप रोज शाम को सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो जीवन में धन और समृद्धि मिलती है। और जो कोई भक्त, जो कोई साधक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है उसके ऊपर तंत्र मंत्र की नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता है। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ का तरीका
और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, देवी को लाल फूल अर्पित करेंगे। तुला राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन प्राप्त होगा, करियर में सफलता मिलेगी, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, चोट चपेट से बचाव करें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब जानते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कैसे करेंगे। शाम के समय में गोधूल वेला में या मध्य रात्रि के समय में अगर आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो उत्तम होगा। देवी के सामने एक घी का दीपक जलाएं, इसके बाद लाल आसन पर बैठिएगा। अगर आप लाल वस्त्र धारण कर सकें तो और भी ज्यादा उत्तम होगा। इसके बाद देवी को प्रणाम करके संकल्प लें कि मैं किस कामना के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर रहा हूं। इसके बाद कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिएगा। कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने वाले साधक को पवित्रता का पालन करना चाहिए, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपने आहार अपने व्यवहार को संतुलित रखना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता के अवसर मिलेंगे, संतान की खूब उन्नति होगी, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, मन प्रसन्न रहेगा, धन की समस्या दूर होगी, पारिवारिक समस्या दूर होगी, देवी को लाल फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा।
कुंभ राशि, तनाव कम होता जाएगा, धन लाभ की स्थिति बनेगी, करियर का दबाव कम होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, सामान्य जीवन में भी आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, खास तौर से अगर पाप ग्रहों की समस्या हो, शनि की दिक्कत हो, राहु या केतु की दिक्कत हो, और विशेषतर राहु की समस्या अगर ज्यादा परेशान करे तो आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ सुबह शाम करना चाहिए। पाप ग्रहों की बाधा से, पाप ग्रहों की समस्या से आपको आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। नवरात्रि में देवी को पान के पत्ते पर रख कर गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करिएगा लगातार 3 दिनों तक। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 13 अक्टूबर 2026 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल देवी को लाल फूल अर्पित करिएगा, घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: चारू पल्लव महु रहा लुकाई। हनुमान जी पत्तों में छिपे, क्यों छिपे? भक्त को छिपना चाहिए, भगवान को छपना चाहिए। पहले के भगवान, पहले के भगत छिपे रहते थे, बताते नहीं थे। तुमने देखा नहीं, सूरदास जी ने थोड़ी कहा कि हम संत हैं। सूरदास जी को पढ़ोगे तो उन्होंने क्या कहा, मौसम कौन कुटिले खल कामी। बताओ कोई संत अपने लिए ऐसा कह सकता? संत छिपाता है, और संत भी वही है जो अपने आप को छिपाए, जो पहले ही कहे कि आई एम संत। तो समझ जाइए, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप समझ जाइए। या तो इन्हें घमंड ज्यादा है या संत नहीं हो, घमंड तो संत कैसा, हम तो संत कैसा। तो हनुमान जी महाराज छिपे, किसी ने कहा छुपे क्यों हो? हनुमान जी बोले, भैया छुपने में फायदा है, भगवान को छपना चाहिए, भक्त को छिपना चाहिए। हनुमान जी ऊपर बैठे हुए, रावण आता है, डराता है। उसके बाद में त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, सबनों बोले सुनाए सपना, सीता से करो हित अपना। त्रिजटा नाम की राक्षसी भी समझाती है, सब राक्षसनियों को वापस करती है। यहां हम कथा सुना चुके, इसके आगे की बात हम सुना रहे। माता जानकी जी के लिए हनुमान जी एक उपाय करते हैं। बात कहां से शुरू होती है, सुंदरकांड पढ़िए। हनुमान जी ने सोचा डायरेक्ट जाना उचित नहीं है, तो जो मुद्रका लाए थे वो गिरा दी, और जैसे ही मुद्रका

लेकिन हनुमान जी महाराज मधुर वचन में सोचने लगे कि हम बोले क्या, तो सीता जी की तरफ देखा, मां की तरफ। मां है व्यथा में, विरह व्यथा, विरह में व्यथा में, और व्यथा को कथा ही मिटा सकती, उन्हें व्यथा है, और व्यथा कैसे मिटेगी, बोले कथा से। भाई किसी को व्यथा हो, जैसे तुम लोग दो घंटा हमारी कथा सुनते, कल भी सुनी आज भी सुन रहे, क्या तुम्हें पड़ोसी की टेंशन हो रही है अभी वर्तमान में, हो रही पड़ोसन की? नहीं नहीं हो रही, बोलो। नहीं उसमें डरना क्या है, हम कौन सा तुम्हारी फोटो छपवा देते हैं। वो कोई टेंशन हो रही, जब तक कथा में ध्यान ही नहीं, बस यही लग रहा अच्छा अब आगे क्या यही मन में आ रहा। तो व्यथा में होंगे पर कथा व्यथा मिटाती है, तो हनुमान जी ने यही विचार किया और करने क्या लगे, ए हा।

हनुमान जी महाराज कथा सुनाने लगे। हनुमान जी कथा सुनाने लगे तो माता जानकी जी सुनने लगी, लागी सुने श्रवण मन लाई। अच्छा, कथा का ये नियम है, कथा माता जानकी जी ने भी सुनी तो कैसे, मन लाई, मन लगाकर सुनी। और कथा सुननी ऐसी चाहिए। कुछ लोग कहते गुरु जी हमारा तो मन ही नहीं लगता, तो मन लग कहां रहा, कथा में नहीं लग रहा तो कहां रहा। पर कोई बात नहीं, मन नहीं लगता तब भी कथा में बैठो, पूछो क्यों, पूछो अभी आप लोग हवाई जहाज पे बैठे कभी? मतलब बैठे होंगे, हम तो जैसे पूछने का तरीका है हमारा, हमें भरोसा है बैठे होंगे, पूछने का तरीका उल्टा है। अच्छा, हवाई जहाज में कौन कौन बैठा, ऐसे हाथ उठाओ। लगभग लगभग सब। अच्छा, हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे, कोई बात नहीं। सुनो, कभी पायलट आया आपके पास कि भाई साहब आपका मन लग रहा तो हम उड़े? आया, आया, बोलो बोलो बोलो, मन लगे या ना लगे वो तो उड़ता है, हाँ जी या ना जी। वैसे ही तुम्हारा मन कथा में लगे या ना लगे, बैठ जाना। जैसे हवाई जहाज उड़ती है तो गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है, वैसे ही कथा में मन लगे या ना लगे, बैठ जाना, ये भी राम जी की भक्ति के स्थान तक पहुंचाएगी। लेकिन माता जानकी जी ने सूत्र दिया सुनने का, क्या, लागी

अरे वाह, कथा इतनी सुंदर। कथा तो सुंदर है पर कथा वक्ता नहीं दिख रहा। हनुमान जी ऊपर से ही बोले, माता केवल कथा ही सुंदर है, कहने वाला तो बंदर। तो कथा वक्ता मत देखो, कथा ही देखो। कथा सुंदर है, कथावर सुंदर है, वक्ता तो बंदर है। अच्छा, कितना गजब का सूत्र है, कथा कहने वाला बंदर है। लेकिन एक बात बोले हम, कह दो बोलो, बंदर भी सुंदर हो सकता बस राम का। बंदर भी सुंदर हो सकता बस राम का हो, लेकिन सुंदर भी बंदर हो सकता काम का। सुंदर भी, हम लोग कहते ना अपनी आम भाषा में, जब कोई थोड़ा ऐसे ऐसे बाल करे में, कहां बंदर बने घूमे, कहते ना। तो बंदर भी सुंदर हो सकता राम काज करता हो, पर बंदर भी सुंदर हो सकता रावण का काम करता। धन्य हनुमान जी बोले, हम तो बंदर हैं। माता ने कहा, कोई बात नहीं, सामने आओ। हनुमान जी सामने आए, कौन हो? तब हनुमंत निकट चली गए, फिर बैठी मन विस्मय भय। माता जानकी जी ने हनुमान जी को देखा, छोटे से हनुमान जी, इतने से नीचे देख रहे, लेकिन मन में विस्मय, क्या कहीं ऐसा तो नहीं रावण ही रूप बना के आ गया। तब हनुमान जी ने अपने अपना जो बात कही वो बड़ी गजब की। कहां से माता जानकी जी को भरोसा उठा, ये सुनना।

0: दया निधान, करुणा निधान, वही कोड बोल दिया। हमने सुना है, हमें इस बारे में पता नहीं, सुना है हमने, जो किसी को रुपया भेजते हैं उसको क्या कहते हैं, मनी ट्रांसफर। मनी ट्रांसफर जब करते हैं तो उनको नंबर बताना पड़ता है, नंबर बताओ तो पता लग जाता है यही है पासवर्ड। ऐसे ही आर्मी में हमने सुना, आर्मी में हर डे का अलग अलग, भारत की आर्मी में हर दिन का अलग अलग कोड होता है, हैं? हाँ हाँ वही हाँ। और यदि वो ना बोलो तो सीधी बंदूक मार दी जाती। तीन बार पूछते हैं आर्मी वाले, रोज का कोड होता है, और वो यदि ना बोला तो खेल खत्म, नहीं तो पता लगेगा आर्मी की ड्रेस पहन के कोई और आ गया, कोई और भी तो आ सकता है, इतनी आर्मी इतनी भीड़ कैसे पता लगे कि अपने ही टीम का है। तो कोड वर्ड, माता जानकी जी और राम जी का भी एक कोड वर्ड था। जानकी माता राम जी को करुणा निधान दया निधान कहती थी। हनुमान जी ने वही कहा, सत्य शपथ करुणा निधान की। अरे ये तो हमारे शब्द बोल रहे हैं। अच्छा फिर टेंशन, माता जी अब क्या टेंशन, हनुमान जी छोटे से, माता जानकी जी ऐसे देखे, एक और चिंता है क्या, नर बानर हूं संग कहूं कैसे, तुम बानर हमारे प्रभु नर, दोस्ती कैसे। हमें लगता दो कारण से दोस्ती हुई बानरों से। हम सोच रहे थे कि यदि लंका सोने की है और मनुष्यों को ले जाते राम जी, और रावण यदि ऑफर देता कि एक एक गोल्डन हाउस, और थोड़ा कोई ज्यादा बड़ा होता तो उसको कहते थे तुम भाई बंगलो ले लो, 3 BHK ना लो बंगलो ले लो, और कौन गोल्डन हाउस छोड़े। तो राम जी रघुनाथ जी तो चतुर ही है, इसलिए बानर। तो माता जानकी ने कहा कि नर बानर हूं संग कहूं कैसे। हनुमान जी ने तुरंत कही कथा, भाई संगत जन से, जैसे संगति हुई कथा बता दी। माता जानकी जी को अभी भी भरोसा नहीं, तब हनुमान जी ने जो कहा, भरोसा कैसे हुआ वो सुनना। सुंदरकांड का 13वां नंबर का दोहा ये बात का प्रमाण करता कि हनुमान जी ने कहा कि कपि के वचन सप्रेम सुन उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन ये है कृपा सिंधु कर दो। कपि के वचन सप्रेम यहीं छुपा है, हनुमान जी ने जो वचन कहे वो सप्रेम कहे, और प्रेम कैसे, आंखों से आंसू बहने लगे भाव से आंसू। तो अच्छा, माता जानकी जी को जब राम जी की कथा सुनाई तो कपि के वचन सप्रेम सुन, प्रेम उमड़ा, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। माता जानकी जी ने देखा रो रहे हैं, आहा समझ गई इतना प्रेम तो किसी राम जी के प्रिय के अंदर हो सकता। लेकिन एक बात और थी, कहे हनुमान जी रहते पर शब्द राम जी के थे, ऐसा लग रहा था मानो राम जी ही हनुमान जी के अंदर बैठकर बोल रहे हो। माता जानकी जी को भरोसा हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बात हुई राम जी के, हमें याद करते, बिल्कुल याद करते, इस पर चर्चा हुई। अंत में हनुमान जी ने देखो, दूत का लक्षण यही होता है, हनुमान जी ने कहा कि आप तो कम याद करती, राम जी ज्यादा याद करते। अच्छा कोई और होता तो ये कह देता, करते तो इतना नहीं जितना आप, आप तो रोती ही रहती मामू, ठीक है। तो इतने में ही लड़ाई धरी, और फिर माताओं की तो ठीक ही है, उनकी तो बात ही अलग है। तो हनुमान जी, लेकिन क्या गजब के दूत हैं, हनुमान जी बोले आपसे ज्यादा याद करते। तो माता जानकी जी ने फिर संदेह किया, एक बात बताओ हनुमान, बोले हम यदि वो हमें याद करते तो इंद्रपुत्र जयंत हमारे पास आया, कौवा बन के चौंच मार दी, तो पीछे तिनका लगा दिया, तिनका को बाण बना दिया, पीछे लगा दिया। हनुमान जी बोले माँ, उनके पीछे तो तिनका लगाया था, रावण के पीछे तो हमको ही लगा दिया।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना
4: उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को।
7: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
8: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
9: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
10: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
7: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
11: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
12: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
7: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
13: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
7: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
14: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
7: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
15: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
16: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
15: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
7: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
13: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
7: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
11: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में, और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
7: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
17: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
10: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
18: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
19: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
7: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
20: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
7: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
21: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
7: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
14: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
22: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर
0: डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
9: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द

0: 60 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
1: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
2: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
3: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
4: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दमो आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
5: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे।
12: तो अच्छा

0: अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
6: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
7: शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा दिन, माता रानी के तीसरे स्वरूप माँ चंद्र घंटा की हो रही है पूजा आराधना। देश भर के मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें। शक्ति उत्सव के रंग में रंगा झांसी, पारंपरिक परिधानों में लोगों ने खेला गरबा और डांडिया, माता रानी के भजनों पर झूमे लोग। गुजरात के सूरत में दिखी अनोखी भक्ति, बाइकर्स ने 75 मोटरसाइकिल से बनाई मां दुर्गा की विशाल आकृति, समंदर किनारे दिखा भव्य नजारा। दुर्गा पूजा के साथ प्रयागराज में रामलीला मंचन की भी दिखी रौनक, हनुमान अंश फेम एक्टर गौतम त्रिपाठी निभा रहे भगवान विष्णु का किरदार। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज आई सामने, देश की जीडीपी ग्रोथ को लेकर आईएमएफ का बड़ा अनुमान, साल 2026 से 2027 में 7% की रफ्तार से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
7: आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए अच्छी खबर, आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार को लेकर जताया भरोसा। भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर आईएमएफ का बड़ा अनुमान, साल 2026-2027 में 7% की रफ्तार से बढ़ सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था। त्योहारों में मिठाई खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से मिठाइयों पर यूज बाय डेट लिखना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश सरकार का मिलावट रोकने और ग्राहकों की सेहत सुरक्षित रखने पर जोर, 15 अक्टूबर से मिठाई की दुकानों पर उपयोग की अंतिम तारीख बताना जरूरी। यूपी में मिठाई की गुणवत्ता पर निगरानी होगी और भी ज्यादा सख्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने दुकानदारों की जवाबदेही तय की। आज नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की हो रही है पूजा आराधना, देशभर के मंदिरों में सुबह से ही उमड़ा आस्था का जनसैलाब। मां चंद्रघंटा की पूजा से अहंकार से मिलती है मुक्ति और सौभाग्य की होती है प्राप्ति, मां चंद्रघंटा की आराधना से बढ़ता है साहस और आत्मविश्वास, मंगल ग्रह की बाधाएं दूर होती हैं। 10 भुजाओं वाली मां चंद्रघंटा सिंह की करती है सवारी, लाल वस्त्र, लाल पीले फूल और मंत्र जाप से मां चंद्रघंटा की पूजा बनती है सफल और फलदायी। मंत्रों का जाप और घी का दीपक जलाकर करनी चाहिए मां चंद्रघंटा की उपासना, मां चंद्रघंटा की भक्ति से व्यक्ति बनता है पराक्रमी और निर्भय। मां चंद्रघंटा का रूप शांति, साहस और कल्याण का माना जाता है प्रतीक, सौम्य स्वरूप शांति और सुख करती है प्रदान। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा का भव्य श्रृंगार किया गया। मां चंद्रघंटा की उतारी गई आरती, आरती में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने जमकर लगाए जय माता दी के जयकारे, भक्तों ने पूजा कर लिया मां का आशीर्वाद। दिल्ली के छतरपुर में नवरात्र को लेकर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने की मां की पूजा अर्चना। सुबह से छतरपुर मंदिर में लगी भक्तों की भीड़, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। हरिद्वार के मां चंडी देवी मंदिर में भक्तों ने की मां चंद्रघंटा की पूजा, भगवान का लिया आशीर्वाद। तीसरे दिन मां के दर्शन के लिए सुबह से ही लगी भक्तों की लंबी कतारें, भक्तों ने जमकर लगाए जय माता दी के जयकारे। अम्बाला में नवरात्रि पे मां काली की विशेष पूजा अर्चना, दुख भंजनी मंदिर में तीसरे दिन करीब 300 किलो दूध से कराया गया मां रानी का अभिषेक। मां काली की भक्ति में डूबा अंबाला का दुख भंजनी मंदिर, दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं में दिखा खासा उत्साह। हवेरी में शारदीय नवरात्र में फूलों से सजा नवदुर्गा मंदिर, गर्भगृह में 9 रूपों की होती है पूजा। सूरत में मां दुर्गा की भक्ति का अनोखा अंदाज, 75 प्रीमियम मोटरसाइकिलों से तैयार की गई मां आदिशक्ति की विशाल आकृति। 10 दिनों की तैयारी के बाद 75 प्रीमियम बाइकों से बनाई गई मां आदिशक्ति की आकृति, ड्रोन कैमरे से कैद हुई अनोखी प्रस्तुति ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर दुर्गा उत्सव की धूम वहां पर देखने को मिली, फादर डफी स्क्वायर पर 2 दिवसीय आयोजन में उमड़े प्रवासी बंगाली। पूजा पाठ महालया की रस्में, संगीत और नृत्य ने बांधा समा, बंगाली गीतों डांस और दश महाविद्या डांस ड्रामा ने दर्शकों का मन मोहा, अलग अलग समुदाय के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में भारतीय संस्कृति का रंग नजर आया। दूसरे दुर्गा उत्सव में बच्चों और युवाओं ने शानदार प्रस्तुतियां दी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में अनोखा दुर्गा पूजा पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। नेवारी गुड़ गांव में 117 देवी देवताओं की झलक ने श्रद्धालु का मन मोहा। कवर्धा के नेवारी गुड़ गांव में दुर्गा पूजा के लिए भव्य पंडाल सजाया गया। मां के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्थित श्रीरंगम रंगस्वामी मंदिर में नवरात्रि उत्सव की शुरुआत हुई। देवी रंग नायकी की पूजा अर्चना के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे। नवरात्रि के रंग में रंगा तमिलनाडु का प्रसिद्ध श्रीरंगम मंदिर। मंदिर में पूजा अर्चना के साथ भक्तों ने लिया मां का आशीर्वाद। कोलकाता के एलन पार्क में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने संथाली संघ दुर्गा पूजा पंडाल का किया उद्घाटन। मां के किए दर्शन। पश्चिम बंगाल के नादिया में कमलपुर अभियान संघ की दुर्गा पूजा बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। पंडाल में 117 मूर्तियों की अनोखी झलक देखने पहुंच रहे लोग। नादिया में दुर्गा पूजा के साथ सेवा और सहयोग की मिसाल। करीब 4,000 महिलाओं को वस्त्र वितरित किए गए। बेंगलुरु के कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दशहरा नवरात्रि समारोह की शुरुआत हुई। मशहूर संगीत निर्देशक हमस लेखा ने किया उत्सव का उद्घाटन। उत्सव के जरिए भारतीय संस्कृति और परंपराओं की झलक पेश। ढोल नगाड़ों की धुन पे थिरके लोग। तमिलनाडु के ऊटी में नवरात्रि के अनोखे छठा। ब्रह्म कुमारी संस्था ने अपनी 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भोलू प्रदर्शनी का आयोजन किया। अमरावती के अंबा माता और एक वीरा माता मंदिर में नवरात्रि के दौरान गोंधल की धूम। गोंधल यानी जागर के जरिए मां जगदम्बे की होती है पूजा अर्चना। गोंधल को कर पल्लवी और नेत्र पल्लवी के नाम से भी जाना जाता है। युवा पीढ़ी को भी इस कला से जोड़ने का प्रयास हो रहा है। महाराष्ट्र की लोक संस्कृति में गोंधल का है विशेष स्थान। कलाकार कला के माध्यम से देवी की महिमा का गुणगान करते हैं। दुर्गा पूजा पर मां उग्रतारा धाम में लगा भक्तों का तांता। यहां मां की अष्ट धातु से बनी प्रतिमा की होती है पूजा उपासना। मंदिर परिसर में साधना कक्ष में बच्चे जवान और बुजुर्ग सभी साधना और दुर्गा पाठ करने में है लीन। ये बच्चे 24 घंटे करते हैं दुर्गा का पाठ। नवरात्र और दुर्गा पूजा को लेकर लखनऊ पुलिस अलर्ट मोड पर। भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिला पुलिस, मोबाइल पुलिस और अतिरिक्त बल की तैनाती। मुंगेर के कलाकार की अनूठी भक्ति। 3 सेंटीमीटर के पीपल के पत्ते पर उकेरी नारी शक्ति का स्वरूप। आधुनिक गरबा के दौर में जामनगर में अंगारों पर नंगे पैर रास और मार्शल आर्ट्स बना मुख्य आकर्षण का केंद्र। काठियावाड़ी पारंपरिक वेशभूषा में युवक अलग अलग प्रकार से रास करते हैं प्रस्तुत। हैरान कर देता है अंगारा रास। चलते अंगारों पर चलते हैं युवक। इन रोमांचक प्रस्तुतियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ते हैं यहाँ पे लोग। 80 साल पुरानी है ये परंपरा। गुजरात के खेड़ा में नवरात्रि के तीसरे दिन मां अंबा की विशेष आरती। पारंपरिक मणिपुरी वेशभूषा में सजी बेटियों ने दी शानदार प्रस्तुति। नवरात्रि उत्सव एनआरआई परिवार 10 दिनों तक गांव में रहकर करते हैं मां अंबा की आराधना। पारंपरिक गुजराती गरबे में होते हैं शामिल। सलूण गांव की बेटियों ने मणिपुरी वेशभूषा में दिखाई मां अंबा की आरती कर भारतीय संस्कृति की विविधता। बेटियों ने दिखाई संस्कृति की झलक। मां अंबा की आरती के लिए बेटियों ने कई सप्ताह तक किया अभ्यास। मणिपुरी परिधान और भक्ति से सजी इस प्रस्तुति ने नवरात्रि उत्सव को और भी सत खास बना दिया। बेटियों ने युवाओं से सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की अपील की। कहा आधुनिक पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करना चाहिए। गुजरात के राजकोट में नवरात्रि के दौरान क्षत्रिय राजपूत महिलाओं का अनोखा अंदाज। राजवी पैलेस में महिलाओं ने पारंपरिक तलवार रास कर दिखाया अपना शौर्य। राजवी पैलेस में क्षत्रिय राजपूत महिलाओं ने तलवार रास से बांधा समा। बाइक और जीप चलाते हुए तलवारबाजी के हुनर का भी प्रदर्शन किया। नवरात्रि में गुजरात के राजकोट में परंपरा और वीरता का संगम। राजवी पैलेस में राजपूत महिलाओं ने तलवारबाजी के हुनर से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। गुजरात के जामनगर जिला जेल में नवरात्रि की दिखी धूम। जेल की चार दीवारी के भीतर कैदियों ने माता रानी की आराधना के साथ खेला रास गरबा। नवरात्रि के रंग में रंगा जामनगर जिला जेल परिसर, कैदियों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। तमिलनाडु के रामेश्वरम में हॉकी का रोमांच, पहली बार राज्य स्तरीय 7A साइड हॉकी टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। मुकाबलों को लेकर खिलाड़ियों में दिखा खासा उत्साह, खिलाड़ियों ने मैदान पर दिखा अपना दमखम। पुंछ में थ्रो बॉल टूर्नामेंट का भव्य संपन्न, 9 राज्यों की टीमों ने लिया इसमें हिस्सा। गया में CUSB के 5वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने 61 छात्रों का किया सम्मानित, 1662 छात्रों को दी डिग्रियां। बस्ती पहुंचा 308 पहिए वाला बाहुबली ट्रक, दीदार के लिए सड़क पे उमड़ी भीड़। चिलिकस की रिजॉर्ट में बर्फबारी का अनोखा नजारा देखने को मिला, अक्टूबर के मध्य तक जोरदार बर्फबारी रहेगी जारी। चिली में बर्फबारी ने बढ़ाया स्कीइंग का रोमांच, वैली नवाडो समेत कई स्की रिजॉर्ट्स का सीजन एक महीने ज्यादा बड़ा, पर्यटक उठा रहे हैं बर्फीली ढलानों का लुत्फ।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।
8: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरी है, मैं 78 साल का हूँ और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूँ, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है, और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए, और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर। और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है वादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती। और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूल, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, या मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्णकंद। यह है सूर्णकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन, माता रानी के तीसरे स्वरूप या माँ चंद्र घंटा की हो रही है पूजा आराधना। देश भर के मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें। शक्ति उत्सव के रंग में रंगा झांसी, पारंपरिक परिधानों में लोगों ने खेला गरबा और डांडिया, माता रानी के भजनों पर झूमे लोग। गुजरात के सूरत में देखी अनोखी भक्ति, बाइकर्स ने 75 मोटरसाइकिल से बनाई मां दुर्गा की विशाल आकृति, समंदर किनारे दिखा भव्य नजारा। दुर्गा पूजा के साथ प्रयागराज में रामलीला मंचन की भी दिखी रौनक, हनुमान अंश फेम एक्टर गौतम त्रिपाठी निभा रहे भगवान विष्णु का किरदार। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज आई सामने, भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर आईएमएफ का बड़ा अनुमान, साल 2026 और 2027 में 7% की रफ्तार से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। और देखिए, जीएनटी स्पेशल में आज बात नवरात्र के तीसरे दिन यानी कि तीसरे दिन होने वाली देवी की पूजा की बात होगी। देखिए, नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। माँ चंद्रघंटा को राक्षसों का वध करने वाला कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अंध्रचंद्र है, जिसके कारण माँ को चंद्रघंटा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा से न सिर्फ भय से मुक्ति मिल जाती है, बल्कि साहस और शक्ति में भी अपार वृद्धि होती है। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें सुबह से ही देखने को मिल रही हैं। और आपको बता दें कि नव दुर्गा के इस स्वरूप की उपासना से जन्म जन्मांतर के पाप और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, और यही कारण है कि भक्त सुबह से ही मंदिरों के बाहर लंबी कतारें लगाए खड़े हैं।

0: साहस, शक्ति और वीरता का भाव देने वाली देवी हैं माँ चंद्रघंटा। भय का नाश करने वाली और सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहने वाली देवी हैं माँ चंद्रघंटा। माना जाता है कि असुरों का संहार करने और धर्म की स्थापना के लिए माता ने चंद्रघंटा का स्वरूप धरा था। माँ चंद्रघंटा, जिन्हें माथे पर घंटीनुमा आकार के चंद्रमा धारण करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है, देवी कवचम में माँ चंद्रघंटा को साहस और वीरता का प्रतीक माना गया है।
1: यह नवरात्र के तीसरे दिन तृतीयम चंद्रघंटेति दुर्गा कवच में ऐसा कहा गया है, तीसरे दिन की आराधना की जाती है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा सुशोभित है, जिसके कारण भगवती को चंद्रघंटा कहा जाता है। उनका स्वरूप जो है चंद्रघंटा का, दुष्ट शक्तियों के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए तत्पर शक्ति के रूप के प्रतीक के रूप में माना जाता है।
0: उग्र और तेजस्वी देवी के रूप में चंद्रघंटा भय और बाधाओं को दूर करने की अपार शक्ति रखती हैं और अपने भक्तों पर शक्ति के आवरण की छाया रखती हैं। नवरात्र में शक्ति की उपासना का हर दिन विशेष है। माँ के नौ रूप नौ वरदान की तरह हैं। आपके जीवन में चाहे ग्रहों का संकट हो या फिर जीवन की बाधाओं ने आपको परेशान कर रखा हो, ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि माँ चंद्रघंटा की उपासना में छिपा है आपकी हर समस्या का समाधान। नव दुर्गा का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा को समर्पित है, जो आपको साहस और आत्मविश्वास देने वाली देवी है। देवी शक्ति के साथ सौभाग्य, शांति और वैभव का भी वरदान देती है। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा की उपासना से नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और आप निर्भय और अभय हो जाते हैं।
1: जो भगवती का स्वरूप है भिन्न भिन्न स्वरूप है। यह भिन्न स्वरूप है, हमारे यहाँ कहा गया कि जहां से घंटा नाद किया जाता है वहां से आसुरी शक्तियां भाग जाती हैं, और चंद्रमा जहां पर है तो मन का कारक है। तो जब घंटा, इनके नाम में चंद्रमा का और घंटा दोनों का नाम दिया गया है, तो ऐसी देवी का आराधना करने से मनुष्य के मन से, मनुष्य के परिवार से भय डर दूर चला जाता है।
0: नवरात्रि का तीसरा दिन साहस और आत्मविश्वास पाने का है। इस दिन हर तरह के भय से मुक्ति भी मिल सकती है। इस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर है उनके लिए माता चंद्रघंटा की पूजा विशेष होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन विशेष साधना से व्यक्ति निर्भय हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा से न सिर्फ भय से मुक्ति मिल जाती है बल्कि साहस और शक्ति में भी अपार वृद्धि होती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि माँ चंद्रघंटा की उपासना से मंगल की समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। और से देखिए ये ज्योतिषीय उपाय। माँ चंद्रघंटा के माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके दसों हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। इनकी पूजा करने वाला व्यक्ति पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं माँ चंद्रघंटा। ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से होता है। इनकी आराधना से स्वभाव में विनम्रता आती है। मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में अद्भुत तेज आता है। माना जाता है कि माता अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करती हैं, इसलिए उनके हाथों में तलवार, त्रिशूल, गदा और धनुष होता है। इनकी उत्पत्ति ही धर्म की रक्षा और संसार से अंधकार मिटाने के लिए हुई है।
1: तीसरा दिन है, हमारे यहाँ तीन प्रकार के ताप बताए गए हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो चंद्र घंटा का जो स्वरूप है इनकी आराधना करने से जो तीनों प्रकार के ताप हैं जिनको कहा गया है दैहिक दैविक भौतिक या तीन प्रकार के जो ताप होते हैं इन तापों का समन होता है, क्योंकि भगवती के साथ घंटा भी जुड़ा है भय का नाश करेगा और मस्तक पर चंद्रमा है तो मन को निर्मल करेगा। इसलिए इनकी आराधना इस तरह से अगर कोई नवरात्रि में करता है तो विशेष लाभ की प्राप्ति अवश्य होती है।
0: मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की उपासना साधक को आध्यात्मिक और आत्मिक शक्ति प्रदान करती है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि देवी का यह स्वरूप परम कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा की आराधना से साहस की प्राप्ति होती है। ऐसे में जिन लोगों को भय की समस्या है और अकारण ही शत्रुओं से परेशान रहते हैं ऐसे लोगों के लिए माँ चंद्रघंटा की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ है।
1: चंडी जो रूप है नौरू भगवती का ही है तो कलयुग में इनकी साधना जो होती है बहुत फलदायी होती है। साध धन ना, जो साधने में कठिन हो उसी का नाम साधना होता है। तो इन निरंतरता आवश्यक होती है। यह देवी शौर्य की प्रतीक हैं, जीवन में बल देती हैं, आत्मविश्वास देती हैं, तो इनकी आराधना करने से जीवन से भय की निवृत्ति अवश्य हो जाती है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर निरंतर साधना करनी चाहिए। साहस और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी आप कर सकते हैं विशेष प्रयोग। गौर से देखिए, नवरात्रि के तीसरे दिन रात्रि में माता चंद्रघंटा के सामने बैठें, लाल वस्त्र धारण करें तो अति उत्तम होगा। माता को लाल फूल और लाल वस्त्र अर्पित करें। निवारण मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। जप के बाद लाल वस्त्र को अपने पास सुरक्षित रख लें। देवी उपासना में कई चीजें खास होती हैं, जैसे उनके मंत्रों का जाप, शुद्धि, सात्विकता, पर हर देवी के हर स्वरूप की पूजा में एक अलग प्रकार का भोग चढ़ाया जाता है और कहते हैं कि भोग आपका देवी माँ के प्रति समर्पण का भाव दर्शाता है। तो किस चीज का लगाएं भोग, कौन सा भोग है माँ चंद्रघंटा को अति प्रिय है?
1: सफेद पदार्थ में आप कोई भी वस्तु ले लें, आपका जैसा व्रत है जैसा अनुष्ठान उस प्रकार का आप नैवेद्य ग्रहण कर लें, और दूध और खीर और जो सात्विक भाव से प्रसाद बने और उसी सात्विक भाव से हम भगवती को अर्पण करें, तब यह जो उनका नैवेद्य होगा जो प्रसाद रूप में हम ग्रहण करेंगे वह हमें बल प्रदान करेगा, हमारे शरीर की कांति, हमारे चेहरे के ओज को कांति को बढ़ाएगा।
0: माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद चढ़ाने के बाद इसे स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों में बांटें। माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। तो आप भी माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी आराधना करें। आगे हम आपको बताएंगे माँ चंद्रघंटा की उपासना विधि, साथ ही जानेंगे माता के उद्भव की वो पौराणिक कथा जिसमें समाहित है त्रिदेव की शक्ति। आप बने रहिए हमारे साथ।
2: साहस और आत्मविश्वास का वरदान देने वाली ये भगवती चंद्रघंटा की उपासना से हर तरह की भय बाधा दूर हो जाती है। कहते हैं कि नवरात्र में माँ के एक विशेष मंत्र का यदि जाप कर लिया जाए तो उनकी महाकृपा मिल ही जाती है। कुंडली में मंगल कमजोर है या मंगल दोष है तो देवी की उपासना परम फलदायी होती है। साहस और शक्ति का वरदान देने वाली देवी माँ चंद्रघंटा के पूजन के विशेष प्रयोग आइए अब आपको बताते हैं।

0: माँ चंद्र घंटा की उपासना है परम फलकारी। जीवन से टल जाएगा संकट भारी से भारी। शक्ति की साधना से खुलेगा मुक्ति का द्वार। देवगण मानते हैं माँ चंद्र घंटा की महिमा है अपरंपार। माना जाता है कि माँ चंद्र घंटा की उपासना करने वालों की शक्ति तो बढ़ती है, साथ ही अहंकार का नाश हो जाता है। ऐसे में जिन लोगों को भय की समस्या है और अकारण ही शत्रुओं से परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए माँ चंद्र घंटा की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। चलिए हम आपको वो पौराणिक कथा भी सुनाते हैं जब मातेश्वरी ने लिया था विश्व के कल्याण के लिए अवतार। देवी पुराण में वर्णित है कि एक बार देवताओं और दैत्य राजा महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवगण पराजित हो गए और महिषासुर ने इंद्र का सिंहासन छीनकर ब्रह्मांड पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। कथा कहती है कि तब इंद्र और देवताओं ने संकट की घड़ी में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण ली। कहते हैं कि उनके दुर्दशा से द्रवित होकर त्रिमूर्ति ने एक शक्तिशाली ऊर्जा का संचार किया जो एक भव्य देवी के रूप में प्रकट हुई। उनके 10 हाथ थे जो बाद में विभिन्न देवी देवताओं के दिव्य शस्त्रों से सुशोभित हुए, जिनमें भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का चक्र और अन्य देवताओं के शस्त्र शामिल थे। स्वयं इंद्र ने अपना वज्र और घंटा भेंट किया। सूर्यदेव ने उन्हें अपनी तेजस्वी किरणें, एक चमकीली तलवार और एक भयंकर शेर भेंट किया। इन दिव्य वरदानों से परिपूर्ण होकर देवी ने महिषासुर और उसकी सेना का संहार किया। कथा है कि दैत्य राजा और उसके कुल का अंत हो गया और देवी चंद्रघंटा ने अपनी अदम्य शक्ति से देवताओं को उनके भय से मुक्त किया।
1: माँ चंद्रघंटा सामान्यतः सिंह पर सवार हैं और अनेक प्रकार के आयुध अपने हाथों में धारण की हुई हैं और एक हाथ इनका अभय मुद्रा में है। उनका स्वरूप जहाँ एक ओर उग्र शक्ति का स्वरूप है, उसी ओर उनके मुखमंडल पर जो शांति है वह करुणा रूप में दिखाई देती है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटे ते विश्रुता, यह इनके बारे में शास्त्र में प्रमाण बताया गया है।
0: कथा कहती है कि तब से ही देवी को भय से मुक्ति दिलाने वाली देवी के स्वरूप में पूजा जाने लगा। चलिए आपको बताते हैं कि नवरात्र की तीसरी तिथि पर आपको कैसे करनी है देवी की उपासना। पर ध्यान रखिए कि देवी की उपासना में मन, वचन और कर्म की शुद्धि जरूरी है।
1: माँ चंद्र घंटा को रक्त पुष्प, लाल रंग का अक्षत, धूप दीप और नैवेद्य अर्पण करें। गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, यह पंचोपचार जो पूजन है, यह पूजन हर देवी का करना चाहिए और सायंकाल के समय भी दीपक जलाना चाहिए, उससे लाभ होता है।
0: लाल वस्त्र धारण करके माँ चंद्र घंटा की उपासना करना उत्तम होता है। माँ को लाल फूल, रक्त चंदन और लाल चुनरी समर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन मणिपुर चक्र पर रंग अक्षर का जाप करने से मणिपुर चक्र मजबूत होता है। अगर इस दिन पूजा से कुछ अद्भुत सिद्धियों जैसी अनुभूति होती है तो उस पर ध्यान न देकर आगे साधना करते रहना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में कुंडली के 9 ग्रहों की शांति भी हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल की कोई समस्या है तो माँ चंद्र घंटा की उपासना के लिए बेहद कल्याणकारी साबित हो सकती है। माँ चंद्र घंटा की पूजा से कुंडली का खराब मंगल भी सकारात्मक परिणाम देने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मंगल की समस्याओं के निवारण के लिए क्या करना होगा। कुंडली में मंगल कमजोर है या मंगल दोष है तो देवी की उपासना बेहद कारगर है। लाल रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करें। माँ को लाल फूल, तांबे का सिक्का या तांबे की कोई वस्तु चढ़ाएं। माँ को हलवा या मेवे का भोग भी लगाएं। माँ के किसी भी मंत्र का जाप करें, फिर मंगल के मूल मंत्र का जाप करें। मंगल का मंत्र होगा ओम अंग अंगकाराय नमः। माँ को अर्पित किए गए तांबे के सिक्के को अपने पास रख लें। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि इन उपायों से आपको देवी की विशेष कृपा मिलेगी और मंगल से आने वाली समस्याओं का निवारण भी हो जाएगा। आदि शक्ति माँ भवानी की कृपा पाने के लिए यूं तो भक्त तरह तरह के जतन करते हैं, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिनके प्रयोग से आपको शीघ्र मिलेगी देवी की कृपा। नवरात्रि में नियमित रूप से अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करें, जीवन की दरिद्रता दूर होगी। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि देवी चंद्रघंटा की पंचोपचार पूजा करने के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। माना जाता है कि पापों और बाधाओं का नाश करने वाली और साहस आत्मविश्वास का वरदान देने वाली है माँ चंद्रघंटा। तो आप भी करें नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का ध्यान, माँ की कृपा से संवर जाएगा आपका भाग्य। आगे हम आपको बताएंगे माँ की उपासना के अमोघ मंत्र जिनके जाप से होगा आपकी सभी बाधाओं का निदान। बने रहिए हमारे साथ।
2: देवी के हर स्वरूप के आह्वान का और उन्हें प्रसन्न करने का सिद्ध मंत्र होता है, जिनके उच्चारण मात्र से माँ हर समस्या को हल कर देती हैं, आपके द्वार आ जाती हैं और खाली झोली को भर देती हैं। तो चलिए ऐसे में अब आपको एक महामंत्र बताते हैं जिससे जप से आपके सभी दुखों का अंत हो जाएगा।

धर्म ग्रंथ कहते हैं कि देवी के मस्तक पर लगे घंटे की भयानक ध्वनि से नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं, साथ ही मंत्रों के उच्चारण से वरदान देती है माँ चंद्रघंटा।

0: कि माँ चंद्रघंटा के मंत्रों के जाप से जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। भगवती का ये स्वरूप अद्भुत है, जिनके आराधना से भय से मुक्ति और संकट में साहस का वरदान मिलता है। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा का मंत्र जाप करने से मन का डर, अज्ञात भय और घबराहट दूर होती है। माँ के विशेष मंत्र का जाप आपके सभी दुखों को दूर करने का सबसे कारगर मंत्र है।
1: देवी का कोई भी रूप हो, हम माँ के रूप में मानते हैं और माँ हमेशा अपने संतान को सुखी देखना चाहती है। जैसे हमारे यहाँ दुर्गा अर्गला में कहा गया, अर्गला स्तोत्र में, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपन देहि जयन, देहि यशो, देहि दिशो जहि, यह सब जो मंत्र भगवती के हैं, यह लोक और परलोक दोनों बनाने वाले हैं। तो इन सब मंत्रों का जप करने से रोग नाश होता है, शत्रु दूर होते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
0: या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। पिंडज प्रवरा रूढ़ा चंडकोपास्त्र गैर्युता, प्रसादम तनुते महयम चंद्रघंटेति विष्णुता।
1: भगवती मंत्र वही रहे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं मूल मंत्र है, उसके जगह चंद्रघंटायै नमः, चंद्रघंटा लगा करके, और चंद्रमा का भी एक मंत्र जो कि चंद्रमा इनके साथ जुड़ा है, तो चंद्रमा के लिए सोम सोमाय नमः, सायंकाल के समय घी का दीपक जला करके सोम सोमाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटायै नमः, इन मंत्रों का जप करने से जीवन से भय का नाश होता है और सुखों की प्राप्ति होती है।
0: तो आप जब भी माँ चंद्रघंटा की उपासना करें तो देवी के मंत्रों का जाप भी करें। माना जाता है कि देवी के पूजन में मंत्रों के जाप से माँ चंद्रघंटा प्रसन्न होती हैं और साधक की सभी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो आप भी नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को मनाएं, विधि विधान से माँ की आराधना करें, फिर देखिए कैसे आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आपके सारे संकटों का नाश भी आदि शक्ति भवानी की कृपा से हो जाएगा।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं।

0: कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
3: शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन, माता रानी के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की हो रही है आराधना, देशभर के मंदिरों में भक्तों की कतार। शक्ति उत्सव के रंग में रंगा झांसी, पारंपरिक परिधानों में लोगों ने खेला गरबा और डांडिया, माता रानी के भजनों पर झूमे। गुजरात के सूरत में दिखी अनोखी भक्ति, बाइकर्स ने 75 मोटरसाइकिल से बनाई मां दुर्गा की विशाल आकृति, समंदर किनारे दिखा भव्य नजारा। दुर्गा पूजा के साथ प्रयागराज में रामलीला मंचन की रौनक, हनुमान अंश फेम एक्टर गौतम त्रिपाठी निभा रहे भगवान विष्णु का किरदार। तिरुमाला मंदिर पहुंचे विजय रश्मिका, विधि विधान से किए दर्शन पूजन, फिल्म रणबाली की कामयाबी की कामना की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
3: सज गई खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, स्वागत है आपका लंच टाइम में।
4: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें।
3: आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए अच्छी खबर, IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार को लेकर जताया भरोसा, साल 2026 और 27 में 7% की रफ्तार से बढ़ सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था। त्योहारों में मिठाई खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से मिठाइयों पर यूज बाय डेट लिखना होगा अनिवार्य। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा का भव्य तरीके से किया गया श्रृंगार। मां चंद्रघंटा की उतारी गई आरती, आरती में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। दिल्ली के छतरपुर में नवरात्र को लेकर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने की मां की पूजा।
4: गुजरात के खेड़ा में नवरात्र के तीसरे दिन मां अंबा की विशेष आरती, पारंपरिक मणिपुरी वेशभूषा में सजी बेटियों ने शानदार प्रस्तुति। नवरात्र उत्सव पर NRI परिवार 10 दिनों तक गांव में रहकर करते हैं मां अंबा की आराधना, पारंपरिक गुजराती गरबे में होते हैं शामिल। गुजरात के राजकोट में नवरात्र के दौरान क्षत्रिय राजपूत महिलाओं का अनोखा अंदाज, राजवी पैलेस में महिलाओं ने पारंपरिक तलवार रास पर दिखाया शौर्य। गुजरात के जामनगर जिला जेल में नवरात्र की धूम देखी गई, जेल की चार दीवारी के भीतर कैदियों ने माता रानी की आराधना के साथ खेला राज गरबा। आधुनिक गरबा के दौर में जामनगर में अंगारों पर नंगे पैर रास और मशाल रास बना आकर्षण का केंद्र।
3: तमिलनाडु के रामेश्वरम में हॉकी का रोमांच, पहली बार राज्य स्तरीय 7A साइड हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन। मुकाबले को लेकर खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह, खिलाड़ियों ने मैदान पर दिखाया दमखम। पुंछ में थ्रूबॉल टूर्नामेंट का भव्य तरीके से हुआ संपन्न, 9 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया। गया में CUSB के 5वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने 61 छात्रों को सम्मानित किया, 1662 छात्रों को दी डिग्रियां। बस्ती पहुंचा 308 पहिए वाला बाहुबली ट्रक, दीदार के लिए सड़क पर उमड़ी भीड़।
4: चिले के स्की रिजॉर्ट्स में बर्फबारी का अनोखा नजारा, अक्टूबर के मध्य तक जोरदार बर्फबारी जारी। चिली में बर्फबारी ने बढ़ाया स्कीइंग का रोमांच, विलो नेवेडा समेत कई स्की रिजॉर्ट्स का सीजन एक महीने से ज्यादा बढ़ा, पर्यटक उठा रहे बर्फीले ढलानों का लुत्फ। स्टॉकहोम में स्वीडिश रैपर और संगीतकार जोनाथन की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लोगों को कर रही है काफी आकर्षित। हंगरी में सूखा प्रभावित इलाकों की सिंचाई के लिए किया जा रहा नया प्रयोग, मछली पकड़ने के बाद तालाब के बचे पानी से हो रही है सिंचाई। पेरिस ऑटो शो में दिखा फ्रांस की कुछ सबसे प्रसिद्ध पुरानी कार का जलवा, लोगों ने कार के डिजाइन की तारीफ की।
3: फिल्म रजनी द जेलर 2 का ट्रेलर रिलीज, 15 अक्टूबर को फिल्म होगी रिलीज। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपनी फिल्म रणबाली की रिलीज से पहले सीएम विजय से की मुलाकात, देवरकोंडा ने की सीएम विजय की तारीफ। तिरुपति बालाजी के दरबार में पहुंचे विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। सैफ अली खान ने इंस्टाग्राम पर पटौदी लाइब्रेरी की दिखाई झलक, कैप्शन में लिखा पटौदी लाइब्रेरी, किताबों को उनके कवर से आंकते हुए। फिल्म गाड़ी का धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में होगा प्रीमियर, 29 अक्टूबर से महोत्सव की होगी शुरुआत।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: अच्छी से अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है, तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन, माता रानी के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की हो रही है आराधना।
2: शक्ति उत्सव के रंग में रंगा झांसी, पारंपरिक परिधानों में लोगों ने खेला गरबा और डांडिया।
1: दुर्गा पूजा के साथ प्रयागराज में रामलीला मंचन की भी रौनक, हनुमान अंश फेम एक्टर गौतम त्रिपाठी निभा रहे हैं भगवान विष्णु का किरदार।
2: भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर आईएमएफ का बड़ा अनुमान, 2026 और 27 में 7% की रफ्तार से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था।
1: सात समंदर पार दिखी नवरात्र की रौनक, न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर शक्ति आराधना।

लंच टाइम में सबसे पहले बात शक्ति उत्सव की करेंगे। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन, पूरे देश में शक्ति उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्र के तीसरे दिन आज माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना हो रही है। सुबह से ही श्रद्धालु देशभर में माता के मंदिरों में उमड़ रहे हैं और पूरी श्रद्धा उल्लास और विधि विधान से माँ ब्रह्म चंद्रघंटा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। नवरात्र के साथ ही गरबा का उल्लास भी माँ भवानी के भक्तों के सर चढ़कर बोल रहा है। खासकर गुजरात का कोना कोना गरबा उत्सव के रंग में सराबोर है। आस्था, शक्ति की उपासना और लोक संस्कृति का यह अनूठा संगम पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसके साथ ही देशभर में दशहरे का इंतजार भी शिद्दत से हो रहा है। बुराई पर अच्छाई के प्रतीक रावण का पुतला देशभर में मनाया जा रहा है। विशाल से लेकर विशालकाय रावण तक कहीं पर 40 फीट तो कहीं 200 फीट से भी ऊंचा रावण बनाया जा रहा है, ताकि जब दशहरे पर रावण दहन हो तो वो दृश्य लोगों के जहन में बरसों तक याद रहे।

0: देखिए, देश भर में शक्ति की उपासना का महापर्व पूरे उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर शहर आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने के लिए मिल रहा है। सुबह सवेरे भक्त माँ का आशीर्वाद लेने के लिए माँ के दरबार पहुंच रहे हैं। मंदिरों में लंबी लंबी कतार, इसके बावजूद भक्तों के चेहरे पर खुशी और माँ के दर्शन का उत्साह है, जो कि इस शक्ति उत्सव को खास बनाता है। नवरात्र के पहले दिन से ही हम आपको देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों में लेकर चल रहे हैं, माँ के दर्शन करवा रहे हैं। आज भी हम आपको देवी माँ के मंदिरों में लेकर चलेंगे और माँ के दर्शन करवाएंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से दिल्ली से लेकर गुजरात, सूरत से लेकर पश्चिम बंगाल तक महापर्व नवरात्र के रंग बिखरे हुए हैं। राजधानी दिल्ली के छतरपुर स्थित झंडेवाला और कात्यानी मंदिर में श्रद्धालुओं की अटूट आस्था देखने को मिल रही है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी शक्ति उत्सव के खूबसूरत रंग बिखरे हुए हैं। सूरत में तो बाइकर्स ने क्रिएटिविटी दिखाते हुए भक्ति का अनोखा रूप पेश किया, तो सात समंदर पार न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी माँ दुर्गा की भक्ति का रंग चढ़ गया है।
1: तो शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज पूरा देश मां चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा आराधना कर रहा है, खुशियां मना रहा है और नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं। लगातार गुड न्यूज टुडे पर हम आपको तमाम रंग दिखा रहे हैं और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अकोला से धनंजय जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जयपुर से रिदम जैन जुड़ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जयपुर का रुख करना चाहूंगी। और रिदम, किस कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं और कितने भक्त हैं जो सुबह से मां के दर्शन के लिए मंदिर में पहुंच चुके हैं?
2: बिल्कुल, देखिए सुबह से मैं जयपुर के श्री माता वैष्णो देवी के मंदिर में मौजूद हूं, जहां पर अभी इस समय पे थोड़ा सा माहौल में बदलाव देखा गया, क्योंकि इस समय पर जो पट है माँ के वो बंद हो चुके हैं। अभी माँ का आराम का समय है, इस समय पे थोड़ी देर के लिए पट जो है वो बंद किए गए हैं। इसी वजह से भक्त समय पे मंदिर में नहीं मिलेंगे, पर मैं आपको ये बताती हूँ कि सुबह से यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ था। मंदिर का एक बार मैं दृश्य दिखाऊंगी, किस तरीके से फूलों से इस मंदिर को अभी सजा रखा है और इसी तरीके के दर्शन भी माँ दे रही थी, जिसमें माँ को लाल कलर की साड़ी, लाल रंग की साड़ी जो है उसको सजाया गया था, फूलों के साथ माँ का श्रृंगार किया गया था। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, यानी कि माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा का आज दिन है, जिसमें माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र, घंटे के आकार का अर्धचंद्र दिखता है और वो आज दिन है। फूलों से, चंदन से, दीप से सभी भक्तों ने, दीप को अर्पित करके सभी भक्तों ने माँ के सामने अपनी मनोकामनाएं रखी है, माँ को प्रसन्न करने की कोशिश की है। शक्ति का रूप आज का दिन माँ का होता है और ऐसे में सभी भक्तों ने जितने भक्तिभाव से, आस्था से माँ के सामने मनोकामनाएं रखी, उसी के साथ में ही यहाँ पे भोग भी माँ को, क्योंकि दूध की मिठाइयों का आज भोग चढ़ाया जाता है, तो पूरी और हलवे का भोग यहाँ पे मंदिर में चढ़ाया गया। कुछ समय में माँ वापस से दर्शन देंगी। अभी हाल फिलहाल जी जो पट हैं ये बंद किए गए हैं और खास बात ये भी है कि जितनी बार पट बंद होते हैं और साथ ही साथ में पूरे दिन में 6 से 7 बार माँ का जो श्रृंगार है वो किया जाता है, तो अब अगला जो रूप आएगा, किस रूप में माँ देखने को मिलती है, किस रंग में माँ देखने को मिलती है, वो इंतजार अभी सभी को है। कुछ ही देर में वो देखने को मिलेगा, तब तक के लिए अभी सब इंतजार में रहेंगे कि कब वापस से पट खुलेंगे, कब माँ दर्शन देंगे। आज तीसरा दिन यहाँ पे सभी भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है और इसीलिए जिन्होंने भी व्रत किए हैं वो लगातार मंदिर आ रहे हैं। थोड़ा सा समय अभी दिया गया है, जिसके बाद में सभी वापस से इस मंदिर में माँ के दर्शन करने आएंगे। जी
0: चलिए ठीक है, रिदम आपके पास लौटेंगे, वहां पर श्रद्धालु से भी बात करिएगा। एक बार धनंजय के पास चलते हैं, जो कि अकोला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय, अभी अकोला के किस मंदिर में आप मौजूद हैं और आज माता का तीसरा दिन, श्रद्धालु की संख्या कितनी है, कितने उत्साह के साथ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं माता के दर्शन के लिए?
3: गीतिका जी और पूजा जी, सबसे पहले जय माता दी। और हम फिलहाल है अकोला शहर के अक्कलकोट इलाके के रेणुका माता मंदिर में। लगभग 200 से 250 साल पुराना ये माता का मंदिर है। आज माता का तीसरा दिन है, चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। साथ ही जो है महाराष्ट्र में जो 3.5 शक्तिपीठ है उसमें से एक माहूर की रेणुका माता है, उसी के स्वरूप में माता का ये सुंदर स्वरूप आप देख सकते हो। दर्शन सभी गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को हम बताएंगे कि माता रानी के इस भव्य स्वरूप को देखकर, क्योंकि ये जो है ये स्वयं प्रकट हुई भी माता देवी है। हम जानेंगे यहाँ के जो पुजारी है और संस्था के जो है राम जोशी हमारे साथ है, थोड़ा इधर आइए। क्या माता की कहानी क्या है, कितने साल पुरानी है?
4: माता नदी के ढाई सौ साल पहले आई है, स्वयं वो है
3: हा?
4: और अभी 150 साल बाद में पिछले साल माता का फोल निकल गया, सिंदूर जो लगाया था
3: हा?
4: अब ये पुनः साक्षात
3: के सामने 250 साल पुराना है। देखिए भक्त भी बड़े आशा से यहाँ आते हैं, जहाँ ओटी चढ़ाई जाती है, महिला खासकर जो है ओटी चढ़ाकर जो है माता रानी को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, यहाँ पर माता का जगराता करने के लिए। जय माता दी। देखिए माता भगिनों में यानी महिलाओं में कितना उत्साह है, और इस पूरे मंदिर में जो है सबसे पुराना मंदिर है, ये नगर का प्रथम जो है मंदिर था रेणुका माता का, और यहाँ पर जिस तरीके से ये महिलाओं के पीछे, मैं कहूंगा थोड़ी थोड़ा हटिए कि पीछे जो कुमकुम मार्चन चल रहा है, वो कुमकुम मार्चन लगभग 1108 मंत्रों के साथ किया जा रहा है। और सबसे अहम बात है कि यहाँ पर जिस तरीके से पूजा भाव का संपूर्ण ये परिसर है, यहाँ माता रानी के लिए, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए एक बड़ी शक्ति उनकी मिलने के चाहिए, क्योंकि ये 9 दिन बड़े शक्ति के होते हैं, आदि शक्ति होती है, और ये आदि शक्ति के को प्रसन्न करने के लिए जिस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो कुमकुम, एक एक कुमकुम का तिला यहाँ पर लगाया जाता है, और वहां पर मंत्र उपचार के बाद जो है वो यहाँ पर माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, माता रानी का जिस तरीके से यहाँ पर पूजा आराधना साधना करने के लिए गीतिका जी यहाँ पर जो है पूजा अर्चना की जाती है, और ये बहुत पुराना मंदिर है।
1: जी धनंजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन जयपुर के राजा पार्क स्थित पंचवटी माँ वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की आराधना के लिए सुबह से ही भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। भक्तों ने माँ के चरणों में फूल धूप और दीप अर्पित कर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर में गूंजते जयकारों के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय नजर आया।
5: नवरात्र का तीसरा दिन यानी कि माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की आराधना करने का आज दिन है, और जयपुर के माँ वैष्णो देवी मंदिर की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पे माँ का बहुत ही खूबसूरत श्रृंगार किया गया है। लाल साड़ी में माँ को सजाया गया है, फूलों से इस पूरे मंदिर का आज के दिन श्रृंगार किया गया है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र है, इसी वजह से घंटे की आकार का अर्धचंद्र होता है, जिसकी वजह से उनका नाम माँ चंद्र घंटा होता है। और आज के दिन माँ को फूल धूप चंदन चढ़ाकर सभी भक्त जो हैं वो माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं, और खास बात यह है कि दूध की मिठाइयाँ जो है वो माँ को प्रसाद में भोग में चढ़ाई जाती है। उसी तरीके की जो भोग है उसकी तैयारियां भी इस मंदिर में की गई है, जहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से सारा भोग जो है वो सजाया गया है। इस मंदिर की खासियत यह है कि सुबह और शाम अलग अलग समय पे ये भोग होते हैं, अलग अलग परिवार की तरफ से ये भोग जो है वो सभी के लिए रखे जाते हैं। इस समय पे हलवा और पूरी का भोग जो है वो देखने को मिल रहा है। भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, माँ के दर्शन कर रहे हैं, अपनी जो मन्नत है वो माँ के सामने रख रहे हैं और ये भोग ग्रहण कर रहे हैं। सर हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे कि नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग श्रृंगार माँ का किया जाता है, आज तीसरा दिन है, वैसे ही हर 9 दिन के लिए आप मुझे बताइए किस तरीके से श्रृंगार की तैयारियाँ की जा रही है।
6: 9 दिन के अंदर हर दिन लगभग 6 से 7 बार माता का श्रृंगार होता है, और 6 और 7 बार अलग अलग साड़ी होती है। पिछले 24 साल के अंदर माता जी ने कभी भी जो साड़ी रिपीट नहीं करी है, कभी भी साड़ी रिपीट नहीं करी है, हमेशा हमारे पास 1 साल की 6 महीने की बुकिंग अग्रिम रहती है।
5: यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, हर एक भक्त आ रहा है माँ के चरणों में, जो अपना भक्त आशीर्वाद है वो लेने आ रहा है, फूल चढ़ा रहा है, धूप चढ़ा रहा है। अभी यहाँ पे माँ की पूजा हो रही है, पंडित जी भी बैठे, मैं उनसे जानूंगी पंडित जी किस तरीके से आज के दिन माँ की आराधना की जा रही है।
7: शारदीय नवरात्रों का ये तीसरा दिन है, चंद्रघंटा के नाम से मातेश्वरी का आज का नवरात्र है। माता जी के मुकुट के ऊपर चंद्र होने की वजह से इनका नाम चंद्रघंटा है। शिवजी ने इनका श्रृंगार किया था और चंद्रमा अपना उतार के इनके लगाने से चंद्रघंटा के नाम से मातेश्वरी का नाम पड़ा है। शीतल स्वभाव और पूर्ण रूप से शांत स्वभाव वाली मातेश्वरी सदा ही मंद मंद मुस्कान से अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसाती है।
2: पंडित जी ने हमें बताया किस तरीके से आप माँ की आराधना करेंगे तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, और इसी तरीके से इसी मनोकामना से आज जितने भी भक्त यहाँ पे हैं वो सुबह से इस मंदिर में आ रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं, अपनी जो मनोकामनाएं हैं वो माँ तक पहुँचा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि माँ इस नवरात्रि उनको आशीर्वाद देंगी, उनके जीवन में सुख और समृद्धि लाएंगी और उनकी मनोकामना पूरी करेंगी। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे, जयपुर।
0: तो वहीं दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में नवरात्र के दौरान भव्य उत्सव नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में भक्त कालकाजी मंदिर पहुंच रहे हैं, माता कालका के दर्शन कर रहे हैं। नवरात्र के तीसरे दिन मध्य रात्रि में हुए मां की आरती के बाद से भक्तों के लिए मां का कपाट खोल दिए गए, तब से बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, माता के जयकारों के साथ यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं।
8: माता के दर पे आके तो अच्छा ही लगता है कि नवरात्रों के अवसर पे हम यहाँ पे आए हैं और माता के दर्शन करने का जो सौभाग्य मिला है ये सबको नहीं मिलता है, और इतनी धार्मिक मान्यता है यहाँ की, यहाँ पे बार बार आने का मन करता है माता रानी के दर्शन करने का, और हम तो आते ही रहते हैं लगभग।
9: अच्छे दर्शन हो रहे हैं, व्यवस्था अच्छी है और प्रशासन शासन का बहुत अच्छा सहयोग है यहाँ पे। 5 साल हो गए यहाँ सेवा करते हुए, मैं सुख सेवा करता हूँ माँ की में, और भक्तों के यही प्रार्थना है कि सब आए और अच्छे से दर्शन करें।
10: देखिए नवरात्र के प्रतिदिन कालकाजी मंदिर के अंदर भक्तों में भारी भीड़ जुटती है, माँ के दर्शन के लिए आते हैं। आज भी जो है मध्यरात्रि से ही भक्तों में तांता जो लगा हुआ है, माँ के दर्शन करके वो पुण्य लाभ कर रहे हैं, क्योंकि भगवती की ये मान्यता है कि जो भी माँ के दर्शन करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए कुछ साधक तो नित्य प्रति जो आके माँ के दर्शन करते हैं और मध्यरात्रि से ही माँ के दर्शन के कपाट दर्शन के लिए कपाट खोल दिए जाते हैं। भगवती की जो मध्यरात्रि में आरती करने के बाद जो भक्तों का कपाट जो है भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं, और लगभग जो है 2:30 बजे के बाद से ही भक्त जो है निरंतर माँ के दर्शन कर रहे हैं और पुण्य लाभ कर रहे हैं।
11: नवरात्रों के दौरान कालकाजी मंदिर में लगातार भक्तों का तांता नजर आ रहा है। आज नवरात्रों के तीसरे दिन भी मंदिर में सुबह से भक्त लाइनों में लगकर माँ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बता दें आज नवरात्र के तीसरे दिन माता के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा माँ की पूजा अर्चना हो रही है, और इस मौके पर कालकाजी मंदिर में सुबह 2 बजे हमेशा की तरह आरती हुई, और आरती के बाद से भक्तों के लिए माँ का जो द्वार है वो खुला हुआ है, और तब से लगातार भक्त आ रहे हैं। भक्तों का यहाँ पर आने का सिलसिला लगातार जारी है, भक्तों का तांता लगा हुआ है और भक्त माता के जयकारों के साथ उनका दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली NCR के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से भक्त पहुँच रहे हैं और माँ के दर्शन कर रहे हैं। आशुतोष कुमार, दिल्ली।
1: आस्था और विश्वास की भव्य तस्वीर हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर में भी देखने को मिल रही है। यहां बड़ी संख्या में भक्त मां के दरबार में शीश नवाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये उत्तराखंड में शिवालिक पहाड़ियों के नील पर्वत की चोटी पर स्थित एक प्रसिद्ध सिद्धपीठ है। मान्यता है कि इस मंदिर की मुख्य प्रतिमा की स्थापना 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने की थी।
12: मंदिर है यहाँ पे, माँ चंडी ने शुम नशुम का वध किया था और महिषासुर का भी यहाँ पे माँ ने वध किया था।
13: नवरात्रों में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने आराम से दर्शन हो जाएंगे, बहुत इजी वे चलता रहा और ट्रॉली की व्यवस्था की वजह से जल्दी दर्शन का बन गया है प्रावधान, नहीं तो पहले काफी समय लगता था, अब जल्दी से दर्शन हो जा रहे हैं। और क्योंकि मंदिर समिति की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि बहुत इजी वे रहा, मतलब पहले हम आए थे तब बहुत टाइम तक हमें लाइन में लगना पड़ा, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ जबकि नवरात्रे हैं, और अच्छे दर्शन हुए हमें। हमारी तो भगवान से यही मनोकामना है कि माँ भगवती का आशीर्वाद सब पे बना रहे, धन्यवाद।
14: बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा माता का मंदिर सजा हुआ है, बहुत बढ़िया दर्शन हो गए जी। नवरात्रों में माता रानी अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, हरियाणा से हम यहाँ आए हैं, पहली बार आए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा जी।
15: नवरात्रों में और वैसे भी जब भी आते हैं तो एक अलग सी शक्ति का महसूस होता है यहाँ पर, और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर, और अपनी वाइफ के साथ में आया हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। माता का आशीर्वाद बना रहे हम सब पर, आप पर।
0: चलिए अब आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के अंबाला में मौजूद मां दुखभंजनी मंदिर। दरअसल यहां पर महाकाली की मूर्ति का दूध से स्नान कराया गया। अंबाला में मां काली का ये बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे मां दुखभंजनी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में मां काली को सभी भक्तों के दुखों का निवारण करने वाली देवी माना जाता है। इस मंदिर की एक विशेष परंपरा है कि नवरात्रों के दौरान मां काली की मूर्ति को दूध से स्नान कराया जाता है। इस बार भी करीब 300 किलो दूध से मां की मूर्ति को स्नान कराया गया। इस दौरान दूर दूर से श्रद्धालु यहां मां काली के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं और उस दूध को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, जिससे कि मां का स्नान कराया जाता है। कोलकाता और कटक के बाद अंबाला एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर इस प्रकार की अनूठी परंपरा निभाई जाती है।
16: साचे दरबार की जय। श्री महाकाली मां दुखभंजनी मंदिर अंबाला शहर में पंडित पंकज वशिष्ठ आज मां भगवती के दरबार में मां भगवती का महाकाली जी का दूध नाम से अभिषेक हो रहा है, जो भक्तों के द्वारा किया जाता है। और मां आशीर्वाद देती है, दूधो ना हो पूतो फलो। मां को हम जो भी चीज अर्पण करते हैं मां कई गुणा हमें वो वापस लौटाती है। तो आज दूध समर्पण का भाव यही है कि हमारे घरों में अन्न की धन की हर तरह से वृद्धि रहे, संपन्नता रहे।
1: और अब बात नवरात्र पर स्वीट सौगात की। त्योहारों के मौसम में मिठाई खरीदने वालों के लिए यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। खाने पीने की चीजों में मिलावट रोकने और लोगों की सेहत का ध्यान रखने के लिए 15 अक्टूबर से नए नियम लागू हो रहे हैं। इस नियम के तहत दुकानों पर बिकने वाली मिठाइयों पर यूज बाय डेट यानी उपयोग की अंतिम तारीख बताना अनिवार्य होगा। ये नियम सिर्फ पैक मिठाइयों पर ही नहीं बल्कि दुकानों में बिक्री के लिए रखी गई खुली मिठाइयों पर भी लागू होगा। इससे ग्राहक मिठाई खरीदते समय जान सकेंगे कि उसका इस्तेमाल किस तारीख तक करना उचित है। पहले खुली मिठाई खरीदने पर ग्राहकों को उसकी एक्सपायरी डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी, लेकिन अब नए नियमों के बाद मिठाई बनाने वाले यूनिट्स को साफ तौर पर खुली मिठाई की एक्सपायरी डेट लिखनी होगी, यानी मिठाई कितनी पुरानी है और उसे कितने समय तक खाया जा सकता है, इसकी जानकारी ग्राहकों को देनी होगी।
0: देखिए, त्योहारों के दौरान मिठाइयों की मांग तो बढ़ जाती है। ऐसे में ग्राहकों के लिए जानना काफी जरूरी है कि खरीदी जा रही मिठाई कितने समय तक इस्तेमाल करने योग्य है। यूज बाय डेट प्रदर्शित होने से ग्राहक अधिक जानकारी के साथ खरीदारी कर सकेंगे और लंबे समय से रखी मिठाइयों की पहचान करने में भी मदद मिलेगी। ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए, उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से मिठाइयों पर यूज बाय डेट यानी उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। यूज बाय डेट का मतलब है उपयोग की अंतिम तारीख। अब मिठाई खरीदते समय ग्राहक जान सकेंगे कि संबंधित उत्पाद का सेवन किस तारीख तक करना उचित है।
1: तो पैक के साथ खुली मिठाइयों पर भी लागू होगी व्यवस्था। हर मिठाई की शेल्फ लाइफ अलग होगी।
0: मिठाइयों की शेल्फ लाइफ सभी के लिए एक समान निर्धारित नहीं है। ऐसे में मिठाई की प्रकृति, सामग्री, निर्माण प्रक्रिया और भंडारण व्यवस्था के आधार पर तय होगी उपयोग अवधि।
1: तो कारोबारी खुद तय करेंगे उपयोग की अवधि। अलग अलग मिठाइयों की उपयोग अवधि 1 दिन से 30 दिन तक हो सकती है।
0: घोषित उपयोग अवधि तक मिठाई की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखने की जिम्मेदारी कारोबारी की भी होगी।
1: तो जाहिर है मिठाइयों पर यूज बाय डेट जैसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने से ग्राहकों को काफी सहूलियत मिलेगी और वो उसका इस्तेमाल समय पर कर सकेंगे।
0: चलिए बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद देखिए गुजरात में शहर शहर गरबा के अनोखे रंग।

0: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में तमाशा अनलिमिटेड। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन माता रानी के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की हो रही आराधना, देश भर के मंदिरों में भक्तों की कतार। शक्ति उत्सव के रंग में रंगा झांसी, पारंपरिक परिधानों में लोगों ने खेला गरबा और डांडिया, माता रानी के भजन पर झूमे लोग। गुजरात के सूरत में दिखी अनोखी भक्ति, बाइकर्स ने 75 मोटरसाइकिल से बनाई मां दुर्गा की विशाल आकृति, समंदर किनारे दिखा भव्य नजारा।
6: दुर्गा पूजा के साथ प्रयागराज में रामलीला मंचन की रौनक, हनुमानंज फेम एक्टर गौतम त्रिपाठी निभा रहे भगवान विष्णु का किरदार।
1: आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर आईएमएफ का बड़ा अनुमान, 2026 और 2027 में 7% की रफ्तार से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका लंच टाइम में। शक्ति उत्सव पर हमारे खास कार्यक्रम में अब आपको दिखाते हैं गरबा के रंग। वडोदरा के ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस में हेरिटेज गरबा का आयोजन किया गया, जहां भारतीय और वैश्विक संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। वहीं राजकोट में तलवार रास सबका दिल जीत रहा है। रॉयल पैलेस के इस गरबा रास में सजी धजी महिलाएं और लड़कियां माँ दुर्गे की स्तुति करती हैं और हाथों में चमचमाती तलवारें लेकर गरबा की थाप पर थिरकती हैं। जामनगर में अंगारा रास की धूम है। गरबा की धरती पर मणिपुरी संस्कृति की झलक भी साफ तौर पर देखी जा सकती है।
1: देखिए, गुजरात के लोगों के लिए नवरात्र का त्योहार महापर्व है, जिसे हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर पूरे गुजरात में गरबा की धूम रहती है, लेकिन इसमें भी वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस के हेरिटेज गरबा की रौनक देखने लायक है। आइए आपको दिखाते हैं लक्ष्मी विलास पैलेस में गरबा का भव्य आयोजन, जहां पर देशी विदेशी मेहमानों के साथ 40,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ गरबा किया। वडोदरा से हमारी संवाददाता नवजोत रंधावा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए।

0: ये रौनक, ये सजावट, ये चमक दमक दुर्गा उत्सव की है। यहाँ हर कदम माँ की आराधना के लिए थिरक रहा है। क्योंकि यहाँ गरबा सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। ये शानदार तस्वीरें वडोदरा के ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस में आयोजित भव्य हेरिटेज गरबा उत्सव की, जहाँ भारतीय और वैश्विक संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिला। देशों के विदेशी मेहमान लक्ष्मी विलास पैलेस में हेरिटेज गरबा के साक्षी बने।
1: So if you can speak Hindi, just tell me, कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पर?
2: बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, best.
1: What do you want to say about this garba?
3: It's incredible. Just look at the scale. We're at Lakshmi Villas Palace in Vadodara. We have tens of thousands of people dancing together as one, and then over behind us.
1: Are you enjoying the?
2: I love it. It's incredible. It's...
1: So have you ever been to this place?
2: No, never, never. And it is beyond words what we're experiencing. It's completely.

इस उत्सव में जितनी अहमियत भक्ति और संगीत की है उतना ही खास है पारंपरिक पहनावा जिसकी झलक इस गरबा महोत्सव में बखूबी देखने को मिली। रंग बिरंगे लहंगे चमचमाती चनिए चोली और गरबा की फिरकर ये सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि माँ के शक्ति के प्रति भक्ति का ऐसा रंग है जो हर किसी को हर्ष से सराबोर कर देता है।

0: ढोल की थाप और रोशनी से जगमगाते पैलेस का प्रांगण पूरी रात भक्ति और उत्साह के रंग में रंगा रहा। पारंपरिक लोक गीतों पर लोग थिरकते रहे।
1: ये लाइव सिंगिंग म्यूजिक के साथ ही यहाँ पर गरबा होता है। यहाँ का प्रोटोकॉल है कि आप कोई भी कैसेट नहीं चला सकते हैं, कोई भी वीडियो नहीं दिखा सकते, आपको लाइव में ही यहाँ पर सिंगिंग करनी होती है। ये पूरा प्रोटोकॉल है ताकि हमारी कल्चर संस्कृति को भी सहेजा जाए। और यहाँ तमाम जितने विदेशी डेलीगेट्स हैं उन लोग को यहाँ लाने का मकसद भी यही है कि वो हमारी संस्कृति से रूबरू हो सकें। बिना देर गवाए एक राउंड गरबा का हो जाए।

0: पारंपरिक गरबा नृत्य ने ऐसा अद्भुत नजारा पेश किया जिसने हर किसी को मुग्ध कर दिया। गायक गायिकाओं और वाद्य यंत्रों से निकलते सुर गरबा में शामिल लोगों को जोश से भर रहे थे। गरबा का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था।
1: ऐसा खूबसूरत नजारा आप केवल वडोदरा में देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 40,000 लोग हैं जो यहाँ पर गरबा परफॉर्म कर रहे हैं। लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं। ये भी इसी का एक थीम रहता है जिसमें सबको बोला जाता है कि आप टॉर्च ऑन कीजिए, टॉर्च ऑन के साथ रिदम के साथ अपने ताल से ताल मिलाते हुए लोग यहाँ पर गरबा खेलते हैं। और अभी अगले 5 से 10 मिनट तक आपको बिल्कुल इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा जहाँ हर कोई अपनी धुन में मगन है, केवल उनको सुनाई दे रहा है तो म्यूजिक, और म्यूजिक के साथ अपना मोबाइल ऑन, और उसके साथ लोग लगातार थिरकते जा रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस से देखिए।
0: इस इवेंट में 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने एक साथ पारंपरिक गरबा किया और मां के चरणों में आस्था की जोत जलाई।
1: लक्ष्मी विलास पैलेस का ये हेरिटेज गरबा जो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, और इस गरबे की खास बात देखिए, अभी अभी आरती संपन्न हुई है यहाँ पर। आरती के बाद वैसे तो गरबा पहले से शुरू हो चुका था, लेकिन बीच में आरती का जो समय रहता है बिल्कुल उसी समय पर आरती होती है। और यहाँ पर इस आरती की भी खास बात है, जो पूरा माँ का दरबार सजाया जाता है, आप देखिए कितनी खूबसूरती के साथ इस पूरे माँ के दरबार को सजाया गया है, जिसमें वटवृक्ष है और उसके साथ साथ माँ की चूड़ियों के साथ श्रृंगार पूरे इस पंडाल का किया गया है। हल्दी रखी गई है, रोली रखी गई है यहाँ पर। माँ का ये पूरा दरबार 9 दिन तक यूं ही सजा रहेगा और हर दिन शाम की आरती और उसके साथ ही साथ गरबा यहाँ पर खेला जाता है।
0: वडोदरा गायकवाड़ परिवार ने विदेशी अतिथियों का स्वागत किया और देश की संस्कृति से रूबरू कराया।
1: आज यहाँ पे बहुत सारे विदेशी डेलीगेट्स भी हैं जो यहाँ पर इसका हिस्सा बन रहे हैं। कितने गर्व की बात है वडोदरा के लिए, आपके लिए, राजघराने के लिए।
2: बहुत ही गर्व की बात है कि विश्व भर से लोग इतने इम्पोर्टेंट डेलीगेट्स बड़ौदा आए हैं। एज अ बड़ौदियन आई फील वेरी प्राउड, एंड कि कल वो उन्होंने पैलेस देखा और आज वो हमारे गरबा में आए, तो आई एम वेरी हैप्पी।
1: मेहमान नवाजी करके अच्छा लग रहा
2: है। सॉरी आई कांट हियर यू।
1: मेहमान नवाजी करके अच्छा लग रहा है।
2: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा।
1: एक संदेश जो यहाँ से रानी साहिबा पूरे देश को देंगी नवरात्र का।
2: मैं नवरात्रि के पर्वोत्सव पे सबको खूब खूब बधाई देती हूँ, एंड यही आशा करती हूँ, माँ से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा देश जुड़ा रहे और वी गेट स्ट्रॉन्गर।
0: गरबा देवी दुर्गा की आराधना के साथ साथ भारतीय संस्कृति को सजोने का एक उत्सव भी है, जो लंबे समय से भारतीय परंपरा का हिस्सा रही है। और संस्कृति की यही भव्यता लक्ष्मी विलास पैलेस की समृद्ध विरासत के साथ भारतीय को एक अलग पहचान दिलाती है। वडोदरा से नवजोत रंधावा, गुड न्यूज शुरू।
3: तो शहर दर शहर गरबा पंडाल की रौनक देखने लायक है। हर पंडाल में महाशक्ति के महाउत्सव का जय घोष है। गुजरात के राजकोट के राजवी पैलेस में भी गरबा के अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं। राजघराने के इस आंगन में पिछले कई साल से तलवार राज गरबा का आयोजन होता रहा है और हर साल बड़ी संख्या में क्षत्रिय युवतियां हिस्सा इसमें लेती हैं। राजवी पैलेस के इस गरबा रास में रंग बिरंगी चोली चनिया पहनकर सजी धजी महिलाएं और लड़कियां मां दुर्गे की स्तुति करती हैं और इस बीच हाथों में चमचमाती तलवार लेकर गरबा की थाप पर थिरकती हैं, जैसे आसमान में चमकती हुई कोई बिजली हो।

देखिए राजकोट के राजवी पैलेस में पारंपरिक गरबा का रंग हर साल कुछ अलग ही नजर आता है। यहाँ पर गरबा केवल नृत्य नहीं बल्कि संस्कृति, परंपरा, सामूहिक उत्साह की अभिव्यक्ति बन जाता है। पारंपरिक परिधानों में सजी क्षत्रियाणियां जब गरबा की ताल पर कदम मिलाती हैं, तो पूरा माहौल उत्सवमय हो उठता है। इस आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है क्षत्रियाणियों का पारंपरिक तलवार रास। हाथों में तलवार लेकर लयबद्ध तरीके से रास प्रस्तुत करती युवतियां अपने कौशल, एकाग्रता और आपसी तालमेल का प्रदर्शन करती हैं।

सलवार आज का सबसे रोमांचक पहलू तब देखने को मिलता है जब युवतियां टू व्हीलर और जीप पर सवार होकर स्टंट करते हुए तलवार रास प्रस्तुत करती हैं। उनके हैरतअंगेज करतब देखकर दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

राजीव पैलेस में गरबा रास के जरिए महिलाएं सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक कलाओं से जुड़ी रहती हैं। युवतियों के साहस और कौशल की ये झलक आयोजन को यादगार बना देती है।

0: अग्नि सेवा फाउंडेशन की महिलाएं ये कार्यक्रम करती हैं और पूरा संचालन महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसकी पूरी व्यवस्था महिलाएं करती हैं, ट्रेनिंग महिलाएं देती हैं।
1: हम यहाँ गणेश चतुर्थी से लेकर यानी कि एक डेढ़ महीने से हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये हमारी राजपूती कल्चर है, जो राजपूती संस्कृति है उनको प्रदर्शित करता है। राजपूती संस्कार जो हमारी दिकरियों में होते हैं उनको यह दर्शाता है, शौर्य, वीरता और जो जो इतिहास में गाथाएं लिखी गई है उसको बखूबी यहाँ पे प्रस्तुत करता है।
2: 12 साल की बच्ची से लेके 60 साल की दादी माँ या नानी माम जिसे कह सकते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और साथ में 200 जितनी सन्नारियाँ हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो अभी हम यहाँ प्राचीन रस और तलवार रस विविध प्रकार के रजू करने वाली है।
3: तो नवरात्र पर झांसी में भी भक्ति और उत्साह का रंग चढ़ने लगा है। माँ दुर्गा की आराधना के बीच शहर में गरबा और डांडिया की धूम भी शुरू हो गई है। रंग बिरंगी रोशनी, पारंपरिक परिधान, माता रानी के भजन और डांडिया की खनक के बीच पूरा माहौल भक्तिमय और उत्सवमय नजर आया। आयोजन में करीब 1000 महिला पुरुषों ने उत्साह के साथ भाग लिया। किसी के कदम गरबा की लय पर थिरकते नजर आए तो किसी ने डांडिया खेलकर नवरात्रि के उल्लास को साझा किया। छोटी छोटी बच्चियों की आरती के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद माता रानी के जयकारों और भजन के बीच देर तक नृत्य और उत्सव का सिलसिला चलता रहा।
4: माता रानी को मनाने के लिए गरबा डांडिया किया। आप देख सकते हैं झांसी की महिलाएं बहुत उत्साह से देवी जी को मना रही हैं।
5: आज का डांडिया बहुत अच्छा लगा, बहुत मस्ती की, बहुत आनंद आया। एक बहुत मौका मिलता है नवरात्रि में आने के लिए, एक डांस करूं, एक बहुत मस्ती करूं। ये चाहती हूं हर महिला शक्ति नारी को यही आगे करने चाहिए।
6: आज इंजॉय तो बहुत किया, साथ में माता रानी के गानों पर भजनों पर हम लोगों ने बड़े जयकारे लगाए और सनातन को प्रमोट करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ कि हमारे जो संस्कृति है, सनातन है, वो कहीं पीछे ना छूटे। चूँकि नृत्य की बात है तो डांडिया तो हमेशा से बहुत ही मनमोहक सभी महिलाओं के लिए रहा है।
7: वक्तों के एक छोटे से ब्रेक का आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी शक्ति और उत्सव के रंग जारी है।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
7: महाराष्ट्र के अमरावती में नवरात्रि के दौरान गोंधली समाज के कलाकार गोंधल के जरिए मां की आराधना करते हैं। इनके लिए जागरण में एक ऐसी सांकेतिक कला भी देखने को मिलती है जो लोगों को हैरान कर देती है। हाथों और आंखों के इशारों से संदेश पहुंचाने की इस परंपरा को कर पल्लवी और नेत्र पल्लवी कहा जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर ये इशारे कैसे काम करते हैं, क्या सदियों पुरानी इस कला को आज के डिजिटल

0: महाराष्ट्र के अमरावती में नवरात्रि के दौरान मां अंबा माता और एक वीरा माता के दरबार में गोधली समाज के कलाकार गोधल की परंपरा निभा रहे हैं। गोधल यानी देवी की महिमा का गुणगान, पारंपरिक गीत और संगीत के जरिए मां की आराधना। लेकिन इस जागरण में सिर्फ भक्ति और संगीत ही नहीं है, यहाँ एक ऐसी कला भी है जिसमें कलाकार हाथों और आंखों के इशारों से एक दूसरे तक संदेश पहुँचाते हैं।
1: ये जो व्यक्ति है ये अभी किसी का नाम पूछेंगे और वो नाम जो है अपने कर पल्लवी से उन्हें कहेंगे और वो बराबर आप नाम पूछिए, इनका नाम पूछिए।
2: सारिका।
1: देखिए नाम बोला है, अभी ये उंगली से इशारा करेंगे, मानो ये कर पल्लवी जो है वो ऐसे, ये शिवकालीन भाषा है। देखिए सारिका ताई पहले ही कहा था, सारिका ताई का नाम इन्होंने सही तरीके से लिया है।
0: ना मोबाइल ना मैसेज ना कोई सीधी बातचीत, पर फिर भी संदेश देने में यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं। ये हैरान करता है, पर ये कला यहाँ की परंपरा का हिस्सा है। गोधली समाज में इसे कर पल्लवी और नेत्र पल्लवी के नाम से जाना जाता है। कर पल्लवी में हाथों और उंगलियों के इशारों से संदेश दिए जाते हैं, नेत्र पल्लवी में आंखों के इशारों से ही सामने वाले को अपनी बात समझा दी जाती है। गोधली समाज के कुछ कलाकार इस कला को छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज काल से भी जोड़ते हैं।
3: कितने समझो गढ़ के ऊपर समझो 10,000 दुश्मन है, तो महाराज को आके बताने का, खबर बताने का कि वहाँ 10,000 दुश्मन है, तो उस टाइप से फिर महाराज अपनी रणनीति बनाते थे और उस टाइप का फिर हमला करते थे। उस सब खबर हमारे लोग गोधली लोग लाते थे और महाराज के दरबार में बताते थे।
0: अब मोबाइल इंटरनेट और एआई के दौर में बड़ी हो रही युवा पीढ़ी के लिए ये कला किसी अनोखे अनुभव से कम नहीं। माँ के दरबार में आए श्रद्धालुओं के लिए ये अनुभव भक्ति के साथ कुछ नया जानने का भी मौका है। खासकर युवाओं के लिए ये अपनी परंपरा को करीब से देखने और उसके बारे में सवाल पूछने का अवसर है।
4: ये आजकल जो हमारी पीढ़ी है जेन ज़ी पीढ़ी, ये इन सब चीजों के बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है, तो इधर आके हमें ये नया चीज पता चला है। तो मतलब जो चीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है हमारे इंडियन कल्चर से, वो हमें जानने को मिला है, तो बहुत खुशी हो रही है इस चीज की। और बहुत अच्छी फन लैंग्वेज है, जैसे हम अपने नाम बताते हैं वो गेस करता है, तो थोड़ा बहुत जेन ज़ी से भी लिंक है, बट अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है।
0: गोधली समाज के कलाकार चाहते हैं कि उनकी इस परंपरा को पहचान मिले, इसके संकेतों, इतिहास और इसे सीखने के तरीकों को दर्ज किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस कला को जान सके। क्योंकि विरासत सिर्फ पुरानी चीजों का नाम नहीं है, विरासत वो ज्ञान भी है जिसे एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाती है। अमरावती से धनंजय सावले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: इसके साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना।
6: बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
8: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में तमाशा अनलिमिटेड। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम

0: सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
7: शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन माता रानी के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की हो रही आराधना, देशभर के मंदिरों में भक्तों की कतार। शक्ति उत्सव के रंग में रंगा झांसी, पारंपरिक परिधानों में लोगों ने खेला गरबा और डांडिया, माता रानी के भजनों पर झूमे लोग। गुजरात के सूरत में दिखी अनोखी भक्ति, बाइकर्स ने 75 मोटरसाइकिल से बनाई मां दुर्गा की विशाल आकृति, समंदर किनारे दिखा भव्य नजारा। दुर्गा पूजा के साथ प्रयागराज में रामलीला मंचन की भी रौनक, हनुमान अंश फेम एक्टर गौतम त्रिपाठी निभा रहे हैं भगवान विष्णु का किरदार। तिरुवाला मंदिर पहुंचे विजय रश्मिका, विधि विधान से दर्शन पूजन किए, फिल्म रणबाली की कामयाबी की कामना की।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
7: आज नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की हो रही है पूजा, देशभर के मंदिरों में सुबह से उमड़ा आस्था का सैलाब। माँ चंद्रघंटा की पूजा से अहंकार से मिलती है मुक्ति और सौभाग्य की होती है प्राप्ति, माँ चंद्रघंटा की आराधना से बढ़ता है साहस और आत्मविश्वास, मंगल ग्रह की बाधाएं होती हैं दूर। 10 भुजाओं वाली माँ चंद्रघंटा सिंह की करती है सवारी, लाल वस्त्र लाल पीले फूल और मंत्र जप से माँ चंद्रघंटा की पूजा बनती है सफल और फलदायी। मंत्रों का जाप और घी का दीपक जलाकर करनी चाहिए मां चंद्रघंटा की उपासना, मां चंद्रघंटा की भक्ति से व्यक्ति बनता है पराक्रमी और निर्भय। माँ चंद्रघंटा का रूप शांति साहस और कल्याण का माना जाता है प्रतीक। सौम्य स्वरूप शांति और सुख करती है प्रदान। दिल्ली के झंडेबालन मंदिर में नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का भव्य तरीके से किया गया श्रृंगार। माँ चंद्रघंटा की उतारी गई आरती, आरती में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। श्रद्धालुओं ने जमकर लगाए जय माता दी के जयकारे, भक्तों ने पूजा कर लिया मां का आशीर्वाद। दिल्ली के छतरपुर में नवरात्र को लेकर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने की मां की पूजा। सुबह से छतरपुर मंदिर में लगी भक्तों की भीड़, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। हरिद्वार के मां चंडी देवी मंदिर में भक्तों ने की मां चंद्रघंटा की पूजा, भगवान का आशीर्वाद लिया। तीसरे दिन मां के दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतारें, भक्तों ने जमकर लगाए जय माता दी के जयकारे। अंबाला में नवरात्रि पर मां काली की विशेष पूजा, दुख भंजनी मंदिर में तीसरे दिन करीब 300 लीटर दूध से कराया गया माता रानी का अभिषेक। मां काली की भक्ति में डूबा अंबाला का दुख भंजनी मंदिर, दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। हावेरी में शारदीय नवरात्र पर फूलों से सजा नवदुर्गा मंदिर, गर्भगृह में 9 रूपों की होती है पूजा। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में नवरात्र के तीसरे दिन उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए मां के दर्शन। सुबह से भक्तों की लंबी लंबी कतारें, भक्तों ने जमकर लगाए जय माता दी के जयकारे। जयपुर के मां वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़, लाल साड़ी और फूलों से सजे मां के दरबार। तीसरे दिन मां को पूड़ी और हलवे का लगाया गया भोग, भक्तों ने पूजा कर लिया मां का आशीर्वाद। कोटा के वीर बालाजी धाम की अनोखी कहानी, मंदिर में तालाब से प्रकट हुई थी बालाजी की मूर्तियां, दूर दराज से अर्जी लगाने पहुंच रहे श्रद्धालु। सूरत में मां दुर्गा की भक्ति का अनोखा अंदाज, 75 प्रीमियम मोटरसाइकिल से तैयार की गई मां आदिशक्ति की विशाल आकृति। 10 दिनों की तैयारी के बाद 75 प्रीमियम बाइक से बनाई गई मां आदिशक्ति की आकृति, ड्रोन कैमरे से कैद हुई इस अनोखी प्रतिमा ने खींचा लोगों का ध्यान। अमेरिका के न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर दुर्गा उत्सव की धूम, फादर डफी स्क्वायर पर 2 दिवसीय आयोजन में उमड़े प्रवासी बंगाली। पूजा पाठ महालय की रस्में, संगीत और नृत्य ने बांधा समा, बंगाली गीत डांस और दश महाविद्या डांस ड्रामा ने दर्शकों का मन मोहा, अलग अलग समुदाय के लोगों ने भी हिस्सा लिया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में भारतीय संस्कृति का रंग, दूसरे दुर्गा उत्सव में बच्चे और युवाओं ने दी शानदार प्रस्तुतियां। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में अनोखा दुर्गा पूजा पंडाल बना आकर्षण का केंद्र, नेवारी गुड़गांव में 117 देवी देवताओं की झलक ने श्रद्धालुओं का मन मोहा। कवर्धा के नेवारी गुड़गांव में दुर्गा पूजा के लिए भव्य पंडाल सजाया गया, मां के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से श्रीरंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर में नवरात्रि उत्सव की शुरुआत, देवी रंगनायकी की पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हजारों श्रद्धालु। नवरात्रि के रंग में रंगा तमिलनाडु का प्रसिद्ध श्रीरंगम मंदिर, मंदिर में पूजा अर्चना के साथ भक्तों ने लिया मां का आशीर्वाद। कोलकाता के एलन पार्क में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने संथाली संघ दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया, मां के दर्शन किए। पश्चिम बंगाल के नदिया में कमलपुर अभियान संघ की दुर्गा पूजा बनी आकर्षण का केंद्र। पंडाल में 117 मूर्तियों की अनोखी झलक देखने पहुंच रहे हैं लोग। नदिया में दुर्गा पूजा के साथ सेवा और सहयोग की भी मिसाल। करीब 4000 महिलाओं को वस्त्र वितरित किए गए। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दशहरा और नवरात्रि समारोह की शुरुआत। मशहूर संगीत निर्देशक हमसलेखा ने किया उत्सव का उद्घाटन। उत्सव के जरिए भारतीय संस्कृति और परंपराओं की झलक पे ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरके लोग। तमिलनाडु के ऊटी में नवरात्रि की अनोखी छठा। ब्रह्म कुमारी संस्था ने अपनी 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गोलू प्रदर्शनी का किया आयोजन। अमरावती के अंबा माता और एकवीरा माता मंदिर में नवरात्रि के दौरान गोंधल की धूम। गोंधल यानी जागर के जरिए मां जगदम्बे की होती आराधना। गोंधल को कर पल्लवी और नेत्र पल्लवी के नाम से भी जाना जाता है। युवा पीढ़ी को भी इस कला से जोड़ने का हो रहा है प्रयास। महाराष्ट्र की लोक संस्कृति में गोंधल का है विशेष स्थान। कलाकार कला के माध्यम से देवी की महिमा का करते हैं गुणगान। पूजा पर मां उग्रतारा धाम में लगा भक्तों का तांता। यहां मां की अष्टधातु से बनी प्रतिमा की होती है उपासना। मंदिर परिसर में साधना कक्ष में बच्चे जवान और बुजुर्ग सभी साधना और दुर्गा पाठ करने में है लीन। ये बच्चे 24 घंटे करते हैं दुर्गा पाठ। नवरात्र और दुर्गा पूजा को लेकर लखनऊ पुलिस अलर्ट। भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिला पुलिस, मोबाइल पुलिस और अतिरिक्त बल की तैनाती। मुंगेर के कलाकार की अनूठी भक्ति। 3 सेंटीमीटर के पीपल के पत्ते पर उकेरा नारी शक्ति का स्वरूप। आधुनिक गरबा के दौर में जामनगर में अंगारों पर नंगे पैर रास और मशाल रास बना आकर्षण का केंद्र। काठियावाड़ी पारंपरिक वेशभूषा में युवक अलग अलग प्रकार के रास करते हैं प्रस्तुत। हैरान कर देता है अंगारा रास। जलते अंगारों पर चलते हैं युवक। इन रोमांचक प्रस्तुतियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ते हैं लोग। 80 वर्ष पुरानी है ये परंपरा। गुजरात के खेड़ा में नवरात्र के तीसरे दिन मां अंबा की विशेष आरती। पारंपरिक मणिपुरी वेशभूषा में सजी बेटियों ने की शानदार प्रस्तुति। नवरात्र उत्सव पर एनआरआई परिवार 10 दिनों तक गांव में रहकर करते हैं मां अंबा की आराधना। पारंपरिक गुजराती गरबे में होते हैं शामिल। सलूड़ गांव की बेटियों ने मणिपुरी वेशभूषा में दिखाई मां अंबा की आरती कर भारतीय संस्कृति की विविधता। बेटियों ने दिखाई संस्कृति की झलक। मां अंबा की आरती के लिए बेटियों ने कई सप्ताह तक किया अभ्यास। मणिपुरी परिधान और भक्ति से सजी इस प्रस्तुति ने नवरात्रि उत्सव को खास बनाया। बेटियों ने युवाओं से सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की अपील की। कहा आधुनिक पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करना चाहिए। प्रयागराज की रामलीला में अभिनेता गौतम त्रिपाठी निभा रहे हैं भगवान विष्णु की भूमिका। श्रवण कुमार का भी निभा चुके हैं किरदार। प्रयागराज के गौतम त्रिपाठी ने फिल्म हनुमान अंश में बाबा नीम करौली के भक्त राधे श्याम की भूमिका निभाई थी। करीब 15 मिनट के इस किरदार में उनके अभिनय को मिली खास पहचान। झांसी में नवरात्र पर सीजन का पहला गरबा डांडिया कार्यक्रम आयोजित। करीब 1000 महिला पुरुषों ने पारंपरिक परिधानों में किया गरबा और डांडिया। छोटी छोटी बच्चियों की आरती के साथ कार्यक्रम की शुरुआत। कई अन्य कार्यक्रम का भी आयोजन। प्रतिभागियों ने भक्ति संगीत और नृत्य से बांधा समा। भक्ति गीतों पर जमकर झूमे लोग। गुजरात के राजकोट में नवरात्र के दौरान क्षत्रिय राजपूत महिलाओं का अनोखा अंदाज। राजवी पैलेस में महिलाओं ने पारंपरिक तलवार रास पर दिखाया शौर्य। राजवी पैलेस में क्षत्रिय राजपूत महिलाओं ने तलवार राज से बाधा समा, बाइक और जीप चलाते हुए तलवारबाजी के हुनर का भी प्रदर्शन किया। नवरात्रि में गुजरात के राजकोट में परंपरा और वीरता का संगम, राजवी पैलेस में राजपूत महिलाओं ने तलवारबाजी के हुनर से लोगों का ध्यान खींचा। गुजरात के जामनगर जिला क्षेत्र में नवरात्रि की धूम, जेल की चार दीवारी के भीतर कैदियों ने माता रानी की आराधना के साथ खेला रास गरबा। नवरात्रि के रंग में रंगा जामनगर जिला जेल परिसर, कैदियों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन। आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए अच्छी खबर, आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार को लेकर जताया भरोसा। भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर आईएमएफ का बड़ा अनुमान, साल 2026 और 2027 में 7% की रफ्तार से बढ़ सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था। त्योहारों में मिठाई खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से मिठाइयों पर यूज बाय डेट लिखना होगा अनिवार्य। यूपी सरकार का मिलावट रोकने और ग्राहकों की सेहत सुरक्षित रखने पर जोर, 15 अक्टूबर से मिठाई की दुकानों पर उपयोग की अंतिम तारीख बताना जरूरी। यूपी में मिठाई की गुणवत्ता पर निगरानी होगी और सख्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने दुकानदारों की जवाबदेही तय की। तमिलनाडु के रामेश्वरम में हॉकी का रोमांच, पहली बार राज्य स्तरीय 7A-side हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन। मुकाबले को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह, खिलाड़ियों ने मैदान पर दिखा दमखम। पुंछ में थ्रोबॉल टूर्नामेंट का भव्य संपन्न, 9 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया। गया में CUSB के 5वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने 61 छात्राओं को किया सम्मानित, 1662 छात्राओं को दी डिग्रियां। बस्ती पहुंचा 308 पहिए वाला बाहुबली ट्रक, दीदार के लिए सड़क पर उमड़ी भीड़। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस ने सुरक्षा तैयारियों के लिए मॉकड्रिल की, जवानों ने सुरक्षा को परखा। पुलवामा पुलिस ने किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए मॉकड्रिल की, सुरक्षा टीमों के बीच बेहतर समन्वय और त्वरित कार्रवाई की तैयारियों पर जोर दिया। लोगों से अभ्यासों के दौरान सहयोग करने और आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की, शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए किया अभ्यास। अजमेर में महाराज अग्रसेन की जयंती पर भजन कीर्तन का आयोजन, भक्ति गीतों पर जमकर थिरके लोग। हैदराबाद में पिता और बेटी के लिए देवदूत बनी आरपीएफ कांस्टेबल रीना कुमारी, ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री का पैर फिसला, जवान ने बचाई जान।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
8: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में तमाशा अनलिमिटेड। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन, माता रानी के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की हो रही आराधना, देश भर के मंदिरों में भक्तों की कतार। शक्ति उत्सव के रंग में रंगा झांसी, पारंपरिक परिधानों में लोगों ने खेला गरबा और डांडिया, माता रानी के भजन पर झूमे लोग। गुजरात के सूरत में दिखी अनोखी भक्ति, बाइकर्स ने 75 मोटरसाइकिल से बनाई मां दुर्गा की विशाल आकृति, समंदर किनारे दिखा भव्य नजारा। दुर्गा पूजा के साथ प्रयागराज में रामलीला मंचन की भी रौनक, हनुमान अंश फेम एक्टर गौतम त्रिपाठी निभा रहे हैं भगवान विष्णु का किरदार। तिरुमाला मंदिर पहुंचे विजय रश्मिका, विधि विधान से किए दर्शन पूजन, फिल्म रणबाली की कामयाबी की कामना की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी।
4: हेलो दोस्तों, मैं हूं रिंकी भाभी और आप देख रहे हैं सास बहू और बेटियां, जहां आपको मिलता है सीरियल, ओटीटी और एंटरटेनमेंट की दुनिया का हर मसाला। तो चलिए शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ।
5: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, राध्या बनाएगी प्रथम और अंतरा की जोड़ी, फिल्मों का अंतरा का हाई वोल्टेज ड्रामा। हमारी भाभी नंबर वन में देवर लक्ष्य पर आएगी मुसीबत, भाभी बंसरी बनेगी रक्षक। के शक के दायरे में आएंगे घर वाले, होगा नया ड्रामा। आरती और गंगा की होगी शादी, घर वालों को होगा दुल्हनिया आरती का इंतजार।

और भावुक यानी नीलू वाघेला और पूजा सिंह संग मनाएंगे नवरात्रि का त्योहार, देखेंगे इनका मेकओवर सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: सीरियल हमारी भाभी नंबर वन में फंस गया है लक्ष्य, और उसे फंसाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी मुस्कान ही है। लेकिन अपने देवर लक्ष्य को बचाने के लिए पहुंच गई है बंसरी भाभी। तो आइए देखते हैं सीरियल में क्या तमाशा हो रहा है।
1: मुस्कान की नई चाल। गिरफ्तार हुआ लक्ष्य। बंसरी भाभी बनकर आई रक्षक। दंगल टीवी के सीरियल हमारी भाभी नंबर वन में आज फिर एक बार मुस्कान ने चल दी है चाल, और देखिए कैसे डोमेस्टिक वायलेंस के केस में लक्ष्य को फंसा रही है। भाई पुलिस स्टेशन में भी मुस्कान का ड्रामा जारी है। देखिए कैसे खुद को ही चोट पहुंचाकर सारा इल्जाम लक्ष्य पर लगा रही है, और ऐसे में मुस्कान का साथ उसके मम्मी पापा भी दे रहे हैं। भाई मुस्कान को बस पैसे चाहिए, जिसके लिए उसने ये सारी नौटंकी की है। बेचारा लक्ष्य कहता रह गया कि उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक सुनने को तैयार नहीं, और ऐसे में पुलिस की गिरफ्त में है लक्ष्य। भाई मियां बीवी में दूरियां तो आ गई है, लेकिन साथ ही साथ लक्ष्य को पता चल गया है कि मुस्कान कितनी झूठी है।
2: डोमेस्टिक पॉलिसी केस में अंदर जाओ।

0: खुद को ही मारना, खुद के ही कपड़े फाड़ना, और फिर वो उसका मोटिव ही ये था कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सके. और उसने कई प्लान्स किए, कई बार वो फेल भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी है. अभी भी उसने यही पुलिस स्टेशन में भी पूरा वही ड्रामा किया है कि अपने आप को उसने ये मारा है, ये चोट उसने खुद को दी है, और उसने ये डाल दिया है कि देखो ये ऐसा करता है. समवेयर शी प्रवोक्स लक्ष्य कि उसने ही मुझे मारा है, ये सब बोलकर, और वो प्रूव भी कर देती है. तब तक फिर बंसरी आ जाती है बचाने एज यूजुअल.
1: लेकिन लक्ष्य को बचाने के लिए उसकी बंसरी भाभी आ गई है, और देखिए कैसे बंसरी ने मुस्कान और उसके परिवार वालों को पैसे ऑफर किए, और पैसे की ये अटैची लेकर मुस्कान और उसके मम्मी पापा काफी खुश हो गए, क्योंकि उनका मकसद जो पूरा हो गया. लेकिन बंसरी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, वो पूरा प्लान करके आई है मुस्कान का खुलासा करने के लिए. इसीलिए जैसे ही ये लोग पैसे लेकर जा रहे होते हैं कि वहाँ पर महिला मंडल आ जाती है, जो इन सभी को खरी खोटी सुनाने लगती है, क्योंकि मुस्कान के काले इरादे सबके सामने जो आ गए हैं. ऐसे में देखिए कैसे मुस्कान और उसके मम्मी पापा को इस महिला मंडल ने घेर लिया है. भाई बंसरी को पैसे भी वापस मिल गए और मुस्कान का खुलासा भी हो गया. ऐसे में देखिए कैसे अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहते हैं मुस्कान और उसके मम्मी पापा.

0: बंसरी ने अपने देवर लक्ष्य को तो बचाया ही, साथ ही साथ मुस्कान का भी खुलासा कर दिया है और अब बंसरी सही साबित हो चुकी है।
1: फाइनली रिविलेशन होने जा रहा है, मुस्कान का सच बाहर आने वाला है सबके सामने। और फिलहाल तो कामिनी जी और सुरेश जी को कालिक पोती जा रही है इस सीन में, इसको तो मैं बचा लेती हूँ कुछ बोल के बट हाँ वही है, रिविलेशन सीन है जहाँ मुस्कान का सच सबके सामने आ जाता है और फाइनली सबको पता चलता है कि बंसरी सही बोल रही थी। अब तक पता है प्रोमो के लॉन्च वाले दिन ही बोला था कि बंसरी जो है ना वो स्ट्रीट स्मार्ट है, वो बहुत स्मार्ट है, उसको सब पता रहता है कि कब कहाँ कौन सा मूव करना है, वो बेवकूफ नहीं है, वो डम नहीं है, वो कम पढ़ी लिखी है बट स्मार्ट है वो बहुत ज़्यादा, और उसको इसके मूव के बारे में पहले से ही पता चल चुका था। तो उसने इससे और एक कदम आगे वाली कोशिश की, प्लान चुना जो इसको भनक नहीं पड़ी और जिसकी वजह से इसका प्लान सबके सामने आ गया।
2: कहीं ना कहीं इवन मुस्कान ने भी ये चीज़ बोली थी बंसरी के बारे में कि वो कोई साधारण हाउसवाइफ नहीं है, शी इज़ वेरी स्मार्ट, वो सब ऑब्जर्व करती है, सब पता है। और ये कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है डे वन पे उसने देख लिया था।
0: भाई मुस्कान लौट कर जरूर आएगी, लेकिन अब देखना होगा कि क्या वो सुधर कर आएगी या फिर कोई नई चाल के साथ आएगी।
3: आप ऐसे हमें हारने नहीं दे सकती, आपको अपना पर्चा दिखाना होगा।
4: तू मुझे बुला रही थी ना, मैं आ गई।
0: भाई सीन में तो ढेर सारे हंगामे देखने को मिले, लेकिन बिहाइंड द सीन देखिए कैसे ये कलाकार कर रहे हैं सेट पर मस्ती।

0: हेलो जी। ओ जी, अगर ये दोनों दोस्ती कर सकते हैं तो हम दोनों क्यों नहीं
1: दोस्ती।
0: हाँ जी, ओ सिर्फ दोस्ती शोस्ती करना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो नू?
1: अच्छा,
0: आहो फ्रेंड जी। अजी कर लो चित
1: फ्रेंड्स।
0: ओके जी, ओके। ओ जी, ओ बाऊजी शाऊजी नहीं दिखाई दे रहे, कुछ खाना शाना?
1: बाऊजी तो मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: सीरियल बरेली के बच्चन में गंगा और आरती की शादी होने वाली है और ऐसे में शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, लेकिन घर वाले कर रहे हैं आरती का इंतजार। तो आइए देखते हैं इस शादी में कौन सा नया ट्विस्ट आया है।
3: गंगा की शादी की खुशियां। भाग कर आएगी गंगा की दुल्हनिया। बढ़ेगी परेशानी कृष्णा और संगम की। कलर्स के सीरियल बरेली के बच्चन में कृष्णा के बड़े भाई गंगा की शादी होने वाली है आरती से। ऐसे में देखिए कैसे कृष्णा अपनी बीवी संगम और भाइयों के साथ पहुंच गए हैं मंदिर अपने भाई का ब्याह रचवाने के लिए। और देखिए सभी बेहद खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन संगम वो बेहद परेशान हो रही है क्योंकि वो बार बार आरती को कॉल लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आरती है कि कॉल उठा ही नहीं रही। इसी बीच कृष्णा संगम से उसकी परेशानी जानने की कोशिश करता है। ऐसे में संगम बताती है कि आरती कॉल नहीं उठा रही। इसी बीच उनकी बातें सुन लेता है सत्तू और देखिए कैसे पहुंच जाता है सारी जानकारी लेने के लिए।
4: बात हुई, निकल गई वो। यही पे खड़े हैं ना सब, वही तो दिए ना सबको, इतना परेशान काहे हो रहे हो? दूरबीन वाली आंखें हैं क्या यहाँ पे किसी की कि दूर से आई दिख जाए? जाओ भैया के साथ बैठो, उनको हिम्मत बढ़ाओ।
5: गर्म गए हो,
4: बात नहीं कर रहा तुम कहाँ कुछ छुपा है? हमारे चेहरे पे साफ साफ सच दिखा, पढ़ना चाहो पढ़।
5: सच हमारे चेहरे पे? सारी समस्या यही है ना कि तुम्हारे चेहरे पे सच के अलावा बाकी सब कुछ होता है।
3: इससे पहले कि कृष्णा और सत्तू के बीच बहसबाजी बढ़ती, आरती का कॉल आ जाता है। ऐसे में संगम आरती का कॉल उठाती है लेकिन लाउडस्पीकर पर रख देती है और तो और आरती को सलाह भी देती है कि सारी चीजें अच्छे से रख ले। बस फिर क्या, ये सुनकर संगम और कृष्णा दोनों ही बहुत खुश हैं और पहुंच जाते हैं गंगा के पास, जो कि सज धज कर दूल्हे बनकर पेड़ के नीचे बैठे हैं और कर रहे हैं आरती का इंतजार। आरती आने वाली है ये बात बताने के लिए संगम और कृष्णा पहुंच जाते हैं अपने भाई के पास। तो वहीं दूसरी ओर आरती तैयारी कर रही है घर से भागने की, और तो और वो भी इंतजार कर रही है कि कब उसके मम्मी पापा घर से बाहर जाएं और कब वो अपना सारा सामान पैक कर ले। और होता भी वही है, अगले ही पल आरती को मौका मिल जाता है। बस फिर क्या, संगम के कहे अनुसार वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सारा सामान एक बैग में भरकर वहां से भाग निकलती है।

0: खैर आरती भाग तो निकली है, लेकिन यहाँ पर अब भी सभी इंतजार कर रहे हैं और पंडित बार बार आकर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुहूर्त निकला जा रहा है। बस फिर क्या, ऐसे में सत्तू जो कि हमेशा नेगेटिव ही बोलता है, वो फिर से शुरू कर देता है आरती के खिलाफ बोलना और ये बात कृष्णा को त्रास नहीं आती।
1: आरती आएगी, भैया की शादी होगी,
2: तो बहुत ज़्यादा आरती आएगी। बिना बेफालतू की उम्मीदें लेकिन ना बैठो,
1: बात ऐसी है सब कुछ, उम्मीद पे ना दुनिया कायम है। तुम जानते हो ना, दिन में एक बार सरस्वती जुबान को बैठती है, जो बोलते हैं वही होता है। तो अच्छा बोलो या मत बोलो, तो मत बोलो।
2: हम भी चाहते हैं गंगा भैया की शादी हो और आरती आए
1: बस,
2: लेकिन उसके परिवार वालों की जैसी हरकतें हैं ना, हमें पक्का उम्मीद है कि वो नहीं आएगी।
1: वो फिर बोला नहीं आएगी,
3: पर अच्छा तो सोचो ना थोड़ा, क्या बोलते हैं, मैनिफेस्ट करो। अच्छा तो अच्छा ही होगा ना, देखो भाभी को उन्होंने किया तो हम लोग यहाँ तो है।
2: आलतू फालतू बातें करो मत, अपने दिमाग से काम लो, फर्जी बातों पर विश्वास मत करो।
1: सुनो तुम ना एकदम साइलेंट हो, जब बोलते हो कूड़ा ही बोलते हो, बेकार की बातें कर रहे
2: हो। बोलते हो कम से कम सही बोलते हैं।
1: अरे सही क्या होता है, यहाँ पे सब परेशान है, तुम ऊपर से करो नहीं है।
2: तो तुम चुप, तो हमें मत बताओ ठीक है।
1: अरे ज्यादा बोल रहे हो,
2: काहे ज्यादा बोल रहे हो,
1: कैसी बात कर रहे हो,
2: इतना नहीं होता तो बात मत किया करो।
4: बस कीजिए, मंदिर आपको विश्वास करिए, बस कीजिए।
0: भाई संगम तो हमेशा रेडी रहती है सभी भाइयों के बीच सुलह करवाने में, फिलहाल तो सबकी टेंशन बढ़ती जा रही है क्योंकि आरती अभी तक आई नहीं है। ऐसे में गंगा भी पहुंच जाता है मंडप में बैठने के लिए, लेकिन देखना होगा अब आरती आ पाएगी या नहीं।
5: भैया होने वाली शादी की बधाई हो।
6: भैया आरती से बात कर ली हमने, आरती तैयार है।
0: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
7: आज हम और गंगा जी शादी के बंधन में बंध ही जाएंगे।
8: माधुरी दीक्षित के शो कौन बनेगा करोड़पति मराठी में हुआ फिल्म हम आपके हैं कौन का रियूनियन, जहां रेणुका शहाणे और प्रिया बेर्डे खास मेहमान बनकर पहुंची। तो देखिए हम आपके हैं कौन की इस तिकड़ी के खास नजारे।

फिर से जमा हुई हम आपके हैं कौन की लेडीज, पहचाना ही नहीं। ऑफ कोर्स ये हैं माधुरी दीक्षित, चुपनीति निशा और ये हैं उनकी भाभी पूजा यानी रेणुका शाहने। और इनके साथ ये कौन है, ये हैं प्रिया बेडे, जो आपको हम आपके कौन में माधुरी दीक्षित और सलमान के साथ नजर आई थी। माधुरी दीक्षित के रियलिटी शो कौन होनार करोड़पति यानी कौन बनेगा करोड़पति के मराठी संस्करण में, जिसकी माधुरी होस्ट है, में खास एपिसोड में हुआ हम आपके हैं कौन, जहां पर रेणुका शाहने मेहमान बनकर आई और साथ में प्रिया बेडे भी, और हम आपके कौन की पूरी टीम का हुआ रीयूनियन।

भाई इस मौके पर इन तीनों महाराष्ट्र लेडीज ने पहनी थी खास साड़ियाँ। भाई त्यौहार का मौका है और ये त्यौहार स्पेशल एपिसोड मुंबई में शूट हुआ, जहाँ पर ये हम आपके कौन का गेट टुगेदर देखने को मिला। 1994 में रिलीज हुई हम आपके कौन बॉलीवुड की इतिहास की सबसे आइकॉनिक फिल्म है और इन तीनों महाराष्ट्र लेडीज का कंट्रीब्यूशन इस फिल्म में बहुत खास था। आज इतने सालों बाद इस रियलिटी शो के सेट पर ये मिलन था बड़ा ही अनोखा, जिसके खास नजारे हम आपके लिए लेकर आए।

0: Bomba esse piorare porno.
1: म्यूजिक वीडियो इश्क तेरे दा का हुआ शानदार लॉन्च, जिसे डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है मोहित कपूर ने। इस म्यूजिक लॉन्च में नजर आए मिसेज इंडिया 2025 नमिता पांडे और मॉडल रोहित छाबड़ा। वहीं इस खास मौके पर मेहमान बनकर पहुंचे शिवम खजुरिया, लेखा प्रजापति, हेमा शर्मा, सोनिया बंसल और शिवानी चक्रवर्ती। तो आइए चलते हैं इस शानदार लॉन्च पर और देखते हैं इस इवेंट के खास नजारे।
2: बीती शाम मुंबई में हुआ म्यूजिक वीडियो इश्क तेरे दा का लॉन्च, जिसे डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है मोहित कपूर ने। वही इस गाने में लॉन्च हो रही हैं ग्लैम ऑन मिसेस इंडिया 2025 की फेम नमिता पांडे और उनके अपोजिट नजर आ रही हैं रोहित छाबड़ा। खास इवेंट को अटेंड किया कई सारे नामचीन चेहरों ने, जैसे कि अनुपमा फेम शिवम खजुरिया, शिवानी चक्रवर्ती, लेखा प्रजापति, हेमा शर्मा, सोनिया बंसल, चलती है माना ये सारी तेरी हाय हील्स की गलती है, मोहित मंगोत्रा, ये तो बता तू है कौन, वर्षा हेगड़े और कई और कलाकार। ऐसे में आइए आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं इस म्यूजिक वीडियो लॉन्च के सभी खास पल, सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में। भाई वैसे ये जोड़ी नमिता और रोहित की गाने इश्क तेरे दाव में लग रही है बेहद ही कमाल। वैसे आपको बता दें कि इस गाने को आप सुन सकते हैं रेड रिबन पर।

0: बहुत मेहनत करते हैं वो, और जैसा ऑडियंस का प्यार उन्हें मिलता है उनके बाकी गानों में भी, आई होप कि इश्क तेरे दा में भी मिले। और बहुत अच्छी जोड़ी लग रही है मुझे तो अभी, आई एम जस्ट वेटिंग टू सी द सॉन्ग। मैंने ना गाना देखा है ना गाना सुना है, सो आई वुंट बी द परफेक्ट पर्सन राइट नाउ टू रिव्यू इट, बट ऑफकोर्स आफ्टर द लॉन्च मैं शायद थोड़ा जल्दी आ गया हूँ, बट आफ्टर द लॉन्च ऑफकोर्स मैं अपना रिव्यू दूंगा। बट आई नो मोहित एज अ पर्सन एंड ही हैज़ वर्कड रियली हार्ड फॉर। मेरे शो के बारे में यही कहना चाहूँगा कि बस देखते रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।
1: सॉन्ग बहुत ही अच्छा है, थीम बेस्ड सॉन्ग है ये, सेकेंड सॉन्ग है मोहित सर के संग, एंड आई एम रियली कीपिंग माई फिंगर क्रॉस। सॉन्ग बहुत सुंदर है।
2: सबसे अच्छी बात है कि सॉन्ग हमारे दिन में लॉन्च हुआ है और 1.5 लाख व्यूज सभी क्रॉस कर गया है।
1: मोहित के लिए हमेशा हमेशा हमेशा इतना सारा लव, और उसके कोई भी ऐसा लॉन्च होता है, उसके सॉन्ग्स हो गया, उसका कोई भी वेंचर हो गया, उसमें आना मैंडेटरी है, क्योंकि हम उसके अभी के फ्रेंड्स नहीं है, बहुत पहले से फ्रेंड्स हैं, तो कहते हैं ना जो क्लोज होते हैं उनका आना सबसे ज़रूरी होता है।
3: सो हैप्पी एंड कंग्रेचुलेशन मोहित कपूर, यू नो एंड इश्क तेरे दा बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स लुकिंग अमेजिंग, बहुत ही अच्छी वाइब लग रही है। सो आई एम हैप्पी एंड आई एम ग्लैड दैट आई कुड मेक अ पार्ट ऑफ इट, एंड देखते हैं आज अंदर जाके।
4: मोहित सर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनके साथ मेरा खुद का गाना होना पेंडिंग है, आई होप जल्दी हम करेंगे, बट अभी मैं उनके एक अपकमिंग सॉन्ग है इश्क तेरा दा, बहुत अच्छा जो है इश्क मोहब्बत प्यार सभी को होता है, आपको भी हुआ होगा आई एम श्योर।
5: मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करते रहते हैं, आई होप आगे भी वो कुछ ना कुछ अच्छा करते रहेंगे।
6: तो भाई हम उम्मीद करेंगे कि ये गाना दर्शकों को जरूर पसंद आए। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।

0: टर्न से भरी होती है सीरियल्स की दुनिया, और किस सीरियल में आया है कौन सा ट्विस्ट, देखना होगा काफी मजेदार। चलते हैं सीरियल्स की दुनिया में।
1: महादेवन सन्स
2: बंधन के मुटियारा बनके।
3: कलर्स टीवी के सीरियल महादेवन सन्स में बयाज दुल्हन बन गई है रज्जी, तो वही सहरा सजा लिया है धीरज ने, और देखिए कैसे ये दोनों आज शादी के बंधन में बंध रहे हैं। भाई जिस दिन का इन दोनों को बेसब्री से इंतजार था, आज वो आ ही गया।

0: भाई रज्जू और धीरज ने सात फेरे तो ले लिए, लेकिन ये हकीकत नहीं बल्कि इनका ख्वाब है, क्योंकि इनकी जिंदगी में इतनी मुश्किलें चल रही हैं कि रज्जू को अब इस बात का शक हो रहा है कि उनकी शादी हो पाएगी या नहीं, क्योंकि देखिए कैसे पुलिस गोपाल को पकड़कर मॉर्चरी में ले आई है और वहां कर रही है मोंटी की लाश की तलाश। लेकिन सही समय पर वहां महादेव पहुंच जाते हैं और देखिए कैसे महादेव को देखकर सपना का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है।
1: काहे प्रताड़ित कर रहे हैं आप हमारी जान पहचान वालों को? आपके सामने विनती है, हाथ जोड़कर विनती है, आप हमें जेल में ठूस दीजिए, डाल दीजिए जेल में एक ही बार में।
2: महादेव,

0: सच बताएं हम आपको, हमारा हमारे परिवार का कुछ लेना देना नहीं है मॉन्टी के गायब होने से। कितनी बार कहें आपसे एक ही बात, आपके आगे विनती कर रहे हैं, बंद कीजिए हमें और हमारे जान पहचान वालों को मारना पीटना, कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ लेना देना नहीं है हमारा आपसे।
1: अच्छा तो तेरा मॉन्टी की लाश से कुछ लेना देना नहीं है और तू अपने घर की शादी ब्याह छोड़कर यहाँ चने की खेती करने आया है?
0: अरे बशीर सिंह जी, कैसे समझाएं हम आपको एक ही बात बार बार। ये गोपाल है,
2: गोपाल के पिताजी हमारे दोस्त हैं।
0: अरे मेहंदी के फंक्शन पर इसको बुलाया था हमने घर पर, जब ये आया नहीं तो उसको फोन किया हमने, तब इसने बताया कि आप लोगों ने इसको धर दबोचा है। अब आप ही बताइए बशीर सिंह जी, अगर आप हमें हमारे जान पहचान वालों को ऐसे मारते पीटते रहेंगे तो हमें तो बीच बचाव करना ही पड़ेगा या नहीं?
3: भाई यश, पुलिस वाले और सपना कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो महादेव को हरा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने ऐसा षड्यंत्र चला जिसके बाद अब देखना होगा क्या महादेव के परिवार की नींव वाकई हिल जाएगी।
4: मेरे बच्चे का बदला मैं इनके घर के बच्चे से लूंगी।
5: सुनिए, आपने हमारी छोटी बहन को देखा? वो मरून कुर्ता जीन्स पहनी थी,
2: शायद उसे पुलिस उठा के ले गई।
4: क्या आपका कबीर के साथ ब्रेकअप हो गया?
3: स्टार प्लस की सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में भाई मायरा घर तो लौट आई है, लेकिन देखिए कैसे विद्या के मन में ढेर सारे सवाल हैं और आज वही सवाल वो मायरा से पूछ रही हैं, जिसे सुनकर मायरा झिझक रही है।
5: आई नो
6: मायरा, बेटा दादी कुछ पूछ रही है और हम उम्मीद करेंगे कि आपका जवाब हाँ मिले, क्योंकि हम उस लड़के को कभी नहीं अपनाएंगे।
3: ऐसे में यहाँ पर अरमान को भी गुस्सा आ जाता है और देखिए कैसे वो आज फिर एक बार अपनी बेटी के लिए स्टैंड लेता हुआ नजर आ रहा है।
7: मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अब से मैं वही करूंगी जो मम्मा पापा।

0: तो इसका मतलब है कि आपके पेरेंट्स आपसे कहेंगे कभी इसे ब्रेकअप करो तो ही आप उससे ब्रेकअप करोगी। मतलब आपने कबीर से ब्रेकअप नहीं किया है। मायरू बेटा साफ साफ बोलो कि
1: माँ बस

नवरात्रि के खास मौके पर भाभो यानी नीलू वाघेला और पूजा सिंह मना रही हैं ये पावन त्योहार। दोनों का दिख रहा है अनोखा अंदाज और दोनों ही नवरात्रि के रंग में रंगी नजर आ रही हैं। तो आइए देखते हैं कैसे नीलू और पूजा मना रही हैं नवरात्रि का ये त्योहार और कैसे छाई है इनके चेहरे पर त्योहार की रौनक।

नवरात्रि का मौका है और ऐसे में गरबा राज ना हो ऐसा भाई हो सकता है क्या भला? तो भाई लेडीज को तो सजने संवरने और डांस करने का मौका चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि कैसे गरबा राज सब पर छाया हुआ है। भाई गरबा राज पर हो रहा है दो सास बहू का मिलन। दियाबाती की इमली और भाबो देखिए कैसे रेडी वेडी होकर तैयार व्यार होकर गरबा राज खेल रही है और इन्हें ज्वाइन कर रही है इनकी फ्रेंड ऋषिना कंधारी। भाई सारी लेडीज देखिए जैसे चपके गरबा खेल रही है। सास बहु बेटिया के नवरात्रि स्पेशल में आज हम देखेंगे गरबा के कुछ खास रंग। सबसे पहले मिलते हैं दियाबाती की ओरिजिनल ओजी सास बहु की जोड़ी से, जी हाँ भाबो यानी नीलू वाघेला और इमली यानी पूजा सिंह। भाई ये दोनों एक बार फिर से मिली इस बार नवरात्रि के इस खास सेलिब्रेशन में जहाँ दोनों रेडी वेडी हो रही हैं। तो ये सभी लेडीज एक खास आयोजन का हिस्सा है जो है नवरात्रि का खास सेलिब्रेशन। लेकिन हम आपको लेके चलते हैं

बैक स्टेज जहां हम इनकी तैयारी दिखाएंगे, बिहाइंड द सीन मस्ती दिखाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं दिया बाती की सास बहू नीलू वाघेला और पूजा सिंह के पास, जो हो रही है इस खास सेलिब्रेशन के लिए।

0: हैप्पी नवरात्रि टू एवरीबॉडी। मैं नीलू बघेला और
1: मैं पूजा सिंह।
0: तो हमारे यहाँ जो नवरात्रि का उत्सव मनाया जा रहा है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, बहुत ही मन से, बहुत ही श्रद्धा से मनाया जा रहा है।
1: हैप्पी नवरात्रि टू एवरीबॉडी। और जैसा कि आपने पूछा था नवरात्रि की प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, घर में पूजा पाठ करके एकदम यू नो विद अ पॉजिटिव वाइब एंड विद मोर पावर हम आज सेट पे आए हैं। सब बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है भावो आज। और अभी हम लोग वो आदत एक्चुअली जाती नहीं है, वो बुलाने वाली। ओके नीलू जी, बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। ओके बट अभी हम लोग वही मेकअप अभी हमारा चालू है, अभी हेयर मेकअप करना है। सो दिस इज लाइक अगर हम बाहर नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे हैं तो हम अपने सेट पे सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम ये 9 दिन बहुत एंजॉय करने वाले हैं, चाहे वो ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन हो।
2: तो लेट्स गेट रेडी विद भाबो एंड इमली। तो भाई भाबो यानी नीलू वगैरह ढेर सारे सीरियल में अलग अलग किरदार करती हैं, लेकिन अभी भी लोग उन्हें भाबो के रूप में ही जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि नीलू वगैरह क्या लुक ले रही हैं इस नवरात्रि के लिए। तो वहीं पर इनकी बहुरानी पूजा सिंह भी हमेशा ग्लैमरस दिखती हैं।

अभी अभी तो मेरे आईज ही चल रहे हैं, इट्स बेस अभी कुछ भी नहीं हुआ है. एंड आई हैव दिस हैबिट ऑफ पुटिंग लिपस्टिक, तो हल्का सा मैं हमेशा घर से लगा के आती हूँ, बिकॉज उसके बगैर मुझे लगता है जी डल डल फेस लगता है. सो अभी दादा इज जस्ट, अभी मेरे आईज में थोड़ा टाइम लगता है, एटलीस्ट टेक 15 to 20 minutes फॉर आईज. उसके बाद बेस मेरा फटाफट हो जाता है, उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है. अगेन दादा आगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगी, सो जस्ट वेट एंड वॉच.

0: अगला पड़ाव है अभिनेत्री रिशा कंधारी के साथ, जो नीलू वाघेला और पूजा की खास फ्रेंड है और इस सेलिब्रेशन को ज्वाइन करने वाली है। तो देखिए कैसे कृष्णा हो रही है नवरात्रि के लिए तैयार, चलते हैं उनके मेकअप रूम में।
1: मेरे रूम में वैसे भी बहुत अच्छी फील आती है बिकॉज एवरीबडी टेल्स मी कि आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द, आपके रूम में बहुत अच्छे वाइब्स होते हैं। तो उसका सबसे पहले रीज़न ये है कि मैं सुबह सुबह आती हूँ और कपूर जलाती हूँ अपने कमरे में और भजन लगाती हूँ, तो उससे वैसे भी सेट का माहौल अच्छा पॉजिटिव हो जाता है एंड देन यू नो इट पेप्स मी अप फॉर द एंटायर डे। लोग सेट पर डांडिया गरबा करने वाले हैं, अगर वैसे तो हम लोग यूजुअली जाते हैं और मैं फाल्गुनी पाठक जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और जब भी उनके शोज़ होते हैं तो हम लोग डेफिनेटली जाते ही हैं गरबा करने के लिए, लेकिन इस बार नहीं जा पाएंगे एंड आई एम रियली फीलिंग सैड। लेकिन खुशी इस बात की है कि हम लोग टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस हम लोग सेट पे हैं और सेट पे ही नवरात्रि के मजे लेने वाले हैं। हाँ, मेकअप को लेके मैं अभी तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने मेकअप किया ही नहीं है, आई जस्ट स्टार्टेड विद माय आई शैडो, सुबह सुबह ऐसे ही उठ के आई हूँ मैं, ये मेरा विदाउट मेकअप वाला चेहरा है, नो मेकअप लुक, सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग विथ माई आईज। अब देखती हूँ मैं कैसे गॉडी इसको करना है, तो मैंने गोल्ड और ऑरेंज क्योंकि मैंने कपड़े पहने हुए हैं तो मैं उसी को यू नो बेस उसी का रखते हुए देन आई विल एनहांस माई आईज मोर। मैंने अभी खाली गोल्ड किया है यहाँ पे एंड अ लिटिल बिट ऑफ यू कैन सी यू नो अ रस्ट कलर का ये मैंने यूज़ किया है, तो आई शैडो एंड या लेट्स सी कैसे गॉडी करते जाते हैं हम। आई एम रेडी टू यू नो गेट इंडल्ज्ड इनटू नवरात्रि फ्लेवर।
0: रिशिना ने मेकअप अपना शुरू किया, साथ साथ उनका हेयर भी हो रहा है, कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहनकर अब वो रेडी हैं गरबा के लिए, और देखिए गरबा के लिए उनका फाइनल लुक रेडी है।

0: जय अम्बे। तो नवरात्रि फेस्टिवल के लिए मैं तैयार हूँ और आपने देखा मैं किस तरह तैयार होती हूँ। सिंपल से आती हूँ और एकदम से चटक मटक इमरती में तब्दील हो जाती हूँ। और ये झुमके हैं उसके, जो वैसे तो बहुत हैवी है लेकिन बहुत सुंदर है। बट कुछ तो यू नो सैक्रिफाइसेस करने ही पड़ते हैं हमें अच्छा दिखने के लिए। सो या दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे। और गोटा लगा हुआ है, मिरर वर्क है मेरी साड़ी में, पतली सी शिफॉन की राजस्थानी प्रिंट वाली साड़ी है। और कलर आप देख ही सकते हैं, इतना सुंदर। बिल्कुल गरबा करने के लिए तो मैं मचल रही हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस साल गरबा खेलने नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी हम गरबा खेलते हैं। आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा गरबा खेलूंगी।
1: तो देखते हैं कि कृष्णा ने गरबा की क्या तैयारी की है, जरा देखते हैं उनके स्टेप, क्योंकि फाइनली अपनी सहेलियों के साथ वो गरबा का डांस करने वाली हैं।

0: और सास बहु बेटिया के सभी दर्शकों को मेरी यानी रशीना कंधारी की तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।
1: अब बारी है लेडीज के मिलन की। जी हाँ, नीलू वाघेला और पूजा सिंह रेडी हो चुकी हैं और सबका फाइनल गेटअप रेडी है। और जब ये तीनों लेडीज मिली तो देखिए कैसे गरबा राज शुरू हो गया।
2: सबसे सुंदर,
3: सबसे अच्छी मैं लगती हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं लगता यहाँ पे।
4: सबसे अच्छी मैं लगती हूँ।
3: दिव्या, दिव्या।
4: हेलो।

0: वैसे गरबा पार्टी अभी खत्म नहीं हो रही क्योंकि इन्हें और जोश में डांस करना है और नवरात्रि को पूरे जोश से मनाना है।
1: हैप्पी नवरात्रि।
2: अरे नवरात्रि गरबा तो

0: भाई इतने सारे डांस के बाद आप थोड़ी पेट पूजा हो जाए और देखिए एक सेट पर ही गरबा के लिए कुछ खास डिश भी आई है। तो इन सब लेडीज ने व्रत भले ही रखा हो लेकिन देखिए व्रत का खाना खाकर भी कैसे खुश हो रही है और उसके बाद इन्होंने फेस्टिव सेलिब्रेशन का शूट किया। तो ये थे कुछ खास पल नवरात्रि के इस सेलिब्रेशन के लिए जो हम आपके लिए लेकर आए। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: नवरात्रि का मौका है और इस खास त्योहार पर अभिनेत्री आशी सिंह पहुंची हैं माता रानी का आशीर्वाद लेने। साथ ही आशी सिंह भी आज त्योहार के रंग में रंगी नजर आ रही हैं। तो आइए हम भी आशी सिंह के संग मनाते हैं नवरात्रि का ये पावन त्योहार।

आशी ने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल से की। उन दिनों की बात है से लेकर मीत, अलादीन और उसके बाद उफ ये लव है मुश्किल। हाल ही में वो मुनव्वर फारूकी के साथ फर्स्ट कॉपी नाम की सीरीज में दिखी। इस नवरात्रि वो भी माता रानी से मांग रही हैं आशीर्वाद।

0: और अपनी शूटिंग के बीच वक्त निकाल कर वो पहुंची दुर्गा पूजा के पंडाल के दर्शन करने। तो चलिए आशी संग हम भी करते हैं माता रानी के दर्शन।
1: हैप्पी नवरात्रि।
0: आशी शूटिंग के बीच से आज हमारे साथ पहुंची इस पंडाल के दर्शन करें। वो सवार हुए हमारी गाड़ी में और पहुंची मुंबई के इस पंडाल में, जहां बहुत ही शांति पूर्वक और अनोखे अंदाज में नवरात्रि मनाई जाती है।
1: तो हम पंडाल के बाहर तक तो पहुँच गए हैं और यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं है, जो की बहुत अच्छी बात है। और अब हम जाएंगे दर्शन करने। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे मौका मिल गया दर्शन करने आने का, जो मुझे लगा नहीं था इस साल हो पाएगा। सो वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। तो चलो दर्शन करते हैं।
0: मुंबई के हरा भरा पार्क इस वक्त गरबा का मैदान बन गया है। इस वक्त यहाँ भीड़ तो नहीं है, लेकिन माता रानी की प्रतिमा आपका इंतजार करती है।
1: तो चलो अंदर चलते हैं। मैं लकी हूँ कि मुझे मौका मिला और मैं जा सकती हूँ दर्शन करने, और आप भी लकी हैं, आप भी मेरे साथ चल रहे हैं दर्शन करने। तो चलो।
0: मुंबई की दौड़ती भागती जीवन में हर तरफ माता रानी की प्रतिमा आपका स्वागत करती है, और ऐसा ही ये नवरात्रि का पंडाल।
1: अम्बे माता की जय। तो अब मुझे पंडाल एकदम अपनी नजरों के सामने दिख रहा है और हम फाइनली जा रहे हैं दर्शन करने। मैंने जैसे कहा, मैं काफी खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ, पर मैं लकी हूँ कि मुझे दर्शन करने का मौका मिल रहा है। तो चलिए।
0: जहाँ पर आशी पहुँचे और माँ के दर्शन किए। पूरे 9 दिन इस पंडाल में दुर्गा के 9 रूप देखने को मिलते हैं। आज सरस्वती माँ का रूप है और सरस्वती माँ के अनोखे दर्शन किए आशी से।

0: जो दे।
1: तो यहाँ पे आज सरस्वती माँ की हमने पूजा की है और आप जब इनका लाइव ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग हर रोज एक नई देवी की आपको पूजा करने का यहाँ पे मौका मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग है। मैं तो लाइव दर्शन करने वाली हूँ और आप भी कर सकते हैं, तो मैं देखने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पे हर 9 दिन अलग अलग देवी की पूजा होती है।
2: भाई इसके बाद आशी ने गरबा किया। भाई वो गरबा खेलने की शौकीन है, उन्हें प्रॉपर गरबा तो आता नहीं, लेकिन श्रद्धा भाव से माँ के लिए किया गया ये डांस एक ट्रेडिशन है जो मुंबई गुजरात जैसे प्रदेशों में होता है। तो देखिए जरा आशी का गरबा।

0: मैं हर साल सीखने की कोशिश करती हूँ पर मैं सीख नहीं पाती, क्योंकि जब तक मैं सीखती हूँ थोड़ा बहुत तो गरबा खत्म हो जाता है, तो मैं कोशिश हर साल करती हूँ।
1: तो ये थी आशीष सिंह, जिन्होंने आज नवरात्रि के खास मौके पर माता रानी के दर्शन की, नी भक्ति की और गरबा भी किया। भाई मन में भक्ति भाव से अगर भगवान को याद करें तो भगवान हमेशा आपके साथ रहते हैं और मन भी पवित्र होता है। ऐसा ही कुछ आशीष सिंह के साथ हुआ। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।

खास शाम, जो रही अवार्ड्स के नाम। इस शानदार शाम में खास मेहमान बनकर पहुंची अनुपमा यानी रूपाली गांगुली। इनके अलावा कई और सितारों ने भी अपनी मौजूदगी से महफिल में चार चांद लगा दिए। तो आइए देखते हैं अवार्ड्स नाइट के सभी शानदार नजारे।

शाम है। सीरियल अनुपमा को ना सिर्फ लेडीज देखती हैं बल्कि जेंजी भी देखती हैं। ये देखने को मिला जब रूपाली गांगुली मुंबई में एक अवार्ड शो में पहुंची। जरा देखिए जेंजीज के साथ कितनी खुश हो रही हैं। तो खास सुनहरी साड़ी पहनकर नवरात्रि के मौके पर रूपाली का ये खास अंदाज देखने को मिला। रूपाली के हाथों में शाखा पोला है और उन्होंने पहनी है ये खास हरे रंग की साड़ी। भाई नवरात्रि का ये खास लुक उनके सीरियल में तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन रियल लाइफ में रूपाली हमेशा ट्रेडिशनल रहती हैं और साड़ी पहनकर वो इस अवार्ड शो में खास मेहमान बनी, जहां पर नारी शक्ति को सलाम किया गया।

पर यहाँ पर ना सिर्फ उनके फैंस थे बल्कि उन्हें सुनने वाले भी। यहाँ पर उन्होंने अपने दिल की बातें की, अवार्ड भी लिया और इसके बाद उन्होंने यहाँ की लेडीज से बात की और यहाँ पर कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए।

0: लेकिन सबसे खास था जब जैन जी ने उन्हें घेर लिया। और देखिए अनुपमा यानी रूपाली की एनर्जी। वे कहते हैं कि सीरियल भले ही हाउसवाइफ देखती हो लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर युवाओं पर भी पड़ता है, और अनुपमा ऐसा ही एक सीरियल है और उसके किरदार को निभाने वाली रूपाली गांगुली का ये खास अंदाज देखने लायक था।
1: रूपाली गांगुली तो इस खास अवार्ड नाइट में शामिल हुई, लेकिन इसके अलावा कई और सितारे रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेरने पहुंचे, जैसे कि नायरा बैनर्जी जो आज ग्रीन और व्हाइट कलर के इस आउटफिट में कयामत ढा रही हैं।

तो इसके अलावा पूनम ढिल्लो जिन्होंने आज की शाम के लिए साड़ी वाला लुक अपनाया। इसके अलावा कुबरा शाइना एनसी, राजपाल यादव

0: तुकाराम मुंडे, संदीप आधर, ये सभी इस अवार्ड नाइट में पहुंचे और इन्होंने रेड कार्पेट की शान बढ़ाई। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: आपको दिखाते हैं मनोरंजन की दुनिया की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें जो हम खास आपके लिए लेकर आए हैं, जिन्हें देखकर आपके चेहरे पर भी आ जाएगी एक हल्की सी मुस्कान। तो पेश है आज की रॉकिंग खबरें।
0: पेश है बॉलीवुड, ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। भाई, टीवी सितारों पर चढ़ गया है नवरात्रि फीवर। देख लीजिए कैसे अनुपमा मना रही है नवरात्रि का ये त्योहार और हाथ में है उनके गरबी। तो वही साई और शक्ति भी मना रहे हैं नवरात्रि का त्योहार, जहां उन्हें मिला माता रानी का आशीर्वाद।

भाई बात नवरात्रि की है तो ऐसे में गरबा नाइट पर पहुँचे हैं सितारे गरबा रास करने के लिए। भाई यहाँ पर इस गरबा नाइट में नजर आई रूहानिका धवन और उर्फी जावेद, पूनम पांडे और कई और सितारे जो पहुँचे नवरात्रि का ये त्योहार धूमधाम से मनाने के लिए।

0: तो मैं आ रहा हूँ करने के लिए कॉफी विद करण।
1: कॉफी विद करण में खास मेहमान बनकर आने वाले हैं सलमान खान। ऐसे में सामने आई है ये एडवांस झलक, जहाँ करण जौहर संग सलमान खान नजर आ रहे हैं।
2: Catch us on the season opener of Coffee with Karan on October 14th. This is the last season, so ye kahin bhi ja sakta, right?
0: Ja hi sakta, ye to kya hai, gaya hai.
3: Swagat karu ya, writer and fighter, one and only, beauty with brains, Sonali Bendre.
1: KBC Marathi में खास मेहमान बनकर आने वाली हैं सोनाली बेंद्रे और उन्हें होस्ट कर रही हैं माधुरी दीक्षित। देख लीजिए ये खास वीडियो।
4: प्रथम अपला कोण होणार करोड़पति याच्या मध्ये फीमेल होस्ट आहे। चेंज नेहमी मराठी बायका नी आणलाय।
5: कैन वी गेट अ चीयर फॉर द मराठी गर्ल्स।
1: नुसरत परूच ने शेयर किया है ये वीडियो अपनी हेल्थ अपडेट देते हुए। भाई वो अब रोड टू रिकवरी पर है। ऐसे में सर्जरी के बाद वो घर पर एंजॉय कर रही हैं शाहरुख और काजोल की ये फिल्म। यामी गौतम पहुंची गरबा नाइट यानी अहमदाबाद में अपनी फिल्म नई नवेली के प्रमोशंस के लिए। देख लीजिए वहाँ से ये नज़ारे। जी टीवी पर जल्द शुरू होने जा रहा है नया शो जिसका नाम है शुभ शगुन शहनाइयां, जिसमें बन गई है बृंदा दहल और फहमान खान की जोड़ी। देख लीजिए ये BTS नज़ारे। नजर डाल लीजिए शो के नए प्रोमो पर भी।
6: हाय एवरीवन, इट्स मी बिंदा दहल एंड आज हम आए हैं हमारे शो के प्रोमो शूट पे और मैं अब रेडी होंगी अमूल्या के रूप में।

0: घर वालों, बीबी गजब बेइज्जती जोन में आज होने जा रही है नॉमिनेशन।
1: ये सेल्फिश है।
2: बिग बॉस में होने वाला है नया बवाल, हो रहा है नॉमिनेशन टास्क और शुरू हो रहे हैं झगड़े।
3: आप नालायक हैं, आप बिल्कुल वैसी बातें कर रहे हैं। अबे चल,
1: वो खुद का दिमाग नहीं यूज कर पाती है।
4: ऐसे आप नहीं बोल सकती है, मैं किसके साथ रो ना रहू। ऐसे बच्चन ना, मेरा पासपोर्ट है,
1: मैं बोलूँ तो
4: चुप हो जाओ।
5: काजी ने क्या बोला, तू सो जा वरना देखो सुला दूंगा।
6: अरे बकवास मत कर, ज्यादा समझा ना,
5: हल्ला कम कर। अरे ऐसे बहुत देखे यार,

0: Mark, go.
1: Happy birthday to you. Happy birthday dear Sunny.
2: करण कुंद्रा ने मनाया अपना बर्थडे, साथ है तेजस्वी। देख लीजिए इनका ये क्यूट मोमेंट।
0: गाइस बहुत अच्छा गाना गाया तुम लोगों ने, मत गाना आज के बाद। मेनू खिला, मेरा बर्थडे है।
3: करू
0: यम,
4: मैं फ्लावर दू।
2: तो जूलियट जर्दी का नया गाना सामने आया है भाई। मनाली में चल रहा है इनके इश्क का खुमार, जहां हीर और नवाब पर चढ़ गया है फिल्मी फीवर।

0: खबरों की माने तो सीरियल सहर होने को है में नजर आएंगे दिव्यांश अनंदानी और रुचि सावर्ण, बन गई है इनकी जोड़ी।
1: सीरियल जगत धात्री में हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां जगत धात्री जुटी हुई है सच का खुलासा करने में, लेकिन उसकी राह में आ रही हैं कई मुश्किलें। तो आइए देखते हैं आखिर किन किन मुश्किलों का सामना कर रही है जगत धात्री और क्या वो सच्चाई सबके सामने ला पाएगी।

0: शक के घेरे में कभी आरती तो कभी महेश। टीवी के सीरियल जगधात्री में धीरे धीरे जगधात्री की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि वो अपने आप को बेगुनाह साबित जो नहीं कर पा रही, और तब तक उसे लिली बनकर इसी घर में रहना पड़ रहा है। ऐसे में देखिए कैसे अकेले में वो आईने के सामने बैठकर अपने मंगलसूत्र को देखकर हो रही है इमोशनल, क्योंकि उसे जल्द से जल्द शिवाय को ये बताना है कि वो शिवाय से बेइंतहा प्यार करती है। फिलहाल तो जगधात्री को पता चल गया है कि जल्द से जल्द खुलासा होने वाला है, इसलिए देखिए कैसे वह सभी के सामने तपस्या का गेम ओवर करने के लिए पहुंच जाती है। असल में जगधात्री को पता है कि बैग्स में ढेर सारे रुपए हैं। ऐसे में तपस्या का सच लाने के लिए देखिए कैसे जगधात्री तपस्या को उकसाने का काम करती है।
1: नहीं नहीं, पुलिस कंप्लेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों बैग्स ना, ये दोनों बैग्स मेरे हैं। यहाँ पर जो मीटिंग हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तपस्या मैडम, हम आपका हेल्प करेंगे ना ये ले जाने में। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई हेल्प की जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी। तपस्या मैडम, तुम्हारा हाथ इतना ज्यादा देने की तो सेंसिटिव है, तुम कैसे करेंगे? हमें हेल्प का जरूरत है। नहीं नहीं, मैंने कहा ना मैं सब कर लूंगी, मुझे कोई हेल्प की जरूरत नहीं। लेकिन छोड़ो, मैं कर लूंगी, मैंने कहा ना छोड़ो।
0: भाई जैसे ही बैग खुला और ढेर सारे पैसे सभी की नजरों के सामने आए, सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। सभी ये जानने के लिए हैरान है कि आखिर इतने सारे रुपए तपस्या के पास आए कहां से। खैर, तपस्या ने सभी के सामने बिजनेस का बहाना कर दिया, जिसके चलते सभी गुमराह हो गए। लेकिन अगले ही पल एक और ट्विस्ट सभी के सामने आ गया, जब आरती हाथों में आरती लिए खुश होकर सभी के सामने आती है और सभी को अपने दिल की बात बताती है कि इस बार माता रानी के आगमन पर घट स्थापना वो करेंगी। बस फिर क्या, ये सुनते ही सबसे पहले माया हैरान हो जाती है, क्योंकि घर में हाल ही में रुद्र की मौत हुई है, जिसके चलते कोई भी त्योहार सेलिब्रेट नहीं होंगे। ऐसे में आरती की चोरी पकड़ी ना जाए, देखिए आरती भी कैसे सभी को कर देती है गुमराह।
2: हाँ, रुद्र नहीं है, हमारे किसी से नहीं है, लेकिन वो जहाँ भी है वो खुश रहे, देवी माँ उसको प्रोटेक्ट करे, वो शांति दे, ये तो मान ही सकती हूँ ना। अगर ये भी नहीं मान सकती तो ठीक है, मैं मुझे किसी के हाथ में जीना था। हाँ आई नो, तो नहीं है यहाँ, हमारे साथ नहीं है, लेकिन जहाँ भी होगा तेरी माँ उसे खुश रखे, उसे प्रोटेक्ट करे, उसे शांति दे, इतना तो मान भी सकती हूँ अपने बेटे। अगर माया अगर मैं इतना भी नहीं कर सकती तो ठीक है, मैं खुद कर लूँगी, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत
3: नहीं।
0: तपस्या और आरती की तो मिली भगत है, इसीलिए सभी को गुमराह करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इन्हें सभी से सच छिपाना है कि रुद्र जिंदा है। वहीं दूसरी ओर माया को महेश काका पर भी शक हो गया है, तभी तो देखिए कैसे वो अपने भाई के पास पहुंच गई है ये जानने के लिए। आरती को किडनैपर से छुड़ाने के लिए 25 करोड़ के अलावा जो बाकी रकम निकाली गई है वो महेश ने क्यों निकाली, इस पर महेश हैरान भी होता है, कहीं ना कहीं उसे डर भी लगता है, लेकिन वो भी वहाँ पर बहाने मार देता है।
4: मिस्टर महेश देशमुख अपनी ही कंपनी में फ्रॉड करने वाला था,
1: कुछ टाइम से नोटिस कर रही हूँ समझ, और मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि क्या मुझे सब कुछ सच सच नहीं पता। मैंने पहले प्रॉब्लम है तो आप मुझ में कंफाइन कर सकते हैं, कोई भी बात वो मुझसे शेयर कर सकते हैं।
4: कुछ शेयर करने लायक होगा भाई तो जरूर शेयर करूंगा। बात इतनी बड़ी नहीं है बेटे, इतना तुम्हें सपना रही हो। अपने महेश काका को घर घर में खड़ा करने की कोशिश मत करो।
0: भाई लगता है महेश को भी पता है कि रुद्र जिंदा है और वो भी ये बात सभी से छिपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जल्द से जल्द ये राज सभी के सामने आ ही जाएगा क्योंकि जगधात्री रुद्र के पीछे जो पड़ी है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: सीरियल वसुधा में जल्द ही वसुधा और देव की शादी होने वाली है और आज हो रही है मेहंदी की रस्म, जहां वसुधा अपने हाथों में लगाएगी देव के नाम की मेहंदी। लेकिन इस मेहंदी की रस्म में आ गया है एक नया ट्विस्ट, तो आइए देखते हैं इस रस्म में क्या तमाशा हो रहा है।
0: खुशी से इटलाती वसुधा

जी टीवी के सीरियल वसुधा में फाइनली देवर वसुधा सभी घर वालों के सामने पूरे रीति रिवाजों के साथ फिर से शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, वो भी चंद्रिका की रजामंदी से। ऐसे में आज देवर वसुधा की मेहंदी हो रही है और उसी के लिए पूरे परिवार में रौनक छाई है। देवर वसुधा वो तो हरे रंग में रंग गए हैं और बेहद खुश नजर आ रहे हैं फिर से एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए। और तो और इनकी खुशी दुगनी इसीलिए है क्योंकि इनके रिश्ते को चंद्रिका ने मंजूरी जो दे दी है।

इसी बीच आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि होती है विक्रम की एंट्री। असल में वसुधा चाहती थी कि उसकी शादी में सूर्या काका आए। ऐसे में सूर्या काका तो नहीं आए, लेकिन विक्रम जरूर आ गया है लेकर सूर्या काका का लेटर। और देखिए कैसे उसने वसुधा को वो लेटर थमा दिया, जिसे पढ़कर वसुधा इमोशनल हो रही है, क्योंकि सूर्या काका के गैर मौजूदगी में भी उनका आशीर्वाद वसुधा के साथ है।

0: कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा है. जो दूल्हा और दुल्हन का कॉस्ट्यूम है उसमें थोड़ी वेरिएशन है, और मेहंदी हो रही है तो मेहंदी का कॉस्ट्यूम है, और बाकी सबका ब्लू है, और अच्छी थीम है, और डेकोरेशन बहुत अच्छा किया हुआ है. बहुत अच्छा, मतलब ऐसे मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मतलब सच में मेरी शादी होने जा रही है. और मुझे पता है कि वसुदेव फैंस को भी बहुत पसंद आने वाला है, और एवरीथिंग इज़ गोना बी ह्यूज, सो स्टे ट्यून्ड. हाँ, मतलब ऐसा है, सूरज काका को, सूर्य काका को बुलाया था लेकिन सूर्य काका आए नहीं, और बहुत दुखी है सब. चंद्रिका जी ने वादा लिया था वसु से कि वो लेके आएगी. वसु ने खुद वचन दिया था कि काका को आना ही पड़ेगा, लेकिन काका नहीं आए. उन्होंने अभी भी नाराज़गी रखी है देवी हुकुम से, तो देखते हैं कैसे नाराज़गी ख़त्म होगी. वो आते हैं नहीं आते, अभी तो शादी 3 दिन की है, लंबी शादी है, तो देखते हैं.
1: फिलहाल तो वसुधा और देव की खुशी में ही चंद्रिका की खुशी है. ऐसे में चंद्रिका ने खुद अपने हाथों से अपनी बहुरानी वसुधा के हाथों में मेहंदी लगाकर मेहंदी की रस्म की शुरुआत कर दी. और तो और, वहाँ पर कई सारी मेहंदी वाली भी आई हैं, जिन्होंने वसुधा के हाथों में देव के नाम की मेहंदी लगानी शुरू कर दी. भाई पूरा परिवार बहुत खुश है, दादी भी बहुत खुश नजर आ रही है, और सारिका उसका तो मुँह बना हुआ है.
0: सारिका जी तो बस बहुत मतलब नादान है, वो समझती नहीं है परिस्थिति क्या है, और वो अपना रिएक्शन पहले दे देती हैं. तो भी चाहे कैसा भी माहौल हो, वो दिल की इतनी अच्छी है ना कि माहौल में वो घुल गई हैं. वो कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करें, शी जस्ट एंजॉय द वेडिंग. और उनके लिए तो मतलब बहुत सालों बाद ये वेडिंग सीजन आया है. शी इज जस्ट सो एक्साइटेड एंड वी आर लविंग इट. हम सब डांस कर रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, सब बहुत खुश हैं. पहली बार ऐसा हुआ है कि चौहान परिवार में कोई शादी बिना ड्रामे के टचवुड होने जा रही है.
1: वो तो बीच में कोई ना कोई कांड करने की प्लानिंग कर ही रही है, लेकिन दादी उसे भांप लेती है और सारिका को दे देती है सभी को शरबत बांटने का काम.

खैर शादी का माहौल है, सभी लोग बेहद खुश हैं और बिजी भी। इसी के साथ नाच गाना तो बनता है। जरा देखिए कैसे होने वाले दूल्हा दुल्हन को बीच में खड़ा करके सभी झूम झूम कर नाचने लगे। चंद्रिका वो तो डांस करके अपनी खुशी जाहिर कर रही है। और तो और वहाँ पर आ गई है दादी भी, जो जमकर नाच रही है। और तो और क्या दिव्या, क्या अविनाश और क्या घर के बाकी लोग सभी डांस का तड़का लगा रहे हैं। लेकिन इनके बीच सभी पर नजर लगा कर रखी है उषा ने, जिसकी वापसी हो गई है।

ऐसे में वो आकर ट्विस्ट लाने की कोशिश कर ही रही थी कि उसे चंद्रिका ने रंगे हाथों पकड़ लिया। अब उषा की वापसी से कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा, ये तो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल तो आज वसुधा उसे मिल गए हैं शूटिंग से कुछ फुर्सत के पल, और देखिए कैसे वो पहुंच गई हैं अपने वीडियोस बनाने के लिए, जहां पर वो इटला रही हैं, बल खा रही हैं और अपनी खूबसूरती के जलवे भी दिखा रही हैं। भाई इतना साज श्रृंगार किया है, वीडियो बनाना तो बनता है।

0: मन अति सुंदर में राध्या ने लिया है बड़ा फैसला और अब वो बना रही है प्रथम और अंतरा की जोड़ी। इसी के साथ शुरू हो गया है अंतरा का नया ड्रामा। अब क्या वाकई प्रथम करेगा अंतरा से शादी? यही है सीरियल का आने वाला नया ट्विस्ट।
1: प्रथम, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। तुम्हारे वहम के चक्कर में ना मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी।
2: शुरू हुआ अंतरा का नया ड्रामा। राध्या के लिए परेशान प्रथम,
1: शादी करेगा, मुझे अपनाएगा या फिर मैं इस बच्चे को गिरा दूंगी।
3: तुम एक लड़की हो, मैं इतनी बड़ी बात कैसे कर सकती हो?
1: तुम मुझसे ऐसे चिल्ला कर बात नहीं कर सकते प्रथम। मैंने कहा ना, अब सिर्फ मैं अपने बारे में सोचूंगी। या तो तुम मुझसे शादी करो, फिर कल ही जाकर मैं इस बच्चे को गिरा दूंगी।
2: क्या राध्या बनाएगी प्रथम और अंतरा की जोड़ी? दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में कहानी में नया ट्विस्ट आने वाला है, जहां पर राध्या खुद प्रथम के हाथों में अंतरा का हाथ देगी और बना देगी प्रथम और अंतरा की जोड़ी, जिसे देखकर प्रथम और बाकी घर वाले बहुत चक्के रह जाएंगे। देख लीजिए ये नज़ारे, जहां पर राध्या खुद इन दोनों का एक दूसरे के हाथों में हाथ दे रही है और लगता है कि राध्या ने शादी की परमिशन दे दी है। सीरियल में आने वाला ट्विस्ट, जहां राध्या ये बड़ा फैसला लेगी। खैर, बात करें सीरियल के ड्रामे की, तो यहां पर अंतरा और प्रथम के बीच नोकझोंक चल रही है। जहां पर प्रथम को राध्या की चिंता सता रही है, तो वहीं अंतरा प्रथम को ये यकीन दिलाने में लगी हुई है कि सब कुछ ठीक है और राध्या अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है। लेकिन प्रथम को शक हो रहा है, क्योंकि राध्या अपने साथ लड्डू गोपाल को भी ले गई है। ऐसे में प्रथम तो जिद पर अड़ा है कि उसे राध्या को ढूंढना है, तो वहीं दूसरी तरफ अंतरा जिद पर अड़ी है कि उसे प्रथम से शादी करनी होगी। लेकिन प्रथम ने अब तक अंतरा की शादी वाली बात को माना नहीं है।
1: कुछ भी नहीं समझे, तुम ना पहले मेरी बात सुनो।
3: अंतरा, समझने की कोशिश करो। राधा और लड्डू गोपाल जी को रोज सुबह फूल चढ़ाती, अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती थी। अगर वो उन्हें लेकर गई है, इसका मतलब ये कि राध्या अभी भी हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही है। अगर राध्या को हमारे होने वाले बच्चे की फिक्र है, तो वो उसको छोड़कर क्यों जाएगी? अंतरा हो ना हो, जरूर कोई ना कोई वजह या फिर मजबूरी रही होगी राध्या, इसलिए वो ये घर छोड़कर गई है।
1: ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। तुम्हारे वहम के चक्कर में ना मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, वरना अच्छा नहीं होगा।
4: मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा धमकाया, थोड़ा सा फुसलाया कि अगर वो घर छोड़कर नहीं गई तो मैं ये जो बच्चा मेरे पेट में पल रहा है इसे मैं मार दूंगी। तो मैंने उसे मतलब मेंटली टॉर्चर किया, फिजिकली टॉर्चर किया कि अगर तू ये घर छोड़कर नहीं गई तो मैं इसे मार दूंगी। तो वो चुपचाप लेटर वेटर लिखती है और फिर चली जाती है। डर है क्योंकि प्रथम के सर पे जुनून चढ़ गया है कि वो राध्या को ढूंढ कर ही रहेगा, तो वो हर रोज उसको ढूंढने जा रहा है। तो कुछ कुछ सीन्स में ऐसे ही कि मैं उसे बोल रही हूँ कि यार तुमने कल ही तो ढूंढा था, अब तुम उसे ढूंढने नहीं जा सकते हो। तो एक बैक ऑफ द माइंड मेरे चल रहा है कि कहीं अगर इसने राध्या को ढूंढ लिया तो मेरा तो खेल तमाम हो जाएगा। वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो उसने इतना ट्राई किया राध्या को भगाने का, बट फिर भी प्रथम मान ही नहीं रहा है। वो बहकावे के लिए उसे मीठी मीठी बातें करती है, उसके लिए खाना लेकर आती है, फिर भी नहीं मान रहा है। वो सिर्फ राध्या राध्या राध्या कर रहा है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है एट लास्ट की यार क्या है, कितना राध्या राध्या करोगे, नहीं आ रही है वो वापस। तो फिर तोड़फोड़ करती है वो, तो अंतरा का तो काम ही है तोड़फोड़ करना, हर चीज में ड्रामा करना।
2: वहीं दूसरी तरफ घर में पूजा हो रही है और पूजा कर रही है अंतरा। ऐसे में इस पूजा के मौके पर भी तमाशा शुरू हो जाता है, जब दादी राध्या को लेकर खरी खोटी सुनाने लगती है और प्रथम राध्या के सपोर्ट में आता है। और यहाँ पर भी अंतरा मौके पर चौका मारते हुए प्रथम से शादी की जिद करने लगती है और दे देती है बच्चे को नुकसान पहुँचाने की धमकी।
5: तुम्हारा तुम्हारी बीवी इतनी घटिया हरकत करके चली गई और मैं कुछ बोल भी नहीं सकती
6: हूँ। सुबह सुबह शुरू मत हो जाइए आप लोग।
2: ऐसे में प्रथम कहता है कि अगर शाम तक राध्या नहीं आई तो वो अंतरा से शादी करने का फैसला ले लेगा, लेकिन उसे अब राध्या का इंतजार है।
7: मैं रात को ढूंढने जा रहा हूं।
8: प्रथम, लेकिन कहीं तुम राध्या को ढूंढने गए
7: थे? आज फिर से
8: मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। प्रथम, पहले तुम्हें मुझे जवाब देना होगा, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं।
9: तुम्हें दबाव कैसे डाल सकती हूँ? आज राधा मिल गई तो
8: मैं कैसे मानूं? मुझे श्योरिटी चाहिए आंटी जी। तुम मुझसे शादी करेगा, मुझे अपनाएगा या फिर मैं इस बच्चे को गिरा दूंगी।
3: तुम एक लड़की हो, मैं इतनी बड़ी बात कैसे कर सकती हो?
8: तुम मुझसे ऐसे चिल्लाकर बात नहीं कर सकते। प्रथम, मैंने कहा ना, अब सिर्फ मैं अपने बारे में सोचूंगी। या तो तुम मुझसे शादी करो, कल ही आकर मैं इस बच्चे को गिरा दूं।
9: ऐसी बातें कर रही हो, सही बात नहीं है। अब तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है।
8: इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता दीदी, मुझे बस मेरा फ्यूचर सिक्योर चाहिए।
3: अगर मुझे शाम तक राधा नहीं मिली तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूं, लेकिन तब तक तुम ऐसा कुछ नहीं कर
10: कर इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि अभी बात ही ऐसी है, बच्चे की बात है और एक मित्तल परिवार की फैमिली का बहुत बड़ा हिस्सा है जो प्रथम का बच्चा जो आने वाला है। तो ना चाहते हुए भी हमें हर बात अंतरा की माननी पड़ रही है, सुनना पड़ रहा है, क्योंकि हम उसे किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं देना चाहते। डॉक्टर ने बोला है कि अगर कुछ भी हुआ तो इसके बच्चे पर असर पड़ सकता है, तो सब इसलिए शायद मुँह पर चुप्पी लगाए बैठे।
2: तो भाई अब देखना होगा कि क्या राध्या आएगी और आकर क्या वाकई वो अंतरा और प्रथम की जोड़ी बना देगी। भाई यही तो है सीरियल में आने वाला ट्विस्ट। मुंबई से कैमरामैन वहादत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
0: मनोरंजन की सारी रॉकिंग और शॉकिंग खबरों को हम लेकर आए हैं आपके लिए, तो चलिए हमारे साथ और देखते हैं क्या है आज की रॉकिंग न्यूज।
2: लीला भंसाली की आने वाली फिल्म लव एंड वॉर में नजर आ सकती हैं सोंदुस मोफकिर, ऐसी खबरें आ रही हैं।

0: 20 seasons में रोडीज ने ट्रेंड्स फॉलो नहीं किए, ट्रेंड्स बनाए.
1: वाला है रोडीज रीबर्थ. ऐसे में सामने आया है इसका प्रोमो, जहां पर खेल के साथ साथ है कई सारे बवाल.
2: तेनु शरारत सिखावा जदों नैना
3: लड़ावा.
0: कैसा लड़का चाहिए?
4: फिर आप जैसा.
3: तो अपनी गेम बिगाड़ रहा है भाई.
0: जिसकी खुद नहीं संभल रही वो बोल रहा है. How many brains does Prince have?
5: मेरे पास दो हैं.
3: अरे
5: अरे
6: और ये मलहार सब घूम रहा है.
1: शिरडी पहुंच गए हैं उज्जवल निगम और दिनेश विजन. सामने आए हैं वहां से ये नजारे.
7: I watch Drishyam, the conclusion, and I am truly impressed with the way.
1: भाई मोहनलाल ने अजय देवगन को कांग्रेचुलेट किया है उनकी फिल्म दृश्यम द कंक्लूजन के लिए. साथ ही शेयर किया है ये स्पेशल मैसेज.
7: कुमार मंगत पथक, अजय देवगन एंड द एंटायर कास्ट एंड क्रू ऑन अ जॉब, सो वेल डन.
8: I have taken Dushmani with Gautam, whom you are hugging. You are not in that basement and in nomination because of me. And I am.
1: Hey. Rise and fall का ये नया प्रोमो देख लीजिए, जहाँ पर है बवाल अनलिमिटेड.
9: मैं फैला दिया मुझको.
8: इनका राइज मैंने कराया, इनका फॉल मैंने कराया, और मैं अपने किसी भी डिसीजन के लिए कभी भी अपोलोजेटिक नहीं हूँ. आपसे क्षमा मांगते मांगते चरणों में नहीं जा सकता. दुश्मनी भी चलेगी.
9: जब एक पार्टी कंटिन्यूअस रूल करता है तो बदलना जरूरी होता है, नहीं तो तवे पे रोटी जल जाता है.
8: आप लोग एक बार तख्ता पलट होने दीजिए.
10: देख क्यों मांग रहे हो?
11: मनीष जी, ये हमने रूल नहीं बनाए. हम नहीं जाना चाहते नीचे.
1: माता की चौकी में शामिल हुई तमन्ना भाटिया. ऐसे में उन्होंने शेयर किए हैं ये नजारे.

0: अप्सराओं की रानी मीनाक्षी की बेटी हो तुम और तुम्हारी एक बहन।
1: सीरियल अप्सरा में खास रोल निभाते नजर आएंगे अफजल खान। साथ ही नजर डाल लीजिए अप्सरा के इस नए प्रोमो पर। वह इस प्रोमो में नजर आ रही हैं अनुष्का मरचंडे, जो शो में नजर आने वाली है।
0: अपनी बहन को निरुक्ति की कैद से आजाद करवा के रहूंगी। अब यही मेरा मकसद है।
2: अप्सरा

0: छिड़ गई है सुरों की तान, सारे गावा पा के मंच पर लग गया है सुरों का तड़का। देख लीजिए ये एडवांस झलक।
1: पीपल छे

खत्म होता है सास बहू और बेटियां का सफर, कल फिर होगी आपसे मुलाकात और इसी तरह जारी रहेगा मनोरंजन का सफर। तब तक के लिए नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची

0: खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लात।
2: जम्मू कश्मीर में मौसम ने ली करवट, गुलमर्ग समेत कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, सैलानी उठा रहे शानदार मौसम का लुत्फ। त्योहारी सीजन में लोगों की जेब से जुड़ी अहम खबर, यूपीआई पेमेंट पर लगने वाले चार्ज दिवाली तक टले, 15 अक्टूबर से 2000 से ज्यादा की यूपीआई पेमेंट पर लगना था चार्ज। शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा दिन, माता रानी के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की हो रही आराधना, देशभर के मंदिरों में भक्तों की कतार। शक्ति उत्सव के रंग में रंगा झांसी, पारंपरिक परिधानों में लोगों ने खेला गरबा और डांडिया, माता रानी के भजनों पर झूमे लोग। दुर्गा पूजा के साथ प्रयागराज में रामलीला मंचन की भी दिखी रौनक, हनुमान अंश फेम, एक्टर गौतम त्रिपाठी निभाए भगवान विष्णु का किरदार।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: आज नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की हो रही पूजा, देश भर के मंदिरों में सुबह से ही उमड़ा आस्था का सैलाब। मां चंद्रघंटा की पूजा से अहंकार से मिलती है मुक्ति और सौभाग्य की होती है प्राप्ति, मां चंद्रघंटा की आराधना से बढ़ता है साहस और आत्मविश्वास, मंगल ग्रह की बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। 10 भुजाओं वाली मां चंद्रघंटा सिंह की करती हैं सवारी, लाल वस्त्र, लाल पीले फूल और मंत्र जप से मां चंद्रघंटा की पूजा बनती है सफल फलदायी। मंत्रों का जाप और घी का दीपक जलाकर करनी चाहिए मां चंद्रघंटा की उपासना, मां चंद्रघंटा की भक्ति से व्यक्ति बनता है पराक्रमी और निर्भय। मां चंद्रघंटा का रूप शांति, साहस और कल्याण का माना जाता है प्रतीक, सौम्य स्वरूप शांति और सुख करती है प्रदान। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा का भव्य श्रृंगार किया गया। मां चंद्रघंटा की उतारी गई आरती, आरती में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने जम के लगाए जय माता दी के जयकारे, भक्तों ने पूजा कर लिया मां का आशीर्वाद। दिल्ली के छतरपुर में नवरात्र को लेकर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने की मां की पूजा अर्चना। सुबह से छतरपुर मंदिर में लगे भक्तों की भीड़, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। हरिद्वार के मां चंडी देवी मंदिर में भक्तों ने की मां चंद्रघंटा की पूजा, भगवान का लिया आशीर्वाद। तीसरे दिन मां के दर्शन के लिए सुबह से ही लगी भक्तों की लंबी कतार, भक्तों ने जमकर लगाए जय माता दी के जयकारे। अंबाला में नवरात्र में मां काली की विशेष पूजा अर्चना, दुखभंजनी मंदिर में तीसरे दिन करीब 300 लीटर दूध से कराया गया माता रानी का अभिषेक। मां काली की भक्ति में डूबा अंबाला का दुखभंजनी मंदिर, दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं में दिखा खासा उत्साह। हावेरी में शारदीय नवरात्र में फूलों से सजा नवदुर्गा मंदिर, गर्भगृह में 9 रूपों की होती है पूजा। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में नवरात्र के तीसरे दिन उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए मां के दर्शन। सुबह से भक्तों की लगी लंबी कतारें, भक्तों ने जमकर लगाए जय माता दी के जयकारे। जयपुर के मां वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़, लाल साड़ी और फूलों से सजे मां का दरबार। तीसरे दिन मां को पूड़ी और हलवे का लगाया गया विशेष भोग, भक्तों ने पूजा कर लिया मां का आशीर्वाद। कोटा के वीर बालाजी धाम की अनोखी कहानी, मंदिर में तालाब से प्रकट हुई थी बालाजी की मूर्तियां, दूर दराज से अर्जी लगाने पहुंच रहे श्रद्धालु। सूरत में मां दुर्गा की भक्ति का अनोखा अंदाज, 75 प्रीमियम मोटरसाइकिलों से तैयार की गई मां आदिशक्ति की विशाल आकृति। 10 दिनों की तैयारी के बाद 75 प्रीमियम बाइक से बनाई गई मां आदिशक्ति की विशेष आकृति, ड्रोन कैमरे से कैद हुई अनोखी प्रस्तुति ने खींचा सभी का ध्यान। अमेरिका के न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर दुर्गा उत्सव की धूम, फादर डफी स्क्वायर पर 2 दिवसीय आयोजन में उमड़े प्रवासी बंगाली। पूजा पाठ महालया की रस्में, संगीत और नृत्य ने बांधा समा, बंगाली गीतों डांस और दश महाविद्या डांस ड्रामा ने दर्शकों का मनमोहा, अलग अलग समुदाय के लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में भारतीय संस्कृति का दिखा रंग, दूसरे दुर्गा उत्सव में बच्चों और युवाओं ने भी शानदार प्रस्तुतियां दी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में अनोखा दुर्गा पूजा पंडाल बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। नेवारीगुड़ गांव में 117 देवी देवताओं की झलक ने श्रद्धालु का मन मोहा। कवर्धा में नेवारीगुड़ गांव में दुर्गा पूजा के लिए भव्य पंडाल जो है विशेष तौर पर सजाया गया, वहां के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्थित श्री रंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर में नवरात्रि उत्सव की शुरुआत, देवी रंगनायकी की पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हजारों श्रद्धालु। नवरात्रि के रंग में रंगा तमिलनाडु का प्रसिद्ध श्री रंगम मंदिर, मंदिर में पूजा अर्चना के साथ भक्तों ने लिया मां का आशीर्वाद। कोलकाता के एलन पार्क में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने संथाली संघ दुर्गा पूजा पंडाल का किया उद्घाटन, मां के किए दर्शन। पश्चिम बंगाल के नादिया में कमलपुर अभियान संघ की दुर्गा पूजा बनी आकर्षण का केंद्र, पंडाल में 117 मूर्तियों की अनोखी झलक देखने पहुंच रहे लोग। नादिया में दुर्गा पूजा के साथ सेवा और सहयोग की मिसाल, करीब 4000 महिलाओं को वस्त्र वितरित किए गए। बेंगलुरु के कैंपागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दशहरा और नवरात्रि समारोह की शुरुआत, मशहूर संगीत निदेशक हमस लेखा ने किया उत्सव का उद्घाटन। उत्सव के जरिए भारतीय संस्कृति और परंपराओं की झलक पेश की गई, ढोल नगाड़ों के धुन पे थिरके लोग। तमिलनाडु के ऊटी में नवरात्रि की अनोखी छटा नजर आई, ब्रह्मा कुमारी संस्था ने अपनी 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गोल प्रदर्शनी का आयोजन किया। अमरावती के अंबा माता और एक वीरा माता मंदिर में नवरात्रि के दौरान गोंधल की धूम नजर आई, गोंधल यानी की जागर के जरिए माँ जगदम्बे की होती है पूजा आराधना। गोंधल को कर पल्लवी और नेत्र पल्लवी के नाम से भी जाना जाता है, युवा पीढ़ी को भी इस कला से जोड़ने का हो रहा है प्रयास। महाराष्ट्र की लोक संस्कृति में गोंधल का है विशेष स्थान, कलाकार कला के माध्यम से देवी की महिमा का गुणगान करते हैं। दुर्गा पूजा में माँ उग्रतारा धाम में लगा भक्तों का तांता, यहाँ माँ की अष्ट धातु से बनी प्रतिमा की होती है उपासना। मंदिर परिसर में साधना कक्ष में बच्चे जवान और बुजुर्ग समेत साधना और दुर्गा पाठ करने में है लीन, ये बच्चे 24 घंटे करते हैं दुर्गा पाठ। नवरात्र और दुर्गा पूजा को लेकर लखनऊ पुलिस अलर्ट मोड पे, भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिला पुलिस, मोबाइल पुलिस और अतिरिक्त बल की तैनाती। मुंगेर के कलाकार की अनूठी भक्ति, 3 सेंटीमीटर के पीपल पत्ते पर उकेरी नारी शक्ति का स्वरूप। आधुनिक गरबा के दौर में जामनगर में अंगारों पे नंगे पैर रास और माशुल रास बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। काठियावाड़ी पारंपरिक वेशभूषा में युवक अलग अलग प्रकार से रास करते हैं, प्रस्तुत हैरान कर देता है अंगारा रास, जलते अंगारों पर युवा चलते हुए नजर आते हैं। इन रोमांचक प्रस्तुतियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उमड़ते हैं, 80 साल पुरानी है ये परंपरा। गुजरात के खेड़ा में नवरात्रि के तीसरे दिन मां अंबा की विशेष आरती हुई, पारंपरिक मणिपुरी वेशभूषा में सजी बेटियों ने दिशानदार प्रस्तुति। नवरात्र उत्सव पे एनआरआई परिवार 10 दिनों तक गांव में रहकर करते हैं मां अंबा की आराधना, पारंपरिक गुजराती गरबे में होते हैं शामिल। सरूर गांव की बेटियों ने मणिपुरी वेशभूषा में दिखाई मां अंबा की आरती कर भारतीय संस्कृति की विविधता, बेटियों ने दिखाई संस्कृति की झलक।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असर कारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। यह सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्तर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंधपत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में ये है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं, फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: जम्मू कश्मीर में मौसम ने ली करवट, गुलमर्ग समेत कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, सैलानी उठा रहे शानदार मौसम का लुत्फ। त्योहारी सीजन में लोगों की जेब से जुड़ी अहम खबर, यूपीआई पेमेंट पर लगने वाली चार्ज दिवाली तक टले, 15 अक्टूबर से 2000 से ज्यादा की यूपीआई पेमेंट पर लगना था चार्ज। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन, माता रानी के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की हो रही पूजा आराधना, देश भर के मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें। शक्ति उत्सव के रंग में रंगा झांसी, पारंपरिक परिधानों में लोगों ने खेला गरबा और डांडिया, माता रानी के भजनों पर झूमे लोग। दुर्गा पूजा के साथ प्रयागराज में रामलीला मंचन की भी दिखी रौनक, हनुमान अंश फेम, एक्टर गौतम त्रिपाठी ने निभा रहे भगवान विष्णु का किरदार।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
2: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश प्रार्थना हो स्वीकार में, और मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। नवरात्रि के हर दिन की महिमा खास है और देवी माँ का हर रूप है अनुपम। इन 9 दिनों में देवी के सभी स्वरूपों की भव्य उपासना की जाती है। आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि के चौथे दिन पूजे जाने वाली देवी के महिमा के बारे में, जिनकी उपासना करके न सिर्फ मनोकामनाओं की पूर्ति की जा सकती है बल्कि नव ग्रहों को भी बलवान बनाया जा सकता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने का मंत्र आखिर क्या है। तो चलिए आइए कर लेते हैं माँ कुष्मांडा के दिव्य दर्शन।

0: जो सूर्यवासिनी है, अंधकार नाशिनी है, जिनकी आभा सूर्य के समान चमकीली है, उन्हें समस्त ब्रह्मांड के तेज की स्वामिनी माना गया है। धर्मग्रंथ के जानकार कहते हैं कि जब चारों तरफ छाया था अंधकार और सृष्टि का नहीं था अस्तित्व, कहते हैं कि तब माता ने मंद मंद मुस्कान से ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति की, इसलिए माता को आदिशक्ति और जगत जननी कहा गया, जिनकी कृपा का फल है अमोघ, अक्षय है, जिनके हाथ में सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। ऐसी भगवती के विराट स्वरूप को देव महादेव सभी नमन करते हैं।
1: दुर्गा कवच में इनको कहा गया है कुष्मांडिज चतुर्थकम। कुष्मांडा चतुर्थ दिवस की देवी हैं और कुष्मांडा नाम उस परंपरा, उस दिव्य शक्ति से जोड़ा जाता है जिसने अपनी सृजनात्मक शक्ति से ब्रह्मांड को प्रकाशित किया। इन्हें सौर ऊर्जा और जीवनदायिनी शक्ति की भी द्योतक माना जाता है। यह कुष्मांडा देवी हैं जिसके अंदर पूरा संसार समाहित हो, उस देवी का नाम कुष्मांडा है।
0: जिनकी उपासना से रोग शोक का नाश होता है, माना जाता है कि माँ दुर्गा का चौथा भव्य स्वरूप है माँ कुष्मांडा। कहते हैं कि नवरात्र में जो भी भक्त माता कुष्मांडा की विधिवत उपासना करता है, माता की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हम अपनी खास पेशकश में आपको माता कुष्मांडा की महिमा बताएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि कैसा है भगवती का स्वरूप। माँ कुष्मांडा सिंह पर सवार, बहुत शांत मुद्रा की भक्त वत्सल देवी हैं। आठ भुजाओं वाली माँ कुष्मांडा के एक हाथ में कुंभ है, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हाथ में गदा। माँ के चौथे हाथ में सिद्धियों और निधियों का जाप करने वाली माला है। माँ कुष्मांडा के बाकी हाथों में कमल का फूल और अस्त्र शस्त्र विद्यमान है। माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की उपासना से जटिल रोगों से मुक्ति मिल जाती है और भक्तों के समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं माता की उपासना से आध्यात्मिक उन्नति होती है। चलिए आपको बताते हैं कि माँ कुष्मांडा की शास्त्रों में महिमा क्या है। नवरात्रि की चतुर्थी तिथि को माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। उनकी हल्की हंसी से ही उत्पन्न हुआ है ब्रह्मांड, इसलिए उन्हें कुष्मांडा नाम मिला। संसार में जितना भी तेज है वो इन्हीं से उत्पन्न हुआ है। माँ का वाहन सिंह है, माँ की आठ भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके सात हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। माँ के आठवें हाथ में सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देने वाली जपमाला है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुम्हड़ कहते हैं, इसलिए इन देवी को कुम्हड़ा विशेष रूप से प्रिय है। ज्योतिष में इनका संबंध बुध ग्रह से है। माँ कुष्मांडा अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं।
1: माँ कुष्मांडा के स्वरूप किया अगर वर्णन किया जाए तो यह अष्टभुजा देवी हैं और सिंह पर सवार हैं और उनके हाथों में विविध प्रकार के आयुध और हाथ में कलश लिए हुए हैं, ऐसा देवी का स्वरूप है। सुरा संपूर्ण कलशम रुद्रालुप्तमेव च अधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में, ऐसा इनका स्वरूप शास्त्रों में बताया गया है।
0: अद्भुत है माँ कुष्मांडा की महिमा। इनकी उपासना शांत मन से और मधुर ध्वनि के साथ करनी चाहिए। माना जाता है कि अजय होने का वरदान भी माँ कुष्मांडा से ही मिल सकता है। तो आइए जान लेते हैं जगदम्बा के इस स्वरूप की उपासना कैसे करना फलकारी होगा। हरे वस्त्र धारण करके माँ कूष्मांडा का पूजन करें। पूजा के दौरान माँ को हरी इलायची, सौंफ या कुम्हड़ा अर्पित करें। पूजा के दौरान हल्की सुगंध और घंटी आदि का प्रयोग जरूर करें। इसके बाद उनके मुख्य मंत्र ओम कूष्मांडा देव्ये नमः का 108 बार जाप करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। इस दिन माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप भी लाभकारी होगा। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि लंबी आयु, प्रसिद्धि और शोहरत पाने के लिए माँ कूष्मांडा की उपासना की जाती है। माना जाता है कि कुंडली के बुध से है माँ कूष्मांडा का संबंध। तो आइए जानते हैं माँ कूष्मांडा की कृपा से कैसे मिल सकता है हमारे जीवन के सभी व्याधियों के दूर होने का वरदान। माँ कूष्मांडा की उपासना से हकलाहट, वाणी और अभिव्यक्ति की समस्या दूर होती है। शिक्षा और एकाग्रता से जुड़ी सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। मानसिक समस्याएं और दुविधा जैसी परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। त्वचा और रूप सौंदर्य की समस्याओं में भी जल्द आराम मिलता है। कान, नाक और गले के रोग में भी माँ कूष्मांडा की कृपा से दूर हो सकते हैं। धन और कारोबार की हर समस्या का समाधान करती है माँ कूष्मांडा।
1: कूष्मांडा मतलब दुर्गा, जिसके अंदर सारा संसार जिनको समाहित जिनके अंदर हो, तो इनकी आराधना में जितनी भी श्रद्धा भक्ति भाव से हो सके इन भगवती का पूजन करके हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो हमें पहले भी बताया करो चंडी विनायक, तो जो चंडी रूप है दुर्गा का, यह रूप दुर्गा दुर्गति दूर कर मंगल कर सब काज, ऐसा भी कहा गया है कि दुर्गति को दूर करती हैं और सारे जीवन के कार्यों को मंगलमय बना देती हैं। इसलिए इनका स्वरूप हर प्रकार से पूजन दर्शन से लाभदायी होता है।
0: नवरात्रि में माँ के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा का ध्यान करें। विधि विधान से माँ की पूजा आराधना करें। समस्त कष्टों से मुक्ति पाने का यही सबसे उत्तम रास्ता है। आगे हम जानेंगे माँ कूष्मांडा का प्रिय भोग और सफलता पाने का महामंत्र, साथ ही जानेंगे माँ की कृपा से कैसे बलवान कर सकते हैं कुंडली का बुध। तब तक आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: माँ कूष्मांडा की विशेष कृपा पाने के लिए भक्ति भाव से उनकी उपासना करना बेहद जरूरी है और अगर माँ को उनका विशेष भोग अर्पित कर दिया जाए तो यकीनन देवी माँ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगी। नवरात्रि के 9 दिनों की उपासना से 9 ग्रह भी बलवान हो जाते हैं, तो आखिर नवरात्रि के चौथे दिन की उपासना से कौन सा ग्रह आपका बलवान होगा और देवी से कैसे पाएं खुशियों का वरदान, चलिए जानते हैं।

0: कहा जाता है कि ब्रह्मांड की रचना करने के बाद देवी ने अपनी मुस्कान से ही अलग अलग शक्तिशाली देवों की रचना की। कुछ मान्यताओं और कथाओं में मां कूष्मांडा को ही तीन शक्ति देवियों का जनक माना गया है।
1: इनका तो अगर हम मंत्र कहें तो इनका तो मूल मंत्र ही जो नवार्ण मंत्र हमारे यहाँ जप का कहा गया है, दुर्गा सप्तशती में जो बताया गया है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे, इसमें ऐम से महाकाली, ह्रीम से महालक्ष्मी, क्लीम से सरस्वती और चामुंडा से दुर्गा, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती सहिता त्रिगुणात्मिका भगवती दुर्गा। तो यह इनका जो पूजन करने से त्रिगुणात्मिका जो शक्तियां हैं महाकाली का महालक्ष्मी महासरस्वती तीनों के पूजन दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है।
0: तो देखा आपने, ब्रह्मांड को जन्म देने वाली देवी से ही जन्मी है ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां भी। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि नवरात्र में मां कूष्मांडा की उपासना अमोघ है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो अगर मां कूष्मांडा को उनके प्रिय भोग अर्पित किए जाएं तो अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती है मां। तो देखिए कौन सा भोग है मां कूष्मांडा को अति प्रिय।
1: मां के प्रसाद में पेठा, मुख्य रूप से पेठा जो एक सफेद कुछ कोहणे का बनता है पेठा, वह प्रसाद भगवती को भोग लगाना चाहिए। पेठे से बनी मिठाइयां हैं और अगर पूरा नैवेद्य भोग लगाना हो भोजन का तो सब्जी में भी जो हरा कद्दू जिसको हम कोहणा बोलते हैं उसकी सब्जी बना करके, और इस समय मूल रूप से है कि सात्विक भोजन बनना चाहिए, शुद्ध जल का प्रयोग करना चाहिए और सात्विक भाव से भगवती का नैवेद्य बना के प्रसाद भगवती को अर्पित करना चाहिए।
0: माँ कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं, फिर मालपुए को किसी ब्राह्मण या गरीब को दान दे दें। ऐसा करने से बुद्धि के विकास के साथ ही निर्णय क्षमता भी उत्तम हो जाएगी। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि कुंडली के बुध से संबंध रखने के कारण कुंडली के बुध से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान बड़ी ही आसानी से पाया जा सकता है। माना जाता है कि अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर अवस्था में है तो देखिए नवरात्र के चौथे दिन किन उपायों से बलवान होगा आपका बुध। हरि वस्त्र धारण करके मां की पूजा करें, मां को हरि के साथ पंचमुखी रुद्राक्ष की माला अर्पित करें, इसके बाद मां दुर्गा के किसी भी मंत्र का जाप करें, फिर बुध के मंत्र ओम बूम बुधाय नमः का 108 बार जाप करें, माला को धारण कर लें या अपने पास रख लें। आज के दिन मां कूष्मांडा को हरी इलायची अर्पित करें, आपकी बुध संबंधी समस्या दूर होंगी। मां कूष्मांडा की कृपा से आयु यश बल और धन में अपार वृद्धि होती है। नवरात्रि के चौथे दिन मां के मंत्रों का जाप करने से हमेशा बनी रहती है मां कूष्मांडा कृपा दृष्टि। तो देखिए मां कूष्मांडा का वो चमत्कारी मंत्र, माना जाता है कि इन मंत्रों का जाप गुप्त रूप से किया जाए तो उसके चमत्कारी लाभ देखने को मिल सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडा रूपेण संस्था, नमस्तस्तये नमस्तस्तये नमस्तस्तये नमो नमः। इस मंत्र का जितना ज्यादा जाप करेंगे माँ की कृपा उतनी ही ज्यादा बरसेगी।
1: सर्वोत्तम है पूरा दुर्गा कवच का पाठ करें, मार्कंडेय पुराण दुर्गा सप्तशती में जो दुर्गा कवच है उसका पाठ करें, क्योंकि आज का जो सांसारिक जीवन है अशांत है, बहुत से प्रकार की समस्याएं जीवन में हैं, तो दुर्गा कवच का पाठ तो सर्वोत्तम है। और नहीं तो फिर आप धूप या दीप जला करके नवार्ण मंत्र, लाल चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला या स्फटिक की माला लेकर के गोमुखी में, क्योंकि गोप हमारे यहाँ कहा गया गोपनीयम प्रयत्नेन, कोई भी जप गुप्त होना चाहिए, तो गोमुखी में हाथ डाल करके और तर्जनी उंगली का प्रयोग माले में न हो, 108 बार कम से कम ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे इस मंत्र का जप करना चाहिए।
0: माना जाता है कि नवदुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की उपासना से जन्म जन्मांतर के कष्ट और निराशा का अंत हो जाता है। आगे हम आपको बताएंगे माँ कूष्मांडा को प्रसन्न करने का महा उपाय, आप बने रहिए हमारे साथ।
2: तो आज हम आपको बता रहे हैं नवरात्रि के चौथे दिन की विशेषता और माँ कूष्मांडा को प्रसन्न करने के उपायों के बारे में। तो चलिए अब आपको बताते हैं एक ऐसा अचूक उपाय जिससे प्रसन्न होंगी देवी कूष्मांडा और आपको देंगी खुशियों की सौगात। इन उपायों को अपनाएं और देवी माँ का आशीर्वाद पाएं।

0: माना जाता है कि नवरात्र की चौथी रात माँ कूष्मांडा की उपासना करने से माता अपने भक्तों पर कृपा लौटाती है। माना जाता है कि माँ कूष्मांडा की उपासना करने से व्याधियों में मुक्ति करती है और उसे सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। साथ ही माना जाता है कि माता की उपासना करने से आत्मविश्वास और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, मन को सुकून मिलता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि माँ कूष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए ज्योतिष में कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों से माँ कूष्मांडा की कृपा बहुत जल्द मिल सकती है। तो आइए जानते हैं माँ को प्रसन्न करने के महा उपाय। नवरात्रि में विवाहित महिला की पूजा करें, उन्हें भोजन में दही और हलवा खिलाएं। इसके बाद उन्हें फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान दें। इससे माँ कूष्मांडा प्रसन्न होती है और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है।
1: महाप्रयोग के बारे में कहा जाए तो इस दिन भगवती की दुर्गा रूप में उपासना करनी चाहिए, और क्योंकि दुर्गा भय का नाश करती हैं, तो उस भय से निकालने वाली, उस भय को दूर करने वाली जो देवी हैं, इन देवी को एक नारियल अर्पण करें और अर्पण करके भगवती से प्रार्थना करें, भगवती मैं यह नारिकेल आपको बलि रूप में प्रदान करता हूँ, आप इस बलिदान को ग्रहण करिए और हमारे जीवन में, हमारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करिए।
0: माना जाता है कि नवरात्र में हर दिन देवी की उपासना के लिए फलकारी है, तो आप भी नवरात्र की चौथी तिथि पर माँ कूष्मांडा की सच्चे मन से साधना करें, जिससे आपकी साधना से देवी माँ प्रसन्न हो जाएं और आपको मिल सके सुखी जीवन का वरदान। तो आप भी ज्योतिष में बताए इन उपायों को अपनाएं और माँ कूष्मांडा से सुख संपन्नता का वरदान पाएं।
2: तो चलिए इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: नवरात्रि, माँ दुर्गा की भक्ति, गरबा और रास का उत्सव, लेकिन गुजरात के जामनगर में रास की एक ऐसी परंपरा है जो पिछले 80 साल से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यहाँ जलते अंगारों पर नंगे पैर रास होता है, तो हाथों में जलती मशाले लेकर भी कलाकार अपनी कला दिखाते हैं। देखिए आस्था और परंपरा की ये अनूठी तस्वीर।
7: ढोल की थाप, माँ के जयकारे, और रास में डूबे भक्त, यहाँ परंपरा सिर्फ निभाई नहीं जाती बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाई जाती है। पटेल युवक गरबी मंडल में पिछले 80 साल से नवरात्रि का उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ आधुनिक गरबा के साथ देखने को मिलती है लोक संस्कृति की एक अनोखी झलक। पारंपरिक वेशभूषा में युवक अलग अलग अंदाज में रास पेश करते हैं। दहकते अंगारे और उन पर नंगे पैर रास, इसे कहते हैं अंगारा रास। आग के बीच कदमों की ये लय लोगों को हैरान कर देती है। हर तरफ नजरें टिकी है इस अनोखी प्रस्तुति पर।

0: लेकिन जामनगर के इस गर्मी ने अपनी पुरानी पहचान नहीं छोड़ी। बुजुर्गों से नई पीढ़ी तक पहुंची ये परंपरा बताती है कि लोक संस्कृति की असली ताकत उसे मिलकर सहेजने में है। माँ की भक्ति, लोक संस्कृति का रंग और 80 साल की विरासत, जामनगर की ये गर्मी आज भी यही संदेश देती है कि परंपराएं तभी जीवित रहती है जब अगली पीढ़ी भी उन्हें मन से अपनाती है। जामनगर से दर्शन ठक्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए अब चलते चलते आपको उन वीडियोस के साथ छोड़ जाते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें कुछ हंसाने वाले हैं तो कुछ इमोशनल कर देने वाले हैं।
2: एक पिता के लिए उसकी बेटी किसी राजकुमारी से कम नहीं होती। हालात चाहे जैसे भी हों, अपनी लाड़ली की खुशी का ख्याल वो हर पल रखता है। इस वीडियो में भी पिता और बेटी के बीच ऐसा ही प्यारा रिश्ता दिखाई दे रहा है। पिता साइकिल पर बेटी को आगे बैठाए हुए हैं और बड़े प्यार से उसके बाल संवार रहे हैं। बेटी भी आराम से बैठकर इस पल का आनंद ले रही है। आसपास मौजूद लोग भी इस खूबसूरत नजारे को देखकर मुस्कुरा उठते हैं। पिता का ये छोटा सा प्रयास दिखाता है कि बच्चों के लिए उनका प्यार ही सबसे बड़ी दौलत है।

0: छोटी छोटी बच्चियां, रंग बिरंगे परिधान और मिथिला संस्कृति की खूबसूरत झलक। इस प्रस्तुति ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सजी धजी बच्चियां मंच पर पूरे उत्साह के साथ ताल से ताल मिलाती नजर आ रही हैं। उनके डांस के हर स्टेप में अभ्यास और आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। पारंपरिक संस्कृति को इतनी कम उम्र में इस खूबसूरती से पेश करना वाकई खास है। बच्चियों की शानदार प्रस्तुति दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। ऐसे कार्यक्रम बच्चों को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के साथ ही उनकी प्रतिभा को निखारने का भी बेहतरीन मौका देते हैं। नाना और नाती का रिश्ता भी बेहद खास होता है, जहां प्यार के साथ खूब लाड दुलार भी मिलता है। इस वीडियो में नाना और नाती के बीच ऐसा ही प्यारा पल देखने को मिल रहा है। नाती आराम से बिस्तर पर लेटा है और नाना बड़े प्यार से उसके हाथ पैर और पूरे शरीर को दबाते हुए उसकी सेवा कर रहे हैं। बच्चे की हर छोटी जरूरत का ध्यान रखते नाना का अंदाज दिल जीत लेता है। परिवार में बुजुर्गों और बच्चों के बीच ऐसा अपनापन रिश्तों की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। नाना का ये दुलार देखकर चेहरे पर मुस्कान आना लाजिमी है। बच्चों की शरारतें कभी कभी मम्मी की मुश्किलें बढ़ा देती हैं और इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही मजेदार नजारा देखने को मिल रहा है। दरअसल बच्चों ने अलमारी खोलकर उसमें रखे बर्तनों को ही अपना खिलौना समझ लिया। फिर क्या था, खेलने के लिए सारे बर्तन बाहर निकालने लगे। बच्चों के लिए ये खेल मजेदार था, लेकिन मम्मी के लिए काम बढ़ाने वाला। अब घर समेटने और बर्तन वापस जमाने की जिम्मेदारी भी तो उन्हीं की है। बच्चों की मासूम समझ और उनकी इस हरकत को देख कर हंसी आना तय है। आखिर बचपन की शरारतें भी तो घर की रौनक होती है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है,

0: इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: जम्मू कश्मीर में मौसम ने ली करवट, गुलमर्ग समेत कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, सैलानी उठा रहे शानदार मौसम का लुत्फ। यूपीआई पेमेंट पर लगने वाले चार्ज दिवाली तक चले, 15 अक्टूबर से 2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर लगना था चार्ज। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन, माता रानी के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की हो रही आराधना, देश भर के मंदिरों में भक्तों की कतार। शक्ति उत्सव के रंग में रंगा झांसी, पारंपरिक परिधानों में लोगों ने खेला गरबा और डांडिया, माता रानी के भजनों पर झूमे लोग। दुर्गा पूजा के साथ ही प्रयागराज में रामलीला मंचन की भी रौनक, हनुमान अंश फेम एक्टर गौतम त्रिपाठी निभा रहे हैं भगवान विष्णु का किरदार।

0: नौ दिन नौ रूप नौ गुण, आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। नवरात्र पर माँ के नौ रूपों और नौ गुणों का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है, इसी को समझेंगे। साथ ही वैज्ञानिक नजरिए से भी आस्था भक्ति के इस महा उत्सव को जानने और समझने की कोशिश होगी। नवरात्र में उपवास, जप तप और अनुशासन का विशेष महत्व है। हम धर्म, आध्यात्म और विज्ञान के जानकारों से समझेंगे कि नवरात्र की आस्था भक्ति से जुड़ी दिनचर्या का हमारे जीवन पर कैसा और कितना प्रभाव पड़ता है, और कैसे शक्ति की साधना से हम खुद को साध सकते हैं, जीवन में अच्छी सेहत और सफलता का वरदान भी पा सकते हैं। तो माँ के हर रूप, हर स्वरूप का अपना अलग महत्व है। माँ के हर रूप में कुछ गुणों का वर्णन भी किया जाता है। अगर माँ के दर्शन के साथ साथ हम उनके गुणों को भी जीवन में आत्मसात कर लें, तो फिर हमें कभी किसी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम माँ के नौ स्वरूप, उनके गुणों को समझेंगे। माँ शैलपुत्री दृढ़ता और संकल्प का प्रतीक है। माँ का ये स्वरूप बताता है कि हमें अपने लक्ष्यों की ओर पूरे निश्चय और संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। माँ का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है, जो तप और अनुशासन का प्रतीक है। और माँ का ये स्वरूप ये बताता है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए तप और अनुशासन ही एकमात्र रास्ता है। माँ का चंद्रघंटा रूप साहस और सजगता का प्रतीक है, जो कि ये बताता है कि अपने लक्ष्य की धुन में मगन साधक को सफलता मिलकर ही रहती है। माता का कुष्मांडा रूप सृजन और प्रतीक शक्ति का प्रतीक है, और माँ का ये स्वरूप बुद्धि, विवेक और सृजन का महत्व बताता है। माँ स्कंद माता प्रेम और करुणा की प्रतीक है, और इन गुणों के विकास के बिना शक्ति और सामर्थ्य का कोई मोल नहीं है। माँ कात्यायनी, अगर हम इनके स्वरूप को समझें तो फिर माँ कात्यायनी का रूप ये बताता है कि अन्याय का प्रतिकार और दुष्टों का प्रहार, दुष्टों पर प्रहार बहुत जरूरी है, ताकि अधर्म पर धर्म की विजय सुनिश्चित हो सके। माँ कालरात्रि वैराग्य और शुद्धि का मंत्र देती हैं, और माँ भय का नाश करती हैं और सकारात्मकता का संचार करती हैं। माँ महागौरी शुद्धता पवित्रता का प्रतीक है, और माँ का ये स्वरूप जीवन में सादगी, शांति और सौहार्द का महत्व बताता है। माँ सिद्धिदात्री आत्मज्ञान और संपूर्णता का प्रतीक है, और जिसने भी माँ के पहले के आठ गुणों को जीवन में धारण कर लिया, उन्हें अपना लिया, उसे ये गुण स्वतः ही हासिल हो जाता है और उसका जीवन हर प्रकार से संपन्न हो जाता है। तो आज हम नवरात्र का धार्मिक आध्यात्मिक महत्व समझेंगे, साथ ही साथ उपवास का महत्व कितना है, सेहत पर इसका कितना असर होता है, सेहत से कनेक्शन क्या है, और साथ ही धर्म आध्यात्म के जानकारों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि तप, अनुशासन और संयम से कैसे जीवन में नव ऊर्जा का संचार होता है, और इस नवरात्र कैसे सुख समृद्धि सफलता का वरदान पाएं। ये तन मन और अंतरकरण का शुद्धि का पर्व है, मन पर विजय का पर्व है। तो देश भर में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नवरात्र की रौनक है, उत्साह उमंग उल्लास के साथ ही शारदीय नवरात्र मनाए जा रहे हैं। शहर शहर आस्था भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है, और माँ के दर्शन करने और उनसे आशीर्वाद पाने के लिए श्रद्धालु किस तरीके से माँ के दरबार के बाहर पहुंचे हैं लंबी कतारों में। भक्तों के चेहरे पर खुशी है, माँ के दर्शन का उत्साह है, और इस शक्ति उत्सव को खास बना रहा है। आज नवरात्र का तीसरा दिन है, और आज माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। माँ चंद्रघंटा को राक्षसों का वध करने वाली माँ कहा जाता है। तो चलिए आज माँ के नौ रूपों को ही समझने की कोशिश करेंगे, और ये सब बताने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित्रा अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, श्रुति खरबंदा जी हैं, वाणी आर्या जी हैं, राज मिश्रा जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सुमित्रा जी आप ही से करना चाहूंगी, आज हम माँ चंद्रघंटा की आराधना कर रहे हैं, किस तरीके से माँ को प्रसन्न किया जा सकता है, और ऐसी कौन सी चीज है जो हम माँ से पा सकते हैं?
1: जी पहले GLT के माध्यम से आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। हम तो कलकत्ता में बैठे हैं, यहाँ बहुत धूमधाम से नवरात्र मनाए जाते हैं।
0: आपको तो दुर्गा आगमन का इंतजार होगा वहां पर,
1: एकदम कल से शुरू हो गया फिर सब कुछ।
0: हाँ, रौनक असली षष्ठी से शुरू होगी।
1: एकदम एकदम चंद्र घंटा की अगर बात शुरुआत करते हैं तो देखिए देवी के माथे पर आप देखेंगे चंद्रमा जैसा बना हुआ है। इससे हमें समझ में आता है कि कैसे हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जब देवी का जब आविर्भाव हुआ था, फर्स्ट टाइम देवी ने कब प्रकट हुई थी, आप हम ये जानते हैं कि जब शिव जी से शादी होती है पार्वती जी की, वो आ जाते हैं अपने पूरे राक्षसों को दल लेकर, और उस पूरी बारात को देखकर काफी लोग डर जाते हैं। तब पहली बार चंद्रघंटा देवी ने अपने स्वरूप को प्रकट किया था। और इसमें देखिए दो चीज एक साथ है, एक बहुत एग्रेशन का रूप भी है जिसमें वो सारे अस्त्र शस्त्र ले रखी है, दसों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र है और वो पूरा तत्पर है लड़ने के लिए, और फेस इतना सौम्य है कि वो एक बैलेंस दिखाती है, और उस बैलेंस के साथ वो शिव जी को बोलती है कि आप अपने दूल्हे के स्वरूप में आइए तब मैं आपसे विवाह करूंगी। तब भगवान अपना एक सौम्य दूल्हे का रूप लेते हैं और उनकी विवाह कंप्लीट होती है। हम लोग जानते हैं कि जब महिषासुर का वध कर रही है दुर्गा जी, तो इसी स्वरूप को लेकर उन्होंने वध किया था। तो जब ये स्वरूप लेती है, इनके तीन नेत्र इसी एक स्वरूप में है जिसमें तीन नेत्र हैं देवी के, जब लास्ट में जब बहुत ज्यादा भीषण लड़ाई हो जाती है तब वो तीसरे नेत्र को अपना खोलती है। तो ये एक स्वरूप काफी खास स्वरूप है, क्योंकि इसमें हमें पूरे टाइम आप देखिएगा एक बैलेंस को सिखाया जा रहा है। हम काफी बार बोलते हैं जब हमारे पास लोग भी आते हैं तो क्या बोलते हैं कि किस्मत हमारा साथ नहीं देती, पर ज्योतिष की बात करें चाहे आध्यात्म की बात करें, हम सब ये की बात जरूर बोलते हैं कि भगवान उसी का साथ देते हैं और उसी के ही लिए सब चीज अच्छा वर्क करती है जो बहुत ज्यादा अनुशासित हो, बहुत ज्यादा केंद्रित होकर कर्म करता है और तैयार रहता है। देखिए देवी हर समय पूरी रेडी है, अस्त्र शस्त्र के साथ एकदम रेडी है कि अब मुझे अब जाना है और युद्ध करना है, लेकिन इसको वो बैलेंस रखती है। तो अगर हम इस देवी को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमारे तीन चार चीजें हैं जो हम जरूर करेंगे। देवी को हम सबसे पहले 2 मिनट तक आप घंटा बजाइएगा, बेल बजाकर उनको आप अगर जो भी आपकी मनोकामना है या कुछ भी आप बोलना चाहते हैं, क्योंकि इसी देवी के बारे में ऐसा बोला जाता है कि बहुत बड़ी सेना को इन्होंने अस्त्र शस्त्र से लड़ाई करके नहीं हराया था, उनके पास जो बेल है इस बेल के साउंड से और शेर की गर्जन से आधे से ज्यादा युद्ध में लोग हार गए थे। तो अगर हमें इस देवी को मनाना है तो ओम देवी चंद्र घंटाए नमः इस मंत्र का जाप करेंगे और देवी को अगर प्रसाद चढ़ाना है तो दूध से बना हुआ कोई भी प्रसाद चढ़ाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम एकदम एकाग्र होकर देवी का ध्यान करेंगे तो हमारे मन में शांति आएगी और संतुष्टि आएगी। ये दो चीज आने से हम हमारे शुक्र को भी शक्तिशाली करेंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और देवी हमें
0: आज बिल्कुल। सुमित्रा जी, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है 9 दिन 9 रूप और 9 गुण, किस तरीके से अलग अलग देवी के गुणों को हम आत्मसात कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। लेकिन हम अपने इस टॉपिक पर लौटे, इसीलिए चर्चा शुरुआत में हम यहीं से कर रहे हैं क्योंकि आज माँ चंद्रघंटा का दिन है। आपने बहुत अच्छी कथा के साथ इसको समझाया। एक बार जल्दी से राज मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी, फिर उसके बाद अपने टॉपिक पे जाएंगे। आजकल वक्त कम है लोगों के पास, बहुत बिजी स्केड्यूल लोगों का रहता है। आज माँ चंद्रघंटा की अगर आराधना करनी है शाम के वक्त में तो जरा संक्षेप में हमें बता दीजिए कि कैसे करें।
2: आज गुरु शंकराचार्य ने एक बहुत सुंदर वर्णन किया है नवजोत जी। सबसे पहले तो मैं हृदय से पुनः एक बार धन्यवाद करूंगा आप सबका, जो देवी के 9 स्वरूपों पर जो शायद कहीं सुनने को ये चर्चा इस प्रकार की नहीं मिल रही, उस पर आप रोज डिस्कस कर रहे हैं और भक्तों को बहुत विशेष जानकारी प्राप्त करने का सौभाग्य जो है वो आपके चैनल के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन जब बिना सामग्री का भी पूजन किया जा सकता है, मैं दोबारा एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं कि भगवान ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चर्चित न भावा। मुझे किसी सामग्री से प्राप्त किया जाए इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। मुझे अगर प्राप्त करना है तो मुझे आप मन से प्राप्त कर सकते हैं, और उस मन से देवी की आराधना कैसे की जा सकती है। आदिगुरु शंकराचार्य का वो सुंदर वर्णन जो मानस पूजन का वर्णन आदिगुरु शंकराचार्य ने किया है, किसी भी प्लेस पर श्रद्धा पूर्वक अपने नेत्र को क्लोज करके और बैठ जाना और बैठ करके देवी के सुंदर स्वरूप का स्मरण करना और उस स्वरूप को मैं सब कुछ अर्पण कर रहा हूं, ये सिर्फ विजुलाइज करना, ये सिर्फ ध्यान करना कि मैं देवी को पुष्प अर्पण कर रहा हूं, दूध दही शहद इत्यादि अर्पण कर रहा हूं कर रही हूं, जो भी आपकी सामग्री अर्पण करने की देवी की इच्छा है वो आप मन से बहुत श्रद्धा पूर्वक देवी को अर्पण करते हैं। सिर्फ मन से अर्पण की गई सामग्री को देवी स्वीकार करती हैं इस प्रकार का वर्णन, या कोई भी देवता स्वीकार करता है इस प्रकार का वर्णन आदि गुरु शंकराचार्य ने किया है। तो आपको आज की बिजी शेड्यूल में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में आइए, श्रद्धा पूर्वक दफ्तर में आइए, सिर्फ श्रद्धा से उनका स्मरण कीजिए और जो आप चढ़ाना चाहते हैं अपने नेत्र को बंद करके श्रद्धा से सिर्फ इमेजिन करते जाइए कि मैं इसको चढ़ा रहा हूँ या चढ़ा रही हूँ, और उसके बाद ओम या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। इस मंत्र का 108 बार या 10 मिनट श्रद्धा पूर्वक जप कीजिए, आपके जीवन में सुंदर परिवर्तन देवी कृपा से जरूर होगा। जी
0: बिल्कुल, 9 रूप 9 गुण, कौन कौन से रूप कौन कौन से गुण, उन सब पर चर्चा की शुरुआत अब हम करते हैं। वान्या जी आपके पास आना चाहूंगी, एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि शारदीय नवरात्र एक तरीके से हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दौरान लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, एक तो इसका महत्व क्या है, साइंटिफिकली मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को समझाइए शास्त्रों में क्या लिखा है, क्यों लिखा है, क्यों व्रत करना है, कैसे करना है।
3: जी थैंक यू नवजोत जी, सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम बहुत खुशकिस्मत वाले हैं कि हम जीएनटी पे बैठे बैठे सभी मंदिरों के दर्शन जो है अपने घर से कर लेते हैं, अपने घर का ऑरा जो है हम पॉजिटिव बना देते हैं, तो जीएनटी हमारे जीवन में यूनिवर्स का सोर्स है। तो यहाँ पर जो आपने सवाल पूछा कि हम व्रत जो है वो क्यों करते हैं, देखिए नवरात्रि के टाइम पर अगर हम इसको साइंटिफिकली देखते हैं तो ये 9 नाइट्स ऑफ मैनिफेस्टेशन और ट्रांजिशन होता है। जब एक ऋतु से हम दूसरी ऋतु में जाते हैं यानी कि क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं तो एनवायरमेंट में बहुत सारे इंफेक्शंस फैल जाते हैं, वायरसेस बैक्टीरिया जो है बहुत प्रोवोक कर जाते हैं, स्पेशली जब चेंज ऑफ सीजन होता है। तो इस टाइम पर क्या होता है, जब चेंज ऑफ सीजन होता है आप देखते हैं फ्लू बहुत कॉमन है आजकल, लोगों में बहुत ज्यादा कोल्ड कॉफ हो रहा है, तो इस टाइम पर इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो जब इम्यूनिटी लो होती है तो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको डिटॉक्स करना बहुत जरूरी होता है और ऑर्गन्स को हील करना बहुत जरूरी होता है, जिस वजह से जब हम फास्टिंग करते हैं तो हम नॉर्मल से थोड़ा सा कम खाते हैं। और दूसरी बात, हम सात्विक फूड को जो है वो ज्यादा महत्वता देते हैं, तमस वाले फूड अवॉइड करते हैं, लहसुन प्याज जो होता है वो उसमें नहीं होता है, जिस वजह से जो है हमारा जो इम्यूनिटी है, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स को बहुत सारा रेस्ट मिलता है, तो जिस वजह से हमारी इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग होती है। व्रत मतलब उपवास, तो कहीं ना कहीं ये एक जो एक नॉर्मल साइकिल एक पैटर्न चल रहा होता है उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगा देता है। जब आप थोड़ा खाते हो ऑर्गन्स रेस्ट करते हैं हील करते हैं, आप देखेंगे आपके अंदर पेशेंस लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपको किसी भी बात पर किसी भी चीज पर जो है गुस्सा नहीं आता है। और जब आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को 9 दिन का पूरा रेस्ट मिलता है, अगर आप 9 डेज कर रहे हैं, अगर आप 2 डेज भी कर रहे हैं, तो आप देखते हैं जो आपकी ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं वो अपने आप हील करने शुरू हो जाती हैं, कोल्ड और फ्लू से जो है आपको वो भी रिलीफ मिलता है। आपका जो गट होता है, क्योंकि गट हमारा सेकेंड नर्वस सिस्टम होता है, तो आपका गट जो है साइंटिफिकली अगर देखते हैं तो पूरा रीसेट हो जाता है, क्योंकि आप कुछ दिन जो है आप कार्ब्स नहीं लेते हैं, फ्रूट्स बढ़ा देते हैं, वेजिटेबल्स जो है वो आप बढ़ाते हैं जो व्रत के खाने की होती हैं। तो साइंटिफिकली अगर इसको देखते हैं तो जब आपका गट ही पूरा रीसेट हो गया यानी कि नर्वस सिस्टम पूरा रीसेट हो गया, आप अध्यात्म की तरफ जाते हैं, ये टाइम बड़ा पावरफुल होता है, पूरा एनवायरमेंट का आभा मंडल का ऑरा जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, देवी की ऊर्जा इतनी पावरफुल होती है, इतनी पावरफुल होती है कि अगर आप मंदिर में जाके भी जो है अगर आप मंदिर में जाके कुछ आराधना उपासना करते हैं तो उसका कई गुना फल मिलता है। आप सिर झुकाते हैं तो आपका क्राउन चक्रा जो है वो खुल जाता है, आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, आपका पंच तत्व जो है वो बैलेंस होता है, मैनिफेस्टेशन जो है वो कितने गुना जो है बढ़ जाती है, देवी की शक्तियां क्वालिटीज हमारे अंदर आने लगती है, मंत्र सिद्धि हमारे अंदर आने लगती है, जाप। और जब आप व्रत करते हैं तो पूरा फोकस और कंसंट्रेशन जो है वो भी पूरा देवी में ही लगता है।
0: बिल्कुल,
3: तो इसीलिए फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है,
0: फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम एक एक करके शुरुआत करेंगे देवी के अलग अलग 9 रूपों कि उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि इस नवरात्र अगर आप देवी के हर रूप और हर गुण को आत्मसात कर लेते हैं तो जीवन बहुत सरल हो जाता है। श्रुति खरबंदा जी, सबसे पहले देवी के पहले रूप की हम बात करेंगे, कौन सा रूप है और देवी का ऐसा कौन सा गुण है जो हमें आत्मसात करना चाहिए?
4: देवी के तो 9 रूप है और
0: एक एक करके समझते हैं।
4: हाँ बिल्कुल, हम ऐसा करते हैं कि देखें हम पहले 2 रूपों की भी बात अगर हम कर लें तो शैलपुत्री की हम बात कर रहे हैं और साथ में उसके बाद ब्रह्मचारिणी रूप की बात कर रहे हैं। आज 3रा दिन है तो माँ चंद्र घंटा की जो है वो पूजा यहाँ पर हो रही है। देखिये 9 शक्तियां हैं, 9 स्वरूप है, तो कहीं ना कहीं वो एक जर्नी हमने यहाँ पे ऊर्जा की जो है दिखाने की कोशिश करी है कि माँ शैलपुत्री के रूप से लेके ब्रह्मचारिणी जो कि मतलब बहुत डिसिप्लिन में रहती है, माँ चंद्रघंटा जो बहुत निर्भीकता की जो है वो प्रतीक है कि अब शांति भी है साहस भी है, हम उनकी पूजा करते हैं निडरता के लिए। फिर उसके बाद बात आती है माँ कुष्मांडा की, तो जो कुष्मांडा रूप है वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा की वहां पे जो है बात करता है। देखिए, अगर हम नौ रूपों को, ये स्वरूपों को समझने की हम कोशिश करें ना, तो गुजरात में एक बड़ी अच्छी प्रथा मुझे वहां से याद आ रही है, मैं उसको इससे भी रिलेट करना चाहूंगी, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में ना अलग अलग रूप हैं। गर्भा कहते हैं गर्भ, तो वो जो गर्भो है मिट्टी का, जिसमें छेद होते हैं, उसके बीच में जो है दिया रखा जाता है, जो अखंड जोत होती है, और वो जो खेतरी, जैसे पंजाब में हम जैसे कहते हैं ना खेतरी हम बीज रहे हैं, तो वो जौ मिट्टी में बोक के उसके बीच में वो गर्भो रखा जाता है, तो वहां उसकी पहले पूजा होती है, और उसके बाद जो है वो नवरात्र 5 या 7 जो है उसके हम परिक्रमा करते हैं, और वो स्तुत दुर्गा की स्तुति होती है। तो यहाँ पे दिखाने की देखिए वही कोशिश है कि डिवाइन फेमिनिन, वो जो ऊर्जा है, गर्भ है जिसमें वो धारण कर रखा है, जो क्रिएटिव एनर्जी है, तो उसी के एक्सपेंशन में यहाँ पे हम आगे बढ़ते हुए जो है चलते जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा मुझे लगता है एक खूबसूरत यहाँ पर बात हो जाती है। और माँ के अलग अलग स्वरूप जो है वो हमें यही सिखाते हैं, जैसे ब्रह्मचारिणी रूप जो है वो हमें सिखाता है कि कैसे डिसिप्लिन में बहुत हमें रहना चाहिए। चंद्रघंटा रूप दिखाता है कि मन को एकाग्रचित, अगेन वही बात कि मन को एकाग्रचित करना है, क्योंकि हम शक्ति का आवाहन कर रहे हैं और हमें फुल फोकस चाहिए। कुष्मांडा का रूप है, तो हम कह रहे हैं कि देखिए ब्रह्मांडीय यहाँ पे जो ऊर्जा है, हम उसका आवाहन भी जो है वो हम कर रहे हैं। फिर आता है माँ स्कंद माता, देखिए अब यहाँ पे 5वें दिन से जो है ना वो माँ का स्वरूप ले चुकी है, तो स्कंद उनके हाथ में है,
0: जी
4: तो उस माँ को भी हम बुला रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा पेशेंस है, कि हमें उसकी धैर्य की, जो पेशेंस की जरूरत होती है इतने दिन जो हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि एक कथा भी जैसे मिलती है ना कि श्री राम जब रावण से युद्ध में थे और रावण का पलड़ा भारी पड़ने लगा था, तो उन्होंने ये जो 9 दिन है ना देवी की पूजा करी थी, 108 कमल नयन जो उनको अर्पित करने की जो कथा है, जहाँ पे माँ खुद एक आखिरी जो है वो कमल का फूल वहां से चुरा लेती है ताकि उनकी तपस्या पूरी ना हो, उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो श्री राम को याद आता है कि उनकी माँ उन्हें कमल नयन कहती थी, और वो अपना
0: जी
4: नेत्र अर्पित करने जैसे ही जाते हैं तो माँ उन्हें रोक लेती है। तो यहाँ पे दिखाते हैं कि माँ आपको कैसे प्रोटेक्ट भी कर रही है, फिर उनको वो वरदान मिला और आगे जाके उन्होंने जो है विजयदशमी के दिन जो है रावण दहन किया, ये भी आगे चलता है। लेकिन इसके बाद आता है माँ कात्यायनी का रूप। अब माँ कात्यायनी के रूप की अगर हम बात करते हैं ना, तो देखिए 6ठा दिन है, और हम यहाँ से कहते हैं कि माँ बन चुकी है लेकिन अलग अलग स्वरूप में,
0: बिल्कुल
4: और उसमें
0: श्रुति जी.
4: बहुत ज्यादा कनेक्शन पैटर्न नहीं है। तो यहाँ विवाह के लिए जिनका नहीं हो रहा होता, हम कहते हैं कि वो लोग जो है पूजा करना जो है माँ कात्यायनी के रूप की जो
0: जी
4: है वो शुरू कर सकते हैं। तो आगे के 3 दिन भी जो रूप है वो बेसिकली
0: एक एक
4: हम उसको
0: करके सभी
4: दुर्गा,
0: रूपों को समझेंगे,
4: हाँ
0: क्योंकि हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं. सुमित्रा जी, आपके पास आऊंगी. कहते हैं कि अगर हमें अपने जीवन में आत्मबल चाहिए और हमें स्थिरता चाहिए तो हम माँ शैलपुत्री की आराधना करते हैं. अगर हमें धैर्य, त्याग और ज्ञान चाहिए तो हम माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं. और आज माँ चंद्रघंटा का दिन है, जब शत्रु भय और विघ्न से मुक्ति पाने का दिन है. अभी भी समय है क्योंकि शाम पूरी बची हुई है. मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूंगी, कैसे इन गुणों को हम आत्मसात कर सकते हैं. हम पहले इन तीनों के बारे में चाहूंगी कि आप हमें बताइए, फिर उसके बाद माँ कुष्मांडा के लिए मैं राज्य आपके पास आऊंगी.
1: जी देखिए, जैसे हम जानते हैं हमारे 9 ग्रह हैं और 9 देवियां हैं और 9 दिन हैं. इसको अगर हम रिलेट करते हैं और हमारे जितने भी चक्र हैं अगर हम नीचे से शुरू करते हैं, तो सबसे फर्स्ट जब हम शैल पुत्री की बात करें तो इनकी जो साधना या आराधना होती है वो हम सबसे मूलाधार चक्र से इसकी शुरुआत करते हैं. और इसका अगर आप बोलते हैं हमारे जन्म पत्रिका के हिसाब से देखें तो सूर्य, क्योंकि सूर्य सब चीजों की शुरुआत करता है. तो अगर हम शैल पुत्री की आराधना कर रहे हैं तो हम शुरुआत की आराधना कर रहे हैं, मतलब सूर्य की आराधना कर रहे हैं. और जब शुरुआत हम करते हैं तो हमारे अंदर सबसे ज्यादा जो चीज जरूरी होती है वो होता है स्ट्रांग इरादा. तो जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें पत्थर जैसी मजबूती और इरादा बहुत जरूरी है. तो शैल पुत्री के लिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं और हम मूलाधार पे ध्यान करते हैं. हम कुछ नहीं भी अगर कर सकते हैं तो लम मंत्र का जाप करते हैं. अब जब हम नेक्स्ट आते हैं ब्रह्मचारी, ये 9 डेज में हम इवॉल्व होते हैं. इवॉल्व होने के लिए हर एक देवी के लिए हम एक एक चक्र को एक्टिवेट भी करते हैं और एक एक क्वालिटी अपने अंदर इम्बाइब करते हैं. तो सबसे पहले हमने शुरुआत की, एक इरादा किया कि मुझे कोई काम करना है, से फॉर एग्जाम्पल. अब सेकेंड जब आई ब्रह्मचारिणी, तो ये शनि से रिलेटेड है और इसमें स्वाधिष्ठान चक्र को हम एक्टिवेट करते हैं. अब यहाँ पे सेकेंड चीज जो हमसे शनि चाहते हैं वो क्या चाहते हैं कि आपने पहले तो डिसीजन लिया कि हाँ हम कोई काम करेंगे, मजबूती से करेंगे. सेकेंड में कठोरता और अनुशासन के साथ हमें लगातार मेहनत करनी होगी. ये इससे हम शनि को इम्प्रूव कर सकते हैं और ब्रह्मचारिणी के आराधना करके हम अपने अंदर इस क्वालिटी को ला सकते हैं. जब हम इस टाइम में हम एक मंत्र का जाप कर सकते हैं, वम वीएम वम वम वम इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जब हम थर्ड देवी पे आते हैं चंद्र घंटा, तो हम हमारे नाभि पे हम फोकस करेंगे और हम इस समय ये एक्टिवेशन करेंगे अपने थर्ड चक्र का। यहाँ पे हम एकाग्रता, अब सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हमें मजबूती से काम करना है, दूसरे बार में हमने कठोर मेहनत किया, थर्ड है एकाग्रता। हम अपने मन को बहुत शांत करेंगे, संतुलित करेंगे और इस समय हम रम का जाप करेंगे और हम चंद्र घंटा देवी को प्रसन्न करेंगे। तो जैसे जैसे हम एक एक देवी तक जाते जाएंगे, हम पूरा इवॉल्व होंगे और लास्ट में स्वाधिष्ठान चक्र में जाकर हमें सारी सिद्धियों की उपलब्धि हो सकती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब राज मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी। चंद्र घंटा के बाद बात हम करेंगे माँ कुष्मांडा की। माँ का ये रूप हमें क्या बताता है, क्या दिखाता है और किस तरीके से माँ के इस रूप के जो गुण है उसको हम आत्मसात कर सकते हैं अपने जीवन में?
2: स्वरूप की बात की जाए, माता कुष्मांडा एक बहुत सुंदर देवी हैं और ये सौर्य मंडल में निवास करने वाली देवी कही जाती हैं। सूर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं, ये कर्म प्रधान देवी हैं। इन्होंने ये सिखाया है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको निरंतर कर्म करना चाहिए और ये वही देवी हैं जो व्यक्ति को सफलता प्रदान करती हैं। इन देवी की आराधना उस व्यक्ति के लिए, माँ की इस स्वरूप की आराधना, माँ का पूरा, माँ एक ही है लेकिन जिस प्रकार एक साधारण माँ का डिफरेंट डिफरेंट स्वरूप होता है, उसी प्रकार माँ का जो ये वाला स्वरूप है, स्पेशली जो माँ कुष्मांडा का स्वरूप है, ये प्रसिद्धि प्रदान करने वाला स्वरूप है। जिन लोगों के मन में खास करके ये विचार उत्पन्न होता है कि नहीं मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, या जो मैं डिजर्व करता हूं करती हूं वो मुझे नहीं प्राप्त हो रहा है, या मुझे मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, या लाइक प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड या रिस्पेक्ट से रिलेटेड जितनी भी आपके मन की जो शंकाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उसको इस माँ की कृपा से, इनकी प्रार्थना से उससे मुक्ति मिलती है, आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। वेद ने उनके बारे में एक बहुत सुंदर श्लोक कहा कि सुरा संपूर्ण कलसम रुद्रादुक्तमेव दधानाः पद्माभ्याम कुष्मांडा सुदास्तु में। इन देवी के हाथ में अगर इनके स्वरूप को आप देखेंगे तो इनके स्वरूप में, इनके हाथ में एक अमृत का कलश है। एक हाथ के अंदर वास्तविकता में देखा जाए तो कमल का पुष्प आपको इनके हाथ में मिलेगा, एक हाथ में आपको माला भी मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ अगर एक हाथ की बात कर लिया जाए तो आपको धनुष बाण भी मिलेगा, एक हाथ के अंदर आपको गदा भी देखने को मिलेगा। यानी अगर मैं कहूं तो व्यक्ति के अंदर सारे गुण होने चाहिए, ये इस आदिशक्ति ने दिखाया। मैं नवजोत जी दोबारा आऊं और मुझे इस विषय पर मैं कई बार बोल चुका हूं और मुझे जब मैं शक्ति स्वरूपों की बात करता हूं तो मुझे लगता है इससे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। धीरे धीरे पता नहीं कौन सा विचार आया लोगों का और सिर्फ हमारे भारतीय सम्माननीय महिलाओं को सिर्फ ये कहने का प्रयास किया गया कि आप कमजोर है पुरुष की अपेक्षा। हमेशा ये दिखाया गया कि आप सिर्फ, अब समय बदला है और आप लोग आगे आए हैं और धीरे धीरे समाज को आगे लेकर के जा रहे हैं। अब आप लोगों को देख करके लोग, हमारी जो और भारत की बहन बेटियां हैं, उनके मन में आता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। नहीं तो पहले दिखा गया कि आपको सिर्फ चौका चूल्हा तक है, आपको सिर्फ दूसरे की बात माननी है। जबकि देवी देखिए, सबसे पहले कि देवी के हाथ में गदा है, देवी के हाथ में धनुष बाण है, यानी हमारे पहले की अगर बात की जाए शक्तियों की तो उनके अंदर सारे गुण वो संपन्न थी, वो इतनी ताकतवर थी कि महिषासुर जैसे दानों का वध कर सकती थी। तो ये इन्होंने सिखाया कि आपको अपने आप को परिपूर्ण बनाना है, आप अंदर से आपका कॉन्फिडेंस होना इंपॉर्टेंट है और अगर वो कॉन्फिडेंस है तो आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और ये बाकी प्रसिद्धियां तो आपको प्रदान करती
0: है। माँ स्कंद माता की बात करूंगी, जरा इनके बारे में हमें बताइए कि माँ का ऐसा कौन सा गुण है जिसे हम आत्मसात कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, माँ की आराधना कैसे की जाए?
3: जी, माँ स्कंद माता का जो रूप है वो क्लियरली जो है एक मदरहुड को दर्शाता है, एक नर्चरिंग क्वालिटीज को दर्शाता है और एक फेमिनिन एनर्जी को भी बहुत ज्यादा दर्शाता है। माँ स्कंद माता का ये जो रूप है ये नॉलेज को भी दर्शाता है और ये एडुकेशन को भी दर्शाता है। जब एक लेडी जो होती है, जब वो मदर बनती है तो कहीं ना कहीं उसकी फेमिनिन क्वालिटीज बहुत ज्यादा और निखर के आती है। तो ये कहता है कि जीवन में आपको अपने अंदर बहुत ज्यादा नर्चरिंग क्वालिटीज को है वो अपनाना पड़ेगा। जो भी आपके जीवन में आए, चाहे छोटा बच्चा आए चाहे कोई बड़ा आए, आप देखिए कि वो जो पर्टिकुलर इंसान है, जो पर्टिकुलर व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो है कैसे इवॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर ये इवॉल्वमेंट का बहुत ज्यादा कनेक्शन है और इनका जो कनेक्शन है वो गुरु ग्रह से है। तो गुरु ग्रह जो है वो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज को दर्शाता है, अपनी विजडम को दर्शाता है। तो ये माँ ये भी सिखाती है हमें यहाँ पर कि हमें लाइफ में जो भी डिसीजंस लेने हैं या जो भी कुछ हमें लाइफ में प्रेजेंट करना है वो हमें राइट नॉलेज के साथ करना है और वो हमें राइट विजडम के साथ सोच समझ के बोलना है, कहाँ पर जो है हमें पॉज देना है। और जब आप माँ स्कंद माता की आराधना करते हैं तो आपकी कुंडली में गॉड फॉरबिड अगर गुरु की प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं है तो वो आपका गुरु ग्रह को भी बहुत स्ट्रांग करती है, यानी कि आपकी नॉलेज एनहांसमेंट हो गया, आपका कम्युनिकेशन हो गया और कहीं ना कहीं आपकी पब्लिक स्पीकिंग हो गई, आपकी कंसल्टिंग क्वालिटीज हो गई। तो ये सारी चीजें भी जो है आपकी बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रांग होती है और कहीं ना कहीं इनका जो कनेक्शन है ज्ञान से है, शिक्षा से है, सुख से है, मदरहुड से है और इसका कनेक्शन थ्रोट चक्र यानी कि आपकी विशुद्धि चक्र जो हमारी वाणी का कारक होता है। अब वाणी जब हम कुछ बोलते हैं हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारी वाणी का बहुत बड़ा हमारे जीवन में रोल होता है। अब एक तरफ थ्रोट चक्र हो गया और एक तरफ गुरु हो गया। थ्रोट चक्र को कहीं ना कहीं हम मर्क्यूरी से भी लिंक करते हैं क्योंकि थ्रोट चक्र हमें बोलना सिखाता है, विशुद्धि चक्र है। अब जब आप बोलते हैं और अगर वही चीज आप राइट नॉलेज के साथ बोलते हैं, राइट विजडम के साथ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा पॉलिश्ड हो जाती है और बहुत ही ज्यादा कैरिस्मेटिक हो जाती है। तो आप जितना अच्छे से बोलते हैं और आप जो भी बोल रहे हैं, अब जैसे एंकरिंग की सपोज नवजोत जी जो आपकी लाइन है, आप लोगों की लाइन के लिए ये चक्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा रोल ही यहाँ पर वाणी का है। जो लोग भी पब्लिक स्पीकिंग में है उनके लिए ये चक्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप अगर कुछ बोल रहे हैं सामने वाले को अगर वो समझ नहीं आएगा तो उसका कोई यूज नहीं है। तो जितना हम एनहेंस्ड कम्युनिकेशन, जो लोग भी आपके बच्चे अगर वीक हैं पढ़ाई में या आपके बच्चे अपने थॉट्स को इतना पॉलिश्ड वर्जन में एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो आप अपने बच्चों को जो है इनकी आराधना जो है वो आप जरूर कराएं, इनके जो है पूजा, इनकी उपासना जो है वो आप जरूर कराएं जिससे आपके बच्चों की नॉलेज बढ़े, आपके बच्चे इंटेलिजेंट बने, आपके बच्चों का फोकस लगे और आपके बच्चों को कंसंट्रेशन भी जो है लगना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए इनकी आराधना करनी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, चलिए बाकी रूपों की भी चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। आप रहिए हमारे साथ, शक्ति उत्सव गुड न्यूज टुडे पर लगातार जारी है।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: शारदीय नवरात्र के 9 दिन 9 रूप और 9 गुण माँ के, इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही साथ, क्योंकि देखिए जैसे शुरू में वाना जी ने भी समझाया था, बताया था कि ये ऋतु परिवर्तन का वक्त होता है, लोगों को इस समय वैसे ही कम खाना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सात्विक आहार लें। अगर कोई व्रत नहीं भी कर पा रहा है तो सात्विक आहार लें, कहीं ना कहीं ये हमारी गट हेल्थ के साथ भी ये समय जुड़ा होता है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं माँ के अगले रूप की तरफ बढ़ूं, एक बार राज मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी। एक छोटी सी थिन लाइन डिफरेंस जिसको हम कहते हैं व्रत और उपवास में होता है, वो हमारे दर्शकों को समझा दीजिए जरा, क्या है व्रत, क्या है उपवास, क्या है
1: व्रत का तात्पर्य है किसी भी चीज का संकल्प ले लेना, इस तात्पर्य का व्रत, इसका मतलब है व्रत, मैं कोई भी काम करूंगा मैं ये संकल्प लेता हूं या लेती हूं, इसका तात्पर्य है व्रत। जो एक्चुअल में उपवास है, आपने व्रत लिया कि मैं आज दिन भर भूखा रहूंगा या भूखी रहूंगी, इसका तात्पर्य है व्रत। लेकिन जब आप परमात्मा की आराधना करते करते भूल गए या भूल गई कि मुझे भोजन करना भी है, अपने शरीर की सुधि भूल जाए भगवान के स्मरण में, उसको कहा जाता है उपवास। उपवास मतलब ऊपर निवास करना, उप का मतलब होता है ऊपर, वास का मतलब है निवास। जब जिस जीवन को हम जी रहे हैं उस जीवन से हम ऊपर उठ जाएं, हमें अपने शरीर का अपने जीवन का स्मरण ना रह जाए, तो उसको उपवास कहा जाता है। जो हम भूखा रहते हैं वो हमारा व्रत है, दैट इज करेक्ट। हमने सोच लिया कि दिन भर भूख लगी है, ठीक है रात होगा तो मुझे खाना मिल जाएगा, रात को हम ये खा लेंगे या रात को ये वाला भोजन कर लेंगे, दिस इज कॉल्ड व्रत। हमने भोजन का याद है, हमने सिर्फ शरीर को भूखा रखा है, मेरी आत्मा आज भी भोजन के लिए मांग रही है। लेकिन जब मुझे देवी की आराधना में, देवी के स्मरण में याद ही ना रहे कि मैंने खाना खाया है या नहीं खाया है, या मेरा व्रत है या मैंने पानी पिया है या नहीं पिया है, उसको उपवास कहते हैं। जो कि राजा परीक्षित जी ने किया था, जब 4 दिन कथा सुनते हो गया तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा भोजन कर लो, बोले आपके कथा स्मरण करते करते मेरी भूख प्यास सब कुछ खत्म हो गई है, मुझे याद ही नहीं कि मैंने कुछ खाया या नहीं खाया। जी नजर
0: बिल्कुल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, माँ कात्यायनी के रूप को समझने की कोशिश करते हैं। श्रुति जी
2: देखिये, अगर हम बात करें माँ कात्यायनी की तो ये छठे नंबर पे आता है। यहाँ पे देखिये मैं फिर थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी यहाँ पे कनेक्ट कर रही हूँ। देखिये छठा नंबर शुक्र से जुड़ा होता है, क्योंकि सातवां रूप जैसे काल रात्रि का होगा तो वो 7 नंबर ग्रे कलर, यहाँ पे जो है 6 नंबर कात्यायनी का ग्रीन कलर। हम उसे ऐसे जोड़ के देखते हैं कि शुक्र से जोड़कर देखते हैं कि ये आकर्षण की देवी है, इनकी 4 भुजाएं हैं और आकर्षण और मधुरता का ये जो प्रतीक है। तो जब आप अट्रैक्शन को कमांड करना चाहते हैं, जैसे जिन जातकों का विवाह नहीं हो रहा होता तो कात्यायनी देवी के मंदिर में जाके अक्सर कहा जाता है कि उनके व्रत रखें, तो उससे उनका विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाती हैं, क्योंकि आकर्षण शक्ति बढ़ती है। तो आप अपने जीवन में क्या आकर्षित करना चाहते हैं, अगर आप अच्छा करियर जो है आकर्षित करना चाहते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है आकर्षित करना चाहते हैं, जिनका विवाह नहीं हो रहा वहां पे बाधाएं आ रही है, आप अपने पार्टनर को आकर्षित करना चाहते हैं, जीवन साथी को जैसे कहते हैं, परिवार को, समृद्धि को, तो उससे हम इनको जोड़ के देखते हैं। वृंदावन में भी आप जाएंगे तो एक स्पेशल डेडिकेटेड कात्यायनी जी का मंदिर है, कात्यायनी देवी का मंदिर, वहां जाके लोग जो है पूजा पाठ इसलिए करते हैं ताकि उनका जो है वो विवाह हो जाए। तो ये अपने आप में बड़ी खूबसूरत बात है कि देखिए 9 देवियां हैं, मैं सॉरी थोड़ा सा बार बार बीच में रिपीट हो जाती हूँ, तो जो 9वें नंबर पे भी जो देवी है वो सिद्धिदात्री है, वहां पे कंप्लीशन आ रहा है। तो न्यूमरोलॉजी से अगर आप जोड़ते हुए देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो शुक्र से जो भी चीजें सिग्निफाई होती हैं, यहाँ पे हम खुद को रिमाइंडर दे रहे हैं, शक्ति का आवाहन कर रहे हैं और यहाँ पे हम आकर्षण शक्ति का भी आवाहन कर रहे हैं कात्यायनी देवी की पूजा के रूप में, कि माँ तो निडर है ही, उनकी 4 भुजाएं हैं, तलवार भी है हाथ में, लेकिन वो बहुत ज्योतिर्मय उनका जो है रूप है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप हरे रंग का उनको कुछ अर्पित करें या माँ से जो है आकर्षण शक्ति की जो आप है वो प्रार्थना करें, तो उसके लिए ये दिन जो है वो बहुत सफल माना जाता है।
0: बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, माँ कालरात्रि की बात करेंगे। सुमित्रा जी आपको मैं चाहूंगी कि आप समझाइए माँ के गुण और उसे हम अपने जीवन में कैसे लेकर आए।
3: देखिए कालरात्रि जी का जो स्वरूप है बाकी सब 9 देवी में से काफी डिफरेंट है। हमको याद है छोट बचपन में हम जब फोटो भी देखते थे तो बहुत एक मतलब एक विकराल रूप हमें दिखाई देता है। अगर हम आज की सोसाइटी की बात करें तो हम राहु से सबसे ज्यादा गवर्न है। तो जब मैंने शुरुआत में बोली थी कि हम यहाँ से राशियों को और मतलब ग्रहों को भी रिलेट कर सकते हैं, 9 प्लैनेट्स को, तो अगर हम कात्यायनी काल रात्रि की बात करें तो इसमें हम राहु को रिलेट कर सकते हैं। अगर हमारे जन्म पत्रिका में राहु से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो काल रात्रि जी को हमें पकड़ना चाहिए। इसमें अगर हम मेडिटेशन करते हैं, मैंने बताया था चक्रों की हम मेडिटेशन करते हैं, तो सहस्त्र चक्र में हम इसकी मेडिटेशन करते हैं। इससे हमें सबसे ज्यादा खास बेनिफिट क्या होता है, हमारे अंदर निर्भयता आती है। और एक और चीज हम सीख पाते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो हमें डरना नहीं है, उसमें काल रात्रि की तरह हमें काल बनकर उस बाधा को दूर करना है। तो जब हमारे अंदर ये स्पिरिट आता है कि हम काल रात्रि की पूजा कर रहे हैं, मतलब हम भी वो काल की तरह अपनी प्रॉब्लम के ऊपर चढ़ जाएंगे और हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तब जाकर हम एक विजयी बन पाते हैं। इसमें अगर मंत्र जाप की बात करो तो ओम देवी काल रात्रि नमः, इस मंत्र का हम जाप कर सकते हैं। देवी को अगर कुछ प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो गुड़ से बनी हुई कोई भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। एक और आप रिचुअल कर सकते हैं कि क्योंकि ये सेवेंथ देवी है तो लेफ्ट हैंड में इस जगह पर 7777 चार बार आप 7 लिखें ब्लू पेन से, और जो भी आपकी विश है वो मांगे। कोशिश करें कि काल रात्रि की जो भी मंत्र आप जाप करना चाहते हैं अगर वो आपसे नहीं होती तो आप चक्रा के जो मंत्र होते हैं आप ओम इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप ओम ओम ओम इस मंत्र का जाप करें तो जैसे आप अभी ऑफिस में बैठे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपका राहु शक्तिशाली हो, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री इज ऑल्सो रन बाई राहु, क्योंकि इल्यूजन है इसमें सब कुछ ज्यादातर, तो आप ओम का जाप कर सकते हैं। यह आपको हर प्रकार की सफलता को जरूर देगा।
0: बिल्कुल, माँ कालरात्रि के बाद माँ महागौरी की बात हम करेंगे। राजमिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी।
1: नवजोत जी, महागौरी का जो स्वरूप है वो बहुत सुंदर है। ये आदिशक्ति का वो स्वरूप है जिन्होंने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए 9 अलग अलग परिस्थिति में, 7 अलग अलग परिस्थिति की उनकी जो तपस्या है वो हो गई है। जहां पर कहा गया कि संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए सद वर्ष गवाए, सत ऋषियों ने कहा अस्तप काहू न कीन भवानी और भय अनेक धीर मुनि, यानी ऐसा तप आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन फिर एक आशीर्वाद दिया और कहा भयो मनोरथ सुफल, तो आज तक जो तप था उससे आपका जो मनोरथ है वो पूर्ण होगा। भयो मनोरथ सुफल तो सुन गिरिराज कुमार और परिहरि दुषा कलेश अब सब मिले हैं त्रिपुरार, यानी आज से जो आपका तप है वो पूर्ण हो गया। जिस शिव को प्राप्त करने के लिए आप तप कर रही थी अब वो भगवान देवाधिदेव महादेव आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो आवई पिता बुलावन जब ही और हट परिहरि घर जायो तब ही, आपके पिता जब आपको बुलाने आएंगे तो आज चले जाना। जो नॉर्मल फूड है, जो नॉर्मल घर का जो भोजन इत्यादि है उसको आप ग्रहण करना। इसीलिए उस दिन पार्वती जी ने सबसे पहली बार संबत सहस मूल फल खाए, 1000 वर्ष कई तपस्या करने के बाद पहली बार जो है वो घर का भोजन माता ने ग्रहण किया। इसीलिए इस दिन कन्या पूजन का जो विधान है वो अष्टमी को बहुत सारी जगहों पर किया जाता है, नवमी और अष्टमी दोनों दिन करते हैं, तो जनरली अष्टम गौरी के लिए कन्या का पूजन किया जाता है। इस देवी की आराधना के लिए वेद कितना सुंदर कहा है कि सर्व मंगल मांगल्य, जिसके स्मरण करने से सभी प्रकार के अमंगल नष्ट हो जाए, मंगल की कामना जो है वो प्राप्त हो जाए। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, शिव का स्मरण किया, इनकी आराधना से सभी प्रकार की जो सिद्धियां हैं वो प्राप्त हो जाए। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, तो इनके स्मरण से जो भक्त है वो अपने जीवन की समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है। लेकिन इन देवी की आराधना किस चीज को सिखाती है, इन देवी की आराधना इस चीज को बहुत स्पष्ट रूप से सिखाती है कि किसी चीज को भी प्राप्ति के लिए जल्दबाजी में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जीवन में शॉर्टकट के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इस देवी का जो गुण है वो हमें इस चीज को सिखाता है कि यदि अपने कार्य को कर्मठता के साथ की जाए, मेहनत के साथ की जाए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होती है। एक श्लोक कहा गया वेद के अंदर कि उद्यमे नहि सिद्ध्यन्ति न कार्याणि मनोरथै, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ते मुखे मृगा, सोते हुए सिंह के मुख में मृग आकर के स्वयं प्रवेश नहीं करता है। सफलता के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ता है। और इस आदि शक्ति ने उसी चीज को दर्शाया कि शिव को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किया, किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए अगर आप निरंतर प्रयास करते हैं तो अंत में उस कार्य की सिद्धि आपको प्राप्त होती ही है। तो इन देवी की अगर आराधना कही जाए तो इनसे जो जो हमको सीखने को प्राप्त होता है वो यही है कि कार्य निरंतर और आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, शॉर्टकट की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। जी
0: बिल्कुल, और आखिर में माँ सिद्धिदात्री की चर्चा करेंगे। वान्या जी, माँ के इस रूप को भी समझाइए और कैसे हम इसको अपने जीवन में आत्मसात करें।
4: जी थैंक यू सो मच नवजोत जी। माता सिद्धिदात्री जो है हमारी लास्ट देवी होती है नाइन नाइट्स ऑफ मैनिफेस्टेशन में। तो जो माँ सिद्धिदात्री है इनका मतलब है सिद्धि प्लस दात्री। इफ वी यू नो ब्रेक दिस वर्ड, तो यहाँ पर दात्री का मतलब होता है देने वाली और सिद्धि का मतलब है सिद्धियां। तो कहीं ना कहीं इसका मीनिंग जो होता है वो हो गया सिद्धियां देने वाली। तो नाइन डेज आफ्टर आठ दिन जब आपने देवी की आराधना करी तो नौवां दिन जो है ये आपकी तपस्या का, जो आपके पेशेंस जो आप ने आठ दिन रखा उसका है, ये सिद्धियों का है। अब यहाँ पर जो आपने आठ दिन अपने मंत्र को साधा तो फाइनली जब आपको उसकी सिद्धि मिली, इसके बाद जो है ये आपके कंप्लीशन का भी है। कोई भी चीज जब कंप्लीट होती है तो वो साथ में हमें ये भी सिखाती है कि अब हमें जो है लाइफ में न्यू बिगनिंग्स की तरफ फोकस करना है। प्लस इनका जो कनेक्शन है वो केतु देव से भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मोक्ष दायिनी भी है। तो जब ये मोक्ष की तरफ हमें लेके जाती है तो केतु का कनेक्शन मोक्ष से बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जो है आप जितना हो सकता है, अगर आपको लाइफ में मोक्ष की प्राप्ति करनी है, सिद्धियों की प्राप्ति करनी है, आपके जप तप की, और ये मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए भी हमें एक मैसेज देता है कि जरूरी नहीं है कि एक मेल में ही सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी होगी। मेल्स में भी फेमिनिन एनर्जी होती है और फीमेल्स में भी मैस्कुलिन एनर्जी होती है, लेकिन जब हम अपनी लाइफ में दोनों एनर्जीज को बैलेंस करके चलते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। इनका कनेक्शन क्राउन चक्रा से है। क्राउन चक्रा हमारे सिर पर यहाँ लोकेटेड होता है। जब हमारा क्राउन चक्रा ओपन होता है, स्पेशली जब हम मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं, तो हमें ईश्वर की जो गाइडेंस होती है वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आती है। हमें पहले से घटनाओं का आभास होने लगता है, चीजों के मैसेजेस आने लगते हैं कि ईश्वर जो है वो हमसे क्या कम्युनिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर आपका केतु, केतु किसका कारक है? हमारी लाइफ में हमारी इंट्यूशंस का कारक है। अगर आप चाहते हो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा बढ़े, आपको चीजों में ओवर थिंकिंग कम हो, कंफ्यूजन कम हो, तो यहाँ पर माता सिद्धिदात्री हैं। इनका जो भोग है वो आपके पूड़ी हलवा छोले चने, इनका भोग जो है वो आप इनको लगा सकते हैं, साथ में आप नारी भी रख सकते हैं। और आखिरी दिन है तो आपको कहीं ना कहीं कन्याओं का आशीर्वाद लेना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और माँ से क्षमा याचना आप जरूर मांगे कि इन पूरे नौ दिनों में अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें।
0: बिल्कुल। एक और चीज सुमित्रा जी आपके पास आऊंगी क्योंकि वक्त की कमी, जल्दी से एक एक जवाब ले लेती हूँ। सुमित्रा जी, हम फास्टिंग कर लेते हैं, उसका साइंटिफिक महत्व वान्या जी ने, राज जी ने, दोनों ने समझा तो दिया, लेकिन क्या भूखे रहना ही सब कुछ है? भूखे रहकर ही हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं? नौ दिन है, इसमें ऐसी कौन सी चीज, मतलब उपवास हमने अन्न जल तो छोड़ दिया, लेकिन उसके अलावा ऐसी कौन सी चीज है जिसका त्याग बहुत जरूरी होता है इस दौरान?
3: अहंकार का त्याग करना चाहिए, क्योंकि देखिए जितने भी देवी हैं और जितने भी देवता हैं, सब पूजा में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप को संगठित करें और हम एक जगह पर कंसाइज हो, मतलब अपने आप को अपने आपे में आना। श्री कृष्ण भी यही बोलते हैं, अपने आपे में आइए। इसका मतलब किसी को भी नीचा नहीं समझना और मन में उदारता और सबको माफ करना होगा, क्योंकि अगर आप किसी को माफ नहीं करते तो आप ही किसी चीज को पकड़ रखे, वही आपके दुख का कारण बनती है और वही आपके जीवन में मैनिफेस्ट होती है। क्योंकि हम दे नहीं पा रहे हैं लोगों को खुशी, तो खुशी हमारे पास आएगी नहीं। लाइफ एक ईगो है, हम अगर देंगे तो हमें मिलेगा। तो खुशियां दें, खुशियां वापस आएंगी, माफ करें, माफी वापस आएगी, अबंडेंस दें, अबंडेंस वापस आएगा। प्रकृति हमें देने के लिए बैठी है, वो हमारे माँ है, हम जो मांगेंगे वो मिलेगा, पर भाव सही होना चाहिए और सबको देने का भाव होना चाहिए। तो जितना मन में करुणता, आप कोमलता लाएंगे और जितना, किसी को डीमीन नहीं करना है हमें। हम बहुत बार अपने पावर से लोगों को नीचा दिखाते हैं। सिर्फ ये एक चीज अगर हम नहीं करें और सिर्फ ओम का भी जाप अगर हम रोज करें तो भी हम अपनी देवी को प्रसन्न कर सकते हैं। कोई प्रसाद भी नहीं चढ़ाते तो भी देवी हमारी बात जरूर सुनेगी आखिरी दिन।
0: बिल्कुल वाना जी, इसी पर एक जवाब आपका भी।
4: जी, मैं बस ये हमेशा कहती हूँ नवजोत जी कि जो मन का उपवास होता है वो हमें किसी को दिखाना नहीं है, हमारी आध्यात्मिक शांति के लिए होता है। जैसे कि सुमित्रा जी भी अभी बता रहे थे कि द वर्ल्ड मिरर्स, मैं हमेशा बोलती हूँ द वर्ल्ड मिरर्स यू, जैसे आप होते हो वैसे ही लोगों को आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हो। अगर आप सबको, आप जैसे बनते हो वैसे ही, अगर आप घृणा रखेंगे तो आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपको उसी तरह के लोग देगा। आप किसी को गलत मत बोलिए, किसी के बारे में इवन गलत सोचिए भी मत, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ की ऑब्स्टेकल्स जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी क्लियर हो जाएंगी। तो उपवास सिर्फ ना खाने से ही नहीं, अपने मन का उपवास कीजिए, अपनी स्पिरिचुअल क्लींजिंग जो है जब आप उसको करते हैं, जब आप अंदर से स्पिरिचुअली पूरी तरह क्लीन हो जाते हैं, आपका मन शांत हो जाता है, आपकी आत्मा शांत हो जाती है, आपकी इंद्रियां शांत हो जाती है, सेल्फ डिसिप्लिन में जब आप आ जाते हैं, तो वही एक्चुअली सच्चा ट्रू मेरे हिसाब से जीवन में हमारा उपवास है। तो उसको आप हमेशा जब आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की लेन पर अग्रसर हो जाते हैं। तो अपनी हर चीज को और किसी को नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ ईश्वर को जस्टिफाई करना है। जहां पर आपका अपना आपा क्लीन है तो आप उसी तरह के लोगों को अपने ऑरा में अट्रैक्ट करेंगे और आप देखेंगे यूनिवर्स जैसे आपको एक मैजिक की तरह हर चीज में ऊपर उठाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए गुड न्यूज टुडे तो पॉजिटिविटी वैसे ही फैलाता है, तो इन नवरात्र के दौरान पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी ही फैलाइए। बहुत बहुत शुक्रिया खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। तो यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें कि गुड न्यूज टुडे पर शारदीय नवरात्र पर शक्ति उत्सव लगातार जारी रहेगा, देश भर की रौनक आपको लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
1: कौन से हैं देवी के चमत्कारी नाम? क्या है देवी के नाम को जपने का विधान? और देवी के नाम से मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे,
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: इंदौर में मां के दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ा है। नवरात्र के दिनों में बजासन माता मंदिर में भक्तों की अच्छी खासी भीड़ है। कोई मां से परिवार की खुशहाली की कामना के लिए अपनी मन्नत मांग रहा है, तो कोई संतान सुख की कामना लेकर यहां पर पहुंचा। और मां के 9 रूपों की पूजा और बरसों पुरानी परंपराओं से जुड़ा ये दरबार भक्तों के लिए भी आस्था का केंद्र है।

0: माँ के चरणों में झुके सिर, हाथों में पूजा की थाली और मन में अपनी प्रार्थना। इंदौर के बिजासन माता मंदिर में आस्था की यही तस्वीर देखने को मिलती है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट के पास एक पहाड़ी पर स्थित ये मंदिर शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है। यहाँ आने वाले भक्तों के लिए माँ का दरबार सिर्फ पूजा की जगह नहीं बल्कि विश्वास और पारिवारिक परंपरा का भी प्रतीक है। धार्मिक मान्यता है कि मंदिर में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्र के 9 दिनों में इन स्वरूपों की पूजा का विशेष महत्व है।
1: मंदिर काफी प्राचीन है और माता जी यहाँ पर स्वयं प्रकट हुए थे। ऐसा माना जाता है कि माता रानी जो है भक्तों की जिनकी आंखों की रोशनी चली जाती है उनकी आंखों की रोशनी मनोकामनाओं से दोबारा लौट आती है। ये 9 देवियां स्वयं प्रकट हुई थी पिल्ली के रूप में। इनका श्रृंगार किया है, श्रृंगार किया जाता है, इसलिए इनका जो रूप है वो थोड़ा छोटा और बड़ा दिखाई देता है।
0: माँ बिजासन के इस दरबार की पहचान इंदौर की पुरानी धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई है। मंदिर के इतिहास को लेकर अलग अलग जानकारियां मिलती हैं। कुछ जानकार बताते हैं कि इसका निर्माण होलकर काल में हुआ था। कहा जाता है कि इसका निर्माण 1790 में हुआ था। साल 1920 में इसका जीर्णोद्वार किया गया, पर यहाँ आने वाले भक्तों में इस मंदिर के लिए गजब की आस्था है।
2: माता का इतना शक्ति है यहाँ पे कि दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे और सभी का मनोकामना पूरी होती है। मैं तो यही कहता हूँ भगवान जो भी सुनता हो मेरी आवाज सब आए। और यहाँ का दिव्य दरबार है यहाँ तो कि बहुत शक्ति है यहाँ पे, हर आदमी की मनोकामना पूरी होती है यहाँ। और मेरे को तो ऐसा है क्या हर महीने चाहे जैसे भी मेरे को बुला लेती है, हर महीने आता हूँ मैं दर्शन करने।
3: क्या इतिहास के बारे में यहाँ तक सुना है कि स्वयंभू है यहाँ के जो गिरी पंडित जी हैं गिरी है, उन लोगों को दर्शन में आया था उस हिसाब से यहाँ पर स्थापित हुई। मेरे हिसाब से करीब

0: करते हैं।
1: विजयासन माता की सबसे बड़ी मान्यता है, नौ माता जी का स्वरूप है, और यदि यहाँ आस्था से हम यदि आते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पे भीड़ देख रहे हैं, हम यदि अपनी आस्था से यहाँ आते हैं तो 100% नहीं 2000% यहाँ पर माता जी उस आस्था को पूरा करती है।
0: चैत्र नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि, माँ की आराधना के लिए ये 9 दिन भक्तों के लिए बेहद खास होते हैं।
2: 9 दिन का माता जी का भोग प्रसाद सुबह शाम आरती अलग से होती है, 9 दिन का इनका अलग से श्रृंगार किया जाता है, 9 रूप में 9 माता को 9 दिन अलग अलग से श्रृंगार किया जाता है।
0: आस्था का एक ऐसा दरबार जहाँ कोई खुशहाली की दुआ लेकर आता है तो कोई अपनी अधूरी मुराद लेकर। माँ विजयासन के चरणों में आकर हर भक्त को उम्मीद रहती है कि उसकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।

0: कौन से हैं देवी के चमत्कारी नाम, क्या है देवी के नाम को जपने का विधान, और देवी के नाम से मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़।
2: नमस्कार, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। नौ रातों का पावन पर्व नवरात्र, जिसके हर रंग में छिपा है माँ के प्रति समर्पण, हर आरती में गूंजती है भक्ति की मधुर धुन, और गरबा डांडिया की रौनक के बीच थिरकता है हर पांव। तो आज गरबा रास की रौनक दिखाएंगे, और खासतौर से वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस की चमक दमक होगी। तो आखिर क्यों है वडोदरा का गरबा अद्भुत से भी ऊपर, इस बात की तस्दीक करती तस्वीरें आगे आपको दिखाएंगे।
3: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, शक्ति उपासना से जुड़ा गरबा रास तो है ही, तो मंदिर शक्तिपीठों और पंडालों में भी नवरात्र पर देवी उपासना का एक अलग ही अंदाज नजर आ रहा है। कोलकाता दिल्ली समेत शहर जो दूसरे और भी शहर हैं, वहां कैसी बिखरी है दुर्गा पूजा की रौनक, भव्यता और दिव्यता से भरपूर सारी तस्वीरें, इस पर चाय पर चर्चा के दौरान हम चर्चा भी करेंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे। साथ ही सात समंदर पार अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर कैसे जम रहा है मां दुर्गा की भक्ति का रंग, इसकी भी खूबसूरत तस्वीर सामने होगी।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो देखिए, मौसम भले ही मैदानों में नहीं बदला है, लेकिन पहाड़ों की अगर हम बात करें तो पहाड़ों की रंगत जरूर सर्द हो गई है। खासतौर से कश्मीर घाटी सर्द हवाओं के आगोश में है। हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड हौले हौले अब दस्तक दे रही है। कई जगहों पर पारा शून्य से नीचे है, तो बने रहिए हमारे साथ। आपके सामने तस्वीरें होंगी, पहाड़ों पर सर्द होते मौसम का ताजा हाल भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर।
1: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
2: भारतीय नौसेना की ताकत में होगा और इजाफा। पहला स्वदेशी मल्टी पर्पज वेसल समर्थक 16 अक्टूबर को कारवार में होगा कमीशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए गुड न्यूज, 20,000 से अधिक छात्रों को मिलेगी हॉस्टल की सुविधा। 5,157 करोड़ की प्रस्तावित योजना तैयार। उत्तराखंड में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर 1 साल का प्रतिबंध। निर्माण, भंडारण और वितरण पर होगी कार्रवाई। यूपीआई पेमेंट पर लगने वाले चार्ज दिवाली तक टले। 15 अक्टूबर से 2,000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर लगना था चार्ज। शक्ति उत्सव के रंग में रंगा झांसी, पारंपरिक परिधानों में लोगों ने खेला गरबा और डांडिया। माता रानी के भजनों पर झूमे लोग। जम्मू कश्मीर में मौसम ने ली करवट, गुलमर्ग समेत कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी। सैलानी उठा रहे शानदार मौसम का लुत्फ।

0: चलिए चार पर चर्चा की शुरुआत करते हैं माँ दुर्गा के नाम से ही, क्योंकि आज तीसरा दिन है और आज माता के तीसरे स्वरूप की आराधना हो रही है। लेकिन शक्ति की उपासना और आस्था का अद्भुत संगम नवरात्र जिसे हम मना रहे हैं, इसमें झलकती है हमारी समृद्ध संस्कृति की खूबसूरत छवि। रंग बिरंगे परिधान, पारंपरिक गीत संगीत और उत्साह से भरे कदम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गरबा और डांडिया की।
1: बिल्कुल, तो देखिए नवज्योति वडोदरा से गरबा की उस रंगीन छटा को दिखा रही हैं, जिसका हर रंग मानो भक्ति संगीत बनकर गरबा के रूप में हर किसी को झूमने पर मजबूर कर देता है। अभी हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, तो आइए जयंती के साथ उमंग उल्लास और परंपरा के इस अनुपम उत्सव में शामिल होकर लिया जाए माँ का आशीर्वाद।
0: बिल्कुल, आशीर्वाद लेंगे, लेकिन उससे पहले बताइए आप पहली बार गई वहाँ, कैसा लगा आपको?
2: अद्भुत। वैसे मैंने डांडिया गरबा तो बहुत पहले भी कवर किया है, 10-10 दिन तक वहाँ रहा करते थे।
0: लेकिन लक्ष्मी विलास का कैसा?
2: लक्ष्मी विलास अद्भुत। हाँ। मतलब आप अगर जाएंगी वडोदरा, आप यूनाइटेड गरबा जाती
0: हैं? नहीं, हर बार लक्ष्मी विलास जाती हूँ।
2: हाँ, बहुत ही
0: अमेजिंग रहता है,
2: बहुत सुंदर रहता है।
0: तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था?
2: बहुत अच्छा था, अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको हम हेरिटेज गरबा कहते हैं ना, नॉर्मली आप जब भी किसी गरबा पंडाल में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बीच में सबसे पहले माँ की आराधना होती है, आरती, और उसके बाद शुरुआत होती है। और यहाँ पर जो माँ की मूर्ति नहीं है बल्कि यहाँ पर एक तस्वीर है, उस वो पेंटिंग है।
1: ओके।
2: और वो पेंटिंग खुद महाराजा साहब ने बनाई है। और इस माँ के दरबार को जो सजाया जाता है वो शाही खानदान की महिलाओं ने जो साड़ियां पहनी है वही साड़ियां, उन्हीं साड़ियों के साथ उस पूरे दरबार को सजाया जाता है, तो अद्भुत है। और विदेशी मेहमान वहां पर थे तो वैसे ही रंग खूब जमा।
0: चलिए बहुत अच्छा, तो वो हम दिखाते हैं आपको, तस्वीरें भी दिखाते हैं। आइए देखते हैं भक्ति और आराधना और डांडिया साथ ही साथ किस तरह से हुआ।
3: एकेएम 2026 और इस बार लक्ष्मी विलास पैलेस के ठीक सामने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया ने हमारी संस्कृति जानी, हमारे धर्म संस्कृति के साथ वो रूबरू हुए। और गौरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बेहद खूबसूरत परफॉर्मेंस जिसमें कृष्ण की लीलाओं से लेकर राम की लीला और साथ ही साथ गंगा किस तरीके से संदेश दे रही है कि हमारी प्रकृति को बचाओ, मुझे बचाओ, गंगा खुद को बचाने के लिए ये संदेश दे रही है। ये संदेश केवल भारत के लिए नहीं था बल्कि 50 से ज़्यादा देशों के डेलीगेट्स जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे, पूरी दुनिया के लिए संदेश था। और इस मंच से गौरी जी ने इस पूरे शो को क्रिएट किया।
4: पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी एकेएम सोपान मोनिका महोत्ता जी को, जिन्होंने एक ये अवसर दिया है कि शी हैज गिवन मी अ ब्लैंक कैनवस कि गौरी आप डिसाइड करें कौन से कैनवस को आप लेना चाहती हैं और किसकी कहानी आप बताना चाहती हैं। शायद व्हाट राजा रवि वर्मा थॉट बिफोर ही फ्रोज दोज आइडियाज इन द कैनवस, तो वो एक इंस्पिरेशन मुझे यहीं से मिला। और उसके बाद जब काम शुरू हुआ तो बहुत एबल टीम रही है, क्योंकि अकेले तो नहीं कर पाता है, तो जिसमें आप शास्त्रों के बारे में कह रहे हैं या टेक्स्ट के बारे में कह रहे हैं, और जो मुझे लगता है कुछ सही कॉम्पोजिशन हमने चुने हैं विच कुड रियली जो भावुकता से डांसर्स ने प्रेजेंट किया है वो एक अलौकिक बात रही है।
3: इस पूरे अगर मैं कहूँ कि परफॉर्मेंस की जान थी तो साक्षात माँ सरस्वती आपके कंठ में विराजमान है, आप ही थी। मैं गलत तो नहीं हूँ?
4: बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है।
5: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सबसे पहले तो मुझे ये मौका जो दिया है गौरी मैम ने, उसके लिए तो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू हर। और जो यहाँ पे जैसे गौरी मैम बोल रही थी कि जो भी होता है इट इज़ टीम वर्क, तो इसमें जो भी मैंने कंपोजिशंस किया है उसमें जो सारे म्यूजिशियंस ने साथ दिया है, तोमाक जी ने और सिल्विया जी ने और एमा जी और सतीश कृष्णमूर्ति जी ऑन वंडरफुल परकशंस एंड ऑफकोर्स गौरी जी हेल्मिंग द होल प्रोजेक्ट, आई थिंक इसके वजह से ही ये सब ऐसा इतना ब्यूटीफुल इट्स कम आउट।
6: ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बहुत साल पहले एक बार आया था जस्ट टू विजिट द प्लेस, बट नेवर थॉट दैट आई विल बी एबल टू परफॉर्म हियर जस्ट बिकॉज ऑफ गौरी जी।
3: सिल्विया, यू वर सो ग्रेट, सो हैव यू रेड अबाउट रामायण कृष्ण लीला और यू नो अबाउट एनीथिंग अबाउट गंगा?
7: I actually knew about the myth even before I met Gauriji and Chandana, and it was thanks to my husband who made me watch a cartoon movie about this myth, and it was so impactful that I remembered everything.
3: So you watched a cartoon movie?
7: I watched the cartoon and it was extremely interesting for me, and it was a fascinating story, and I would never say that maybe in 2 years after I will be performing
3: like this. And of course you all were so energetic, bahut energetic the throughout the performance, ye ek ghante se zyada ki performance thi, ट्रेडमिल करते हैं, जॉगिंग करते हैं, क्या करते हैं मुझे बताइए, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? हम लोग सातवें मिनट पे आके मैं बस कर देती हूँ, अब नहीं मैं ट्रेडमिल कर सकती हूँ.
7: हाँ, वी आर इनकरेज टू क्रॉस ट्रेन एंड यू नो कीप अप आवर डाइट एंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस.
3: क्या खाते हैं?
8: सब कुछ खाते हैं रियली एक्चुअली, बट अ प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट जो होता है एंड कीपिंग आवर न्यूट्रिशन अप. बट आई थिंक स्नेहा जो बोली है, क्रॉस ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और खुद का रियाज जो हम क्लासिकल डांस में बोलते हैं.
3: कितने समय तक आप लोगों ने प्रैक्टिस किया रियाज?
8: ये हमने एटलीस्ट पूरा ग्रुप, डांस ग्रुप ने 2-3 महीने से किया है. कंसिस्टेंट रिहर्सल्स किया है, साथ में इंडिविजुअल टाइम रखा है, ग्रुप में टाइम रखा है और फाइनली क्योंकि लाइव था आज तो म्यूजिशियंस ऑनसेंबल के साथ हमने रिहर्सल भी किया था इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स.
3: यहाँ तो जिन्होंने देखा, लेकिन आप अब नेशनल टेलीविजन पे जाएंगे स्टोरी के साथ तो बहुत सारे आपके फैंस बढ़ने वाले हैं. इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, क्या खूबसूरती से आपने, क्या लचक के साथ आपने पूरी परफॉर्म.
6: ये सारा श्रेय है जो मैम को जाता है और हमने बिल्कुल लाइक 1-2
3: मैम की इंस्ट्रक्शंस क्या थी ये बताइए.
6: पूरा लाइक
3: मैम स्ट्रिक्ट है या
6: बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है? एंड आई थिंक फॉर मी, मैं एक कंटेम्प डांसर हूँ और कंटेम्प डांसर का कथक डांसर में आना, इट वॉज थोड़ा सा, इट वॉज ओवरवेलमिंग बट मुझे बहुत मजा आया.
3: सो परफॉर्मिंग जस्ट in front of Lakshmi Vilas Palace, how's your experience?
9: Oh, it's amazing. It touches like different senses basically, and it's like such unforgettable experience really to perform in such beautiful scenery.
3: And what was your experience?
10: Yeah, it's been a beautiful experience for me as well, and also one where I've learned a lot. It's been so amazing to work with Chandana, of course, all the dancers and Gauri and Sitesh, everyone. It's been...
3: Thank you so much. देखिए कला संस्कृति कहाँ तक आपको नहीं ले जा सकती और किस किस को नहीं जोड़ती, और यही मकसद था इस परफॉर्मेंस का जो आज लक्ष्मी विलास पैलेस के ठीक सामने हुई है. न सिर्फ हमारी संस्कृति कला को दुनिया को दिखाने बताने की कोशिश हुई, लेकिन इसी के साथ साथ पर्यावरण का संदेश जो आज की तारीख में बहुत जरूरी है पूरी दुनिया के लिए.
2: तो यहीं पर लक्ष्मीविलास पैलेस में ये तो आपने तस्वीरें देखी, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ एक कलाकार थे जिन्होंने कृष्ण लीलाओं का मंचन किया, रामलीला का मंचन किया और आखिर में एक गंगा की प्रस्तुति थी, उसके दौरान एक एनवायरमेंट को बचाने का संदेश भी दिया. लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस अब बताइए लक्ष्मीविलास पैलेस का.
11: लक्ष्मीविलास पिछले 4 साल से जा रही हूँ, मतलब 3 साल जब से मैं यहाँ से जा रही हूँ, इस बार भी जाना है वहां पर. तो लक्ष्मीविलास का एक तो वो लिविंग पैलेस है जहाँ पे सबसे बड़ा लिविंग पैलेस, इनफैक्ट कि ब्रिटेन में जो महारानी का पैलेस है उससे भी बड़ा वडोदरा का ये पैलेस है,
2: बकिंगम पैलेस से बड़ा,
11: बकिंगम पैलेस उससे भी बड़ा ये पैलेस है जहां पर लिविंग राजा रानी अभी रहते हैं. और जिस तस्वीर की आपने जिक्र किया, वो जो महारानी अभी वहां पे हैं, उनके फादर इन लॉ ने उसको पेंट किया था. तो हर साल वहां पर वो पेंटिंग वहीं पर रहती है और जिस तरह से आपने बताया डेकोरेशन होता है, खुद वहां की महिलाएं और ट्रांसजेंडर स्पेशली, क्योंकि महारानी उनके लिए स्पेशली बहुत काम करती हैं, तो ट्रांसजेंडर जो समूह है वो मिल करके उसे पूरा डेकोरेट करता है और स्पेशली कपड़े जो बनाते हैं जो महारानी पहनती है वो भी उन्हीं का होता है. तो उनका एक बुटीक भी है अपना और वो सारी चीजें. तो जब आप वहां आएंगे तो वहां स्पेशली लोगों को ये आप देखेंगी, बाकी जगहों पर वडोदरा में दूसरे जगह आप जहां जाएंगी क्राउड तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आम जनता और उनके बीच रानी आती है और साथ में मिलके गरबा करते हैं.
2: हमने
11: तो वो ट्रेडिशन
2: आपने
1: किया, वो
2: आपने ट्रांसजेंडर की बात की, उनका एक कैफे चलता है गजरा कैफे,
11: गजरा कैफे
2: वो उनका है. इसके अलावा आपने जिक्र किया कि वो राधिका राजे गायकवाड़ है महारानी, और महारानी भी राधर यहाँ पर मौजूद थी जब हम लोग थे, क्योंकि विदेशी डेलीगेट्स बहुत ज्यादा आए हुए थे वहाँ पे, और उनके साथ ही साथ राजमाता भी साथ में थी. राजमाता
11: ने आरती में
1: जो कार्यक्रम होता है ये पूरे 9 दिनों तक चलता है या फिर
11: 9 दिनों तक चलता है? 11 तारीख से, मतलब 11 तारीख से पूजा शुरू हुई तो वो शुरू हो जाता है.
2: अच्छा,
11: और 11 बजे रात में, जैसे इस बार भी जो हमें जाना है, 8 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा. आरती जो होती है वो विशेष होती है, रात 11 बजे वो आरती होती है.
2: बिल्कुल, तो चलिए हम आपको सीधा लिए चलते हैं. सांस्कृतिक आयोजनों को कराने वाली संस्था आईक्यम ने ही इस बार तमाम विदेशी मेहमानों के साथ यहाँ पर वो लोग पहुंचे, हम भी इसका हिस्सा बने, दिखाते हैं तस्वीरें आपको.

0: हमारे लिए बहुत ही महत्व का दिन है, सभी गुजरात के लोगों के लिए, सभी के लिए। और हम मुझे खुशी है कि आप लोग सब यहाँ आए और हमारा गरबा में पार्टिसिपेट किया। आपने देखा कितना उत्साह से और प्रेम से लोग देवी की आराधना नाचते हुए करते हैं।
1: हर तरफ गरबा डांडिया के गीत आप सुन सकते हैं। वडोदरा में हम लोग हैं और सबसे पहले मैं आपको यहाँ की खास बात बता दूं। देखिए, हर जगह पर जहाँ भी आप जाते हैं गरबा खेलने के लिए, तकरीबन हर जगह ऐसा होता है कि म्यूजिक चलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर वडोदरा और लक्ष्मी विलास पैलेस, खास तौर पर अगर मैं इस इलाके की बात करूँ, तो यहाँ लाइव म्यूजिक होता है, यानी आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं। और गायकवाड़ खानदान की ये पूरी परंपरा रही है, जब से वो लोग यहाँ पर नवरात्र सेलिब्रेट करते हैं, इस बात को इंश्योर किया जाता है कि हमारी कला, हमारी संस्कृति को भी सहेज के रखा जाए, उसे प्रमोट। तो भाई, गुजरात में है, वडोदरा में है, तो इस रंग में रंगना बहुत जरूरी है। और इसीलिए कुछ पुरानी यादें, कुछ स्टेप्स यादें जो अभी परफॉर्म हो रहे हैं, मजा आ रहा है। अच्छा, वैसे जब आप यहाँ आए ना, और अगर आपको गरबा खेलना नहीं आए तो किसी को गुरु बना लिया जाए, एक गुरु बना लिया है, फॉलोइंग हर, हमारी गाइड है। वन सेमी सर्कल, वन फुल सर्कल, राइट? ओके, वन राइट एंड वन लेफ्ट,
2: वन लेफ्ट।
1: तो जब आप पहुँचते हैं यहाँ, बहुत सारे मेहमान मिल जाते हैं। सो निक is with us. Namaskar, Nick Dandiya. Nick, now today I'll ask in Hindi. So, Nick, have you learned Dandiya now?
3: A little bit.
1: Rani Sahiba हमारे साथ हैं। मैम, मैं आपको फॉलो कर रही थी, लेकिन आपके जैसा मैं गरबा नहीं खेल सकती हूँ।
4: गरबा, हमें गुजराती हूँ, मेरे खून में है गरबा।
1: आज मेरे ड्रेस से मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला है कि मैं लग रही हूँ, लेकिन आपकी तरह नहीं। मैम, आप प्रैक्टिस कितना करती हैं गरबा की?
4: सॉरी, सुना,
1: प्रैक्टिस करती है गरबा की?
4: नहीं, तो इसमें पूरा साल मत करो, बट यहाँ पे आके आप 9 दिन 4 घंटे डांस करना हो ही जाता है। अब बहुत ही गर्व की बात है कि विश्व भर से लोग, इतने इंपॉर्टेंट डेलीगेट्स बड़ोदा आए हैं।
1: Do you like this garba dandiya in Vadodara?
3: This is my first time. I never seen a garba before.
1: Siddhant, it's a great initiative जो आप लोगों ने लिया।
5: हम बहुत चाहते थे कि हम नवरात्रि के समय पे अपने सारे गेस्ट्स को यहाँ पे लाए, इसलिए एक्यम को हमने आज नवरात्रि के पहले दिन यहाँ प्लान किया, ताकि ये गरबा जो लक्ष्मी पैलेस विलास के ग्राउंड्स में डॉक्टर राधिका राजे गायकवाड़ आयोजित करती हैं, वो हम विजिट कर पाएँ, और यहाँ से हम नवरात्रि इंटरनेशनल फेस्टिवल में भी जाएंगे।
1: कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पर?
6: बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया।
1: इस बार आईक्यूएम का मकसद था कि हम लोग विदेशी डेलीगेट्स को वडोदरा लाएं और हमारी संस्कृति से रूबरू कराएं। कितना
7: आप देख सकते हैं कि आईक्यूएम का क्या मकसद है। आईक्यूएम का अर्थ ही ये है, वननेस, सबको साथ लाना। और आज हमारा मकसद है गुजरात की ये खूबसूरत संस्कृति को प्रदर्शित करना हमारे विदेशी मेहमानों के सामने।
1: तो परंपरा के साथ साथ इस हेरिटेज गरबा में अपनी संस्कृति का भी संदेश यहाँ से दिया जाए, जो गायकवाड़ खानदान लगातार हर साल कहें तो इस बात को सुनिश्चित भी करता आया है। तो हेरिटेज गरबा के तमाम रंग हम आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर इस परंपरा से भी हम आपको रूबरू करा रहे हैं वडोदरा से।
8: तो देखिए, नवजोत तो हेरिटेज गरबा का आनंद लेकर यहाँ पर लौट चुकी हैं। हमें लगा बड़े दिनों से आ नहीं रही हैं, लेकिन वो तो वहाँ पर थी। और आपको बता दें कि माँ शक्ति की उपासना में किए जाने वाले गरबा डांडिया परंपरा, ये तो है ही, तो इसके परिधान संस्कृति की खास पहचान रखते हैं। और मुझे याद है कि आज से 5-6 साल पहले की बात है, दिल्ली के विजयनगर में भी, मैं संस्था का नाम भूल रही हूँ, वो ऑर्गेनाइज करते हैं डांडिया गरबा, और बहुत ही ग्रैंडियर तरीके से वो ऑर्गेनाइज होता है। आप लोगों को दिल्ली में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है गरबा डांडिया का? क्योंकि आप जहाँ से होकर आए हैं, और जैसे आपने बताया कि आप 3-4 साल वहाँ लगातार जा चुके हैं, तो मुझे लगता है उसके सामने तो सब फीका है।
2: देखिए, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि दुर्गा पूजा यानी वेस्ट बंगाल, आंख बंद करके आप कोलकाता का नाम लेंगे, है ना। हालांकि यहाँ चितरंजन पार्क है, और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ कई बंगाली कम्युनिटी है, बकायदा नोएडा में सेक्टर 27 हो गया, उसके अलावा भी और भी सेक्टर 1110 है, वहां भी कई सारे पंडाल लगते हैं क्योंकि वहां वो कम्युनिटी रहती है। लेकिन क्या है कि बंगाल तो बंगाल है, कोलकाता कोलकाता है, तो जो भव्यता, जो दिव्यता और जो रौनक वहां दिखेगी दुर्गा पूजा की, आपको फिर कहीं नहीं मिलेगी। सिमिलरली डांडिया और गरबा की अगर आप बात करेंगे, तो आंख बंद करके पूरी दुनिया में किसी से पूछ लो तो वो गुजरात का नाम लेगा। इनफैक्ट गुजराती भी, एक मीम मैं देख रही थी, उसमें गुजराती ने, किसी ने कहा कि अगले 9 दिनों तक आप भूल जाओ कि गुजराती एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, क्योंकि हम सिर्फ गरबा खेल रहे होंगे और सुबह वापस आ रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे और सो जा रहे होंगे, और आप लोगों के लिए हम एग्जिस्ट नहीं करते। अगर फोन ना उठाए तो प्लीज नाराज ना होना, हमारा नंबर डिलीट कर दो। तो ये है गुजराती,
8: उनके लिए ये है डांडिया और गरबा। और आपने बताया कि 15 साल बाद गए हो।
9: हाँ, मैं 15 साल पहले, मैं लगातार, मैंने भी खूब कवरेज किया है, और इसी के साथ क्योंकि रात में 2-2.5 बजे का वक्त हो जाता है जब लोग अपने घरों में जाते हैं, और वहां पर ना आप मॉर्निंग में अगर देखेंगे एकदम सड़कें शांत होंगी, वो मॉर्निंग में आपको शॉप्स खुली हुई नजर नहीं आएंगी। तो गुजरातियों का जो दिन शुरू होता है वो आफ्टरनून से शुरू होता है और फिर लेट नाइट तक चलता है इन 9 दिनों में।
8: ओ, जैसे कि अभी श्वेता बता रही थी कि 9 दिनों तक तो भूल जाते हैं वडोदरा में सब गुजराती जो है, चाहे कहीं भी रहते हो, वडोदरा क्या, दिल्ली रहते हो, नोएडा रहते हो, क्योंकि वो 9 दिन जो है डांडिया गरबा में एकदम रम जाते हैं। तो आपको अब दिखाते हैं वडोदरा में बाजारों की रौनक किस तरीके से देखने को मिल रही है, और साथ ही मैं आपको ये भी बताते हैं कि इस बार गरबा डांडिया के लिए कौन से परिधान जो है सबसे ज्यादा लेटेस्ट ट्रेंड में है।
1: ऐसी बात है कि अगर आपको डांडिया खेलने जाना है तो ड्रेस एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। हम लोग वडोदरा में मौजूद है, एक पूरी स्ट्रीट है यहाँ पर जहाँ से आप अपने लिए चनिया चोली ले सकते हैं, एक से बढ़कर एक डिजाइन है। रमिला बहन हमारे साथ हैं। रमिला बहन, इस बार क्या खास है, कौन सा डिजाइन सबसे हिट है?
10: इस बार ये पगले वाला डिजाइन सबसे हिट है।
1: क्या बोलते हैं इसको?
10: पगला। हाँ, और ये भी है ट्रेंड में चल रहा है अभी, ये भी बढ़िया है।
1: और इसका प्राइस क्या है?
10: इसका प्राइस आपको 2150 में मिल जाएगा।
1: इसमें चोली, दुपट्टा और स्कर्ट,
10: हाँ तीनों है, और वो दूसरा वाला वो वाला है, माँ वाला।
1: अच्छा, माँ वाला डिजाइन भी है यहाँ पर, स्वास्तिक बना हुआ आपको मिल जाएगा,
10: और पगला भी है, और ऊपर माँ वाला कोटी है, और पीछे
1: इसके साथ दुपट्टा
10: नहीं, दुपट्टा नहीं आता है, ये आगे का भाग है, ये कोटी है, और ये पीछे से ऐसा आएगा। अभी ये फैंसी में चल रहा है भैया।
1: दुपट्टे का है? दुपट्टे नहीं है,
10: ये कोटी वाला है सिर्फ,
1: मतलब इस बार दुपट्टों की टेंशन नहीं, दुपट्टे का ट्रेंड आउट है। अगर हम इस बार की बात करें तो विदाउट दुपट्टा चनिया चोली यू कैन वेयर
10: निकला है, ये साथ कोटी वाला था दूसरा, ये भी बहुत ट्रेंड में चल रहा है।
1: मुझे इसका प्राइस बताइए।
10: ये आपको 850 में मिल जाएगा, और वो
1: कोटी और लहंगा दोनों?
10: खाली कोटी 850,
1: खाली कोटी,
10: और वो लहंगा वाला है ना वो आपको 2550 में मिल जाएगा।
1: वो 2500 उसमें पूरा मिलेगा हमको। अच्छा, एक चीज और मैं बताती हूँ, ये तो बात हुई कि जो गुजरात में, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड है, जाहिर सी बात है कि आप उस चीज को फॉलो करेंगे। हमारे दिल्ली वाले जो है ना वो समझना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको तो यही बात समझ में आएगी, हल्के हल्के डिजाइन। तो ये इस स्कर्ट का क्या प्राइस?
10: इस स्कर्ट का 700 रुपया प्राइस है,
1: ओनली स्कर्ट। ओके, और इसका मैं फैब्रिक अगर आपको बताऊँ तो दिस इज कॉटन सिल्क,
10: रियॉन कॉटन है,
1: रियॉन कॉटन है ये, जिसमें आपको बहुत सारे अलग अलग कलर्स मिल जाएंगे। इनके साथ हम लोग पैच कर सकते हैं, मैच
10: सकते हैं। तो ऐसा प्लेन में चनिया लेते हैं लहंगा, और ऐसा ब्लाउज आता है, देखो मैं दिखाती हूँ, थोड़ा वर्क में ब्लाउज लगाते हैं, ऐसा ऐसे करके लगाते हैं हम।
1: और इस ब्लाउज का प्राइस क्या होगा?
10: 500 रुपीज,
1: 500 एंड 700। छह 600 रुपए का दुपट्टा आपको पड़ेगा, इसके साथ अगर आप चाहें तो स्कर्ट अलग कर सकते हैं, मतलब मिक्स एंड मैच भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो जो आजकल ट्रेंड बताया जा रहा है कि विदाउट दुपट्टा एंड आजकल कोटी, जिसको हम टॉप बोलते हैं, जिसको हम चोली बोलते हैं, उसके साथ में स्कर्ट, उसका ट्रेंड भी बहुत ज्यादा है। तो इस तरह के वडोदरा में आजकल फुल ऑन ट्रेंड में है, तो तैयारी है अगर आपकी डांडिया खेलने की, तो आई थिंक सबसे बेस्ट है यू कैन टेक ऑल दीज थिंग्स। तो गरबा खेलना है तो आपको एक्चुअली ट्रेडिशनल अटायर में आना चाहिए। भाई ये मेरी चॉइस का लहंगा है, यह है टिपिकल कच्ची वर्क लहंगा, जो कि यहाँ पर आपको वडोदरा में मिल जाएगा। बहुत सारी वैरायटी है, जिसमें मुझे जो पसंद आई ये फुल कच्ची वर्क लहंगा है, अगर आप देख पाए, और इसके साथ आपको ये दुपट्टा चोली। और लेकिन अगर आप चाहें हाफड़ आप भी ले सकते हैं भैया, ये वाला दिखाइए ब्लैक वाला, और मुझे इसका प्राइस बताइए।
11: ये आपको 2500 में आएगा, 2500 रुपए में 3 पीस आएगा आपको, दुपट्टा ब्लाउज और स्कर्ट।
1: और ये जो मैंने अभी पहना है ये कितने का है?
11: 25।
1: ये भी 25 का और हाफ एंड हाफ भी 25 का। मुझे लग रहा है कि डील बुरी नहीं है, आपको ये लेना चाहिए। अच्छा इस बार क्या सबसे ज्यादा?
11: इस बार दिस वन कच्ची भी चल रहा है और इसे फैंसी भी चल रहा है, ज्यादा लुक उसमें भी आ रहा है।
1: अच्छा इसमें अजरक भी इस बार बहुत इन है,
11: अजरक वाला पीस मिलेगा। देखो मॉडल आएगा ये वाला दुपट्टा,
1: अजरक वाला बहुत खूबसूरत लग रहा है, मुझे तो अजरक भी बहुत अच्छा लग रहा है। सो अजरक वाले का ये है कि अगर आप नवरात्र में पहनना चाहें तो यहाँ पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको नहीं पहनना चाहें, आप इसको डेली एक स्मार्ट सी प्लेन शर्ट के साथ कैरी कर सकते हैं विदाउट दुपट्टा। इसका ब्लाउज और दुपट्टा दिखाइए, और ये कितने का है?
11: ये आपको 2800 रुपए में पड़ेगा।
1: अजरक महंगा है, कच्छ वर्क सस्ता है। इसके साथ ये ब्लाउज है और इसके साथ ये दुपट्टा है, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भाई मुझे सच पूछें तो मुझे ये कच्छ वर्क का लहंगा बहुत ही खूबसूरत, ओल्ड इज
11: गोल्ड।
1: अच्छा मुझे ये बताइए सबसे ज्यादा ट्रेंड में क्या है, मांग क्या है?
11: सब मिसिंग चलता है मैडम, दिस इज सब चॉइस, सबसे अलग अलग कच्ची ज्यादा चल रहा है। दो घंटे में 15 से 20 पीस तो सेलिंग,
1: माय गॉड 2 घंटे में 15 से 20। तो देखिए तीन तरह की चीजें आपको मिलेंगी, एक आपको मॉडर्न टच का चनिया चोली मिलेगा, एक आपको ये मिलेगा जो मैंने पहना हुआ है कच्छ वर्क का, और एक आपको मिलेगा अजरक वाला। माय फेवरेट इज ऑफ कोर्स कच्छ वर्क, लेकिन अगर आप एवरग्रीन पहनना चाहते तो आई थिंक यू कैन गो फॉर दिस अजरक ऑल्सो।

0: और शहर दर शहर आपको बता दें गर्भ पंडाल की रौनक देखने लायक है। हर पंडाल में महाशक्ति के महाउत्सव का जय घोष है। गुजरात के राजकोट के राजवी पैलेस में भी गरबा के अद्भुत रंग देखने के लिए मिल रहे हैं। राजघराने के इस आंगन में पिछले कई साल से तलवार रास गरबा का आयोजन होता है और हर साल बड़ी संख्या में क्षत्रिय युवतियां इसमें हिस्सा लेती है।
1: राजसी पैलेस के इस गरबा रास में रंग बिरंगी चनिया चोली पहनकर सजी धजी महिलाएं और लड़कियां माँ दुर्गा की स्तुति करती हैं और इस बीच हाथों में चमचमाती तलवारें लेकर गरबा की थाप ऐसे थिरकती है जैसे आसमान से चमकती हुई बिजली।

0: तो देखिए, नवरात्र पर झांसी में भी भक्ति और उत्साह का रंग चढ़ने लगा है। माँ दुर्गा की आराधना के बीच शहर में गरबा और डांडिया की धूम भी शुरू हो गई है। रंग बिरंगी रोशनी, पारंपरिक परिधानों, माता रानी के भजनों और डांडिया की खनक के बीच पूरा माहौल भक्तिमय और उत्सवमय नजर आया।
1: आयोजन में करीब 1000 महिला पुरुषों ने उत्साह के साथ भाग लिया। किसी के कदम गरबा की लय पर थिरकते नजर आए तो किसी ने डांडिया खेलकर नवरात्रि के उल्लास को साझा किया। छोटी छोटी बच्चियों की आरती के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद माता रानी के जयकारों और भजनों के बीच देर तक नृत्य और उत्साह का सिलसिला चलता रहा।

0: मनाने के लिए गरबा डांडिया किया। आप देख सकते हैं झांसी की महिलाएं बहुत उत्साह से देवी जी को मना रही हैं।
1: आज का डांडिया बहुत अच्छा लगा, बहुत मस्ती की, बहुत आनंद आया। एक बहुत मौका मिलता है नवरात्रि में आने के लिए, एक डांस करूं, एक बहुत मस्ती करूं। ये चाहती हूं हर महिला शक्ति नारी को यही आगे करना चाहिए।
0: आज इंजॉय तो बहुत किया, साथ में माता रानी के गानों पे भजनों पर हम लोगों ने बड़े जयकारे लगाए और सनातन को प्रमोट करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ कि हमारे जो संस्कृति है, सनातन है, वो कहीं पीछे ना छूटे। चूँकि नृत्य की बात है तो डांडिया तो हमेशा से बहुत ही मनमोहक सभी महिलाओं के लिए रहा है।
2: और चलिए यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल दिखाएंगे, जहां बसा है मां आदि शक्ति का अनोखा और कलात्मक संसार।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: और चाय पर चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: भारतीय नौसेना की ताकत में होगा और इजाफा, पहला स्वदेशी मल्टीपर्पज वेसल समर्थक 16 अक्टूबर को कारवार में होगा कमीशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए गुड न्यूज, 20,000 से अधिक छात्रों को मिलेगी हॉस्टल की सुविधा, 5,157 करोड़ की प्रस्तावित योजना तैयार। उत्तराखंड में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर 1 साल का प्रतिबंध, निर्माण, भंडारण और वितरण पर होगी कार्रवाई। यूपीआई पेमेंट पर लगने वाले चार्ज दिवाली तक टले, 15 अक्टूबर से 2,000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर लगना था चार्ज। शक्ति उत्सव के रंग में रंगी झांसी, पारंपरिक परिधानों में लोगों ने खेला गरबा और डांडिया, माता रानी के भजनों पे झूमे लोग। जम्मू कश्मीर में मौसम ने ली करवट, गुलमर्ग समेत कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, सैलानी उठा रहे शानदार मौसम का लुत्फ।
1: तो माँ जगदम्बा के 9 दिव्य स्वरूपों की आराधना वाली नवरात्रि की छटा ही निराली है। वैसे तो आदिशक्ति माँ भक्त के भाव ही देखती हैं, लेकिन उनके भक्त भी कहाँ मानने वाले हैं अपनी माँ का आशीर्वाद पाने के लिए। वो आज नवरात्रि के तीसरे दिन भी सुबह से ही पूजा आराधना में लीन है।
7: बिल्कुल, देखिए तो हर छोटे बड़े शहर में आदिशक्ति माँ के मंदिरों और उनके शक्तिपीठों पर भक्तों की जो रौनक है वो बिखरी हुई है, और किस तरीके से वहां पे रौनक देखने को मिल रही है आपको दिखाते हैं बेहद सुंदर और भक्तिमय तस्वीरें।

0: माँ भगवती की महिमा अपार है। मंदिर हो या शक्तिपीठ, नवरात्रि में हर जुबान पर माँ का ही जय जयकार है। 9 दिनों के इस महापर्व पर माँ का आंगन रंग बिरंगे फूलों से सजा है। उनको नमन करने, उनका आशीर्वाद पाने के लिए भक्ति और आस्था उमड़ी हुई है। आज नवरात्रि के तीसरे दिन की सुबह का शुभारंभ माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना से हुआ। आप दिल्ली के छतरपुर वाली माँ के दर्शन कर रहे हैं, जिनके चरणों में शीश झुकाने भक्त सुबह से ही पहुँचना शुरू हो गए। माँ जगदम्बा की आरती का ऐसा सुंदर नजारा यकीनन दिल और दिमाग को शांति महसूस करा रहा है। आज नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा स्वरूपा माँ की आराधना माँ कालका जी के दरबार में भी खूब हो रही है। माँ के इस खुले दरबार में बड़ी संख्या में भक्त अपनी मन्नतों के साथ दर्शन पूजन करने पहुँच रहे हैं।
1: नवरात्रि के प्रति दिन कालका जी मंदिर के अंदर भक्तों में भारी भीड़ जुटती है, माँ के दर्शन के लिए आते हैं। आज भी जो है मध्यरात्रि से ही भक्तों में तांता जो लगा हुआ है, माँ के दर्शन करके वो पुण्य लाभ कर रहे हैं।
0: वहीं माँ वैष्णो अगर जम्मू की पहाड़ियों पर बसती हैं तो उन्हीं के नाम पर जयपुर में भी एक मंदिर बनाया गया है, जहाँ पिछले कई सालों से नवरात्रि पर माँ की आराधना होती आ रही है। इस नवरात्रि में भी वैष्णो देवी मंदिर के नाम से विख्यात माँ का ये आंगन फूलों से सजाया गया है।
2: जयपुर के माँ वैष्णो देवी मंदिर की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पे माँ का बहुत ही खूबसूरत श्रृंगार किया गया है। लाल साड़ी में माँ को सजाया गया है, फूलों से इस पूरे मंदिर का आज के दिन श्रृंगार किया गया है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र है, इसी वजह से माँ घंटे की आकार का अर्धचंद्र होता है, जिसकी वजह से उनका नाम माँ चंद्रघंटा होता है। और आज के दिन माँ को फूल धूप चंदन चढ़ाकर सभी भक्त जो हैं वो माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं।
0: श्रद्धालु भी अच्छी खासी संख्या में अपनी मुरादें लेकर माँ वैष्णो के दरबार में पहुँच रहे हैं। वैसे कहते हैं कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तो वैष्णो माँ का ये सुंदर सा स्वरूप कैसे जयपुर आया, कैसे इस मंदिर में निर्विघ्न स्थापित हुआ, शायद इसकी भी कहानी नियति का ही हिस्सा थी।
3: मंदिर की स्थापना हमने जागरण से शुरू करी, जागरण हमने 2001 से शुरू किए, जागरण करते फिर पैसे बचाते तो बढ़ते रहे पैसे, उस पैसे को हमने मंदिर में स्थापना करने की सोची तो मूर्ति नहीं मिल रही थी, तो मूर्ति के लिए हमने ट्राई करी जाके, तो ये मूर्ति जालंधर के लिए बन रही थी। जालंधर में कोई प्रॉब्लम हो गई, उन्होंने कहा हम आज डिलीवरी नहीं लेंगे, तो हमको उसी दिन चाहिए थी, तो हमने उसी दिन मूर्ति को लिया, भाटियावन में ला के रखा, वहां से कलश यात्रा करी और यहाँ लाके स्थापना करी, छोटी सी दो पट्टियां लगा के। ये सब लोगों के सहयोग और दर्शनार्थियों के दान से, चंदे से इतना विराट मंदिर बन गया।
0: बिहार के सहरसा में धर्ममूला नदी के किनारे बसा माँ उग्रतारा शक्तिपीठ पर भी नवरात्रि के दौरान आस्था की बयार खूब बह रही है। दरअसल माँ उग्रतारा का ये धाम देश के 108 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर चिनाचार और षोडशोपचार विधि से माँ की पूजा होती है। कहते हैं कि माता सती का एक नेत्र इसी जगह पर गिरा था, ये जगह बाद में इस पावन तीर्थ के रूप में स्थापित हो गई। इंदौर की धार्मिक पहचान में बिजासन माता मंदिर भी नवरात्रि के इस पर्व पर आस्था और भक्ति से गुलजार है। एयरपोर्ट रोड के पास पहाड़ी पर बसे इस मंदिर में साल भर श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। वहीं हरिद्वार में शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना भी आज पूरे प्रभाव में नजर आई। शिवालिक रेंज के नील पर्वत पर बसा माँ चंडी देवी का ये मंदिर माँ के जयकारों और भक्ति से सराबोर है। नजारा चंडी माँ के प्रति अटूट आस्था और श्रद्धा की सच्ची मिसाल ही दर्शा रहा है।
4: मुझे लगता है कि ये हमारे मम्मी पापा ही है, इनको सब पता, ठीक है, तो वो बस यही है कि उनको जब सभी पता है तो वो अपनी बच्ची को जैसे खुश रखना चाहेंगे, वो उनकी इच्छा है।
5: बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा माता का मंदिर सजा हुआ है, बहुत बढ़िया दर्शन हो गए जी। नवरात्रों में माता रानी अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, हरियाणा से हम यहाँ आए हैं, पहली बार आए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा जी।
6: मैं अपने कैरियर को लेके और आगे के भविष्य को लेकर हाँ उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और कि सब चीज अच्छी चलती रहे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए।
0: कुछ ऐसी ही आस्था दिख रही है हरियाणा के अंबाला में भी। यहाँ नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुखभंजनी को 300 किलो दूध अर्पित किया गया। माँ काली को समर्पित किया गया ये एक पुराना रिवाज है। ऐसा माना जाता है कि माँ काली को दूध अर्पित करने से भक्तों के घरों में सुख समृद्धि खुशहाली और अन्न धन बना रहता है। निश्चित तौर पर जब मन में माँ के प्रति आस्था होती है तो कठिन से कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। नवरात्रि माँ के प्रति उसी आस्था को मजबूत करने और खुद के अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरने का प्रतीक है। दिल्ली से आशुतोष कुमार, सहरसा से धीरज कुमार सिंह, इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा और जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: दुर्गा पूजा का हर पंडाल माँ आदिशक्ति का अद्भुत संसार समेटे होता है। एक ऐसा पंडाल जहाँ आस्था भक्ति के साथ मन की शांति का एहसास होता है। और जब आप कोलकाता में होते हैं तो दुर्गा पूजा के दौरान आपको ये एहसास होने भी लगता है।
8: बिल्कुल, कोलकाता के ही कुछ पंडालों में आपको हम लिए चलते हैं जो कला, रचनात्मकता और परंपरा के लिए मशहूर है। यानी कि थीम बेस्ड ये पंडाल इन दिनों श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हैं।

एक ऐसा पंडाल जहां सजा है माँ दुर्गा का अद्भुत संसार, एक ऐसा संसार जहां शांति है, सुकून है, मंत्रमुग्ध कर देने वाला लाइट और साउंड शो है।

0: कोलकाता का चोर बागान, सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति का दुर्गा पूजा पंडाल उत्तर कोलकाता के सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक पंडालों में से एक है। ये पंडाल अपनी अनोखी कला, रचनात्मकता और परंपरा के लिए जाना जाता है। हर साल की तरह इस बार भी चोर बागान ने बेहद अनूठी और कलात्मक थीम तैयार की है। बियॉन्ड साउंड इस थीम के तहत यहाँ आने वाले दर्शकों को न केवल आंखों को सुकून देने वाली माँ की भव्य प्रतिमा देखने को मिलेंगी, बल्कि पंडाल के अंदर रोशनी के ऐसे इफेक्ट्स तैयार किए गए हैं जो दर्शकों को अलग ही आध्यात्मिक दुनिया में ले जाते हैं।
1: हम लोग का जो थीम है उसका नाम है अरब, और साउंड और लाइट, बियॉन्ड द साउंड, ये हम लोग का थीम है। और साउंड और लाइट और माँ दुर्गा, ये सबको मिला के एक बहुत जो एम्बियंस क्रिएट हुआ है वो एक अलग तरह का एम्बियंस है। जो
0: पंडाल के अंदर कमल पर विराजमान माँ दुर्गा की भव्य मनमोहक मूर्ति है, माँ के चेहरे पर एक गहरा आध्यात्मिक सुकून, सौम्यता और ध्यान मग्न मुद्रा दिखाई देती है जो मौन यानी बियॉन्ड साउंड की थीम को पूरी तरह चरितार्थ करती है। कोलकाता का ही एक और थीम बेस्ड पंडाल श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना। पूरे पंडाल को बेहद बारीक शिल्पकारी के साथ बांस, लोहे, कपड़े, कांच, कागज और अत्याधुनिक प्रोजेक्शन और लाइटिंग तकनीकों का उपयोग करके बनाया गया है। इस पंडाल को राजदंगा नवा उदय संघ ने तैयार किया है, जो कोलकाता की थीम आधारित पंडाल बनाने वाली दुर्गा पूजा समितियों में से एक है। इस बार पंडाल की थीम है शोधन यानी शुद्धिकरण। शोधन की अवधारणा के अनुरूप ही ये माँ दुर्गा की भव्य और अलौकिक प्रतिमा स्थापित की गई है। ये पंडाल इंसानी सोच और पर्यावरण असंतुलन को दर्शाता है। ये एक ऐसी भविष्य की कल्पना करता है जहाँ अंधाधुंध विकास की वजह से जंगल नष्ट हो चुके हैं और मशीनों की सहायता से कृत्रिम विकल्पों के जरिए ऑक्सीजन और शुद्धता की तलाश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश के किस टूरिस्ट प्लेस में कैंपिंग पर लगाम लगाने की तैयारी है।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: कौन से हैं देवी के चमत्कारी नाम, क्या है देवी के नाम को जपने का विधान, और देवी के नाम से मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: तो चलिए मौसम की बात कर लेते हैं। पहाड़ों पर मौसम लगातार जो है वो बदल रहा है, यानी सर्द मौसम जो है वो शुरू हो गया है। कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी ने ऊंची जगहों में पारा शून्य से भी नीचे पहुंचा दिया है।
2: बिल्कुल, आपको बता दें तो आने वाले समय में इन पहाड़ी राज्यों में ठंड के क्या हालात रहने वाले हैं, अगर आप इन जगहों की सैर करने का प्लान करने वाले हैं तो मौसम विभाग की दी गई जानकारियों को सुनकर ही पहाड़ घूमने का प्लान बनाइएगा।
3: मौसम ने रुख बदला तो पूरी कश्मीर घाटी ही सर्द हवाओं के आगोश में समा गई। गुलमर्ग की ऊंची चोटियां सफेद बर्फ से ढकी दिख रही हैं। बोटा पाथरी में आज की ताजा बर्फबारी के बाद से पारा भी गोते लगाने लगा है। मैदानों को भले ही सर्द मौसम का इंतजार हो, लेकिन पहाड़ों पर तो ठिठुरन वाले मौसम का आगाज हो चुका है। अक्टूबर के महीने में ही इस सीजन की बर्फबारी शुरू होने से पूरी घाटी की रंगत मानो बदल गई है। उत्तरी कश्मीर के ज्यादातर हिल स्टेशंस पर बर्फ की सफेद चादर नजर आने लगी है। सोनमर्ग में भी बर्फबारी के बाद से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कहीं बर्फ गिर रही है तो कहीं बारिश अपने साथ ठंड का एहसास लेकर आ रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि कश्मीर में आने वाले कुछ दिनों तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। लगातार बर्फबारी से आने वाले दिनों में ठंड तेजी से बढ़ेगी। इस बार अक्टूबर के महीने से ही अच्छी बर्फबारी होने से अंदाजा है कि दिसंबर जनवरी में ज्यादातर हिल स्टेशंस पर तापमान शून्य से काफी नीचे जा सकता है। कश्मीर के साथ साथ दूसरे पहाड़ी राज्यों में भी मौसम तेजी के साथ बदल रहा है। हिमाचल में रविवार को हुई तेज बारिश के बाद मौसम साफ हो गया है, लेकिन इस बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में सर्द मौसम का आगाज तो हो ही गया है। बारिश के बाद से तापमान में यहां 6 से 11 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। कुछ जगहों पर तो पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है।
4: ये जो वेदर एक्टिविटी कल जो 11 अक्टूबर को प्रदेश में देखी गई है, इसके प्रभाव से जो दिन के तापमान है वो एवरेज देखिए 6 से लेके 11 डिग्री पूरे प्रदेश में ही फॉल हुए हैं। और कुछ एक शहरों की बात करें तो शिमला का अधिकतम तापमान 16 डिग्री था, वहीं जो है क्षेत्र हैं पालमपुर गुंटर कांगड़ा यहाँ पे 18 से लेके 19 डिग्री दिन के तापमान गए हैं, और इनमें भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है।
3: हिमाचल में आगे भी मौसम का उतार चढ़ाव जारी रहने की उम्मीद है, लेकिन कश्मीर में आने वाले दिनों में ठंड तेजी से बढ़ सकती है। गुलमर्ग से अशरफ वानी, सोनमर्ग से मीर फरीद और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: तो पहाड़ों पर घूमने जाने की सोच रहे हैं, खासकर हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज, तो आपको बता दें कि यहाँ पास में ही त्रिउंड है जो एडवेंचर की एक खास जगह कही जाती है, मानी जाती है। लोग अक्सर यहाँ पर जाते हैं पर्यटक, क्योंकि यहाँ नेचर का दीदार करने के लिए जरूरत से ज्यादा सैलानी पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर कैंपिंग पर लगाम लगाने की तैयारी है।
2: बिल्कुल, आपको बता दें कई बार बेतहाशा बढ़ते टूरिज्म से इन पहाड़ों की कुदरती खूबसूरती को काफी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में टूर ऑपरेटर्स और एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े संचालकों की प्रशासन के साथ हुई बैठक में सीमित संख्या में टेंट लगाने का फैसला लिया गया है।
3: हिमाचल की पहाड़ों की खूबसूरती पूरी दुनिया से लोगों को अपनी ओर खींच लाती है, लेकिन कई बार बेतहाशा बढ़ते टूरिज्म से इन पहाड़ों की कुदरती खूबसूरती को ही खतरा पैदा हो जाता है। धर्मशाला में त्रिउंड ट्रैक पर अनियंत्रित कैंपिंग भी पर्यावरण संरक्षण में एक बड़ी चुनौती बन रही थी, लेकिन अब प्रशासन त्रिउंड ट्रैक के प्राकृतिक सौंदर्य को सहेजने के लिए अलर्ट हो गया है। इस सिलसिले में टूर ऑपरेटर्स और एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े संचालकों की प्रशासन के साथ एक बैठक हुई। बैठक में त्रिउंड में सीमित संख्या में कैंप लगाने का फैसला लिया गया। प्रशासन ने त्रिउंड में कैंपिंग के लिए 3 हेक्टेयर क्षेत्र निर्धारित किया है। 1 हेक्टेयर में अधिकतम 80 टेंट लगाने की अनुमति होगी। पूरे एरिया में कुल 240 टेंट लगाए जा सकेंगे। त्रिउंड ट्रैक पर रोजाना 1000 पर्यटकों को जाने की इजाजत दी जाएगी। 500 पर्यटक गल्लू की तरफ से जाएंगे, वहीं 500 पर्यटकों को भागसुनाग की ओर से जाने की अनुमति होगी। सिर्फ रजिस्टर्ड पर्यटन संचालकों को ही अनुमति दी जाएगी और पर्यटकों की सुविधा के लिए 6 बायोडाइजेस्टर शौचालय लगाए जाएंगे।
6: ये जितने भी हमारे पास यहाँ हाइकर जो ट्रैकर्स जाते हैं उसके लिए एक हम मैकेनिज्म डेवलप करने जा रहे हैं। वो हमारे इको टूरिज्म पॉलिसी का भी हिस्सा है, उसमें हम चाहते हैं कि जितने भी हाइकर्स और ट्रैकर्स ट्रैक पे जाते हैं वो रजिस्टर्ड और ट्रेन टूरिस्ट गाइड के माध्यम से जाएं। मतलब कि जो भी ट्रेन टूरिस्ट गाइड हैं और रजिस्टर्ड है मिसलेनियस एक्टिविटीज़ में टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ, वही इन लोगों को लेके जाएं और कैंपिंग करवाएं। तो जो ये हमारे इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ का इशू है, ट्रैकर्स की सेफ्टी का इशू है, वो क्लिंच हो जाता है।
3: इस नियंत्रण के साथ ही प्रशासन त्रिउंड में हाइकर्स और ट्रैकर्स की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था करने में जुट गया है। इसके तहत सैलानियों को ट्रेन्ड और टूरिस्ट गाइड्स के साथ ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए भेजा जाएगा। इससे पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखने में भी मदद मिलेगी। धर्मशाला से पूजा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड डेज टुडे।
1: तो चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: दुनिया के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर अक्टूबर के महीने में सर्दी विदा लेती है। ऐसा ही एक इलाका है चिली की मध्य क्षेत्र। कहने को तो आपको बता दें, यहाँ पर बसंत का मौसम आ चुका है, लेकिन इस बार सर्दी मानो यहाँ ठहर सी गई है और बर्फबारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम का यही मिजाज अब लोगों को हैरान कर रहा है।
2: बिल्कुल, देखिए मौसम तो अब ऐसा लग रहा है बहुत सर्द होने वाला है, और आपको बता दें कि मौसम का ये जो बदला बदला सा मूड है उन लोगों को खूब पसंद आ रहा है जो कि स्कीइंग के शौकीन हैं और उन्हें सिर्फ बर्फ में वक्त बिताना पसंद है। ऐसे लोग बर्फीली वादियों का रुख कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मौसम की जो बर्फीली मेहरबानी है उनके लिए किसी सौगात से कम नहीं है।
3: बर्फ की इन वादियों ने चिली के लोगों को चौंका रखा है। अक्टूबर के महीने में इतनी बर्फ किसी करिश्मे से कम नहीं है। ये जगह राजधानी सैंटियागो से कुछ दूरी पर है, जहां कई बड़े स्की रिजॉर्ट बर्फ की मोटी चादर से ढके हैं। ये हाल तब है जब इस महीने यहां स्कीइंग का सीजन खत्म हो जाता है, लेकिन इस बार भारी बर्फबारी ने बर्फीले सीजन को करीब एक महीना आगे बढ़ा दिया है।
4: Fue histórico porque no es común estar abierto a tener esta cantidad de nieve en esta fecha de partida y extender la temporada, alargarla más de un mes de lo que más alargado alguna vez en la historia también es muy particular.
3: चिली के इस इलाके में बर्फ अभी तक आबाद कैसे है इसे लेकर तमाम थ्योरी हैं, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका अलनीनो की बताई जा रही है। हाल के दशकों के सबसे पावरफुल अलनीनो की वजह से ही मध्य चिली में सर्दियों के दौरान और वसंत की शुरुआत तक भारी बारिश और बर्फबारी हुई है। वजह जो भी हो, यहां आए लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है।
5: Estamos muy felices porque la temporada de nieve se extendió. Normalmente el año pasado el último viaje lo hicimos el 19 de septiembre. Este año ya vamos a cumplir casi un mes más y tenemos mucha nieve.
3: मौसम की इस बर्फ मिजाजी ने चिली के इस इलाके को पर्यटन का सबसे बड़ा हब बना दिया है। बर्फ में पर्यटन के इस आनंद को टूरिज्म का व्हाइट बूम कहा जा रहा है। लोग यहां बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। अक्टूबर में इतनी ज्यादा बर्फ देखना यहां आए लोगों के लिए किसी करिश्मे से कम नहीं है।
6: Es un evento raro, pero igual es bueno disfrutar porque podemos disfrutar de este efecto climático que puede que pase que no vuelva a pasar.
3: फिलहाल चिली में बर्फबारी ने सर्दियों के मौसम को उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबा कर दिया है। जहां आमतौर पर इस वक्त बर्फीले खेलों का सीजन खत्म हो जाता है, वहीं इस बार पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर और पर्यटकों की रौनक बरकरार है। ये बर्फ जहां पर्यटकों के लिए सौगात बनकर बरसती है, तो वहीं पर्यावरण के जानकारों के लिए सवाल बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो शारदीय नवरात्र चल रहे हैं, पूरे देश में गरबा डांडिया की रौनक है, दुर्गा पूजा की रौनक है, और ये सब रौनक लगातार आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर। फिलहाल साइबर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन शक्ति उत्सव जारी है जीएनटी पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है
6: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
7: देश में पहली बार चमोली जिले में वसुंधरा ताल में लगा अर्ली वार्निंग सिस्टम, 2 घंटे पहले मिलेगी आपदा की चेतावनी, स्वदेशी तकनीक से है विकसित। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा और इजाफा, पहला स्वदेशी मल्टीपर्पस वेसल समर्थक 16 अक्टूबर को कारवार में होगा कमीशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए गुड न्यूज, 20,000 से अधिक छात्रों को मिलेगी हॉस्टल की सुविधा, 5,157 करोड़ की प्रस्तावित योजना तैयार। उत्तराखंड में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर 1 साल का प्रतिबंध, निर्माण भंडारण और वितरण पर होगी कार्रवाई। यूपीआई पेमेंट पर लगने वाले चार्ज दिवाली तक टले, 15 अक्टूबर से 2,000 से ज्यादा की यूपीआई पेमेंट पर लगना था चार्ज। जम्मू कश्मीर में मौसम ने ली करवट, गुलमर्ग समेत कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, सैलानी उठा रहे हैं शानदार मौसम का लुत्फ।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर

नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात गरबे के रंग और उमंग की। नवरात्र के 9 दिनों में देश भर में गरबे का उत्साह नजर आता है। वैसे तो अब अलग अलग राज्यों में शहर शहर गरबा आयोजन होने लगा है, लेकिन गरबे की उमंग का सबसे गाढ़ा रंग चढ़ता है गुजरात में। हर बार की तरह इस बार भी गुजरात से गरबा की शानदार तस्वीरें आ रही है। गुजरात में नवरात्रि की भक्ति के साथ गरबा की मस्ती खुली मिलती है। जामनगर में अंगारों के बीच मां दुर्गा की आराधना करते गरबा प्रेमियों का उत्साह देखने लायक है। इसी तरह राजकोट की वीरांगनाएं तलवार रास के माध्यम से महाअंबे की आराधना कर रही है। तो वहीं वडोदरा में गरबा का रासी अंदाज नजर आया। वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में वो अद्भुत दृश्य था। हजारों लोग एक साथ गरबा की ताल पर झूम रहे थे। ऐसी कितनी ही तस्वीरें इस समय गुजरात के अलग अलग शहरों से लगातार आ रही है। तो चलिए जीएनटी पर नवरात्रि के इस उत्सव को बनाते हैं कुछ और खास और आपको दिखाते हैं गुजरात में नवरात्र के दौरान सजे गरबा की नौ रंग।

शहर सभी है एक, क्या सूरत क्या भोपाल, नवरात्रि का रंग वही जमे जहां मिले गरबे की ताल से ताल। वैसे तो नवरात्रि की धूम पूरे देश में है, लेकिन गुजरात जैसी रौनक कहीं और नहीं। चाहे राजकोट हो, वडोदरा, जामनगर या फिर खेड़ा, हर शहर गरबा और डांडिया के रंग में रंगा हुआ है। ये तस्वीर है गुजरात के राजकोट। शौर्य की ताल पर ये शत्राणियों का नृत्य है।

0: भवानी की भक्ति में ये शक्ति की हुंकार है। माँ अम्बे के आंगन में ये श्रद्धा, शौर्य और साहस का संगम है। हाथों में लहराती तलवार, अपने अपने वाहन पर सवार, गुजरात के राजकोट में राजपूत समाज की महिलाओं और बच्चियों ने राजपूताना पोशाक में तलवार के साथ गरबा कर भक्ति और शक्ति की अनोखी तस्वीर पेश की। किसी ने चलती हुई कार पर तलवार के साथ गरबा किया, किसी ने स्कूटर पर सवार होकर तलवार का जौहर दिखाया। रफ्तार भरते हुए अस्त्र शस्त्रों का कौशल दिखाती ये वो छत्राणियां हैं जिन्हें वीरता का गुण विरासत में मिला है।
1: हम यहाँ गणेश चतुर्थी से लेकर यानी कि एक डेढ़ महीने से हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये हमारी राजपूती कल्चर है, जो राजपूती संस्कृति है उनको प्रदर्शित करता है। राजपूती संस्कार जो हमारी दिकरियों में होते हैं उनको यह दर्शाता है। शौर्य, वीरता और जो जो इतिहास में गाथाएं लिखी गई है उसको बखूबी यहाँ पे प्रस्तुत करता है।
2: 12 साल की बच्ची से लेके 60 साल की दादी माँ या नानी माँ जिसे कह सकते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और साथ में 200 जितनी सन्नारियाँ हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो अभी हम यहाँ प्राचीन रस और तलवार रस विविध प्रकार के रजू करने वाली है।
3: भगनी सेवा फाउंडेशन की महिलाएं ये कार्यक्रम करती हैं और पूरा संचालन महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसकी पूरी व्यवस्था महिलाएं करती हैं, ट्रेनिंग महिलाएं देती हैं।
0: ये अगली तस्वीर है गुजरात के ही जामनगर। दहकते अंगारे और उन पर नंगे पैर रास, इसे कहते हैं अंगारा रास। आग के बीच कदमों की ये लय लोगों को हैरान कर देती है। जामनगर में पिछले 80 सालों से नवरात्र के दौरान ये अद्भुत परंपरा निभाई जा रही है। वक्त बदला, गरबा का रंग और अंदाज बदला, लेकिन जामनगर की इस गरबी ने अपनी पुरानी पहचान नहीं छोड़ी। पीढ़ी दर पीढ़ी बुजुर्गों से युवाओं तक ये परंपरा यूं ही सहेजी जाती रही और इसी परंपरा का हिस्सा है यहाँ होने वाला मशाल रास, जहाँ लोग हाथों में जलती मशाले लेकर ढोल की थाप पर झूमते हैं। मशाल रास माँ अम्बे की आराधना का अनोखा माध्यम है। माँ की भक्ति, लोक संस्कृति का रंग और खुद में 80 साल की विरासत को समेटे जामनगर की ये गरबी जो देखता है हैरान रह जाता है। अब आपको दिखाते हैं जामनगर में ही खेला जा रहा एक और अनोखा गरबा। जामनगर का श्री आशापुरा गरबी मंडल पिछले 88 सालों से यहाँ अठंगा रास का आयोजन कर रहा है। गरबा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा पारंपरिक रास है, जिसे रस्सियों की मदद से खेला जाता है। गरबा के इस रूप को गोप गुठन रास और कान गोपी रास के नाम से भी जाना जाता है। इस रास में मंडल के 16 सदस्य रस्सियों के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तालमेल और अनुशासन के साथ होने वाली ये प्रस्तुति अनोखी होती है। रास की अनूठी शैली और कलाकारों के बीच शानदार समन्वय दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। मंडल के सदस्य हर साल पूरे उत्साह और श्रद्धा भाव के साथ इस गरबी में भाग लेते हैं और पारंपरिक रास के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाते हैं। नई पीढ़ी को भी इन प्राचीन परंपराओं से जोड़ने का निरंतर प्रयास किया जाता है, ताकि आने वाले समय में भी ये सांस्कृतिक धरोहर जीवित रहे। आपको बता दें कि जामनगर का आशापुरा गरबी मंडल पारंपरिक अठंगा रास के साथ साथ तलवार रास की विशेष प्रस्तुति भी देता है। यहाँ बालिकाएं और युवतियाँ पूरे उत्साह के साथ तलवार लेकर गरबा खेलती हैं और माँ आद्या शक्ति की ये अद्भुत आराधना करती हैं। तलवारों के साथ किया जाने वाला ये रोमांचक प्रदर्शन केवल एक नृत्य नहीं बल्कि साहस, वीरता, शौर्य और भक्ति का जीवंत प्रतीक है। इस प्रस्तुति के माध्यम से सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा को हर साल दोहराया जाता है। आशापुरा गरबी मंडल में पिछले 45 वर्षों से नवरात्रि महोत्सव की ये परंपरा उत्साह और श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है। अठंगा रास और तलवार रास की ये परंपरा न केवल जामनगर बल्कि पूरे सौराष्ट्र और गुजरात में पारंपरिक गरबी की समृद्ध विरासत को सहेजने और आगे बढ़ाने में भूमिका निभा रही है।

गुजरात के ही खेड़ा, जहां शारदीय नवरात्र की धूम है, गरबा की गूंज है। खेड़ा में इन दिनों गरबा और डांडिया के बीच भारत के दो राज्यों की संस्कृति का सुंदर संगम दिख रहा है। खेड़ा के सलूर गांव में बेटियों ने पारंपरिक मणिपुरी वेशभूषा में मां अम्बा की विशेष आरती की। इस अनूठी प्रस्तुति को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। गांव के मुख्य चौक में जब मणिपुरी वेशभूषा में सजी बेटियों ने मां अम्बा की आरती शुरू की तो माहौल भक्तिमय हो गया। मणिपुरी संस्कृति की झलक और मां जगदम्बा के प्रति अटूट श्रद्धा ने इस आयोजन को खास बना दिया।

0: चलिए गुजरात के ही वडोदरा, जहां गरबा महोत्सव की रौनक, सजावट और भव्यता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। ये शानदार तस्वीरें हैं वडोदरा के ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस में आयोजित हेरिटेज गरबा उत्सव की, जहां भारतीय और वैश्विक संस्कृति का संगम देखने को मिला। देशों के विदेशी मेहमान लक्ष्मी विलास पैलेस में हेरिटेज गरबा के साक्षी बने। रंग बिरंगे चनिया चोली और लहंगों में सजे विदेशी मेहमान यहां गरबे का लुत्फ उठाते दिखे।
1: सो इफ यू कैन स्पीक हिंदी, जस्ट टेल मी, कैसा लग रहा है आज आपको यहां पर?
2: बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बेस्ट।
3: It's incredible. Just look at the scale. We're at Lakshmi Villas Palace in Vadodara. We have tens of thousands of people dancing together as one, and then over behind us.
1: Are you enjoying the?
2: I love it. It's incredible.
1: So have you ever been to this place?
2: No, never, never. And it is beyond words that we're experiencing. It's completely mind-blowing.
0: ढोल की थाप और रोशनी से जगमगाता पैलेस का प्रांगण पूरी रात भक्ति और उत्सव के रंग में रंगा रहा। पारंपरिक लोक गीतों पर लोग थिरकते रहे।
1: ये लाइव सिंगिंग म्यूजिक के साथ ही यहाँ पर गरबा होता है। यहाँ का प्रोटोकॉल है कि आप कोई भी कैसेट नहीं चला सकते हैं, कोई भी वीडियो नहीं दिखा सकते, आपको लाइव में ही यहाँ पर सिंगिंग करनी होती है। ये पूरा प्रोटोकॉल है ताकि हमारी कल्चर संस्कृति को भी सहेजा जाए। और यहाँ तमाम जितने विदेशी डेलीगेट्स हैं, उन लोग को यहाँ लाने का मकसद भी यही है कि वो हमारी संस्कृति से रूबरू हो सकें। बिना देर गवाए एक राउंड गरबा का हो जाए।

0: इस इवेंट में 40,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ पारंपरिक गरबा किया और मां के चरणों में आस्था की जोत जलाई। जब एक साथ हजारों लोगों ने गरबा नृत्य किया तो वो नजारा अद्भुत था। सजे धजे सैकड़ों कलाकार एक साथ गरबा करने उतरे तो देखने वाले देखते रह गए। गरबा न हो मानो रंगों का उत्सव हो,
1: ऐसा खूबसूरत नजारा आप केवल वडोदरा में देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 40,000 लोग हैं जो यहाँ पर गरबा परफॉर्म कर रहे हैं, लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं। ये भी इसी का एक थीम रहता है जिसमें सबको बोला जाता है कि आप टॉर्च ऑन कीजिए, टॉर्च ऑन के साथ रिदम के साथ अपने ताल से ताल मिलाते हुए लोग यहाँ पर गरबा खेलते हैं। और अभी अगले 5 से 10 मिनट तक आपको बिल्कुल इसी तरह का नजारा देखने को मिलेगा जहाँ हर कोई अपनी धुन में मगन है, केवल उनको सुनाई दे रहा है तो म्यूजिक, और म्यूजिक के साथ अपना मोबाइल ऑन और उसके साथ लोग लगातार थिरकते जा रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस से देखिए।
0: वास्तव में गरबा देवी दुर्गा की आराधना के साथ साथ भारतीय संस्कृति को संजोने और सहेजने का एक उत्सव भी है जो लंबे समय से भारतीय परंपरा का हिस्सा रहा है। और संस्कृति की यही भव्यता लक्ष्मी विलास पैलेस के प्रांगण में नजर आई।
1: आज यहाँ पे बहुत सारे विदेशी डेलीगेट्स भी हैं जो यहाँ पर इसका हिस्सा बन रहे। कितने गर्व की बात है वडोदरा के लिए, आपके लिए, राजघराने के लिए।
2: बहुत ही गर्व की बात है कि विश्व भर से लोग इतने इम्पोर्टेंट डेलीगेट्स बड़ोड़ा आए हैं। एज अ बड़ोडियन आई फील वेरी प्राउड, एंड कि कल वो उन्होंने पैलेस देखा और आज वो हमारे गरबा में आए, तो आई एम वेरी हैप्पी।
1: मेहमान नवाजी करके अच्छा लग रहा
2: है। सॉरी आई कांट हियर यू।
1: मेहमान नवाजी करके अच्छा लग रहा
2: है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा।
1: एक संदेश जो यहाँ से रानी साहिबा पूरे देश को देंगी नवरात्रि का।
2: मैं नवरात्रि के पर्व अवसर पे सबको खूब खूब बधाई देती हूँ एंड यही आशा करती हूँ, माँ से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा देश जुड़ा रहे और वी गेट स्ट्रॉन्गर।
0: गुजरात में शहर शहर इन दिनों गरबा की उमंग है और सिर्फ गुजरात ही क्यों, नवरात्र के दिनों में तो सारा देश ही गुजरात के साथ गरबा की ताल पर थिरकता नजर आ रहा है। राजकोट से रौनक मजीठिया, जामनगर से दर्शन ठक्कर, खेड़ा से हेताली शाह और वडोदरा से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और नवरात्रि के समय गरबा को लेकर उत्सुकता खूब दिखती है। जिसने कभी गरबा नहीं किया हो वो भी इन दिनों गरबा उत्सव में शामिल होने के लिए आतुर दिखता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि में गरबा की शुरुआत कैसे हुई और गरबा मुख्य रूप से नवरात्रि में ही क्यों किया जाता है, और आखिर क्यों गरबा परंपरा की शुरुआत को गुजरात से जोड़कर देखा जाता है? गुजरात को गरबे की विरासत आखिर कैसे मिली? आज जीएनडीए स्पेशल में आपको सुनाते हैं कहानी गरबे के इतिहास की।

0: पाए पर ये परंपरा की ताल है। संगीत की रिदम और तालियों की थाप पर ये सदियों पुरानी संस्कृति की छाप है। गुजरात की मिट्टी पर थिरकते ये पांव देखने वालों के हृदय पर छोड़ते जाते हैं। गुजरात का गरबा संगीत और नृत्य का वो अनोखा संगम है जिसकी गोलाकार संरचनाओं में आनंद और उल्लास के साथ शक्ति उपासना का सागर भी हिलोरे लेता है। बल्कि देखा जाए तो गुजरात का गरबा वास्तव में मां भगवती की उपासना की सबसे जीवंत तस्वीर है। जो गरबा नृत्य परंपरा की जड़ों से परिचित नहीं है वे इसे महज एक डांस फॉर्म के रूप में जानते हैं और भारत के विस्तृत सांस्कृतिक मानचित्र का एक हिस्सा भर मानते हैं। एक बेहद सुंदर रंगों से सजा धजा हिस्सा, लेकिन वास्तव में गरबा इससे कई बढ़कर है। वास्तव में गरबा नारी की सृजन शक्ति को नमन करने का उत्सव है और इस उत्सव के केंद्र में होता है वो गर्भदीप जिसे आपने अक्सर गरबा नृत्य के केंद्र में देखा होगा। गोला बनाकर किए जाने वाले गरबा नृत्य के बीच में एक कलश रखा जाता है। गरबा के आयोजन में देवी की उपासना के साथ इस कलश को रखने की परंपरा है। इस कलश को गर्भदीप कहा जाता है और इसी गर्भदीप के गर्भ में छुपा है गरबे की परंपरा का सार।
1: 5000 साल से ज्यादा गरबा की परंपरा है। विक्रम संवत में 16 दिन जब श्राद्ध के संपूर्ण होते हैं और शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होता है। बारिश विदाई ले के न ले, लेकिन शरद ऋतु आ जाती है। गरबा का अर्थ यही होता है, दीप गर्भ, गर्भ में मैं हूँ। गर्भ का अर्थ ये है कि छिद्र वाले घट में गरबा कहते हैं, यानी गर्भो भी कहते हैं।
0: आपको बता दें कि गरबा शब्द गर्भ और दीप से मिलकर बना है। नवरात्रि के पहले दिन मिट्टी के घड़े में बहुत से छेद किए जाते हैं जिसके अंदर एक दीपक प्रज्वलित करके रखा जाता है। इसके साथ चांदी का एक सिक्का भी रखते हैं। इस दीपक को ही दीप गर्भ कहा जाता है। आपको बता दें कि दीप गर्भ नारी की सृजन शक्ति का प्रतीक है और गरबा इसी गर्भ दीप का अभ्रंश रूप है। दीप गर्भ की परंपरा में कलश या घड़े को नारी के गर्भ का प्रतीक माना जाता है, तो वही इस कलश में रखा दीपक जीवन और विशेष कर गर्भ में पल रहे शिशु के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसी गर्भदीप के चारों ओर गोला बनाकर गरबा किया जाता है। ये गोला सर्कल ऑफ लाइफ यानी जीवन के चक्र का प्रतीक माना जाता है। वही जीवन चक्र जिसकी उत्पत्ति और संचालन का आधार स्वयं शक्ति है। इस तरह गरबा नृत्य नारी की प्रजनन क्षमता का उत्सव मनाता है, नारित्व का सम्मान करता है और मातृ देवियों के सभी 9 रूपों को नमन करता है।
1: दीप गर्भ को नारी शक्ति समन्वित कहते हैं कि गरबा का अर्थ ये है कि गर्भ का दीपक, पौराणिक मात्रा अनुसार के अनुसार कहा जा रहा है कि गर्भदीप स्त्री गर्भ का सर्जन शक्ति का प्रतीक होता है, सौभाग्य का प्रतीक होता है, शक्ति का प्रतीक होता है। गर्भदीप स्थापना महिलाओं के लिए समृद्धि लाती है और स्त्रियों अच्छे वस्त्र धारण करके माता दुर्गा की उपासना करती है और खूब फलदायी है।
0: दीप गर्भ की स्थापना के पास महिलाएं सुंदर और रंग बिरंगे कपड़े पहनकर माता शक्ति के आगे नृत्य कर उन्हें प्रसन्न करती हैं। गरबा नृत्य कई तरह से और कई चीजों के साथ किया जाता है। गरबे में महिलाएं और पुरुष ताली, चुटकी, डांडिया और मंजीरों का भी इस्तेमाल करते हैं। ताल से ताल मिलाने के लिए महिलाएं और पुरुषों का 2 या फिर 4 का ग्रुप बनाकर ये नृत्य किया जाता है। गरबे के नृत्य में मात्र शक्ति और कृष्ण की रासलीला से संबंधित गीत गाए और बजाए जाते हैं। गुजरात के लोगों का ये मानना है कि गरबा नृत्य माँ भगवती को बेहद प्रिय है, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए गरबे का नवरात्रि में खास तौर पर आयोजन किया जाता है।

नवरात्रि में गरबा और डांडिया खेलने की परंपरा कई सालों पुरानी है, लेकिन 60 और 70 के दशक तक गरबा गुजरात और राजस्थान जैसे पश्चिमी राज्यों में खेला जाता था। उन दिनों तक गरबे का रूप भी आज जितना भव्य और विशाल नहीं था। गांवों और शहरों में बेहद सादगी के साथ और सीमित स्तर पर गरबे का आयोजन होता था।

लेकिन धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ गरबा का विस्तार गुजरात की सीमाओं से निकलकर दूसरे राज्यों तक पहुंचने लगा। लोकप्रियता बढ़ी तो गुजराती सिनेमा के बाद मुंबई की फिल्मों ने भी अपने कैनवस में गरबा वाले गीतों के लिए जगह बनानी शुरू की।

तरह गरबा की लोकप्रियता आगे बढ़ती चली गई। समय के साथ गरबा की बढ़ती ख्याति यूनेस्को तक भी पहुंची। साल 2023 में यूनेस्को ने इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी यानी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया। यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने के बाद गरबा की रौनक कुछ और बढ़ गई। अब देश के कई राज्यों में नवरात्रि पर्व पर गरबा का आयोजन किया जाता है। कई संस्थाएं और क्लब बेहद बड़े पैमाने पर पूरी भव्यता के साथ नवरात्र में गरबा का आयोजन करते हैं। कई जगहों पर गरबा प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। गरबा आयोजन के नए रिकॉर्ड बनते हैं। अब की बार भी शक्ति उपासना के उत्सव में गुजरात के साथ साथ सारा देश आस्था की इस अनुपम ताल पर झूम रहा है जिसे दुनिया गरबा नाम से जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: देश में पहली बार चमोली जिले में वसुंधरा ताल में लगा अर्ली वार्निंग सिस्टम, 2 घंटे पहले मिलेगी आपदा की चेतावनी, स्वदेशी तकनीक से लैस। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा और इजाफा, पहला स्वदेशी मल्टीपर्पज वेसल समर्थक 16 अक्टूबर को कारवार में होगा कमीशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए गुड न्यूज, 20,000 से ज्यादा छात्रों को मिलेगी हॉस्टल की सुविधा, 5,157 करोड़ की प्रस्तावित योजना तैयार। उत्तराखंड में गुटखा पान मसाला और तंबाकू उत्पादनों पर 1 साल का प्रतिबंध, निर्माण भंडारण और वितरण पर होगी कार्रवाई। धर्माद में थाईलैंड के अरुण मंदिर की तर्ज पर बन रहा है मां दुर्गा का पंडाल, कतरास जीएनएम ग्राउंड में बनेगा पंडाल, 40 लाख रुपए आएगी लागत। जम्मू कश्मीर में मौसम ने ली करवट, गुलमर्ग समेत कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, सैलानी उठा रहे हैं शानदार मौसम का लुत्फ।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: आज नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की हो रही है पूजा अर्चना, देश भर में मंदिरों में सुबह से लगी लंबी कतारें। मां चंद्रघंटा की पूजा से अहंकार से मिलती है मुक्ति और सौभाग्य की होती है प्राप्ति, मां चंद्रघंटा की आराधना से बढ़ता है साहस और आत्मविश्वास, मंगल ग्रह की बढ़ाए होती है दूर। 10 भुजाओं वाली मां चंद्रघंटा सिंह पर सवार होती हैं, लाल वस्त्र, लाल पीले फूल और मंत्र जाप से मां चंद्रघंटा की पूजा बनती है सफल और फलदायी। मंत्रों का जाप और घी का दीपक जलाकर करनी चाहिए मां चंद्रघंटा की उपासना, मां चंद्रघंटा की भक्ति से व्यक्ति बनता है पराक्रमी और निर्भय। मां चंद्रघंटा का रूप शांति, साहस और कल्याण का माना जाता है प्रतीक, सौम्य स्वरूप शांति और सुख की प्रदान। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा का भव्य श्रृंगार, मां चंद्रघंटा की उतारी गई आरती, आरती में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, श्रद्धालुओं ने जमकर लगाया जय माता दी की जयकारे, भक्तों ने पूजा पाठ करके आशीर्वाद लिया। दिल्ली के छतरपुर में नवरात्र को लेकर उमड़ा आस्था का जलसा, बड़ी संख्या में लोगों ने पूजा अर्चना की। छतरपुर से मंदिर में लगी हुई है भारी भीड़, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हरिद्वार के मां चंडी देवी मंदिर में भक्तों ने मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया। तीसरे दिन मां के दर्शन करने के लिए सुबह से लंबी कतारें लगी हुई, भक्तों ने जमकर लगाया जय माता दी के जयकारे। अम्बाला में नवरात्र पर मां काली की विशेष पूजा अर्चना, दुख भंजनी मंदिर में तीसरे दिन करीब 300 लीटर दूध से कराया गया माता प्राणी का अभिषेक। मां काली की भक्ति में डूबा अंबाला का दुख भंजनी मंदिर। हावेरी में शारदीय नवरात्र पर फूलों से सजा नवदुर्गा का मंदिर, गर्भगृह में 9 रूपों में विराजमान। नवरात्र के तीसरे दिन मंत्रोच्चार के साथ गूंजा खोला का रेणुका माता मंदिर, लाल रंग के वस्त्रों में सजी सवरी श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की आशीर्वाद लिया। 250 साल पुराने मंदिर में नवरात्रि के मौके पर विशेष पूजा अर्चना, कुमकुम लेकर महिलाओं ने 1008 मंत्रों का जाप किया। नवरात्रि के तीसरे दिन इंदौर में मां अन्नपूर्णा के दरबार में भक्तों की भारी भीड़, आस्था और सेवा का संगम। अन्न की देवी का स्वरूप माना जाता है यह मंदिर। यहां दर्शन करने के साथ अन्न क्षेत्र के माध्यम से निभाई जाती है सेवा की परंपरा। सफेद संगमरमर से बना यह मंदिर अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र। आकर्षक का स्थापत्य शैली के लिए मशहूर। बिहार के बेगूसराय में स्थित है देश का सबसे ऊंचा दुर्गा मंदिर। 11 मंजिल और 221 फीट ऊंचा है बेगूसराय का यह दुर्गा मंदिर। नवरात्र और दशहरे के मौके पर 10 दिन भव्य आरती की जाती है। राजकोट के लघु चित्रकलाकार और शिक्षाविद निकुंज ने दुनिया की सबसे छोटी हनुमान चालीसा बनाने का दावा किया। 21 पन्नों वाली इस हनुमान चालीसा का वजन है 1 ग्राम और आकार 10x40 mm। विमान हादसा टालकर 180 लोगों की जान बचाने वाले कैप्टन स्मिथ पछार को ये सबसे छोटी हनुमान चालीसा गिफ्ट करेंगे निकुंज। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में नवरात्र के तीसरे दिन उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सुबह से भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। भक्तों ने जमकर लगाया जय माता दी के जयकारे। जयपुर के मां वैष्णो देवी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। लाल साड़ी और फूलों से सजे मां के दरबार। तीसरे दिन मां को पूड़ी और हलवे का लगाया गया भोग। भक्तों ने पूजा करके आशीर्वाद दिया। कोटा के वीर बालाजी धाम में अनोखी कहानी। मंदिर में तालाब से प्रकट हुई थी बालाजी की मूर्तियां। दूर दराज से अर्जी लगाने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। सूरत में मां दुर्गा की भक्ति का अनोखा अंदाज। 75 प्रीमियम मोटरसाइकिल से तैयार की गई मां आदिशक्ति की विशाल आकृति। 10 दिनों की तैयारी के बाद 75 प्रीमियम बाइकों से तैयार की गई है आकृति। अमेरिका की न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर दुर्गा उत्सव की धूम। फादर डफ स्क्वायर पर 2 दिवसीय आयोजन में उमड़े प्रवासी भारतीय।

0: पूजा पाठ महालया की रस्में, संगीत और नृत्य ने बांधा समा। बंगाली गीतों, डांस और दर्श महाविद्या डांस ड्रामा ने दर्शकों का मन मोह लिया। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में भारतीय संस्कृति का रंग, दूसरे दुर्गा उत्सव में बच्चों और युवाओं ने शानदार प्रस्तुति दी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में अनोखा दुर्गा पूजा पंडाल बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। नेवारी गुड़ गांव में 117 देवी देवताओं की झलक ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। कवर्धा के नेवारी गुड़ में दुर्गा पूजा के लिए भव्य पंडाल सजाया गया। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्थित श्री रंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर में नवरात्र उत्सव की जबरदस्त शुरुआत। नवरात्रि के रंग में रंगा तमिलनाडु का प्रसिद्ध श्री रंगम मंदिर, मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ भक्तों ने आशीर्वाद लिया। कोलकाता के एलन पार्क में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संथाली संघ दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल के नादिया में कमलपुर अभियान संघ की दुर्गा पूजा बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। पंडाल में 117 मूर्तियों की अनोखी झलक। नादिया में दुर्गा पूजा के साथ सेवा और सहयोग की मिसाल, करीब 4000 महिलाओं को वस्त्र वितरित किया गया। बेंगलुरु के कैंपो गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दशहरा और नवरात्रि समारोह की शुरुआत। उत्सव के जरिए भारतीय संस्कृति और परंपराओं की झलक, जबरदस्त ढोल लंगाड़ों की धुन पर थिरके लोग। तमिलनाडु के ऊटी में नवरात्रि की अनोखी छठा ब्रह्मा कुमारी संस्था ने अपनी 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गोलू प्रदर्शनी का आयोजन किया। गुजरात के खेड़ा में नवरात्रि के तीसरे दिन मां अंबा की विशेष आरती, पारंपरिक मणिपुरी वेशभूषा में सजी बेटियों ने शानदार प्रस्तुति दी। नवरात्र उत्सव पर एनआरआई परिवार 10 दिनों तक गांव में रहकर करते हैं मां अंबा की आराधना। सलूण गांव की बेटियों ने मणिपुरी वेशभूषा में दिखाई मां अंबा की आरती करके भारतीय संस्कृति की विविधता। मां अंबा की आरती के लिए बेटियों ने कई सप्ताह तक किया अभ्यास। मणिपुरी परिधान और भक्ति से सजी इस प्रस्तुति ने नवरात्र उत्सव को खास बनाया। बेटियों ने युवाओं से सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की अपील की। प्रयागराज की रामलीला में अभिनेता गौतम त्रिपाठी निभा रहे हैं भगवान विष्णु की भूमिका। प्रयागराज के गौतम त्रिपाठी ने फिल्म हनुमान अंश में बाबा नीब गरौरी के भक्त राधेश्याम की निभाई है भूमिका। झांसी में नवरात्र के मौके पर सीजन का पहला गरबा डांडिया आयोजन हुआ। छोटी छोटी बच्चियों की आरती के साथ कार्यक्रम की हुई शुरुआत। अन्य कई कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। प्रतिभागियों ने भक्ति संगीत और नृत्य से बांधा समा। भक्ति गीतों पर जमकर झूमे लोग। गुजरात के राजकोट में नवरात्र के दौरान क्षत्रिय राजपूत महिलाओं का अनोखा अंदाज। राजवी पैलेस में महिलाओं ने पारंपरिक तलवार राज किया। राजवी पैलेस में क्षत्रिय राजपूत महिलाओं ने तलवार रास में बांधा समा। नवरात्रि में गुजरात के राजकोट में परंपरा और वीरता का संगम। राजवी पैलेस में राजपूत महिलाओं ने तलवारबाजी के हुनर दिखाए। गुजरात के जामनगर जिला में जेल में नवरात्रि की धूम। जेल की चार दीवारी के भीतर कैदियों ने माता रानी की आराधना के साथ खेला रास। नवरात्रि के रंग में रंगा जामनगर जिला जेल परिसर। कैदियों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए अच्छी खबर। आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार को लेकर जताया भरोसा। भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर आईएमएफ का बड़ा अनुमान। साल 2026-27 में 7% की रफ्तार से बढ़ सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था। त्योहारों में मिठाई खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से मिठाइयों पर यूज बाय डेट लिखना अनिवार्य। उत्तर प्रदेश सरकार के मिलावट रोकने के ग्राहकों की सेहत की सुरक्षा करने के लिए जोर। उत्तर प्रदेश में मिठाई की गुणवत्ता पर निगरानी होगी और सख्त। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने दुकानदारों की जवाबदेही तय की। तमिलनाडु के रामेश्वरम में हॉकी का रोमांच, पहली बार राज्य स्तरीय 7-a-side हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन। मुकाबलों को लेकर खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह, खिलाड़ियों ने मैदान पर दिखाया दमखम। पुंछ में थ्रोबॉल टूर्नामेंट का भव्य समापन हुआ, 9 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया। गया में CUSB के 5वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने 61 छात्रों का किया सम्मान। मस्ती पहुंचा 308 पहिए वाला बाहुबली ट्रक, दीदार करने के लिए सड़क पर उमड़े लोग। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस ने सुरक्षा तैयारियों के लिए मॉक ड्रिल की, जवानों की सुरक्षा परखा। पुलिस ने किसी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की। पुलिस ने लोगों से मॉक ड्रिल के दौरान सहयोग करने और आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की, शांति और सुरक्षा बनाए रखने की अपील। अजमेर में महाराजा अग्रसेन की जयंती पर भजन कीर्तन का आयोजन। हैदराबाद में पिता और बेटी के लिए देवदूत बनी RPF कांस्टेबल रीना कुमारी, ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री का पैर फिसला, जान बचाई। देश में पहली बार ग्लेशियर झील पर लगा स्वदेशी अर्ली वार्निंग सिस्टम। CBRI रुड़की की 9 सदस्यीय वैज्ञानिकों की विषम परिस्थितियों में किया कमाल, करीब 8 करोड़ की लागत वाले सिस्टम को सिर्फ 61 लाख में तैयार कर दिया। महाराष्ट्र के लातूर में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन स्कूल के छात्र छात्राओं ने महानायक अमिताभ बच्चन को अनोखा तोहफा दिया। बच्चों ने 2400 स्क्वायर फीट इलाके में 5 अलग अलग तरह के 600 किलो फूल से बनाई अमिताभ बच्चन की तस्वीर। स्कूली बच्चों, कर्मचारियों और विशेषज्ञ कलाकारों ने 4 दिन की मेहनत के बाद तैयार की कलाकृति। प्रयागराज में गरीबों को मिलेगा अपना पक्का आशियाना, माफिया तीक के गढ़ में बनेगा पद्म आवास। प्रयागराज के चकिया में अतीक के घर के पास 602 फ्लैट की आवासीय सोसाइटी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की कोंगडूरी और अफरवत इलाके में हुई मौसम की पहली बर्फबारी। पतझड़ के रंग में रंग बिरंगे नजारे देखने को मिल रहे हैं। गुलमर्ग में अचानक बर्फबारी से खुश नजर आए पर्यटक। बर्फबारी ने बढ़ाई कश्मीर घाटी की सुंदरता, पहाड़ियों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से गिरा तापमान। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और आसपास के इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। कश्मीर के बूट पथरी इलाके में ताजा बर्फबारी से पहाड़ों का बदल गया नजारा। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद बदल गया मौसम का मिजाज, तापमान गिरने से बढ़ी ठंड। बर्फबारी के बाद सैलानियों से गुलजार नजर आए गुलमर्ग, बर्फबारी के बीच पर्यटकों ने मौज मस्ती की। बर्फबारी से कारोबारियों की खिले चेहरे, बड़ी संख्या में गुलमर्ग पहुंच रहे हैं सैलानी। फिल्म रजनी द जेलर 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज, 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। रश्मिका मंदना और विजय देवरकोंडा की अपनी फिल्म रणबाली की रिलीज से पहले मुख्यमंत्री विजय से हुई मुलाकात। तिरुपति बालाजी के दरबार में पहुंचे विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदना, भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करके आशीर्वाद लिया। सैफ अली खान ने इंस्टाग्राम पर पटौदी लाइब्रेरी की दिखाई झलक, कैप्शन में लिखा पटौदी लाइब्रेरी। फिल्म गाड़ी का धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में होगा प्रीमियर, 29 अक्टूबर से महोत्सव की शुरुआत। चिली के स्की रिजॉर्ट्स में बर्फबारी का अनोखा नजारा, अक्टूबर के मध्य तक जोरदार बर्फबारी जारी। चीनी बर्फबारी ने बढ़ाया स्कीइंग का रोमांच। वैले नेवाडो समेत कई स्की रिजॉर्ट का सीजन एक महीने से ज्यादा बढ़ा। चीनी में मौसम का बदल गया मिजाज। वसंत के मौसम में भी पहाड़ों का जमकर गिर रही है बर्फ। अक्टूबर में स्कीइंग का मौका मिलने से पर्यटकों के चेहरे खिले। चिली के पर्यटन क्षेत्र में व्हाइट बूम समुद्र तल से करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर पर्यटन वसंत में भी ले रहा है स्कीइंग का मजा। सीजन के आखिरी दौर में हुई भारी बर्फबारी ने पुराने रिकॉर्ड्स सभी तोड़ दिए। सीजन लंबा चलने से स्की रिजॉर्ट का कारोबार बढ़ा।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: भारत के नक्शे वाला पंडाल, माँ दुर्गा के दर पर अंतरिक्ष जैसा अनुभव, लक्ष्मी विलास पैलेस की स्पेशल गरबा, कश्मीर घाटी में पर्यटन का गेम चेंजर। देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अमेरिका के न्यूयॉर्क में बहुत मशहूर जगह है टाइम्स स्क्वायर, सात समुंदर पार। नवरात्र में यहाँ माँ दुर्गा की भक्ति का रंग जमा हुआ है। बंगाली समुदाय के लोगों ने यहाँ पर दुर्गा पूजा के जरिए अपनी संस्कृति और परंपराओं का जश्न मनाया। दो दिन के इस उत्सव में पूजा पाठ के साथ संगीत, नृत्य और सम्मान समारोह हुआ।

0: दुनिया के सबसे चर्चित स्थानों में से एक न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर माँ दुर्गा के जयकारों से गूंज उठा। जहाँ कहीं पूजा अर्चना में जुटे श्रद्धालु दिखे, तो कहीं भक्ति गीतों पर थिरकते कलाकार नजर आए। सात समंदर पार माँ दुर्गा की आराधना में डूबे ये सभी श्रद्धालु भक्ति के साथ अपनी संस्कृति और परंपराओं के रंग बिखेरते नजर आए। आमतौर पर यहाँ चमचमाती स्क्रीन और लोगों की भीड़ नजर आती है, लेकिन इस बार नवरात्रि के मौके पर माहौल कुछ ऐसा बदला कि हर तरफ माँ की भक्ति के रंग नजर आने लगे। इस आयोजन में भक्ति के साथ अपनी जड़ों से जुड़े रहने का भाव भी नजर आया। भक्ति गीतों की धुन पर कलाकारों ने ऐसा समा बांधा कि दर्शक भी झूम उठे। बच्चों और युवाओं की प्रस्तुति ने उत्सव में चार चांद लगा दिए। प्रस्तुति में अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और परंपराओं को सहेजने की झलक दिखाई दी। वहीं कलाकारों की संगीतमय प्रस्तुति से हर कोई उत्सव के रंग में रंगा नजर आया। खास बात तो ये रही कि माँ दुर्गा की भक्ति में सिर्फ भारतीय समुदाय ही नहीं, विदेशी पर्यटक भी शामिल हुए और टाइम्स स्क्वायर में माँ दुर्गा की आराधना का ये उत्सव आस्था के साथ भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को भी बयां कर गया। न्यूयॉर्क से रोहित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
2: कौन से हैं देवी के चमत्कारी नाम, क्या है देवी के नाम को जपने का विधान और देवी के नाम से मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
4: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: देश में पहली बार चमोली जिले में वसुंधरा ताल में लगा अर्ली वार्निंग सिस्टम, 2 घंटे पहले मिलेगी आपदा की चेतावनी, स्वदेशी तकनीक से है विकसित। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा और इजाफा, पहला स्वदेशी मल्टीपर्पज वेसल समर्थक 16 अक्टूबर को कारवार में होगा कमीशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए गुड न्यूज, 20,000 से अधिक छात्रों को मिलेगी हॉस्टल की सुविधा, 5,157 करोड़ की प्रस्तावित योजना तैयार। उत्तराखंड में गुटखा पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर 1 साल का प्रतिबंध, निर्माण भंडारण और वितरण पर होगी कार्रवाई। धनबाद में थाईलैंड के अरुण मंदिर की तर्ज पर बन रहा मां दुर्गा का पंडाल, कतरास जीएनएम ग्राउंड में बनेगा पंडाल, 40 लाख रुपए आएगी लागत। जम्मू कश्मीर में मौसम ने ली करवट, गुलमर्ग समेत कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, सैलानी उठा रहे शानदार मौसम का लुत्फ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम।
3: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। देश भर में शक्ति की उपासना का महापर्व पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है, शहर शहर आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। ऐसे में आज की जो हमारी पहली गुड न्यूज है वो है नवरात्र के 3rd दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना। आपको बता दें कि आज शारदीय नवरात्र के 3rd दिन देश भर में मां चंद्रघंटा की पूजा हो रही है। ऐसी मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की सच्चे मन से पूजा करने से मां आशीर्वाद देती हैं और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। पूरे विधि विधान

0: अगर माता चंद्रघंटा की उपासना की जाए तो मंगल और अहंकार निवारण का वरदान मिलता है। दिल्ली से लेकर गुजरात, सूरत से लेकर पश्चिम बंगाल तक महापर्व नवरात्र के रंग बिखरे हैं। सुबह सवेरे भक्त मां का आशीर्वाद लेने के लिए मां के दरबार में पहुंच रहे हैं। मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। इसके बावजूद भक्तों के चेहरे पर खुशी और मां के दर्शन का उत्साह है, जो इस शक्ति उत्सव को खास बना रहा है। राजधानी दिल्ली के छतरपुर स्थित झंडेवालान और कात्यानी मंदिर में श्रद्धालुओं की अटूट आस्था देखने को मिल रही है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी शक्ति उत्सव के खूबसूरत रंग बिखरे हुए हैं। सूरत में तो बाइकर्स ने क्रिएटिविटी दिखाते हुए भक्ति का अनोखा रूप पेश किया।
1: बिल्कुल, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, यानी कि माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्र घंटा का आज दिन है और जयपुर के माँ वैष्णो देवी मंदिर में मौजूद हूँ, जहाँ पर सुबह से ही भक्त लगातार आ रहे हैं, माँ के दर्शन कर रहे हैं। माँ का स्वरूप भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से माँ आज लाल साड़ी में भक्तों को अपना स्वरूप दिखा रही है, आशीर्वाद दे रही है। सुबह से ही लगातार भक्त आ रहे हैं और माँ चंद्र घंटा के लिए कहा जाता है कि उनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना होता है, तो यही स्वरूप जो है वो आज यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है। पूरे फूलों से मंदिर का जो श्रृंगार है वो किया गया है और भोग की मैं बात करूँ तो दूसरी ओर यहाँ पे भोग की तैयारियां भी की गई है। यहाँ पूरी टेबल जो है वो भोग से सजी गई है, जिसमें आज खास हलवा और पूरी का भोग जो है वो सभी भक्तों के लिए रखा गया है। लगातार भक्त यहाँ आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भोग ले रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और पूजा अर्चना की मैं बात करूं तो जो भी यहां आ रहा है पीले फूल उन सभी को मिल रहे हैं और साथ ही साथ में फूल, चंदन और धूप, ये तीन चीजें जो है वो भक्त लेके आ रहे हैं और मां को अर्पित कर रहे हैं, मां को चढ़ा रहे हैं।
0: आस्था और भक्ति की तस्वीर मां के भव्य दिव्य पंडाल में भी देखने के लिए मिल रही है और सबसे भव्य नजारा है कोलकाता का, जहां एक से बढ़कर एक पंडाल लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। भव्य पंडालों में सजा मां भगवती का दरबार। आपको बता दें कि दिल्ली से लेकर कोलकाता तक पंडाल के नजारे एकदम निराले हैं। एक से बढ़कर एक भव्य पंडाल, हर पंडाल की अपनी अलग अलग पहचान, हर थीम में एक अनूठी कल्पना और हर सजावट में कलाकारों की बेजोड़ कारीगरी देखने को मिल रही है। कहीं आस्था और परंपरा की झलक है तो कहीं आधुनिक सोच के साथ समाज को संदेश देने की कोशिश की गई है।

0: शहर शहर सजे माँ दुर्गा के भव्य दिव्य पंडाल, हर पंडाल की अलग थीम, हर पंडाल का अलग नजारा, सजावट ऐसी कि नजरें ठहर जाए और कलाकारी ऐसी कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। देश भर में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर शहर हर कस्बे में एक से बढ़कर एक पंडाल सजा है और सबसे भव्य नजारा पश्चिम बंगाल के कोलकाता का है। कोलकाता में तो हर साल माँ दुर्गा के भव्य दिव्य दरबार सजते ही हैं और हर पंडाल अपने आप में एक नई कहानी भी कहता है। यहाँ आस्था, कला और कल्पनाओं का ऐसा संगम जहाँ हर रास्ता माँ के दरबार तक जाता है और हर निगाह भव्यता में खो जाती है। हर पंडालों की थीम ऐसी भी है जो सिर्फ आंखों को सुकून नहीं देती बल्कि मन को सोचने पर भी मजबूर करती है। दक्षिण कोलकाता के मशहूर राजडांगा नबा उदय संघ का पंडाल शोधन यानी शुद्धिकरण थीम पर तैयार किया गया है। शोधन यानी मन और विचारों को शुद्ध करने की एक कोशिश। दुर्गा पूजा के इस पंडाल में कलाकारों ने इंसानी सोच विचार और नजरिए को अपनी कल्पना का आधार बनाया है। एक ऐसा संसार रचा है जहाँ कला, कल्पना और मन के अनुभवों का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है।
1: शोधन जो बनाया है ना, ये हमारा ह्यूमन बीइंग का जो सोच है वो लेकर बनाया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये कुछ पूरा ह्यूमन बीइंग का एक एक एंगल धर के बनाया, जो जे एंगल से ये देख सके वो देख सकते हैं, उसके एंगल से ही वो ये थीम क्रिएट कर सकते हैं। मैंने सुबह इसका रूप दिया है शोधन, ये एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनाया, क्योंकि या पर जो ड्रीम दिखाई दे रहा है ना, ये दर्शक का जो देखता है उसका अच्छा मन में अच्छा लगता है।
0: पंडाल के भीतर बनाया गया कृत्रिम जंगल इस पूरी परिकल्पना को एक अद्भुत एहसास दे रहा है। ऐसा माहौल जहां कदम रखते ही दर्शक एक अलग ही दुनिया में पहुंचने का अनुभव कर सकते हैं। कोलकाता में चोरे बागान सर्वजनिन दुर्गोत्सव समिति का पूजा पंडाल भी अपनी खूबसूरती और खास थीम से लोगों का ध्यान खींच ले रहा है। इस साल चोर बागान दुर्गा पूजा अपने 91 साल पूरे कर चुकी है और इस खास मौके पर पंडाल की थीम में समाज के एक ऐसे वर्ग और महिलाओं के जीवन के संघर्षों को दर्शाने की कोशिश की गई है जिनकी चुनौतियां अक्सर अनदेखी रह जाती हैं।
2: भावना लेके यहां पे आएंगे, जो दुर्गा मूर्ति, जो थीम, जो साउंड, ये सबको एक तो एक्सपेक्टेशन होता है, जो एक्सपेक्टेशन लेके यहाँ का दर्शनार्थी लोग आएंगे, इससे कई गुना ज़्यादा लेके यहाँ से वो जाएंगे। और हम लोग का जो थीम है उसका नाम है अरब, वो साउंड और लाइट, बियॉन्ड द साउंड, ये हम लोग का थीम है। और साउंड और लाइट और माँ दुर्गा, ये सबको मिला के एक बहुत जो एम्बियंस क्रिएट हुआ है वो एक अलग तरह का एम्बियंस है।
0: थीम को बेहद संवेदनशीलता और कलात्मक खूबसूरती के साथ उकेरा गया है। ग्रेस ग्रे कलर पैलेट के इस्तेमाल से पंडाल को एक अलग पहचान मिली है। रंगों की सादगी और कलाकारी की गहराई के जरिए महिलाओं के संघर्ष, उनके अनुभवों और जीवन की जटिलताओं को सामने लाने की कोशिश की गई है। इसी तरह पश्चिम बंगाल के न्यू टाउन में चॉकलेट से माँ दुर्गा की करीब 7 फीट ऊंची प्रतिमा तैयार की गई है। माँ शेर पर सवार हैं, हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और पूरी प्रतिमा को चॉकलेट से आकार दिया गया है। आस्था और कलात्मकता का यह अनोखा संगम लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती इस पंडाल में पहुंचे और दुर्गा माता की पूजा अर्चना की। सात समंदर पार भी माँ दुर्गा की आस्था और विश्वास का महापर्व नवरात्रि धूमधाम से मनाया जा रहा है। न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर माँ दुर्गा की आराधना हुई तो माहौल भक्त, संगीत और संस्कृति के रंगों से सराबोर हो उठा। आमतौर पर जहाँ चमचमाती स्क्रीन और लोगों की भीड़ नजर आती है, वहीं इस बार नवरात्रि पर माहौल कुछ ऐसा बदला कि हर तरफ माँ की भक्ति के रंग बिखरे नजर आए। इस आयोजन में भक्ति के साथ अपनी जड़ों से जुड़े रहने का भाव भी दिखा। भक्ति गीतों की धुन पर कलाकारों ने ऐसा समा बांधा कि दर्शक झूम उठे। न्यूयॉर्क से रोहित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देशभर में पंडाल के साथ साथ गरबा रास ने खूब रंग जमाया हुआ है और सबसे ज्यादा उत्साह गुजरात में देखने के लिए मिल रहा है। सूरत से लेकर वडोदरा तक ग्रैंड गरबा ग्राउंड सजाए गए हैं। ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस में हेरिटेज गरबा का आयोजन किया गया जहां भारतीय और वैश्विक संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है गुजरात में गरबा के लिए हाई है जोश। जी हाँ, वडोदरा में गरबा रास में जहां विदेशी मेहमान पहुंचे तो वहीं राजकोट में तलवार रास सबका दिल जीत रहा है। इस गरबा रास में सजी धजी महिलाएं और लड़कियां मां दुर्गा की स्तुति करती हैं और हाथों में चमचमाती तलवारें लेकर गरबा की थाप पर थिरकती हैं।

0: राजकोट के राज पैलेस में राजपूत महिलाओं ने शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन किया। यहां खुली विंटेज जीप और टू व्हीलर पर सवार होकर महिलाओं ने हैरतअंगेज तलवार रास किया। राजकोट के रानी साहेब कादंबरी देवी जी की अध्यक्षता में भगिनी सेवा फाउंडेशन हर साल पारंपरिक परंपराओं के साथ भव्य गरबा रास का आयोजन करता है, जिसमें तलवार रास सबसे ज्यादा लोगों का दिल जीतता है।
1: ये कार्यक्रम खास भगिनी सेवा फाउंडेशन की बहनें कर रही हैं, जो सभी क्षत्रिय बहनें हैं, और क्षत्रिय बहनों द्वारा इसका आयोजन किया गया है। आयोजन के साथ साथ पूरी मेहनत, इसका पूरी व्यवस्था सभी बहनें, क्षत्रिय बहनें करती हैं, और आप देखेंगे कि वह सभी तरह के स्टंट करती हैं। स्टंट दिखने में आपको बहुत आसान लगेंगे, पर असल में इसके पीछे कड़ी मेहनत होती है उनकी। एक महीने से वो लोग इसका परीक्षण ले रही हैं।
0: हर साल तलवार रास में क्षत्रिय समाज की महिलाओं द्वारा नए तरीके से प्रदर्शन किया जाता है। इस साल भी महिलाओं ने तलवार रास में टू व्हीलर्स और जीप पर सवार होकर तलवार रास किया। राजपूत महिलाओं का ये प्रदर्शन देखकर लोग अभिभूत हो गए। तो साथ ही इन क्षत्रिय महिलाओं द्वारा अंधकार में किया गया दिया रास भी आकर्षण का केंद्र बना। गरबा रास की ऐसी भव्य तस्वीर वडोदरा में देखने के लिए मिली, जहां ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस में भव्य हेरिटेज गरबा उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय और वैश्विक संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिला।
2: लक्ष्मी विलास पैलेस में हम मौजूद हैं, हेरिटेज गरबा आज यहां से हम आपको दिखा रहे हैं। आरती अभी अभी संपन्न हुई है, जिसमें आपने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। खुद राजमाता यहाँ पर मौजूद होती हैं, महारानी साहिबा यहाँ पर मौजूद होती हैं। इस आरती की भी एक खास परंपरा है और उस परंपरा को अभी तक निभाया जाता है। अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊँ, इस पूरी डेकोरेशन में बहुत ही खूबसूरती के साथ फूलों की डेकोरेशन तो की गई, लेकिन बीच बीच में आपको रंग बिरंगी साड़ियाँ नजर आएंगी। मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये सब मराठी साड़ियाँ हैं।
0: इस भव्य सम्मेलन में शामिल होने के लिए 30 देशों के विदेशी मेहमान भी पहुंचे और लक्ष्मी विलास पैलेस में हेरिटेज गरबा के साक्षी बने। इस उत्सव में जितनी अहमियत भक्ति और संगीत की है, उतना ही खास यहां का पारंपरिक पहनावा भी है, जिसकी झलक इस गरबा महोत्सव में बखूबी देखने को मिली। नवरात्रि के दौरान गुजरात के तमाम शहरों में गरबा उत्सव की रौनक छाई रहती है, लेकिन जामनगर में पारंपरिक रास और गरबा की अलग ही पहचान है। शहर के रणजीत नगर स्थित पटेल युवक गरबी मंडल द्वारा पिछले 80 वर्षों से इस परंपरा को संजो कर रखा गया है। यहाँ काठियावाड़ी पारंपरिक वेशभूषा में युवक अनूठे अंदाज में रास प्रस्तुत करते हैं। इस गरबे की सबसे बड़ी खासियत है अंगारा रास, जिसमें युवक जलते अंगारों के बीच अपनी पारंपरिक कला का प्रदर्शन करते हैं। गुजरात ही नहीं, देश भर में गरबा रास के अद्भुत रंग देखने के लिए मिल रहे हैं। झांसी के एक स्थानीय होटल में एक इवेंट में गरबा डांडिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। रंग बिरंगी रोशनी, पारंपरिक परिधानों, माता रानी के भजनों और डांडिया की खनक के बीच महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
3: एक बहुत मौका मिलता है नवरात्रि में आने के लिए, एक डांस करूं, एक बहुत मस्ती करूं। ये चाहती हूं हर महिला शक्ति नारी को यही आगे करना चाहिए।
4: आज इंजॉय तो बहुत किया, साथ में माता रानी के गानों पे, भजनों पर हम लोगों ने बड़े जयकारे लगाए, और सनातन को प्रमोट करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ कि हमारे जो संस्कृति है, सनातन है, वो कहीं पीछे ना छूटे। चूँकि नृत्य की बात है तो डांडिया तो हमेशा से बहुत ही मनमोहक सभी महिलाओं के लिए रहा है।
0: आने वाले कुछ दिनों तक देश भर में आस्था और भक्ति के ऐसे ही मनमोहक रंग देखने को मिलेंगे। कहीं पूजा अर्चना होगी तो कहीं भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों से माहौल भक्तिमय नजर आएगा। झांसी से अजय झा, राजकोट से ब्रजेश दोषी, जामनगर से दर्शन ठक्कर और वडोदरा से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: जयपुर में इस बार खास अंदाज में रावण दहन की तैयारी की जा रही है। इस बार यहां पर रावण का दहन केवल बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश भी देने वाला है। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है रावण दहन में पर्यावरण संरक्षण का संदेश। जी हाँ, आपको बता दें इस बार जयपुर में 105 फीट का रावण तैयार किया जा रहा है, और खास बात यह है कि इसे बनाने में तकनीक के साथ साथ भाईचारे का भी अनूठा संगम दिखाई देगा।

0: नवरात्र में माँ दुर्गा की भक्ति में पूरा देश डूबा हुआ है। शहर शहर भव्य पंडालों में माँ दुर्गा पधार रही है, तो वहीं दशहरे को लेकर भी तैयारियां जोर पकड़ चुकी है। जगह जगह रामलीलाओं के मंच सज रहे हैं और रावण दहन के लिए पुतले तैयार किए जा रहे हैं। जयपुर के सबसे पुराने दशहरा मैदान में इस बार 105 फीट ऊंचा रावण तैयार किया जा रहा है। इस बार रावण के पुतले बनाने में तकनीक का अनोखा प्रयोग किया जा रहा है। इस बार रावण की मूंछों को चेहरे से अलग रखकर 3D इफेक्ट दिया गया है, जिन्हें नीली रोशनी से सजाया जाएगा। वहीं हाथ में दी गई तलवार भी घूमने वाली होगी, जो अलग अलग अंदाज में घूमती नजर आएगी। रावण के पुतले में भव्य और रंग बिरंगे मुकुट के साथ इस बार पहले से ज्यादा लाइटिंग की व्यवस्था की गई है।
1: माता की भक्ति के साथ रावण दहन की तैयारियां भी जोरों शोरों से देश भर में चल रही है, और ऐसे में जयपुर के दशहरा मैदान के पास स्थित राम मंदिर में मौजूद हूँ, जहां पर रावण बनने की तैयारियां भी चल रही है। ढांचा भी तैयार है और उसका सर भी तैयार है। सर अभी बहुत खूबसूरत इस समय पर नजर आ रहा है, जहां पे लाइट्स पूरी लग चुकी है, स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। अंदर अभी जो आतिशबाजी है वो लगनी बाकी है, मुकुट अभी तैयार हो रहा है। धीरे धीरे हर दिन थोड़ा थोड़ा इसका जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, और ये बहुत ही खूबसूरत चेहरा बहुत सुंदर तरीके से बना हुआ नजर आ रहा है।
0: रावण के साथ साथ कुंभकर्ण का भी विशाल पुतला तैयार किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 90 फीट होगी। लेकिन इस बार रावण और उसके परिवार की खासियत सिर्फ उसकी ऊंचाई और भव्यता नहीं है। इसे बनाने में हर साल नया कच्चा माल इस्तेमाल किया जाता है। बांस, कागज और कॉटन के कपड़े से पुतला तैयार किया जाता है, जो कि इको फ्रेंडली होता है, और इसको बनाने में भी गोंद की जगह मैदे की लेई इस्तेमाल की जाती है।
2: तो हमारी आतिशबाजी है, उसके बारे इस बार हम बहुत ज्यादा अच्छा प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसको कि अलग अलग हाइट से हम इलेक्ट्रॉनिक करके और रिमोट से उसको कंट्रोल करेंगे। तो ये भी एक हमारे लिए इस बार का नया प्रयोग होगा और उसमें हम एकदम सफल होंगे।
0: इस आयोजन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि रावण बनाने वाले सभी कारीगर मुस्लिम समुदाय से हैं। जन्माष्टमी के अगले दिन से ही वे इस काम की तैयारियां शुरू कर देते हैं। उनकी मेहनत से तैयार होने वाला यह पुतला आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करता है।
1: खास बात यह है कि इसके जो बनाने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो कि जन्माष्टमी के अगले दिन से यहाँ आ जाते हैं और उस दिन से यहाँ लग जाते हैं इस रावण की बनावट में। करीब 105 फीट का ये रावण है, जिसके 10 सर इस तरफ रखे हुए हैं, जिनकी भी तैयारियां, जिसकी भी बनावट है वो अभी चल रही है। तो ऐसे में ये तैयारियां अभी जोरों शोरों से नजर आ रही है, जिसमें एक एक व्यक्ति यहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं, कारीगर हैं, वो लगे हुए हैं।
0: ऐसे में इस बार जयपुर में रावण दहन केवल बुराई पर अच्छाई की जीत नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देने वाला भी है। रिदम जैन, जयपुर, गुड न्यूज टुडे।
3: और रामनगरी अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के साथ ही श्रद्धालुओं की सेवा में जुटी सीता रसोई ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI की ओर से सीता रसोई को ईट राइट प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, यानी कि खाद्य सुरक्षा के मानकों पर सेवा खरी उतरी है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो है साफ सुथरा और सेहतमंद है सीता रसोई का खाना। जी हाँ, आपको बता दें कि राम मंदिर की सीता रसोई को ईट राइट प्रमाण पत्र मिला है और FSSAI की ओर से निर्धारित मूल्यांकन में सीता रसोई को 114 में से 103 अंक प्राप्त हुए हैं। सीता रसोई में राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन कराया जाता है। अयोध्या में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, ऐसे में भोजन की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा के मानकों का पालन करना विशेष रूप से जरूरी है। FSSAI की ओर से किए गए मूल्यांकन में रसोई को 114 में से 103 अंक मिले।
4: यहाँ पर हमने सुरक्षा के मानकों के लिए बहुत ध्यान में रखा, क्योंकि पूरे देश भर से विदेशों से भी लोग आते हैं, तो उनका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए, तो इसलिए हमने हर चीज का मानक पूरा किया यहाँ पर। और सौभाग्य यह है कि हमको भारत सरकार के द्वारा भारत खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की तरफ से कल ये सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया। उन्होंने इसका भूरी पूरी प्रशंसा भी की और एक जो उन्होंने तय किया था कि 114 नंबर में से 103 नंबर वगैरह पूरा किया जाती है, विशिष्ट उस श्रेणी में जो आता है पिता कितना कितना मानक, वो सारा उनके द्वारा ही कहा गया। तो हम लोग ये मानते हैं कि जो हमारा और हमारे सारे लोगों का जो यहाँ का परिश्रम है ट्रस्ट के द्वारा जो ये वो सब आयोजन है, ये अगर कोई दूसरा कहता है, हम तो मानते हैं कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब कोई दूसरा आके कहता है ये कार्य बहुत सुंदर और विशिष्ट दर्जे का है, सुरक्षा के स्वच्छता में और शुद्धता में सभी में अगर ये मानक में खरा उतरता है, तो वास्तव में ऐसा लगता है कि हमारा किया गया प्रयास ही सार्थक हुआ है।
3: नवरात्र की शुरुआत के साथ ही अरावली की पहाड़ियों में करणी माता मेला शुरू हो गया है। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके मेले का उद्घाटन किया गया। इस मेले में देश भर से लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। अरावली की छांव में करणी माता का मेला शुरू। आपको बता दें कि अरावली की पहाड़ियों के बीच करणी माता के मंदिर में नवरात्रों की शुरुआत के साथ ही मेले की शुरुआत भी हो जाती है। प्रदेश सरकार के वन मंत्री संजय शर्मा ने विधिवत पूजा अर्चना करके मेले का उद्घाटन किया। अलवर अरावली की वादियों में घिरा हुआ है। अलवर के बाला किला क्षेत्र में करणी माता का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण अलवर रियासत के महाराज बख्तवार सिंह ने 1792 से 1815 के बीच अपनी मन्नत पूरी होने पर करवाया था। नवरात्रि के मौके पर यहां 9 दिन मेला रहता है। राजस्थान के अलावा हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित आसपास के राज्य से लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। मेले की शुरुआत करते हुए मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि आने वाले लाखों श्रद्धालुओं से अनुरोध किया गया है कि वो अनावश्यक जंगल में जाने का प्रयास न करें। इस जंगल में बाघिन ST-2302 अपने 2 शावकों के साथ इसी क्षेत्र में घूम रही है, लिहाजा किसी भी तरह के इंसानों और जानवरों के बीच संघर्ष को टालने के लिए ऐसा अनुरोध किया गया है। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में मौसम ने फिर करवट ली है। गुलमर्ग के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी से पहाड़ों का नजारा और भी दिलकश हो गया है। बूटा पथरी और अफरवाद के कई हिस्सों में ताजा बर्फबारी से यह पूरा इलाका बर्फ की मोटी चादरों से ढक गया है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है, गुलमर्ग में पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। जी हां, आपको बता दें कि कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। बूटा पथरी समेत ऊपरी क्षेत्रों में बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है, जिससे कि पहाड़ों का नजारा और भी खूबसूरत हो गया है। गुलमर्ग अपनी खूबसूरत वादियां, ऊंचे पहाड़ और बर्फबारी के लिए जाना जाता है। यहां पर हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फ देखने और पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद लेने पहुंचते हैं। ऐसे में ऊंचाई वाले इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी से पर्यटकों के बीच खुशी का माहौल है। गुलमर्ग के अफरवाद पहाड़ पर भी ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। मौसम में आए इस बदलाव का असर दिन के तापमान पर भी दिखाई दे रहा है। गुलमर्ग में बर्फबारी का दौर इलाके की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है, लेकिन सुंदर नजारे के साथ बर्फबारी अब इलाके में सर्दी का भी एहसास करा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टरबेंस के प्रभाव से जम्मू कश्मीर में 15 अक्टूबर तक कई जगहों पर बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है।
5: घाटी में सर्दी के मौसम ने अपनी पहली दस्तक दे दी है। जोजीला और सोनमर्ग के पहाड़ों पर पहले बर्फबारी हुई और आज गुलमर्ग जो कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, वहां जो पहाड़ हैं सफेद खूबसूरत बर्फ की चादर में ढके दिखे। हालांकि सयाह और जो पर्यटक हैं उनके लिए बहुत मन मोह लेने वाला दृश्य है, लेकिन बर्फ के साथ साथ ठंड भी बढ़ गई है। मैदानी इलाकों तक जहां मैं हूं श्रीनगर में भी एक जिसको आप कहेंगे चिल, शार्प चिल है। मौसम काफी ठंडा हो गया है, तापमान कई डिग्री नीचे आ गया है और अगर मौसम विभाग का माने तो बर्फबारी जो है अगले 24 से 48 घंटे तक रुक रुक के हो सकती है और दक्षिणी और उत्तरी कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो सकती है। श्रीनगर और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है और जैसे मैंने कहा कि तापमान में अचानक कमी आई है, तो सर्दी का मौसम जो कि हालांकि अभी अगर आप मेन विंटर्स की बात करें तो 1.5-2 महीने दूर है, लेकिन इस साल ऑटम पतझड़ के मौसम में ही बर्फबारी शुरू हो गई है और जो नवंबर में आप जिस तरीके की ठंड फील करते हैं आज अक्टूबर में ही घाटी में आपको वो महसूस होगी।
3: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: देश में पहली बार चमोली जिले में वसुंधरा ताल में लगा अर्ली वार्निंग सिस्टम, 2 घंटे पहले मिलेगी आपदा की चेतावनी, स्वदेशी तकनीक से है विकसित। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा और इजाफा, पहला स्वदेशी मल्टीपर्पज वेसल समर्थक 16 अक्टूबर को कारवार में होगा कमीशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए गुड न्यूज, 20,000 से ज्यादा छात्रों को मिलेगी हॉस्टल की सुविधा, 5,157 करोड़ की प्रस्तावित योजना तैयार। उत्तराखंड में गुटखा पान मसाला और तंबाकू उत्पादनों पर 1 साल का प्रतिबंध, निर्माण भंडारण और वितरण पर होगी कार्रवाई। धनबाद में थाईलैंड के अरुण मंदिर की तर्ज पर बन रहा है मां दुर्गा का पंडाल, कतरास जीएनएम ग्राउंड में बनेगा पंडाल, 40 लाख रुपए आएगी लागत। जम्मू कश्मीर में मौसम ने ली करवट, गुलमर्ग समेत कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, सैलानी उठा रहे हैं शानदार मौसम का लुत्फ।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
8: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देखिए, सोशल मीडिया की इस दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैल जाते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। नतीजा ये होता है कि लोग बिना जांचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां पर वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम करते हैं बेनकाब। तो चलिए आज की खबरों पर नजर डालते हैं फैक्ट चेक में। आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 10 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन के बाद जनता अभी भी दिल्ली के सड़कों पर डटी हुई है। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आपको आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर हूती मिसाइल हमले का ये असली वीडियो है। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, बताएंगे आपको आगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
8: सबसे पहले बात करते हैं वायरल हो रहे उस वीडियो की, उस खबर की जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 10 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन के बाद जनता अभी भी दिल्ली की सड़कों पर डटी हुई है। हमने इस खबर की पड़ताल की, क्या सच और क्या झूठ निकलकर सामने आया, रिपोर्ट देखिए।
9: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष हमलावर है। सीजेपी सहित तमाम विपक्ष पार्टियों ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़क पर हल्ला बोल दिया है। लगातार प्रदर्शन के जरिए ज्ञानेश कुमार पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया जा रहा है। 10 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने वहां पहुंचने से पहले ही अधिकांश प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। अब इसी प्रदर्शन से जोड़कर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में किसी सड़क पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग इस वीडियो को लगातार शेयर कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में जनता अभी भी सड़कों पर है।
8: आपको बता देते हैं कि हाल ही में एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई थी जिसमें यह दावा किया गया था कि तीनों चुनाव आयुक्तों के बीच SIR, वोटर डेटा और फॉर्म 6 समेत कुछ मुद्दों पर मतभेद है। इसके बाद विपक्षी पार्टियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियत पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि SIR से जुड़े सभी बड़े फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे और 2 चुनाव आयुक्तों की कैबिनेट सचिव को भेजी गई चिट्ठियां आयोग की किसी नीति या SIR के फैसले से जुड़ी नहीं थी। इसके बावजूद कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के सवाल खत्म नहीं हुए और देश भर में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कांग्रेस जनता पार्टी पर भी इस मुद्दे को लेकर ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा वो लगातार मांगते हुए नजर आए। इन सब के बीच ये वीडियो निकलकर सामने आया। देखिए, दावा यह किया जा रहा है कि अक्टूबर को ज्ञानेश कुमार के खिलाफ CJP ने प्रोटेस्ट किया था, इसके बाद भी जनता अभी भी दिल्ली की सड़कों पर डटी हुई है। इस वक्त ये वीडियो जो देख रहे हैं आप वो खूब चर्चा में बनी हुई है। ऐसे में हमने भी इस खबर की तहकीकात की। 10 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन किया था और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने वहां पहुंचने से पहले ही अधिकांश प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया था, जिसके कारण ये विरोध प्रदर्शन बड़ा नहीं हो सका। दावे की जांच के लिए हमने सबसे पहले वीडियो को देखा जिसमें भारी भीड़ एक सड़क पर मौजूद दिखाई दी हमको। वीडियो को देखने के दौरान हमें एक बात थोड़ी अटपटी लगी, अगर प्रदर्शन के दौरान ये भीड़ एक जगह इकट्ठा हुई है तो वहां पर पुलिस के जवान नजर क्यों नहीं आ रहे। भीड़ एक जगह जमा हो गई है और पुलिस को इस बात की भनक भी नहीं लगी, ये कैसे पॉसिबल है। तो देखिए, वीडियो में एक बात और गौर करने वाली है कि सड़क पर मौजूद ये लोग बड़े आराम से एक जगह पर खड़े हुए हैं, ना तो ये कोई विरोध कर रहे हैं और ना ही इनके हाथों में कोई बैनर कोई प्लाकार्ड नजर आ रहा है। हमारा पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर वीडियो प्रोटेस्ट का है तो फिर यहां माहौल बिल्कुल शांत नजर क्यों आ रहा है। और वीडियो में हमें DPA कैंटीन का बोर्ड भी साफ साफ नजर आया। ये कैंटीन जो है दिल्ली के वजीराबाद में स्थित है, यहां पर दिल्ली पुलिस एकेडमी है और वजीराबाद में ज्ञानेश कुमार को हटाने को लेकर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया था। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल यह है कि प्रोटेस्ट के नाम पर सड़क पर हजारों लोग जुटाए गए, ऐसे में इस भीड़ को संभालने के लिए पुलिस के जवान यहां क्यों नजर नहीं आ रहे। हमारा तीसरा सवाल यह कि कहीं किसी और मुद्दे से संबंधित वीडियो को जानबूझकर ज्ञानेश कुमार से जोड़कर लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा है, क्या कुछ सच निकलकर सामने आया। पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
9: सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो के जरिए एक खास नैरेटिव फैलाया जा रहा है। लोग खबर का सच झूठ जाने बगैर इसमें कूद गए और ये कहने लगे कि दिल्ली में अभी भी जनता सड़कों पर डटी हुई है। ऐसे में हमने इस खबर की पड़ताल की। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें यही वीडियो एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर 21 सितंबर 2026 को अपलोड मिला। इस दौरान हमें उस अकाउंट पर 18 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच शेयर किए गए कई और ऐसे वीडियो मिले, जिनसे जानकारी मिली कि ये क्लिप्स दिल्ली पुलिस की भर्ती के लिए आयोजित फिजिकल टेस्ट से संबंधित है। इस मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया और लगातार खोजबीन की। इस दौरान हमें 18 सितंबर के बाद कई इंस्टाग्राम अकाउंट से अपलोड किए गए वीडियोस मिले, जिनमें उसी जगह के दृश्य देखने को मिले जो वायरल वीडियो में दिखते हैं। इनमें से कई वीडियोस में हमें दिल्ली के वजीराबाद में स्थित डीपीए कैंटीन का बोर्ड साफ साफ दिखा, जो वायरल वीडियो में भी मौजूद था। इन वीडियोस के साथ मौजूद कैप्शन में भी इसे दिल्ली पुलिस के फिजिकल परीक्षा का ही बताया गया है। सर्च के दौरान हमें दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर प्रकाशित एक नोटिस भी मिला, जिसके अनुसार दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पद की भर्ती के लिए 18 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच फिजिकल टेस्ट आयोजित किया गया था। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से ये स्पष्ट है कि दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शन से जोड़कर शेयर किया जा रहा ये वीडियो असल में दिल्ली पुलिस में भर्ती के लिए आयोजित फिजिकल टेस्ट में शामिल होने आए अभ्यर्थियों की भीड़ का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
8: बात करते हैं वायरल हो रही दूसरी खबर की। 8 अक्टूबर को सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला हुआ था। यह हमला हूती ने किया था। इसी हमले से जोड़ते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर हूती मिसाइल हमले का यह वीडियो ओरिजिनल है। इस खबर की भी हमने पड़ताल की, देखिए।
9: आठ अक्टूबर को हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के राजधानी रियाद के किंग खालिद एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला किया। इस हमले में वहां मौजूद एक विमान नष्ट हो गया, साथ ही 3 सऊदी नागरिकों की मौत हो गई। इस हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव काफी बढ़ गया है। इस हमले के बाद से सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह हूती हमले के वक्त का ही वीडियो है। वीडियो को फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाए जाने के क्षणों का नया वीडियो फुटेज सामने आया है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
8: ये वीडियो इस वक्त बहुत सुर्खियां बटोर रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि 8 अक्टूबर को सऊदी अरब के रियाद में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो मिसाइल हमला किया गया था, ये उसी हमले का असली वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो लगातार शेयर किया जा रहा है। हमने भी इस वीडियो की जांच की। वीडियो में यह नजर आ रहा है कि एयरपोर्ट एक विमान वहां पर खड़ा हुआ है और कुछ सेकंड्स के बाद प्लेन के पिछले हिस्से में तेज धमाका हो जाता है। जब हमने इसे ध्यानपूर्वक देखा तो इसमें कई ऐसी गलतियां देखने को हमको मिली जिससे हमें दावे पर शक हुआ। मिसाल के तौर पर प्लेन खड़ा हुआ है तो आसपास कर्मचारी भी होंगे, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। पिछले हिस्से में धमाका होता है लेकिन प्लेन के आगे वाले हिस्से को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचता, ये हमें थोड़ा अटपटा लगा देखने में। वीडियो में एक और गौर करने वाली बात यह थी कि मिसाइल अटैक से जुड़ा ये वीडियो होता तो उसके जद में आसपास के इलाके भी बर्बादी के निशाने में मिल जाते, और लेकिन यहां पर हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। ऐसे में हमारा पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में किसी आधिकारिक स्रोतों से जानकारी निकलकर सामने क्यों नहीं आई। वीडियो में हर चीज स्थिर देखने को मिल रही है, मतलब यह हुआ कि हर कोई हरकत करता नहीं नजर आ रहा है। अमूमन असली वीडियो में ऐसा देखने को नहीं मिलता, लिहाजा ऐसे में हमारा दूसरा सवाल यही उठता है कि कहीं पर एडिटेड वीडियो को बताकर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
9: सोशल मीडिया पर जब ये चौंकाने वाला वीडियो सामने आया तो फैक्ट चेक टीम पड़ताल में जुटी, क्योंकि आप तक सही और सच्ची खबरें पहुंचे ये हमारा मकसद था। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें इस वीडियो को 8 अक्टूबर के हमले का असली फुटेज बताया गया हो। इसके बाद हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक स्टॉक फोटो वेबसाइट पर वायरल वीडियो से मिलती जुलती एक तस्वीर मिली। इसके मुताबिक ये तस्वीर 1 मार्च 2016 को रियाद के किंग खालिद एयरपोर्ट पर ली गई थी, जब एक विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। तस्वीर को गौर से देखने पर साफ हो जाता है कि इसी तस्वीर का इस्तेमाल करके वायरल वीडियो बनाया गया है। ओरिजिनल तस्वीर में बाएं तरफ प्लेन के सामने एक नीली और सफेद रंग की छोटी बस और उसके साथ कुछ गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा इस तस्वीर में प्लेन के पिछले हिस्से के तरफ 2-3 बसें खड़ी दिखाई देती हैं। वायरल वीडियो में भी बिल्कुल वैसी ही बसें और गाड़ियां देखी जा सकती हैं। साथ ही असली तस्वीर में प्लेन के आसपास जो सामान जिस तरह रखा गया है, वायरल वीडियो में भी वही सामान बिल्कुल उसी जगह रखा हुआ देखा जा सकता है। जाहिर है कि 2016 में किसी प्लेन के आसपास जो चीजें जिस तरह रखी गई थी, 10 साल बाद भी उनका ठीक उसी जगह उसी विमान के साथ देखना संभव नहीं लगता। सर्च के दौरान हमें 9 अक्टूबर के हमले के बाद एक यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया हुआ मिला, जिसमें हमले के बाद एयरपोर्ट के अंदर आग बुझाने की कोशिश दिखाई गई है। इसके अलावा कुछ और रिपोर्ट्स में हमले के बाद की तस्वीरें छपी देखने को मिली। इन रिपोर्ट्स में आग बुझाने के दौरान एयरपोर्ट के अंदर नजारा साफ साफ देखा जा रहा है। कुल मिलाकर साफ है कि 8 अक्टूबर को रियाद एयरपोर्ट पर हमला तो हुआ था, लेकिन इस हमले का बताकर वायरल हो रहा वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से बनाया गया है। रिद्धीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
8: फिलहाल ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, देखिए उस पार वायरल वर्ल्ड की हलचल।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
0: भारत के नक्शे वाला पंडाल, माँ दुर्गा के दर पर अंतरिक्ष जैसा अनुभव, लक्ष्मी विलास पैलेस की स्पेशल गरबा, कश्मीर घाटी में पर्यटन का गेम चेंजर, देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़।
8: वक्त हो चला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का, यानी अब दिखाने जा रहे हैं हम कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
11: आमतौर पर बाइकर्स को सड़कों पर तेज रफ्तार से बाइक चलाते हुए, लंबे सफर पर जाते हुए या फिर बाइक राइडिंग के दौरान स्टंट करते हुए देखा जाता है, लेकिन सूरत के इन बाइकर्स ने अपनी बाइकों का इस्तेमाल पूरी दुनिया को अपनी भक्ति दिखाने के लिए किया। दरअसल उन्होंने अपनी बाइकों को कुछ इस तरह से सजाया कि उसे दूर से देखने पर माँ दुर्गा की एक विशाल तस्वीर दिखाई देने लगी। माँ की इस छवि को ड्रोन कैमरे से दिखाया गया है। इस खास पहल को सूरत बाइकिंग कम्युनिटी ने अंजाम दिया। कम्युनिटी के सदस्यों ने अपने 71 प्रीमियम बाइकों को एक खास पैटर्न में खड़ा किया। इन बाइकों को इस तरह व्यवस्थित किया गया कि उनसे माँ दुर्गा का चित्र बन सके। ये काम सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही दिलचस्प है। इतनी सारी बाइकों को एक साथ सही जगह पर खड़ा करना और उनसे किसी बड़ी तस्वीर का आकार तैयार करना काफी मेहनत और शानदार प्लानिंग का काम है। इस आयोजन ने दिखाया कि अगर लोग मिलकर किसी काम को करने की ठान लें तो कुछ भी अनोखा बनाया जा सकता है।

0: कम सुविधाओं वाली जिंदगी जी रहे बच्चे अक्सर बड़े शहरों में मिल रही फैसिलिटी महसूस करना चाहते हैं। उनके इस चाहत को कुछ बड़े दिल के लोग पूरा भी करते हैं। तभी तो गुजरात के गोकुलपुर 2 की आंगनबाड़ी के बच्चों को सिनेमा हॉल का एहसास कराया गया है। उनके लिए ऐसा सेटअप बनाया गया था कि असल के सिनेमा हॉल वाला एहसास ही हो। वीडियो के शुरू में बिल्कुल सिनेमा हॉल की तरह बच्चों को मेटल डिटेक्टर से निकल कर जाते दिखाया जाता है। डिटेक्टर भी कागज का बनाया गया था और बाद में दिखा पॉपकॉर्न काउंटर भी। टिकट काउंटर पर बच्चे इसे खरीदते भी नजर आते हैं। ये पूरा सेटअप बच्चों को सिनेमा हॉल वाला एहसास कराने के लिए था, जहां बच्चों ने खूब मौज मस्ती भी की। आखिर में बच्चों को पॉपकॉर्न खाते भी देखा जा सकता है।
1: कहाँ जा रहे हो?
0: एक पहाड़ी बच्चा अपने अनोखे अंदाज से लोगों को हंसने पर मजबूर कर रहा है। बच्चे की एक छोटी सी बात लोगों को इतनी पसंद आ रही है कि सोशल मीडिया पर भी लोग उसी की भाषा बोलने लगे हैं।
1: कहाँ जा रहे हो?
0: एक पहाड़ी बच्चे ने अपने दोनों हाथ पीछे बांध रखे हैं और वो पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो वो किसी जरूरी काम से निकला हो और उसे अपने रास्ते की पूरी जानकारी हो। इसी दौरान उससे पूछा जाता है कि वो कहाँ जा रहा है। सवाल सुनते ही बच्चा बड़े आराम से जवाब देता है, मॉन्टून।
1: मॉन्टून
0: दरअसल बच्चा अंग्रेजी के शब्द माउंटेन यानी पहाड़ कहना चाहता है, लेकिन उसकी मासूम समझ के मुताबिक उसे मॉन्टून बोल देता है। सिर्फ बच्चे का यही जवाब लोगों का दिल जीत लेता है। जवाब देने के बाद वो बिना रुके आगे बढ़ जाता है और पहाड़ों की ओर चलने लगता है। वीडियो वायरल होने के बाद लोग बच्चे के अंदाज में ही मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
1: अच्छा जाओ।
0: छोटी सी उम्र में डांसिंग स्किल इतनी शानदार है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई प्रोफेशनल डांसर परफॉर्म कर रहा है। हर मूव परफेक्ट, बॉडी की लचक बेहतरीन। बिहार के भागलपुर के सुल्तानगंज की एक सरकारी स्कूल की ये छात्रा इंटरनेट पर इस वक्त खूब सुर्खियों में है। वीडियो को देखकर लोग यही कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में भी बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जिन्हें सिर्फ मंच और सही दिशा की जरूरत है।

सीखने की कोई उम्र तय नहीं है, आप कभी भी किसी भी उम्र में जो चाहे वो सीख सकते हैं। यकीन न हो रहा हो तो जम्मू की विद्या कौर की ड्राइविंग देख लीजिए, 72 की उम्र में वो गजब कार चलाती हैं। उन्हें उम्र नहीं रोक पाई इस जरूरी स्किल को सीखने और आजमाने से। इसका नतीजा है वो हल्की ही नहीं भारी गाड़ियां भी आराम से चला लेती हैं। उनका शौक अब पूरी दुनिया देख रही है। विद्या कौर ने करीब एक महीने में कार सीख ली थी। वो रोज गियर, ब्रेक, क्लच और स्टीयरिंग की प्रैक्टिस किया करती थी। अब वो जम्मू की सड़कों पर सिर्फ कारें नहीं ट्रक भी चलाती हैं। वो पैरेलल पार्किंग में माहिर भी हैं।

प्यार की भाषा समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, कभी एक स्पर्श ही दिल का हाल बयां कर देता है। इस वीडियो में एक महिला गाय के नन्हे बच्चे को बड़े प्यार से दुलारती नजर आ रही है, वहीं गाय का बच्चा भी महिला के स्नेह को महसूस करता दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच का ये प्यारा पल हर किसी का दिल जीत रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस खूबसूरत रिश्ते की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

इस नजारे ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। एक दीवार के किनारे पाइप लगा हुआ है, उस पाइप में लीकेज है। उस लीकेज से पानी की पतली धार नीचे गिर रही है। उसी पानी के नीचे कुछ छोटी छोटी चिड़िया बैठी हैं। ये चिड़िया उस पानी में मस्ती कर रही हैं, जहाँ कोई चिड़िया अपने पंख फैलाकर नहाते दिख रही है तो कोई अपनी चोंच से पानी पी रही है, वहीं कोई अपने शरीर को पानी में भिगोकर ठंडक का पूरा मजा ले रही है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किसी 5-स्टार होटल के शावर के नीचे नहा रही हों, वो भी बिना किसी पैसे के, बिल्कुल फ्री वाला शावर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़,
1: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। भारत के नक्शे वाला पंडाल आज आपको दिखाएंगे, कोलकाता में माँ दुर्गा के दर पर अंतरिक्ष जैसे अनुभव भी मिलेंगे, लोक नृत्य गरबा का राजसी रंग भी आज देखिए, लक्ष्मी विलास पैलेस की स्पेशल गरबा रिपोर्ट, और चुनाब रेल ब्रिज से कश्मीर को नई रफ्तार, जन्नत की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
6: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
1: देश में पहली बार चमोली जिले में वसुंधरा ताल में लगा अर्ली वार्निंग सिस्टम, 2 घंटे पहले मिलेगी आपदा की चेतावनी, स्वदेशी तकनीक से है विकसित। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा और इजाफा, पहला स्वदेशी मल्टीपर्पज वेसल समर्थक 16 अक्टूबर को करबर में होगा कमीशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए गुड न्यूज, 20,000 से अधिक छात्रों को मिलेगी हॉस्टल की सुविधा, 5,157 करोड़ की प्रस्तावित योजना तैयार। उत्तराखंड में गुटखा पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर 1 साल का प्रतिबंध, निर्माण भंडारण और वितरण पर होगी कार्रवाई। धनबाद में थाईलैंड के अरुण मंदिर की तर्ज पर बन रहा मां दुर्गा का पंडाल, कतरास जीएनएम ग्राउंड में बनेगा पंडाल, 40 लाख रुपए आएगी लागत। अच्छी और सच्ची खबरों में बात सबसे पहले शारदीय नवरात्र की, जिसका आज तीसरा दिन है और आज देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप यानी कि मां चंद्रघंटा की पूजा घर और मंदिरों में हो रही है। सुबह से ही तमाम देवी मंदिरों में मां के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ जमा है। नवरात्र का ये पर्व जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, दुर्गा पूजा पंडालों में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। खासतौर पर बंगाल के अलग अलग शहरों में सजे थीम बेस्ड पंडाल चर्चा का विषय बने हुए हैं, और इन पंडालों में राज रंगा नबा उदय संघ और चोरबाखान सर्वजनीन दुर्गोत्सव समिति का पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

0: शक्ति उपासना का पर्व पूरे ही देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन बंगाल जैसी है जो आस्था और भक्ति के साथ एक कहानी भी कह रहे हैं। इनमें से एक दक्षिण कोलकाता का मशहूर क्लब राजडांगा नवोदय संघ का पूजा पंडाल है, जो इस साल शोधन यानी शुद्धिकरण थीम पर आधारित है। राजडांगा नवोदय संघ के पंडाल की ये थीम इंसान के भीतर के विकारों को दूर करने के साथ साथ पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ बनाने का एक सशक्त संदेश देती है। आयोजकों ने बताया कि 70-80 लोगों ने इस पर काम किया और दिन रात बहुत मेहनत की, तब जाकर ये पंडाल अपनी थीम के मुताबिक इतना जीवंत बन पाया है।
1: ये शोधन जो बनाया है ना, ये हमारा ह्यूमन बीइंग का जो सोच है वो लेकर बनाया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये कुछ पूरा ह्यूमन बीइंग का एक एक एंगल धर के बनाया, जो जी एंगल से ये देख सके वो देख सकते हैं, उसके एंगल से ही वो ये थीम क्रिएट कर सकते हैं। मैंने सुबह इसका रूप दिया है शोधन, ये एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनाया, क्योंकि यहाँ पर जो ड्रीम दिखाई दे रहा है ना, ये दर्शक जो देखता है उसका अच्छा मन में अच्छा लगता है, ये मन के लिए ये प्रोडक्ट बनाया, क्योंकि ये फिर भी मन में अच्छा लगता है तो हम लोग शोधन हो सकते हैं, तो सबका साथ अच्छा क्या है, एक साथ रह सकते हैं क्या, कोई बुरा सोच नहीं आ सकता है, यही शोधन का डेफिनेशन।
0: दुर्गा पूजा के रंग में देशभक्ति का रंग भी घुला हुआ है, ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा के पंडाल में, जो 2026 में अपना 91वां साल मना रहा है। बाजार में होने वाले इस दुर्गा पूजा समारोह की थीम वंदे मातरम पर आधारित है, जो राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित है। इसे भारत के नक्शे के आकार में बने इस पंडाल में देश के इतिहास, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम की झलक हर तरफ देखने को मिल रही है। बंगाल के थीम बेस्ड पूजा पंडालों की फहरिस्त में अगला नंबर उत्तरी कोलकाता के चोर बागान सार्वजनीन दुर्गा उत्सव समिति के इस पंडाल का है, जो इस साल बियॉन्ड साउंड की थीम पर आधारित है। पंडाल के अंदर का दृश्य किसी जादुई रात के आकाश या स्पेस जैसा अनुभव देता है, जहां टिमटिमाते तारे और जादुई रोशनी का शानदार संगम इस पंडाल की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है।
2: हम लोग का जो थीम है उसका नाम है अरब, वो साउंड और लाइट, बियॉन्ड द साउंड, ये हम लोग का थीम है, और साउंड और लाइट और माँ दुर्गा, ये सबको मिला के एक बहुत जो एम्बियंस क्रिएट हुआ है वो एक अलग तरह का एम्बियंस है। जो दर्शनार्थी सबको वेलकम है चोर बागान सार्वजनीन के पक्ष से, वो लोग आए मातृमूर्ति का दर्शन करें, भक्ति भर के बहुत अच्छा तरह से पूजा करें, और कलकत्ता का दुर्गा पूजा का नाम चार सर्व जगह वो विकसित हो।
0: कोलकाता की तरह ही बंगाल के दूसरे शहरों में भी एक से बढ़कर एक दुर्गा पूजा पंडाल सजे हैं, जिनकी भव्यता और सुंदरता लोगों का मन मोह रही है। सिलीगुड़ी के सुब्रत संघ ने अपने 69वें साल में आदिशक्ति थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल तैयार किया है, जिसमें भगवान शिव की विशाल मूर्ति और कैलाश पर्वत की रेप्लिका शामिल है, जो इस पंडाल का सबसे बड़ा आकर्षण है।
3: इस बार का जो थीम है वो आदिशक्ति, मतलब सृष्टि का पहले से एक पावर, एक शक्ति, शक्ति का परंपरा चलते आ रहा है, ये अदृश्य है, निराकार है, किसको दिखाई नहीं देता है, और ये परंपरा आज तक हम लोग दुर्गा उत्सव के नाम पे हम लोग इसको पूजन और उनको वरण करते हैं, और ये शक्ति बंगाल में स्पेशली हम लोग हर साल बहुत बड़े करके और महोत्सव समझ के इसको हम लोग करते हैं।
0: शारदीय नवरात्रि के दौरान बंगाल के अलग अलग शहरों में सजने वाले ऐसे दुर्गा पूजा पंडाल सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं होते, बल्कि ये कला, संस्कृति और अद्भुत रचनात्मकता का जीता जागता उदाहरण है, जो अपनी इसी कला और रचनात्मकता के लिए देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: शारदीय नवरात्र के इस पावन पर्व के दौरान देश के अलग अलग शहरों में आस्था और भक्ति के बेहद खूबसूरत रंग देखने को मिल रहे हैं और इन्हीं में से एक खूबसूरत रंग है गरबा और डांडिया नाइट्स का, जो इन दिनों गुजरात के शहरों में बड़ी धूमधाम से चल रहा है। और ऐसा एक शानदार आयोजन वडोदरा के ऐतिहासिक लक्ष्मी निवास पैलेस में हुआ, जिसमें सैकड़ों नहीं हजारों लोगों ने एक साथ गरबा खेला। और इस विशेष आयोजन में 50 देशों के लगभग 160 विदेशी प्रतिनिधि भी मेहमान बने, गरबा की थाप पर झूमते नाचते नजर आए।

जगमगाती शाम और गरबा का मधुर गीत संगीत जिस पर थिरकते हजारों लोग और ये तस्वीरें वडोदरा के ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस से आई हैं, जहां शारदीय नवरात्र के मौके पर पारंपरिक गरबा उत्सव हुआ जिसमें हर उम्र के लोगों के साथ साथ विदेशी मेहमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और गरबा खेलते हुए माँ की आराधना में लीन नजर आए।

गोधरा में है तो इस रंग में रंगना बहुत जरूरी है, और इसीलिए कुछ पुरानी यादें, कुछ स्टेप्स यादें जो अभी परफॉर्म हो रहे हैं, मजा आ रहा है। अच्छा वैसे जब आप यहाँ आए ना, और अगर आपको गरबा खेलना नहीं आए तो किसी को गुरु बना लिया जाए, एक गुरु बना लिया, फॉलोइंग हर, हमारी गाइड है, वन सेमी सर्कल वन फुल सर्कल, राइट, वन राइट एंड वन लेफ्ट।

0: गुजरात में यूँ तो गरबा पूरे ही राज्य में होता है, लेकिन राज्य की कल्चरल कैपिटल के नाम से मशहूर वडोदरा में लक्ष्मी विलास पैलेस का गरबा आयोजन सबसे भव्य और शानदार होता है, जिसमें देशी नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। जानकारी के मुताबिक 50 देशों के लगभग 160 विदेशी प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया और पूरे जोश और उत्साह के साथ गरबा खेला।
1: इस बार के गरबा का क्रेडिट सिद्धांत को जाता है। आईकेएम ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया कि 50 से ज्यादा देशों के मेहमान यहां पर आए हैं, डेलीगेट्स आए हैं, उनको वडोदरा की संस्कृति से रूबरू कराया जा रहा है। सिद्धांत, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव जो आप लोगों ने लिया।
2: हम बहुत चाहते थे कि हम नवरात्रि के समय पे अपने सारे गेस्ट को यहाँ पे लाए, इसलिए आईकेएम को हमने आज नवरात्रि के पहले दिन यहाँ प्लान किया, ताकि ये गरबा जो लक्ष्मी पैलेस विलास के ग्राउंड्स में डॉक्टर राधिका राजे गायकवाड़ आयोजित करती हैं वो हम विजिट कर पाएं, और यहाँ से हम नवरात्रि इंटरनेशनल फेस्टिवल में भी जाएंगे।
1: सो इफ यू कैन स्पीक हिंदी, जस्ट टेल मी, कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पर?
3: बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बेस्ट।
1: गरबा कहाँ से सीखा आपने?
3: मैंने नहीं
1: आज यहीं प्रैक्टिस करते हुए।
3: I have no idea what I'm doing, but I am good at pretending.
1: But you are doing good.
3: Thank you so much.
0: लक्ष्मी विलास पैलेस में गरबा का ये आयोजन 19 अक्टूबर तक यही चलेगा। रोजाना गरबा की शुरुआत रात 8 बजे से होगी, जो 12 बजे तक खत्म होगी। इस पूरे आयोजन की सूत्रधार महारानी डॉक्टर राधिका राजे गायकवाड़ है, जिन्होंने गुड न्यूज टुडे से बातचीत में बताया कि इन विदेशी मेहमानों का कार्यक्रम में आना राजघराने के लिए एक गर्व की बात है।
1: यहाँ पे बहुत सारे विदेशी डेलीगेट्स में हैं जो यहाँ पर इसका हिस्सा बन रहे हैं, कितने गर्व की बात है वडोदरा के लिए, आपके लिए, राजघराने के लिए।
4: बहुत ही गर्व की बात है कि विश्व भर से लोग इतने इम्पोर्टेंट डेलीगेट्स बड़ोदा आए हैं। एज अ बड़ोदियन आई फील वेरी प्राउड, एंड कि कल वो उन्होंने पैलेस देखा और आज वो हमारे गरबा में आए, तो आई एम वेरी हैप्पी।
0: इस भव्य गरबा उत्सव के अलावा लक्ष्मी विलास पैलेस में एकम 2026 के तहत राजा रवि वर्मा की कलात्मक विरासत का जश्न भी मनाया गया, और इसके लिए एक शानदार थिएटर शो भी हुआ जिसका नाम था मच डे मैनिफेस्ट, जिसमें 5 देशों के कलाकारों ने अपने हुनर को प्रस्तुत किया।
1: इस बार आईकेएम का मकसद था कि हम लोग विदेशी डेलीगेट्स को वडोदरा लाएं और हमारी संस्कृति से रूबरू कराएं।
5: आप देख सकते हैं कि आईकेएम का क्या मकसद है। आईकेएम का अर्थ ही ये है वननेस, सबको साथ लाना, और आज हमारा मकसद है गुजरात की ये खूबसूरत संस्कृति को प्रदर्शित करना। दुनिया भर से 8 एक्सपर्ट्स आए हुए हैं और हमारे पीछे ये स्पेक्टैक्युलर गरबा हो रहा है। हमें बहुत गर्व है कि हमें ये अवसर मिला कि हम गुजरात की इतनी सुंदर संस्कृति को सबके सामने प्रस्तुत कर पा रहे हैं।
0: कुल मिलाकर लक्ष्मी विलास पैलेस का ये आयोजन नवरात्र के 9 दिनों के दौरान लोगों के आकर्षण का केंद्र रहता है, जहां सब कुछ भूलकर लोग गरबा की धुन में और मां दुर्गा की आराधना में लीन हो जाते हैं। वडोदरा से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: चलिए बात करते हैं कश्मीर घाटी में पर्यटन को मिली नई रफ्तार की। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर बने इंजीनियरिंग के 2 बेजोड़ नमूने, चिनाब रेल ब्रिज और देश के पहले केबल स्टेट अंजी हड ब्रिज धरती पर जन्नत के व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। 272 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट से अब घाटी के सेब, चेरी, सूखे मेवे और हस्तशिल्प पहले की तुलना में बेहद कम वक्त में देश भर के बड़े बाजारों तक पहुंच रहे हैं।

0: कभी रेल मार्ग के जरिए जम्मू से कश्मीर घाटी का जुड़ना ख्वाब जैसा लगता था। दशकों तक सिर्फ कल्पना तक सीमित रही वो सोच करीब एक साल पहले हकीकत में बदल चुकी है और ट्रेन के माध्यम से देश के दूसरे हिस्सों से जुड़ते ही कश्मीर के विकास को एक नई रफ्तार मिल गई है। जम्मू के रियासी जिले से होकर बहने वाली चिनाब नदी पर बना ये रेल ब्रिज न सिर्फ इंजीनियरिंग की एक बेजोड़ मिसाल है बल्कि मानवीय संकल्प का एक जीवंत प्रतीक भी है। इंसानी सूझबूझ और दशकों की कड़ी मेहनत के बाद चिनाब नदी की तलहटी से 359 मीटर की ऊंचाई पर बना ये रेल पुल कश्मीर घाटी के लिए लाइफलाइन बन गया है। चिनाब रेलवे ब्रिज भारतीय इंजीनियरिंग का अजूबा है जो जम्मू कश्मीर की करीब 1,60,00,000 की आबादी के दशकों पुराने सपने को हकीकत में बदल चुका है। 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक में 1,315 मीटर का ये रेलवे ब्रिज एक तरह से कश्मीर घाटी के विकास की प्रस्तावना है।
1: कश्मीर को भारतीय रेल से जोड़ने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इस ब्रिज का रहा है। ये देखिए चिनाब नाम का ये ब्रिज है और लगभग 2 किलोमीटर लंबा चौड़ा है, लेकिन खास बात यह है कि धनुष के स्टाइल में इस ब्रिज को बनाया गया है।
0: इस पुल का मुख्य आकर्षण इसका आर्च है जो 467 मीटर लंबा है। ब्रिज के निर्माण में तकरीबन 60,000 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है जो आईफिल टावर के बनाए जाने में इस्तेमाल किए गए स्टील का कुल 4 गुना है। चिनाब रेल ब्रिज को मजबूती देने के लिए 17 स्पैन यानी स्टील के टावर हैं। ये ब्रिज इतना मजबूत है कि 266 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसके अलावा -20 डिग्री सेल्सियस में भी ऑपरेशनल क्षमता है। यही नहीं, इस ब्रिज पर भूकंप और ब्लास्ट का असर भी बेअसर रहेगा।
2: चैलेंजेस को ध्यान में रख के इस तरह की इनोवेशन यहाँ पे की गई और बिल्कुल ये राम जी के धनुष वाला ये ब्रिज बिल्कुल हम इसको कह सकते हैं। और इसके पीछे की भी जो सोच है, चूंकि नदी का जो ये जो चिनाब नदी है इसकी जो डेप्थ है इतनी ज़्यादा है कि यहाँ कोई पिलर इतना ऊंचा क्रिएट करना मुश्किल था। ये पूरा जो ब्रिज की हाइट है रिवर बेड से वो 359 मीटर से, तो इतना ऊंचा पिलर क्रिएट करना वो फिजिबल नहीं था। इसीलिए इस इनोवेशन को यहाँ किया गया कि ये आर्च ब्रिज है, दो अलग अलग पहाड़ों पे टिकी हुई है, इसकी जो वेट है इससे रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और ये बिल्कुल एक आर्च शेप में है। स्टील की पूरी जो है इसकी बनावट है और इस 1.3 किलोमीटर से लंबी इस ब्रिज को हम ये कह सकते हैं कि अलग तरह की चैलेंजेस थी तो उसका हमने एक बहुत इनोवेटिव सॉल्यूशन भी दिया।
0: एक साल पहले इस रेल लिंक के चालू होने से जम्मू और श्रीनगर के बीच सड़क मार्ग से यात्रा करने में 12 घंटे तक का समय लग जाता था जो अब रेल मार्ग की वजह से घटकर करीब 4 घंटे 45 मिनट तक ही रह गया है। कश्मीर घाटी के भीतर ये रेल नेटवर्क बनिहाल से शुरू होकर श्रीनगर होते हुए बारामूला तक फैला हुआ है। अब जम्मू और कटरा से वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें सीधे श्रीनगर तक संचालित होती हैं।
1: कहते हैं जम्मू कश्मीर भारत का स्वर्ग है और वाकई में ऐसा है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता था क्योंकि रेल पहुंच नहीं पा रहा था श्रीनगर से जम्मू तक। पिछले साल ही जून महीने में वंदे भारत नाम की ट्रेन आई और इस समय मैं वहीं मौजूद हूं। देखिए कितने प्यारे तरीके से सारे यात्री इस समय अपनी सीटों पर बैठे हुए हैं और अपने मंजिल में पहुँचने का इंतजार कर रहे हैं। लगभग 4 घंटे 45 मिनट लगता है श्रीनगर से जम्मू जाने के लिए। इससे पहले लोग बाय रोड जाते थे और पूरा दिन लग जाता था, लगभग 10-12 घंटे लगते थे, लेकिन अब बड़ी ही आसानी हो गई, सुविधाएं हो गई है। ये देखिए स्टेशन की जरा सी तस्वीरें देखें, बड़े ही साफ सुथरे तरीके से और बहुत ही भव्य लेवल पर स्टेशन का निर्माण किया गया है। बाकायदा सिक्योरिटी सुरक्षा अच्छी खासी व्यवस्था के साथ इस ट्रेन को चलाया जा रहा है। कुछ देर पहले नाश्ता बताया, मैंने भी खाया, बड़ा ही स्वादिष्ट था। अब खाने का भी लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। सीट भी बड़ी ही लग्जरी टाइप से रखी गई है, स्क्रीन लगाई गई है जिस पर बाकायदा लिख कर आ रहा है कौन सा स्टेशन आने वाला है, कितने समय में आने वाला है। इसके अलावा बाकायदा अनाउंस भी किया जाता है कि अपना ख्याल आपको रखना है, अपने बैग्स का आपको ख्याल रखना है और अगला स्टेशन कौन सा है उसकी तैयारी कर लें। इन सारी चीज़ों की सूचनाएं दी जा रही हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें भी दी जाती, अखबार भी कुछ देर पहले हर किसी की सीट पर पहुँचा दिया गया और लोगों ने श्रीनगर जम्मू में क्या कुछ हो रहा है उसका भी खबर लिया।
0: दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का आकर्षण पर्यटकों के बीच भी साफ दिख रहा है। इसे देखने के लिए वो देश के दूसरे हिस्सों से कश्मीर घाटी तक पहुंचने के लिए ट्रेन का सफर चुन रहे हैं। रेल यात्रा सुगम होने की वजह से पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है।
3: बहुत बढ़िया है और अच्छा सुविधा दिए हैं भारत सरकार ने।
4: नाश्ता हो गया आपका?
3: नाश्ता हो गया।
4: टेस्ट कैसा था?
3: बढ़िया था।
4: साफ सुथरा कैसा है? पूरा ट्रेन कैसा लगा?
3: बढ़िया बढ़िया। सब
5: बड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि ये हमारे इंडिया में हो रहा है। बहुत प्राउड फील हो रहा है अपनी गवर्नमेंट पर और ये सब उसके काम पर।
6: कश्मीर को जो इंडिया के साथ जोड़ा है इसने, वो एक इम्पॉसिबल काम था।
4: इम्पॉसिबल काम था ये? ऐसे ऐसे सालों लग गए भाई, सालों।
6: जो लोग ये कहते थे कि अंग्रेजों ने वहां पर शिमला में ट्रेन पहुंचा दी और इंडिया ने कुछ नहीं किया, उनको ये है कि ब्रॉड गेज की ट्रेन यहां पहुंचा दी है कश्मीर में।
0: देश के दूसरे हिस्सों से रेल मार्ग से जुड़ने की वजह से कश्मीर घाटी की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। सबसे ज्यादा फायदा तो सेब, चेरी और अखरोट, मामरा बादाम, एप्रिकॉट यानी सूखी खुबानी और किशमिश जैसे सूखे मेवों की खेती से जुड़े किसानों को हो रहा है।
2: ये हॉर्टिकल्चर हॉटस्पॉट है पूरे भारत देश का और यहाँ सेव, चेरीज, प्लम्स और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। इस रेल कनेक्टिविटी के पहले कश्मीर वैली से अगर आपको चेरीज अगर मुंबई ले जाना होता था तो ये कहीं ना कहीं आपको 3 से 4 दिन लग जाते थे और ये पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, खराब हो जाते हैं, तो आप जो लोगों को जो क्वालिटी मिलती है वो भी उतनी बेहतर नहीं होती थी। इस कनेक्टिविटी के बाद, जो रेल कनेक्टिविटी से कश्मीर वैली जुड़ा उसके बाद, आज जो है यही के चेरीज कश्मीर वैली की बांद्रा टर्मिनस में मात्र 30 से 32 33 घंटे में पहुंच जाती है और पूरी मुंबई का जो मार्केट है वो अब जो है कश्मीर वैली के पास आ गया। सिमिलरली यहाँ के जो सेब हैं उनको जो है दिल्ली की अगर मार्केट की हम बात करें वहाँ पहुँचने में 46-47 घंटे लग जाते थे, अब 22 से 23 घंटे में ये सेब यहाँ पहुंच जा रहे। और ये तो केवल दो उदाहरण हैं हमने दिए।
0: कश्मीर के उत्पाद और हस्तशिल्प बहुत कम समय में और सुरक्षित तरीके से दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बाजारों तक पहुंच रहे हैं। नई दिल्ली को श्रीनगर से जोड़ने के लिए बनाए गए 41,000 करोड़ का उधमपुर श्रीनगर बनिहाल रेल लिंक प्रोजेक्ट न केवल कश्मीर के विकास में मील का पत्थर साबित हो रहा है बल्कि रेल मार्ग से देश के दूसरे हिस्सों को कश्मीर से जोड़कर सामाजिक और आर्थिक समृद्धि का नया रास्ता भी खोल रहा है। रेल मार्ग की वजह से किसानों और व्यापारियों के लिए नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं और सैलानी भी आसानी से घाटी तक पहुंच पा रही हैं। इस तरह कश्मीर के विकास को नई रफ्तार मिल रही है। यही नहीं, कश्मीर घाटी भावनात्मक तौर पर देश से और मजबूती से जुड़ रही है। श्रीनगर से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
7: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद बखुद लगती हैं। नवजोत सिंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज़, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
12: गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें
13: कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज़ टुडे।

आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और आज हम आपको बताएंगे देवी के उन नामों के बारे में जिनको लेने से, जिनका उच्चारण करने से आप अपने जीवन की हर मुश्किल को दूर कर सकते हैं। कौन से हैं वो देवी के नाम और क्या है उनकी महिमा, इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 14 अक्टूबर 2026 दिन बुधवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 14 अक्टूबर 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है कन्या राशि में, बुध और शुक्र तुला राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, राहु कुंभ राशि में,

और K2 फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि देवी के नामों की महिमा क्या है। देखिए, देवी के माता के अनंत नाम हैं और देवी के बहुत सारे नाम मंत्रों और श्लोकों के माध्यम से लिए जाते हैं। अलग अलग मंत्रों और श्लोकों में देवी के नाम आते हैं, लेकिन हर व्यक्ति मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता, हर व्यक्ति मंत्र नहीं पढ़ सकता। उसमें त्रुटि होने की, गलती होने की संभावना रहती है, और अगर आप गलत मंत्र पढ़ेंगे, गलत नाम लेंगे, तो मंत्र से लाभ होने के बजाय आपको नुकसान होगा। ऐसी दशा में देवी के 32 नामों का उच्चारण करना चाहिए। देवी के 32 नामों का उच्चारण काफी लाभदायक होता है। मंत्र जपने की तुलना में देवी के नाम जपने से फायदा ज्यादा होता है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार की समस्या हल होगी, किसी मंगल कार्य में व्यस्त रहेंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, करियर में सफलता मिलेगी, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। देवी को हरी इलायची अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि देवी के 32 नामों की महिमा क्या है और 32 नामों को प्रयोग करने का तरीका क्या है। देखिए, दोनों समय पूजा के दौरान, सुबह और शाम दोनों समय देवी के सामने इन 32 नामों को पढ़ना चाहिए। हर एक नाम एक सिद्ध मंत्र है
तो टेक्निकली ये 32 नाम 32 सिद्ध मंत्र हैं। हर नाम को ठीक से कहिए और देवी का, मां दुर्गा का स्मरण करिए। आप पूजा के दौरान अगर ठीक तरीके से इन नामों का उच्चारण करेंगे तो आपको संपूर्ण पूजा का फल प्राप्त होगा। जब आप 32 नाम कह लें, कहने के बाद अपनी प्रार्थना करिएगा, आपकी पूजा संपूर्ण होगी। आप दुर्गा सप्तशती के बड़े श्लोक नहीं पढ़ पाते, आपको मंत्र पढ़ने में कठिनाई होती है, नवरात्रि में या उसके अलावा भी अगर आप देवी के 32 नाम सुबह और शाम पढ़ें तो आपकी हर मनोकामना केवल इन नामों का उच्चारण करने से पूरी हो जाएगी। चर्चा हमारी जारी है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन का लाभ होगा, परिवार की समस्या हल होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, सेहत ठीक बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, जल्दबाजी में काम करने से बचें, देवी को हरी इलायची अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, मानसिक समस्या हल होगी,

उत्तर दें तो दिन बेहतर होगा। तो देवी का हर एक नाम एक सिद्ध मंत्र है, और जब आप देवी के 32 नाम सावधानी से और श्रद्धा पूर्वक कहते हैं तो आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होते हैं, बड़ी पूजा का फल मिलता है और आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। अब जान लेते हैं कि देवी के 32 नाम कौन से हैं। दुर्गा, दुर्गति शमनी, दुर्गाद्वि निवारिणी, दुर्ग मच्छेदनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गतो धारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग मापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवानला, दुर्गमा, दुर्गमा लोका, दुर्ग मात्म स्वरूपिणी, दुर्ग मार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्ग मध्यान भासिनी, दुर्ग मोहा, दुर्ग मगा, दुर्ग मार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमासुर संघत्री, दुर्ग मायुध धारिणी, दुर्ग मांगी, दुर्ग माता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्गमो और दुर्ग तारिणी। ये माता दुर्गा के देवी के 32 नाम हैं और इनका उच्चारण करने से आपको देवी की पूजा का संपूर्ण फल अपने जीवन में प्राप्त होगा। अब जानते हैं कि देवी के 32 नामों का विशेष प्रयोग कैसे करेंगे। एक पीले कागज पर लाल इंक से लाल रंग से लिखकर सारे नाम अपने पास रखिए, अपने पर्स में, अपने बैग में। आप दुर्घटना से और वाद विवाद आदि से सुरक्षित रहेंगे। एक लोटे में जल भरकर अपने सामने रखें। इसके बाद आसन पर बैठें और बोल बोल कर देवी के 32 नाम को कहिएगा। नाम कहने के 5 मिनट बाद इस जल को घर के कोने कोने में छिड़क दीजिएगा। तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होगी। किसी भी मुकदमे, वाद विवाद और परीक्षा में सफलता के लिए रोज सवेरे इन नामों को जरूर कहिए। 1 महीने तक लगातार रोज सुबह अगर इन नामों का उच्चारण करें तो आप अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
धनु राशि स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन खर्च पर ध्यान दें, परिवार में अशांति से बचें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, मानसिक चिंता दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, खान पान में सावधानी रखें, देवी को हरी इलायची अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। नवरात्रि में मां दुर्गा को लगातार 3 दिन तक रात के समय में लाल फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपकी शारीरिक समस्याओं में सुधार होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 14 अक्टूबर 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता दुर्गा को हरी इलायची अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस इलायची को खा लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: जीएनएम ग्राउंड में बनेगा पंडाल, 40 लाख रुपए आएगी लागत। देश में पहली बार चमोली जिले में वसुंधरा ताल में लगा अर्ली वार्निंग सिस्टम, 2 घंटे पहले मिलेगी आपदा की चेतावनी, स्वदेशी तकनीक से है विकसित। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा और इजाफा, पहला स्वदेशी मल्टीपर्पस वेसल समर्थक, 16 अक्टूबर को कारवार में होगा कमीशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए गुड न्यूज, 20,000 से अधिक छात्रों को मिलेगी हॉस्टल की सुविधा, 5,157 करोड़ की प्रस्तावित योजना तैयार। उत्तराखंड में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर 1 साल तक प्रतिबंध, निर्माण, भंडारण और वितरण पर होगी कार्रवाई। आइए शुरू करते हैं न्यूज पत्र सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा नवरात्र के साथ ही रामलीला के दिव्य मंचन की भी।
1: देश भर में शारदीय नवरात्रि की रौनक छाई हुई है। तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की गई। नवरात्रि के दिव्य रंगों के साथ साथ रामलीला की भव्य छटा भी बिखर रही है। ये मनोरम तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइन्स की श्री श्री बाल रामलीला कमेटी की ओर से आयोजित रामलीला की हैं। इस रामलीला में पिछले 9 वर्ष से रंगमंच की दुनिया में सक्रिय कटरा निवासी गौतम त्रिपाठी भगवान विष्णु की भूमिका निभा रहे हैं। नीव करौरी बाबा पर बनी फिल्म हनुमान अंश में भी गौतम नजर आ चुके हैं। फिल्म में उन्होंने बाबा के भक्त राधे श्याम की भूमिका निभाकर अपनी विशेष पहचान बनाई है और अब वो रामलीला के मंच पर भगवान विष्णु के रूप में दर्शकों के सामने हैं। बात दुर्गा पूजा की हो और कोलकाता में हर तरफ विशेष रंग देखने को नहीं मिले, ऐसा भला कैसे हो सकता है। दुर्गा पूजा को लेकर शहर के प्रमुख हिस्सों को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। इसी कड़ी में गड़िया घाट और चिंगड़ी घाटा जैसे प्रमुख फ्लाईओवर पर पेंटिंग का काम चल रहा है। शहर के फ्लाईओवर अब नारंगी, गुलाबी और पीले चमकीले रंगों में नजर आ रहे हैं। कहीं रंगों की पट्टियां बनाई जा रही हैं, तो कहीं बंगाल की पारंपरिक कलाकृति अल्पना से सजावट की जा रही है। दिव्य रूप से की गई ये सजावट हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अल्पना बंगाल की एक पारंपरिक लोक कला है। इसमें फर्श, आंगन या किसी जगह पर चावल के घोल से फूल, पत्तियों, ज्यामिति आकृतियों और दूसरी सजावटी पैटर्न बनाए जाते हैं। नवरात्र का भक्ति उत्सव चल रहा है और फिर दशहरा का त्योहार आएगा, साथ साथ दीपावली की तैयारी भी चल रही है। यूपी के सहारनपुर में दिव्यांगों की विशेष ट्रेनिंग भी चल रही है, जहां वो एक से बढ़कर एक आकर्षक डिजाइन की कैंडल बनाना सीख रहे हैं। 12 दिन के इस मुफ्त प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग जनों को हुनरमंद बनाकर स्वरोजगार से जोड़ना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। खास बात यह है कि यहाँ साधारण मोमबत्तियों की जगह 100 से 120 तक अलग अलग डिजाइन की आकर्षक मोमबत्तियां तैयार करना सिखाया जा रहा है। दिव्यांग महिलाओं और पुरुषों को कपल्स, फूलों, बॉल्स और अन्य आकर्षक डिजाइनों वाली मोमबत्तियां बनाने के साथ ही दीपावली पर इस्तेमाल होने वाले सजावटी दीपकों को रंगने और आकर्षक बनाने की जानकारी भी दी जा रही है। दीपावली का त्यौहार नजदीक होने के कारण सजावटी मोमबत्तियों और दीपकों की मांग को देखते हुए ये प्रशिक्षण दिव्यांग जनों के लिए रोजगार का नया अवसर बन सकता है। आसमान से बरसती ये फुहारें उत्तरी कश्मीर के खूबसूरत नजारों में चार चांद लगा रही हैं। बूटा पत्री समेत गुलमर्ग के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे यहां बर्फ की एक नई परत जम गई है। बूटा पत्री इलाका बर्फ की चादर से पूरी तरह ढका नजर आ रहा है। IMD ने कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अनुमान लगाया था और यहां वो देखने को भी मिल रही है। इस बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट आई है और मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। RPF की एक महिला कांस्टेबल की दिखाई गई तेजी से एक रेल यात्री और उसकी छोटी बेटी की बची जान। हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति अपनी बेटी को उठाकर चलती हुई ट्रेन में सवार होने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसका पैर फिसल जाता है और वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच आ जाता है, लेकिन

0: मौके पर मौजूद रेलवे सुरक्षा बल की कांस्टेबल रीना कुमारी ने तेजी दिखाते हुए रेल यात्री के साथ ही उसकी बेटी को प्लेटफॉर्म पर खींच लिया। वहीं विशाखा एक्सप्रेस के लोको पायलट ने भी इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी, जिसके बाद दोनों पिता पुत्री आगे की यात्रा के लिए ट्रेन में सवार हो सके।
1: और अब बात करते हैं शारदीय नवरात्र की। आज नवरात्र का तीसरा दिन है। आज देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा घर और मंदिरों में की गई। सुबह से ही तमाम देवी मंदिरों में मां के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ देखने को मिली। कहा जाता है कि विधि विधान से अगर मां चंद्रघंटा की उपासना की जाए तो पुण्य फल की प्राप्ति होती है और मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की सच्चे मन से पूजा करने से मां आशीर्वाद देती है और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है।

0: माँ भगवती आदि शक्ति माता दुर्गा का पर्व नवरात्र पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर शहर और हर कस्बे में सुंदर पंडाल लगाए गए हैं। इसी की एक बांधी कोलकाता से आई है। कोलकाता में हर साल माँ दुर्गा के भव्य और दिव्य दरबार सजते हैं और हर पंडाल अपने आप में एक नई कहानी कहता है। बंगाल के थीम बेस्ड पूजा पंडालों में उत्तरी कोलकाता के चोर बागान सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति का ये पंडाल श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बियॉन्ड साउंड की थीम पर आधारित इस पंडाल के अंदर का दृश्य किसी जादुई रात के आकाश या स्पेस जैसा अनुभव देता है, जहां टिमटिमाते तारे और जादुई रोशनी का शानदार संगम इस पंडाल की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है।
1: हम लोग का जो थीम है उसका नाम है अरब और साउंड और लाइट, बियॉन्ड द साउंड, ये हम लोग का थीम है। और साउंड और लाइट और माँ दुर्गा, ये सबको मिला के एक बहुत जो एम्बियंस क्रिएट हुआ है वो एक अलग तरह का एम्बियंस है। जो दर्शनार्थी सबको वेलकम है चोर बागान सार्वजनिक के पक्ष से, वो लोग आए मातृमूर्ति का दर्शन करें, भक्ति भर के बहुत अच्छा तरह से पूजा करें। और कलकत्ता का दुर्गा पूजा का नाम चार सर्व जगह वो विकसित हो।
0: कोलकाता का चोर बागान दुर्गा पूजा पंडाल भी अपनी खूबसूरती और खास थीम से लोगों का ध्यान खींच रहा है। इस साल चोर बागान दुर्गा पूजा अपने 91 साल पूरे कर चुकी है और इस खास मौके पर पंडाल की थीम में समाज के कैसे वर्ग और महिलाओं के जीवन के संघर्षों को दर्शाने की कोशिश की गई है, जिनकी चुनौतियां अक्सर अनदेखी रह जाती हैं। ये भव्य और दिव्य तस्वीर कोलकाता के पंडाल की है। इस पंडाल की थीम ऐसी है जो सिर्फ आंखों को सुकून नहीं देती बल्कि सोचने पर भी मजबूर करती है। दक्षिण कोलकाता के मशहूर राजडांगा नवा उदय संघ का पंडाल शोधन यानी शुद्धिकरण थीम पर तैयार किया गया है। शोधन यानी मन और विचारों को शुद्ध करने की कोशिश। दुर्गा पूजा के इस पंडाल में कलाकारों ने इंसानी सोच विचार और नजरिए को अपनी कल्पना का आधार बनाया है और एक ऐसा संसार रचा है जहां कला, कल्पना और मन के अनुभवों का अनूठा संगम देखने को मिलता है।
2: ये शोधन जो बनाया है ना, ये हमारा ह्यूमन बीइंग का जो सोच है वो लेकर बनाया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये कुछ पूरा ह्यूमन बीइंग का एक एक एंगल धर के बनाया, जो जे एंगल से ये देख सके वो देख सकते हैं, उसके एंगल से ही वो ये थीम क्रिएट कर सकते हैं। मैंने सुबह इसका रूप दिया है शोधन, ये एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनाया, क्योंकि यहाँ पर जो ड्रीम दिखाई दे रहा है ना, ये दर्शक का जो देखता है उसका अच्छा मन में अच्छा लगता है।
0: पंडाल के भीतर बनाया गया कृत्रिम जंगल इस पूरी परिकल्पना को एक अद्भुत एहसास देता है। ऐसा माहौल जहां कदम रखते ही दर्शक एक अलग दुनिया में पहुंचने का अनुभव कर सकते हैं। कोलकाता ही नहीं बल्कि जयपुर के राजा पार्क स्थित पंचवटी वैष्णो देवी मंदिर में माँ का विशेष श्रृंगार किया गया है। माँ ने लाल रंग की साड़ी धारण की है। वहीं मंदिर परिसर को सुंदर फूलों से सजाया गया है। फूलों से सजा माँ का दरबार भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
3: आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, यानी कि माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्र घंटा का आज दिन है और जयपुर के माँ वैष्णो देवी मंदिर में मौजूद हूँ, जहाँ पर सुबह से ही भक्त लगातार आ रहे हैं, माँ के दर्शन कर रहे हैं। माँ का स्वरूप भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से माँ आज लाल साड़ी में भक्तों को अपना स्वरूप दिखा रही है, आशीर्वाद दे रही है। सुबह से ही लगातार भक्त आ रहे हैं और माँ चंद्र घंटा के लिए कहा जाता है कि उनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना होता है, तो यही स्वरूप जो है वो आज यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है। पूरे फूलों से मंदिर का जो श्रृंगार है वो किया गया है और भोग की मैं बात करूँ तो दूसरी ओर यहाँ पे भोग की तैयारियां भी की गई है। यहाँ पूरी टेबल जो है वो भोग से सजी गई है, जिसमें आज खास हलवा और पूरी का भोग जो है वो सभी भक्तों के लिए रखा गया है। लगातार भक्त यहाँ आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भोग ले रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और पूजा अर्चना की मैं बात करूं तो जो भी यहां आ रहा है पीले फूल उन सभी को मिल रहे हैं और साथ ही साथ में फूल, चंदन और धूप, ये तीन चीजें जो है वो भक्त लेके आ रहे हैं और माँ को अर्पित कर रहे हैं, माँ को चढ़ा रहे हैं।
0: माँ दुर्गा के हर रूप और स्वरूप का अपना महत्व है। माँ के हर रूप में कुछ गुणों का भी वर्णन है, लिहाजा माँ दुर्गा के नौ स्वरूप और उनके गुण क्या हैं, उसे भी जानने समझने की जरूरत है। माँ शैलपुत्री दृढ़ता और संकल्प की प्रतीक है। माँ का ये स्वरूप बताता है कि हमें अपने लक्ष्यों की ओर पूरे निश्चय और संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। माँ का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी, जो तप और अनुशासन का प्रतीक है। माँ का ये स्वरूप बताता है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए तप और अनुशासन ही एकमात्र रास्ता है। माँ चंद्रघंटा साहस और सजगता का प्रतीक है, जो ये बताती है कि अपने लक्ष्य की धुन में मगन साधक को सफलता मिलकर ही रहती है। माता कुष्मांडा सृजन और शक्ति का प्रतीक है। माँ का ये स्वरूप बुद्धि, विवेक और सृजन का महत्व बताता है। माँ स्कंद माता प्रेम और करुणा की प्रतीक है। इन गुणों के विकास के बिना शक्ति और सामर्थ्य का कोई मोल नहीं। माँ का त्यायनी का रूप बताता है कि अन्याय का प्रतिकार और दुष्टों पर प्रहार जरूरी है, ताकि अधर्म पर धर्म की विजय सुनिश्चित हो। माँ कालरात्रि वैराग्य और शुद्धि का मंत्र देती है। माँ भय का नाश करती है और सकारात्मकता का संचार करती है। माँ महागौरी शुद्धता, पवित्रता का प्रतीक है। माँ का ये स्वरूप जीवन में सादगी, शांति और सौहार्द का महत्व बताता है। माँ सिद्धिदात्री आत्मज्ञान और संपूर्णता का प्रतीक है। जिसने भी माँ के पहले के आठ गुणों को जीवन में अपना लिया, उसे ये गुण स्वतः ही हासिल हो जाते हैं और उसका जीवन हर प्रकार से संपन्न हो जाता है।
4: माता सिद्धिदात्री जो है हमारी लास्ट देवी होती है नाइन नाइट्स ऑफ मैनिफेस्टेशन में। तो जो माँ सिद्धिदात्री हैं, इनका मतलब है सिद्धि प्लस दात्री। इफ वी यू नो ब्रेक दिस वर्ड, तो यहाँ पर दात्री का मतलब होता है देने वाली और सिद्धि का मतलब है सिद्धियां। तो कहीं ना कहीं इसका मीनिंग जो होता है वो हो गया सिद्धियां देने वाली। तो नाइन डेज आफ्टर, आठ दिन जब आपने देवी की आराधना करी, तो नौवा दिन जो है ये आपकी तपस्या का, जो आपके पेशेंस जो आपने आठ दिन रखा उसका है, ये सिद्धियों का है। अब यहाँ पर जो आपने आठ दिन अपने मंत्र को साधा, तो फाइनली जब आपको उसकी सिद्धि मिली, इसके बाद जो है ये आपके कंप्लीशन का भी है। कोई भी चीज जब कंप्लीट होती है तो वो साथ में हमें ये भी सिखाती है कि अब हमें जो है लाइफ में न्यू बिगनिंग्स की तरफ फोकस करना है। प्लस इनका जो कनेक्शन है वो केतु देव से भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मोक्ष दायिनी भी है। तो जब ये मोक्ष की तरफ हमें लेके जाती है, तो केतु का कनेक्शन मोक्ष से बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जो है आप जितना हो सकता है, अगर आपको लाइफ में मोक्ष की प्राप्ति करनी है, सिद्धियों की प्राप्ति करनी है, आपके जप तप की, और ये मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए भी हमें एक मैसेज देता है कि जरूरी नहीं है कि एक मेल में ही सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी होगी, मेल्स में भी फेमिनिन एनर्जी होती है और फीमेल्स में भी मैस्कुलिन एनर्जी होती है। लेकिन जब हम अपनी लाइफ में दोनों एनर्जीज को बैलेंस करके चलते हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है।
0: शारदीय नवरात्रि के दौरान बंगाल के अलग अलग शहरों में सजने वाले ऐसे दुर्गा पूजा पंडाल सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं होते, बल्कि ये कला, संस्कृति और रचनात्मकता का जीता जागता उदाहरण भी हैं, जो अपनी इस कला और रचनात्मकता के लिए देश और दुनिया में मशहूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगाने का फैसला अब दिवाली तक के लिए टल गया है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: देश पहली बार ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम की मेजबानी कर रहा है, जो नई दिल्ली में 15 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें दुनिया भर के 500 से ज्यादा वैश्विक नेता, कारोबारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इस साल इसकी थीम बदलती दुनिया में ताकत के नए स्रोत तय करना है। सम्मेलन के पहले दिन पीएम मोदी ने फोरम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की ताकत दूसरों को सक्षम बनाने में है। भारत ने दुनिया को शून्य दिया, लेकिन कभी इसका श्रेय या रॉयल्टी नहीं मांगी। अपने संबोधन में पीएम ने डिजिटल तकनीक, वैक्सीन सप्लाई, आर्थिक सुधारों और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भारत की भूमिका का भी जिक्र किया। यूपीआई से बड़े पेमेंट करने वाले ग्राहकों और मर्चेंट्स के लिए अच्छी खबर है। 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगने वाला नया एमडीआर चार्ज अब 15 अक्टूबर से नहीं लगेगा। एनपीसीआई ने एमडीआर चार्ज के फैसले को दिवाली तक के लिए टाल दिया है। व्यापारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। एनपीसीआई ने ये फैसला त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए लिया है। दुकानदार को 2000 रुपए से ज्यादा का यूपीआई पेमेंट करने पर 0.4% चार्ज लगना था। गुजरात सरकार ने दशहरा और दिवाली से पहले पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को बड़ी सौगात दी। आज अहमदाबाद में उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने सीएए कानून के तहत 158 पाकिस्तानी शरणार्थी परिवारों को भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र सौंपा। पाकिस्तान से आए ये परिवार लंबे समय से गुजरात में रह रहे थे। उन्होंने आज इसे जिंदगी का सबसे खास दिन बताया। देश में पहली बार ग्लेशियल झील पर स्वदेशी अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया गया है। इसे उत्तराखंड के चमोली जिले में वसुधारा ताल में स्थापित किया गया है। इस सिस्टम की मदद से अब 2 घंटे पहले ही संभावित बाढ़ जैसी आपदा की चेतावनी मिल जाएगी, जिसे समय रहते जानमाल के नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। इस ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम को CBRI रुड़की के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है, जिसकी लागत करीब 8 करोड़ रुपए आंकी जा रही थी, लेकिन इन वैज्ञानिकों ने इसे महज 61 लाख रुपए में ही तैयार कर दिया है। गुजरात में नाडियाद के सलूण गांव में नवरात्रि पर आस्था और संस्कृति की एक बेहद सुंदर तस्वीर देखने को मिली। यहां लड़कियों ने पारंपरिक मणिपुरी वेशभूषा में मां अंबा की आरती उतारी। मणिपुरी संस्कृति की झलक और मां जगदम्बा के प्रति अटूट श्रद्धा ने इस आयोजन को खास बना दिया। साथ ही इसमें भारतीय संस्कृति की विविधता और परंपराओं के प्रति सम्मान का संदेश भी लोगों तक पहुँचा।
5: और अब बात गरबा और डांडिया नाइट्स की। नवरात्र में देश के अलग अलग शहरों में आस्था और भक्ति के अनेक रंग देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं में से एक रंग है गरबा और डांडिया नाइट्स का, जो इन दिनों गुजरात के तमाम शहरों में बड़े ही धूमधाम से हो रहा है। वडोदरा से सूरत तक ग्रैंड गरबा ग्राउंड सजाए गए हैं। ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस में हेरिटेज गरबा का आयोजन किया गया है, जहां भारतीय और वैश्विक संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है।

0: अंधकार चाहे कितना घना हो, श्रद्धा, भक्ति, शक्ति और शौर्य की रोशनी में सारा अंधेरा छट जाता है। ये तस्वीरें हैं राजकोट के राज पैलेस की, जहां राजपूत महिलाओं का शौर्य प्रदर्शन देखकर लोग अभिभूत हो गए। खुली विंटेज जीप और टू व्हीलर पर सवार होकर महिलाओं ने हैरतअंगेज तलवार रास किया। राजकोट के रानी साहिब कादम्बरी देवी जी की अगुवाई में हर साल पारंपरिक परंपराओं के साथ भव्य गरबा रास का आयोजन करता है, जिसमें तलवार रास सबसे ज्यादा लोगों का दिल जीतता है।
1: तो सभी क्षत्रिय बहनें हैं और क्षत्रिय बहनों द्वारा इसका आयोजन किया गया है। आयोजन के साथ साथ पूरी मेहनत, इसका पूरी व्यवस्था सभी बहनें, क्षत्रिय बहनें करती हैं, और आप देखेंगे कि वह सभी तरह के स्टंट करती हैं। स्टंट दिखने में आपको बहुत आसान लगेंगे, पर असल में इसके पीछे कड़ी मेहनत होती है उनकी। एक महीने से वो लोग इसका परीक्षण ले रही हैं और आज उसका परफॉर्मेंस है।
0: हर साल तलवार रास में क्षत्रिय समाज की महिलाओं द्वारा नई तरीके से प्रदर्शन किया जाता है। इस साल भी महिलाओं ने तलवार रास में टू व्हीलर्स और जीप पर सवार होकर तलवार रास किया। राजपूत महिलाओं का ये प्रदर्शन देखकर लोग अभिभूत हो गए। वहीं इन महिलाओं ने अंधकार में रोशनी दिखाकर जो रास किया वो आकर्षण का केंद्र रहा।
2: नवरात्रि प्राचीन रास जो माँ जगदम्बा की आराधना करने के लिए है, तो ताली चपटी रास क्योंकि हम गुजराती है, साथ में घड़ा डांडिया, दीवा रास और खंजरी मंजीरा जो हम इस साल लाए हैं, और साथ में तलवार रास। हमारे जो कारोबारी समिति के कार्यकर्ता है और साथ में जो हम कोरियोग्राफर को बाहर से प्रोफेशनल लाते हैं, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ नया करना होता है, तो प्रोफेशनल कोरियोग्राफर और हमारी कारोबारी समिति के साथ मिलकर हम पूरे एक महीना प्रैक्टिस करवाते हैं, तभी जाकर जो हमारी 200 सन्नारियाँ हैं वो अलग अलग रास प्रस्तुत करती है।
0: इस रोमांचक प्रदर्शन के पीछे युवतियों की कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास होता है। तलवार रास और उसमें शामिल स्टंट की तैयारी लगभग 2 महीने पहले से शुरू कर दी जाती है। इसके जरिए अपनी विरासत और संस्कृति को संरक्षित करने का संदेश भी दिया जाता है।
1: समाज को यह संदेश है, क्योंकि समाज हमारी पुरातन संस्कृति जो है, उस संस्कृति को हम आगे दे सके, और यह जो दिव्य कला है और हमारी जो दिव्य संस्कृति है, उसकी जो मान और मर्यादा और उसको जो सम्मान मिलना चाहिए, वो आप इस ग्राउंड पे देखेंगे कि हमारी क्षत्रिय समाज की बहनें वो पूरे जोर शोर से अपनी संस्कृति का संरक्षण कैसे किया जाए, उस तरह से वो लोग परफॉर्म करती हैं।
0: पिछले 19 वर्षों से यहाँ युवतियों और महिलाओं को नवरात्र से पहले तलवार रास की तालीम दी जाती है। उसके बाद नवरात्र के दौरान ये तलवार रास आयोजित किया जाता है, जिसमें 10 वर्ष की नन्ही लड़कियों से लेकर 60 साल की महिलाएं तक हिस्सा लेती हैं और पारंपरिक तलवार रास खेलती हैं। राजकोट के राजवी परिवार की देखरेख में संचालित इस रास उत्सव में अब तक 500 से अधिक लड़कियों और महिलाओं को तलवारबाजी की ट्रेनिंग दी जा चुकी है।
2: बात जरूर कहूंगी, एक क्षत्रिय होके, एक स्त्री होके और माँ जगदम्बा की आराधना करनी है, माँ आद्य शक्ति, शक्ति और स्त्री का समन्वय जो हमारे पास है, तो शक्ति स्वरूप सभी स्त्रियाँ बाहर निकालें।
0: वडोदरा के ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस में ये भव्य हेरिटेज गरबा उत्सव आयोजित किया गया, जहां भारतीय और वैश्विक संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिला। इतना भव्य और दिव्य हेरिटेज गरबा देखकर सब अभिभूत हो गए। इस भव्य सम्मेलन में शामिल होने के लिए 50 देशों के विदेशी मेहमान भी पहुंचे और लक्ष्मी विलास पैलेस में हेरिटेज गरबा के साक्षी बने।
3: इस बार लक्ष्मी विलास पैलेस के ठीक सामने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया ने हमारी संस्कृति जानी, हमारे धर्म संस्कृति के साथ वो रूबरू हुए, और गौरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बेहद खूबसूरत परफॉर्मेंस, जिसमें कृष्ण की लीलाओं से लेकर राम की लीला और साथ ही साथ गंगा किस तरीके से संदेश दे रही है कि हमारी प्रकृति को बचाओ, मुझे बचाओ, गंगा खुद को बचाने के लिए संदेश दे रही है। ये संदेश केवल भारत के लिए नहीं था, बल्कि 50 से ज़्यादा देशों के डेलीगेट्स जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे, पूरी दुनिया के लिए संदेश था। और इस मंच से गौरी जी ने इस पूरे शो को क्रिएट किया। गौरी जी, आज आप लक्ष्मी विलास पैलेस में परफॉर्म आपने किया है, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। और वैसे तो कहा जाता है कि हमारे धर्म और संस्कृति हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं, आज जिसकी चर्चा पूरी दुनिया कर रही है वो हमारे शास्त्रों में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन आपने बहुत ही खूबसूरती से उसको प्रस्तुत किया। क्या आइडिया, क्या सोच था इस?
4: मुझे लगता है कुछ सही सही कॉम्पोजिशन हमने चुने हैं, विच कुड रियली जो भावुकता से डांसर्स ने प्रेजेंट किया है वो एक अलौकिक बात रही है। उसमें चंदना जी हैं हमारे साथ, चंदना जी इज़ अ म्यूजिकल डायरेक्टर और इन्हें वोकल्स भी हमें दिए हैं, और कॉम्पोजिशंस पे हम लोगों ने काम किया है. सतीश जी हैं, सतीश कृष्णमूर्ति जी, जिन्होंने रिदम जो कहते हैं ना कॉम्पोजिशंस की जो धड़कन है उसको उन्होंने बहुत सुंदर तरह से कायम किया.
3: कितने समय तक आप लोगों ने प्रैक्टिस किया रियाज?
5: ये हमने एटलीस्ट पूरा ग्रुप, डांस ग्रुप ने 2-3 महीने से किया है. कंसिस्टेंट रिहर्सल्स किया है, साथ में इंडिविजुअल टाइम रखा है, ग्रुप में टाइम रखा है, और फाइनली क्योंकि लाइव था आज तो म्यूजिशियंस एंसेंबल के साथ हमने रिहर्सल भी किया था इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स.
0: इस उत्सव में जितनी अहमियत भक्ति और संगीत की है उतना ही खास यहाँ का पारंपरिक पहनावा भी है, जिसकी झलक इस गरबा महोत्सव में देखने को मिली. नवरात्रि के दौरान गुजरात के तमाम शहरों में गरबा उत्सव की रौनक छाई रहती है, लेकिन जामनगर में पारंपरिक रास और गरबा की अलग ही पहचान है. शहर के रणजीत नगर स्थित पटेल युवक गरबी मंडल द्वारा पिछले 80 सालों से इस परंपरा को संजो कर रखा गया है. यहाँ काठियावाड़ी पारंपरिक वेशभूषा में युवक अनूठे अंदाज में रास प्रस्तुत करते हैं. इस गरबे की खासियत है अंगारा रास, जिसमें युवक चलते अंगारों के बीच अपनी पारंपरिक कला का प्रदर्शन करते हैं. गुजराती नहीं, देश भर में गरबा रास के अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं. उत्तर प्रदेश के झांसी में गरबा डांडिया कार्यक्रम आयोजित किया गया. रंग बिरंगी रोशनी, पारंपरिक परिधानों, माता रानी के भजनों और डांडिया की खनक के बीच महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया. पूरे नवरात्रि के दौरान देश भर में आस्था और भक्ति के ऐसे ही मनमोहक रंग देखने को मिलेंगे. कहीं पूजा अर्चना तो कहीं भजन कीर्तन और कहीं धार्मिक अनुष्ठानों से माहौल भक्तिमय नजर आएगा. झांसी से अजय झा, जामनगर से दर्शन ठक्कर और राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ वडोदरा से नवजोत रंधावा, गुड न्यूज टुडे.
6: न्यूज पथ पर आगे है धनबाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है. तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको ले चलते हैं धनबाजार.
7: हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी रही. मंगलवार 13 अक्टूबर को सेंसेक्स 1109 अंक उछलकर 73034 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी भी 359 अंकों पर चढ़ा, ये बढ़कर 22722 पर पहुंच गया. सोने की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट आई. ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली में मंगलवार को सोना 400 रुपए सस्ता हुआ. इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,52,600 रुपए हो गई. वहीं चांदी भी 500 रुपए फिसली, अब 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 2,26,000 रुपए पर आ गई. डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली. मंगलवार को रुपया 40 पैसे ऊपर चढ़ा. इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 95.38 रुपए हो गई.
6: फिल्म उड़ता तीर की सिनेमाघरों में रिलीज से पहले दूसरा ट्रेलर भी आया सामने. इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें फिल्मी मोड पर.
8: उदास से कम नहीं होता पाकिस्तान का जनरल, उसका सर किसी के सामने नहीं झुकता.
7: आयुष्मान खुराना, सारा अली खान स्टारर फिल्म उड़ता तीर का दूसरा ट्रेलर भी रिलीज हो गया है. धर्मा प्रोडक्शन निर्मित ये कॉमेडी जासूसी थ्रिलर है. आकाश कौशिक निर्देशित इस फिल्म में राम कपूर, गुलशन ग्रोवर, संदीप आनंद और राहुल बोस जैसे कलाकार भी हैं.
9: शहीद हो गए थे बेटा, पाकिस्तानी टेररिस्ट ने मार दिया था.
7: फिल्म उड़ता तीर का पहला ट्रेलर 23 सितंबर को रिलीज किया गया था, जिसमें आयुष्मान के पाकिस्तानी जासूस के किरदार से पर्दा उठा. तो अब दूसरे ट्रेलर में उनके कुछ अनोखे कारनामे दिख रहे हैं.
10: पाकिस्तान के पास कश्मीर के नाम पर एक पुलाव ही तो बचा था, वो भी गया.
7: भारत में आकर उनकी याददाश्त तो खो चुकी है और अब वो देशभक्ति का चादर ओढ़कर अपने ही देश के लोगों को मारने पर आमदा नजर आ रहे हैं.
11: किसी अच्छा डॉक्टर से मिलो,
12: किसी बिलाल मत.
7: वहीं दिवंगत अभिनेता मुकुल देव इसमें आतंकवादी की भूमिका में नजर आ रहे हैं. ये फिल्म 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
13: नीच गद्दार,
14: मैं गद्दार कैसे हो सकता हूँ यार?
15: उसका सिर्फ मैं ही नहीं, वो भी पता नहीं कर पाएगा.
7: फिल्म रजनी द जेलर 2 की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. सुपरस्टार रजनीकांत की इस फिल्म के सिनेमाघरों में दस्तक देने से पहले इसका हिंदी ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है. रजनी द जेलर 2 में रजनीकांत एक जबरदस्त अवतार में लौटने जा रहे हैं. एक्शन एंटरटेनर फिल्म रजनी द जेलर 2 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसके लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज होने जा रही है.
16: चल जा,
17: चल ना, रॉकेट में जा रहे हैं क्या? ये लगा वो लगा बोल रहा, चल.
18: सच में बिल्कुल मासूम बच्चा है.
7: अध्ययन सुमन की फिल्म मैं न रहा मेरा की रिलीज डेट बदल गई है. अब ये फिल्म 11 दिसंबर को रिलीज होगी, जबकि पहले ये 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। अध्ययन के साथ देविता राय इस रोमांटिक फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आएंगी, जो इस फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं। अध्ययन सुमन की बनाई गई इस फिल्म को संगानी ब्रदर्स मोशन पिक्चर्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है, जिसका निर्देशन अमित कसारिया ने किया है। भारत की पहली प्रोफेशनल महिला सुमो पहलवान हेतर दवे की जिंदगी से प्रेरित फिल्म सुमो दीदी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में महिलाओं की पहचान, आत्मविश्वास और सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देने की कहानी है।
16: खुद कमाया था।
19: हाँ, बहुत नाम कमाया है ना, मोटी गेंडी ढोल इपो, इतना नाम कमाना आसान बात।
7: फिल्म सुमो दीदी का प्रीमियर 23 अक्टूबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगा। जयंत रोहतगी के निर्देशित इस फिल्म में श्रियम भगनानी लीड रोल में हैं। इससे पहले भी महिला खिलाड़ियों को लेकर फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब देश की पहली प्रोफेशनल महिला सुमो पहलवान जैसे विषय को छुआ गया है।
19: स्पॉन्सरशिप की जरूरत है।
20: आप सुमो बनिए, देश का नाम रोशन कीजिए, पर हमें माफ कीजिए।
7: भगवान वेंकटेश्वर के दर पर पहुंचे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा। साउथ सिनेमा के चर्चित कपल रश्मिका और विजय इन दिनों अपनी फिल्म रणवाली के प्रमोशन में व्यस्त हैं। 16 अक्टूबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म से पहले दोनों तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर आशीर्वाद लेने पहुंचे। उन्होंने सुप्रभातम सेवा में हिस्सा लिया और भगवान के दर्शन किए। इसके बाद वैदिक विद्वानों ने रंगनायकुल मंडपम में उन्हें आशीर्वाद दिया। मंदिर की ओर से उन्हें पवित्र वस्त्र भेंट करने के साथ ही तीर्थ प्रसाद भी दिया गया।
6: चले न्यूज पथ में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
21: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: धनबाद में थाईलैंड के अरुण मंदिर के तर्ज पर बन रहा माँ दुर्गा का पंडाल, कतरास GNM ग्राउंड में बनेगा पंडाल, 40 लाख रुपए आएगी लागत। देश में पहली बार चमोली जिले में वसुंधरा ताल में लगा अर्ली वार्निंग सिस्टम, 2 घंटे पहले मिलेगी आपदा की चेतावनी, स्वदेशी तकनीक से है विकसित। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा और इजाफा, पहला स्वदेशी मल्टीपर्पस वेसल समर्थक, 16 अक्टूबर को कारवार में होगा कमीशन। न्यूज पथ में चलिए खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
7: ये मलखंभ प्रतियोगिता है, एक लोहे का खंभा और उसके साथ कलाबाजियां। जितने मुश्किल हालात बनेंगे वही आपके फिटनेस का पैमाना होंगे। इस बच्चे को ही देख लीजिए, जैसे जैसे कर्तव्य दिखा रहा है, आम लोग तो इसका एक हिस्सा भी न कर पाए। इसके लिए सबसे जरूरी है फिटनेस और फिर अभ्यास। यहाँ दोनों का सुंदर तालमेल है, कड़ी मेहनत, बेहतरीन संतुलन और फिजिकल फिटनेस वाली इस प्रतियोगिता में इस बच्चे को देखना दिल

मन में बसी मूरत जैसी हो तो क्या बात है। हर हाथ अपनी कल्पनाओं को आकार नहीं दे सकते, पर जिन्हें ये कला आती है उन तक पहुँच तो सकते हैं। लगता है ये भी उन तक पहुँच गए हैं। माँ की मूर्ति बड़ी दूर से आई लगती है, तभी तो रेलवे प्लेटफॉर्म से होकर गुजर रही है। पर माँ के आने की खुशी, उन्हें अपने घर ले जाने की खुशी इन लड़कों के चेहरों पर साफ देखी जा सकती है। कुछ सेकंड का ये वीडियो लोगों का दिल छू रहा है। पांव छोटे हैं पर संगीत की धुन खूब परखते हैं। अभ्यास लगता नहीं कि बहुत ज्यादा हुआ है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का कोई मंच भी नहीं और ना ही दर्शकों की भीड़ है, फिर भी इन चेहरों पर मुस्कान देखिए और कमर में देखिए लचक। मानो आज तो स्कूल में दिन ही बन गया। तस्वीरें बिहार के एक सरकारी स्कूल की बताई जा रही है, जहां इनकी शिक्षिका ने इन्हें यहां के लोक नृत्य झिझिया से परिचय कराया है, ताकि बच्चे अपनी लोक कला, परंपरा और संस्कृति को जान सकें, उससे जुड़ सके।

0: छोटी हैं पर कमाल की हैं। शरीर में ऐसी फुर्ती, ऐसी ऊर्जा, चेहरे पर ऐसे भाव जैसे हर पल नया शब्द लिख रही हूँ। नजरें नहीं हटा पाएंगे आप। भाव भंगिमा से लेकर इनका गेटअप सब लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। लोग इस बच्ची में देवी दुर्गा की झलक देख रहे हैं। नवरात्र है तो डांडिया और गरबे की धूम भी है। इनसे त्योहार की रौनक में चार चांद जो लग जाते हैं और रंगोली माँ के स्वागत में मन के उत्साह को बयां करती है। इस तस्वीर में दोनों साथ आ गए हैं। रंगोली के जरिए डांडिया की झलक पेश की गई है, पर रंगों का चुनाव इतना प्यारा है कि लोग इस रंगोली को बार बार देख रहे हैं।
1: न्यूज वक्त में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिवाली पर पटाखे जलाने से जुड़े मामले की। जी हां, दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर लगातार सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिवाली पर दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर रोक लगाने की मांग पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि लोगों की सेहत और धार्मिक भावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने लोगों से कम प्रदूषण करने वाले तरीकों से त्यौहार मनाने की अपील की। चीफ जस्टिस ने कहा कि लोगों को समझदार बनना होगा और जागरूक करना होगा, उन्हें बताना होगा कि कौन से पटाखे ज्यादा नुकसानदायक हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें लोगों को अपनी मूल संस्कृति की ओर लौटने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उस समय केवल फुलझड़ियां जलती थी और दीपक जलाए जाते थे। सुनवाई के दौरान एक वकील ने दलील दी कि पटाखे चलाना धर्म के मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि पूजा करना धार्मिक आस्था का हिस्सा है, लेकिन पटाखे चलाना नहीं। इस पर बेंच में मौजूद जस्टिस जॉय माल्या बागची ने सवाल उठाया कि पटाखों का धर्म से क्या लेना देना है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि पूरे देश में पटाखों पर बैन लगाना मुमकिन नहीं है। कोर्ट के मुताबिक पूरी पाबंदी से लोगों की भावनाएं आहत होंगी, लेकिन 24 घंटे आतिशबाजी की अनुमति भी नहीं दी जा सकती। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। जाहिर है दिवाली करीब आते ही पटाखों का मुद्दा फिर से जोर पकड़ रहा है। इस मुद्दे पर हमने दिल्ली में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
2: देखिए, ये हमारे तो धर्म का विषय है। हम शुरू से ये पटाखे फोड़ते आ रहे हैं दिवाली में, ठीक है ना, क्योंकि दिवाली हमारे लिए कोई छोटा मोटा पर्व नहीं है। तो जो हमारी परंपरा है हम उसी को निभाते आ रहे हैं, आगे भी निभाएंगे।
3: जो पोल्यूशन हो रहा है उससे फिर,
2: और ये सब, ये जो इतनी गाड़ियाँ चल रही है रोडों पे है, इससे पोल्यूशन नहीं हो रहा है? गवर्नमेंट को नहीं दिखाई दे रहा है? हैं, हमारा तो एक दिन का त्यौहार है तो हम क्यों बंद करें? गवर्नमेंट को ये भी गाड़ियाँ सारी बंद कर देना चाहिए, वो भी बंद कर देना गाड़ियाँ। एक दिन का जरूर, वो हमारा पर्व है एक दिन का, और उसमें भी हम लोग पटाखा नहीं छोड़े, ये ऐसा कैसा पॉलिसी है? उनको पहले गाड़ी भी बंद कर देना चाहिए, जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं, जितनी भी मिले हैं, फैक्ट्रियाँ जितना चल रहा है सब बंद कर दें गवर्नमेंट।
4: ईद पे या और जो क्रिसमस होती है उसमें तो पटाखे चलाए जाते हैं, उसमें क्यों चलाए जाते हैं ये?
3: मतलब धर्म से मतलब है?
4: नहीं, धर्म तो खुशी में लोग पटाखे चलाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। आप खुशी अपनी किसी भी रूप में प्रकट कर सकते हैं।
3: अगर पोल्यूशन चारों तरफ है तो उसके बाद भी दिवाली पटाखे फोड़ना जरूरी है हिंदुओं के लिए?
4: जरूरी, क्यों? हम लोग का मतलब जो हम लोग के फेस्टिवल होते हैं उसमें ही रोक क्यों लगाई जाती है? और जब और फेस्टिवल जब लोग पटाखे चलाते हैं फिर उस पर रोक क्यों लगाई जाती है?
5: पटाखों का धर्म से संबंध नहीं है, क्योंकि पटाखे जो है वो थोड़ा बहुत तो छूटते ही है, दशहरा दिवाली हो गया छठ में। और सुप्रीम कोर्ट को प्रॉब्लम है तो गाड़ी को रोक दे, गाड़ी बंद कर दे, और सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है तो नॉइज पोल्यूशन को ही बंद कर दे। थोड़ा बहुत तो चलेगा ही, पटाखा तो थोड़ा बहुत छूटेगा ही।
6: सही बात है, वो तो खुशी के लिए बजाया जाता है, कोई भी अगर यूज करता है तो जब खुशी का बात होता है तभी तो पटाखा यूज करता है, ऐसे तो मातम में तो कोई यूज नहीं करता है। अगर ऐसा किसी को प्रॉब्लम भी है तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल सकता है कि पटाखों को फैक्ट्री का बंद कर दो। अगर उससे प्रॉब्लम है, कभी भी बजाया जाता है तो लोगों को प्रॉब्लम होता है पोल्यूशन प्लस नॉइज वाला जो है, तो उसको बंद कर दो आप, तो वो तो होगा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट बोले या ना बोले या लोग जैसे भी बोले, लोग जिसको जलाना है वो जलाएगा, इस पे रोक नहीं लग सकता है। ये हो सकता है कि थोड़ा कम यूज हो, बट होगा,
3: वो दिवाली पे होना ही होना है,
6: थोड़ा बहुत तो होना ही है।
1: और अब बात करते हैं दिल्ली में मौजूद कूड़े के पहाड़ों की, जिसे खत्म करने के प्लान पर तेजी से काम चल रहा है। एक लैंडफिल साइट ओखला में भी है, जहां कूड़े से खाली हो रहे जगहों पर बड़ी संख्या में पौधे लगाए जा रहे हैं, जो ऑक्सीजन पार्क डेवलप करने की योजना का हिस्सा है। गुड न्यूज ये है कि तीन लैंडफिल साइट से अब तक करीब 100 एकड़ जमीन कूड़ा मुक्त हो चुकी है।
0: कभी यहाँ कूड़े का इससे कहीं विशाल पहाड़ था जो बेहद छोटा हो चुका है। साथ ही जहाँ से कूड़ा हटाया जा चुका है वहाँ अब बड़ी संख्या में पौधे लगे नजर आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के तीन बड़े लैंडफिल साइट में से एक ये है ओखला का लैंडफिल साइट, जहाँ आने वाले समय में अब कूड़ा नहीं बल्कि हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। ओखला लैंडफिल साइट की खाली कराई गई जमीन पर अब ऑक्सीजन पार्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है।
7: वो पहले तस्वीरें दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं ये आपका कूड़ा का वही ढेर है जिसको लैंडफिल साइट के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली में इस तरीके के तीन कूड़े के ढेर हैं, लैंडफिल साइट हैं, उसमें से एक ये ओखला का है। और ठीक इसके साथ जहां से कूड़े को हटा दिया गया है वहां पर आप किस तरीके से देख सकते हैं इस जगह को जो पार्क के रूप में तब्दील किया जा रहा है, घास लगाए जा रहे हैं, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं और इसको पूरे जो है कूड़े को हटा करके इसको एक पार्क के रूप में डेवलप किया जा रहा है ताकि इस जगह को एक हरा भरा हरियाली भरा क्षेत्र बनाया जा सके। जहां पर कूड़े को लगातार हटाया जा रहा है और जो जगह कूड़ा हटने के बाद खाली हो रहा है उस जगह पर पार्क बनाया जा रहा है।
0: दिल्ली सरकार की लैंडफिल को हरित रूप देने की योजना है। सरकार ने करीब 37 एकड़ जमीन खाली करा लिया है जिस पर ऑक्सीजन पार्क का काम होना है। ओखला लैंडफिल पर 5 एकड़ जमीन पर दूब घास के जरिए इस इलाके को हरित क्षेत्र में बदलने का काम पहले ही शुरू हो चुका था। ओखला समेत दिल्ली की तीन लैंडफिल साइट से कचरे के पहाड़ को पूरी तरह से खत्म करने और वैज्ञानिक तरीके से कूड़े के निस्तारण पर दिल्ली सरकार काम कर रही है। ओखला लैंडफिल साल 1996 से 62 एकड़ जमीन पर शुरू हुई थी। यहां 2019 तक कूड़े का पहाड़ करीब 60 मीटर ऊंचा हो गया था। इसके बाद कूड़ा निस्तारण का काम शुरू तो हुआ लेकिन वो तेजी से आगे नहीं बढ़ पाया। एमसीडी के मुताबिक इस साल यानी 2026 में 8 जून तक तीन लैंडफिल पर 99.7 लाख टन पुराना कचरा बचा था जिसमें ओखला में 12.29 लाख टन कचरा था। हालांकि काम तेजी से शुरू होने पर अब ओखला लैंडफिल से करीब 37 एकड़ जमीन कचरा मुक्त कराई जा चुकी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद इस काम पर नजर रख रही हैं। 3 अक्टूबर को उन्होंने ओखला लैंडफिल साइट का दौरा भी किया था।
8: मात्र 1.5 साल में हम इस स्थिति पे आ गए कि हमने 100 एकड़ जमीन जो है तीनों जो हमारी लैंडफिल साइट थी वहां से रिक्लेम कर ली है। और आज ओखला पे भी हम जब खड़े हैं तो यहाँ पर 2025 जनवरी से पहले का जितना लीगेसी वेस्ट था वो लगभग प्रोसेस हो चुका है। अब जो कूड़ा खड़ा है ये जनवरी 2025 के बाद का एक तरीके से कहें तो फ्रेश वेस्ट है जो वो भी दिन रात प्रोसेस हो रहा है। तो अब हम दो फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे हैं, एक फ्रंट कि लीगेसी वेस्ट को ख़त्म करना और दूसरा कि जो फ्रेश वेस्ट रोजाना यहाँ पर 3-4 हजार मीट्रिक टन आता है वो हाथ की हाथ कैसे प्रोसेस हो।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक जनवरी 2025 से पहले का अधिकांश पुराना कचरा प्रोसेस किया जा चुका है और यहाँ कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई भी काफी कम हो चुकी है। ओखला समेत तीन लैंडफिल साइट पर बायो माइनिंग प्रक्रिया के जरिए पुराने कचरे को प्रोसेस करके कूड़े का पहाड़ हटाया जा रहा है। तीनों लैंडफिल साइट से 217.17 लाख मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण कर अब तक करीब 100 एकड़ जमीन कूड़ा मुक्त हो चुकी है। सरकार का लक्ष्य सिर्फ पुराने कचरे को हटाना नहीं बल्कि हर दिन आने वाले ताज़ा कचरे को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस कर उसे दोबारा कूड़े का पहाड़ बनने से रोकना है। इसके लिए ओखला समेत तीनों लैंडफिल साइट पर नए फ्रेश वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का भी शिलान्यास किया गया है। धूल और प्रदूषण को रोकने के मकसद से ओखला लैंडफिल साइट पर बन रहे पार्क के चारों ओर अलग अलग तरह के पौधे लगाए जा रहे हैं। यहां से इस साल के अंत तक कूड़े के ढेर को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य है। ओखला लैंडफिल साइट दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज ट्रिजन।
1: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
1: शुभमन गिल के नाम हुआ प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड का कीर्तिमान। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर।
2: टीम इंडिया के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल चुने गए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। सितंबर महीने में टीम के कप्तान गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 वनडे में 334 रन बनाए थे। पहले वनडे में 110 रन और फिर दूसरे वनडे में 133 गेंदों पर 223 रन बनाए, जो वनडे इतिहास की सबसे तेज डबल सेंचुरी है। उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें सितंबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। गिल ने 5वीं बार ये अवार्ड जीता है, साथ ही वो सबसे ज्यादा बार ये अवार्ड जीतने वाले क्रिकेटर भी बने हैं। विमेंस कैटेगरी में भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। उन्हें दूसरी बार ये अवार्ड मिला है। शेफाली ने सितंबर में 360 रन बनाने के साथ 6 विकेट भी लिए। इसके अलावा वो महिला एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहीं। वहीं एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में नाबाद 100 रन और फाइनल में 48 रन बनाए। उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सितंबर महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉपर बनी हुई हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना। आईसीसी की महिला क्रिकेट की जारी ताजा रैंकिंग में हरमनप्रीत कौर दूसरी भारतीय बल्लेबाज हैं, जो टॉप 10 में 9वें स्थान पर हैं। वहीं गेंदबाजों की रैंकिंग में भारत की दीप्ति शर्मा टॉप 10 में 9वें नंबर पर हैं, जबकि ऑलराउंडर्स की लिस्ट में वो 6ठे स्थान पर हैं। भारतीय महिला टीम वनडे और टी20 दोनों फॉर्मेट की टीम रैंकिंग में 3रे नंबर पर बनी हुई है। टी20 बल्लेबाजों की लिस्ट में भारत की 3 खिलाड़ी टॉप 10 में शामिल हैं। शेफाली वर्मा 4थे, स्मृति मंधाना 5वें और हरमनप्रीत 10वें नंबर पर हैं। वहीं गेंदबाजी में श्रीचरणी और दीप्ति शर्मा शीर्ष 2 स्थानों पर काबिज हैं। टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह आईपीएल 2027 से पहले दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़ गए हैं। वो टीम के असिस्टेंट और बल्लेबाजी कोच बने हैं। बतौर कोच युवराज सिंह का ये डेब्यू होगा। वो सौरव गांगुली के साथ मिलकर काम करेंगे, जो दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच बने हैं।
1: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पथ राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है।

0: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
7: धनबाद में थाईलैंड के अरुण मंदिर की तर्ज पर बन रहा है मां दुर्गा का पंडाल, कतरास GNM ग्राउंड में बनेगा पंडाल, 40 लाख रुपए आएगी लागत। देश में पहली बार चमोली जिले में वसुंधरा ताल में लगा अर्ली वार्निंग सिस्टम, 2 घंटे पहले मिलेगी आपदा की चेतावनी, स्वदेशी तकनीक से विकसित। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा और इजाफा, पहला स्वदेशी मल्टीपर्पस वेसल समर्थक 16 अक्टूबर को कारवार में होगा कमीशन। उत्तराखंड में गुटखा पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर 1 साल का प्रतिबंध, निर्माण भंडारण और वितरण पर होगी कार्रवाई। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर मां ब्रजेश्वरी के दरबार पहुंची, कथावाचक जया किशोरी पूजा अर्चना करके माता रानी का आशीर्वाद लिया।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
7: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं नवरात्र में मां के सभी स्वरूपों से मिलने वाले वरदान की। देश भर में नवरात्रि का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और देखिए तीसरे दिन आज मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना हुई और बुधवार को मां कूष्मांडा की आराधना होगी।

आपको बता दें कि नवरात्र में माँ के हर रूप हर स्वरूप का अपना महत्व होता है। आज आपको माँ के हर स्वरूप से मिलने वाले गुणों के बारे में आज बताने जा रहे हैं और साथ ही साथ नवरात्र में सेहत और समृद्धि प्राप्त करने का उपाय भी बताएंगे, समझेंगे कि शरद ऋतु के इस मौसम में पूजा उपवास और व्रत से क्या फायदे होते हैं। इसके बाद आपको लिए चलेंगे कोलकाता, जहां पर हर साल की तरह इस बार भी भव्य और अद्भुत पंडाल बनाए गए हैं। कुछ पंडालों की थीम देखने वालों को दंग कर रही है तो किसी की सजावट मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं नवरात्र में देवी के नौ स्वरूपों की पूजा और उससे हासिल होने वाले नौ वरदानों से। माँ का हर स्वरूप ममतामयी है और माँ अपने हर रूप में सुख समृद्धि शक्ति और भक्ति का आशीर्वाद देती हैं। लेकिन इसके अलावा माँ के हर रूप में विशिष्ट गुणों का वर्णन मिलता है। माँ की पूजा उपासना से ऐसे गुणों का वरदान तो मिलता है, अगर हम ऐसे गुणों को आत्मसात करें तो इससे हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। तो चलिए ज्योतिष के जानकारों से समझने की कोशिश करते हैं कि माँ शैलपुत्री से लेकर माँ सिद्धिदात्री तक माँ का हर स्वरूप हमें क्या सिखाता है।

0: प्रथम शैलपुत्री च द्वितीया ब्रह्मचारिणी तृतीया चंद्रघंटेति कुष्मांडाति चतुर्कम्। पंचम स्कंदमाता ते षष्ठम कात्यानीति च सप्तमं कालरात्रि महागौरी अष्टमम्। नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतितय। नामने धामने एक ही आदि शक्ति पर स्वरूप अनेक। अपने नौ रूपों में माँ शक्ति भी है, भक्ति भी है, ममतामय है तो रौद्र भी है। कभी ज्ञान तप और त्याग की राह दिखाती है तो कभी अदम्य साहस का भी वरदान देती है। नवरात्र का महत्व भी इसीलिए है क्योंकि इसमें एक साथ माँ के सभी रूपों की पूजा अर्चना होती है। माँ के हर रूप के विशिष्ट गुण है जिनमें जीवन के लिए संदेश छिपा है। यानी माँ की हर रूप की पूजा अर्चना से सुखी जीवन का वरदान मिलता है। माँ का पहला स्वरूप है शैलपुत्री का, जो दृढ़ता और संकल्प का प्रतीक है। माँ का ये स्वरूप बताता है कि हमें अपने लक्ष्यों की ओर पूरे निश्चय और संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जबकि माँ का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी का, जो तप और अनुशासन का प्रतीक है। माँ का ये स्वरूप बताता है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए तप और अनुशासन ही एकमात्र रास्ता है।
1: जब हम शैलपुत्री की बात करें तो इनकी जो साधना या आराधना होती है वो हम सबसे मूलाधार चक्र से इसकी शुरुआत करते हैं। और इसका अगर आप बोलते हैं हमारे जन्म पत्रिका के हिसाब से देखें तो सूर्य, क्योंकि सूर्य सब चीजों की शुरुआत करता है। तो अगर हम शैलपुत्री की आराधना कर रहे हैं तो हम शुरुआत की आराधना कर रहे हैं, मतलब सूर्य की आराधना कर रहे हैं। और जब शुरुआत हम करते हैं तो हमारे अंदर सबसे ज्यादा जो चीज जरूरी होती है वो होता है स्ट्रांग इरादा। तो जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें पत्थर जैसी मजबूती और इरादा बहुत जरूरी है। तो शैल पुत्री के लिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं और हम मूलाधार पर ध्यान करते हैं। हम कुछ नहीं भी अगर कर सकते हैं तो लम मंत्र का जाप करते हैं। अब जब हम नेक्स्ट आते हैं ब्रह्मचारिणी, ये 9 डेज में हम इवॉल्व होते हैं। इवॉल्व होने के लिए हर एक देवी के लिए हम एक एक चक्र को एक्टिवेट भी करते हैं और एक एक क्वालिटी अपने अंदर इम्बाइब करते हैं। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की, एक इरादा किया कि मुझे कोई काम करना है, फॉर एग्जाम्पल। अब सेकेंड जब आई ब्रह्मचारिणी, तो ये शनि से रिलेटेड है और इसमें स्वाधिष्ठान चक्र को हम एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड चीज जो हमसे शनि चाहते हैं वो क्या चाहते हैं कि आपने पहले तो डिसीजन लिया कि हाँ हम कोई काम करेंगे, मजबूती से करेंगे। सेकेंड में कठोरता और अनुशासन के साथ हमें लगातार मेहनत करनी होगी। ये इससे हम शनि को इम्प्रूव कर सकते हैं और ब्रह्मचारिणी के आराधना करके हम अपने अंदर इस क्वालिटी को ला सकते हैं।
0: उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, गांव, कस्बे, शहर, हर जगह जयकारे गूंज रहे हैं और माँ की कृपा बरस रही है। अपने भक्तों को माँ जगदम्बा सुख समृद्धि का वरदान देती है। पर इसके साथ ही माँ चंद्रघंटा स्वरूप साहस और सजगता का प्रतीक भी है। माँ चंद्रघंटा बताती हैं कि अपने लक्ष्य की धुन में मगन साधक को सफलता मिलकर ही रहती है। इसी तरह माता का चौथा स्वरूप यानी की माँ कुष्मांडा सृजन और शक्ति का प्रतीक है। माँ का ये स्वरूप बुद्धि, विवेक और सृजन का महत्व बताता है।
1: चंद्र घंटे की अगर बात शुरुआत करते हैं तो देखिए देवी के माथे पर आप देखेंगे चंद्रमा जैसा बना हुआ है। इससे हमें समझ में आता है कि कैसे हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं। देखिए देवी हर समय पूरी रेडी है, अस्त्र शस्त्र के साथ एकदम रेडी है कि अब मुझे अब जाना है और युद्ध करना है, लेकिन इसको वो बैलेंस रखती है। तो अगर हम इस देवी को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमारे 3-4 चीजें हैं जो जो हम जरूर करेंगे। देवी को हम सबसे पहले 2 मिनट तक आप घंटा बजाइएगा, बेल बजाकर उनको आप अगर जो भी आपकी मनोकामना है या कुछ भी आप बोलना चाहते हैं, क्योंकि इसी देवी के बारे में ऐसा बोला जाता है कि बहुत बड़ी सेना को इन्होंने अस्त्र शस्त्र से लड़ाई करके नहीं हराया था। उनके पास जो बेल है, इस बेल के साउंड से और शेर की गर्जन से आधे से ज्यादा युद्ध में लोग हार गए थे।
0: अंधकार को दूर करने वाली और राक्षसों का वध करने वाली माँ अपने भक्तों को प्रेम और करुणा का आशीर्वाद भी देती है। जैसे माँ का स्कंदमाता स्वरूप प्रेम और करुणा का प्रतीक है, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है। जबकि माँ कात्यायनी का रूप बताता है कि अन्याय का प्रतिकार और दुष्टों पर प्रहार जरूरी है ताकि अधर्म पर धर्म की विजय सुनिश्चित हो।
2: माँ स्कंद माता का जो रूप है वो क्लियरली जो है एक मदरहुड को दर्शाता है, एक नर्चरिंग क्वालिटीज को दर्शाता है और एक फेमिनिन एनर्जी को भी बहुत ज्यादा दर्शाता है। माँ स्कंद माता का ये जो रूप है ये नॉलेज को भी दर्शाता है और ये एजुकेशन को भी दर्शाता है। जब एक लेडी जो होती है जब वो मदर बनती है तो कहीं ना कहीं उसकी फेमिनिन क्वालिटीज बहुत ज्यादा और निखर के आती है। तो ये कहता है कि जीवन में आपको अपने अंदर बहुत ज्यादा नर्चरिंग क्वालिटीज को है वो अपनाना पड़ेगा। जो भी आपके जीवन में आए चाहे छोटा बच्चा आए चाहे कोई बड़ा आए, आप देखिए कि वो जो पर्टिकुलर इंसान है जो पर्टिकुलर व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो है कैसे इवॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर ये इवॉल्वमेंट का बहुत ज्यादा कनेक्शन है।
0: सभी की राह अलग होती है, जहाँ अलग होती है माँ भी अपने सभी स्वरूपों में मनवांछित फल प्रदान करती है। किसी को साहस और शौर्य का वरदान तो किसी को माँ कालरात्रि के रूप में वैराग्य और शुद्धि का मंत्र देती है। इस रूप में माँ भय का नाश करती है और सकारात्मकता का संचार करती है। तो वहीं माँ महागौरी शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। माँ का ये रूप जीवन में सादगी शांति और सौहार्द का महत्व बताता है।
1: काल रात्रि की बात करें तो इसमें हम राहु को रिलेट कर सकते हैं। अगर हमारे जन्म पत्रिका में राहु से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो काल रात्रि जी को हमें पकड़ना चाहिए। इसमें अगर हम मेडिटेशन करते हैं, मैंने बताया था चक्रों की हम मेडिटेशन करते हैं, तो सहस्र चक्र में हम इसकी मेडिटेशन करते हैं। इससे हमें सबसे ज्यादा खास बेनिफिट क्या होता है, हमारे अंदर निर्भयता आती है। और एक और चीज हम सीख पाते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो हमें डरना नहीं है, उसमें काल रात्रि की तरह हमें काल बनकर उस बाधा को दूर करना है। तो जब हमारे अंदर ये स्पिरिट आता है कि हम काल रात्रि की पूजा कर रहे हैं, मतलब हम भी वो काल की तरह अपनी प्रॉब्लम के ऊपर चढ़ जाएंगे और हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तब जाकर हम एक विजयी बन पाते हैं।
0: माँ के दरबार में बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है, हर मुराद पूरी होती है। लेकिन खूबी ये भी है कि माँ के अलग अलग रूपों में जीवन को सफल और सरल बनाने का सूत्र है। जैसे कि माँ सिद्धिदात्री आत्मज्ञान और संपूर्णता का प्रतीक है और साधना को पूर्णता और सफलता तक पहुँचाती है।
2: माँ सिद्धि दात्री है, इनका मतलब है सिद्धि प्लस दात्री। इफ वी यू नो ब्रेक दिस वर्ड, तो यहाँ पर दात्री का मतलब होता है देने वाली और सिद्धि का मतलब है सिद्धियां। तो कहीं ना कहीं इसका मीनिंग जो होता है वो हो गया सिद्धियां देने वाली। तो 9 days आफ्टर 8 दिन जब आपने देवी की आराधना करी तो 9वां दिन जो है ये आपकी तपस्या का, जो आपके पेशेंस जो आपने 8 दिन रखा उसका है, ये सिद्धियों का है। अब यहाँ पर जो आपने 8 दिन अपने मंत्र को साधा तो फाइनली जब आपको की सिद्धि मिली, इसके बाद जो है ये आपके कंप्लीशन का भी है। कोई भी चीज जब कंप्लीट होती है तो वो साथ में हमें ये भी सिखाती है कि अब हमें जो है लाइफ में न्यू बिगनिंग्स की तरफ फोकस करना है।
0: इस तरह देखिए तो नवरात्र का महत्व सिर्फ पूजा पाठ तक नहीं बल्कि माँ की आराधना के 9 दिनों का आध्यात्मिक महत्व भी है और इनमें तप अनुशासन और संयम से जीवन को बेहतर बनाने का संदेश भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: नवरात्र में उपवास जप तप और अनुशासन का विशेष महत्व है। पूजा पाठ के अलावा खान पान का भी खास ख्याल रखा जाता है। देखा जाए तो उसका सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं है, नवरात्र की आस्था भक्ति और उससे जुड़ी दिनचर्या का हमारे जीवन पर गहरा असर होता है। शक्ति की साधना से न सिर्फ समृद्धि बल्कि सेहत का भी वरदान मिलता है। मौसम के हिसाब से देखा जाए तो नवरात्र के दौरान की जाने वाली पूजा आराधना हमारे लिए कितनी फायदेमंद होती है, आइए समझते हैं।
4: नवरात्रों के दौरान कालकाजी मंदिर में लगातार भक्तों का तांता नजर आ रहा है। आज नवरात्रों के तीसरे दिन भी मंदिर में सुबह से भक्त लाइनों में लगकर मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं।
5: ये मान्यता है कि जो भी मां के दर्शन करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए कुछ साधक तो नित्य प्रतिदिन आके माँ के दर्शन करते हैं और मध्यरात्रि से ही माँ के दर्शन कपाल दर्शन के लिए कपाट खोल दिए जाते हैं। भगवती की जो मध्यरात्रि में आरती करने के बाद जो भक्तों के कपाट जो है भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं और लगभग जो है 2:30 बजे के बाद से ही भक्त जो है निरंतर माँ के दर्शन कर रहे हैं और पुण्य लाभ कर रहे हैं।
6: माता के दर्शन करने का जो सौभाग्य मिला है ये सबको नहीं मिलता है और इतनी धार्मिक मान्यता है यहाँ की, यहाँ पे बार बार आने का मन करता है माता रानी के दर्शन करने का और हम तो आते ही रहते हैं लगभग।
7: जय माता दी। माँ के हर दरबार में भक्ति अपरंपार है, सभी के दिल में दर्शन की आस, फोटो पर जय जयकार है। मंदिरों में श्रद्धा का सिलसिला थमता नजर नहीं आता, पंडालों में भी गजब की रौनक है और घरों में भी माता रानी की विधि विधान से पूजा हो रही है। हर बार की तरह शरद ऋतु के आगमन के साथ आस्था का ये उत्सव जनजीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है। देखिए तो माँ की पूजा आराधना और 9 दिनों के व्रत के साथ बदले हुए मौसम का संयोग भी अद्भुत है। असल में ये बरसात के बाद शरद ऋतु के आगमन का समय है, जब पर्यावरण और तापमान में तेजी से बदलाव होता है। जाहिर है शरीर का मेटाबॉलिज्म भी नए मौसम के अनुसार ढलता है। आयुर्वेद के मुताबिक जठरागिनी थोड़ी कमजोर हो जाती है। मॉनसून में शरीर के भीतर पित्त और एसिडिटी बढ़ती है। ऐसे समय में नवरात्र की पूजा स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ जाती है। देखा जाए तो नवरात्र व्रत बदलते मौसम के दुष्प्रभावों से बचाता है और शरीर को सर्दियों के लिए तैयार करता है।
2: नवरात्रि के टाइम पर अगर हम इसको साइंटिफिकली देखते हैं तो ये 9 नाइट्स ऑफ मैनिफेस्टेशन और ट्रांजिशन होता है। जब एक ऋतु से हम दूसरी ऋतु में जाते हैं यानी कि क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं तो एनवायरनमेंट में बहुत सारे इन्फेक्शंस फैल जाते हैं, वायरसेस बैक्टीरिया जो है बहुत प्रोवोक कर जाते हैं, स्पेशली जब चेंज ऑफ सीजन होता है। तो इस टाइम पर क्या होता है, जब चेंज ऑफ सीजन होता है आप देखते हैं फ्लू बहुत कॉमन है आजकल, लोगों में बहुत ज्यादा कोल्ड कॉफ हो रहा है, तो इस टाइम पर इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो जब इम्यूनिटी लो होती है तो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको डिटॉक्स करना बहुत जरूरी होता है और ऑर्गन्स को हील करना बहुत जरूरी होता है, जिस वजह से जब हम फास्टिंग करते हैं तो हम नॉर्मल से थोड़ा सा कम खाते हैं। और दूसरी बात, हम सात्विक फूड को जो है वो ज्यादा महत्वता देते हैं, तमस वाले फूड अवॉइड करते हैं, लहसुन प्याज जो होता है वो उसमें नहीं होता है, जिस वजह से जो है हमारा जो इम्यूनिटी है, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स को बहुत सारा रेस्ट मिलता है तो जिस वजह से हमारी इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग होती है।
7: नवरात्र में जब तब पूजा अर्चना का विधान यूं ही नहीं है, वैसे तो किसी भी समय व्रत का कनेक्शन तन और मन की शुद्धता से है। उपवास शरीर की क्षमताओं को बढ़ाता है, मन को नई ऊर्जा देता है, लेकिन जानकार मानते हैं कि नवरात्र के दौरान उपवास से विशेष तौर पर शरीर के पाचन तंत्र को आराम मिलता है, पाचन अंगों विशेषकर पेट और आंतों को जरूरी विश्राम मिलता है। उपवास से शरीर के विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, वजन नियंत्रण और मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है, सुस्ती दूर होती है, साथ ही तरोताजगी का एहसास होता है। नवरात्र का व्रत ऋतु परिवर्तन के अनुकूल शरीर को ढालने में मददगार है, इससे आत्म अनुशासन और मानसिक शक्ति का विकास तो होता ही है, साथ ही एकाग्रता और आत्म नियंत्रण भी बढ़ता है।
2: देवी की ऊर्जा इतनी पावरफुल होती है, इतनी पावरफुल होती है कि अगर आप मंदिर में जाके भी जो है, अगर आप मंदिर में जाके कुछ आराधना उपासना करते हैं तो उसका कई गुना फल मिलता है। आप सिर झुकाते हैं तो आपका क्राउन चक्रा जो है वो खुल जाता है, आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, आपका पंच तत्व जो है वो बैलेंस होता है, मैनिफेस्टेशन जो है वो कितने गुना जो है बढ़ जाती है, देवी की शक्तियां क्वालिटीज हमारे अंदर आने लगती है, मंत्र सिद्धि हमारे अंदर आने लगती है, जाप। और जब आप व्रत करते हैं तो पूरा फोकस और कंसंट्रेशन जो है वो भी पूरा देवी में ही लगता है, तो इसीलिए फास्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है।
7: शरद ऋतु में माँ की पूजा का जो धार्मिक विधान है, देखा जाए तो उसके पीछे कुछ हद तक विज्ञान है। इस त्योहार के साथ ही सर्दी के आगमन का संकेत मिल जाता है, इस लिहाज से व्रत के दौरान जो खान पान होता है वो कारगर होता है। नवरात्र की पूजा के दौरान सात्विक भोजन का महत्व समझ लीजिए। व्रत में इस्तेमाल होने वाला कुट्टू का आटा ग्लूटेन फ्री, फाइबर, मैग्नीशियम और प्रोटीन से भरपूर होता है, तो सिंघाड़े का आटा एंटीऑक्सीडेंट्स, पोटेशियम, विटामिन B6 से भरपूर होता है। साबूदाना शुद्ध कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, और मखाने में कैल्शियम और एंटी एजिंग गुण होते हैं। रही बात सेंधा नमक की, तो उसमें सोडियम की मात्रा कम और मिनरल ज्यादा होते हैं। ताजे फल तो वैसे भी विटामिन और मिनरल्स के बेहतरीन स्रोत हैं, और दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। यानी नवरात्र के व्रत उपवास का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि इसका हमारे स्वास्थ्य से भी सीधा कनेक्शन है। माँ की आराधना से, उनकी भक्ति से जिस तरह सुख समृद्धि का वरदान मिलता है, उसी तरह व्रत से शरीर को नई शक्ति और ऊर्जा का एहसास होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, जैसे माँ के अलग अलग स्वरूप और उनके अलग अलग गुण हैं, उसी तरीके से माँ की भक्ति के भी अलग अलग रंग ढंग हैं। गुजरात के सूरत में माँ दुर्गा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का ऐसा अनोखा तरीका सामने निकल कर आया जो लोगों को हैरान कर रहा है। सूरत की बाइकिंग कम्युनिटी के सदस्यों ने 75 प्रीमियम मोटर बाइक्स की मदद से समंदर किनारे माँ दुर्गा की विशाल आकृति तैयार की। देखिए, आसमान से जब इस कलाकृति को ड्रोन कैमरे ने रिकॉर्ड किया तो कैसा भव्य नजारा निकल कर सामने आया एरियल शॉट से। डभारी बीच पर नौजवान बाइकों के साथ पहुंचे और वहां पर उन्होंने बाइक से ही मां आदिशक्ति की अनूठी आकृति तैयार की। इस आयोजन में सूरत में सक्रिय विभिन्न नामी मोटरसाइकिल शोरूम और बाइकिंग समूहों ने भाग लिया। प्रत्येक डीलर ने 2 से 3 नई मोटरसाइकिल्स उपलब्ध कराई और उसमें सहयोग दिया। तस्वीरें देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे माँ की आंखें आपको बिल्कुल नजर आएंगी। नवरात्रि का ये पर्व जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, दुर्गा पूजा पंडालों में लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगी है। खासकर बंगाल के अलग अलग शहरों में सजे थीम बेस्ड पूजा पंडालों की चर्चा खूब हो रही है। इन पंडालों में राज, डांगा, नबा उदय संघ और चोरबागन सर्वजनीन दुर्गा उत्सव समिति का पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।
7: शक्ति उपासना का पर्व पूरे ही देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन बंगाल जैसी दुर्गा पूजा न सिर्फ बेजोड़ है बल्कि अद्भुत और अलौकिक भी है। यहाँ एक से बढ़कर एक दुर्गा पूजा पंडाल सजे हैं, जो आस्था और भक्ति के साथ एक कहानी भी कह रहे हैं। इनमें से एक दक्षिण कोलकाता का मशहूर क्लब राज डांगा नबा उदय संघ का पूजा पंडाल है, जो इस साल शोधन यानी शुद्धिकरण थीम पर आधारित है। राजडांगा नवोदय संघ के पंडाल की ये थीम इंसान के भीतर के विकारों को दूर करने के साथ साथ पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ बनाने का एक सशक्त संदेश देती है। आयोजकों ने बताया कि 70 से 80 लोगों ने इस पर काम किया और दिन रात बहुत मेहनत की, तब जाकर ये पंडाल अपनी थीम के मुताबिक इतना जीवंत बन पाया है। दुर्गा पूजा के रंग में देशभक्ति का रंग भी घुला हुआ है, ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा के पंडाल में, जो 2026 में अपना 91वां साल मना रहा है। बाजार में होने वाले इस दुर्गा पूजा समारोह की थीम वंदे मातरम पर आधारित है, जो राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित है। इसलिए भारत के नक्शे के आकार में बने इस पंडाल में देश के इतिहास, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम की झलक हर तरफ देखने को मिल रही है। बंगाल के थीम बेस्ड पूजा पंडालों की फहरिस्त में अगला नंबर उत्तरी कोलकाता के चोर बागान सार्वजनीन दुर्गा उत्सव समिति के इस पंडाल का है, जो इस साल बियॉन्ड साउंड की थीम पर आधारित है। पंडाल के अंदर का दृश्य किसी जादुई रात के आकाश या स्पेस जैसा अनुभव देता है, जहां टिमटिमाते तारे और जादुई रोशनी का शानदार संगम इस पंडाल की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। कोलकाता की तरह ही बंगाल के दूसरे शहरों में भी एक से बढ़कर एक दुर्गा पूजा पंडाल सजे हैं, जिनकी भव्यता और सुंदरता लोगों का मन मोह रही है। सिलीगुड़ी के सुब्रत संघ ने अपने 69वें साल में आदिशक्ति थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल तैयार किया है, जिसमें भगवान शिव की विशाल मूर्ति और कैलाश पर्वत की रेप्लिका शामिल है, जो इस पंडाल का सबसे बड़ा आकर्षण है। शारदीय नवरात्रि के दौरान बंगाल के अलग अलग शहरों में सजने वाले ऐसे दुर्गा पूजा पंडाल सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं होते, बल्कि ये कला, संस्कृति और अद्भुत रचनात्मकता का जीता जागता उदाहरण है, जो अपनी इसी कला और रचनात्मकता के लिए देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: नवरात्र में माँ दुर्गा के पंडाल बने आकर्षण का मुख्य केंद्र। पुरुलिया में टेराकोटा के पंडाल ने खींचा सभी का ध्यान, हावड़ा में देखने को मिली केदारनाथ धाम की झलक। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर माँ ब्रजेश्वरी के दरबार पहुंची कथावाचक जय किशोरी, पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। देश में पहली बार चमोली जिले में वसुंधरा ताल में लगा अर्ली वार्निंग सिस्टम, 2 घंटे पहले मिलेगी आपदा की चेतावनी, स्वदेशी तकनीक से लैस। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा और इजाफा, पहला स्वदेशी मल्टीपर्पस वेसल समर्थक 16 अक्टूबर को कारवार में होगा कमीशन। कश्मीर की गुरेज घाटी में लगातार बर्फबारी का दौर, गुलमर्ग और सोनमर्ग में भी बिछी बर्फ की मोटी चादर, सड़कों पर फिसलन, सैलानियों से सावधानी बरतने की अपील।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
7: पश्चिम बंगाल महाअष्टमी से पहले ही दिखने लगी दुर्गा पूजा की रौनक। पुरुलिया में तैयार किया गया भव्य दुर्गा पूजा पंडाल। पुरुलिया की नडीहा बारुयारी दुर्गा पूजा कमेटी का दुर्गा पंडाल बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। टेराकोटा थीम पर तैयार। इस साल अपना 100वां साल मना रहा है नडीहा बारुयारी दुर्गा पूजा कमेटी। पंडाल की सजावट में बंगाल की पारंपरिक कला और स्थानीय सांस्कृतिक शैली की अद्भुत झलक। दुर्गा पूजा पंडाल और दुर्गा प्रतिमा की सजावट में बारीक कलाकारी और पारंपरिक शिल्प का किया गया इस्तेमाल। नवरात्र के तीसरे दिन मंत्रोच्चार से गूंजा कोला का रेणुका माता मंदिर। लाल रंग के वस्त्रों में सजी सवरी श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। 250 साल पुराने मंदिर में नवरात्रि के मौके पर विशेष पूजा अर्चना। नवरात्रि के तीसरे दिन इंदौर के मां अन्नपूर्णा के दरबार में भक्तों की भीड़। आस्था और सेवा का संगम बना मंदिर। दर्शन करने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु। अन्न की देवी के स्वरूप माना जाता है मंदिर। यहां पर दर्शन के साथ अन्न क्षेत्र के माध्यम से निभाई जाती है सेवा की परंपरा। सफेद संगमरमर से बना यह मंदिर अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए श्रद्धालु के आकर्षण का केंद्र है। आकर्षक स्थापत्य शैली के लिए भी मशहूर। कोलकाता के कालीघाट में मिलन संघ दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन। पंडाल के उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हुए। हरियाणा के करनाल में दशहरे की तैयारियां। तैयार किया जा रहा है 75 फीट ऊंचा रावण। करनाल में रावण के पुतले बनाने में जुटे मुस्लिम कारीगर पिछले 20 सालों से कर रहे हैं। त्योहार के बीच रेल यात्रा करने वालों के लिए राहत भरी खबर। पटना से नई दिल्ली के बीच चलेगी वंदे भारत पूजा स्पेशल ट्रेन। नई दिल्ली से 16 अक्टूबर 18 अक्टूबर और 21 अक्टूबर से 25 नवंबर तक पटना के लिए हर सोमवार बुधवार और शनिवार को चलेगी पूजा स्पेशल वंदे भारत। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में दुर्गा पूजा की रौनक। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने मंदिर पहुंचकर मां दुर्गा के दर्शन किए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। विजयवाड़ा में कृष्णा नदी के तट पर पुन्नमी घाट पर 20 अक्टूबर तक विजयवाड़ा उत्सव 2.0 का आयोजन। झारखंड के धनबाद में भव्य दुर्गा पूजा उत्सव की तैयारियां। थाईलैंड के अरुण मंदिर में तर्ज पर 40 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार। पंडाल में सजावट के लिए शंख और सीप का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कारीगर 3 महीनों से दिन रात जुटे हुए हैं। सूरत में मां दुर्गा की भक्ति का अनोखा अंदाज। 75 प्रीमियम मोटरसाइकिल से तैयार की गई मां आदिशक्ति की विशाल आकृति। 10 दिनों की तैयारी के बाद 75 प्रीमियम बाइक से बनाई गई मां आदिशक्ति की आकृति। ड्रोन से शानदार तस्वीरें निकल ली। अमेरिका के न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर दुर्गा उत्सव की धूम। फादर डफी स्क्वायर पर 2 दिवसीय आयोजन में उमड़े प्रवासी भारतीय। पूजा पाठ महालया की रस्मों संगीत और नृत्य ने बांधा समा। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में भारतीय संस्कृति के रंग। दूसरे दुर्गा उत्सव में बच्चों और युवाओं ने शानदार प्रस्तुतियां दी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में अनोखा दुर्गा पूजा पंडाल बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। नेवारी गुड़ में गांव में 117 देवी देवताओं की झलक ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। कवर्धा के नेवारी गुड़ गांव में दुर्गा पूजा के लिए भव्य पंडाल सजाया गया। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्थित श्री रंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर में नवरात्रि उत्सव की शुरुआत। नवरात्रि के रंग में रंगा तमिलनाडु के प्रसिद्ध श्रीरंगम मंदिर में पूजा अर्चना का दौर। कोलकाता के एलन पार्क में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संथाली संघ दुर्गा पूजा पंडाल में उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल के नादिया में कमलपुर अभियान, नासंग की दुर्गा पूजा बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। नादिया में दुर्गा पूजा के साथ सेवा और सहयोग की मिसाल, करीब 4,000 महिलाओं को वस्त्र वितरित किया गया। बेंगलुरु के कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दशहरा और नवरात्रि समारोह की शुरुआत। उत्सव के जरिए भारतीय संस्कृति और परंपराओं की शानदार झलक, ढोल लगाड़ों की थाप पर थिरके लोग। तमिलनाडु की यूटी में नवरात्रि की अनोखी छठा, ब्रह्मा कुमारी संस्था ने अपनी 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गोलू प्रदर्शनी का आयोजन किया। गुजरात के खेड़ा में नवरात्रि के तीसरे दिन मां अंबा की विशेष आरती। नवरात्र उत्सव पर एनआरआई परिवार 10 दिनों तक गांव में रहकर करते हैं मां अंबा की आराधना। सलूड़ गांव की बेटियों ने मणिपुर वेशभूषा में दिखाई मां अंबा की आरती करके भारतीय संस्कृति की विविधता। मां अंबा की आरती करने के लिए बेटियों ने कई सप्ताह तक किया है अभ्यास। बेटियों ने युवाओं से सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की अपील की, कहा आधुनिक पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपरा पर गर्व। प्रयागराज की रामलीला में अभिनेता गौतम त्रिपाठी निभा रहे हैं भगवान विष्णु की भूमिका, श्रवण कुमार का भी निभा चुके हैं किरदार। प्रयागराज के गौतम त्रिपाठी ने फिल्म हनुमान अंश में बाबा नीब करौरी के भक्त राधेश्याम का किरदार निभाया। झांसी में नवरात्रि के मौके पर सीजन का पहला गरबा डांडिया कार्यक्रम का आयोजन, करीब 1,000 महिला पुरुषों ने पारंपरिक परिधानों में नृत्य किया। छोटी छोटी बच्चियों की आरती के साथ कार्यक्रम की हुई शुरुआत। प्रतिभागियों ने भक्ति संगीत और नृत्य से बांधा समय भक्ति गीतों पर जमकर झूमे लोग। गुजरात के राजकोट में नवरात्रि के दौरान क्षत्रिय राजपूत महिलाओं का अनोखा अंदाज, राजवी पैलेस में महिलाओं ने पारंपरिक तलवार रास का शौर्य दिखाया। राजवी पैलेस में क्षत्रिय राजपूत महिलाओं ने तलवार रास में बांधा समा। नवरात्रि में गुजरात के राजकोट में परंपरा और वीरता का संगम, राजवी पैलेस में राजपूत महिलाओं ने तलवारबाजी की। गुजरात के जामनगर जिला में जेल में नवरात्रि की धूम, जेल के चार दीवारी के भीतर कैदियों ने माता रानी की आराधना के साथ खेला रास गरबा। नवरात्रि के रंग में रंगा जामनगर जिला का जेल परिसर। बिहार के बेगूसराय में स्थित है देश का सबसे ऊंचा दुर्गा मंदिर, मान्यता है कि यहां पर रापीहड सिद्धपीठ बकरी दुर्गा मंदिर में दर्शन से पूरी होती है हर मुराद। 11 मंजिल और 221 फीट ऊंचा है बेगूसराय का यह दुर्गा मंदिर। राजकोट के लघु चित्र कलाकार और शिक्षाविद निकुंज बागड़िया ने दुनिया की सबसे छोटी हनुमान चालीसा बनाने का दावा किया। 21 पन्नों वाली हनुमान चालीसा का वजन 1 ग्राम है और आकार 10x40 mm। विमान हादसा टालकर 180 लोगों की जान बचाने वाले कैप्टन स्मिथ मच्छार को ये गिफ्ट करना चाहते हैं। अयोध्या में इस साल भी दीपोत्सव पर नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है, इस साल 30 लाख दीपक जलाने की योजना है। आगामी त्योहारों को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस सतर्क मोड में, लखनऊ जोन के एडीजी प्रवीण कुमार ने अयोध्या में तैयारियों का जायजा लिया। असम के नाहर कटिया और आसपास के इलाकों में युवाओं को मिली बहुउद्देशीय खेल परिसर की सौगात। क्रिकेट ग्राउंड, तैराकी पूल, फुटबॉल ग्राउंड और एथलेटिक्स की सुविधाओं से लैस है नाहर कटिया खेल परिसर। इंदौर में भारत वेस्टइंडीज T20 मैच के बाद नगर निगम ने चलाया विशेष सफाई अभियान, 3 दिन की सफाई में निकले सूखे कचरे को किया रिसाइकल। आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए अच्छी खबर, IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार को लेकर भरोसा जताया। भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर IMF का बड़ा अनुमान, साल 2026-27 में 7% की रफ्तार से बढ़ सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था। त्यौहारों में मिठाई खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से मिठाइयों पर यूज बाय डेट लिखना अनिवार्य। उत्तर प्रदेश सरकार के मिलावट रोकने और ग्राहकों की सेहत सुरक्षित करने के लिए जोर। उत्तर प्रदेश में मिठाई की गुणवत्ता को लेकर निगरानी होगी और सख्त। तमिलनाडु के रामेश्वरम में हॉकी का रोमांच, पहली बार राज्य स्तरीय 7A साइड हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन। मुकाबलों को लेकर खिलाड़ियों उत्साह, जबरदस्त खिलाड़ियों के मैदान पर दमखम दिखाया। पुंछ में थ्रोबॉल टूर्नामेंट का भव्य संपन्न हुआ आयोजन, 9 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया। गया में CUSB के 5वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने 61 छात्रों को सम्मानित किया। बस्ती पहुंचा 308 पहिए वाला बाहुबली ट्रक, दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस ने सुरक्षा तैयारियों के लिए मॉक ड्रिल की, जवानों ने सुरक्षा को बरखा। पुलिस ने किसी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की, सुरक्षा टीमों के बीच बेहतर समन्वय और त्वरित कार्रवाई की तैयारियों को परखा। पुलिस ने लोगों से मॉक ड्रिल के दौरान सहयोग करने की अपील भी की। अजमेर में महाराजा अग्रसेन की जयंती पर भजन कीर्तन आयोजन, भक्ति गीतों पर जमकर झूमे लोग। हैदराबाद में पिता और बेटी के लिए देवदूत बनी RPF कांस्टेबल रीना, ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री का पैर फिसला, जवान ने जान बचाई। देश में पहली बार लगा स्वदेशी अर्ली वार्निंग सिस्टम, 2 घंटे पहले मिलेगी आपदा की चेतावनी। CBRI रुड़की की 9 सदस्यीय टीम ने विषम परिस्थितियों में हासिल की बड़ी सफलता। महाराष्ट्र के लातूर में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन स्कूल के छात्र छात्राओं ने महानायक अमिताभ बच्चन को दिया अनोखा तोहफा। बच्चों ने 2400 स्क्वायर फीट इलाके में 5 अलग अलग तरह के 600 किलो फूल से बनाई अमिताभ बच्चन की तस्वीर। स्कूली बच्चों, कर्मचारियों और विशेषज्ञ कलाकारों ने 4 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद कलाकृति तैयार की। प्रयागराज में गरीबों को मिलेगा अपना पक्का आशियाना, माफिया तीख के गढ़ में बनेगा पद्म आवास। प्रयागराज के चकिया में अतीक के घर के पास 602 फ्लैट की आवासीय सोसाइटी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और कुंगडूरी और अफरवत इलाके में हुई मौसम की पहली बर्फबारी। पतझड़ के रंग में नजर आए गुलमर्ग पहुंचे थे कई सैलानी, अचानक बर्फबारी से खुश हुए। बर्फबारी ने बढ़ाई कश्मीर घाटी की सुंदरता, पहाड़ियों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से गिरा तापमान। कश्मीर के पूट पथरी इलाके में ताजा बर्फबारी से पहाड़ों का बदल गया नजारा, सफेद बर्फ से ढकी हुई हैं वादियां। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद बदल गया मौसम का मिजाज, तापमान गिरने की बढ़ी ठंड। बर्फबारी के बाद सैलानियों से गुलजार हुआ गुलमर्ग, बर्फबारी के बीच पर्यटकों ने मौज मस्ती की। जम्मू कश्मीर के गुरेज में पुलिस ने जदकुसी में फंसे 4 बाइकर्स का रेस्क्यू किया। गुरेज में पीर बाबा इलाके में बर्फबारी की वजह से दमकल विभाग की गाड़ी सड़क से फिसली। फिल्म रजनी द जेलर 2 का ट्रेलर हुआ आउट, 15 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म। रश्मिका मंदना और विजय देवरकोंडा ने अपनी फिल्म रणबाली की रिलीज से पहले मुख्यमंत्री विजय से मुलाकात की। तिरुपति बालाजी के दरबार में पहुंचे विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदना, भगवान वेंकटेश के दर्शन किए। सैफ अली खान ने इंस्टाग्राम पर पटौती लाइब्रेरी की दिखाई झलक, कैप्शन में लिखा पटौती लाइब्रेरी। फिल्म गाड़ी का धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में होगा प्रीमियर, 29 अक्टूबर से महोत्सव की होगी शुरुआत। चिली के स्की रिजॉर्ट में बर्फबारी का अनोखा नजारा, अक्टूबर के मध्य तक जोरदार बर्फबारी। चिली में बर्फबारी ने बढ़ाया स्कीइंग का रोमांच। चिली में मौसम का बदल गया मिजाज, बसंत के मौसम में भी पहाड़ों पर जमकर गिर रही है बर्फ। अक्टूबर में स्कीइंग का मौका मिलने से पर्यटकों के चेहरे खिले। चिली के पर्यटन क्षेत्र में व्हाइट बूम, समुद्र तल से करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर पर्यटक वसंत में भी ले रहे हैं स्कीइंग और बर्फीली गतिविधियों का आनंद। सीजन के आखिरी दौर में हुई भारी बर्फबारी ने पुराने रिकॉर्ड्स पीछे छोड़ दिए। सीजन लंबा चलने से स्की स्पोर्ट्स का कारोबार भी बढ़ा।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
8: नारियल के प्रयोग से जीवन में कैसे संपन्नता आएगी, नारियल के प्रयोग से खराब ग्रहों से छुटकारा कैसे मिलेगा और नारियल के प्रयोग से बड़ा कष्ट कैसे कट जाएगा, जानिए नवरात्रि में नारियल के प्रयोग मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
6: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
7: नवरात्र में मां दुर्गा के पंडाल बने आकर्षण का मुख्य केंद्र, पुरुलिया में टेराकोटा के पंडाल ने खींचा सभी का ध्यान, हावड़ा में देखने को मिली केदारनाथ धाम की झलक। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर मां ब्रजेश्वरी के दरबार में पहुंची कथावाचक जय केशवरी, पूजा अर्चना के साथ माता का आशीर्वाद। देश में पहली बार चमोली जिले में वसुंधरा ताल में लगा अर्ली वार्निंग सिस्टम, 2 घंटे पहले मिलेगी आपदा की चेतावनी, स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा और इजाफा, पहला स्वदेशी मल्टी पर्पस वेसल समर्थक 16 अक्टूबर को कारवार में होगा कमीशन। कश्मीर की गुरेज घाटी में लगातार बर्फबारी का दौर, गुलमर्ग और सोनमर्ग में भी बिछी बर्फ की सफेद चादर, सड़कों पर फिसलन, सैलानियों से सावधानी बरतने की अपील।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं, ऐसे में नारियल का खास तौर पे प्रयोग होता है पूजा में। जी हाँ, नवरात्र में नारियल के चमत्कारी प्रयोग क्या है उस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: अगर आपके स्वास्थ्य के लिए कोई खराब दशा चल रही है, कोई प्रतिकूल दशा चल रही है जिसमें आपकी सेहत बिगड़ सकती हो या खराब हो सकती हो, तो नियमित रूप से दोनों समय देवी कवच का पाठ करें। इसको दुर्गा कवच भी कहते हैं। कितना भी खराब वक्त आपके स्वास्थ्य के लिए चल रहा हो, अगर आप निरंतर देवी कवच का पाठ करेंगे तो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं से बचे रहेंगे।
0: और आइए अब जान लेते हैं 14 अक्टूबर 2026 यानी कि बुधवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 14 अक्टूबर 2026 दिन बुधवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और आइए अब जान लेते हैं पंडित जी से नारियल का फल धार्मिक रूप से इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है।
1: आज हम आपको बता रहे हैं कि नारियल का प्रयोग अगर आप नवरात्रि में करें या सामान्य जीवन में मुश्किलों के आने पर करें, तो नारियल के प्रयोग से

नारियल का जल, नारियल की गिरी और नारियल का खोल, तीनों का पूजा में अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। नारियल के फल का प्रयोग अन्य

0: करने के लिए जरूरी है।
1: तो आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं नारियल की, तो आइए जानते हैं प्रयोग या पूजा के लिए हमें किस प्रकार का नारियल लेकर आना चाहिए और किस प्रकार का नारियल होना चाहिए।
0: देखिए, अगर आप नारियल का प्रयोग करना चाहते हैं या नारियल के फल से पूजा करना चाहते हैं तो किस प्रकार का नारियल होना चाहिए। नारियल भूरे रंग का, ब्राउन कलर का होना चाहिए। इसके अंदर गिरी और जल दोनों होना चाहिए। प्रयोग करने के पहले इसकी जटाओं को हटा लेना चाहिए। हालांकि अगर आप कलश पर नारियल रखेंगे तो उसको जटाओं के साथ रखेंगे, लेकिन अगर आप नारियल तोड़ेंगे तो तोड़ने के पहले इसकी जटाएं हटा ली जाएंगी।
1: और अब जानेंगे आज के राशिफल के बारे में, तो चलिए जान लेते हैं जिन लोगों की राशि है मेष, वृष और मिथुन, क्या कहता है उनका राशिफल।
0: मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, सेहत गड़बड़ है, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार की समस्या हल होगी, किसी मंगल कार्य में व्यस्त रहेंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, करियर में सफलता मिलेगी, किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और आइए अब जानते हैं कि नारियल का सामान्यतः नवरात्रि में हमें किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए।

0: हैं कि सामान्य रूप से नारियल का नवरात्रि में किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा। देखिए, नवरात्रि में किसी भी दिन एक नारियल ले लीजिए, इसको चारों तरफ से रक्षा सूत्र से बांध लीजिए या इसको कलश के मुख पर रख दें या देवी के चरणों में रख दीजिएगा। पूरी नवरात्रि इसको वहीं पर रहने दीजिएगा और जब नवरात्रि समाप्त हो जाए तो दशमी तिथि पर इसको तोड़ करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। ये प्रसाद बड़ा अद्भुत होगा और इसको ग्रहण करने से आपके मन की, आपके शरीर की मुश्किलें दूर हो जाएंगी।
1: और अब जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के राशिफल के बारे में।
0: कर्क राशि, करियर में आपको लाभ होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, देवी को हरी इलायची अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन का लाभ होगा, परिवार की समस्या हल होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और शो में अब वक्त हो गया आज के सवालों को और उनके जवाब देने का, तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से ही कि आज का पहला सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी, आज का पहला प्रश्न राधा श्याम मंडल जी ने हमें लिखा है, पश्चिम बंगाल से लिखते हैं। 30 अक्टूबर 1967 का जन्म है, 2:52 दोपहर में, मिदनापुर पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मैं कर्ज में डूबा हुआ हूं, कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी। राधा श्याम जी, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और कन्या राशि की, महादशा शनि की और अंतर दशा बुध की, चल रही है। सबसे पहले मैं कहूंगा कि जून 2027 तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि आपके स्वास्थ्य का मामला बहुत बेहतर नहीं दिखाई दे रहा है। अगले साल अक्टूबर के बाद आपका स्थान परिवर्तन होगा, उसके बाद स्थितियां बेहतर होंगी और धीरे धीरे आप अपने कर्जे चुका पाएंगे। साल 2028 में कर्ज चुक जाने की संभावना बन रही है। एक मूंगा बनवा के पहन लें, 8-10 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और प्रार्थना करें तो आपको लाभ होगा।
1: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से उसका जवाब, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। हमें सवाल भेजने के लिए हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और इसी के साथ अब वक्त हो गया आज के दूसरे प्रश्न का, तो जानेंगे पंडित जी से आज का दूसरा प्रश्न वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी अगला प्रश्न दविंदर पाल जी ने रामपुर से लिखा है। 4 अक्टूबर 1991 का जन्म है, 1:10 AM रामपुर उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरे पहला शादी का डिवोर्स हो गया है, लेकिन कुछ मामले अभी उसमें चल रहे हैं, तो पूरी तरह से छुटकारा कब तक मिलेगा, दूसरा विवाह कब तक होगा और भविष्य में करियर कैसा रहेगा। दविंदर जी, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और कर्क राशि की, महादशा शुक्र की और अंतर दशा केतु की चल रही है। जून 2027 तक आते आते आपको पहले विवाह के मुकदमों से, विवादों से छुटकारा बड़ी आसानी से मिल जाएगा और 2028 के आरंभ में आपकी दूसरी शादी होगी। लेकिन निवेदन ये है कि आप जब भी दूसरी शादी भी करिएगा तो उसमें कुंडली एक बार मिला लीजिएगा। फिलहाल एक मोती बनवा के पहने, 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए जान लेते हैं कि नारियल के प्रयोग से अपनी खराब ग्रह दशाओं से आप कैसे बच सकते हैं।
0: अब आपको बताते हैं कि अगर आपकी कोई खराब ग्रह दशा चल रही हो, अगर कोई ग्रह आपको पीड़ा दे रहा हो, तो नारियल के प्रयोग से अपनी खराब ग्रह दशा से कैसे बचेंगे। नवरात्रि में किसी भी रात को एक नारियल ले लीजिएगा, इसको अपनी गोद में रख करके नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर, नारियल को अपनी गोद में रख करके देवी के सामने बैठिएगा और इसके बाद एक विशेष मंत्र है, इस मंत्र का 1 माला, 3 माला, 7 माला या 11 माला जप करिएगा। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुस्वप्न प्रदर्शने, शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुस्वप्न प्रदर्शने ग्रह पीड़ासु चोग्रासु महात्म्य श्रुणुयान मम। ग्रह पीड़ासु चोग्रासु महात्म्य श्रुणुयान मम। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का 16वां श्लोक है। एक माला या 3 माला कम से कम पढ़िएगा और इसके बाद देवी से ग्रह शांति की प्रार्थना करिएगा। अगले दिन सुबह सुबह इस नारियल को बहते जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा नवरात्रि में एक रात को भी कर लेते हैं तो आपको खराब ग्रह दशाओं से बड़ी आसानी से छुटकारा मिल जाएगा।
1: और आइए जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
0: तुला राशि, सेहत आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। जल्दबाजी में काम करने से बचिए। देवी को हरी इलायची अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मानसिक समस्या हल होगी। करियर में लाभ के योग हैं। परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन खर्च पर ध्यान दें। परिवार में अशांति से बचाव करें। हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और चलिए अब जानेंगे पंडित जी से कि नवरात्रि में नारियल के प्रयोग से संतान प्राप्ति का उपाय कैसे मिल सकता है।
0: आप नवरात्रि में नारियल का प्रयोग करके संतान की प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो नवरात्रि में नारियल का प्रयोग संतान प्राप्ति के लिए कैसे करें। नवरात्रि में किसी भी रात को पति पत्नी एक साथ देवी को नारियल अर्पित करें। नारियल पर रक्षा सूत्र बांध लें और उसको पीली चुनरी में रखकर देवी को अर्पित करिएगा। अर्पित करने के बाद पति पत्नी एक साथ संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें, नवरात्रि भर इस नारियल को देवी के सामने रहने दीजिएगा और नवरात्रि के बाद इसको पीली चुनरी में ही बांधकर अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में रख लीजिएगा। जब आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी तब चुनरी में से नारियल निकालकर जल में प्रवाहित कर दीजिएगा।
1: तो चलिए अब जानते हैं कि नवरात्रि में किसी भी तरह के तंत्र मंत्र को काटने का उपाय क्या है।
0: बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरे ऊपर नजर दोष है, मेरे ऊपर तंत्र मंत्र है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो नवरात्रि में आप इसको भी समाप्त कर सकते हैं। कैसे? एक सूखा नारियल ले लीजिए, नारियल का गोला, बहुत लोग उसको गोला ही कहते हैं, तो एक सूखा नारियल गोले वाला ले लें, इसको ऊपर से थोड़ा सा काट कर ढक्कन की तरह निकाल लें। अब इसके अंदर चीनी भरकर वही ढक्कन जो नारियल का थोड़ा टुकड़ा निकाला था वही वापस लगा दें। इसको किसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर सीधा रखकर दबा दीजिएगा। मिट्टी के अंदर रहने से चींटियां और कीड़े धीरे धीरे इसको खाते जाएंगे और वो जैसे जैसे इसको खाते जाएंगे आपको नकारात्मक ऊर्जा से, तंत्र मंत्र से, निगेटिव एनर्जी से छुटकारा मिलेगा।
1: और शो में इसी के साथ वक्त हो गया आज के अंतिम राशिफल को जानने का। तो चलिए जान लेते हैं जिन लोगों की राशि है मकर, कुंभ और मीन, क्या कहता है उनका राशिफल।
0: मकर राशि, करियर की समस्या आपकी हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, मानसिक चिंता दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, खान पान में सावधानी रखें, देवी को हरी इलायची अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से आज का तीसरा प्रश्न, उन्हें कहां से और किसने भेजा है।
0: जी अगला प्रश्न हमें अनिल कटारिया ने लिखा है और अनिल कटारिया जी हमें मेरठ से मेल लिखते हैं। 18 जनवरी 1960 का जन्म है। 5:05 प्रातः मेरठ उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं विवाह करना चाहता हूं, अगर मैं अब विवाह करूं तो विवाह कैसा रहेगा और मेरा स्वास्थ्य भविष्य में कैसा रहेगा। अनिल जी आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और सिंह राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतर दशा राहु की चल रही है। देखिए बिल्कुल आप विवाह कर सकते हैं, आपकी कुंडली में विवाह की संभावनाएं बनती हैं, लेकिन विवाह आपके लिए एवरेज ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि विवाह से जीवन में बड़ा आनंद बड़ा सुख आ जाएगा, कुल मिला जुला के काम चलाऊ एवरेज स्थिति बनी रहेगी। दूसरा, किडनी का, यूरिन का, प्रोस्टेट का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आने वाले समय में साल 2027 में आपके स्वास्थ्य का मामला अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। भविष्य बेहतर हो, जीवन में चैन सुकून से रह सकें, एक मूंगा बनवा के पहनिए। लगभग 12-14 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहने। रोज शाम को एक बार काल भैरव अष्टक या तो पढ़ें या तो सुनें तो जीवन बेहतर होगा।
1: गुडलक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम प्रश्न का, तो जानेंगे पंडित जी से ही आज का अंतिम और चौथा प्रश्न वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी अगला प्रश्न रमेश जी ने देहरादून से हमें लिखा है, अपने भतीजे के बारे में जानना चाहते हैं। इनके भतीजे की जन्म तारीख है 24 अगस्त 1992, 4:25 शाम को देहरादून उत्तराखंड। ये कह रहे हैं कि मेरे भतीजे की तबीयत बहुत खराब रहती है और स्वास्थ्य की वजह से उसकी पढ़ाई भी छूट गई है, तो भविष्य में वो क्या करे और स्वास्थ्य कैसे बेहतर होगा। रमेश जी आपके भतीजे की कुंडली बनती है धनु लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा शनि की और अंतर दशा मंगल की चल रही है। देखिए पहली बात ये है कि इनको डाइजेशन का भी ध्यान रखना है और अपनी मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखना है, क्योंकि इनकी ज़्यादातर जो समस्याएं हैं वो साइकोलॉजिकल हैं, वो मानसिक हैं। दूसरी बात ये है कि बहुत पढ़ाई पे फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, इनको किसी व्यापार की तरफ, खाने पीने का, कपड़े का, कॉस्मेटिक्स का, ऐसे किसी व्यापार की तरफ अगर आप इनको ले जाएं तो इनके लिए काफ़ी बेहतर होगा। बेहतर स्वास्थ्य और जीवन के लिए इनको एक माणिक्य बनवा के पहना दें। 8-9 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को सवेरे माणिक्य इनको पहनाएं और इनको बोलिए कि रोज सुबह शाम एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें या राम रक्षा स्तोत्र सुने तो उससे काफी फर्क पड़ेगा।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जान लेते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।

0: 14 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, करियर में लाभकारी परिवर्तन होगा, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, अविवाहितों के विवाह में विलंब हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर गणेश जी की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और इसी के साथ वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या देवी की उपासना में देवी को सिंदूर अर्पित करना आवश्यक है? सामान्यतः महिलाएं देवी को हमेशा सिंदूर अर्पित कर सकती हैं। जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा हो, उनको नवरात्रि में देवी को सिंदूर अवश्य अर्पित करना चाहिए। पुरुष किसी भी हाल में देवी को सिंदूर अर्पित नहीं करेंगे।
1: और अब वक्त हो गया शुभ पहर के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं 14 अक्टूबर 2026 यानी कि बुधवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 14 अक्टूबर 2026 दिन बुधवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में देवी को, माता को हरी इलायची अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की और आपके मन की चिंताएं दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 14 अक्टूबर बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
1: और गुडलक में अब जानेंगे आज की गुडलक राशि के बारे में, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की शिक्षा कैसी रहती है। आज की गुडलक राशि है मकर। आरंभ में देखा गया है कि इनकी शिक्षा में समस्या आती है, लेकिन आगे चल करके बाद में इनको लाभ होता है। अगर आपकी राशि मकर है तो अच्छी शिक्षा के लिए आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए।
1: और इसी के साथ हम पहुंच गए गुडलक के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी हमें रोज एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपका छोटा बच्चा है, उसकी सेहत बार बार बिगड़ रही है या उसको बार बार चोट लग जाती है, तो क्या करेंगे? नवरात्रि में किसी भी दिन देवी को एक छेद वाला तांबे का सिक्का अर्पित करेंगे। इसके बाद देवी के मंत्र का ओम दुं दुर्गाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इसके बाद सिक्के को लाल धागे में डाल करके बच्चे के गले में, जिसको बार बार सेहत की दिक्कत होती है या चोट लगती है, उसके गले में पहना दीजिएगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात गरबे के रंग और उमंग की। नवरात्र के 9 दिनों में देश भर में गरबे का उत्साह नजर आता है। वैसे तो अब अलग अलग राज्यों में शहर शहर गरबा आयोजन होने लगा है, लेकिन गरबे की उमंग का सबसे गाढ़ा रंग चढ़ता है गुजरात में। हर बार की तरह इस बार भी गुजरात से गरबा की शानदार तस्वीरें आ रही है। गुजरात में नवरात्रि की भक्ति के साथ गरबा की मस्ती खुली मिलती है। जामनगर में अंगारों के बीच मां दुर्गा की आराधना करते गरबा प्रेमियों का उत्साह देखने लायक है। इसी तरह राजकोट की वीरांगनाएं तलवार रास के माध्यम से महाअंबे की आराधना कर रही है। तो वही वडोदरा में गरबा का राजसी अंदाज नजर आया। वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में वो अद्भुत दृश्य था। हजारों लोग एक साथ गरबा की ताल पर झूम रहे थे। ऐसी कितनी ही तस्वीरें इस समय गुजरात के अलग अलग शहरों से लगातार आ रही है। तो चलिए जीएनटी पर नवरात्रि के इस उत्सव को बनाते हैं कुछ और खास और आपको दिखाते हैं गुजरात में नवरात्र के दौरान सजे गरबा की नौ रंग।

शहर सभी है एक, क्या सूरत क्या भोपाल, नवरात्रि का रंग वहीं जमे जहां मिले गरबे की ताल से ताल। वैसे तो नवरात्रि की धूम पूरे देश में है, लेकिन गुजरात जैसी रौनक कहीं और नहीं। चाहे राजकोट हो, वडोदरा, जामनगर या फिर खेड़ा, हर शहर गरबा और डांडिया।

0: भवानी की भक्ति में ये शक्ति की हुंकार है। माँ अम्बे के आंगन में ये श्रद्धा, शौर्य और साहस का संगम है। हाथों में लहराती तलवार, अपने अपने वाहन पर सवार, गुजरात के राजकोट में राजपूत समाज की महिलाओं और बच्चियों ने राजपूताना पोशाक में तलवार के साथ गरबा कर भक्ति और शक्ति की अनोखी तस्वीर पेश की। किसी ने चलती हुई कार पर तलवार के साथ गरबा किया, किसी ने स्कूटर पर सवार होकर तलवार का जौहर दिखाया। रफ्तार भरते हुए अस्त्र शस्त्रों का कौशल दिखाती ये वो छत्राणियां हैं जिन्हें वीरता का गुण विरासत में मिला है।
1: हम यहाँ गणेश चतुर्थी से लेकर यानी कि एक डेढ़ महीने से हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये हमारी राजपूती कल्चर है, जो राजपूती संस्कृति है उनको प्रदर्शित करता है। राजपूती संस्कार जो हमारी दिकरियों में होते हैं उनको यह दर्शाता है, शौर्य, वीरता और जो जो इतिहास में गाथाएं लिखी गई है उसको बखूबी यहाँ पे प्रस्तुत करता है।
2: 12 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की दादी माँ या नानी माँ जिसे कह सकते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और साथ में 200 जितनी सन्नारियाँ हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो अभी हम यहाँ प्राचीन रस और तलवार रस विविध प्रकार के रजू करने वाली है।
3: भगनी सेवा फाउंडेशन की महिलाएं ये कार्यक्रम करती हैं और पूरा संचालन महिलाओं द्वारा किया जाता है, इसकी पूरी व्यवस्था महिलाएं करती हैं, ट्रेनिंग महिलाएं देती हैं।
0: ये अगली तस्वीर है गुजरात के ही जामनगर, दहकते अंगारे और उन पर नंगे पैर रास, इसे कहते हैं अंगारा रास। आग के बीच कदमों की ये लय लोगों को हैरान कर देती है। जामनगर में पिछले 80 सालों से नवरात्र के दौरान ये अद्भुत परंपरा निभाई जा रही है। वक्त बदला, गरबा का रंग और अंदाज बदला, लेकिन जामनगर की इस गरबी ने अपनी पुरानी पहचान नहीं छोड़ी। पीढ़ी दर पीढ़ी, बुजुर्गों से युवाओं तक ये परंपरा यूं ही सहेजी जाती रही और इसी परंपरा का हिस्सा है यहाँ होने वाला मशाल रास, जहाँ लोग हाथों में जलती मशालें लेकर ढोल की थाप पर झूमते हैं। मशाल रास माँ अम्बे की आराधना का अनोखा माध्यम है। माँ की भक्ति, लोक संस्कृति का रंग और खुद में 80 साल की विरासत को समेटे जामनगर की ये गरबी जो देखता है हैरान रह जाता है। अब आपको दिखाते हैं जामनगर में ही खेला जा रहा एक और अनोखा गरबा। जामनगर का श्री आशापुरा गरबी मंडल पिछले 88 सालों से यहाँ अठंगा रास का आयोजन कर रहा है। गरबा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा पारंपरिक रास है, जिसे रस्सियों की मदद से खेला जाता है। गरबा के इस रूप को गोप गुठन रास और कान गोपी रास के नाम से भी जाना जाता है। इस रास में मंडल के 16 सदस्य रस्सियों के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तालमेल और अनुशासन के साथ होने वाली ये प्रस्तुति अनोखी होती है। रास की अनूठी शैली और कलाकारों के बीच शानदार समन्वय दर्शकों को मंत्रमुग्ध

कर देता है। मंडल के सदस्य हर साल पूरे उत्साह और श्रद्धा भाव के साथ इस गरबी में भाग लेते हैं और पारंपरिक रास के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाते हैं। नई पीढ़ी को भी इन प्राचीन परंपराओं से जोड़ने का निरंतर प्रयास किया जाता है ताकि आने वाले समय में भी ये सांस्कृतिक धरोहर जीवित रहे। आपको बता दें कि जामनगर का आशापुरा गरबी मंडल पारंपरिक अठंगा रास के साथ साथ तलवार रास की विशेष प्रस्तुति भी देता है। यहाँ बालिकाएं और युवतियाँ पूरे उत्साह के साथ तलवार लेकर गरबा खेलती हैं और माँ आद्या शक्ति की ये अद्भुत आराधना करती हैं। तलवारों के साथ किया जाने वाला ये रोमांचक प्रदर्शन केवल एक नृत्य नहीं बल्कि साहस, वीरता, शौर्य और भक्ति का जीवंत प्रतीक है। इस प्रस्तुति के माध्यम से सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा को हर साल दोहराया जाता है। आशापुरा गरबी मंडल में पिछले 45 वर्षों से नवरात्रि महोत्सव की ये परंपरा उत्साह और श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है। अठंगा रास और तलवार रास की ये परंपरा न केवल जामनगर बल्कि पूरे सौराष्ट्र और गुजरात में पारंपरिक गरबी की समृद्ध विरासत को सहेजने और आगे बढ़ाने में भूमिका निभा रही है।

चलिए गुजरात के ही खेड़ा, जहां शारदीय नवरात्र की धूम है, गरबा की गूंज है। खेड़ा में इन दिनों गरबा और डांडिया के बीच भारत के दो राज्यों की संस्कृति का सुंदर संगम दिख रहा है। खेड़ा के सलून गांव में बेटियों ने पारंपरिक मणिपुरी वेशभूषा में मां अम्बा की विशेष आरती की। इस अनूठी प्रस्तुति को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। गांव के मुख्य चौक में जब मणिपुरी वेशभूषा में सजी बेटियों ने मां अम्बा की आरती शुरू की तो माहौल भक्तिमय हो गया। मणिपुरी संस्कृति की झलक और मां जगदम्बा के प्रति अटूट श्रद्धा ने इस आयोजन को खास बना दिया।

0: चलिए गुजरात के ही वडोदरा, जहां गरबा महोत्सव की रौनक, सजावट और भव्यता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। ये शानदार तस्वीरें हैं वडोदरा के ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस में आयोजित हेरिटेज गरबा उत्सव की, जहां भारतीय और वैश्विक संस्कृति का संगम देखने को मिला। देशों के विदेशी मेहमान लक्ष्मी विलास पैलेस में हेरिटेज गरबा के साक्षी बने। रंग बिरंगे चनिया चोली और लहंगों में सजे विदेशी मेहमान यहां गरबे का लुत्फ उठाते दिखे।
1: सो इफ यू कैन स्पीक हिंदी, जस्ट टेल मी, कैसा लग रहा है आज आपको यहां पर?
2: बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बेस्ट।
3: It's incredible. Just look at the scale. We're at Lakshmi Villas Palace in Vadodara. We have tens of thousands of people dancing together as one, and then over behind us.
1: Are you enjoying the?
2: I love it. It's incredible.
1: So, have you ever been to this place?
2: No, never, never. And it is beyond words that we're experiencing. It's completely mind-blowing.
0: ढोल की थाप और रोशनी से जगमगाता पैलेस का प्रांगण पूरी रात भक्ति और उत्सव के रंग में रंगा रहा। पारंपरिक लोक गीतों पर लोग थिरकते रहे।
1: ये लाइव सिंगिंग म्यूजिक के साथ ही यहाँ पर गरबा होता है। यहाँ का प्रोटोकॉल है कि आप कोई भी कैसेट नहीं चला सकते हैं, कोई भी वीडियो नहीं दिखा सकते, आपको लाइव ही यहाँ पर सिंगिंग करनी होती है। ये पूरा प्रोटोकॉल है ताकि हमारी कल्चर संस्कृति को भी सहेजा जाए। और यहाँ तमाम जितने विदेशी डेलीगेट्स हैं, उन लोग को यहाँ लाने का मकसद भी यही है कि वो हमारी संस्कृति से रूबरू हो सकें। बिना देर गवाए एक राउंड गरबा का हो जाए।

0: इस इवेंट में 40,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ पारंपरिक गरबा किया और मां के चरणों में आस्था की जोत जलाई। जब एक साथ हजारों लोगों ने गरबा नृत्य किया तो वो नजारा अद्भुत था। सजे धजे सैकड़ों कलाकार एक साथ गरबा करने उतरे तो देखने वाले देखते रह गए। गरबा न हो मानो रंगों का उत्सव हो,
1: ऐसा खूबसूरत नजारा आप केवल वडोदरा में देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 40,000 लोग हैं जो यहाँ पर गरबा परफॉर्म कर रहे हैं, लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं। ये भी इसी का एक थीम रहता है जिसमें सबको बोला जाता है कि आप टॉर्च ऑन कीजिए, टॉर्च ऑन के साथ रिदम के साथ अपने ताल से ताल मिलाते हुए लोग यहाँ पर गरबा खेलते हैं। और अभी अगले 5 से 10 मिनट तक आपको बिल्कुल इसी तरह का नजारा देखने को मिलेगा जहाँ हर कोई अपनी धुन में मगन है, केवल उनको सुनाई दे रहा है तो म्यूजिक, और म्यूजिक के साथ अपना मोबाइल ऑन और उसके साथ लोग लगातार थिरकते जा रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस से देखिए।
0: वास्तव में गरबा देवी दुर्गा की आराधना के साथ साथ भारतीय संस्कृति को संजोने और सहेजने का एक उत्सव भी है जो लंबे समय से भारतीय परंपरा का हिस्सा रहा है। और संस्कृति की यही भव्यता लक्ष्मी विलास पैलेस के प्रांगण में नजर आई।
1: आज यहाँ पे बहुत सारे विदेशी डेलीगेट्स भी हैं जो यहाँ पर इसका हिस्सा बन रहे। कितने गर्व की बात है वडोदरा के लिए, आपके लिए, राजघराने के लिए।
2: बहुत ही गर्व की बात है कि विश्व भर से लोग इतने इम्पोर्टेंट डेलीगेट्स बड़ोड़ा आए हैं। एज अ बड़ोडियन आई फील वेरी प्राउड, एंड कि कल वो उन्होंने पैलेस देखा और आज वो हमारे गरबा में आए, तो आई एम वेरी हैप्पी।
1: मेहमान नवाजी करके अच्छा लग रहा है,
2: सॉरी आई कांट हियर यू।
1: मेहमान नवाजी करके अच्छा लग रहा
2: है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा।
1: एक संदेश जो यहाँ से रानी साहिबा पूरे देश को देंगी नवरात्रि का।
2: मैं नवरात्रि के पर्वोत्सव पे सबको खूब खूब बधाई देती हूँ एंड यही आशा करती हूँ, माँ से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा देश जुड़ा रहे और वी गेट स्ट्रॉन्गर।
0: गुजरात में शहर शहर इन दिनों गरबा की उमंग है और सिर्फ गुजरात ही क्यों, नवरात्र के दिनों में तो सारा देश ही गुजरात के साथ गरबा की ताल पर थिरकता नजर आ रहा है। राजकोट से रौनक मजीठिया, जामनगर से दर्शन ठक्कर, खेड़ा से हेताली शाह और वडोदरा से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और नवरात्रि के समय गरबा को लेकर उत्सुकता खूब दिखती है। जिसने कभी गरबा नहीं किया हो वो भी इन दिनों गरबा उत्सव में शामिल होने के लिए आतुर दिखता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि में गरबा की शुरुआत कैसे हुई और गरबा मुख्य रूप से नवरात्रि में ही क्यों किया जाता है, और आखिर क्यों गरबा परंपरा की शुरुआत को गुजरात से जोड़कर देखा जाता है? गुजरात को गरबे की विरासत आखिर कैसे मिली, आज जीएनडी स्पेशल में आपको सुनाते हैं कहानी गरबे के इतिहास की।

0: विषय पर ये परंपरा की ताल है। संगीत की रिदम और तालियों की थाप पर ये सदियों पुरानी संस्कृति की छाप है। गुजरात की मिट्टी पर थिरकते ये पांव देखने वालों के हृदय पर छोड़ते जाते हैं। गुजरात का गरबा संगीत और नृत्य का वो अनोखा संगम है जिसकी गोलाकार संरचनाओं में आनंद और उल्लास के साथ शक्ति उपासना का सागर भी हिलोरे लेता है। बल्कि देखा जाए तो गुजरात का गरबा वास्तव में मां भगवती की उपासना की सबसे जीवंत तस्वीर है। जो गरबा नृत्य परंपरा की जड़ों से परिचित नहीं है वे इसे महज एक डांस फॉर्म के रूप में जानते हैं और भारत के विस्तृत सांस्कृतिक मानचित्र का एक हिस्सा भर मानते हैं। एक बेहद सुंदर रंगों से सजा धजा हिस्सा, लेकिन वास्तव में गरबा इससे कई बढ़कर है। वास्तव में गरबा नारी की सृजन शक्ति को नमन करने का उत्सव है और इस उत्सव के केंद्र में होता है वो गर्भदीप जिसे आपने अक्सर गरबा नृत्य के केंद्र में देखा होगा। गोला बनाकर किए जाने वाले गरबा नृत्य के बीच में एक कलश रखा जाता है। गरबा के आयोजन में देवी की उपासना के साथ इस कलश को रखने की परंपरा है। इस कलश को गर्भदीप कहा जाता है और इसी गर्भदीप के गर्भ में छुपा है गरबे की परंपरा का सार।
1: 5000 साल से ज्यादा गरबा की परंपरा है। विक्रम संवत में 16 दिन जब श्राद्ध के संपूर्ण होते हैं और शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होता है, बारिश विदाई ले के न ले लेकिन शरद ऋतु आ जाती है। गरबा का अर्थ यही होता है, दीप गर्भ, गर्भ में मैं हूँ। गर्भ का अर्थ ये है कि छिद्र वाले घट में गरबा कहते हैं, यानी गर्भो भी कहते हैं।
0: आपको बता दें कि गरबा शब्द गर्भ और दीप से मिलकर बना है। नवरात्रि के पहले दिन मिट्टी के घड़े में बहुत से छेद किए जाते हैं जिसके अंदर एक दीपक प्रज्वलित करके रखा जाता है। इसके साथ चांदी का एक सिक्का भी रखते हैं। इस दीपक को ही दीप गर्भ कहा जाता है। आपको बता दें कि दीप गर्भ नारी की सृजन शक्ति का प्रतीक है और गरबा इसी गर्भ दीप का अभ्रंश रूप है। दीप गर्भ की परंपरा में कलश या घड़े को नारी के गर्भ का प्रतीक माना जाता है, तो वही इस कलश में रखा दीपक जीवन और विशेष कर गर्भ में पल रहे शिशु के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसी गर्भदीप के चारों ओर गोला बनाकर गरबा किया जाता है। ये गोला सर्कल ऑफ लाइफ यानी जीवन के चक्र का प्रतीक माना जाता है। वही जीवन चक्र जिसकी उत्पत्ति और संचालन का आधार स्वयं शक्ति है। इस तरह गरबा नृत्य नारी की प्रजनन क्षमता का उत्सव मनाता है, नारित्व का सम्मान करता है और मातृ देवियों के सभी 9 रूपों को नमन करता है।
1: दीप गर्भ को नारी शक्ति समन्वित कहते हैं कि गरबा का अर्थ ये है कि गर्भ का दीपक, पौराणिक मात्रा अनुसार के अनुसार कहा जा रहा है कि गर्भदीप स्त्री गर्भ का सर्जन शक्ति का प्रतीक होता है, सौभाग्य का प्रतीक होता है, शक्ति का प्रतीक होता है। गर्भदीप स्थापना महिलाओं के लिए समृद्धि लाती है और स्त्रियों अच्छे वस्त्र धारण करके माता दुर्गा की उपासना करती है और खूब फलदायी है।
0: दीप गर्भ की स्थापना के पास महिलाएं सुंदर और रंग बिरंगे कपड़े पहनकर माता शक्ति के आगे नृत्य कर उन्हें प्रसन्न करती हैं। गरबा नृत्य कई तरह से और कई चीजों के साथ किया जाता है। गरबे में महिलाएं और पुरुष ताली, चुटकी, डांडिया और मंजीरों का भी इस्तेमाल करते हैं। ताल से ताल मिलाने के लिए महिलाएं और पुरुषों का 2 या फिर 4 का ग्रुप बनाकर ये नृत्य किया जाता है। गरबे के नृत्य में मातृ शक्ति और कृष्ण की रासलीला से संबंधित गीत गाए और बजाए जाते हैं। गुजरात के लोगों का ये मानना है कि गरबा नृत्य माँ भगवती को बेहद प्रिय है, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए गरबे का नवरात्रि में खास तौर पर आयोजन किया जाता है।

नवरात्रि में गरबा और डांडिया खेलने की परंपरा कई सालों पुरानी है, लेकिन 60 और 70 के दशक तक गरबा गुजरात और राजस्थान जैसे पश्चिमी राज्यों में खेला जाता था। उन दिनों तक गरबे का रूप भी आज जितना भव्य और विशाल नहीं था। गांवों और शहरों में बेहद सादगी के साथ और सीमित स्तर पर गरबे का आयोजन होता था।

लेकिन धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ गरबा का विस्तार गुजरात की सीमाओं से निकलकर दूसरे राज्यों तक पहुंचने लगा। लोकप्रियता बढ़ी तो गुजराती सिनेमा के बाद मुंबई की फिल्मों ने भी अपने कैनवस में गरबा वाले गीतों के लिए जगह बनानी शुरू की।

की तरह गरबा की लोकप्रियता आगे बढ़ती चली गई। समय के साथ गरबा की बढ़ती ख्याति यूनेस्को तक भी पहुंची। साल 2023 में यूनेस्को ने इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी यानी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया। यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने के बाद गरबा की रौनक कुछ और बढ़ गई। अब देश के कई राज्यों में नवरात्रि पर्व पर गरबा का आयोजन किया जाता है। कई संस्थाएं और क्लब बेहद बड़े पैमाने पर पूरी भव्यता के साथ नवरात्र में गरबा का आयोजन करते हैं। कई जगहों पर गरबा प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। गरबा आयोजन के नए रिकॉर्ड बनते हैं। अब की बार भी शक्ति उपासना के उत्सव में गुजरात के साथ साथ सारा देश आस्था की इस अनुपम ताल पर झूम रहा है जिसे दुनिया गरबा नाम से जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

अमेरिका के न्यूयॉर्क में बहुत मशहूर जगह है टाइम्स स्क्वायर। सात समुंदर पार नवरात्र में यहां मां दुर्गा की भक्ति का रंग जमा हुआ है। बंगाली समुदाय के लोगों ने यहां पर दुर्गा पूजा के जरिए अपनी संस्कृति और परंपराओं का जश्न मनाया। दो दिन के इस उत्सव में पूजा पाठ के साथ संगीत, नृत्य और सम्मान समारोह हुआ।

0: दुनिया के सबसे चर्चित स्थानों में से एक न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर माँ दुर्गा के जयकारों से गूंज उठा। जहाँ कहीं पूजा अर्चना में जुटे श्रद्धालु दिखे, तो कहीं भक्ति गीतों पर थिरकते कलाकार नजर आए। सात समंदर पार माँ दुर्गा की आराधना में डूबे ये सभी श्रद्धालु भक्ति के साथ अपनी संस्कृति और परंपराओं के रंग बिखेरते नजर आए। आमतौर पर यहाँ चमचमाती स्क्रीन और लोगों की भीड़ नजर आती है, लेकिन इस बार नवरात्रि के मौके पर माहौल कुछ ऐसा बदला कि हर तरफ माँ की भक्ति के रंग नजर आने लगे। इस आयोजन में भक्ति के साथ अपनी जड़ों से जुड़े रहने का भाव भी नजर आया। भक्ति गीतों की धुन पर कलाकारों ने ऐसा समा बांधा कि दर्शक भी झूम उठे। बच्चों और युवाओं की प्रस्तुति ने उत्सव में चार चांद लगा दिए। प्रस्तुति में अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और परंपराओं को सहेजने की झलक दिखाई दी। वहीं कलाकारों की संगीतमय प्रस्तुति से हर कोई उत्सव के रंग में रंगा नजर आया। खास बात तो ये रही कि माँ दुर्गा की भक्ति में सिर्फ भारतीय समुदाय ही नहीं, विदेशी पर्यटक भी शामिल हुए और टाइम्स स्क्वायर में माँ दुर्गा की आराधना का ये उत्सव आस्था के साथ भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को भी बयां कर गया। न्यूयॉर्क से रोहित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: नवरात्र में माँ दुर्गा के पंडाल बने आकर्षण का मुख्य केंद्र। पुरुलिया में टेराकोटा के पंडाल ने खींचा सभी का ध्यान। हावड़ा में देखने को मिली केदारनाथ धाम की झलक। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर मां ब्रजेश्वरी के दरबार में पहुंची कथावाचक जयकेश्वरी, पूजा अर्चना के साथ माता का आशीर्वाद। देश में पहली बार चमोली जिले में वसुंधरा ताल में लगा अर्ली वार्निंग सिस्टम, 2 घंटे पहले मिलेगी आपदा की चेतावनी, स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा और इजाफा, पहला स्वदेशी मल्टीपर्पज वेसल समर्थक 16 अक्टूबर को कारवार में होगा कमीशन। कश्मीर की गुरेज घाटी में लगातार बर्फबारी का दौर, गुलमर्ग और सोनमर्ग में भी बिछी बर्फ की सफेद चादर, सड़कों पर फिसलन, सैलानियों से सावधानी बरतने की अपील।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राव शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं नवरात्र में मां के सभी स्वरूपों से मिलने वाले वरदान की। देश भर में नवरात्रि का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। तीसरे दिन आज मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की गई और बुधवार को मां कूष्मांडा की आराधना होगी। आपको बता दें कि नवरात्र में मां के हर रूप हर स्वरूप का अपना महत्व होता है। आज आपको मां के हर स्वरूप से मिलने वाले गुणों के बारे में समझाने जा रहे हैं और साथ ही साथ नवरात्र में सेहत और समृद्धि प्राप्त करने का उपाय भी बताएंगे। समझेंगे कि शरद ऋतु के इस मौसम में पूजा उपवास और व्रत से क्या फायदे होते हैं। इसके बाद आपको लिए चलेंगे कोलकाता, जहां पर हर साल की तरह इस बार भी भव्य और अद्भुत पंडाल बनाए गए हैं। कुछ पंडालों की थीम देखने वालों को दंग कर रही है, तो किसी की सजावट मंत्रमुग्ध करने वाली है। फिलहाल तीन तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आइए शुरुआत करते हैं नवरात्र में देवी के नौ स्वरूपों की पूजा और उससे हासिल होने वाले नौ वरदानों से। मां का हर स्वरूप ममतामयी है और मां अपने हर रूप में सुख समृद्धि शक्ति और भक्ति का आशीर्वाद देती है। लेकिन इसके अलावा मां के हर रूप में विशिष्ट गुणों का वर्णन मिलता है। मां की पूजा उपासना से ऐसे गुणों का वरदान मिलता है। अगर हम ऐसे गुणों को आत्मसात करें तो इससे हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। तो चलिए ज्योतिष के जानकारों से समझने की कोशिश करते हैं कि मां शैलपुत्री से लेकर मां सिद्धिदात्री तक मां का हर स्वरूप हमें क्या सिखाता है।

0: प्रथम शैलपुत्री च द्वितीया ब्रह्मचारिणी तृतीया चंद्रघंटेति कुष्मांडाति चतुर्कम्। पंचम स्कंदमाता ते षष्ठम कात्यानीति च सप्तमं कालरात्रि महागौरी अष्टमम्। नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतितय। नामने धामने एक ही आदि शक्ति पर स्वरूप अनेक। अपने नौ रूपों में माँ शक्ति भी है, भक्ति भी है, ममतामय है तो रौद्र भी है। कभी ज्ञान तप और त्याग की राह दिखाती है तो कभी अदम्य साहस का भी वरदान देती है। नवरात्र का महत्व भी इसीलिए है क्योंकि इसमें एक साथ माँ के सभी रूपों की पूजा अर्चना होती है। माँ के हर रूप के विशिष्ट गुण है जिनमें जीवन के लिए संदेश छिपा है। यानी माँ की हर रूप की पूजा अर्चना से सुखी जीवन का वरदान मिलता है। माँ का पहला स्वरूप है शैलपुत्री का, जो दृढ़ता और संकल्प का प्रतीक है। माँ का ये स्वरूप बताता है कि हमें अपने लक्ष्यों की ओर पूरे निश्चय और संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जबकि माँ का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी का, जो तप और अनुशासन का प्रतीक है। माँ का ये स्वरूप बताता है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए तप और अनुशासन ही एकमात्र रास्ता है।
1: जब हम शैलपुत्री की बात करें तो इनकी जो साधना या आराधना होती है वो हम सबसे मूलाधार चक्र से इसकी शुरुआत करते हैं। और इसका अगर आप बोलते हैं हमारे जन्म पत्रिका के हिसाब से देखें तो सूर्य, क्योंकि सूर्य सब चीजों की शुरुआत करता है। तो अगर हम शैलपुत्री की आराधना कर रहे हैं तो हम शुरुआत की आराधना कर रहे हैं, मतलब सूर्य की आराधना कर रहे हैं। और जब शुरुआत हम करते हैं तो हमारे अंदर सबसे ज्यादा जो चीज जरूरी होती है वो होता है स्ट्रांग इरादा। तो जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें पत्थर जैसी मजबूती और इरादा बहुत जरूरी है। तो शैलपुत्री के लिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं और हम मूलाधार पर ध्यान करते हैं। हम कुछ नहीं भी अगर कर सकते तो लम मंत्र का जाप करते हैं। अब जब हम नेक्स्ट आते हैं ब्रह्मचारिणी, ये 9 डेज में हम इवॉल्व होते हैं। इवॉल्व होने के लिए हर एक देवी के लिए हम एक एक चक्र को एक्टिवेट भी करते हैं और एक एक क्वालिटी अपने अंदर इम्बाइब करते हैं। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की, इरादा किया कि मुझे कोई काम करना है, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल। अब सेकेंड जब आई ब्रह्मचारिणी, तो ये शनि से रिलेटेड है और इसमें स्वाधिष्ठान चक्र को हम एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पे सेकंड चीज जो हमसे शनि चाहते हैं वो क्या चाहते हैं कि आपने पहले तो डिसीजन लिया कि हाँ हम कोई काम करेंगे, मजबूती से करेंगे। सेकंड में कठोरता और अनुशासन के साथ हमें लगातार मेहनत करनी होगी। ये इससे हम शनि को इम्प्रूव कर सकते हैं और ब्रह्मचारिणी के आराधना करके हम अपने अंदर इस क्वालिटी को ला सकते हैं।
0: उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, गांव, कस्बे, शहर, हर जगह जयकारे गूंज रहे हैं और माँ की कृपा बरस रही है। अपने भक्तों को माँ जगदम्बा सुख समृद्धि का वरदान देती है। पर इसके साथ ही माँ चंद्रघंटा स्वरूप साहस और सजगता का प्रतीक भी है। माँ चंद्रघंटा बताती हैं कि अपने लक्ष्य की धुन में मगन साधक को सफलता मिलकर ही रहती है। इसी तरह माता का चौथा स्वरूप यानी कि माँ कुष्मांडा सृजन और शक्ति का प्रतीक है। माँ का ये स्वरूप बुद्धि, विवेक और सृजन का महत्व बताता है।
1: चंद्र घंटे की अगर बात शुरुआत करते हैं तो देखिए देवी के माथे पर आप देखेंगे चंद्रमा जैसा बना हुआ है। इससे हमें समझ में आता है कि कैसे हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं। देखिए देवी हर समय पूरी रेडी है, अस्त्र शस्त्र के साथ एकदम रेडी है कि अब मुझे अब जाना है और युद्ध करना है, लेकिन इसको वो बैलेंस रखती है। तो अगर हम इस देवी को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमारे 3-4 चीजें हैं जो हम जरूर करेंगे। देवी को हम सबसे पहले 2 मिनट तक आप घंटा बजाइएगा, बेल बजाकर उनको आप अगर जो भी आपकी मनोकामना है या कुछ भी आप बोलना चाहते हैं, क्योंकि इसी देवी के बारे में ऐसा बोला जाता है कि बहुत बड़ी सेना को इन्होंने अस्त्र शस्त्र से लड़ाई करके नहीं हराया था। उनके पास जो बैल है, इस बैल के साउंड से और शेर की गर्जन से आधे से ज्यादा युद्ध में लोग हार गए थे।
0: अंधकार को दूर करने वाली और राक्षसों का वध करने वाली माँ अपने भक्तों को प्रेम और करुणा का आशीर्वाद भी देती हैं। जैसे माँ का स्कंदमाता स्वरूप प्रेम और करुणा का प्रतीक है, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है। जबकि माँ कात्यायनी का रूप बताता है कि अन्याय का प्रतिकार और दुष्टों पर प्रहार जरूरी है ताकि अधर्म पर धर्म की विजय सुनिश्चित हो। माँ स्कंद माता का जो रूप है वो क्लियरली जो है एक मदरहुड को दर्शाता है, एक नर्चरिंग क्वालिटीज को दर्शाता है और एक फेमिनिन एनर्जी को भी बहुत ज्यादा दर्शाता है। माँ स्कंद माता का ये जो रूप है ये नॉलेज को भी दर्शाता है और ये एडुकेशन को भी दर्शाता है। जब एक लेडी जो होती है जब वो मदर बनती है तो कहीं ना कहीं उसकी फेमिनिन क्वालिटीज बहुत ज्यादा और निखर के आती है। तो ये कहता है कि जीवन में आपको अपने अंदर बहुत ज्यादा नर्चरिंग क्वालिटीज को है वो अपनाना पड़ेगा। जो भी आपके जीवन में आए चाहे छोटा बच्चा आए चाहे कोई बड़ा आए, आप देखिए कि वो जो पर्टिकुलर इंसान है जो पर्टिकुलर व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो है कैसे इवॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर ये इवॉल्वमेंट का बहुत ज्यादा कनेक्शन है।
2: सभी की राह अलग होती है, जहाँ अलग होती है माँ भी अपने सभी स्वरूपों में मनवांछित फल प्रदान करती है। किसी को साहस और शौर्य का वरदान तो किसी को माँ कालरात्रि के रूप में वैराग्य और शुद्धि का मंत्र देती है। इस रूप में माँ भय का नाश करती है और सकारात्मकता का संचार करती है। तो वहीं माँ महागौरी शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। माँ का ये रूप जीवन में सादगी शांति और सौहार्द का महत्व बताता है।
1: काल रात्रि की बात करें तो इसमें हम राहु को रिलेट कर सकते हैं। अगर हमारे जन्म पत्रिका में राहु से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो काल रात्रि जी को हमें पकड़ना चाहिए। इसमें अगर हम मेडिटेशन करते हैं, मैंने बताया था चक्रों की हम मेडिटेशन करते हैं, तो सहस्र चक्र में हम इसकी मेडिटेशन करते हैं। इससे हमें सबसे ज्यादा खास बेनिफिट क्या होता है, हमारे अंदर निर्भयता आती है। और एक और चीज हम सीख पाते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो हमें डरना नहीं है, उसमें काल रात्रि की तरह हमें काल बनकर उस बाधा को दूर करना है। तो जब हमारे अंदर ये स्पिरिट आता है कि हम काल रात्रि की पूजा कर रहे हैं, मतलब हम भी वो काल की तरह अपनी प्रॉब्लम के ऊपर चढ़ जाएंगे और हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तब जाकर हम एक विजयी बन पाते हैं।
2: माँ के दरबार में बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है, हर मुराद पूरी होती है। लेकिन खूबी ये भी है कि माँ के अलग अलग रूपों में जीवन को सफल और सरल बनाने का सूत्र है। जैसे कि माँ सिद्धिदात्री आत्मज्ञान और संपूर्णता का प्रतीक है और साधना को पूर्णता और सफलता तक पहुँचाती है।
0: माँ सिद्धिदात्री हैं, इनका मतलब है सिद्धि प्लस दात्री। इफ वी यू नो ब्रेक दिस वर्ड, तो यहाँ पर दात्री का मतलब होता है देने वाली और सिद्धि का मतलब है सिद्धियां। तो कहीं ना कहीं इसका मीनिंग जो होता है वो हो गया सिद्धियां देने वाली। तो 9 days आफ्टर 8 दिन जब आपने देवी की आराधना करी तो 9वां दिन जो है ये आपकी तपस्या का, जो आपके पेशेंस जो आपने 8 दिन रखा उसका है, ये सिद्धियों का है। अब यहाँ पर जो आपने 8 दिन अपने मंत्र को साधा तो फाइनली जब आपको उसकी सिद्धि मिली, इसके बाद जो है ये आपके कंप्लीशन का भी है। कोई भी चीज जब कंप्लीट होती है तो वो साथ में हमें ये भी सिखाती है कि अब हमें जो है लाइफ में न्यू बिगनिंग्स की तरफ फोकस करना है।
2: इस तरह देखिए तो नवरात्र का महत्व सिर्फ पूजा पाठ तक नहीं बल्कि माँ की आराधना के 9 दिनों का आध्यात्मिक महत्व भी है और इनमें तप अनुशासन और संयम से जीवन को बेहतर बनाने का संदेश भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: नवरात्र में उपवास जप तप और अनुशासन का विशेष महत्व है। पूजा पाठ के अलावा खान पान का भी खास ख्याल रखा जाता है। देखा जाए तो उसका सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं है, नवरात्र की आस्था भक्ति और उससे जुड़ी दिनचर्या का हमारे जीवन पर गहरा असर होता है। शक्ति की साधना से न सिर्फ समृद्धि बल्कि सेहत का भी वरदान मिलता है। मौसम के हिसाब से देखा जाए तो नवरात्र के दौरान की जाने वाली पूजा आराधना हमारे लिए कितनी फायदेमंद होती है, आइए समझते हैं।
4: नवरात्रों के दौरान कालकाजी मंदिर में लगातार भक्तों का तांता नजर आ रहा है। आज नवरात्रों के तीसरे दिन भी मंदिर में सुबह से भक्त लाइनों में लगकर मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं।
5: ये मान्यता है कि जो भी मां के दर्शन करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए कुछ साधक तो नित्य प्रतिदिन आके माँ के दर्शन करते हैं और मध्यरात्रि से ही माँ के दर्शन दर्शन के लिए कपाट खोल दिए जाते हैं। भगवती की जो मध्यरात्रि में आरती करने के बाद जो भक्तों को कपाट जो है भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं और लगभग जो है 2:30 बजे के बाद से ही भक्त जो है निरंतर माँ के दर्शन कर रहे हैं और पुण्य लाभ कर रहे हैं।
6: माता के दर्शन करने का जो सौभाग्य मिला है ये सबको नहीं मिलता है और इतनी धार्मिक मान्यता है यहाँ की, यहाँ पे बार बार आने का मन करता है माता रानी के दर्शन करने का और हम तो आते ही रहते हैं लगभग।
7: माँ के हर दरबार में भक्ति अपरंपार है, सभी के दिल में दर्शन की आस, फोटो पर जय जयकार है। मंदिरों में श्रद्धा का सिलसिला थमता नजर नहीं आता, पंडालों में भी गजब की रौनक है और घरों में भी माता रानी की विधि विधान से पूजा हो रही है। हर बार की तरह शरद ऋतु के आगमन के साथ आस्था का ये उत्सव जनजीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है। देखिए तो माँ की पूजा आराधना और 9 दिनों के व्रत के साथ बदले हुए मौसम का संयोग भी अद्भुत है। असल में ये बरसात के बाद शरद ऋतु के आगमन का समय है, जब पर्यावरण और तापमान में तेजी से बदलाव होता है। जाहिर है शरीर का मेटाबॉलिज्म भी नए मौसम के अनुसार ढलता है। आयुर्वेद के मुताबिक जठरागिनी थोड़ी कमजोर हो जाती है। मॉनसून में शरीर के भीतर पित्त और एसिडिटी बढ़ती है। ऐसे समय में नवरात्र की पूजा स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ जाती है। देखा जाए तो नवरात्र व्रत बदलते मौसम के दुष्प्रभावों से बचाता है और शरीर को सर्दियों के लिए तैयार करता है।
8: नवरात्रि के टाइम पर अगर हम इसको साइंटिफिकली देखते हैं तो ये 9 नाइट्स ऑफ मैनिफेस्टेशन और ट्रांजिशन होता है। जब एक ऋतु से हम दूसरी ऋतु में जाते हैं यानी कि क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं तो एनवायरनमेंट में बहुत सारे इन्फेक्शंस फैल जाते हैं, वायरसेस बैक्टीरिया जो है बहुत प्रोवोक कर जाते हैं, स्पेशली जब चेंज ऑफ सीजन होता है। तो इस टाइम पर क्या होता है, जब चेंज ऑफ सीजन होता है आप देखते हैं फ्लू बहुत कॉमन है आजकल, लोगों में बहुत ज्यादा कोल्ड कॉफ हो रहा है, तो इस टाइम पर इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो जब इम्यूनिटी लो होती है तो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको डिटॉक्स करना बहुत जरूरी होता है और ऑर्गन्स को हील करना बहुत जरूरी होता है, जिस वजह से जब हम फास्टिंग करते हैं तो हम नॉर्मल से थोड़ा सा कम खाते हैं। और दूसरी बात, हम सात्विक फूड को जो है वो ज्यादा महत्वता देते हैं, तमस वाले फूड अवॉइड करते हैं, लहसुन प्याज जो होता है वो उसमें नहीं होता है, जिस वजह से जो है हमारा जो इम्यूनिटी है, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स को बहुत सारा रेस्ट मिलता है तो जिस वजह से हमारी इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग होती है।
7: नवरात्र में जब तब पूजा अर्चना का विधान यूं ही नहीं है, वैसे तो किसी भी समय व्रत का कनेक्शन तन और मन की शुद्धता से है। उपवास शरीर की क्षमताओं को बढ़ाता है, मन को नई ऊर्जा देता है, लेकिन जानकार मानते हैं कि नवरात्र के दौरान उपवास से विशेष तौर पर शरीर के पाचन तंत्र को आराम मिलता है, पाचन अंगों विशेषकर पेट और आंतों को जरूरी विश्राम मिलता है। उपवास से शरीर के विषैले पदार्थ तो बाहर निकल जाते हैं, वजन नियंत्रण और मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है, सुस्ती दूर होती है, साथ ही तरोताजगी का एहसास होता है। नवरात्र का व्रत ऋतु परिवर्तन के अनुकूल शरीर को ढालने में मददगार है, इससे आत्म अनुशासन और मानसिक शक्ति का विकास तो होता ही है, साथ ही एकाग्रता और आत्म नियंत्रण भी बढ़ता है।
8: देवी की ऊर्जा इतनी पावरफुल होती है, इतनी पावरफुल होती है कि अगर आप मंदिर में जाके भी जो है, अगर आप मंदिर में जाके कुछ आराधना उपासना करते हैं तो उसका कई गुना फल मिलता है। आप सिर झुकाते हैं तो आपका क्राउन चक्रा जो है वो खुल जाता है, आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, आपका पंच तत्व जो है वो बैलेंस होता है, मैनिफेस्टेशन जो है वो कितने गुना जो है बढ़ जाती है, देवी की शक्तियां क्वालिटीज हमारे अंदर आने लगती है, मंत्र सिद्धि हमारे अंदर आने लगती है, जाप। और जब आप व्रत करते हैं तो पूरा फोकस और कंसंट्रेशन जो है वो भी पूरा देवी में ही लगता है, तो इसीलिए फास्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है।
7: शरद ऋतु में माँ की पूजा का जो धार्मिक विधान है, देखा जाए तो उसके पीछे कुछ हद तक विज्ञान है। इस त्योहार के साथ ही सर्दी के आगमन का संकेत मिल जाता है, इस लिहाज से व्रत के दौरान जो खान पान होता है वो कारगर होता है। नवरात्र की पूजा के दौरान सात्विक भोजन का महत्व समझ लीजिए। व्रत में इस्तेमाल होने वाला कुट्टू का आटा ग्लूटेन फ्री, फाइबर, मैग्नीशियम और प्रोटीन से भरपूर होता है, तो सिंघाड़े का आटा एंटीऑक्सीडेंट्स, पोटेशियम, विटामिन B6 से भरपूर होता है। साबूदाना शुद्ध कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, और मखाने में कैल्शियम और एंटी एजिंग गुण होते हैं। रही बात सेंधा नमक की, तो उसमें सोडियम की मात्रा कम और मिनरल्स ज्यादा होते हैं। ताजे फल तो वैसे भी विटामिन और मिनरल्स के बेहतरीन स्रोत हैं, और दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। यानी नवरात्र के व्रत उपवास का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि इसका हमारे स्वास्थ्य से भी सीधा कनेक्शन है। माँ की आराधना से, उनकी भक्ति से जिस तरह सुख समृद्धि का वरदान मिलता है, उसी तरह व्रत से शरीर को नई शक्ति और ऊर्जा का एहसास होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, जैसे माँ के अलग अलग स्वरूप और उनके अलग अलग गुण हैं, उसी तरीके से माँ की भक्ति के भी अलग अलग रंग ढंग हैं। गुजरात के सूरत में माँ दुर्गा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का ऐसा अनोखा तरीका सामने निकल कर आया जो लोगों को हैरान कर रहा है। सूरत की बाइकिंग कम्युनिटी के सदस्यों ने 75 प्रीमियम मोटर बाइक्स की मदद से समंदर किनारे माँ दुर्गा की विशाल आकृति तैयार की। देखिए, आसमान से जब इस कलाकृति को ड्रोन कैमरे ने रिकॉर्ड किया तो कैसा भव्य नजारा निकल कर सामने आया एरियल शॉट से। डभारी बीच पर नौजवान बाइकों के साथ पहुंचे और वहां पर उन्होंने बाइक से ही मां आदिशक्ति की अनूठी आकृति तैयार की। इस आयोजन में सूरत में सक्रिय विभिन्न नामी मोटरसाइकिल शोरूम और बाइकिंग समूहों ने भाग लिया। प्रत्येक डीलर ने 2 से 3 नई मोटरसाइकिल्स उपलब्ध कराई और उसमें सहयोग दिया। तस्वीरें देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे माँ की आंखें आपको बिल्कुल नजर आएंगी। नवरात्रि का ये पर्व जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, दुर्गा पूजा पंडालों में लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगी है। खासकर बंगाल के अलग अलग शहरों में सजे थीम बेस्ड पूजा पंडालों की चर्चा खूब हो रही है। इन पंडालों में राज, डांगा, नबा उदय संघ और चोरबागन सर्वजनीन दुर्गा उत्सव समिति का पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।
7: शक्ति उपासना का पर्व पूरे ही देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन बंगाल जैसी दुर्गा पूजा न सिर्फ बेजोड़ है बल्कि अद्भुत और अलौकिक भी है। यहाँ एक से बढ़कर एक दुर्गा पूजा पंडाल सजे हैं, जो आस्था और भक्ति के साथ एक कहानी भी कह रहे हैं। इनमें से एक दक्षिण कोलकाता का मशहूर क्लब राज डांगा नबा उदय संघ का पूजा पंडाल है, जो इस साल शोधन यानी शुद्धिकरण थीम पर आधारित है। राज डांगा नवोदय संघ के पंडाल की ये थीम इंसान के भीतर के विकारों को दूर करने के साथ साथ पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ बनाने का एक सशक्त संदेश देती है। आयोजकों ने बताया कि 70 से 80 लोगों ने इस पर काम किया और दिन रात बहुत मेहनत की, तब जाकर ये पंडाल अपनी थीम के मुताबिक इतना जीवंत बन पाया है। दुर्गा पूजा के रंग में देशभक्ति का रंग भी घुला हुआ है, ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा के पंडाल में, जो 2026 में अपना 91वां साल मना रहा है। बाजार में होने वाले इस दुर्गा पूजा समारोह की थीम वंदे मातरम पर आधारित है, जो राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित है। इसलिए भारत के नक्शे के आकार में बने इस पंडाल में देश के इतिहास, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम की झलक हर तरफ देखने को मिल रही है। बंगाल के थीम बेस्ड पूजा पंडालों की फहरिस्त में अगला नंबर उत्तरी कोलकाता के चोर बागान सार्वजनीन दुर्गा उत्सव समिति के इस पंडाल का है, जो इस साल बियॉन्ड साउंड की थीम पर आधारित है। पंडाल के अंदर का दृश्य किसी जादुई रात के आकाश या स्पेस जैसा अनुभव देता है, जहां टिमटिमाते तारे और जादुई रोशनी का शानदार संगम इस पंडाल की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है। कोलकाता की तरह ही बंगाल के दूसरे शहरों में भी एक से बढ़कर एक दुर्गा पूजा पंडाल सजे हैं, जिनकी भव्यता और सुंदरता लोगों का मन मोह रही है। सिलीगुड़ी के सुब्रत संघ ने अपने 69वें साल में आदिशक्ति थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल तैयार किया है, जिसमें भगवान शिव की विशाल मूर्ति और कैलाश पर्वत की रेप्लिका शामिल है, जो इस पंडाल का सबसे बड़ा आकर्षण है। शारदीय नवरात्रि के दौरान बंगाल के अलग अलग शहरों में सजने वाले ऐसे दुर्गा पूजा पंडाल सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं होते, बल्कि ये कला, संस्कृति और अद्भुत रचनात्मकता का जीता जागता उदाहरण है, जो अपनी इसी कला और रचनात्मकता के लिए देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी ने ऊंची जगहों में पारा 0 से नीचे पहुंचा दिया है, तो आने वाले समय में इन पहाड़ी राज्यों में ठंड के क्या हालात रहने वाले हैं। अगर आप इन जगहों की सैर करने का प्लान बना रहे हैं तो मौसम विभाग की दी गई जानकारियों को सुनकर ही पहाड़ घूमने का प्लान बनाएं।
0: मौसम मौसम ने रुख बदला तो पूरी कश्मीर घाटी ही सर्द हवाओं के आगोश में समा गई। गुलमर्ग की ऊंची चोटियां सफेद बर्फ से ढकी दिख रही हैं। बोटा पाथरी में आज की ताजा बर्फबारी के बाद से पारा भी गोते लगाने लगा है। मैदानों को भले ही सर्द मौसम का इंतजार हो, लेकिन पहाड़ों पर तो ठिठुरन वाले मौसम का आगाज हो चुका है। अक्टूबर के महीने में ही इस सीजन की बर्फबारी शुरू होने से पूरी घाटी की रंगत मानो बदल गई है। उत्तरी कश्मीर के ज्यादातर हिल स्टेशंस पर बर्फ की सफेद चादर नजर आने लगी है। सोनमर्ग में भी बर्फबारी के बाद से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कहीं बर्फ गिर रही है तो कहीं बारिश अपने साथ ठंड का एहसास लेकर आ रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि कश्मीर में आने वाले कुछ दिनों तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। लगातार बर्फबारी से आने वाले दिनों में ठंड तेजी से बढ़ेगी। इस बार अक्टूबर के महीने से ही अच्छी बर्फबारी होने से अंदाजा है कि दिसंबर जनवरी में ज्यादातर हिल स्टेशंस पर तापमान शून्य से काफी नीचे जा सकता है। कश्मीर के साथ साथ दूसरे पहाड़ी राज्यों में भी मौसम तेजी के साथ बदल रहा है। हिमाचल में रविवार को हुई तेज बारिश के बाद मौसम साफ हो गया है, लेकिन इस बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में सर्द मौसम का आगाज तो हो ही गया है। बारिश के बाद से तापमान में यहां 6 से 11 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। कुछ जगहों पर तो पारा शून्य से नीचे पहुँच गया है।
9: ये जो वेदर एक्टिविटी कल जो 11 अक्टूबर को प्रदेश में देखी गई है, इसके प्रभाव से जो दिन के तापमान है वो एवरेज देखिए 6 से लेकर 11 डिग्री पूरे प्रदेश में फॉल हुए हैं। और कुछ शहरों की बात करें तो शिमला का अधिकतम तापमान 16 डिग्री था, वहीं जो है क्षेत्र हैं पालमपुर गुंतर कांगड़ा यहाँ पे 18 से लेकर 19 डिग्री दिन के तापमान गए हैं, और इनमें भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है।
0: हिमाचल में आगे भी मौसम का उतार चढ़ाव जारी रहने की उम्मीद है, लेकिन कश्मीर में आने वाले दिनों में ठंड तेजी से बढ़ सकती है। गुलमर्ग से अशरफ वानी, सोनमर्ग से मीर फरीद और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: पहाड़ों पर घूमने जाने की सोच रहे हैं अगर आप, खासकर हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज, तो बता दें कि यहाँ पास में ही त्रियुंड है जो एडवेंचर की एक खास जगह बन रही है, क्योंकि यहाँ नेचर का दीदार करने के लिए जरूरत से ज्यादा सैलानी पहुंच रहे हैं। ऐसे में यहाँ कैंपिंग पर लगाम लगाने की तैयारी हो रही है।
0: हिमाचल के पहाड़ों की खूबसूरती पूरी दुनिया से लोगों को अपनी ओर खींच लाती है, लेकिन कई बार बेतहाशा बढ़ते टूरिज्म से इन पहाड़ों की कुदरती खूबसूरती को ही खतरा पैदा हो जाता है। धर्मशाला में त्रिवुंड ट्रैक पर अनियंत्रित कैंपिंग भी पर्यावरण संरक्षण में एक बड़ी चुनौती बन रही थी, लेकिन अब प्रशासन त्रिवुंड ट्रैक के प्राकृतिक सौंदर्य को सहेजने के लिए अलर्ट हो गया है। इस सिलसिले में टूर ऑपरेटर्स और एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े संचालकों की प्रशासन के साथ एक बैठक हुई। बैठक में त्रिवुंड में सीमित संख्या में कैंप लगाने का फैसला लिया गया। प्रशासन ने त्रिवुंड में कैंपिंग के लिए 3 हेक्टेयर क्षेत्र निर्धारित किया है। 1 हेक्टेयर में अधिकतम 80 टेंट लगाने की अनुमति होगी। पूरे एरिया में कुल 240 टेंट लगाए जा सकेंगे। त्रिवुंड ट्रैक पर रोजाना 1000 पर्यटकों को जाने की इजाजत दी जाएगी। 500 पर्यटक गल्लू की तरफ से जाएंगे, वहीं 500 पर्यटकों को भागसुनाग की ओर से जाने की अनुमति होगी। सिर्फ रजिस्टर्ड पर्यटन संचालकों को ही अनुमति दी जाएगी और पर्यटकों की सुविधा के लिए 6 बायो डाइजेस्टर शौचालय लगाए जाएंगे।
10: ये जितने भी हमारे पास यहाँ हाइकर जो ट्रैकर्स जाते हैं उसके लिए एक हम मैकेनिज्म डेवलप करने जा रहे हैं, वो हमारे इको टूरिज्म पॉलिसी का भी हिस्सा है। उसमें हम चाहते हैं कि जितने भी हाइकर्स और ट्रैकर्स ट्रैक पे जाते हैं वो रजिस्टर्ड और ट्रेन टूरिस्ट गाइड के माध्यम से जाएं। मतलब कि जो भी ट्रेन टूरिस्ट गाइड हैं और रजिस्टर्ड है मिसलेनियस एक्टिविटीज़ में टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ, वही इन लोगों को लेके जाएं और कैंपिंग करवाएं। तो जो ये हमारे इश्यूज हैं, सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ का इशू है, ट्रैकर्स की सेफ्टी का इशू है, वो क्लिंच हो जाता है।
0: इस नियंत्रण के साथ ही प्रशासन त्रिवुंड में हाइकर्स और ट्रैकर्स की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था करने में जुट गया है। इसके तहत सैलानियों को ट्रेन्ड और टूरिस्ट गाइड्स के साथ ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए भेजा जाएगा। इससे पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखने में भी मदद मिलेगी। धर्मशाला से पूजा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
3: नवरात्र में माँ दुर्गा के पंडाल बने आकर्षण का मुख्य केंद्र। पुरुलिया में टेराकोटा के पंडाल ने खींचा सभी का ध्यान। हावड़ा में देखने को मिली केदारनाथ धाम की झलक। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर माँ ब्रजेश्वरी के दरबार में पहुंची कथावाचक जयकेश्वरी, पूजा अर्चना के साथ माता का आशीर्वाद। देश में पहली बार चमोली जिले में वसुंधरा ताल में लगा अर्ली वार्निंग सिस्टम, 2 घंटे पहले मिलेगी आपदा की चेतावनी, स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा और इजाफा, पहला स्वदेशी मल्टीपर्पज वेसल समर्थक 16 अक्टूबर को कारवार में होगा कमीशन। कश्मीर की गुरेज घाटी में लगातार बर्फबारी का दौर, गुलमर्ग और सोनमर्ग में भी बिछी बर्फ की सफेद चादर, सड़कों पर फिसलन, सैलानियों से सावधानी बरतने की अपील।

नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात गरबे के रंग और उमंग की। नवरात्र के 9 दिनों में देश भर में गरबे का उत्साह नजर आता है। वैसे तो अब अलग अलग राज्यों में शहर शहर गरबा आयोजन होने लगा है, लेकिन गरबे की उमंग का सबसे गाढ़ा रंग चढ़ता है गुजरात में। हर बार की तरह इस बार भी गुजरात से गरबा की शानदार तस्वीरें आ रही है। गुजरात में नवरात्रि की भक्ति के साथ गरबा की मस्ती खुली मिलती है। जामनगर में अंगारों के बीच मां दुर्गा की आराधना करते गरबा प्रेमियों का उत्साह देखने लायक है। इसी तरह राजकोट की वीरांगनाएं तलवार रास के माध्यम से महाअंबे की आराधना कर रही है। तो वही वडोदरा में गरबा का राजसी अंदाज नजर आया। वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में वो अद्भुत दृश्य था। हजारों लोग एक साथ गरबा की ताल पर झूम रहे थे। ऐसी कितनी ही तस्वीरें इस समय गुजरात के अलग अलग शहरों से लगातार आ रही है। तो चलिए जीएनटी पर नवरात्रि के इस उत्सव को बनाते हैं कुछ और खास और आपको दिखाते हैं गुजरात में नवरात्र के दौरान सजे गरबा की नौ रंग।

शहर सभी है एक, क्या सूरत क्या भोपाल, नवरात्रि का रंग वही जमे जहां मिले गरबे की ताल से ताल। वैसे तो नवरात्रि की धूम पूरे देश में है, लेकिन गुजरात जैसी रौनक कहीं और नहीं। चाहे राजकोट हो, वडोदरा, जामनगर या फिर खेड़ा, हर शहर गरबा और डांडिया के रंग में रंगा हुआ है। ये तस्वीर है गुजरात के राजकोट। शौर्य की ताल पर ये शत्राणियों का नृत्य है।

0: हाथों में लहराती तलवार। अपने अपने वाहन पर सवार गुजरात के राजकोट में राजपूत समाज की महिलाओं और बच्चियों ने राजपूताना पोशाक में तलवार के साथ गरबा कर भक्ति और शक्ति की अनोखी तस्वीर पेश की। किसी ने चलती हुई कार पर तलवार के साथ गरबा किया, किसी ने स्कूटर पर सवार होकर तलवार का जौहर दिखाया। रफ्तार भरते हुए अस्त्र शस्त्रों का कौशल दिखाती ये वो छत्राणियां हैं जिन्हें वीरता का गुण विरासत में मिला है।
1: हम यहाँ गणेश चतुर्थी से लेकर यानी कि एक डेढ़ महीने से हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये हमारी राजपूती कल्चर है, जो राजपूती संस्कृति है उनको प्रदर्शित करता है। राजपूती संस्कार जो हमारी दिकरियों में होते हैं उनको यह दर्शाता है, शौर्य वीरता और जो जो इतिहास में गाथाएं लिखी गई है उसको बखूबी यहाँ पे प्रस्तुत करता है।
2: 12 साल की बच्ची से लेके 60 साल की दादी माँ या नानी माँ जिसे कह सकते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और साथ में 200 जितनी सन्नारियां हमारे साथ जुड़ी हुई है जो अभी हम यहाँ प्राचीन रस और तलवार रस विविध प्रकार के रजू करने वाली है।
3: भगनी सेवा फाउंडेशन की महिलाएं ये कार्यक्रम करती हैं और पूरा संचालन महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसकी पूरी व्यवस्था महिलाएं करती हैं, ट्रेनिंग महिलाएं देती हैं।
0: ये अगली तस्वीर है गुजरात के ही जामनगर की। दहकते अंगारे और उन पर नंगे पैर रास, इसे कहते हैं अंगारा रास। आग के बीच कदमों की ये लय लोगों को हैरान कर देती है। जामनगर में पिछले 80 सालों से नवरात्र के दौरान ये अद्भुत परंपरा निभाई जा रही है। वक्त बदला, गरबा का रंग और अंदाज बदला, लेकिन जामनगर की इस गरबी ने अपनी पुरानी पहचान नहीं छोड़ी। पीढ़ी दर पीढ़ी बुजुर्गों से युवाओं तक ये परंपरा यूं ही सहेजी जाती रही और इसी परंपरा का हिस्सा है यहाँ होने वाला मशाल रास, जहाँ लोग हाथों में जलती मशालें लेकर ढोल की थाप पर झूमते हैं। मशाल रास माँ अम्बे की आराधना का अनोखा माध्यम है। माँ की भक्ति, लोक संस्कृति का रंग और खुद में 80 साल की विरासत को समेटे जामनगर की ये गरबी जो देखता है हैरान रह जाता है। अब आपको दिखाते हैं जामनगर में ही खेला जा रहा एक और अनोखा गरबा। जामनगर का श्री आशापुरा गरबी मंडल पिछले 88 सालों से यहां अठंगा रास का आयोजन कर रहा है। ये गरबा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा पारंपरिक रास है जिसे रस्सियों की मदद से खेला जाता है। गरबा के इस रूप को गोप गुठन रास और कान गोपी रास के नाम से भी जाना जाता है। इस रास में मंडल के 16 सदस्य रस्सियों के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तालमेल और अनुशासन के साथ होने वाली ये प्रस्तुति अनोखी होती है। रास की अनूठी शैली और कलाकारों के बीच शानदार समन्वय दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। मंडल के सदस्य हर साल पूरे उत्साह और श्रद्धा भाव के साथ इस गरबी में भाग लेते हैं और पारंपरिक रास के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाते हैं। नई पीढ़ी को भी इन प्राचीन परंपराओं से जोड़ने का निरंतर प्रयास किया जाता है ताकि आने वाले समय में भी ये सांस्कृतिक धरोहर जीवित रहे। आपको बता दें कि जामनगर का आशापुरा गरबी मंडल पारंपरिक अठंगा रास के साथ साथ तलवार रास की विशेष प्रस्तुति भी देता है। यहाँ बालिकाएं और युवतियाँ पूरे उत्साह के साथ तलवार लेकर गरबा खेलती हैं और माँ आद्या शक्ति की ये अद्भुत आराधना करती हैं।

साथ किया जाने वाला ये रोमांचक प्रदर्शन केवल एक नृत्य नहीं बल्कि साहस, वीरता, शौर्य और भक्ति का जीवंत प्रतीक है। इस प्रस्तुति के माध्यम से सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा को हर साल दोहराया जाता है। आशापुरा गरबी मंडल में पिछले 45 वर्षों से नवरात्रि महोत्सव की ये परंपरा उत्साह और श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है। अठंगा रास और तलवार रास की ये परंपरा न केवल जामनगर बल्कि पूरे सौराष्ट्र और गुजरात में पारंपरिक गरबी की समृद्ध विरासत को सहेजने और आगे बढ़ाने में भूमिका निभा रही है।

अब चलिए गुजरात के ही खेड़ा, जहां शारदीय नवरात्र की धूम है, गरबा की गूंज है। खेड़ा में इन दिनों गरबा और डांडिया के बीच भारत के दो राज्यों की संस्कृति का सुंदर संगम दिख रहा है। खेड़ा के सलून गांव में बेटियों ने पारंपरिक मणिपुरी वेशभूषा में मां अम्बा की विशेष आरती की। इस अनूठी प्रस्तुति को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। गांव के मुख्य चौक में जब मणिपुरी वेशभूषा में सजी बेटियों ने मां अम्बा की आरती शुरू की तो माहौल भक्तिमय हो गया। मणिपुरी संस्कृति की झलक और मां जगदम्बा के प्रति अटूट श्रद्धा ने इस आयोजन को खास बना दिया।

0: चलिए गुजरात के ही वडोदरा, जहां गरबा महोत्सव की रौनक, सजावट और भव्यता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। ये शानदार तस्वीरें हैं वडोदरा के ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस में आयोजित हेरिटेज गरबा उत्सव की, जहां भारतीय और वैश्विक संस्कृति का संगम देखने को मिला। देशों के विदेशी मेहमान लक्ष्मी विलास पैलेस में हेरिटेज गरबा के साक्षी बने। रंग बिरंगे चनिया चोली और लहंगों में सजे विदेशी मेहमान यहां गरबे का लुत्फ उठाते दिखे।
1: सो इफ यू कैन स्पीक हिंदी, जस्ट टेल मी, कैसा लग रहा है आज आपको यहां पर?
2: बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बेस्ट।
3: It's incredible. Just look at the scale. We're at Lakshmi Villas Palace in Vadodara. We have tens of thousands of people dancing together as one, and then over behind us.
1: Are you enjoying the?
2: I love it. It's incredible.
1: So, have you ever been to this place?
2: No, never, never. And it is beyond words that we're experiencing. It's completely mind-blowing.
0: ढोल की थाप और रोशनी से जगमगाता पैलेस का प्रांगण पूरी रात भक्ति और उत्सव के रंग में रंगा रहा। पारंपरिक लोक गीतों पर लोग थिरकते रहे।
1: ये लाइव सिंगिंग म्यूजिक के साथ ही यहाँ पर गरबा होता है। यहाँ का प्रोटोकॉल है कि आप कोई भी कैसेट नहीं चला सकते हैं, कोई भी वीडियो नहीं दिखा सकते, आपको लाइव ही यहाँ पर सिंगिंग करनी होती है। ये पूरा प्रोटोकॉल है ताकि हमारी कल्चर संस्कृति को भी सहेजा जाए। और यहाँ तमाम जितने विदेशी डेलीगेट्स हैं, उन लोग को यहाँ लाने का मकसद भी यही है कि वो हमारी संस्कृति से रूबरू हो सकें। बिना देर गवाए एक राउंड गरबा का हो जाए।

0: इस इवेंट में 40,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ पारंपरिक गरबा किया और माँ के चरणों में आस्था की जोत जलाई। जब एक साथ हजारों लोगों ने गरबा नृत्य किया तो वो नजारा अद्भुत था। सजे धजे सैकड़ों कलाकार एक साथ गरबा करने उतरे तो देखने वाले देखते रह गए। गरबा न हो मानो रंगों का उत्सव हो,
1: ऐसा खूबसूरत नजारा आप केवल वडोदरा में देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 40,000 लोग हैं जो यहाँ पर गरबा परफॉर्म कर रहे हैं, लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं। ये भी इसी का एक थीम रहता है जिसमें सबको बोला जाता है कि आप टॉर्च ऑन कीजिए, टॉर्च ऑन के साथ रिदम के साथ अपने ताल से ताल मिलाते हुए लोग यहाँ पर गरबा खेलते हैं। और अभी अगले 5 से 10 मिनट तक आपको बिल्कुल इसी तरह का नजारा देखने को मिलेगा जहाँ हर कोई अपनी धुन में मगन है, केवल उनको सुनाई दे रहा है तो म्यूजिक, और म्यूजिक के साथ अपना मोबाइल ऑन और उसके साथ लोग लगातार थिरकते जा रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस से देखिए।
0: वास्तव में गरबा देवी दुर्गा की आराधना के साथ साथ भारतीय संस्कृति को संजोने और सहेजने का एक उत्सव भी है जो लंबे समय से भारतीय परंपरा का हिस्सा रहा है। और संस्कृति की यही भव्यता लक्ष्मी विलास पैलेस के प्रांगण में नजर आई।
1: आज यहाँ पे बहुत सारे विदेशी डेलीगेट्स भी हैं जो यहाँ पर इसका हिस्सा बन रहे। कितने गर्व की बात है वडोदरा के लिए, आपके लिए, राजघराने के लिए।
2: बहुत ही गर्व की बात है कि विश्व भर से लोग इतने इम्पोर्टेंट डेलीगेट्स बड़ोड़ा आए हैं। एज अ बड़ोडियन आई फील वेरी प्राउड एंड कि कल वो उन्होंने पैलेस देखा और आज वो हमारे गरबा में आए, तो आई एम वेरी हैप्पी।
1: मेहमान नवाजी करके अच्छा लग रहा
2: है। सॉरी आई कांट हियर यू।
1: मेहमान नवाजी करके अच्छा लग रहा
2: है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा।
1: एक संदेश जो यहाँ से रानी साहिबा पूरे देश को देंगी नवरात्रि का।
2: मैं नवरात्रि के पर्वोत्सव पे सबको खूब खूब बधाई देती हूँ एंड यही आशा करती हूँ, माँ से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा देश जुड़ा रहे और वी गेट स्ट्रॉन्गर।
0: गुजरात में शहर शहर इन दिनों गरबा की उमंग है और सिर्फ गुजरात ही क्यों, नवरात्र के दिनों में तो सारा देश ही गुजरात के साथ गरबा की ताल पर थिरकता नजर आ रहा है। राजकोट से रौनक मजीठिया, जामनगर से दर्शन ठक्कर, खेड़ा से हेताली शाह और वडोदरा से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और नवरात्रि के समय गरबा को लेकर उत्सुकता खूब दिखती है। जिसने कभी गरबा नहीं किया हो वो भी इन दिनों गरबा उत्सव में शामिल होने के लिए आतुर दिखता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि में गरबा की शुरुआत कैसे हुई और गरबा मुख्य रूप से नवरात्रि में ही क्यों किया जाता है और आखिर क्यों गरबा परंपरा की शुरुआत को गुजरात से जोड़कर देखा जाता है? गुजरात को गरबे की विरासत आखिर कैसे मिली? आज जीएनडीए स्पेशल में आपको सुनाते हैं कहानी गरबे के इतिहास।

0: लय पर ये परंपरा की ताल है। संगीत की रिदम और तालियों की थाप पर ये सदियों पुरानी संस्कृति की छाप है। शान गुजरात की मिट्टी पर थिरकते ये पांव देखने वालों के हृदय पर छोड़ते जाते हैं। गुजरात का गरबा संगीत और नृत्य का वो अनोखा संगम है जिसकी गोलाकार संरचनाओं में आनंद और उल्लास के साथ शक्ति उपासना का सागर भी हिलोरे लेता है। बल्कि देखा जाए तो गुजरात का गरबा वास्तव में मां भगवती की उपासना की सबसे जीवंत तस्वीर है। जो गरबा नृत्य परंपरा की जड़ों से परिचित नहीं है वे इसे महज एक डांस फॉर्म के रूप में जानते हैं और भारत के विस्तृत सांस्कृतिक मानचित्र का एक हिस्सा भर मानते हैं। एक बेहद सुंदर रंगों से सजा धजा हिस्सा, लेकिन वास्तव में गरबा इससे कई बढ़कर है। वास्तव में गरबा नारी की सृजन शक्ति को नमन करने का उत्सव है और इस उत्सव के केंद्र में होता है वो गर्भदीप जिसे आपने अक्सर गरबा नृत्य के केंद्र में देखा होगा। गोला बनाकर किए जाने वाले गरबा नृत्य के बीच में एक कलश रखा जाता है। गरबा के आयोजन में देवी की उपासना के साथ इस कलश को रखने की परंपरा है। इस कलश को गर्भदीप कहा जाता है और इसी गर्भदीप के गर्भ में छुपा है गरबे की परंपरा का सार।
1: 5000 साल से ज्यादा गरबा की परंपरा है। विक्रम संवत में 16 दिन जब श्राद्ध के संपूर्ण होते हैं और शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होता है। बारिश विदाई ले के न ले, लेकिन शरद ऋतु आ जाती है। गरबा का अर्थ ये होता है दीप गर्भ, गर्भ में मैं हूँ। गर्भ का अर्थ ये है कि छिद्र वाले घट में गरबा कहते हैं, यानी गर्भो भी कहते हैं।
0: आपको बता दें कि गरबा शब्द गर्भ और दीप से मिलकर बना है। नवरात्रि के पहले दिन मिट्टी के घड़े में बहुत से छेद किए जाते हैं जिसके अंदर एक दीपक प्रज्वलित करके रखा जाता है। इसके साथ चांदी का एक सिक्का भी रखते हैं। इस दीपक को ही दीप गर्भ कहा जाता है। आपको बता दें कि दीप गर्भ नारी की सृजन शक्ति का प्रतीक है और गरबा इसी गर्भ दीप का अभ्रंश रूप है। दीप गर्भ की परंपरा में कलश या घड़े को नारी के गर्भ का प्रतीक माना जाता है, तो वहीं इस कलश में रखा दीपक जीवन और विशेष कर गर्भ में पल रहे शिशु के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसी गर्भदीप के चारों ओर गोला बनाकर गरबा किया जाता है। ये गोला सर्कल ऑफ लाइफ यानी जीवन के चक्र का प्रतीक माना जाता है। वही जीवन चक्र जिसकी उत्पत्ति और संचालन का आधार स्वयं शक्ति है। इस तरह गरबा नृत्य नारी की प्रजनन क्षमता का उत्सव मनाता है, नारित्व का सम्मान करता है और मातृ देवियों के सभी 9 रूपों को नमन करता है।
1: दीप गर्भ को नारी शक्ति समन्वित कहते हैं कि गर्भा का अर्थ ये है कि गर्भ का दीपक, पौराणिक मात्रा अनुसार के अनुसार कहा जा रहा है कि गर्भ दीप स्त्री गर्भ का सर्जन शक्ति का प्रतीक होता है, सौभाग्य का प्रतीक होता है, शक्ति का प्रतीक होता है। गर्भदीप स्थापना महिलाओं के लिए समृद्धि लाती है और स्त्रियों अच्छे वस्त्र धारण करके माता दुर्गा की उपासना करती है और खूब फलदायी है।
0: दीप गर्भ की स्थापना के पास महिलाएं सुंदर और रंग बिरंगे कपड़े पहनकर माता शक्ति के आगे नृत्य कर उन्हें प्रसन्न करती हैं। गरबा नृत्य कई तरह से और कई चीजों के साथ किया जाता है। गरबे में महिलाएं और पुरुष ताली, चुटकी, डांडिया और मंजीरों का भी इस्तेमाल करते हैं। ताल से ताल मिलाने के लिए महिलाएं और पुरुषों का 2 या फिर 4 का ग्रुप बनाकर ये नृत्य किया जाता है। गरबे के नृत्य में मात्र शक्ति और कृष्ण की रासलीला से संबंधित गीत गाए और बजाए जाते हैं। गुजरात के लोगों का ये मानना है कि गरबा नृत्य माँ भगवती को बेहद प्रिय है, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए गरबे का नवरात्रि में खास तौर पर आयोजन किया जाता है।

नवरात्रि में गरबा और डांडिया खेलने की परंपरा कई सालों पुरानी है, लेकिन 60 और 70 के दशक तक गरबा गुजरात और राजस्थान जैसे पश्चिमी राज्यों में खेला जाता था। उन दिनों तक गरबे का रूप भी आज जितना भव्य और विशाल नहीं था। गांवों और शहरों में बेहद सादगी के साथ और सीमित स्तर पर गरबे का आयोजन होता था।

लेकिन धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ गरबा का विस्तार गुजरात की सीमाओं से निकलकर दूसरे राज्यों तक पहुंचने लगा। लोकप्रियता बढ़ी तो गुजराती सिनेमा के बाद मुंबई की फिल्मों ने भी अपने कैनवस में गरबा वाले गीतों के लिए जगह बनानी शुरू की।

तरह गरबा की लोकप्रियता आगे बढ़ती चली गई। समय के साथ गरबा की बढ़ती ख्याति यूनेस्को तक भी पहुंची। साल 2023 में यूनेस्को ने इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी यानी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया। यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने के बाद गरबा की रौनक कुछ और बढ़ गई। अब देश के कई राज्यों में नवरात्रि पर्व पर गरबा का आयोजन किया जाता है। कई संस्थाएं और क्लब बेहद बड़े पैमाने पर पूरी भव्यता के साथ नवरात्र में गरबा का आयोजन करते हैं। कई जगहों पर गरबा प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। गरबा आयोजन के नए रिकॉर्ड बनते हैं। अब की बार भी शक्ति उपासना के उत्सव में गुजरात के साथ साथ सारा देश आस्था की इस अनुपम ताल पर झूम रहा है जिसे दुनिया गरबा नाम से जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: अमेरिका के न्यूयॉर्क में बहुत मशहूर जगह है टाइम स्क्वायर। सात समुंदर पार नवरात्र में यहाँ माँ दुर्गा की भक्ति का रंग जमा हुआ है। बंगाली समुदाय के लोगों ने यहाँ पर दुर्गा पूजा के जरिए अपनी संस्कृति और परंपराओं का जश्न मनाया। दो दिन के इस उत्सव में पूजा पाठ के साथ संगीत, नृत्य और सम्मान समारोह हुआ।

0: दुनिया के सबसे चर्चित स्थानों में से एक न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर माँ दुर्गा के जयकारों से गूंज उठा। जहाँ कहीं पूजा अर्चना में जुटे श्रद्धालु दिखे, तो कहीं भक्ति गीतों पर थिरकते कलाकार नजर आए। सात समंदर पार माँ दुर्गा की आराधना में डूबे ये सभी श्रद्धालु भक्ति के साथ अपनी संस्कृति और परंपराओं के रंग बिखेरते नजर आए। आमतौर पर यहाँ चमचमाती स्क्रीन और लोगों की भीड़ नजर आती है, लेकिन इस बार नवरात्रि के मौके पर माहौल कुछ ऐसा बदला कि हर तरफ माँ की भक्ति के रंग नजर आने लगे। इस आयोजन में भक्ति के साथ अपनी जड़ों से जुड़े रहने का भाव भी नजर आया। भक्ति गीतों की धुन पर कलाकारों ने ऐसा समा बांधा कि दर्शक भी झूम उठे। बच्चों और युवाओं की प्रस्तुति ने उत्सव में चार चांद लगा दिए। प्रस्तुति में अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और परंपराओं को सहेजने की झलक दिखाई दी। वहीं कलाकारों की संगीतमय प्रस्तुति से हर कोई उत्सव के रंग में रंगा नजर आया। खास बात तो ये रही कि माँ दुर्गा की भक्ति में सिर्फ भारतीय समुदाय ही नहीं, विदेशी पर्यटक भी शामिल हुए और टाइम्स स्क्वायर में माँ दुर्गा की आराधना का ये उत्सव आस्था के साथ भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को भी बयां कर गया। न्यूयॉर्क से रोहित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: नवरात्र में माँ दुर्गा के पंडाल बने आकर्षण का मुख्य केंद्र, पुरुलिया में टेराकोटा के पंडाल ने खींचा सभी का ध्यान। हावड़ा में देखने को मिली केदारनाथ धाम की झलक। नवरात्रि के पावन अवसर पर मां ब्रजेश्वरी के दरबार में पहुंची कथावाचक जयकेश्वरी, पूजा अर्चना के साथ माता का आशीर्वाद। देश में पहली बार चमोली जिले में वसुंधरा ताल में लगा अर्ली वार्निंग सिस्टम, 2 घंटे पहले मिलेगी आपदा की चेतावनी, स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा और इजाफा, पहला स्वदेशी मल्टी पर्पस वेसल समर्थक 16 अक्टूबर को कारवार में होगा कमीशन। कश्मीर की गुरेज घाटी में लगातार बर्फबारी का दौर, गुलमर्ग और सोनमर्ग में भी बिछी बर्फ की सफेद चादर, सड़कों पर फिसलन, सैलानियों से सावधानी बरतने की अपील।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राव शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं नवरात्र में मां के सभी स्वरूपों से मिलने वाले वरदान की। देश भर में नवरात्रि का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। तीसरे दिन आज मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की गई और बुधवार को मां कूष्मांडा की आराधना होगी। आपको बता दें कि नवरात्र में मां के हर रूप हर स्वरूप का अपना महत्व होता है। आज आपको मां के हर स्वरूप से मिलने वाले गुणों के बारे में समझाने जा रहे हैं और साथ ही साथ नवरात्र में सेहत और समृद्धि प्राप्त करने का उपाय भी बताएंगे। समझेंगे कि शरद ऋतु के इस मौसम में पूजा उपवास और व्रत से क्या फायदे होते हैं। इसके बाद आपको लिए चलेंगे कोलकाता, जहां पर हर साल की तरह इस बार भी भव्य और अद्भुत पंडाल बनाए गए हैं। कुछ पंडालों की थीम देखने वालों को दंग कर रही है तो किसी की सजावट मंत्रमुग्ध करने वाली है। फिलहाल तीन तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आइए शुरुआत करते हैं नवरात्र में देवी के नौ स्वरूपों की पूजा और उससे हासिल होने वाले नौ वरदानों से। मां का हर स्वरूप ममतामयी है और मां अपने हर रूप में सुख समृद्धि शक्ति और भक्ति का आशीर्वाद देती है। लेकिन इसके अलावा मां के हर रूप में विशिष्ट गुणों का वर्णन मिलता है। मां की पूजा उपासना से ऐसे गुणों का वरदान मिलता है। अगर हम ऐसे गुणों को आत्मसात करें तो इससे हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। तो चलिए ज्योतिष के जानकारों से समझने की कोशिश करते हैं कि मां शैलपुत्री से लेकर मां सिद्धिदात्री तक मां का हर स्वरूप हमें क्या सिखाता है।

0: प्रथम शैलपुत्री च द्वितीया ब्रह्मचारिणी तृतीया चंद्र घंटयति कुष्मांडाति चतुर्कम्। पंचम स्कंदमाता ते षष्ठम कात्यानीति च सप्तमम् कालरात्रि महागौरी अष्टमम्। नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतितय। नाम अनेक धाम अनेक, एक ही आदि शक्ति पर स्वरूप अनेक। अपनी नौ रूपों में माँ शक्ति भी है, भक्ति भी है, ममतामय है तो रौद्र भी है। कभी ज्ञान तप और त्याग की राह दिखाती है तो कभी अदम्य साहस का भी वरदान देती है। नवरात्र का महत्व भी इसीलिए है क्योंकि इसमें एक साथ माँ के सभी रूपों की पूजा अर्चना होती है। माँ के हर रूप के विशिष्ट गुण हैं जिनमें जीवन के लिए संदेश छिपा है, यानी माँ की हर रूप की पूजा अर्चना से सुखी जीवन का वरदान मिलता है। माँ का पहला स्वरूप है शैलपुत्री का, जो दृढ़ता और संकल्प का प्रतीक है। माँ का ये स्वरूप बताता है कि हमें अपने लक्ष्यों की ओर पूरे निश्चय और संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जबकि माँ का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी का, जो तप और अनुशासन का प्रतीक है। माँ का ये स्वरूप बताता है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए तप और अनुशासन ही एकमात्र रास्ता है।
1: जब हम शैलपुत्री की बात करें तो इनकी जो साधना या आराधना होती है वो हम सबसे मूलाधार चक्र से इसकी शुरुआत करते हैं। और इसका अगर आप बोलते हैं हमारे जन्म पत्रिका के हिसाब से देखें तो सूर्य, क्योंकि सूर्य सब चीजों की शुरुआत करता है। तो अगर हम शैलपुत्री की आराधना कर रहे हैं तो हम शुरुआत की आराधना कर रहे हैं, मतलब सूर्य की आराधना कर रहे हैं। और जब शुरुआत हम करते हैं तो हमारे अंदर सबसे ज्यादा जो चीज जरूरी होती है वो होता है स्ट्रांग इरादा। तो जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें पत्थर जैसी मजबूती और इरादा बहुत जरूरी है। तो शैलपुत्री के लिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं और हम मूलाधार पर ध्यान करते हैं। हम कुछ नहीं भी अगर कर सकते हैं तो लम मंत्र का जाप करते हैं। अब जब हम नेक्स्ट आते हैं ब्रह्मचारिणी, ये 9 डेज में हम इवॉल्व होते हैं। इवॉल्व होने के लिए हर एक देवी के लिए हम एक एक चक्र को एक्टिवेट भी करते हैं और एक एक क्वालिटी अपने अंदर इम्बाइब करते हैं। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की, एक इरादा किया कि मुझे कोई काम करना है, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल। अब सेकेंड जब आई ब्रह्मचारिणी, तो ये शनि से रिलेटेड है और इसमें स्वाधिष्ठान चक्र को हम एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पे सेकंड चीज जो हमसे शनि चाहते हैं वो क्या चाहते हैं कि आपने पहले तो डिसीजन लिया कि हाँ हम कोई काम करेंगे, मजबूती से करेंगे। सेकंड में कठोरता और अनुशासन के साथ हमें लगातार मेहनत करनी होगी। ये इससे हम शनि को इम्प्रूव कर सकते हैं और ब्रह्मचारिणी के आराधना करके हम अपने अंदर इस क्वालिटी को ला सकते हैं।
0: उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, गांव कस्बे शहर, हर जगह जयकारे गूंज रहे हैं और माँ की कृपा बरस रही है। अपने भक्तों को माँ जगदम्बा सुख समृद्धि का वरदान देती है। पर इसके साथ ही माँ चंद्रघंटा स्वरूप साहस और सजगता का प्रतीक भी है। माँ चंद्रघंटा बताती हैं कि अपने लक्ष्य की धुन में मगन साधक को सफलता मिलकर ही रहती है। इसी तरह माता का चौथा स्वरूप यानी कि माँ कुष्मांडा सृजन और शक्ति का प्रतीक है। माँ का ये स्वरूप बुद्धि, विवेक और सृजन का महत्व बताता है।
1: चंद्र घंटा की अगर बात शुरुआत करते हैं तो देखिए देवी के माथे पर आप देखेंगे चंद्रमा जैसा बना हुआ है। इससे हमें समझ में आता है कि कैसे हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं। देखिए देवी हर समय पूरी रेडी है, अस्त्र शस्त्र के साथ एकदम रेडी है कि अब मुझे अब जाना है और युद्ध करना है, लेकिन इसको वो बैलेंस रखती है। तो अगर हम इस देवी को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमारे 3-4 चीजें हैं जो हम जरूर करेंगे। देवी को हम सबसे पहले 2 मिनट तक आप घंटा बजाइएगा, बेल बजाकर उनको आप अगर जो भी आपकी मनोकामना है या कुछ भी आप बोलना चाहते हैं, क्योंकि इसी देवी के बारे में ऐसा बोला जाता है कि बहुत बड़ी सेना को इन्होंने अस्त्र शस्त्र से लड़ाई करके नहीं हराया था। उनके पास जो बेल है, इस बेल के साउंड से और शेर की गर्जन से आधे से ज्यादा युद्ध में लोग हार गए थे।
0: अंधकार को दूर करने वाली और राक्षसों का वध करने वाली माँ अपने भक्तों को प्रेम और करुणा का आशीर्वाद भी देती हैं। जैसे माँ का स्कंदमाता स्वरूप प्रेम और करुणा का प्रतीक है, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है। जबकि माँ कात्यायनी का रूप बताता है कि अन्याय का प्रतिकार और दुष्टों पर प्रहार जरूरी है ताकि अधर्म पर धर्म की विजय सुनिश्चित हो।
2: माँ स्कंद माता का जो रूप है वो क्लियरली जो है एक मदरहुड को दर्शाता है, एक नर्चरिंग क्वालिटीज को दर्शाता है और एक फेमिनिन एनर्जी को भी बहुत ज्यादा दर्शाता है। माँ स्कंद माता का ये जो रूप है ये नॉलेज को भी दर्शाता है और ये एडुकेशन को भी दर्शाता है। जब एक लेडी जो होती है जब वो मदर बनती है तो कहीं ना कहीं उसकी फेमिनिन क्वालिटीज बहुत ज्यादा और निखर के आती है। तो ये कहता है कि जीवन में आपको अपने अंदर बहुत ज्यादा नर्चरिंग क्वालिटीज को है वो अपनाना पड़ेगा। जो भी आपके जीवन में आए चाहे छोटा बच्चा आए चाहे कोई बड़ा आए, आप देखिए कि वो जो पर्टिकुलर इंसान है जो पर्टिकुलर व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो है कैसे इवॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर ये इवॉल्वमेंट का बहुत ज्यादा कनेक्शन है।
0: सभी की राह अलग होती है, जहाँ अलग होती है माँ भी अपने सभी स्वरूपों में मनवांछित फल प्रदान करती है। किसी को साहस और शौर्य का वरदान तो किसी को माँ कालरात्रि के रूप में वैराग्य और शुद्धि का मंत्र देती है। इस रूप में माँ भय का नाश करती है और सकारात्मकता का संचार करती है। तो वहीं माँ महागौरी शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। माँ का ये रूप जीवन में सादगी शांति और सौहार्द का महत्व बताता है।
1: काल रात्रि की बात करें तो इसमें हम राहु को रिलेट कर सकते हैं। अगर हमारे जन्म पत्रिका में राहु से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो काल रात्रि जी को हमें पकड़ना चाहिए। इसमें अगर हम मेडिटेशन करते हैं, मैंने बताया था चक्रों की हम मेडिटेशन करते हैं, तो सहस्त्र चक्र में हम इसकी मेडिटेशन करते हैं। इससे हमें सबसे ज्यादा खास बेनिफिट क्या होता है, हमारे अंदर निर्भयता आती है। और एक और चीज हम सीख पाते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो हमें डरना नहीं है, उसमें काल रात्रि की तरह हमें काल बनकर उस बाधा को दूर करना है। तो जब हमारे अंदर ये स्पिरिट आता है कि हम काल रात्रि की पूजा कर रहे हैं, मतलब हम भी वो काल की तरह अपनी प्रॉब्लम के ऊपर चढ़ जाएंगे और हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तब जाकर हम एक विजयी बन पाते हैं।
0: माँ के दरबार में बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है, हर मुराद पूरी होती है। लेकिन खूबी ये भी है कि माँ के अलग अलग रूपों में जीवन को सफल और सरल बनाने का सूत्र है। जैसे कि माँ सिद्धिदात्री आत्मज्ञान और संपूर्णता का प्रतीक है और साधना को पूर्णता और सफलता तक पहुँचाती है।
2: माँ सिद्धि दात्री हैं, इनका मतलब है सिद्धि प्लस दात्री। इफ वी यू नो ब्रेक दिस वर्ड, तो यहाँ पर दात्री का मतलब होता है देने वाली और सिद्धि का मतलब है सिद्धियां। तो कहीं ना कहीं इसका मीनिंग जो होता है वो हो गया सिद्धियां देने वाली। तो 9 days आफ्टर 8 दिन जब आपने देवी की आराधना करी तो 9वां दिन जो है ये आपकी तपस्या का, जो आपके पेशेंस जो आपने 8 दिन रखा उसका है, ये सिद्धियों का है। अब यहाँ पर जो आपने 8 दिन अपने मंत्र को साधा तो फाइनली जब आपको की सिद्धि मिली, इसके बाद जो है ये आपके कंप्लीशन का भी है। कोई भी चीज जब कंप्लीट होती है तो वो साथ में हमें ये भी सिखाती है कि अब हमें जो है लाइफ में न्यू बिगनिंग्स की तरफ फोकस करना है।
0: इस तरह देखिए तो नवरात्र का महत्व सिर्फ पूजा पाठ तक नहीं बल्कि माँ की आराधना के 9 दिनों का आध्यात्मिक महत्व भी है और इनमें तप अनुशासन और संयम से जीवन को बेहतर बनाने का संदेश भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: नवरात्र में उपवास जप तप और अनुशासन का विशेष महत्व है। पूजा पाठ के अलावा खान पान का भी खास ख्याल रखा जाता है। देखा जाए तो उसका सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं है, नवरात्र की आस्था भक्ति और उससे जुड़ी दिनचर्या का हमारे जीवन पर गहरा असर होता है। शक्ति की साधना से न सिर्फ समृद्धि बल्कि सेहत का भी वरदान मिलता है। मौसम के हिसाब से देखा जाए तो नवरात्र के दौरान की जाने वाली पूजा आराधना हमारे लिए कितनी फायदेमंद होती है, आइए समझते हैं।
4: नवरात्रों के दौरान कालका जी मंदिर में लगातार भक्तों का तांता नजर आ रहा है। आज नवरात्रों के तीसरे दिन भी मंदिर में सुबह से भक्त लाइनों में लगकर मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं।
5: ये मान्यता है कि जो भी मां के दर्शन करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए कुछ साधक तो नित्य प्रति जो आके माँ के दर्शन करते हैं और मध्यरात्रि से ही माँ के दर्शन कपाल दर्शन के लिए कपाट खोल दिए जाते हैं। भगवती की जो मध्यरात्रि में आरती करने के बाद जो भक्तों के कपाट जो है भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं और लगभग जो है 2:30 बजे के बाद से ही भक्त जो है निरंतर माँ के दर्शन कर रहे हैं और पुण्य लाभ कर रहे हैं।
6: माता के दर्शन करने का जो सौभाग्य मिला है ये सबको नहीं मिलता है और इतनी धार्मिक मान्यता है यहाँ की, यहाँ पे बार बार आने का मन करता है माता रानी के दर्शन करने का और हम तो आते ही रहते हैं लगभग।
7: चंद्र माँ के हर दरबार में भक्ति अपरंपार है, सभी के दिल में दर्शन की आस, फोटो पर जय जयकार है। मंदिरों में श्रद्धा का सिलसिला थमता नजर नहीं आता, पंडालों में भी गजब की रौनक है और घरों में भी माता रानी की विधि विधान से पूजा हो रही है। हर बार की तरह शरद ऋतु के आगमन के साथ आस्था का ये उत्सव जनजीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है। देखिए तो माँ की पूजा आराधना और 9 दिनों के व्रत के साथ बदले हुए मौसम का संयोग भी अद्भुत है। असल में ये बरसात के बाद शरद ऋतु के आगमन का समय है, जब पर्यावरण और तापमान में तेजी से बदलाव होता है। जाहिर है शरीर का मेटाबॉलिज्म भी नए मौसम के अनुसार ढलता है। आयुर्वेद के मुताबिक जठरागिनी थोड़ी कमजोर हो जाती है। मॉनसून में शरीर के भीतर पित्त और एसिडिटी बढ़ती है। ऐसे समय में नवरात्र की पूजा स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ जाती है। देखा जाए तो नवरात्र व्रत बदलते मौसम के दुष्प्रभावों से बचाता है और शरीर को सर्दियों के लिए तैयार करता है।
8: नवरात्रि के टाइम पर अगर हम इसको साइंटिफिकली देखते हैं तो ये 9 नाइट्स ऑफ मैनिफेस्टेशन और ट्रांजिशन होता है। जब एक ऋतु से हम दूसरी ऋतु में जाते हैं, यानी कि क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, तो एनवायरनमेंट में बहुत सारे इन्फेक्शंस फैल जाते हैं, वायरसेस बैक्टीरिया जो है बहुत प्रोवोक कर जाते हैं, स्पेशली जब चेंज ऑफ सीजन होता है। तो इस टाइम पर क्या होता है, जब चेंज ऑफ सीजन होता है आप देखते हैं फ्लू बहुत कॉमन है आजकल, लोगों में बहुत ज्यादा कोल्ड कॉफ हो रहा है, तो इस टाइम पर इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो जब इम्यूनिटी लो होती है तो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको डिटॉक्स करना बहुत जरूरी होता है और ऑर्गन्स को हील करना बहुत जरूरी होता है, जिस वजह से जब हम फास्टिंग करते हैं तो हम नॉर्मल से थोड़ा सा कम खाते हैं। और दूसरी बात, हम सात्विक फूड को जो है वो ज्यादा महत्वता देते हैं, तमस वाले फूड अवॉइड करते हैं, लहसुन प्याज जो होता है वो उसमें नहीं होता है, जिस वजह से जो है हमारा जो इम्यूनिटी है, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स को बहुत सारा रेस्ट मिलता है, तो जिस वजह से हमारी इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग होती है।
7: नवरात्र में जब तब पूजा अर्चना का विधान यूं ही नहीं है, वैसे तो किसी भी समय व्रत का कनेक्शन तन और मन की शुद्धता से है। उपवास शरीर की क्षमताओं को बढ़ाता है, मन को नई ऊर्जा देता है, लेकिन जानकार मानते हैं कि नवरात्र के दौरान उपवास से विशेष तौर पर शरीर के पाचन तंत्र को आराम मिलता है, पाचन अंगों विशेषकर पेट और आंतों को जरूरी विश्राम मिलता है। उपवास से शरीर के विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, वजन नियंत्रण और मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है, सुस्ती दूर होती है, साथ ही तरोताजगी का एहसास होता है। नवरात्र का व्रत ऋतु परिवर्तन के अनुकूल शरीर को ढालने में मददगार है, इससे आत्म अनुशासन और मानसिक शक्ति का विकास तो होता ही है, साथ ही एकाग्रता और आत्म नियंत्रण भी बढ़ता है।
8: देवी की ऊर्जा इतनी पावरफुल होती है, कि अगर आप मंदिर में जाके भी जो है, अगर आप मंदिर में जाके कुछ आराधना उपासना करते हैं तो उसका कई गुना फल मिलता है। आप सिर झुकाते हैं तो आपका क्राउन चक्रा जो है वो खुल जाता है, आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, आपका पंच तत्व जो है वो बैलेंस होता है, मैनिफेस्टेशन जो है वो कितने गुना जो है बढ़ जाती है, देवी की शक्तियां क्वालिटीज हमारे अंदर आने लगती है, मंत्र सिद्धि हमारे अंदर आने लगती है, जाप। और जब आप व्रत करते हैं तो पूरा फोकस और कंसंट्रेशन जो है वो भी पूरा देवी में ही लगता है, तो इसीलिए फास्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है।
7: शरद ऋतु में माँ की पूजा का जो धार्मिक विधान है, देखा जाए तो उसके पीछे कुछ हद तक विज्ञान है। इस त्योहार के साथ ही सर्दी के आगमन का संकेत मिल जाता है, इस लिहाज से व्रत के दौरान जो खान पान होता है वो कारगर होता है। नवरात्र की पूजा के दौरान सात्विक भोजन का महत्व समझ लीजिए। व्रत में इस्तेमाल होने वाला कुट्टू का आटा ग्लूटेन फ्री, फाइबर, मैग्नीशियम और प्रोटीन से भरपूर होता है, तो सिंघाड़े का आटा एंटीऑक्सीडेंट्स, पोटेशियम, विटामिन B6 से भरपूर होता है। साबूदाना शुद्ध कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, और मखाने में कैल्शियम और एंटी एजिंग गुण होते हैं। रही बात सेंधा नमक की, तो उसमें सोडियम की मात्रा कम और मिनरल्स ज्यादा होते हैं। ताजे फल तो वैसे भी विटामिन और मिनरल्स के बेहतरीन स्रोत हैं, और दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। यानी नवरात्र के व्रत उपवास का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि इसका हमारे स्वास्थ्य से भी सीधा कनेक्शन है। माँ की आराधना से, उनकी भक्ति से जिस तरह सुख समृद्धि का वरदान मिलता है, उसी तरह व्रत से शरीर को नई शक्ति और ऊर्जा का एहसास होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, जैसे माँ के अलग अलग स्वरूप और उनके अलग अलग गुण हैं, उसी तरीके से माँ की भक्ति के भी अलग अलग रंग ढंग हैं। गुजरात के सूरत में माँ दुर्गा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का ऐसा अनोखा तरीका सामने निकल कर आया जो लोगों को हैरान कर रहा है। सूरत की बाइकिंग कम्युनिटी के सदस्यों ने 75 प्रीमियम मोटर बाइक्स की मदद से समंदर किनारे माँ दुर्गा की विशाल आकृति तैयार की। देखिए, आसमान से जब इस कलाकृति को ड्रोन कैमरे ने रिकॉर्ड किया तो कैसा भव्य नजारा निकल कर सामने आया एरियल शॉट से। डभारी बीच पर नौजवान बाइकों के साथ पहुंचे और वहां पर उन्होंने बाइक से ही मां आदिशक्ति की अनूठी आकृति तैयार की। इस आयोजन में सूरत में सक्रिय विभिन्न नामी मोटरसाइकिल शोरूम और बाइकिंग समूहों ने भाग लिया। प्रत्येक डीलर ने 2 से 3 नई मोटरसाइकिल्स उपलब्ध कराई और उसमें सहयोग दिया। तस्वीरें देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे माँ की आंखें आपको बिल्कुल नजर आएंगी। नवरात्रि का ये पर्व जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, दुर्गा पूजा पंडालों में लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगी है। खासकर बंगाल के अलग अलग शहरों में सजे थीम बेस्ड पूजा पंडालों की चर्चा खूब हो रही है। इन पंडालों में राज, डांगा, नबा उदय संघ और चोरबागन सर्वजनीन दुर्गा उत्सव समिति का पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।
7: शक्ति उपासना का पर्व पूरे ही देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन बंगाल जैसी दुर्गा पूजा न सिर्फ बेजोड़ है बल्कि अद्भुत और अलौकिक भी है। यहाँ एक से बढ़कर एक दुर्गा पूजा पंडाल सजे हैं, जो आस्था और भक्ति के साथ एक कहानी भी कह रहे हैं। इनमें से एक दक्षिण कोलकाता का मशहूर क्लब राज डांगा नबा उदय संघ का पूजा पंडाल है, जो इस साल शोधन यानी शुद्धिकरण थीम पर आधारित है। राज डांगा नवोदय संघ के पंडाल की ये थीम इंसान के भीतर के विकारों को दूर करने के साथ साथ पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ बनाने का एक सशक्त संदेश देती है। आयोजकों ने बताया कि 70 से 80 लोगों ने इस पर काम किया और दिन रात बहुत मेहनत की, तब जाकर ये पंडाल अपनी थीम के मुताबिक इतना जीवंत बन पाया है। दुर्गा पूजा के रंग में देशभक्ति का रंग भी घुला हुआ है, ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा के पंडाल में, जो 2026 में अपना 91वां साल मना रहा है। बाजार में होने वाले इस दुर्गा पूजा समारोह की थीम वंदे मातरम पर आधारित है, जो राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित है। इसलिए भारत के नक्शे के आकार में बने इस पंडाल में देश के इतिहास, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम की झलक हर तरफ देखने को मिल रही है। बंगाल के थीम बेस्ड पूजा पंडालों की फहरिस्त में अगला नंबर उत्तरी कोलकाता के चोर बागान सार्वजनीन दुर्गा उत्सव समिति के इस पंडाल का है, जो इस साल बियॉन्ड साउंड की थीम पर आधारित है। पंडाल के अंदर का दृश्य किसी जादुई रात के आकाश या स्पेस जैसा अनुभव देता है, जहां टिमटिमाते तारे और जादुई रोशनी का शानदार संगम इस पंडाल की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है। कोलकाता की तरह ही बंगाल के दूसरे शहरों में भी एक से बढ़कर एक दुर्गा पूजा पंडाल सजे हैं, जिनकी भव्यता और सुंदरता लोगों का मन मोह रही है। सिलीगुड़ी के सुब्रत संघ ने अपने 69वें साल में आदिशक्ति थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल तैयार किया है, जिसमें भगवान शिव की विशाल मूर्ति और कैलाश पर्वत की रेप्लिका शामिल है, जो इस पंडाल का सबसे बड़ा आकर्षण है। शारदीय नवरात्रि के दौरान बंगाल के अलग अलग शहरों में सजने वाले ऐसे दुर्गा पूजा पंडाल सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं होते, बल्कि ये कला, संस्कृति और अद्भुत रचनात्मकता का जीता जागता उदाहरण है, जो अपनी इसी कला और रचनात्मकता के लिए देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी ने ऊंची जगहों में पारा 0 से नीचे पहुंचा दिया है, तो आने वाले समय में इन पहाड़ी राज्यों में ठंड के क्या हालात रहने वाले हैं। अगर आप इन जगहों की सैर करने का प्लान बना रहे हैं तो मौसम विभाग की दी गई जानकारियों को सुनकर ही पहाड़ घूमने का प्लान बनाएं।
0: मौसम मौसम ने रुख बदला तो पूरी कश्मीर घाटी ही सर्द हवाओं के आगोश में समा गई। गुलमर्ग की ऊंची चोटियां सफेद बर्फ से ढकी दिख रही हैं। बोटा पाथरी में आज की ताजा बर्फबारी के बाद से पारा भी गोते लगाने लगा है। मैदानों को भले ही सर्द मौसम का इंतजार हो, लेकिन पहाड़ों पर तो ठिठुरन वाले मौसम का आगाज हो चुका है। अक्टूबर के महीने में ही इस सीजन की बर्फबारी शुरू होने से पूरी घाटी की रंगत मानो बदल गई है। उत्तरी कश्मीर के ज्यादातर हिल स्टेशन पर बर्फ की सफेद चादर नजर आने लगी है। सोनमर्ग में भी बर्फबारी के बाद से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कहीं बर्फ गिर रही है तो कहीं बारिश अपने साथ ठंड का एहसास लेकर आ रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि कश्मीर में आने वाले कुछ दिनों तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। लगातार बर्फबारी से आने वाले दिनों में ठंड तेजी से बढ़ेगी। इस बार अक्टूबर के महीने से ही अच्छी बर्फबारी होने से अंदाजा है कि दिसंबर जनवरी में ज्यादातर हिल स्टेशन पर तापमान शून्य से काफी नीचे जा सकता है। कश्मीर के साथ साथ दूसरे पहाड़ी राज्यों में भी मौसम तेजी के साथ बदल रहा है। हिमाचल में रविवार को हुई तेज बारिश के बाद मौसम साफ हो गया है, लेकिन इस बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में सर्द मौसम का आगाज तो हो ही गया है। बारिश के बाद से तापमान में यहां 6 से 11 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। कुछ जगहों पर तो पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है।
9: ये जो वेदर एक्टिविटी कल जो 11 अक्टूबर को प्रदेश में देखी गई है, इसके प्रभाव से जो दिन के तापमान है वो एवरेज देखिए 6 से लेके 11 डिग्री पूरे प्रदेश में ही फॉल हुए हैं। और कुछ एक शहरों की बात करें तो शिमला का अधिकतम तापमान 16 डिग्री था, वहीं जो है क्षेत्र हैं पालमपुर गुंटूर कांगड़ा यहाँ पे 18 से लेके 19 डिग्री दिन के तापमान गए हैं, और इनमें भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है।
0: हिमाचल में आगे भी मौसम का उतार चढ़ाव जारी रहने की उम्मीद है, लेकिन कश्मीर में आने वाले दिनों में ठंड तेजी से बढ़ सकती है। गुलमर्ग से अशरफ वानी, सोनमर्ग से मीर फरीद और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: पहाड़ों पर घूमने जाने की सोच रहे हैं अगर आप, खासकर हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज, तो बता दें कि यहाँ पास में ही त्रियुंड है जो एडवेंचर की एक खास जगह बन रही है, क्योंकि यहाँ नेचर का दीदार करने के लिए जरूरत से ज्यादा सैलानी पहुंच रहे हैं। ऐसे में यहाँ कैंपिंग पर लगाम लगाने की तैयारी हो रही है।
0: हिमाचल के पहाड़ों की खूबसूरती पूरी दुनिया से लोगों को अपनी ओर खींच लाती है, लेकिन कई बार बेतहाशा बढ़ते टूरिज्म से इन पहाड़ों की कुदरती खूबसूरती को ही खतरा पैदा हो जाता है। धर्मशाला में त्रिवुंड ट्रैक पर अनियंत्रित कैंपिंग भी पर्यावरण संरक्षण में एक बड़ी चुनौती बन रही थी, लेकिन अब प्रशासन त्रिवुंड ट्रैक के प्राकृतिक सौंदर्य को सहेजने के लिए अलर्ट हो गया है। इस सिलसिले में टूर ऑपरेटर्स और एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े संचालकों की प्रशासन के साथ एक बैठक हुई। बैठक में त्रिवुंड में सीमित संख्या में कैंप लगाने का फैसला लिया गया। प्रशासन ने त्रिवुंड में कैंपिंग के लिए 3 हेक्टेयर क्षेत्र निर्धारित किया है। 1 हेक्टेयर में अधिकतम 80 टेंट लगाने की अनुमति होगी। पूरे एरिया में कुल 240 टेंट लगाए जा सकेंगे। त्रिवुंड ट्रैक पर रोजाना 1000 पर्यटकों को जाने की इजाजत दी जाएगी। 500 पर्यटक गल्लू की तरफ से जाएंगे, वहीं 500 पर्यटकों को भागसुनाग की ओर से जाने की अनुमति होगी। सिर्फ रजिस्टर्ड पर्यटन संचालकों को ही अनुमति दी जाएगी और पर्यटकों की सुविधा के लिए 6 बायो डाइजेस्टर शौचालय लगाए जाएंगे।
10: ये जितने भी हमारे पास यहाँ हाइकर्स और ट्रैकर्स जाते हैं उसके लिए एक हम मैकेनिज्म डेवलप करने जा रहे हैं, वो हमारे इको टूरिज्म पॉलिसी का भी हिस्सा है। उसमें हम चाहते हैं कि जितने भी हाइकर्स और ट्रैकर्स ट्रैक पे जाते हैं वो रजिस्टर्ड और ट्रेन टूरिस्ट गाइड के माध्यम से जाएं। मतलब कि जो भी ट्रेन टूरिस्ट गाइड हैं और रजिस्टर्ड है मिसलेनियस एक्टिविटीज में टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ, वही इन लोगों को लेके जाएं और कैंपिंग करवाएं। तो जो ये हमारे इश्यूज हैं, सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ का इशू है, ट्रैकर्स की सेफ्टी का इशू है, वो क्लिंच हो जाता है।
0: इस नियंत्रण के साथ ही प्रशासन त्रिवुंड में हाइकर्स और ट्रैकर्स की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था करने में जुट गया है। इसके तहत सैलानियों को ट्रेन्ड और टूरिस्ट गाइड्स के साथ ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए भेजा जाएगा। इससे पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखने में भी मदद मिलेगी। धर्मशाला से पूजा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
11: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है।
13: तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर। मुझे तकरीबन 21 साल, कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
3: नवरात्र में माँ दुर्गा के पंडाल बने आकर्षण का मुख्य केंद्र। पुरुलिया में टेराकोटा के पंडाल ने खींचा सभी का ध्यान। हावड़ा में देखने को मिली केदारनाथ धाम की झलक। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर माँ ब्रजेश्वरी के दरबार में पहुंची कथावाचक जयकेश्वरी, पूजा अर्चना के साथ माता का आशीर्वाद। देश में पहली बार चमोली जिले में वसुंधरा ताल में लगा अर्ली वार्निंग सिस्टम, 2 घंटे पहले मिलेगी आपदा की चेतावनी, स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा और इजाफा, पहला स्वदेशी मल्टीपर्पज वेसल समर्थक 16 अक्टूबर को कारवार में होगा कमीशन। कश्मीर की गुरेज घाटी में लगातार बर्फबारी का दौर, गुलमर्ग और सोनमर्ग में भी बिछी बर्फ की सफेद चादर, सड़कों पर फिसलन, सैलानियों से सावधानी बरतने की अपील।

नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात गरबे के रंग और उमंग की। नवरात्र के 9 दिनों में देश भर में गरबे का उत्साह नजर आता है। वैसे तो अब अलग अलग राज्यों में शहर शहर गरबा आयोजन होने लगा है, लेकिन गरबे की उमंग का सबसे गाढ़ा रंग चढ़ता है गुजरात में। हर बार की तरह इस बार भी गुजरात से गरबा की शानदार तस्वीरें आ रही है। गुजरात में नवरात्रि की भक्ति के साथ गरबा की मस्ती खुली मिलती है। जामनगर में अंगारों के बीच मां दुर्गा की आराधना करते गरबा प्रेमियों का उत्साह देखने लायक है। इसी तरह राजकोट की वीरांगनाएं तलवार रास के माध्यम से महाअंबे की आराधना कर रही है। तो वही वडोदरा में गरबा का रास्ती अंदाज नजर आया। वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में वो अद्भुत दृश्य था। हजारों लोग एक साथ गरबा की ताल पर झूम रहे थे। ऐसी कितनी ही तस्वीरें इस समय गुजरात के अलग अलग शहरों से लगातार आ रही है। तो चलिए जीएनटी पर नवरात्रि के इस उत्सव को बनाते हैं कुछ और खास और आपको दिखाते हैं गुजरात में नवरात्र के दौरान सजे गरबा की नौ रंग।

शहर सभी है एक, क्या सूरत क्या भोपाल, नवरात्रि का रंग वहीं जमे जहां मिले गरबे की ताल से ताल। वैसे तो नवरात्रि की धूम पूरे देश में है, लेकिन गुजरात जैसी रौनक कहीं और नहीं। चाहे राजकोट हो, वडोदरा, जामनगर या फिर खेड़ा, हर शहर गरबा और डांडिया के रंग में रंगा हुआ है। ये तस्वीर है गुजरात के राजकोट। शौर्य की ताल पर ये शत्राणियों का नृत्य है।

भवानी की भक्ति में ये शक्ति की हुंकार है। मां अंबे के आंगन में ये श्रद्धा, शौर्य और साहस का संगम।

0: festival. गुजरात के राजकोट में राजपूत समाज की महिलाओं और बच्चियों ने राजपूताना पोशाक में तलवार के साथ गरबा कर भक्ति और शक्ति की अनोखी तस्वीर पेश की। किसी ने चलती हुई कार पर तलवार के साथ गरबा किया, किसी ने स्कूटर पर सवार होकर तलवार का जौहर दिखाया। रफ्तार भरते हुए अस्त्र शस्त्रों का कौशल दिखाती ये वो छत्राणियां हैं जिन्हें वीरता का गुण विरासत में मिला है।
1: हम यहाँ गणेश चतुर्थी से लेकर यानी कि एक डेढ़ महीने से हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये हमारी राजपूती कल्चर है, जो राजपूती संस्कृति है उनको प्रदर्शित करता है। राजपूती संस्कार जो हमारी दिकरियों में होते हैं उनको यह दर्शाता है, शौर्य वीरता और जो जो इतिहास में गाथाएं लिखी गई है उसको बखूबी यहाँ पे प्रस्तुत करता है।
2: 12 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की दादी माँ या नानी माम जिसे कह सकते वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और साथ में 200 जितनी सन्नारियां हमारे साथ जुड़ी हुई है जो अभी हम यहाँ प्राचीन रस और तलवार रस विविध प्रकार के रजू करने वाली है।
3: भगनी सेवा फाउंडेशन की महिलाएं ये कार्यक्रम करती हैं और पूरा संचालन महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसकी पूरी व्यवस्था महिलाएं करती हैं, ट्रेनिंग महिलाएं देती हैं।
0: ये अगली तस्वीर है गुजरात के ही जामनगर, दहकते अंगारे और उन पर नंगे पैर रास, इसे कहते हैं अंगारा रास। आग के बीच कदमों की ये लय लोगों को हैरान कर देती है। जामनगर में पिछले 80 सालों से नवरात्र के दौरान ये अद्भुत परंपरा निभाई जा रही है। वक्त बदला, गरबा का रंग और अंदाज बदला, लेकिन जामनगर की इस गरबी ने अपनी पुरानी पहचान नहीं छोड़ी। पीढ़ी दर पीढ़ी बुजुर्गों से युवाओं तक ये परंपरा यूं ही सहेजी जाती रही और इसी परंपरा का हिस्सा है यहाँ होने वाला मशाल रास, जहाँ लोग हाथों में जलती मशालें लेकर ढोल की थाप पर झूमते हैं। मशाल रास माँ अम्बे की आराधना का अनोखा माध्यम है। माँ की भक्ति, लोक संस्कृति का रंग और खुद में 80 साल की विरासत को समेटे जामनगर की ये गरबी जो देखता है हैरान रह जाता है। अब आपको दिखाते हैं जामनगर में ही खेला जा रहा एक और अनोखा गरबा। जामनगर का श्री आशापुरा गरबी मंडल पिछले 88 सालों से यहाँ अठंगा रास का आयोजन कर रहा है। ये गरबा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा पारंपरिक रास है जिसे रस्सियों की मदद से खेला जाता है। गरबा के इस रूप को गोप गुठन रास और कान गोपी रास के नाम से भी जाना जाता है। इस रास में मंडल के 16 सदस्य रस्सियों के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तालमेल और अनुशासन के साथ होने वाली ये प्रस्तुति अनोखी होती है। रास की अनूठी शैली और कलाकारों के बीच शानदार समन्वय दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। मंडल के सदस्य हर साल पूरे उत्साह और श्रद्धा भाव के साथ इस गरबी में भाग लेते हैं और पारंपरिक रास के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाते हैं। नई पीढ़ी को भी इन प्राचीन परंपराओं से जोड़ने का निरंतर प्रयास किया जाता है ताकि आने वाले समय में भी ये सांस्कृतिक धरोहर जीवित रहे। आपको बता दें कि जामनगर का आशापुरा गरबी मंडल पारंपरिक अठंगा रास के साथ साथ तलवार रास की विशेष प्रस्तुति भी देता है। यहाँ बालिकाएं और युवतियाँ पूरे उत्साह के साथ तलवार लेकर गरबा खेलती हैं और माँ आद्या शक्ति की ये अद्भुत आराधना करती हैं। तलवारों के साथ किया जाने वाला ये रोमांचक प्रदर्शन केवल एक नृत्य नहीं बल्कि साहस, वीरता, शौर्य और भक्ति का जीवंत प्रतीक है। इस

प्रस्तुति के माध्यम से सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा को हर साल दोहराया जाता है। आशापुरा गरबी मंडल में पिछले 45 वर्षों से नवरात्रि महोत्सव की ये परंपरा उत्साह और श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है। अठंगा रास और तलवार रास की ये परंपरा न केवल जामनगर बल्कि पूरे सौराष्ट्र और गुजरात में पारंपरिक गरबी की समृद्ध विरासत को सहेजने और आगे बढ़ाने में भूमिका निभा रही है।

है गुजरात के ही खेड़ा, जहां शारदीय नवरात्र की धूम है, गरबा की गूंज है। खेड़ा में इन दिनों गरबा और डांडिया के बीच भारत के दो राज्यों की संस्कृति का सुंदर संगम दिख रहा है। खेड़ा के सलून गांव में बेटियों ने पारंपरिक मणिपुरी वेशभूषा में मां अम्बा की विशेष आरती की। इस अनूठी प्रस्तुति को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। गांव के मुख्य चौक में जब मणिपुरी वेशभूषा में सजी बेटियों ने मां अम्बा की आरती शुरू की तो माहौल भक्तिमय हो गया। मणिपुरी संस्कृति की झलक और मां जगदम्बा के प्रति अटूट श्रद्धा ने इस आयोजन को खास बना दिया।

0: अब चलिए गुजरात के ही वडोदरा, जहां गरबा महोत्सव की रौनक, सजावट और भव्यता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। ये शानदार तस्वीरें हैं वडोदरा के ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस में आयोजित हेरिटेज गरबा उत्सव की, जहां भारतीय और वैश्विक संस्कृति का संगम देखने को मिला। देशों के विदेशी मेहमान लक्ष्मी विलास पैलेस में हेरिटेज गरबा के साक्षी बने। रंग बिरंगे चनिया चोली और लहंगों में सजे विदेशी मेहमान यहां गरबे का लुत्फ उठाते दिखे।
1: सो इफ यू कैन स्पीक हिंदी, जस्ट टेल मी, कैसा लग रहा है आज आपको यहां पर?
2: बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बेस्ट।
3: It's incredible. Just look at the scale. We're at Lakshmi Villas Palace in Vadodara. We have tens of thousands of people dancing together as one, and then over behind us.
1: Are you enjoying the?
2: I love it. It's incredible.
1: So, have you ever been to this place?
2: No, never, never. And it is beyond words. So we're experiencing it's completely mind-blowing.
0: ढोल की थाप और रोशनी से जगमगाता पैलेस का प्रांगण पूरी रात भक्ति और उत्सव के रंग में रंगा रहा। पारंपरिक लोक गीतों पर लोग थिरकते रहे।
1: ये लाइव सिंगिंग म्यूजिक के साथ ही यहाँ पर गरबा होता है। यहाँ का प्रोटोकॉल है कि आप कोई भी कैसेट नहीं चला सकते हैं, कोई भी वीडियो नहीं दिखा सकते, आपको लाइव ही यहाँ पर सिंगिंग करनी होती है। ये पूरा प्रोटोकॉल है ताकि हमारी कल्चर संस्कृति को भी सहेजा जाए। और यहाँ तमाम जितने विदेशी डेलीगेट्स हैं, उन लोग को यहाँ लाने का मकसद भी यही है कि वो हमारी संस्कृति से रूबरू हो सकें। बिना देर गवाए एक राउंड गरबा का हो जाए।

0: इस इवेंट में 40,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ पारंपरिक गरबा किया और मां के चरणों में आस्था की जोत जलाई। जब एक साथ हजारों लोगों ने गरबा नृत्य किया तो वो नजारा अद्भुत था। सजे धजे सैकड़ों कलाकार एक साथ गरबा करने उतरे तो देखने वाले देखते रह गए। गरबा न हो मानो रंगों का उत्सव हो,
1: ऐसा खूबसूरत नजारा आप केवल वडोदरा में देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 40,000 लोग हैं जो यहाँ पर गरबा परफॉर्म कर रहे हैं, लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं। ये भी इसी का एक थीम रहता है जिसमें सबको बोला जाता है कि आप टॉर्च ऑन कीजिए, टॉर्च ऑन के साथ रिदम के साथ अपने ताल से ताल मिलाते हुए लोग यहाँ पर गरबा खेलते हैं। और अभी अगले 5 से 10 मिनट तक आपको बिल्कुल इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा जहाँ हर कोई अपनी धुन में मगन है, केवल उनको सुनाई दे रहा है तो म्यूजिक, और म्यूजिक के साथ अपना मोबाइल ऑन और उसके साथ लोग लगातार थिरकते जा रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस से देखिए।
0: वास्तव में गरबा देवी दुर्गा की आराधना के साथ साथ भारतीय संस्कृति को संजोने और सहेजने का एक उत्सव भी है जो लंबे समय से भारतीय परंपरा का हिस्सा रहा है। और संस्कृति की यही भव्यता लक्ष्मी विलास पैलेस के प्रांगण में नजर आई।
1: आज यहाँ पे बहुत सारे विदेशी डेलीगेट्स भी हैं जो यहाँ पर इसका हिस्सा बन रहे। कितने गर्व की बात है वडोदरा के लिए, आपके लिए, राजघराने के लिए।
2: बहुत ही गर्व की बात है कि विश्व भर से लोग इतने इम्पोर्टेंट डेलीगेट्स बड़ोड़ा आए हैं। एज अ बड़ोडियन आई फील वेरी प्राउड, एंड कि कल वो उन्होंने पैलेस देखा और आज वो हमारे गरबा में आए, तो आई एम वेरी हैप्पी।
1: मेहमान नवाजी करके अच्छा लग रहा है।
2: सॉरी आई कांट हियर यू।
1: मेहमान नवाजी करके अच्छा लग रहा
2: है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा।
1: एक संदेश जो यहाँ से रानी साहिबा पूरे देश को देंगी नवरात्रि का।
2: मैं नवरात्रि के पर्व अवसर पे सबको खूब खूब बधाई देती हूँ एंड यही आशा करती हूँ, माँ से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा देश जुड़ा रहे और वी गेट स्ट्रॉन्गर।
0: गुजरात में शहर शहर इन दिनों गरबा की उमंग है और सिर्फ गुजरात ही क्यों, नवरात्र के दिनों में तो सारा देश ही गुजरात के साथ गरबा की ताल पर थिरकता नजर आ रहा है। राजकोट से रौनक मजीठिया, जामनगर से दर्शन ठक्कर, खेड़ा से हेताली शाह और वडोदरा से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और नवरात्रि के समय गरबा को लेकर उत्सुकता खूब दिखती है। जिसने कभी गरबा नहीं किया हो वो भी इन दिनों गरबा उत्सव में शामिल होने के लिए आतुर दिखता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि में गरबा की शुरुआत कैसे हुई और गरबा मुख्य रूप से नवरात्रि में ही क्यों किया जाता है, और आखिर क्यों गरबा परंपरा की शुरुआत को गुजरात से जोड़कर देखा जाता है? गुजरात को गरबे की विरासत आखिर कैसे मिली? आज जीएनडीए स्पेशल में आपको सुनाते हैं कहानी गरबे के इतिहास की।

0: पैर पर ये परंपरा की ताल है। संगीत की रिदम और तालियों की थाप पर ये सदियों पुरानी संस्कृति की छाप है। निशान गुजरात की मिट्टी पर थिरकते ये पांव देखने वालों के हृदय पर छोड़ते जाते हैं। गुजरात का गरबा संगीत और नृत्य का वो अनोखा संगम है जिसकी गोलाकार संरचनाओं में आनंद और उल्लास के साथ शक्ति उपासना का सागर भी हिलोरे लेता है। बल्कि देखा जाए तो गुजरात का गरबा वास्तव में मां भगवती की उपासना की सबसे जीवंत तस्वीर है। जो गरबा नृत्य परंपरा की जड़ों से परिचित नहीं है वे इसे महज एक डांस फॉर्म के रूप में जानते हैं और भारत के विस्तृत सांस्कृतिक मानचित्र का एक हिस्सा भर मानते हैं। एक बेहद सुंदर रंगों से सजा धजा हिस्सा, लेकिन वास्तव में गरबा इससे कई बढ़कर है। वास्तव में गरबा नारी की सृजन शक्ति को नमन करने का उत्सव है और इस उत्सव के केंद्र में होता है वो गर्भदीप जिसे आपने अक्सर गरबा नृत्य के केंद्र में देखा होगा। गोला बनाकर किए जाने वाले गरबा नृत्य के बीच में एक कलश रखा जाता है। गरबा के आयोजन में देवी की उपासना के साथ इस कलश को रखने की परंपरा है। इस कलश को गर्भदीप कहा जाता है और इसी गर्भदीप के गर्भ में छुपा है गरबे की परंपरा का सार।
1: 5000 साल से ज्यादा गरबा की परंपरा है। विक्रम संवत में 16 दिन जब श्राद्ध के संपूर्ण होते हैं और शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होता है। बारिश विदाई ले के न ले, लेकिन शरद ऋतु आ जाती है। गरबा का अर्थ ये होता है दीप गर्भ, गर्भ में मैं हूँ। गर्भ का अर्थ ये है कि छिद्र वाले घट में गरबा कहते हैं, यानी गर्भो भी कहते हैं।
0: आपको बता दें कि गरबा शब्द गर्भ और दीप से मिलकर बना है। नवरात्रि के पहले दिन मिट्टी के घड़े में बहुत से छेद किए जाते हैं जिसके अंदर एक दीपक प्रज्वलित करके रखा जाता है। इसके साथ चांदी का एक सिक्का भी रखते हैं। इस दीपक को ही दीप गर्भ कहा जाता है। आपको बता दें कि दीप गर्भ नारी की सृजन शक्ति का प्रतीक है और गरबा इसी गर्भ दीप का अभ्रंश रूप है। दीप गर्भ की परंपरा में कलश या घड़े को नारी के गर्भ का प्रतीक माना जाता है, तो वही इस कलश में रखा दीपक जीवन और विशेष कर गर्भ में पल रहे शिशु के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसी गर्भदीप के चारों ओर गोला बनाकर गरबा किया जाता है। ये गोला सर्कल ऑफ लाइफ यानी जीवन के चक्र का प्रतीक माना जाता है। वही जीवन चक्र जिसकी उत्पत्ति और संचालन का आधार स्वयं शक्ति है। इस तरह गरबा नृत्य नारी की प्रजनन क्षमता का उत्सव मनाता है, नारित्व का सम्मान करता है और मातृ देवियों के सभी 9 रूपों को नमन करता है।
1: दीप गर्भ को नारी शक्ति समन्वित कहते हैं कि गरबा का अर्थ ये है कि गर्भ का दीपक, पौराणिक मात्रा अनुसार के अनुसार कहा जा रहा है कि गर्भदीप स्त्री गर्भ का सर्जन शक्ति का प्रतीक होता है, सौभाग्य का प्रतीक होता है, शक्ति का प्रतीक होता है। गर्भदीप स्थापना महिलाओं के लिए समृद्धि लाती है और स्त्रियों अच्छे वस्त्र धारण करके माता दुर्गा की उपासना करती है और खूब फलदायी है।
0: दीप गर्भ की स्थापना के पास महिलाएं सुंदर और रंग बिरंगे कपड़े पहनकर माता शक्ति के आगे नृत्य कर उन्हें प्रसन्न करती हैं। गरबा नृत्य कई तरह से और कई चीजों के साथ किया जाता है। गरबे में महिलाएं और पुरुष ताली, चुटकी, डांडिया और मंजीरों का भी इस्तेमाल करते हैं। ताल से ताल मिलाने के लिए महिलाएं और पुरुषों का 2 या फिर 4 का ग्रुप बनाकर ये नृत्य किया जाता है। गरबे के नृत्य में मात्र शक्ति और कृष्ण की रासलीला से संबंधित गीत गाए और बजाए जाते हैं। गुजरात के लोगों का ये मानना है कि गरबा नृत्य माँ भगवती को बेहद प्रिय है, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए गरबे का नवरात्रि में खास तौर पर आयोजन किया जाता है।

नवरात्रि में गरबा और डांडिया खेलने की परंपरा कई सालों पुरानी है, लेकिन 60 और 70 के दशक तक गरबा गुजरात और राजस्थान जैसे पश्चिमी राज्यों में खेला जाता था। उन दिनों तक गरबे का रूप भी आज जितना भव्य और विशाल नहीं था। गांवों और शहरों में बेहद सादगी के साथ और सीमित स्तर पर गरबे का आयोजन होता था।

लेकिन धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ गरबा का विस्तार गुजरात की सीमाओं से निकलकर दूसरे राज्यों तक पहुंचने लगा। लोकप्रियता बढ़ी तो गुजराती सिनेमा के बाद मुंबई की फिल्मों ने भी अपने कैनवस में गरबा वाले गीतों के लिए जगह बनानी शुरू की।

तरह गरबा की लोकप्रियता आगे बढ़ती चली गई। समय के साथ गरबा की बढ़ती ख्याति यूनेस्को तक भी पहुंची। साल 2023 में यूनेस्को ने इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी यानी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया। यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने के बाद गरबा की रौनक कुछ और बढ़ गई। अब देश के कई राज्यों में नवरात्रि पर्व पर गरबा का आयोजन किया जाता है। कई संस्थाएं और क्लब बेहद बड़े पैमाने पर पूरी भव्यता के साथ नवरात्र में गरबा का आयोजन करते हैं। कई जगहों पर गरबा प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। गरबा आयोजन के नए रिकॉर्ड बनते हैं। अब की बार भी शक्ति उपासना के उत्सव में गुजरात के साथ साथ सारा देश आस्था की इस अनुपम ताल पर झूम रहा है जिसे दुनिया गरबा नाम से जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
2: अमेरिका के न्यूयॉर्क में बहुत मशहूर जगह है टाइम्स स्क्वायर। सात समुंदर पार नवरात्र में यहां मां दुर्गा की भक्ति का रंग जमा हुआ है। बंगाली समुदाय के लोगों ने यहां पर दुर्गा पूजा के जरिए अपनी संस्कृति और परंपराओं का जश्न मनाया। दो दिन के उत्सव में पूजा पाठ के साथ संगीत, नृत्य और सम्मान समारोह हुआ।

0: दुनिया के सबसे चर्चित स्थानों में से एक न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर माँ दुर्गा के जयकारों से गूंज उठा। जहाँ कहीं पूजा अर्चना में जुटे श्रद्धालु दिखे, तो कहीं भक्ति गीतों पर थिरकते कलाकार नजर आए। सात समंदर पार माँ दुर्गा की आराधना में डूबे ये सभी श्रद्धालु भक्ति के साथ अपनी संस्कृति और परंपराओं के रंग बिखेरते नजर आए। आमतौर पर यहाँ चमचमाती स्क्रीन और लोगों की भीड़ नजर आती है, लेकिन इस बार नवरात्रि के मौके पर माहौल कुछ ऐसा बदला कि हर तरफ माँ की भक्ति के रंग नजर आने लगे। इस आयोजन में भक्ति के साथ अपनी जड़ों से जुड़े रहने का भाव भी नजर आया। भक्ति गीतों की धुन पर कलाकारों ने ऐसा समा बांधा कि दर्शक भी झूम उठे। बच्चों और युवाओं की प्रस्तुति ने उत्सव में चार चांद लगा दिए। प्रस्तुति में अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और परंपराओं को सहेजने की झलक दिखाई दी। वहीं कलाकारों की संगीतमय प्रस्तुति से हर कोई उत्सव के रंग में रंगा नजर आया। खास बात तो ये रही कि माँ दुर्गा की भक्ति में सिर्फ भारतीय समुदाय ही नहीं, विदेशी पर्यटक भी शामिल हुए और टाइम्स स्क्वायर में माँ दुर्गा की आराधना का ये उत्सव आस्था के साथ भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को भी बयां कर गया। न्यूयॉर्क से रोहित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
7: नवरात्र में माँ दुर्गा के पंडाल बने आकर्षण का मुख्य केंद्र। पुरुलिया में टेराकोटा के पंडाल ने खींचा सभी का ध्यान। हावड़ा में देखने को मिली केदारनाथ धाम की झलक। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर माँ ब्रजेश्वरी के दरबार में पहुंची कथावाचक जयकेश्वरी, पूजा अर्चना के साथ माता का आशीर्वाद। देश में पहली बार चमोली जिले में वसुंधरा ताल में लगा अर्ली वार्निंग सिस्टम, 2 घंटे पहले मिलेगी आपदा की चेतावनी, स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा और इजाफा, पहला स्वदेशी मल्टीपर्पज वेसल समर्थक 16 अक्टूबर को कारवार में होगा कमीशन। कश्मीर की गुरेज घाटी में लगातार बर्फबारी का दौर, गुलमर्ग और सोनमर्ग में भी बिछी बर्फ की सफेद चादर, सड़कों पर फिसलन, सैलानियों से सावधानी बरतने की अपील।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं नवरात्र में मां के सभी स्वरूपों से मिलने वाले वरदान की। देश भर में नवरात्रि का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। तीसरे दिन आज मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की गई और बुधवार को मां कूष्मांडा की आराधना होगी। आपको बता दें कि नवरात्र में मां के हर रूप हर स्वरूप का अपना महत्व होता है। आज आपको मां के हर स्वरूप से मिलने वाले गुणों के बारे में समझाने जा रहे हैं और साथ ही साथ नवरात्र में सेहत और समृद्धि प्राप्त करने का उपाय भी बताएंगे। समझेंगे कि शरद ऋतु के इस मौसम में पूजा उपवास और व्रत से क्या फायदे होते हैं। इसके बाद आपको लिए चलेंगे कोलकाता, जहां पर हर साल की तरह इस बार भी भव्य और अद्भुत पंडाल बनाए गए हैं। कुछ पंडालों की थीम देखने वालों को दंग कर रही है तो किसी की सजावट मंत्रमुग्ध करने वाली है। फिलहाल तीन तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आइए शुरुआत करते हैं नवरात्र में देवी के नौ स्वरूपों की पूजा और उससे हासिल होने वाले नौ वरदानों से। मां का हर स्वरूप ममतामयी है और मां अपने हर रूप में सुख समृद्धि शक्ति और भक्ति का आशीर्वाद देती है। लेकिन इसके अलावा मां के हर रूप में विशिष्ट गुणों का वर्णन मिलता है। मां की पूजा उपासना से ऐसे गुणों का वरदान मिलता है। अगर हम ऐसे गुणों को आत्मसात करें तो इससे हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। तो चलिए ज्योतिष के जानकारों से समझने की कोशिश करते हैं कि मां शैलपुत्री से लेकर मां सिद्धिदात्री तक मां का हर स्वरूप हमें क्या सिखाता है।

0: प्रथम शैलपुत्री च द्वितीया ब्रह्मचारिणी तृतीया चंद्रघंटेति कुष्मांडाति चतुर्कम्। पंचम स्कंदमाता ते षष्ठम कात्यानीति च सप्तमं कालरात्रि महागौरी अष्टमम्। नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतितर। नामने धामने एक ही आदि शक्ति पर स्वरूप अनेक। अपने नौ रूपों में माँ शक्ति भी है, भक्ति भी है, ममतामय है तो रौद्र भी है। कभी ज्ञान तप और त्याग की राह दिखाती है तो कभी अदम्य साहस का भी वरदान देती है। नवरात्र का महत्व भी इसीलिए है क्योंकि इसमें एक साथ माँ के सभी रूपों की पूजा अर्चना होती है। माँ के हर रूप के विशिष्ट गुण है जिनमें जीवन के लिए संदेश छिपा है। यानी माँ की हर रूप की पूजा अर्चना से सुखी जीवन का वरदान मिलता है। माँ का पहला स्वरूप है शैलपुत्री का, जो दृढ़ता और संकल्प का प्रतीक है। माँ का ये स्वरूप बताता है कि हमें अपने लक्ष्यों की ओर पूरे निश्चय और संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जबकि माँ का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी का, जो तप और अनुशासन का प्रतीक है। माँ का ये स्वरूप बताता है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए तप और अनुशासन ही एकमात्र रास्ता है।
1: जब हम शैलपुत्री की बात करें तो इनकी जो साधना या आराधना होती है वो हम सबसे मूलाधार चक्र से इसकी शुरुआत करते हैं। और इसका अगर आप बोलते हैं हमारे जन्म पत्रिका के हिसाब से देखें तो सूर्य, क्योंकि सूर्य सब चीजों की शुरुआत करता है। तो अगर हम शैलपुत्री की आराधना कर रहे हैं तो हम शुरुआत की आराधना कर रहे हैं, मतलब सूर्य की आराधना कर रहे हैं। और जब शुरुआत हम करते हैं तो हमारे अंदर सबसे ज्यादा जो चीज जरूरी होती है वो होता है स्ट्रांग इरादा। तो जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें पत्थर जैसी मजबूती और इरादा बहुत जरूरी है। तो शैल पुत्री के लिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं और हम मूलाधार पर ध्यान करते हैं। हम कुछ नहीं भी अगर कर सकते हैं तो लम मंत्र का जाप करते हैं। अब जब हम नेक्स्ट आते हैं ब्रह्मचारिणी, ये 9 डेज में हम इवॉल्व होते हैं। इवॉल्व होने के लिए हर एक देवी के लिए हम एक एक चक्र को एक्टिवेट भी करते हैं और एक एक क्वालिटी अपने अंदर इम्बाइब करते हैं। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की, एक इरादा किया कि मुझे कोई काम करना है, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल। अब सेकेंड जब आई ब्रह्मचारिणी, तो ये शनि से रिलेटेड है और इसमें स्वाधिष्ठान चक्र को हम एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड चीज जो हमसे शनि चाहते हैं वो क्या चाहते हैं कि आपने पहले तो डिसीजन लिया कि हाँ हम कोई काम करेंगे, मजबूती से करेंगे। सेकेंड में कठोरता और अनुशासन के साथ हमें लगातार मेहनत करनी होगी। ये इससे हम शनि को इम्प्रूव कर सकते हैं और ब्रह्मचारिणी के आराधना करके हम अपने अंदर इस क्वालिटी को ला सकते हैं।
0: उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, गांव कस्बे शहर, हर जगह जयकारे गूंज रहे हैं और माँ की कृपा बरस रही है। अपने भक्तों को माँ जगदम्बा सुख समृद्धि का वरदान देती है। पर इसके साथ ही माँ चंद्रघंटा स्वरूप साहस और सजगता का प्रतीक भी है। माँ चंद्रघंटा बताती हैं कि अपने लक्ष्य की धुन में मगन साधक को सफलता मिलकर ही रहती है। इसी तरह माता का चौथा स्वरूप यानी कि माँ कुष्मांडा सृजन और शक्ति का प्रतीक है। माँ का ये स्वरूप बुद्धि, विवेक और सृजन का महत्व बताता है।
1: चंद्र घंटा की अगर बात शुरुआत करते हैं तो देखिए देवी के माथे पर आप देखेंगे चंद्रमा जैसा बना हुआ है। इससे हमें समझ में आता है कि कैसे हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं। देखिए देवी हर समय पूरी रेडी है, अस्त्र शस्त्र के साथ एकदम रेडी है कि अब मुझे अब जाना है और युद्ध करना है, लेकिन इसको वो बैलेंस रखती है। तो अगर हम इस देवी को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमारे 3-4 चीजें हैं जो जो हम जरूर करेंगे। देवी को हम सबसे पहले 2 मिनट तक आप घंटा बजाइएगा, बेल बेल बजाकर उनको आप अगर जो भी आपकी मनोकामना है या कुछ भी आप बोलना चाहते हैं, क्योंकि इसी देवी के बारे में ऐसा बोला जाता है कि बहुत बड़ी सेना को इन्होंने अस्त्र शस्त्र से लड़ाई करके नहीं हराया था। उनके पास जो बैल बैल है, इस बैल के साउंड से और शेर की गर्जन से आधे से ज्यादा युद्ध में लोग हार गए थे।
0: अंधकार को दूर करने वाली और राक्षसों का वध करने वाली माँ अपने भक्तों को प्रेम और करुणा का आशीर्वाद भी देती है। जैसे माँ का स्कंदमाता स्वरूप प्रेम और करुणा का प्रतीक है, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है। जबकि माँ कात्यायनी का रूप बताता है कि अन्याय का प्रतिकार और दुष्टों पर प्रहार जरूरी है ताकि अधर्म पर धर्म की विजय सुनिश्चित हो।
2: माँ स्कंद माता का जो रूप है वो क्लियरली जो है एक मदरहुड को दर्शाता है, एक नर्चरिंग क्वालिटीज को दर्शाता है और एक फेमिनिन एनर्जी को भी बहुत ज्यादा दर्शाता है। माँ स्कंद माता का ये जो रूप है ये नॉलेज को भी दर्शाता है और ये एडुकेशन को भी दर्शाता है। जब एक लेडी जो होती है जब वो मदर बनती है तो कहीं ना कहीं उसकी फेमिनिन क्वालिटीज बहुत ज्यादा और निखर के आती है। तो ये कहता है कि जीवन में आपको अपने अंदर बहुत ज्यादा नर्चरिंग क्वालिटीज को है वो अपनाना पड़ेगा। जो भी आपके जीवन में आए चाहे छोटा बच्चा आए चाहे कोई बड़ा आए, आप देखिए कि वो जो पर्टिकुलर इंसान है जो पर्टिकुलर व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो है कैसे इवॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर ये इवॉल्वमेंट का बहुत ज्यादा कनेक्शन है।
0: सभी की राह अलग होती है, जहाँ अलग होती है माँ भी अपने सभी स्वरूपों में मनवांछित फल प्रदान करती है। किसी को साहस और शौर्य का वरदान तो किसी को माँ कालरात्रि के रूप में वैराग्य और शुद्धि का मंत्र देती है। इस रूप में माँ भय का नाश करती है और सकारात्मकता का संचार करती है। तो वही माँ महागौरी शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। माँ का ये रूप जीवन में सादगी शांति और सौहार्द का महत्व बताता है।
1: काल रात्रि की बात करें तो इसमें हम राहु को रिलेट कर सकते हैं। अगर हमारे जन्म पत्रिका में राहु से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो काल रात्रि जी को हमें पकड़ना चाहिए। इसमें अगर हम मेडिटेशन करते हैं, मैंने बताया था चक्रों की हम मेडिटेशन करते हैं, तो सहस्र चक्र में हम इसकी मेडिटेशन करते हैं। इससे हमें सबसे ज्यादा खास बेनिफिट क्या होता है, हमारे अंदर निर्भयता आती है। और एक और चीज हम सीख पाते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो हमें डरना नहीं है, उसमें काल रात्रि की तरह हमें काल बनकर उस बाधा को दूर करना है। तो जब हमारे अंदर ये स्पिरिट आता है कि हम काल रात्रि की पूजा कर रहे हैं, मतलब हम भी वो काल की तरह अपनी प्रॉब्लम के ऊपर चढ़ जाएंगे और हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तब जाकर हम एक विजयी बन पाते हैं।
0: माँ के दरबार में बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है, हर मुराद पूरी होती है। लेकिन खूबी ये भी है कि माँ के अलग अलग रूपों में जीवन को सफल और सरल बनाने का सूत्र है। जैसे कि माँ सिद्धिदात्री आत्मज्ञान और संपूर्णता का प्रतीक है और साधना को पूर्णता और सफलता तक पहुँचाती है।
2: माँ सिद्धि दात्री हैं, इनका मतलब है सिद्धि प्लस दात्री। इफ वी यू नो ब्रेक दिस वर्ड, तो यहाँ पर दात्री का मतलब होता है देने वाली और सिद्धि का मतलब है सिद्धियां। तो कहीं ना कहीं इसका मीनिंग जो होता है वो हो गया सिद्धियां देने वाली। तो 9 days आफ्टर 8 दिन जब आपने देवी की आराधना करी तो 9वां दिन जो है ये आपकी तपस्या का, जो आपके पेशेंस जो आपने 8 दिन रखा उसका है, ये सिद्धियों का है। अब यहाँ पर जो आपने 8 दिन अपने मंत्र को साधा तो फाइनली जब आपको उसकी सिद्धि मिली, इसके बाद जो है ये आपके कंप्लीशन का भी है। कोई भी चीज जब कंप्लीट होती है तो वो साथ में हमें ये भी सिखाती है कि अब हमें जो है लाइफ में न्यू बिगनिंग्स की तरफ फोकस करना है।
0: इस तरह देखिए तो नवरात्र का महत्व सिर्फ पूजा पाठ तक नहीं बल्कि माँ की आराधना के 9 दिनों का आध्यात्मिक महत्व भी है और इनमें तप अनुशासन और संयम से जीवन को बेहतर बनाने का संदेश भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: नवरात्र में उपवास जप तप और अनुशासन का विशेष महत्व है। पूजा पाठ के अलावा खान पान का भी खास ख्याल रखा जाता है। देखा जाए तो उसका सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं है, नवरात्र की आस्था भक्ति और उससे जुड़ी दिनचर्या का हमारे जीवन पर गहरा असर होता है। शक्ति की साधना से न सिर्फ समृद्धि बल्कि सेहत का भी वरदान मिलता है। मौसम के हिसाब से देखा जाए तो नवरात्र के दौरान की जाने वाली पूजा आराधना हमारे लिए कितनी फायदेमंद होती है, आइए समझते हैं।
4: नवरात्रों के दौरान कालकाजी मंदिर में लगातार भक्तों का तांता नजर आ रहा है। आज नवरात्रों के तीसरे दिन भी मंदिर में सुबह से भक्त लाइनों में लगकर मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं।
5: ये मान्यता है कि जो भी मां के दर्शन करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए कुछ साधक तो नित्य प्रतिदिन आके माँ के दर्शन करते हैं और मध्यरात्रि से ही माँ के दर्शन दर्शन के लिए कपाट खोल दिए जाते हैं। भगवती की जो मध्यरात्रि में आरती करने के बाद जो भक्तों के कपाट जो है भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं और लगभग जो है 2:30 बजे के बाद से ही भक्त जो है निरंतर माँ के दर्शन कर रहे हैं और पुण्य लाभ कर रहे हैं।
6: माता के दर्शन करने का जो सौभाग्य मिला है ये सबको नहीं मिलता है और इतनी धार्मिक मान्यता है यहाँ की, यहाँ पे बार बार आने का मन करता है माता रानी के दर्शन करने का और हम तो आते ही रहते हैं लगभग।
7: ये माँ के हर दरबार में भक्ति अपरंपार है, सभी के दिल में दर्शन की आस, फोटो पर जय जयकार है। मंदिरों में श्रद्धा का सिलसिला थमता नजर नहीं आता, पंडालों में भी गजब की रौनक है और घरों में भी माता रानी की विधि विधान से पूजा हो रही है। हर बार की तरह शरद ऋतु के आगमन के साथ आस्था का ये उत्सव जनजीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है। देखिए तो माँ की पूजा आराधना और 9 दिनों के व्रत के साथ बदले हुए मौसम का संयोग भी अद्भुत है। असल में ये बरसात के बाद शरद ऋतु के आगमन का समय है, जब पर्यावरण और तापमान में तेजी से बदलाव होता है। जाहिर है शरीर का मेटाबॉलिज्म भी नए मौसम के अनुसार ढलता है। आयुर्वेद के मुताबिक जठरागिनी थोड़ी कमजोर हो जाती है। मॉनसून में शरीर के भीतर पित्त और एसिडिटी बढ़ती है। ऐसे समय में नवरात्र की पूजा स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ जाती है। देखा जाए तो नवरात्र व्रत बदलते मौसम के दुष्प्रभावों से बचाता है और शरीर को सर्दियों के लिए तैयार करता है।
2: नवरात्रि के टाइम पर अगर हम इसको साइंटिफिकली देखते हैं तो ये 9 नाइट्स ऑफ मैनिफेस्टेशन और ट्रांजिशन होता है। जब एक ऋतु से हम दूसरी ऋतु में जाते हैं यानी कि क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं तो एनवायरनमेंट में बहुत सारे इन्फेक्शंस फैल जाते हैं, वायरसेस बैक्टीरिया जो है बहुत प्रोवोक कर जाते हैं, स्पेशली जब चेंज ऑफ सीजन होता है। तो इस टाइम पर क्या होता है, जब चेंज ऑफ सीजन होता है आप देखते हैं फ्लू बहुत कॉमन है आजकल, लोगों में बहुत ज्यादा कोल्ड कॉफ हो रहा है, तो इस टाइम पर इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो जब इम्यूनिटी लो होती है तो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको डिटॉक्स करना बहुत जरूरी होता है और ऑर्गन्स को हील करना बहुत जरूरी होता है, जिस वजह से जब हम फास्टिंग करते हैं तो हम नॉर्मल से थोड़ा सा कम खाते हैं। और दूसरी बात, हम सात्विक फूड को जो है वो ज्यादा महत्वता देते हैं, तमस वाले फूड अवॉइड करते हैं, लहसुन प्याज जो होता है वो उसमें नहीं होता है, जिस वजह से जो है हमारा जो इम्यूनिटी है, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स को बहुत सारा रेस्ट मिलता है तो जिस वजह से हमारी इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग होती है।
7: नवरात्र में जब तब पूजा अर्चना का विधान यूं ही नहीं है, वैसे तो किसी भी समय व्रत का कनेक्शन तन और मन की शुद्धता से है। उपवास शरीर की क्षमताओं को बढ़ाता है, मन को नई ऊर्जा देता है, लेकिन जानकार मानते हैं कि नवरात्र के दौरान उपवास से विशेष तौर पर शरीर के पाचन तंत्र को आराम मिलता है, पाचन अंगों विशेषकर पेट और आंतों को जरूरी विश्राम मिलता है। उपवास से शरीर के विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, वजन नियंत्रण और मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है, सुस्ती दूर होती है, साथ ही तरोताजगी का एहसास होता है। नवरात्र का व्रत ऋतु परिवर्तन के अनुकूल शरीर को ढालने में मददगार है, इससे आत्म अनुशासन और मानसिक शक्ति का विकास तो होता ही है, साथ ही एकाग्रता और आत्म नियंत्रण भी बढ़ता है।
2: देवी की ऊर्जा इतनी पावरफुल होती है, इतनी पावरफुल होती है कि अगर आप मंदिर में जाके भी जो है, अगर आप मंदिर में जाके कुछ आराधना उपासना करते हैं तो उसका कई गुना फल मिलता है। आप सिर झुकाते हैं तो आपका क्राउन चक्रा जो है वो खुल जाता है, आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, आपका पंच तत्व जो है वो बैलेंस होता है, मैनिफेस्टेशन जो है वो कितने गुना जो है बढ़ जाती है, देवी की शक्तियां क्वालिटीज हमारे अंदर आने लगती है, मंत्र सिद्धि हमारे अंदर आने लगती है, जाप। और जब आप व्रत करते हैं तो पूरा फोकस और कंसंट्रेशन जो है वो भी पूरा देवी में ही लगता है, तो इसीलिए फास्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है।
7: शरद ऋतु में माँ की पूजा का जो धार्मिक विधान है, देखा जाए तो उसके पीछे कुछ हद तक विज्ञान है। इस त्योहार के साथ ही सर्दी के आगमन का संकेत मिल जाता है, इस लिहाज से व्रत के दौरान जो खान पान होता है वो कारगर होता है। नवरात्र की पूजा के दौरान सात्विक भोजन का महत्व समझ लीजिए। व्रत में इस्तेमाल होने वाला कुट्टू का आटा ग्लूटेन फ्री, फाइबर, मैग्नीशियम और प्रोटीन से भरपूर होता है, तो सिंघाड़े का आटा एंटीऑक्सीडेंट्स, पोटेशियम, विटामिन B6 से भरपूर होता है। साबूदाना शुद्ध कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, और मखाने में कैल्शियम और एंटी एजिंग गुण होते हैं। रही बात सेंधा नमक की, तो उसमें सोडियम की मात्रा कम और मिनरल्स ज्यादा होते हैं। ताजे फल तो वैसे भी विटामिन और मिनरल्स के बेहतरीन स्रोत हैं, और दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। यानी नवरात्र के व्रत उपवास का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि इसका हमारे स्वास्थ्य से भी सीधा कनेक्शन है। माँ की आराधना से, उनकी भक्ति से जिस तरह सुख समृद्धि का वरदान मिलता है, उसी तरह व्रत से शरीर को नई शक्ति और ऊर्जा का एहसास होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, जैसे माँ के अलग अलग स्वरूप और उनके अलग अलग गुण हैं, उसी तरीके से माँ की भक्ति के भी अलग अलग रंग ढंग हैं। गुजरात के सूरत में माँ दुर्गा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का ऐसा अनोखा तरीका सामने निकल कर आया जो लोगों को हैरान कर रहा है। सूरत की बाइकिंग कम्युनिटी के सदस्यों ने 75 प्रीमियम मोटर बाइक्स की मदद से समंदर किनारे माँ दुर्गा की विशाल आकृति तैयार की। देखिए, आसमान से जब इस कलाकृति को ड्रोन कैमरे ने रिकॉर्ड किया तो कैसा भव्य नजारा निकल कर सामने आया एरियल शॉट से। डभारी बीच पर नौजवान बाइकों के साथ पहुंचे और वहां पर उन्होंने बाइक से ही मां आदिशक्ति की अनूठी आकृति तैयार की। इस आयोजन में सूरत में सक्रिय विभिन्न नामी मोटरसाइकिल शोरूम और बाइकिंग समूहों ने भाग लिया। प्रत्येक डीलर ने 2 से 3 नई मोटरसाइकिल्स उपलब्ध कराई और उसमें सहयोग दिया। तस्वीरें देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे माँ की आंखें आपको बिल्कुल नजर आएंगी। नवरात्रि का ये पर्व जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, दुर्गा पूजा पंडालों में लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगी है। खासकर बंगाल के अलग अलग शहरों में सजे थीम बेस्ड पूजा पंडालों की चर्चा खूब हो रही है। इन पंडालों में राज, डांगा, नबा, उदय संघ और चोरबागन सर्वजनीन दुर्गा उत्सव समिति का पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।
7: शक्ति उपासना का पर्व पूरे ही देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन बंगाल जैसी दुर्गा पूजा न सिर्फ बेजोड़ है बल्कि अद्भुत और अलौकिक भी है। यहाँ एक से बढ़कर एक दुर्गा पूजा पंडाल सजे हैं, जो आस्था और भक्ति के साथ एक कहानी भी कह रहे हैं। इनमें से एक दक्षिण कोलकाता का मशहूर क्लब राज डांगा नबा उदय संघ का पूजा पंडाल है, जो इस साल शोधन यानी शुद्धिकरण थीम पर आधारित है। राजडांगा नवोदय संघ के पंडाल की ये थीम इंसान के भीतर के विकारों को दूर करने के साथ साथ पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ बनाने का एक सशक्त संदेश देती है। आयोजकों ने बताया कि 70 से 80 लोगों ने इस पर काम किया और दिन रात बहुत मेहनत की, तब जाकर ये पंडाल अपनी थीम के मुताबिक इतना जीवंत बन पाया है। दुर्गा पूजा के रंग में देशभक्ति का रंग भी घुला हुआ है, ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा के पंडाल में, जो 2026 में अपना 91वां साल मना रहा है। बाजार में होने वाले इस दुर्गा पूजा समारोह की थीम वंदे मातरम पर आधारित है, जो राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित है। इसलिए भारत के नक्शे के आकार में बने इस पंडाल में देश के इतिहास, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम की झलक हर तरफ देखने को मिल रही है। बंगाल के थीम बेस्ड पूजा पंडालों की फहरिस्त में अगला नंबर उत्तरी कोलकाता के चोर बागान सार्वजनीन दुर्गा उत्सव समिति के इस पंडाल का है, जो इस साल बियॉन्ड साउंड की थीम पर आधारित है। पंडाल के अंदर का दृश्य किसी जादुई रात के आकाश या स्पेस जैसा अनुभव देता है, जहां टिमटिमाते तारे और जादुई रोशनी का शानदार संगम इस पंडाल की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। कोलकाता की तरह ही बंगाल के दूसरे शहरों में भी एक से बढ़कर एक दुर्गा पूजा पंडाल सजे हैं, जिनके भव्यता और सुंदरता लोगों का मन मोह रही है। सिलीगुड़ी के सुब्रत संघ ने अपने 69वें साल में आदिशक्ति थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल तैयार किया है, जिसमें भगवान शिव की विशाल मूर्ति और कैलाश पर्वत की रेप्लिका शामिल है, जो इस पंडाल का सबसे बड़ा आकर्षण है। शारदीय नवरात्रि के दौरान बंगाल के अलग अलग शहरों में सजने वाले ऐसे दुर्गा पूजा पंडाल सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं होते, बल्कि ये कला, संस्कृति और अद्भुत रचनात्मकता का जीता जागता उदाहरण है, जो अपनी इसी कला और रचनात्मकता के लिए देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी ने ऊंची जगहों में पारा शून्य से नीचे पहुंचा दिया है, तो आने वाले समय में इन पहाड़ी राज्यों में ठंड के क्या हालात रहने वाले हैं। अगर आप इन जगहों की सैर करने का प्लान बना रहे हैं तो मौसम विभाग की दी गई जानकारियों को सुनकर ही पहाड़ घूमने का प्लान बनाएं।
8: मौसम
0: मौसम ने रुख बदला तो पूरी कश्मीर घाटी ही सर्द हवाओं के आगोश में समा गई। गुलमर्ग की ऊंची चोटियां सफेद बर्फ से ढकी दिख रही हैं। बोटा पाथरी में आज की ताजा बर्फबारी के बाद से पारा भी गोते लगाने लगा है। मैदानों को भले ही सर्द मौसम का इंतजार हो, लेकिन पहाड़ों पर तो ठिठुरन वाले मौसम का आगाज हो चुका है। अक्टूबर के महीने में ही इस सीजन की बर्फबारी शुरू होने से पूरी घाटी की रंगत मानो बदल गई है। उत्तरी कश्मीर के ज्यादातर हिल स्टेशंस पर बर्फ की सफेद चादर नजर आने लगी है। सोनमर्ग में भी बर्फबारी के बाद से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कहीं बर्फ गिर रही है तो कहीं बारिश अपने साथ ठंड का एहसास लेकर आ रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि कश्मीर में आने वाले कुछ दिनों तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। लगातार बर्फबारी से आने वाले दिनों में ठंड तेजी से बढ़ेगी। इस बार अक्टूबर के महीने से ही अच्छी बर्फबारी होने से अंदाजा है कि दिसंबर जनवरी में ज्यादातर हिल स्टेशंस पर तापमान शून्य से काफी नीचे जा सकता है। कश्मीर के साथ साथ दूसरे पहाड़ी राज्यों में भी मौसम तेजी के साथ बदल रहा है। हिमाचल में रविवार को हुई तेज बारिश के बाद मौसम साफ हो गया है, लेकिन इस बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में सर्द मौसम का आगाज तो हो ही गया है। बारिश के बाद से तापमान में यहां 6 से 11 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। कुछ जगहों पर तो पारा शून्य से नीचे पहुँच गया है।
8: ये जो वेदर एक्टिविटी कल जो 11 अक्टूबर को प्रदेश में देखी गई है, इसके प्रभाव से जो दिन के तापमान है वो एवरेज देखिए 6 से लेके 11 डिग्री पूरे प्रदेश में फॉल हुए हैं। और कुछ एक शहरों की बात करें तो शिमला का अधिकतम तापमान 16 डिग्री था, वहीं जो है क्षेत्र है पालमपुर गुंतर कांगड़ा यहाँ पे 18 से लेके 19 डिग्री दिन के तापमान गए हैं, और इनमें भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है।
0: हिमाचल में आगे भी मौसम का उतार चढ़ाव जारी रहने की उम्मीद है, लेकिन कश्मीर में आने वाले दिनों में ठंड तेजी से बढ़ सकती है। गुलमर्ग से अशरफ वानी, सोनमर्ग से मीर फरीद और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: पहाड़ों पर घूमने जाने की सोच रहे हैं अगर आप, खासकर हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज, तो बता दें कि यहाँ पास में ही त्रियुंड है जो एडवेंचर की एक खास जगह बन रही है, क्योंकि यहाँ नेचर का दीदार करने के लिए जरूरत से ज्यादा सैलानी पहुंच रहे हैं। ऐसे में यहाँ कैंपिंग पर लगाम लगाने की तैयारी हो रही है।
0: हिमाचल के पहाड़ों की खूबसूरती पूरी दुनिया से लोगों को अपनी ओर खींच लाती है, लेकिन कई बार बेतहाशा बढ़ते टूरिज्म से इन पहाड़ों की कुदरती खूबसूरती को ही खतरा पैदा हो जाता है। धर्मशाला में त्रिउंड ट्रैक पर अनियंत्रित कैंपिंग भी पर्यावरण संरक्षण में एक बड़ी चुनौती बन रही थी, लेकिन अब प्रशासन त्रिउंड ट्रैक के प्राकृतिक सौंदर्य को सहेजने के लिए अलर्ट हो गया है। इस सिलसिले में टूर ऑपरेटर्स और एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े संचालकों की प्रशासन के साथ एक बैठक हुई। बैठक में त्रिउंड में सीमित संख्या में कैंप लगाने का फैसला लिया गया। प्रशासन ने त्रिउंड में कैंपिंग के लिए 3 हेक्टेयर क्षेत्र निर्धारित किया है। 1 हेक्टेयर में अधिकतम 80 टेंट लगाने की अनुमति होगी। पूरे एरिया में कुल 240 टेंट लगाए जा सकेंगे। त्रिउंड ट्रैक पर रोजाना 1000 पर्यटकों को जाने की इजाजत दी जाएगी। 500 पर्यटक गल्लू की तरफ से जाएंगे, वहीं 500 पर्यटकों को भागसुनाग की ओर से जाने की अनुमति होगी। सिर्फ रजिस्टर्ड पर्यटन संचालकों को ही अनुमति दी जाएगी और पर्यटकों की सुविधा के लिए 6 बायो डाइजेस्टर शौचालय लगाए जाएंगे।
9: ये जितने भी हमारे पास यहाँ हाइकर जो ट्रैकर्स जाते हैं उसके लिए एक हम मैकेनिज्म डेवलप करने जा रहे हैं, वो हमारे इकोटूरिज्म पॉलिसी का भी हिस्सा है। उसमें हम चाहते हैं कि जितने भी हाइकर्स और ट्रैकर्स ट्रैक पे जाते हैं वो रजिस्टर्ड और ट्रेन टूरिस्ट गाइड के माध्यम से जाएं। मतलब कि जो भी ट्रेन टूरिस्ट गाइड हैं और रजिस्टर्ड है मिसलेनियस एक्टिविटीज़ में टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ, वही इन लोगों को लेके जाएं और कैंपिंग करवाएं। तो जो ये हमारे इश्यूज हैं, सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ का इशू है, ट्रैकर्स की सेफ्टी का इशू है, वो क्लिंच हो जाता है।
0: इस नियंत्रण के साथ ही प्रशासन त्रिउंड में हाइकर्स और ट्रैकर्स की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था करने में जुट गया है। इसके तहत सैलानियों को ट्रेन्ड और टूरिस्ट गाइड्स के साथ ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए भेजा जाएगा। इससे पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखने में भी मदद मिलेगी। धर्मशाला से पूजा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
10: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: नवरात्र में माँ दुर्गा के पंडाल बने आकर्षण का मुख्य केंद्र। पुरुलिया में टेराकोटा के पंडाल ने खींचा सभी का ध्यान। हावड़ा में देखने को मिली केदारनाथ धाम की झलक। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर मां ब्रजेश्वरी के दरबार में पहुंची कथावाचक जय केशोरी, पूजा अर्चना के साथ माता का आशीर्वाद। देश में पहली बार चमोली जिले में वसुंधरा ताल में लगा अर्ली वार्निंग सिस्टम, 2 घंटे पहले मिलेगी आपदा की चेतावनी, स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा और इजाफा, पहला स्वदेशी मल्टीपर्पज वेसल समर्थक 16 अक्टूबर को कारवार में होगा कमीशन। कश्मीर की गुरेज घाटी में लगातार बर्फबारी का दौर, गुलमर्ग और सोनमर्ग में भी बिछी बर्फ की सफेद चादर, सड़कों पर फिसलन, सैलानियों से सावधानी बरतने की अपील।

नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात गरबे के रंग और उमंग की। नवरात्र के 9 दिनों में देश भर में गरबे का उत्साह नजर आता है। वैसे तो अब अलग अलग राज्यों में शहर शहर गरबा आयोजन होने लगा है, लेकिन गरबे की उमंग का सबसे गाढ़ा रंग चढ़ता है गुजरात में। हर बार की तरह इस बार भी गुजरात से गरबा की शानदार तस्वीरें आ रही है। गुजरात में नवरात्रि की भक्ति के साथ गरबा की मस्ती खुली मिलती है। जामनगर में अंगारों के बीच मां दुर्गा की आराधना करते गरबा प्रेमियों का उत्साह देखने लायक है। इसी तरह राजकोट की वीरांगनाएं तलवार रास के माध्यम से महाअंबे की आराधना कर रही है, तो वही वडोदरा में गरबा का राष्ट्रीय अंदाज नजर आया। वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में वो अद्भुत दृश्य था, हजारों लोग एक साथ गरबा की ताल पर झूम रहे थे। ऐसी कितनी ही तस्वीरें इस समय गुजरात के अलग अलग शहरों से लगातार आ रही है। तो चलिए जीएनटी पर नवरात्रि के इस उत्सव को बनाते हैं कुछ और खास और आपको दिखाते हैं गुजरात में नवरात्र के दौरान सजे गरबा की नौ रंग।

शहर सभी है एक, क्या सूरत क्या भोपाल, नवरात्रि का रंग वही जमे जहां मिले गरबे की ताल से ताल। वैसे तो नवरात्रि की धूम पूरे देश में है, लेकिन गुजरात जैसी रौनक कहीं और नहीं। चाहे राजकोट हो, वडोदरा, जामनगर या फिर खेड़ा, हर शहर गरबा और डांडिया के रंग में रंगा हुआ है। ये तस्वीर है गुजरात के राजकोट। शौर्य की ताल पर ये शतरानियों का नृत्य है।

भवानी की भक्ति में ये शक्ति की हुंकार है। माँ अम्बे के आंगन में ये श्रद्धा, शौर्य और साहस का संगम है। हाथों में लहराती तलवार, अपने अपने वाहन पर सवार, गुजरात के राजकोट में राजपूत समाज की महिलाओं और बच्चियों ने राजपूताना पोशाक में तलवार के साथ गरबा कर भक्ति और शक्ति की अनोखी तस्वीर पेश की। किसी ने चलती हुई कार पर तलवार के साथ गरबा किया, किसी ने स्कूटर पर सवार होकर तलवार का जौहर दिया।

0: प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये हमारी राजपूती कल्चर है जो राजपूती संस्कृति है उनको प्रदर्शित करता है। राजपूती संस्कार जो हमारी दिकरियों में होते हैं उनको यह दर्शाता है। शौर्य, वीरता और जो जो इतिहास में गाथाएं लिखी गई है उसको बखूबी यहाँ पे प्रस्तुत करता है।
1: 12 साल की बच्ची से लेके 60 साल की दादी माँ या नानी माम जिसे कह सकते वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और साथ में 200 जितनी सन्नारियां हमारे साथ जुड़ी हुई है जो अभी हम यहाँ प्राचीन रस और तलवार रस विविध प्रकार के रजू करने वाली है।
2: भगनी सेवा फाउंडेशन की महिलाएं ये कार्यक्रम करती हैं और पूरा संचालन महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसकी पूरी व्यवस्था महिलाएं करती हैं, ट्रेनिंग महिलाएं देती हैं।
3: ये अगली तस्वीर है गुजरात के ही जामनगर की। दहकते अंगारे और उन पर नंगे पैर रास, इसे कहते हैं अंगारा रास। आग के बीच कदमों की ये लय लोगों को हैरान कर देती है। जामनगर में पिछले 80 सालों से नवरात्र के दौरान ये अद्भुत परंपरा निभाई जा रही है। वक्त बदला, गरबा का रंग और अंदाज बदला, लेकिन जामनगर की इस गरबी ने अपनी पुरानी पहचान नहीं छोड़ी। पीढ़ी दर पीढ़ी, बुजुर्गों से युवाओं तक ये परंपरा यूं ही सहेजी जाती रही। और इसी परंपरा का हिस्सा है यहाँ होने वाला मशाल रास, जहाँ लोग हाथों में जलती मशालें लेकर ढोल की थाप पर झूमते हैं। मशाल रास माँ अम्बे की आराधना का अनोखा माध्यम है। माँ की भक्ति, लोक संस्कृति का रंग और खुद में 80 साल की विरासत को समेटे जामनगर की ये गरबी जो देखता है हैरान रह जाता है। अब आपको दिखाते हैं जामनगर में ही खेला जा रहा एक और अनोखा गरबा। जामनगर का श्री आशापुरा गरबी मंडल पिछले 88 सालों से यहां अठंगा रास का आयोजन कर रहा है। ये गरबा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा पारंपरिक रास है जिसे रस्सियों की मदद से खेला जाता है। गरबा के इस रूप को गोप गुठन रास और कान गोपी रास के नाम से भी जाना जाता है। इस रास में मंडल के 16 सदस्य रस्सियों के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तालमेल और अनुशासन के साथ होने वाली ये प्रस्तुति अनोखी होती है। रास की अनूठी शैली और कलाकारों के बीच शानदार समन्वय दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। मंडल के सदस्य हर साल पूरे उत्साह और श्रद्धा भाव के साथ इस गरबी में भाग लेते हैं और पारंपरिक रास के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाते हैं। नई पीढ़ी को भी इन प्राचीन परंपराओं से जोड़ने का निरंतर प्रयास किया जाता है ताकि आने वाले समय में भी ये सांस्कृतिक धरोहर जीवित रहे। आपको बता दें कि जामनगर का आशापुरा गरबी मंडल पारंपरिक अठंगा रास के साथ साथ तलवार रास की विशेष प्रस्तुति भी देता है। यहाँ बालिकाएं और युवतियाँ पूरे उत्साह के साथ तलवार लेकर गरबा खेलती हैं और माँ आद्या शक्ति की ये अद्भुत आराधना करती हैं। तलवारों के साथ किया जाने वाला ये रोमांचक प्रदर्शन केवल एक नृत्य नहीं बल्कि साहस, वीरता, शौर्य और भक्ति का जीवंत प्रतीक है। इस प्रस्तुति के माध्यम से सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा को हर साल दोहराया जाता है। आशापुरा गरबी मंडल में पिछले 45 वर्षों से नवरात्रि महोत्सव की ये परंपरा उत्साह और श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है। अठंगा रास और तलवार रास की ये परंपरा न केवल जामनगर बल्कि पूरे सौराष्ट्र और गुजरात में पारंपरिक गरबी की समृद्ध विरासत को सहेजने और आगे बढ़ाने में भूमिका निभा रही है।

दिनों गरबा और डांडिया के बीच भारत के दो राज्यों की संस्कृति का सुंदर संगम दिख रहा है। खेड़ा के सलून गांव में बेटियों ने पारंपरिक मणिपुरी वेशभूषा में मां अम्बा की विशेष आरती की। इस अनूठी प्रस्तुति को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। गांव के मुख्य चौक में जब मणिपुरी वेशभूषा में सजी बेटियों ने मां अम्बा की आरती शुरू की तो माहौल भक्तिमय हो गया। मणिपुरी संस्कृति की झलक और मां जगदम्बा के प्रति अटूट श्रद्धा ने इस आयोजन को खास बना दिया।

0: चलिए गुजरात के ही वडोदरा, जहां गरबा महोत्सव की रौनक, सजावट और भव्यता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। ये शानदार तस्वीरें हैं वडोदरा के ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस में आयोजित हेरिटेज गरबा उत्सव की, जहां भारतीय और वैश्विक संस्कृति का संगम देखने को मिला। देशों के विदेशी मेहमान लक्ष्मी विलास पैलेस में हेरिटेज गरबा के साक्षी बने। रंग बिरंगे चनिया चोली और लहंगों में सजे विदेशी मेहमान यहां गरबे का लुत्फ उठाते दिखे।
1: सो इफ यू कैन स्पीक हिंदी, जस्ट टेल मी, कैसा लग रहा है आज आपको यहां पर?
2: बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बेस्ट।
3: It's incredible. Just look at the scale. We're at Lakshmi Villas Palace in Vadodara. We have tens of thousands of people dancing together as one, and then over behind us.
1: Are you enjoying the?
2: I love it. It's incredible.
1: So, have you ever been to this place?
2: No, never, never. And it is beyond words that we're experiencing. It's completely mind-blowing.
0: ढोल की थाप और रोशनी से जगमगाता पैलेस का प्रांगण पूरी रात भक्ति और उत्सव के रंग में रंगा रहा। पारंपरिक लोक गीतों पर लोग थिरकते रहे।
1: ये लाइव सिंगिंग म्यूजिक के साथ ही यहाँ पर गरबा होता है। यहाँ का प्रोटोकॉल है कि आप कोई भी कैसेट नहीं चला सकते हैं, कोई भी वीडियो नहीं दिखा सकते, आपको लाइव ही यहाँ पर सिंगिंग करनी होती है। ये पूरा प्रोटोकॉल है ताकि हमारी कल्चर संस्कृति को भी सहेजा जाए। और यहाँ तमाम जितने विदेशी डेलीगेट्स हैं, उन लोग को यहाँ लाने का मकसद भी यही है कि वो हमारी संस्कृति से रूबरू हो सकें। बिना देर गवाए एक राउंड गरबा का हो जाए।

0: इस इवेंट में 40,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ पारंपरिक गरबा किया और मां के चरणों में आस्था की जोत जलाई। जब एक साथ हजारों लोगों ने गरबा नृत्य किया तो वो नजारा अद्भुत था। सजे धजे सैकड़ों कलाकार एक साथ गरबा करने उतरे तो देखने वाले देखते रह गए। गरबा न हो मानो रंगों का उत्सव हो,
1: ऐसा खूबसूरत नजारा आप केवल वडोदरा में देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 40,000 लोग हैं जो यहाँ पर गरबा परफॉर्म कर रहे हैं, लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं। ये भी इसी का एक थीम रहता है जिसमें सबको बोला जाता है कि आप टॉर्च ऑन कीजिए, टॉर्च ऑन के साथ रिदम के साथ अपने ताल से ताल मिलाते हुए लोग यहाँ पर।
2: और नवरात्रि के समय गरबा को लेकर उत्सुकता खूब दिखती है। जिसने कभी गरबा नहीं किया हो वो भी इन दिनों गरबा उत्सव में शामिल होने के लिए आतुर दिखता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि में गरबा की शुरुआत कैसे हुई और गरबा मुख्य रूप से नवरात्रि में ही क्यों किया जाता है और आखिर क्यों गरबा परंपरा की शुरुआत को गुजरात से जोड़कर देखा जाता है? गुजरात को गरबे की विरासत आखिर कैसे मिली? आज GNDA स्पेशल में आपको सुनाते हैं कहानी गरबे के इतिहास की।

0: लय पर ये परंपरा की ताल है। संगीत की रिदम और तालियों की थाप पर ये सदियों पुरानी संस्कृति की छाप है। शान गुजरात की मिट्टी पर थिरकते ये पांव देखने वालों के हृदय पर छोड़ते जाते हैं। गुजरात का गरबा संगीत और नृत्य का वो अनोखा संगम है जिसकी गोलाकार संरचनाओं में आनंद और उल्लास के साथ शक्ति उपासना का सागर भी खिलोरे लेता है। बल्कि देखा जाए तो गुजरात का गरबा वास्तव में मां भगवती की उपासना की सबसे जीवंत तस्वीर है। जो गरबा नृत्य परंपरा की जड़ों से परिचित नहीं है वे इसे महज एक डांस फॉर्म के रूप में जानते हैं और भारत के विस्तृत सांस्कृतिक मानचित्र का एक हिस्सा भर मानते हैं। एक बेहद सुंदर रंगों से सजा धजा हिस्सा, लेकिन वास्तव में गरबा इससे कई बढ़कर है। वास्तव में गरबा नारी की सृजन शक्ति को नमन करने का उत्सव है और इस उत्सव के केंद्र में होता है वो गर्भदीप जिसे आपने अक्सर गरबा नृत्य के केंद्र में देखा होगा। गोला बनाकर किए जाने वाले गरबा नृत्य के बीच में एक कलश रखा जाता है। गरबा के आयोजन में देवी की उपासना के साथ इस कलश को रखने की परंपरा है। इस कलश को गर्भदीप कहा जाता है और इसी गर्भदीप के गर्भ में छुपा है गरबे की परंपरा का सार।
1: 5000 साल से ज्यादा गरबा की परंपरा है। विक्रम संवत में 16 दिन जब श्राद्ध के संपूर्ण होते हैं और शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होता है। बारिश विदाई ले के न ले, लेकिन शरद ऋतु आ जाती है। गरबा का अर्थ ये होता है दीप गर्भ, गर्भ में मैं हूँ। गर्भ का अर्थ ये है कि छिद्र वाले घट में गरबा कहते हैं, यानी गर्भो भी कहते हैं।
0: आपको बता दें कि गरबा शब्द गर्भ और दीप से मिलकर बना है। नवरात्रि के पहले दिन मिट्टी के घड़े में बहुत से छेद किए जाते हैं जिसके अंदर एक दीपक प्रज्वलित करके रखा जाता है। इसके साथ चांदी का एक सिक्का भी रखते हैं। इस दीपक को ही दीप गर्भ कहा जाता है। आपको बता दें कि दीप गर्भ नारी की सृजन शक्ति का प्रतीक है और गरबा इसी गर्भ दीप का अभ्रंश रूप है। दीप गर्भ की परंपरा में कलश या घड़े को नारी के गर्भ का प्रतीक माना जाता है, तो वहीं इस कलश में रखा दीपक जीवन और विशेष कर गर्भ में पल रहे शिशु के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसी गर्भ दीप के चारों ओर गोला बनाकर गरबा किया जाता है। ये गोला सर्कल ऑफ लाइफ यानी जीवन के चक्र का प्रतीक माना जाता है। वही जीवन चक्र जिसकी उत्पत्ति और संचालन का आधार स्वयं शक्ति है। इस तरह गरबा नृत्य नारी की प्रजनन क्षमता का उत्सव मनाता है, नारित्व का सम्मान करता है और मातृ देवियों के सभी 9 रूपों को नमन करता है।
1: दीप गर्भ को नारी शक्ति समन्वित कहते हैं कि गरबा का अर्थ ये है कि गर्भ का दीपक पौराणिक मात्रा अनुसार के अनुसार कहा जा रहा है कि गर्भ दीप स्त्री गर्भ का सर्जन शक्ति का प्रतीक होता है, सौभाग्य का प्रतीक होता है, शक्ति का प्रतीक होता है। गर्भदीप स्थापना महिलाओं के लिए समृद्धि लाती है और स्त्रियों अच्छे वस्त्र धारण करके माता दुर्गा की उपासना करती है और खूब फलदायी है।
0: दीप गर्भ की स्थापना के पास महिलाएं सुंदर और रंग बिरंगे कपड़े पहनकर माता शक्ति के आगे नृत्य कर उन्हें प्रसन्न करती हैं। गरबा नृत्य कई तरह से और कई चीजों के साथ किया जाता है। गरबे में महिलाएं और पुरुष ताली चुटकी डांडिया और मंजीरों का भी इस्तेमाल करते हैं। ताल से ताल मिलाने के लिए महिलाएं और पुरुषों का 2 या फिर 4 का ग्रुप बनाकर ये नृत्य किया जाता है। गरबे के नृत्य में मातृ शक्ति और कृष्ण की रासलीला से संबंधित गीत गाए और बजाए जाते हैं। गुजरात के लोगों का ये मानना है कि गरबा नृत्य माँ भगवती को बेहद प्रिय है, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए गरबे का नवरात्रि में खास तौर पर आयोजन किया जाता है।

नवरात्रि में गरबा और डांडिया खेलने की परंपरा कई सालों पुरानी है, लेकिन 60 और 70 के दशक तक गरबा गुजरात और राजस्थान जैसे पश्चिमी राज्यों में खेला जाता था। उन दिनों तक गरबे का रूप भी आज जितना भव्य और विशाल नहीं था। गांवों और शहरों में बेहद सादगी के साथ और सीमित स्तर पर गरबे का आयोजन होता था।

लेकिन धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ गरबा का विस्तार गुजरात की सीमाओं से निकलकर दूसरे राज्यों तक पहुंचने लगा। लोकप्रियता बढ़ी तो गुजराती सिनेमा के बाद मुंबई की फिल्मों ने भी अपने कैनवस में गरबा वाले गीतों के लिए जगह बनानी शुरू की।

तरह गरबा की लोकप्रियता आगे बढ़ती चली गई। समय के साथ गरबा की बढ़ती ख्याति यूनेस्को तक भी पहुंची। साल 2023 में यूनेस्को ने इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी यानी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया। यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने के बाद गरबा की रौनक कुछ और बढ़ गई। अब देश के कई राज्यों में नवरात्रि पर्व पर गरबा का आयोजन किया जाता है। कई संस्थाएं और क्लब बेहद बड़े पैमाने पर पूरी भव्यता के साथ नवरात्र में गरबा का आयोजन करते हैं। कई जगहों पर गरबा प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। गरबा आयोजन के नए रिकॉर्ड बनते हैं। अब की बार भी शक्ति उपासना के उत्सव में गुजरात के साथ साथ सारा देश आस्था की इस अनुपम ताल पर झूम रहा है, जिसे दुनिया गरबा नाम से जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: अमेरिका के न्यूयॉर्क में बहुत मशहूर जगह है टाइम्स स्क्वायर, सात समुंदर पार। नवरात्र में यहां मां दुर्गा की भक्ति का रंग जमा हुआ है। बंगाली समुदाय के लोगों ने यहां पर दुर्गा पूजा के जरिए अपनी संस्कृति और परंपराओं का जश्न मनाया। दो दिन के इस उत्सव में पूजा पाठ के साथ संगीत, नृत्य और सम्मान समारोह हुआ।

0: दुनिया के सबसे चर्चित स्थानों में से एक न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर माँ दुर्गा के जयकारों से गूंज उठा। जहाँ कहीं पूजा अर्चना में जुटे श्रद्धालु दिखे, तो कहीं भक्ति गीतों पर थिरकते कलाकार नजर आए। सात समंदर पार माँ दुर्गा की आराधना में डूबे ये सभी श्रद्धालु भक्ति के साथ अपनी संस्कृति और परंपराओं के रंग बिखेरते नजर आए। आमतौर पर यहाँ चमचमाती स्क्रीन और लोगों की भीड़ नजर आती है, लेकिन इस बार नवरात्रि के मौके पर माहौल कुछ ऐसा बदला कि हर तरफ माँ की भक्ति के रंग नजर आने लगे। इस आयोजन में भक्ति के साथ अपनी जड़ों से जुड़े रहने का भाव भी नजर आया। भक्ति गीतों की धुन पर कलाकारों ने ऐसा समा बांधा कि दर्शक भी झूम उठे। बच्चों और युवाओं की प्रस्तुति ने उत्सव में चार चांद लगा दिए। प्रस्तुति में अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और परंपराओं को सहेजने की झलक दिखाई दी। वहीं कलाकारों की संगीतमय प्रस्तुति से हर कोई उत्सव के रंग में रंगा नजर आया। खास बात तो ये रही कि माँ दुर्गा की भक्ति में सिर्फ भारतीय समुदाय ही नहीं, विदेशी पर्यटक भी शामिल हुए और टाइम्स स्क्वायर में माँ दुर्गा की आराधना का ये उत्सव आस्था के साथ भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को भी बयां कर गया। न्यूयॉर्क से रोहित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: नवरात्र में माँ दुर्गा के पंडाल बने आकर्षण का मुख्य केंद्र। पुरुलिया में टेराकोटा के पंडाल ने खींचा सभी का ध्यान। हावड़ा में देखने को मिली केदारनाथ धाम की झलक। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर माँ ब्रजेश्वरी के दरबार में पहुंची कथावाचक जयकेश्वरी, पूजा अर्चना के साथ माता का आशीर्वाद। देश में पहली बार चमोली जिले में वसुंधरा ताल में लगा अर्ली वार्निंग सिस्टम, 2 घंटे पहले मिलेगी आपदा की चेतावनी, स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा और इजाफा, पहला स्वदेशी मल्टीपर्पज वेसल समर्थक 16 अक्टूबर को कारवार में होगा कमीशन। कश्मीर की गुरेज घाटी में लगातार बर्फबारी का दौर, गुलमर्ग और सोनमर्ग में भी बिछी बर्फ की सफेद चादर, सड़कों पर फिसलन, सैलानियों से सावधानी बरतने की अपील।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राव शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं नवरात्र में मां के सभी स्वरूपों से मिलने वाले वरदान की। देश भर में नवरात्रि का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। तीसरे दिन आज मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की गई और बुधवार को मां कूष्मांडा की आराधना होगी। आपको बता दें कि नवरात्र में मां के हर रूप हर स्वरूप का अपना महत्व होता है। आज आपको मां के हर स्वरूप से मिलने वाले गुणों के बारे में समझाने जा रहे हैं और साथ ही साथ नवरात्र में सेहत और समृद्धि प्राप्त करने का उपाय भी बताएंगे। समझेंगे कि शरद ऋतु के इस मौसम में पूजा उपवास और व्रत से क्या फायदे होते हैं। इसके बाद आपको लिए चलेंगे कोलकाता, जहां पर हर साल की तरह इस बार भी भव्य और अद्भुत पंडाल बनाए गए हैं। कुछ पंडालों की थीम देखने वालों को दंग कर रही है तो किसी की सजावट मंत्रमुग्ध करने वाली है। फिलहाल तीन तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आइए शुरुआत करते हैं नवरात्र में देवी के नौ स्वरूपों की पूजा और उससे हासिल होने वाले नौ वरदानों से। मां का हर स्वरूप ममतामयी है और मां अपने हर रूप में सुख समृद्धि शक्ति और भक्ति का आशीर्वाद देती है। लेकिन इसके अलावा मां के हर रूप में विशिष्ट गुणों का वर्णन मिलता है। मां की पूजा उपासना से ऐसे गुणों का वरदान मिलता है। अगर हम ऐसे गुणों को आत्मसात करें तो इससे हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। तो चलिए ज्योतिष के जानकारों से समझने की कोशिश करते हैं कि मां शैलपुत्री से लेकर मां सिद्धिदात्री तक मां का हर स्वरूप हमें क्या सिखाता है।

0: प्रथम शैलपुत्री च द्वितीया ब्रह्मचारिणी तृतीया चंद्रघंटैति कुष्मांडाति चतुर्कम्। पंचम स्कंदमाता ते षष्ठम कात्यानीति च सप्तमं कालरात्रि महागौरी अष्टमम्। नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतितर। नाम अनेक धाम अनेक, एक ही आदि शक्ति पर स्वरूप अनेक। अपनी नौ रूपों में माँ शक्ति भी है, भक्ति भी है, ममतामय है तो रौद्र भी है। कभी ज्ञान तप और त्याग की राह दिखाती है तो कभी अदम्य साहस का भी वरदान देती है। नवरात्र का महत्व भी इसीलिए है क्योंकि इसमें एक साथ माँ के सभी रूपों की पूजा अर्चना होती है। माँ के हर रूप के विशिष्ट गुण हैं जिनमें जीवन के लिए संदेश छिपा है। यानी माँ की हर रूप की पूजा अर्चना से सुखी जीवन का वरदान मिलता है। माँ का पहला स्वरूप है शैलपुत्री का, जो दृढ़ता और संकल्प का प्रतीक है। माँ का ये स्वरूप बताता है कि हमें अपने लक्ष्यों की ओर पूरे निश्चय और संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जबकि माँ का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी का, जो तप और अनुशासन का प्रतीक है। माँ का ये स्वरूप बताता है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए तप और अनुशासन ही एकमात्र रास्ता है।
1: जब हम शैलपुत्री की बात करें तो इनकी जो साधना या आराधना होती है वो हम सबसे मूलाधार चक्र से इसकी शुरुआत करते हैं। और इसका अगर आप बोलते हैं हमारे जन्म पत्रिका के हिसाब से देखें तो सूर्य, क्योंकि सूर्य सब चीजों की शुरुआत करता है। तो अगर हम शैलपुत्री की आराधना कर रहे हैं तो हम शुरुआत की आराधना कर रहे हैं, मतलब सूर्य की आराधना कर रहे हैं। और जब शुरुआत हम करते हैं तो हमारे अंदर सबसे ज्यादा जो चीज जरूरी होती है वो होता है स्ट्रांग इरादा। तो जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें पत्थर जैसी मजबूती और इरादा बहुत जरूरी है। तो शैलपुत्री के लिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं और हम मूलाधार पर ध्यान करते हैं। हम कुछ नहीं भी अगर कर सकते हैं तो लम मंत्र का जाप करते हैं। अब जब हम नेक्स्ट आते हैं ब्रह्मचारिणी, ये 9 डेज में हम इवॉल्व होते हैं। इवॉल्व होने के लिए हर एक देवी के लिए हम एक एक चक्र को एक्टिवेट भी करते हैं और एक एक क्वालिटी अपने अंदर इम्बाइब करते हैं। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की, एक इरादा किया कि मुझे कोई काम करना है, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल। अब सेकेंड जब आई ब्रह्मचारिणी, तो ये शनि से रिलेटेड है और इसमें स्वाधिष्ठान चक्र को हम एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड चीज जो हमसे शनि चाहते हैं वो क्या चाहते हैं कि आपने पहले तो डिसीजन लिया कि हाँ हम कोई काम करेंगे, मजबूती से करेंगे। सेकेंड में कठोरता और अनुशासन के साथ हमें लगातार मेहनत करनी होगी, ये इससे हम शनि को इम्प्रूव कर सकते हैं और ब्रह्मचारिणी के आराधना करके हम अपने अंदर इस क्वालिटी को ला सकते हैं।
0: उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, गांव कस्बे शहर, हर जगह जयकारे गूंज रहे हैं और माँ की कृपा बरस रही है। अपने भक्तों को माँ जगदम्बा सुख समृद्धि का वरदान देती है। पर इसके साथ ही माँ चंद्रघंटा स्वरूप साहस और सजगता का प्रतीक भी है। माँ चंद्रघंटा बताती हैं कि अपने लक्ष्य की धुन में मगन साधक को सफलता मिलकर ही रहती है। इसी तरह माता का चौथा स्वरूप यानी कि माँ कुष्मांडा सृजन और शक्ति का प्रतीक है। माँ का ये स्वरूप बुद्धि, विवेक और सृजन का महत्व बताता है।
1: चंद्र घंटा की अगर बात शुरुआत करते हैं तो देखिए देवी के माथे पर आप देखेंगे चंद्रमा जैसा बना हुआ है। इससे हमें समझ में आता है कि कैसे हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं। देखिए देवी हर समय पूरी रेडी है, अस्त्र शस्त्र के साथ एकदम रेडी है कि अब मुझे अब जाना है और युद्ध करना है, लेकिन इसको वो बैलेंस रखती है। तो अगर हम इस देवी को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमारे 3-4 चीजें हैं जो हम जरूर करेंगे। देवी को हम सबसे पहले 2 मिनट तक आप घंटा बजाइएगा, बेल बजाकर उनको आप अगर जो भी आपकी मनोकामना है या कुछ भी आप बोलना चाहते हैं, क्योंकि इसी देवी के बारे में ऐसा बोला जाता है कि बहुत बड़ी सेना को इन्होंने अस्त्र शस्त्र से लड़ाई करके नहीं हराया था। उनके पास जो बैल बैल है, इस बैल के साउंड से और शेर की गर्जन से आधे से ज्यादा युद्ध में लोग हार गए थे।
0: अंधकार को दूर करने वाली और राक्षसों का वध करने वाली माँ अपने भक्तों को प्रेम और करुणा का आशीर्वाद भी देती है। जैसे माँ का स्कंदमाता स्वरूप प्रेम और करुणा का प्रतीक है, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है। जबकि माँ कात्यायनी का रूप बताता है कि अन्याय का प्रतिकार और दुष्टों पर प्रहार जरूरी है ताकि अधर्म पर धर्म की विजय सुनिश्चित हो।
2: माँ स्कंद माता का जो रूप है वो क्लियरली जो है एक मदरहुड को दर्शाता है, एक नर्चरिंग क्वालिटीज को दर्शाता है और एक फेमिनिन एनर्जी को भी बहुत ज्यादा दर्शाता है। माँ स्कंद माता का ये जो रूप है ये नॉलेज को भी दर्शाता है और ये एडुकेशन को भी दर्शाता है। जब एक लेडी जो होती है जब वो मदर बनती है तो कहीं ना कहीं उसकी फेमिनिन क्वालिटीज बहुत ज्यादा और निखर के आती हैं। तो ये कहता है कि जीवन में आपको अपने अंदर बहुत ज्यादा नर्चरिंग क्वालिटीज को है वो अपनाना पड़ेगा। जो भी आपके जीवन में आए चाहे छोटा बच्चा आए चाहे कोई बड़ा आए, आप देखिए कि वो जो पर्टिकुलर इंसान है जो पर्टिकुलर व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो है कैसे इवॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर ये इवॉल्वमेंट का बहुत ज्यादा कनेक्शन है।
0: सभी की राह अलग होती है, जहाँ अलग होती है माँ भी अपने सभी स्वरूपों में मनवांछित फल प्रदान करती हैं। किसी को साहस और शौर्य का वरदान तो किसी को माँ कालरात्रि के रूप में वैराग्य और शुद्धि का मंत्र देती हैं। इस रूप में माँ भय का नाश करती हैं और सकारात्मकता का संचार करती हैं। तो वहीं माँ महागौरी शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। माँ का ये रूप जीवन में सादगी शांति और सौहार्द का महत्व बताता है।
1: काल रात्रि की बात करें तो इसमें हम राहु को रिलेट कर सकते हैं। अगर हमारे जन्म पत्रिका में राहु से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो काल रात्रि जी को हमें पकड़ना चाहिए। इसमें अगर हम मेडिटेशन करते हैं, मैंने बताया था चक्रों की हम मेडिटेशन करते हैं, तो सहस्त्र चक्र में हम इसकी मेडिटेशन करते हैं। इससे हमें सबसे ज्यादा खास बेनिफिट क्या होता है, हमारे अंदर निर्भयता आती है। और एक और चीज हम सीख पाते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो हमें डरना नहीं है, उसमें काल रात्रि की तरह हमें काल बनकर उस बाधा को दूर करना है। तो जब हमारे अंदर ये स्पिरिट आता है कि हम काल रात्रि की पूजा कर रहे हैं, मतलब हम भी वो काल की तरह अपनी प्रॉब्लम के ऊपर चढ़ जाएंगे और हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तब जाकर हम एक विजयी बन पाते हैं।
0: माँ के दरबार में बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है, हर मुराद पूरी होती है। लेकिन खूबी ये भी है कि माँ के अलग अलग रूपों में जीवन को सफल और सरल बनाने का सूत्र है। जैसे कि माँ सिद्धिदात्री आत्मज्ञान और संपूर्णता का प्रतीक है और साधना को पूर्णता और सफलता तक पहुँचाती है।
2: माँ सिद्धि दात्री हैं, इनका मतलब है सिद्धि प्लस दात्री। इफ वी यू नो ब्रेक दिस वर्ड, तो यहाँ पर दात्री का मतलब होता है देने वाली और सिद्धि का मतलब है सिद्धियां। तो कहीं ना कहीं इसका मीनिंग जो होता है वो हो गया सिद्धियां देने वाली। तो 9 days आफ्टर 8 दिन जब आपने देवी की आराधना करी तो 9वां दिन जो है ये आपकी तपस्या का, जो आपके पेशेंस जो आपने 8 दिन रखा उसका है, ये सिद्धियों का है। अब यहाँ पर जो आपने 8 दिन अपने मंत्र को साधा तो फाइनली जब आपको की सिद्धि मिली, इसके बाद जो है ये आपके कंप्लीशन का भी है। कोई भी चीज जब कंप्लीट होती है तो वो साथ में हमें ये भी सिखाती है कि अब हमें जो है लाइफ में न्यू बिगनिंग्स की तरफ फोकस करना है।
0: इस तरह देखिए तो नवरात्र का महत्व सिर्फ पूजा पाठ तक नहीं बल्कि माँ की आराधना के 9 दिनों का आध्यात्मिक महत्व भी है और इनमें तप अनुशासन और संयम से जीवन को बेहतर बनाने का संदेश भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: नवरात्र में उपवास जप तप और अनुशासन का विशेष महत्व है। पूजा पाठ के अलावा खान पान का भी खास ख्याल रखा जाता है। देखा जाए तो उसका सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं है, नवरात्र की आस्था भक्ति और उससे जुड़ी दिनचर्या का हमारे जीवन पर गहरा असर होता है। शक्ति की साधना से न सिर्फ समृद्धि बल्कि सेहत का भी वरदान मिलता है। मौसम के हिसाब से देखा जाए तो नवरात्र के दौरान की जाने वाली पूजा आराधना हमारे लिए कितनी फायदेमंद होती है आइए समझते हैं।
4: नवरात्रों के दौरान कालका जी मंदिर में लगातार भक्तों का तांता नजर आ रहा है। आज नवरात्रों के तीसरे दिन भी मंदिर में सुबह से भक्त लाइनों में लगकर मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं।
5: ये मान्यता है कि जो भी मां के दर्शन करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए कुछ साधक तो नित्य प्रति जो आके माँ के दर्शन करते हैं और मध्यरात्रि से ही माँ के दर्शन कपाल दर्शन के लिए कपाट खोल दिए जाते हैं। भगवती की जो मध्यरात्रि में आरती करने के बाद जो भक्तों के कपाट जो है भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं और लगभग जो 2:30 बजे के बाद से ही भक्त जो है निरंतर माँ के दर्शन कर रहे हैं और पुण्य लाभ कर रहे हैं।
6: माता के दर्शन करने का जो सौभाग्य मिला है ये सबको नहीं मिलता है और इतनी धार्मिक मान्यता है यहाँ की, यहाँ पे बार बार आने का मन करता है माता रानी के दर्शन करने का और हम तो आते ही रहते हैं लगभग।
7: <गण माँ के हर दरबार में भक्ति अपरंपार है, सभी के दिल में दर्शन की आस, फोटो पर जय जयकार है। मंदिरों में श्रद्धा का सिलसिला थमता नजर नहीं आता, पंडालों में भी गजब की रौनक है और घरों में भी माता रानी की विधि विधान से पूजा हो रही है। हर बार की तरह शरद ऋतु के आगमन के साथ आस्था का ये उत्सव जनजीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है। देखिए तो माँ की पूजा आराधना और 9 दिनों के व्रत के साथ बदले हुए मौसम का संयोग भी अद्भुत है। असल में ये बरसात के बाद शरद ऋतु के आगमन का समय है, जब पर्यावरण और तापमान में तेजी से बदलाव होता है। जाहिर है शरीर का मेटाबॉलिज्म भी नए मौसम के अनुसार ढलता है। आयुर्वेद के मुताबिक जठरागिनी थोड़ी कमजोर हो जाती है। मॉनसून में शरीर के भीतर पित्त और एसिडिटी बढ़ती है। ऐसे समय में नवरात्र की पूजा स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ जाती है। देखा जाए तो नवरात्र व्रत बदलते मौसम के दुष्प्रभावों से बचाता है और शरीर को सर्दियों के लिए तैयार करता है।
8: नवरात्रि के टाइम पर अगर हम इसको साइंटिफिकली देखते हैं तो ये 9 nights ऑफ मैनिफेस्टेशन और ट्रांजिशन होता है। जब एक ऋतु से हम दूसरी ऋतु में जाते हैं, यानी कि क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, तो एनवायरनमेंट में बहुत सारे इन्फेक्शंस फैल जाते हैं, वायरसेस बैक्टीरिया जो है बहुत प्रोवोक कर जाते हैं, स्पेशली जब चेंज ऑफ सीजन होता है। तो इस टाइम पर क्या होता है, जब चेंज ऑफ सीजन होता है आप देखते हैं फ्लू बहुत कॉमन है आजकल, लोगों में बहुत ज्यादा कोल्ड कॉफ हो रहा है, तो इस टाइम पर इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो जब इम्यूनिटी लो होती है तो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको डिटॉक्स करना बहुत जरूरी होता है और ऑर्गन्स को हील करना बहुत जरूरी होता है, जिस वजह से जब हम फास्टिंग करते हैं तो हम नॉर्मल से थोड़ा सा कम खाते हैं। और दूसरी बात, हम सात्विक फूड को जो है वो ज्यादा महत्वता देते हैं, तमस वाले फूड अवॉइड करते हैं, लहसुन प्याज जो होता है वो उसमें नहीं होता है, जिस वजह से जो है हमारा जो इम्यूनिटी है, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स को बहुत सारा रेस्ट मिलता है, तो जिस वजह से हमारी इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग होती है।
7: नवरात्र में जब तब पूजा अर्चना का विधान यूं ही नहीं है, वैसे तो किसी भी समय व्रत का कनेक्शन तन और मन की शुद्धता से है। उपवास शरीर की क्षमताओं को बढ़ाता है, मन को नई ऊर्जा देता है, लेकिन जानकार मानते हैं कि नवरात्र के दौरान उपवास से विशेष तौर पर शरीर के पाचन तंत्र को आराम मिलता है, पाचन अंगों विशेषकर पेट और आंतों को जरूरी विश्राम मिलता है। उपवास से शरीर के विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, वजन नियंत्रण और मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है, सुस्ती दूर होती है, साथ ही तरोताजगी का एहसास होता है। नवरात्र का व्रत ऋतु परिवर्तन के अनुकूल शरीर को ढालने में मददगार है। इससे आत्म अनुशासन और मानसिक शक्ति का विकास तो होता ही है, साथ ही एकाग्रता और आत्म नियंत्रण भी बढ़ता है।
8: देवी की ऊर्जा इतनी पावरफुल होती है, इतनी पावरफुल होती है कि अगर आप मंदिर में जाके भी जो है, अगर आप मंदिर में जाके कुछ आराधना उपासना करते हैं तो उसका कई गुना फल मिलता है। आप सिर झुकाते हैं तो आपका क्राउन चक्रा जो है वो खुल जाता है, आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, आपका पंच तत्व जो है वो बैलेंस होता है, मैनिफेस्टेशन जो है वो कितने गुना जो है बढ़ जाती है, देवी की शक्तियां क्वालिटीज हमारे अंदर आने लगती है, मंत्र सिद्धि हमारे अंदर आने लगती है, जाप। और जब आप व्रत करते हैं तो पूरा फोकस और कंसंट्रेशन जो है वो भी पूरा देवी में ही लगता है, तो इसीलिए फास्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है।
7: शरद ऋतु में माँ की पूजा का जो धार्मिक विधान है, देखा जाए तो उसके पीछे कुछ हद तक विज्ञान है। इस त्योहार के साथ ही सर्दी के आगमन का संकेत मिल जाता है, इस लिहाज से व्रत के दौरान जो खानपान होता है वो कारगर होता है। नवरात्र की पूजा के दौरान सात्विक भोजन का महत्व समझ लीजिए। व्रत में इस्तेमाल होने वाला कुट्टू का आटा ग्लूटेन फ्री, फाइबर, मैग्नीशियम और प्रोटीन से भरपूर होता है, तो सिंघाड़े का आटा एंटीऑक्सीडेंट्स, पोटेशियम, विटामिन B6 से भरपूर होता है। साबूदाना शुद्ध कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, और मखाने में कैल्शियम और एंटी एजिंग गुण होते हैं। रही बात सेंधा नमक की, तो उसमें सोडियम की मात्रा कम और मिनरल ज्यादा होते हैं। ताजे फल तो वैसे भी विटामिन और मिनरल्स के बेहतरीन स्रोत हैं, और दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। यानी नवरात्र के व्रत उपवास का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि इसका हमारे स्वास्थ्य से भी सीधा कनेक्शन है। माँ की आराधना से, उनकी भक्ति से जिस तरह सुख समृद्धि का वरदान मिलता है, उसी तरह व्रत से शरीर को नई शक्ति और ऊर्जा का एहसास होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, जैसे माँ के अलग अलग स्वरूप और उनके अलग अलग गुण हैं, उसी तरीके से माँ की भक्ति के भी अलग अलग रंग ढंग हैं। गुजरात के सूरत में माँ दुर्गा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का ऐसा अनोखा तरीका सामने निकल कर आया जो लोगों को हैरान कर रहा है। सूरत की बाइकिंग कम्युनिटी के सदस्यों ने 75 प्रीमियम मोटर बाइक्स की मदद से समंदर किनारे माँ दुर्गा की विशाल आकृति तैयार की। देखिए, आसमान से जब इस कलाकृति को ड्रोन कैमरे ने रिकॉर्ड किया तो कैसा भव्य नजारा निकलकर सामने आया एरियल शॉट से। डभारी बीच पर नौजवान बाइकों के साथ पहुंचे और वहां पर उन्होंने बाइक से ही मां आदिशक्ति की अनूठी आकृति तैयार की। इस आयोजन में सूरत में सक्रिय विभिन्न नामी मोटरसाइकिल शोरूम और बाइकिंग समूहों ने भाग लिया। प्रत्येक डीलर ने 2 से 3 नई मोटरसाइकिल्स उपलब्ध कराई और उसमें सहयोग दिया। तस्वीरें देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे मां की आंखें आपको बिल्कुल नजर आएंगी। नवरात्रि का ये पर्व जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, दुर्गा पूजा पंडालों में लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगी है। खासकर बंगाल के अलग अलग शहरों में सजे थीम बेस्ड पूजा पंडालों की चर्चा खूब हो रही है। इन पंडालों में राज डांगा नबा उदय संघ और चोरबागन सर्वजनीन दुर्गा उत्सव समिति का पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।
7: शक्ति उपासना का पर्व पूरे ही देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन बंगाल जैसी दुर्गा पूजा न सिर्फ बेजोड़ है बल्कि अद्भुत और अलौकिक भी है। यहाँ एक से बढ़कर एक दुर्गा पूजा पंडाल सजे हैं, जो आस्था और भक्ति के साथ एक कहानी भी कह रहे हैं। इनमें से एक दक्षिण कोलकाता का मशहूर क्लब राज डांगा नबा उदय संघ का पूजा पंडाल है, जो इस साल शोधन यानी शुद्धिकरण थीम पर आधारित है। राज डांगा नवोदय संघ के पंडाल की ये थीम इंसान के भीतर के विकारों को दूर करने के साथ साथ पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ बनाने का एक सशक्त संदेश देती है। आयोजकों ने बताया कि 70 से 80 लोगों ने इस पर काम किया और दिन रात बहुत मेहनत की, तब जाकर ये पंडाल अपनी थीम के मुताबिक इतना जीवंत बन पाया है। दुर्गा पूजा के रंग में देशभक्ति का रंग भी घुला हुआ है, ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा के पंडाल में, जो 2026 में अपना 91वां साल मना रहा है। बाजार में होने वाले इस दुर्गा पूजा समारोह की थीम वंदे मातरम पर आधारित है, जो राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित है। इसलिए भारत के नक्शे के आकार में बने इस पंडाल में देश के इतिहास, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम की झलक हर तरफ देखने को मिल रही है। बंगाल के थीम बेस्ड पूजा पंडालों की फहरिस्त में अगला नंबर उत्तरी कोलकाता के चोर बागान सार्वजनीन दुर्गा उत्सव समिति के इस पंडाल का है, जो इस साल बियॉन्ड साउंड की थीम पर आधारित है। पंडाल के अंदर का दृश्य किसी जादुई रात के आकाश या स्पेस जैसा अनुभव देता है, जहां टिमटिमाते तारे और जादुई रोशनी का शानदार संगम इस पंडाल की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। कोलकाता की तरह ही बंगाल के दूसरे शहरों में भी एक से बढ़कर एक दुर्गा पूजा पंडाल सजे हैं, जिनकी भव्यता और सुंदरता लोगों का मन मोह रही है। सिलीगुड़ी के सुब्रत संघ ने अपने 69वें साल में आदिशक्ति थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल तैयार किया है, जिसमें भगवान शिव की विशाल मूर्ति और कैलाश पर्वत की रेप्लिका शामिल है, जो इस पंडाल का सबसे बड़ा आकर्षण है। शारदीय नवरात्रि के दौरान बंगाल के अलग अलग शहरों में सजने वाले ऐसे दुर्गा पूजा पंडाल सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं होते, बल्कि ये कला, संस्कृति और अद्भुत रचनात्मकता का जीता जागता उदाहरण है, जो अपनी इसी कला और रचनात्मकता के लिए देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी ने ऊंची जगहों में पारा शून्य से नीचे पहुंचा दिया है, तो आने वाले समय में इन पहाड़ी राज्यों में ठंड के क्या हालात रहने वाले हैं। अगर आप इन जगहों की सैर करने का प्लान बना रहे हैं तो मौसम विभाग की दी गई जानकारियों को सुनकर ही पहाड़ घूमने का प्लान बनाएं।
9: मौसम
0: मौसम ने रुख बदला तो पूरी कश्मीर घाटी ही सर्द हवाओं की आगोश में समा गई। गुलमर्ग की ऊंची चोटियां सफेद बर्फ से ढकी दिख रही हैं। बोटा पाथरी में आज की ताजा बर्फबारी के बाद से पारा भी गोते लगाने लगा है। मैदानों को भले ही सर्द मौसम का इंतजार हो, लेकिन पहाड़ों पर तो ठिठुरन वाले मौसम का आगाज हो चुका है। अक्टूबर के महीने में ही इस सीजन की बर्फबारी शुरू होने से पूरी घाटी की रंगत मानो बदल गई है। उत्तरी कश्मीर के ज्यादातर हिल स्टेशंस पर बर्फ की सफेद चादर नजर आने लगी है। सोनमर्ग में भी बर्फबारी के बाद से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कहीं बर्फ गिर रही है तो कहीं बारिश अपने साथ ठंड का एहसास लेकर आ रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि कश्मीर में आने वाले कुछ दिनों तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। लगातार बर्फबारी से आने वाले दिनों में ठंड तेजी से बढ़ेगी। इस बार अक्टूबर के महीने से ही अच्छी बर्फबारी होने से अंदाजा है कि दिसंबर जनवरी में ज्यादातर हिल स्टेशंस पर तापमान शून्य से काफी नीचे जा सकता है। कश्मीर के साथ साथ दूसरे पहाड़ी राज्यों में भी मौसम तेजी के साथ बदल रहा है। हिमाचल में रविवार को हुई तेज बारिश के बाद मौसम साफ हो गया है, लेकिन इस बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में सर्द मौसम का आगाज तो हो ही गया है। बारिश के बाद से तापमान में यहां 6 से 11 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। कुछ जगहों पर तो पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है।
9: ये जो वेदर एक्टिविटी कल जो 11 अक्टूबर को प्रदेश में देखी गई है, इसके प्रभाव से जो दिन के तापमान है वो एवरेज देखिए 6 से लेके 11 डिग्री पूरे प्रदेश में ही फॉल हुए हैं। और कुछ एक शहरों की बात करें तो शिमला का अधिकतम तापमान 16 डिग्री था, वहीं जो है क्षेत्र हैं पालमपुर गुंतर कांगड़ा यहाँ पे 18 से लेके 19 डिग्री दिन के तापमान गए हैं और इनमें भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है।
0: हिमाचल में आगे भी मौसम का उतार चढ़ाव जारी रहने की उम्मीद है, लेकिन कश्मीर में आने वाले दिनों में ठंड तेजी से बढ़ सकती है। गुलमर्ग से अशरफ वानी, सोनमर्ग से मीर फरीद और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: पहाड़ों पर घूमने जाने की सोच रहे हैं अगर आप, खासकर हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज, तो बता दें कि यहाँ पास में ही त्रियुंड है जो एडवेंचर की एक खास जगह बन रही है, क्योंकि यहाँ नेचर का दीदार करने के लिए जरूरत से ज्यादा सैलानी पहुंच रहे हैं। ऐसे में यहाँ कैंपिंग पर लगाम लगाने की तैयारी हो रही है।
0: हिमाचल के पहाड़ों की खूबसूरती पूरी दुनिया से लोगों को अपनी ओर खींच लाती है, लेकिन कई बार बेतहाशा बढ़ते टूरिज्म से इन पहाड़ों की कुदरती खूबसूरती को ही खतरा पैदा हो जाता है। धर्मशाला में त्रिवुंड ट्रैक पर अनियंत्रित कैंपिंग भी पर्यावरण संरक्षण में एक बड़ी चुनौती बन रही थी, लेकिन अब प्रशासन त्रिवुंड ट्रैक के प्राकृतिक सौंदर्य को सहेजने के लिए अलर्ट हो गया है। इस सिलसिले में टूर ऑपरेटर्स और एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े संचालकों की प्रशासन के साथ एक बैठक हुई। बैठक में त्रिवुंड में सीमित संख्या में कैंप लगाने का फैसला लिया गया। प्रशासन ने त्रिवुंड में कैंपिंग के लिए 3 हेक्टेयर क्षेत्र निर्धारित किया है। 1 हेक्टेयर में अधिकतम 80 टेंट लगाने की अनुमति होगी। पूरे एरिया में कुल 240 टेंट लगाए जा सकेंगे। त्रिवुंड ट्रैक पर रोजाना 1000 पर्यटकों को जाने की इजाजत दी जाएगी। 500 पर्यटक गल्लू की तरफ से जाएंगे, वहीं 500 पर्यटकों को भागसुनाग की ओर से जाने की अनुमति होगी। सिर्फ रजिस्टर्ड पर्यटन संचालकों को ही अनुमति दी जाएगी और पर्यटकों की सुविधा के लिए 6 बायोडाइजेस्टर शौचालय लगाए जाएंगे।
10: ये जितने भी हमारे पास यहाँ हाइकर्स और ट्रैकर्स जाते हैं उसके लिए एक हम मैकेनिज्म डेवलप करने जा रहे हैं, वो हमारे इको टूरिज्म पॉलिसी का भी हिस्सा है। उसमें हम चाहते हैं कि जितने भी हाइकर्स और ट्रैकर्स ट्रैक पे जाते हैं वो रजिस्टर्ड और ट्रेन टूरिस्ट गाइड के माध्यम से जाएं। मतलब कि जो भी ट्रेन टूरिस्ट गाइड हैं और रजिस्टर्ड है मिसलेनियस एक्टिविटीज में टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ, वही इन लोगों को लेके जाएं और कैंपिंग करवाएं। तो जो ये हमारे इश्यूज हैं, सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ का इशू है, ट्रैकर्स की सेफ्टी का इशू है, वो क्लिंच हो जाता है।
0: इस नियंत्रण के साथ ही प्रशासन त्रिवुंड में हाइकर्स और ट्रैकर्स की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था करने में जुट गया है। इसके तहत सैलानियों को ट्रेन्ड और टूरिस्ट गाइड्स के साथ ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए भेजा जाएगा। इससे पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखने में भी मदद मिलेगी। धर्मशाला से पूजा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
11: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती है।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
3: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: नवरात्र में माँ दुर्गा के पंडाल बने आकर्षण का मुख्य केंद्र। पुरुलिया में टेराकोटा के पंडाल ने खींचा सभी का ध्यान। हावड़ा में देखने को मिली केदारनाथ धाम की झलक। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर मां ब्रजेश्वरी के दरबार में पहुंची कथावाचक जयकेश्वरी, पूजा अर्चना के साथ माता का आशीर्वाद। देश में पहली बार चमोली जिले में वसुंधरा ताल में लगा अर्ली वार्निंग सिस्टम, 2 घंटे पहले मिलेगी आपदा की चेतावनी, स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा और इजाफा, पहला स्वदेशी मल्टी पर्पस वेसल समर्थक 16 अक्टूबर को कारवार में होगा कमीशन। कश्मीर की गुरेज घाटी में लगातार बर्फबारी का दौर, गुलमर्ग और सोनमर्ग में भी बिछी बर्फ की सफेद चादर, सड़कों पर फिसलन, सैलानियों से सावधानी बरतने की अपील।

नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं जेएनटी स्पेशल। जेएनटी स्पेशल में आज बात गरबे के रंग और उमंग की। नवरात्र के 9 दिनों में देश भर में गरबे का उत्साह नजर आता है। वैसे तो अब अलग अलग राज्यों में शहर शहर गरबा आयोजन होने लगा है, लेकिन गरबे की उमंग का सबसे गाढ़ा रंग चढ़ता है गुजरात में। हर बार की तरह इस बार भी गुजरात से गरबा की शानदार तस्वीरें आ रही है। गुजरात में नवरात्रि की भक्ति के साथ गरबा की मस्ती खुली मिलती है। जामनगर में अंगारों के बीच मां दुर्गा की आराधना करते गरबा प्रेमियों का उत्साह देखने लायक है। इसी तरह राजकोट की वीरांगनाएं तलवार रास के माध्यम से महाअंबे की आराधना कर रही है, तो वहीं वडोदरा में गरबा का राष्ट्रीय अंदाज नजर आया। वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में वो अद्भुत दृश्य था, हजारों लोग एक साथ गरबा की ताल पर झूम रहे थे। ऐसी कितनी ही तस्वीरें इस समय गुजरात के अलग अलग शहरों से लगातार आ रही है। तो चलिए जीएनटी पर नवरात्रि के इस उत्सव को बनाते हैं कुछ और खास और आपको दिखाते हैं गुजरात में नवरात्र के दौरान सजे गरबा की नौ रंग।

शहर सभी है एक, क्या सूरत क्या भोपाल, नवरात्रि का रंग वहीं जमे जहां मिले गरबे की ताल से ताल। वैसे तो नवरात्रि की धूम पूरे देश में है, लेकिन गुजरात जैसी रौनक कहीं और नहीं। चाहे राजकोट हो, वडोदरा, जामनगर या फिर खेड़ा, हर शहर गरबा और डांडिया के रंग में रंगा हुआ है। ये तस्वीर है गुजरात के राजकोट। शौर्य की ताल पर ये शत्राणियों का नृत्य है।

0: भवानी की भक्ति में ये शक्ति की हुंकार है। माँ अम्बे के आंगन में ये श्रद्धा, शौर्य और साहस का संगम है। हाथों में लहराती तलवार, अपने अपने वाहन पर सवार, गुजरात के राजकोट में राजपूत समाज की महिलाओं और बच्चियों ने राजपूताना पोशाक में तलवार के साथ गरबा कर भक्ति और शक्ति की अनोखी तस्वीर पेश की। किसी ने चलती हुई कार पर तलवार के साथ गरबा किया, किसी ने स्कूटर पर सवार होकर तलवार का जौहर दिखाया। रफ्तार भरते हुए अस्त्र शस्त्रों का कौशल दिखाती ये वो छत्राणियां हैं जिन्हें वीरता का गुण विरासत में मिला है।
1: हम यहाँ गणेश चतुर्थी से लेकर यानी कि 1-1.5 महीने से हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये हमारी राजपूती कल्चर है, जो राजपूती संस्कृति है उनको प्रदर्शित करता है। राजपूती संस्कार जो हमारी दिकरियों में होते हैं उनको यह दर्शाता है, शौर्य, वीरता और जो जो इतिहास में गाथाएं लिखी गई है उसको बखूबी यहाँ पे प्रस्तुत करता है।
2: 12 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की दादी माँ या नानी माम जिसे कह सकते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और साथ में 200 जितनी सन्नारियां हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो अभी हम यहाँ प्राचीन रस और तलवार रस विविध प्रकार के रजू करने वाली है।
3: भगनी सेवा फाउंडेशन की महिलाएं ये कार्यक्रम करती हैं और पूरा संचालन महिलाओं द्वारा किया जाता है, इसकी पूरी व्यवस्था महिलाएं करती हैं, ट्रेनिंग महिलाएं देती हैं।
0: अगली तस्वीर है गुजरात के ही जामनगर, दहकते अंगारे और उन पर नंगे पैर रास, इसे कहते हैं अंगारा रास। आग के बीच कदमों की ये लय लोगों को हैरान कर देती है। जामनगर में पिछले 80 सालों से नवरात्र के दौरान ये अद्भुत परंपरा निभाई जा रही है। वक्त बदला, गरबा का रंग और अंदाज बदला, लेकिन जामनगर की इस गरबी ने अपनी पुरानी पहचान नहीं छोड़ी। पीढ़ी दर पीढ़ी बुजुर्गों से युवाओं तक ये परंपरा यूं ही सहेजी जाती रही और इसी परंपरा का हिस्सा है यहाँ होने वाला मशाल रास, जहाँ लोग हाथों में जलती मशालें लेकर ढोल की थाप पर झूमते हैं। मशाल रास माँ अम्बे की आराधना का अनोखा माध्यम है। माँ की भक्ति, लोक संस्कृति का रंग और खुद में 80 साल की विरासत को समेटे जामनगर की ये गरबी जो देखता है हैरान रह जाता है।

खेला जाता है। गरबा के इस रूप को गोप गुठन रास और कान गोपी रास के नाम से भी जाना जाता है। इस रास में मंडल के 16 सदस्य रस्सियों के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तालमेल और अनुशासन के साथ होने वाली ये प्रस्तुति अनोखी होती है। रास की अनूठी शैली और कलाकारों के बीच शानदार समन्वय दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। मंडल के सदस्य हर साल पूरे उत्साह और श्रद्धा भाव के साथ इस गरबी में भाग लेते हैं और पारंपरिक रास के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाते हैं। नई पीढ़ी को भी इन प्राचीन परंपराओं से जोड़ने का निरंतर प्रयास किया जाता है ताकि आने वाले समय में भी ये सांस्कृतिक धरोहर जीवित रहे। आपको बता दें कि जामनगर का आशापुरा गरबी मंडल पारंपरिक अठंगा रास के साथ साथ तलवार रास की विशेष प्रस्तुति भी देता है। यहाँ बालिकाएं और युवतियाँ पूरे उत्साह के साथ तलवार लेकर गरबा खेलती हैं और माँ आद्या शक्ति की ये अद्भुत आराधना करती हैं। तलवारों के साथ किया जाने वाला ये रोमांचक प्रदर्शन केवल एक नृत्य नहीं बल्कि साहस, वीरता, शौर्य और भक्ति का जीवंत प्रतीक है। इस प्रस्तुति के माध्यम से सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा को हर साल दोहराया जाता है। आशापुरा गरबी मंडल में पिछले 45 वर्षों से नवरात्रि महोत्सव की ये परंपरा उत्साह और श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है। अठंगा रास और तलवार रास की ये परंपरा न केवल जामनगर बल्कि पूरे सौराष्ट्र और गुजरात में पारंपरिक गरबी की समृद्ध विरासत को सहेजने और आगे बढ़ाने में भूमिका निभा रही है।

चलिए गुजरात के ही खेड़ा, जहां शारदीय नवरात्र की धूम है, गरबा की गूंज है। खेड़ा में इन दिनों गरबा और डांडिया के बीच भारत के दो राज्यों की संस्कृति का सुंदर संगम दिख रहा है। खेड़ा के सलूर गांव में बेटियों ने पारंपरिक मणिपुरी वेशभूषा में मां अम्बा की विशेष आरती की। इस अनूठी प्रस्तुति को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। गांव के मुख्य चौक में जब मणिपुरी वेशभूषा में सजी बेटियों ने मां अम्बा की आरती शुरू की तो माहौल भक्तिमय हो गया। मणिपुरी संस्कृति की झलक और मां जगदम्बा के प्रति अटूट श्रद्धा ने इस आयोजन को खास बना दिया।

0: अब चलिए गुजरात के ही वडोदरा, जहां गरबा महोत्सव की रौनक, सजावट और भव्यता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। ये शानदार तस्वीरें हैं वडोदरा के ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस में आयोजित हेरिटेज गरबा उत्सव की, जहां भारतीय और वैश्विक संस्कृति का संगम देखने को मिला। देशों के विदेशी मेहमान लक्ष्मी विलास पैलेस में हेरिटेज गरबा के साक्षी बने। रंग बिरंगे चनिया चोली और लहंगों में सजे विदेशी मेहमान यहां गरबे का लुत्फ उठाते दिखे।
1: सो इफ यू कैन स्पीक हिंदी, जस्ट टेल मी, कैसा लग रहा है आज आपको यहां पर?
2: बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बेस्ट।
3: It's incredible. Just look at the scale. We're at Lakshmi Villas Palace in Vadodara. We have tens of thousands of people dancing together as one. And then over behind us...
1: Are you enjoying the...
2: I love it. It's incredible. It's...
1: So have you ever been to this place?
2: No, never. Never. And it is beyond words that we're experiencing. It's completely mind-blowing.
0: ढोल की थाप और रोशनी से जगमगाता पैलेस का प्रांगण पूरी रात भक्ति और उत्सव के रंग में रंगा रहा। पारंपरिक लोक गीतों पर लोग थिरकते रहे।
1: ये लाइव सिंगिंग म्यूजिक के साथ ही यहाँ पर गरबा होता है। यहाँ का प्रोटोकॉल है कि आप कोई भी कैसेट नहीं चला सकते हैं, कोई भी वीडियो नहीं दिखा सकते, आपको लाइव में ही यहाँ पर सिंगिंग करनी होती है। ये पूरा प्रोटोकॉल है ताकि हमारी कल्चर संस्कृति को भी सहेजा जाए। और यहाँ तमाम जितने विदेशी डेलीगेट्स हैं उन लोग को

0: इस इवेंट में 40,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ पारंपरिक गरबा किया और माँ के चरणों में आस्था की जोत जलाई। जब एक साथ हजारों लोगों ने गरबा नृत्य किया तो वो नजारा अद्भुत था। सजे धजे सैकड़ों कलाकार एक साथ गरबा करने उतरे तो देखने वाले देखते रह गए। गरबा न हो मानो रंगों का उत्सव हो,
1: ऐसा खूबसूरत नजारा आप केवल वडोदरा में देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 40,000 लोग हैं जो यहाँ पर गरबा परफॉर्म कर रहे हैं, लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं। ये भी इसी का एक थीम रहता है जिसमें सबको बोला जाता है कि आप टॉर्च ऑन कीजिए, टॉर्च ऑन के साथ रिदम के साथ अपने ताल से ताल मिलाते हुए लोग यहाँ पर गरबा खेलते हैं। और अभी अगले 5 से 10 मिनट तक आपको बिल्कुल इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा जहाँ हर कोई अपनी धुन में मगन है, केवल उनको सुनाई दे रहा है तो म्यूजिक, और म्यूजिक के साथ अपना मोबाइल ऑन और उसके साथ लोग लगातार थिरकते जा रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस से देखिए।
0: वास्तव में गरबा देवी दुर्गा की आराधना के साथ साथ भारतीय संस्कृति को संजोने और सहेजने का एक उत्सव भी है जो लंबे समय से भारतीय परंपरा का हिस्सा रहा है। और संस्कृति की यही भव्यता लक्ष्मी विलास पैलेस के प्रांगण में नजर आई।
1: आज यहाँ पे बहुत सारे विदेशी डेलीगेट्स भी हैं जो यहाँ पर इसका हिस्सा बन रहे हैं। कितने गर्व की बात है वडोदरा के लिए, आपके लिए, राजघराने के लिए।
2: बहुत ही गर्व की बात है कि विश्व भर से लोग इतने इम्पोर्टेंट डेलीगेट्स बड़ोदा आए हैं। एज अ बड़ोदियन आई फील वेरी प्राउड एंड कि कल वो उन्होंने पैलेस देखा और आज वो हमारे गरबा में आए, तो आई एम वेरी हैप्पी।
1: मेहमान नवाजी करके अच्छा लग रहा है,
2: सॉरी आई कांट हियर यू।
1: मेहमान नवाजी करके अच्छा लग रहा है,
2: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा।
1: एक संदेश जो यहाँ से रानी साहिबा पूरे देश को देंगी नवरात्र का।
2: मैं नवरात्रि के पर्व अवसर पे सबको खूब खूब बधाई देती हूँ एंड यही आशा करती हूँ, माँ से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा देश जुड़ा रहे और वी गेट स्ट्रॉन्गर।
0: गुजरात में शहर शहर इन दिनों गरबा की उमंग है और सिर्फ गुजरात ही क्यों, नवरात्र के दिनों में तो सारा देश ही गुजरात के साथ गरबा की ताल पर थिरकता नजर आ रहा है। राजकोट से रौनक मजीठिया, जामनगर से दर्शन ठक्कर, खेड़ा से हेताली शाह और वडोदरा से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और नवरात्रि के समय गरबा को लेकर उत्सुकता खूब दिखती है। जिसने कभी गरबा नहीं किया हो वो भी इन दिनों गरबा उत्सव में शामिल होने के लिए आतुर दिखता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि में गरबा की शुरुआत कैसे हुई और गरबा मुख्य रूप से नवरात्रि में ही क्यों किया जाता है और आखिर क्यों गरबा परंपरा की शुरुआत को गुजरात से जोड़कर देखा जाता है? गुजरात को गरबे की विरासत आखिर कैसे मिली? आज जीएनडीए स्पेशल में आपको सुनाते हैं कहानी गरबे के इतिहास।

0: हृदय पर ये परंपरा की ताल है। संगीत की रिदम और तालियों की थाप पर ये सदियों पुरानी संस्कृति की छाप है। शान गुजरात की मिट्टी पर थिरकते ये पांव देखने वालों के हृदय पर छोड़ते जाते हैं। गुजरात का गरबा संगीत और नृत्य का वो अनोखा संगम है जिसकी गोलाकार संरचनाओं में आनंद और उल्लास के साथ शक्ति उपासना का सागर भी हिलोरे लेता है। बल्कि देखा जाए तो गुजरात का गरबा वास्तव में मां भगवती की उपासना की सबसे जीवंत तस्वीर है। जो गरबा नृत्य परंपरा की जड़ों से परिचित नहीं है वे इसे महज एक डांस फॉर्म के रूप में जानते हैं और भारत के विस्तृत सांस्कृतिक मानचित्र का एक हिस्सा भर मानते हैं। एक बेहद सुंदर रंगों से सजा धजा हिस्सा, लेकिन वास्तव में गरबा इससे कई बढ़कर है। वास्तव में गरबा नारी की सृजन शक्ति को नमन करने का उत्सव है और इस उत्सव के केंद्र में होता है वो गर्भदीप जिसे आपने अक्सर गरबा नृत्य के केंद्र में देखा होगा। गोला बनाकर किए जाने वाले गरबा नृत्य के बीच में एक कलश रखा जाता है। गरबा के आयोजन में देवी की उपासना के साथ इस कलश को रखने की परंपरा है। इस कलश को गर्भदीप कहा जाता है और इसी गर्भदीप के गर्भ में छुपा है गरबे की परंपरा का सार।
1: 5000 साल से ज्यादा गरबा की परंपरा है। विक्रम संवत में 16 दिन जब श्राद्ध के संपूर्ण होते हैं और शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होता है, बारिश विदाई ले के न ले लेकिन शरद ऋतु आ जाती है। गरबा का अर्थ ये होता है दीप गर्भ, गर्भ में मैं हूँ। गर्भ का अर्थ ये है कि छिद्र वाले घट में गरबा कहते हैं, यानी गर्भो भी कहते हैं।
0: आपको बता दें कि गरबा शब्द गर्भ और दीप से मिलकर बना है। नवरात्रि के पहले दिन मिट्टी के घड़े में बहुत से छेद किए जाते हैं जिसके अंदर एक दीपक प्रज्वलित करके रखा जाता है। इसके साथ चांदी का एक सिक्का भी रखते हैं। इस दीपक को ही दीप गर्भ कहा जाता है। आपको बता दें कि दीप गर्भ नारी की सृजन शक्ति का प्रतीक है और गरबा इसी गर्भ दीप का अभ्रंश रूप है। दीप गर्भ की परंपरा में कलश या घड़े को नारी के गर्भ का प्रतीक माना जाता है, तो वहीं इस कलश में रखा दीपक जीवन और विशेषकर गर्भ में पल रहे शिशु के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसी गर्भदीप के चारों ओर गोला बनाकर गरबा किया जाता है। ये गोला सर्कल ऑफ लाइफ यानी जीवन के चक्र का प्रतीक माना जाता है। वही जीवन चक्र जिसकी उत्पत्ति और संचालन का आधार स्वयं शक्ति है। इस तरह गरबा नृत्य नारी की प्रजनन क्षमता का उत्सव मनाता है, नारित्व का सम्मान करता है और मातृ देवियों के सभी 9 रूपों को नमन करता है।
1: दीप गर्भ को नारी शक्ति समन्वित कहते हैं कि गरबा का अर्थ ये है कि गर्भ का दीपक, पौराणिक मात्रा अनुसार के अनुसार कहा जा रहा है कि गर्भ दीप स्त्री गर्भ का सर्जन शक्ति का प्रतीक होता है, सौभाग्य का प्रतीक होता है, शक्ति का प्रतीक होता है। गर्भदीप स्थापना महिलाओं के लिए समृद्धि लाती है और स्त्रियों अच्छे वस्त्र धारण करके माता दुर्गा की उपासना करती है और खूब फलदायी है।
0: दीप गर्भ की स्थापना के पास महिलाएं सुंदर और रंग बिरंगे कपड़े पहनकर माता शक्ति के आगे नृत्य कर उन्हें प्रसन्न करती हैं। गरबा नृत्य कई तरह से और कई चीजों के साथ किया जाता है। गरबे में महिलाएं और पुरुष ताली, चुटकी, डांडिया और मंजीरों का भी इस्तेमाल करते हैं। ताल से ताल मिलाने के लिए महिलाएं और पुरुषों का 2 या फिर 4 का ग्रुप बनाकर ये नृत्य किया जाता है। गरबे के नृत्य में मातृ शक्ति और कृष्ण की रासलीला से संबंधित गीत गाए और बजाए जाते हैं। गुजरात के लोगों का ये मानना है कि गरबा नृत्य माँ भगवती को बेहद प्रिय है, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए गरबे का नवरात्रि में खास तौर पर आयोजन किया जाता है।

नवरात्रि में गरबा और डांडिया खेलने की परंपरा कई सालों पुरानी है, लेकिन 60 और 70 के दशक तक गरबा गुजरात और राजस्थान जैसे पश्चिमी राज्यों में खेला जाता था। उन दिनों तक गरबे का रूप भी आज जितना भव्य और विशाल नहीं था। गांवों और शहरों में बेहद सादगी के साथ और सीमित स्तर पर गरबे का आयोजन होता था।

लेकिन धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ गरबा का विस्तार गुजरात की सीमाओं से निकलकर दूसरे राज्यों तक पहुंचने लगा। लोकप्रियता बढ़ी तो गुजराती सिनेमा के बाद मुंबई की फिल्मों ने भी अपने कैनवस में गरबा वाले गीतों के लिए जगह बनानी शुरू की।

तरह गरबा की लोकप्रियता आगे बढ़ती चली गई। समय के साथ गरबा की बढ़ती ख्याति यूनेस्को तक भी पहुंची। साल 2023 में यूनेस्को ने इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी यानी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया। यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने के बाद गरबा की रौनक कुछ और बढ़ गई। अब देश के कई राज्यों में नवरात्रि पर्व पर गरबा का आयोजन किया जाता है। कई संस्थाएं और क्लब बेहद बड़े पैमाने पर पूरी भव्यता के साथ नवरात्र में गरबा का आयोजन करते हैं। कई जगहों पर गरबा प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। गरबा आयोजन के नए रिकॉर्ड बनते हैं। अब की बार भी शक्ति उपासना के उत्सव में गुजरात के साथ साथ सारा देश आस्था की इस अनुपम ताल पर झूम रहा है जिसे दुनिया गरबा नाम से जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: अमेरिका के न्यूयॉर्क में बहुत मशहूर जगह है टाइम्स स्क्वायर, सात समुंदर पार। नवरात्र में यहां मां दुर्गा की भक्ति का रंग जमा हुआ है। बंगाली समुदाय के लोगों ने यहां पर दुर्गा पूजा के जरिए अपनी संस्कृति और परंपराओं का जश्न मनाया। दो दिन के इस उत्सव में पूजा पाठ के साथ संगीत, नृत्य और सम्मान समारोह हुआ।

दुनिया के सबसे चर्चित स्थानों में से एक न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर माँ दुर्गा के जयकारों से गूंज उठा। जहाँ कहीं पूजा अर्चना में जुटे श्रद्धालु दिखे, तो कहीं भक्ति गीतों पर थिरकते कलाकार नजर आए। सात समंदर पार माँ दुर्गा की आराधना में डूबे ये सभी श्रद्धालु भक्ति के साथ अपनी संस्कृति और परंपराओं के रंग बिखेरते नजर आए। आमतौर पर यहाँ चमचमाती स्क्रीन और लोगों की भीड़ नजर आती है, लेकिन इस बार नवरात्रि के मौके पर माहौल कुछ ऐसा बदला कि हर तरफ माँ की भक्ति के रंग नजर आने लगे।

0: इस आयोजन में भक्ति के साथ अपनी जड़ों से जुड़े रहने का भाव भी नजर आया। भक्ति गीतों की धुन पर कलाकारों ने ऐसा समा बांधा कि दर्शक भी झूम उठे। बच्चों और युवाओं की प्रस्तुति ने उत्सव में चार चांद लगा दिए। हर प्रस्तुति में अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और परंपराओं को सहेजने की झलक दिखाई दी। वहीं कलाकारों की संगीतमय प्रस्तुति से हर कोई उत्सव के रंग में रंगा नजर आया। बात तो ये रही कि माँ दुर्गा की भक्ति में सिर्फ भारतीय समुदाय ही नहीं, विदेशी पर्यटक भी शामिल हुए और टाइम्स स्क्वायर में माँ दुर्गा की आराधना का ये उत्सव आस्था के साथ भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को भी बयां कर गया। न्यूयॉर्क से रोहित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़।